0: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
1: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है, और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है, और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
0: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं, 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के साथ निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात करेंगे यूपी की, जहां विधानसभा चुनावों से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
3: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया, तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
4: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी। आज नहीं है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है, बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
3: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
5: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
3: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
6: पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
3: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
7: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
3: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी जबरदस्त तरीके से उसका वायरल है, जिसमें गोरखपुर डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी दी।
8: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजीआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। हम हैरान हैं, मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
9: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और और अब जो फैसला करना है करेंगे।
8: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो, ये गोरखपुर पुलिस है।
5: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा, गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
8: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल DDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
2: महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मचा हुआ है। पहले सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद रुकेगा इससे। अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नीतीश राणे का नाम लिए बगैर कहा है कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
0: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
10: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला।
0: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
11: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
0: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
11: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन हैं जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
0: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
12: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है। पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
13: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहने आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं?
0: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
2: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया है, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन इस प्रतिमा को नहीं हटा पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ होना है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों की तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को नीव सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, नीव सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से नीव सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहाँ सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति की चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। और धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल हैं, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: हाँ सर, 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: मुझे ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमार कालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही झाड़नी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा भी कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन झाड़नी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही आ रहे, हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम झाड़नी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप फुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। राहुल गांधी ने भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा है, तो आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस राज में पंजाब में नशा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं।
0: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं, और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
10: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
0: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
11: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप ये और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
12: गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दरबा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
0: दो दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
13: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखिया भी साढ़े पिंड सरेआम चिट्टा बिखरेगा, जब एक गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, ब्याह करके तेने चीमे नूं क्यों आखिया, सानू धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
0: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और अब बात करेंगे मौसम के बारे में। भले ही आसमान से बादल छट गए हों, लेकिन बाढ़ का पानी अभी भी मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारी, किस तरह से लोग परेशान हैं इस पानी की वजह से, जनजीवन अस्त व्यस्त है, देखिए।
14: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है। गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
15: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है। गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
14: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
9: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आडवाणी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल होगी या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली के बाद देश के दो शहरों में बड़ा हादसा, गांधीनगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत, मलबे से 15 लोगों का रेस्क्यू, रांची में पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की मौत। और आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर मचाई हलचल, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है, इसी के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री 12 सितंबर से कर सकेंगे प्री बुकिंग।

0: आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। गुजरात के गांधीनगर में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 15 मजदूर घायल हुए हैं, साथ ही इन सभी को अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल किसी की जन हानि की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये निर्माणाधीन इमारत जो गिरी, इनमें 15 मजदूर वहां थे जिनको रेस्क्यू किया गया। और अच्छी खबर ये कि इनमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन निर्माणाधीन इमारत का जब यह हिस्सा गिरा, वहां लोग काम कर रहे थे उस इलाके में, उसके बाद तुरंत ही मौके पर पुलिस को, दमकल कर्मियों को बुलाया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 15 जो मजदूर वहां पर थे उन्हें वहां निकाला गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज करने के लिए। 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका ये भी जताई गई है, जिसके लिए राहत बचाव कार्य अभियान तेजी से मुस्तैदी से चलाया गया और रात भर ये राहत बचाव कार्य चला है। गांधीनगर का ये इलाका था जहां पर एक इमारत निर्माणाधीन थी और उसका एक हिस्सा जब गिरा तो वहां काम करने वाले मजदूर उसकी चपेट में आए। जो 15 मजदूर सबसे पहले निकाले गए हैं और उसके बाद राहत बचाव कार्य अभियान जारी है तब तक तलाश के लिए जब तक वहां पर किसी के भी होने की संभावना है। जानकारी तब नहीं मिली थी कि 10 मजदूर वहां संभवतः फंसे हुए हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले कोई अनहोनी होती समय रहते राहत बचाव कार्य अभियान चलाया गया, तमाम मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाला गया, उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और राहत बचाव कार्य अभियान पूरी मुस्तैदी के साथ रात भर चलाया गया। ये दृश्य उस इमारत का है जहां पर राहत बचाव का अभियान चलाया गया बीती रात जब यह हादसा हुआ, और उसके बाद तमाम जो राहत बचाव कार्यकर्मी थे हादसे की दूसरी खबर झारखंड से, रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके से बड़ी खबर यह आ रही है कि पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया, इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम को भेजा गया, मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब इन तस्वीरों में आप हादसे की भयावहता को देख सकते हैं। देखिए, बीती रात जब पानी की टंकी बन रही थी और वो गिर गई, 2 मजदूर वहां थे वो कुचल गए, उसमें दब गए। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पूरे इलाके में मलबा हटाकर यह भी देखने की कोशिश हुई कि क्या किसी की जीवित बचने की संभावना है या फिर मरने वालों का या घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बेहद दर्दनाक घटना। और बीते एक सप्ताह में अगर देखें तो देश के 3 बड़े शहरों में 3 इस तरह के हादसे सामने हैं। दिल्ली में एक इमारत गिर जाती है जहां पर छात्रों की मौत हो जाती है, और गुजरात में एक निर्माणाधीन इमारत गिरती है उसमें मजदूर घायल हो जाते हैं, और झारखंड से ये दर्दनाक हादसा, पानी की टंकी गिरी और 2 मजदूरों की इसमें मौत हो गई। और अब टेक की दुनिया से बड़ी खबर हमारे आपके एप्पल फोन की चाहत रखने वालों के लिए। यह खबर है कि एप्पल ने नई आईफोन की लॉन्च से धूम मचा दी है। नया आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है और सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत की हो रही है। हर साल की तरह कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे। बहरहाल, स्टोरेज और नए फीचर्स के लिए आपको एयरपोर्ट दिखाते हैं। एप्पल ने iPhone 18 Pro Max लॉन्च कर दिया है, जिसका इंतजार आईफोन यानी एप्पल फोन चाहने वालों को था। देखिए खास रिपोर्ट। पहली बार एप्पल ने फोल्डेबल फोन भी लॉन्च किया है। हालांकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार इनकी क्षमताओं में क्या होगा, A19 प्रोसेसर की जगह A20 आएगा, बैटरी क्षमता इसकी कितनी बेहतर होगी, जो कैमरा है वो AI संचालित कैमरा होगा, इसमें AI कितना कारगर साबित होगा। हमने आईफोन 16 में फीचर देखे थे, तो अब आईफोन 18 प्रो सीरीज फोन में क्या करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो दिलचस्पी थी लोगों की, कि जिस पहले देखा हमने कि मोटो हो, सैमसंग हो, ये तमाम सारे फोन फोल्डेबल फोन लेकर गए थे, तो इस फोल्डेबल फोन में एप्पल क्या कुछ करने वाला है। तो एप्पल ने भी ये घोषणा की कि उसका भी फोल्डेबल फोन आएगा, लेकिन उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जेब पर थोड़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन अब ये आ चुका है तो एप्पल की बुकिंग जल्दी शुरू हो जाएगी फोन लॉन्च होते ही, और संभवतः अगले सप्ताह तक आपको ये फोन बाजार में दिख जाएगा, यानी इसके बाद प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी। और टेक की दुनिया में अपने आप में आईफोन जिसका इंतजार था उनके चाहने वालों के लिए, उसके रंग यानी उसके कलर्स कैसे होंगे, फीचर क्या क्या होंगे, वो सारी खूबियों के साथ आप ये देखिए कीमत देख लीजिए, 164,900 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर आप प्रो मैक्स वर्जन पे जा रहे हैं तो 179,900, सीधे सीधे 180,000 रुपए। और अगर आप डुओ यानी फोल्डेबल फोन जिसकी ख्वाहिश आपको थी, तो आप डुओ में देखिए कि कितनी कीमत है। तो शुरुआती कीमत अगर आप आईफोन 18 प्रो लेने जा रहे हैं तो 165,000 लेके जाइए, प्रो मैक्स के लिए 180,000 रुपए। और उस आईफोन के फोल्डेबल फोन को आपको ले जाना है तो सीधे सीधे समझिए 3,00,000 रुपए आपकी जेब पर ये पड़ेगा। 3,00,000 रुपए ले जाइए और फोन आ जाएगा डुओ। अब फोल्डेबल फोन के फीचर्स क्या है मैं आपको बता देते, लेकिन कीमत इस बार बहुत ज्यादा झटका देने वाली है। इसके पहले आपको याद हो जब 17 प्रो 17 प्लस 17 प्रो मैक्स आया था, उसकी कीमत ही पहले लोगों को काफी चौंकाई थी, लेकिन एप्पल के चाहने वाले हैं कीमत चाहे जितनी भी हो स्टोर भर जाते हैं, अपने आप लोग पहुंच जाते हैं। देख लीजिएगा जैसे ही बुकिंग खुलती है, विंडो खुलता है स्टोर पर, तो मुंबई दिल्ली कोलकाता बैंगलोर जो अच्छा रंग देख लीजिए, बहुत लोगों को इंतजार था किस किस रंग में आएगा। तो प्री ऑर्डर 12 सितंबर को है, ओपन सेल 18 सितंबर को एप्पल स्टोर में ये मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसकी रेंज क्या है, 256 GB से लेकर के 1 TB तक में मिलेगा। अब बर्गंडी से लेके सिल्वर ग्लेशियर ब्लैक, ये चार वो रंग हैं जिस रंग में आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा इंतजार था लोगों का कि मरून कलर में आएगा। तो 12 सितंबर को प्री ऑर्डर कर लीजिएगा, ओपन सेल 18 सितंबर से है। और देखिए 512 GB 2 TB यानी न्यूनतम क्षमता इस बार 256 GB, अधिकतम क्षमता 2 TB की आपको मेमोरी की मिलने वाली है। चार रंगों में भी मौजूद है जिसमें ग्लेशियर रंग भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार लोगों को दिलचस्पी उस मरून कलर के आईफोन की थी जब वो आ चुका है। तो बस एप्पल के लिए आपका इंतजार खत्म। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि आखिर कैसे ये फोन धमाका मचाने वाला है। लेकिन रुक करते अगली खबर का, दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे का साइड इफेक्ट दिख रहा है। सरकार ने उन कमजोर इमारतों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है जिनमें पीजी चल रहे हैं। अब सरकार की ओर से 27 इमारतों को गिराने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है।
1: जब 7 छात्रों की जिंदगी खत्म हो गई, जब 7 परिवारों में कोहराम मच गया, तब जागी है दिल्ली की सरकार और अब चलना शुरू हुआ है हथौड़ा उन इमारतों पर जिनमें अवैध तौर पर औने पौने दाम में पीजी चलाया जा रहा था। ये उसी सत्य निकेतन का पीजी है जिसे तोड़ा जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे आप देखिए टॉप एंगल व्यू से आज तक की रिपोर्ट, जहां पे एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वो लगातार सुबह से हथौड़ा चला रहे हैं, ड्रिलर्स चला रहे हैं और ऊपर छत पे जो भी स्ट्रक्चर है उसको तोड़कर एक एक कर गिराया जा रहा है, मलबा नीचे फेंका जा रहा है।
1: मुखर्जी नगर में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, उनकी जिंदगियों के साथ यहाँ भी लापरवाही होती है, इसीलिए यहाँ भी वैसी ही कार्रवाई हो रही है।
3: और अब इस बिल्डिंग को तोड़ना शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सन 2023 में ही इस बिल्डिंग पर नोटिस लगा दिया गया था और कहा गया था कि ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है और इसको खाली करा लिया जाए, लेकिन 4 साल हो गए इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया। और अब देखिए कैसे ना सिर्फ बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, इसके अंदर से बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं जो मीटर लगे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर उसको धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं, इसका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है वो तोड़ा जा रहा है।
1: लक्ष्मी नगर में भी कई पीजी चिन्हित किए गए हैं जो नियम को अनदेखा करके चलाए जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है।
4: ये लक्ष्मी नगर का बिल्डिंग नंबर 11 है जहाँ इस वक्त एमसीडी की टीम पहुंची है और डेमोलिशन ड्राइव जो है वो किया जा रहा है। ये 4th फ्लोर है और पार्किंग के साथ अगर लगाते हैं तो इस पूरी फ्लोर को अब इस वक्त पंचर जो है वो कर दिया गया है, यानी कि अब इस बिल्डिंग का ये जो पूरा हिस्सा है ये डेमोलिशन कर दिया गया है, यानी अब इस बिल्डिंग को पूरी तरीके द्वारा रिनोवेट जो है वो नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि इस तरीके से एमसीडी इसको डेमोलिशन करती है ताकि द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण न किया जा सके।
1: बीजेपी भरोसा दिला रही है कि छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा
5: और अभी भी जो चुनौती आई है इसको भी दिल्ली सरकार लगातार निपट रही है और मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने तत्परता से आगे कार्रवाई की है और भी जो समस्या चीजें हैं उसके होलिस्टिक अप्रोच को देखते हुए उसके पूरे निराकरण का प्रयास किया जाएगा।
1: अब तक करीब 7 प्रॉपर्टीज सील की गई हैं। 35 इमारतों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 6 इमारतों को सीलिंग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर दिल्ली के साथ निकेतन हादसा मामले में पुलिस ने 5वीं गिरफ्तारी कर ली है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले पीजी चलाने वाले सुधांशु को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पीजी संचालक सुधांशु के पार्टनर शुभम त्यागी की तलाश जारी है, लेकिन सवाल यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिनकी देखरेख में ये पीजी चल रहे थे। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश राज की कानून व्यवस्था की याद दिला रहे हैं। अखिलेश यादव मौजूदा हालातों पर योगी सरकार को घेर रहे हैं।
6: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
7: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी। आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
6: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
8: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा, गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
6: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
9: ए पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
6: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
9: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
6: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र को नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर को वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गोरखपुर डीडीओ में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया और छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर से धरने से हटाने की चेतावनी भी दी।
10: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीय ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्ली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। सीजेआई ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
11: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने और अब जो फैसला करना है करेंगे।
10: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा एसीपी 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी जीडीयू का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो, ये गोरखपुर पुलिस है।
8: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल जीडीयू में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
0: और अब बात करेंगे उज्जैन की, जहां आस्था और विकास आमने सामने खड़े हो गए हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। लेकिन एक प्राचीन हनुमान मंदिर हटाया जाना था, मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया, क्योंकि यह तय हुआ कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन इस प्रतिमा को हटा ही नहीं पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति। उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में ये तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है, और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी चीज भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि यह चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक

0: कभी मशीनें खराब हो जाती हैं, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता है मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है, उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
1: 1957 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
2: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
1: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
3: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
4: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 35 साल तो हो गए, मेरे को भी आते होते बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
2: आप हर मंगलवार आते हो?
4: हर मंगलवार आते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
5: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही, हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाना, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
3: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
6: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
8: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

तरह का भोजन करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर हो सकती हैं? किस तरह के खान पान से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है? और किस तरह के खान पान से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है? आपके खान पान का आपके भाग्य से क्या है संबंध? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@

0: हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं, सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल होगी या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली के बाद देश के 2 शहरों में बड़ा हादसा, गांधीनगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत, मलबे से 15 लोगों का रेस्क्यू, रांची में पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की मौत। और आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर मचाई हलचल, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है, इसी के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री 12 सितंबर से कर सकेंगे प्री बुकिंग। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। बात करेंगे पंजाब की, गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। आज राहुल गांधी ने जब भगवंत मान सरकार के मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा मांगा तो आप नेता कांग्रेस राज्य में पंजाब में नशा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, 6 महीने के भीतर चुनाव होने वाले हैं, पंजाब की सियासत उबल रही है।
1: पंजाब में नशे पर जारी सियासत में गुलजार सिंह की मौत ने आग में घी का काम किया है। अब राहुल गांधी मान सरकार से वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार का काम जनता को जवाब देना है, सवाल पूछने वालों को कुचलना नहीं। गुलजार सिंह जी के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले, मुख्यमंत्री तत्काल वित्त मंत्री का इस्तीफा लें और सुनिश्चित करें कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिसकी FIR में उनका नाम दर्ज किया जाए। उधर राहुल की पोस्ट के बाद सोशल मीडिया में आप बनाम कांग्रेस के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गई। राहुल जी, पंजाब में नशा कौन लाया? आपकी कांग्रेस सरकार लाई, अकाली दल और बीजेपी की सरकार लाई। मुझे बेहद दुख है कि आप जैसे नेता लाशों के ऊपर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार के किसी मंत्री, किसी विधायक का इस व्यक्ति की मौत से कोई लेना देना नहीं और आप इस तरह की गंदी राजनीति मत कीजिए।
2: राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए इस तरह से लाशों पर राजनीति करते हुए। पंजाब के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि नशा लाया कौन? अकाली भाजपा सरकार लेके आई और फिर कांग्रेस ने उसको घर घर तक पहुंचाया, पूरे पंजाब के अंदर फैलाया।
1: उधर बीजेपी से लेकर अकाली दल तक पूरा विपक्ष मान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है।
3: संगरूर में गुलजार सिंह का सुसाइड केस अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज भाजपा का 600 साइट्स पे विरोध प्रदर्शन है, हम मोहाली के जगह पे, और आप देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है।
4: गुलजार जैसा भाई खड़ा होके बोलता है दिड़बा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
1: 2 दिन पहले संगरूर के गुलजार सिंह ने सुसाइड कर लिया था। गुलजार ने नशे के मुद्दे को पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हरपाल को आप नेताओं ने इतना परेशान किया कि वो सुसाइड के लिए मजबूर हो गया। हरपाल के बेटे का बयान भी सामने आया था जिसमें वो चीमा पर आरोप लगा रहा था।
5: भाई साढ़े टूर बन जा रहे पिंड चीमा आया थी, मेरे बाप ने आखे भी साढ़े ही पिंड सरेआम चिट्टा बिक रहेगा। जब ये गल आखी तो सरपंच मैंबर भड़क गई, बयान करके तेने चीमे नु क्यों आख्या, सानू धमकियां दे रहे ने सरपंच मैंबर।
1: पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए सरपंच समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मृतक गुलजार सिंह के बेटे लखविंदर सिंह के बयानों के आधार पर BNS की धारा 108 और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरी ओर मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार ने अब SIT गठित कर दी है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
0: और बात करेंगे इंदौर की, बुलडोजर एक्शन के दौरान हंगामे की तस्वीरें सामने आई, स्थानीय लोग और पुलिस के बीच झड़प हो गई और इन सब के बीच कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई।
6: इंदौर के साउथ टोड़ा इलाके में पुलिस और लोगों के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। देखिए कैसे DCP को एक शख्स ने धक्का दिया और वो जमीन पर गिर पड़े। काफी देर तक ये लोग पुलिस से भिड़े रहे। ये झड़प इसलिए हुई क्योंकि प्रशासन की टीम यहाँ पर बनाए गए 45 अवैध इमारतों को ढहाने पहुंची। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ घर, कुछ कारखाने और कुछ दुकानें अवैध तौर पर बनाई गई थी। इस मामले में यहाँ रह रहे लोगों को पहले ही नोटिस दे दिया गया था, मगर उन लोगों ने घर खाली नहीं किए। अंत में प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और इमारतें ढा दी।
7: तो आयुक्त महोदय के निर्देश पर इनको पूर्व में नोटिस हम लोगों ने जारी किए थे, उनकी सुनवाई की थी, तदुपरांत आदेश पारित कर दिया गया था कि इनको 15 दिवस की शराबी में हटा लें, परंतु लोगों के द्वारा आदेश की अवहेलना की गई और निर्माण स्वयं से नहीं हटाए गए। संयुक्त कार्रवाई करके सभी निर्माणों को हटाने की कार्रवाई की गई,
6: मगर इस एक्शन के साथ ही लोगों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा। अब डीसीपी से हाथापाई करने वाले शख्स के साथ 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक।
0: खबर उत्तर प्रदेश से। कानपुर में कारोबारी विनीत की हत्या के मामले में एक नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि जिस वक्त विनीत की हत्या हुई, इस वक्त उनकी हत्या की सुपारी देने वाले उनकी बहू अपने पति के साथ पार्टी कर रही थी। अब पार्टी का वीडियो सामने आया है।
6: यकीन करना मुश्किल है, मगर ये सच है। जिस वक्त रतन ऑर्बिट अपार्टमेंट में कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या हुई, उस वक्त कानपुर के ही कॉस्मोजिन लाउंज में उनकी बहू शालू पार्टी कर रही थी। ये है शालू, जो अपने पति सुब्रत के साथ डांस कर रही है। इसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, न किसी तरह की घबराहट। ये तो पार्टी के रंग में रंगी हुई है। अब जब ये वीडियो सामने आया है तो मालूम चला है कि साजिश के तहत शालू ने नौकरों को सुपारी दी थी और हत्या में उसका नाम कहीं ना आए, इसलिए घर से दूर पार्टी करने चली गई थी। रात करीब 3 बजे शालू घर लौटी थी, तब तक उसके ससुर की हत्या हो चुकी थी। अब दोनों नौकर और शालू पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद समझा जा सकता है कि इसने कितना शातिरपना दिखाया। हालांकि फिर भी इसका गुनाह सामने आ गया। सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: चलिए बात करते हैं मौसम की। भले ही आसमान से बादल छट गए हों, लेकिन बाढ़ का पानी अब मुसीबत बना हुआ है। बिहार के करीब 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट।
6: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है। लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहां नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
8: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है। और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पर से गुजर रहा है, गंगा इस तरफ से बहते हुए सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
6: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: त्योहारों का मौसम शुरू है, जल्दी ही नवरात्रि आएगी और नवरात्रि में महाराष्ट्र गुजरात दो जगह गरबा के लिए जाने जाते हैं। तो महाराष्ट्र में गरबा पर गदर मच गई है, वो इसलिए क्योंकि पहले सरकार के मंत्री नितेश राणे ने गरबा में मुसलमानों को प्रवेश न दिए जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इससे लव जिहाद रुकेगा और अब सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने नितेश राणे का नाम लिए बगैर कहा कि गरबा उत्सव में जो भी श्रद्धा से आना चाहे आ सकता है।
1: नवरात्रि में होने वाले गरबा का उत्सव अभी शुरू भी नहीं हुआ कि गरबा पर गदर मच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे आमने सामने हैं। पहले सुनिए अमृता फडणवीस ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा।
9: मला वाटतं हा आपला जो उत्सव आहे तो सर्व समावेश करतो, तर माझा विचार आहे जर एक मुस्लिम माणूस पण तिथे येत असेल आणि नीट गर्भाचा आनंद घेऊन जात असेल तर त्यात काही मला खराब नाही वाटत, ते नियमात राहून फॉलो करायला पाहिजे।
1: अमृता फडणवीस मानती है कि अगर सलीके से सभ्यता से कोई गरबा उत्सव में शामिल होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर अमृता फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया, इसके पीछे की सियासत मंत्री नीतीश राणे से जुड़ी हुई है। नीतीश राणे ने गरबा उत्सव को लेकर क्या कहा था, सुनिए।
10: ये गरबा और नवरात्र अगर जिहाद के अगर हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, लव जिहाद के हेडक्वार्टर बनते रहेंगे, तो उनको रोकने का काम जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद और इन जैसे सभी हम जैसे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं पे है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
1: फडणवीस के मंत्री नीतीश राणे ने ये भी नसीहत दी थी कि अगर किसी मुस्लिम को गरबा आयोजन में शामिल होना ही है तो पहले घर वापसी कर ले।
10: तो भी अगर आपको आना ही है तो घर वापसी कर लो। हमारे ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी संगठन है जो धर्मांतर करने में मदद करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम युवाओं को वापस हिंदू धर्म में, उनका ओरिजिनल जो धर्म है वो हिंदू धर्म है, उनमें घर वापसी करने में जो मदद करते हैं, घर वापसी करें।
1: अब गरबा पर जबरदस्त सियासत हो रही है।
11: हर श्रद्धावान व्यक्ति आ सकता है, उसके लिए किसी जाति धर्म का कोई अंतर श्रद्धा के सामने होता नहीं है, पर यदि भीतर श्रद्धा नहीं है, भीतर आराधना करने का मन नहीं है, तो फिर ऐसा व्यक्ति उस नवरात्रि में आकर के छेड़खानी करेगा।
12: मंत्री सरकार के हैं वो कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी कुछ और कह रही हैं। अरे भैया, हमारे डांडिया को पवित्र ही रहने दो। इसमें अगर हिंदू भाई बहन आते हैं, हमारी माताएं बहनें आती हैं, माँ की पूजा करती हैं, नृत्य करती हैं, माँ को प्रसन्न करना चाहती हैं, तो इसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो क्यों एंट्री चाहते हैं।
1: गरबा पर होने वाले आयोजनों को लेकर महाराष्ट्र का सियासी घमासान तेज है। नवरात्रि से पहले इस पर अभी विराम लगने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: तो महाराष्ट्र में आस्था के पर्व पर सियासत, लेकिन बात करें उज्जैन की तो आस्था और विकास अब आमने सामने खड़े हो गए हैं। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही है, लेकिन एक प्राचीन हनुमान मंदिर को भी हटाया जाना था। अब मंदिर का भवन तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब हनुमान जी की मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया। तय हुआ कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी प्रशासन इस प्रतिमा को हटा ही नहीं पाया। पूरी रिपोर्ट देखिए।
13: We're gonna make it.

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था तक है। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी है जो पहाड़ को खोद कर भी रास्ता बना देती है। आज हम मशीनों के तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति के चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, कितने धर्मस्थल
3: है? लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में है, लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी चीज भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज के प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 33 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यही आ रहे, हर मंगलवार दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही हमारा जन्म यही हुआ और यही आते हैं हम जाननी लगाने, और यहाँ से फर्क पड़ता है हमें, कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शनकारी छात्र का नोटिस भेजने पर ग्रेटर नोएडा प्रशासन को फटकारा। तो गोरखपुर में एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें गोरखपुर के डीडीयू में धरने पर बैठे छात्रों को दरोगा ने धमकाया, छात्रों को यूनिवर्सिटी परिसर में धरने से हटाने की चेतावनी भी दी।
10: यह मामला जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें आंदोलन खत्म हो गया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, आंदोलनकारियों पर से मुकदमे वापस हो गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिया कि आंदोलनकारियों पर अब कोई मुकदमा नहीं होगा, लेकिन 4 सितंबर को ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तृतीया ने अक्षत त्रिपाठी नाम के एक छात्र को नोटिस भेजा कि थाना इको प्रथम के पुलिस अफसर शिवा पांडे की रिपोर्ट की प्रभारी निरीक्षक ने पुष्टि की है। आरोप है कि अक्षत त्रिपाठी अन्य छात्रों को सीजेपी आंदोलन में शामिल होने के लिए भ्रामक बातें बताकर उकसा रहा है, इससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा है। ये BNSS 126-135 में कार्रवाई का पर्याप्त आधार है, इसलिए नोटिस दिया जाता है कि 6 महीने की शांति व्यवस्था के लिए अक्षत से क्यों नहीं 5 लाख का निजी बॉन्ड और 5-5 लाख की 2 गारंटी ली जाए। सीजेपी का आंदोलन खत्म होने के बाद इस तरह का नोटिस मिलते ही निजी यूनिवर्सिटी से कानून पढ़ रहा छात्र परेशान हुआ और मदद की गुहार लगाने लगा। विद्यार्थियों के वामपंथी संगठन की ओर से अक्षत को मिले नोटिस के खिलाफ आरोप लगाया गया कि यूपी पुलिस छात्र को परेशान कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट की कान तक पहुंचा। वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने CJI की अध्यक्षता वाली जस्टिस जॉय माल्ली बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कहा कि अक्षत को मिला नोटिस 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था। CJI ने कहा कि युवाओं पर कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता, हम हैरान हैं मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करने की हिम्मत कैसे की। हालांकि खबर है कि हंगामे के बाद पुलिस ने ताजा रिपोर्ट भेजी और मजिस्ट्रेट ने वो नोटिस वापस ले लिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई। लेकिन अक्षत का मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाने वाले वरिष्ठ वकील विश्वजीत भट्टाचार्य ने कहा कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी प्रथम दृष्टया अदालत की अवमानना के दोषी हैं और बाद में नोटिस वापस लेने से उन्हें बरी नहीं किया जा सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तथ्य रिकॉर्ड पर रखें, हम जवाब मांगेंगे, उन्हें सफाई देने दें।
11: देखिए, ये सफाई बेसफाई का कोई मतलब नहीं है। मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट का फैसले का कोई उल्लंघन न हो, मेरा लक्ष्य और उद्देश्य वही था। कॉन्स्टिट्यूशन रेंज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का कोई उल्लंघन ना हो, फिर मामला बड़ा गंभीर है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि सुप्रीम कोर्ट मेरे को सुना और मेरे को सुने, और अब जो फैसला करना है करेंगे।
10: और एक बार फिर अब सफाई देने का मौका यूपी पुलिस के पास है, क्योंकि कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रभार पुलिस को दिया गया है, जो फिलहाल ग्रेटर नोएडा ACP 3 के पास है। अब आपको यूपी के गोरखपुर में पुलिस की वर्दी वाली धौंस दिखाते हैं। वीडियो किसी सड़क चौराहे या थाने का नहीं, बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी GDU का है। वीडियो में एक दारोगा धरने पर बैठे छात्रों से सख्त लहजे में बात करते नजर आ रहे हैं। दारोगा छात्रों को चेतावनी देते हुए कहते हैं, इतनी फोर्स लगाऊंगा कि ठंडा कर दूंगा, जान नहीं रहे हो ये गोरखपुर पुलिस है।
12: बता दे रहा हूं, इतनी फोर्स लगाऊंगा, इतनी फोर्स लगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूं।
10: सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कहानी सिर्फ दारोगा की इस भुड़की तक नहीं है, इसके पीछे विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों का धरना है, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश और फिर हुई नोकझोंक की पूरी कहानी है। दरअसल GDU में कुछ छात्र भूख हड़ताल और धरना दे रहे थे। छात्र प्रशासनिक भवन परिसर में बैठे हुए थे, इसी दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर आज तक।
9: बुलेट में रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तरह का भोजन करने से आपकी भावनात्मक समस्याएं दूर हो सकती हैं? किस तरह के खान पान से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है? और किस तरह के खान पान से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है? आपके खान पान का आपके भाग्य से क्या है संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

आडवाणी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द दलितों का हमेशा किया अपमान। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को अब जेल होगी या जहन्नुम। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले 7 रूट को फोर ट्रैक करने पर मुहर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। दिल्ली के बाद देश के दो शहरों में बड़ा हादसा गांधीनगर में गिरी निर्माणाधीन इमारत मलबे से 15 लोगों का रेस्क्यू रांची में पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की मौत। और आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर मचाई हलचल आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है इसी के साथ फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री 12 सितंबर से कर सकेंगे प्री बुकिंग।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके ग्रहों के प्रभाव के अनुरूप आपका खान पान होता है, इसीलिए अगर आप अपने खान पान में बदलाव करें तो आपके ग्रहों पर असर पड़ेगा और आपकी किस्मत बदल सकती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि खान पान बदलने से आपका भाग्य कैसे बदलेगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 10:33 तक, नक्षत्र है मघा नक्षत्र दोपहर 2:04 तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आपके खान पान के बारे में आज बात कर रहे हैं। आपके खान पान का आपके ग्रहों के साथ क्या संबंध है? देखिए, कुंडली में द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव से खान पान की आदतें देखी जाती हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह होता है वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है वैसा ही आपका खान पान हो जाता है। आपके खान पान से आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक जीवन सीधे तौर से प्रभावित होता है। अपने खान पान में बदलाव करके या खान पान को बदल कर आप अपने जीवन में काफी बदलाव कर सकते हैं, और खान पान में बदलाव करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यानी खान पान को सुधार कर आप अपने वाणी को और अपने धन के मामलों को बेहतर बना सकते हैं। खान पान पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, काम का दबाव रहेगा, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन
मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रह किस तरह की अलग अलग खान पान की आदतें पैदा करते हैं। देखिए, सूर्य से व्यक्ति को मीठी चीजें खाने का शौक होता है और ये मीठी चीज थोड़ी गर्म होती है या एकदम कसैला, कड़वा नहीं कसैला, जैसे सरसों का स्वाद होता है ना, वैसा हल्का कसैलापन लिए हुए, ये सूर्य का स्वाद है। चंद्रमा से व्यक्ति को नमकीन चीजों का स्वाद मिलता है और चंद्रमा वाले व्यक्ति नमकीन चीजों को पसंद करते हैं। मंगल के कारण तीखा खाने की आदत पैदा होती है। जो लोग लाल मिर्च ज्यादा खाते हैं, तीखा और स्पाइसी खाना खाते हैं, वो मंगल की वजह से होता है। बुध वाले लोगों को चटपटी चीजें खाने का, गोलगप्पे चाट ये सब खाने का शौक ज्यादा होता है। बृहस्पति मीठी चीजों की तरफ और मिठाई की तरफ ले जाता है। जुपिटेरियन लोग मीठा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण पैदा होता है। अचार खटाई इसका आकर्षण शुक्र से पैदा होता है। शनि कसैली चीजों की तरफ ले जाता है, कड़वी चीजों की तरफ, जैसे करेला, नीम, गिलोय, इसके पीछे शनि है। और राहु खान पान को दूषित करता है और अभक्ष चीजें जो खाना उचित नहीं है ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है। आम तौर पर उल्टी सीधी चीजें के खाने का शौक राहु की वजह से पैदा होता है। अब ये जानते हैं कि जिन लोगों के अंदर खान पान की खराब आदतें होती हैं, उन खान पान की खराब आदतों के पीछे कौन से ग्रह होते हैं। राहु सबसे ज्यादा खान पान को दूषित करता है, खान पान को बिगाड़ता है। ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है, खराब कर देता है। व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा खाने का पीने का शौक राहु ही पैदा करता है। और जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध हो तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है और ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष चीजें, जो चीजें नहीं खानी चाहिए, वो चीजें खाता रहता है। और अभक्ष खाने की आदत हो जाने पर व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होने लगती हैं और कभी कभी बिना किसी कारण के व्यक्ति
व्यक्ति अपयश का शिकार हो जाता है। तो जो लोग दूषित खाना खाते हैं उनके जीवन में धन की मुश्किलें, अपयश की संभावना और सडन बीमारियां, ये आने की संभावना ज्यादा होती है। खान पान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, चोट चपेट से बचाव करें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सत्यजीत जी ने हमें लिखा है गया से। 14 नवंबर 1987 का जन्म है, 8:45 प्रातः, गया बिहार। ये अपनी आर्थिक स्थिति और अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं। सत्यजीत जी, कुंडली आपकी है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा केतु की चल रही है। सबसे पहले बता दें कि वर्तमान समय में ऑफिशियल मामलों को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर बेवजह की चिंताएं और तनाव दिख रहा है और साल 2027 के अगस्त के पहले तक आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर नहीं है। आने वाला समय साल 2028 में बेहतर दिखाई देता है, 2026 और 27 में सावधानी रखनी चाहिए। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहने, रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए और सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि आप किस तरह का गलत खाना खाते हैं या किस तरह का खान पान रखते हैं
तो उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, उससे समस्याएं कैसी होती हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे, और अगर मीठा खाने की ज्यादा आदत है तो अहंकार और शासन करने की आदत आपको लग जाएगी, अहंकार पैदा होगा। अगर आप ज्यादा नमकीन खाएंगे तो चंद्रमा पर असर पड़ने लगेगा, रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की और भावनात्मक समस्याएं आपको परेशान करने लगेंगी। अगर आप ज्यादा तीखा खाएंगे तो मंगल जग जाएगा, और ज्यादा तीखा खाने से क्रोध की और रक्त की समस्याएं परेशान करेंगी। अगर आप ज्यादा चटपटा खाएंगे तो वाणी दोष पैदा होगा और त्वचा की समस्या हो सकती है। अगर आप ज्यादा खट्टा खाएंगे तो आपका मन चंचल होगा और रिश्तों की वजह से आपको जीवन में परेशानी होगी। अगर आप ज्यादा कड़वा खाएंगे तो जीवन में संघर्ष पैदा होगा, और ज्यादा कड़वा खाने वाले लोग आम तौर पर आइसोलेटेड एकांत प्रेमी हो जाते हैं। खान पान पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ काम बनेगा, पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब आपको बताते हैं कि किस तरह की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपने खान पान में कैसा बदलाव करना चाहिए। अगर आपको भावनात्मक समस्याएं इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा हो तो दूध की बनी हुई मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए और नमक थोड़ा कम खाने का प्रयास करिए। अगर आत्मविश्वास की या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाइए, हल्का सा तीखा या भोजन के साथ हरी मिर्च का प्रयोग करिए और खट्टी चीजें कम खाइए। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो, ज्यादा गुस्सा लगता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च की चीजों से परहेज करिए। अगर वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइए, आपको लाभ होगा। अगर आप आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च खाने से आपको लाभ होगा। प्रातःकाल अगर गुड़ और काली मिर्च खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो तो मांस मदिरा और बासी भोजन से परहेज करें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर मन परेशान हो, मन में तनाव हो, चिंता हो तो तनाव और चिंता वाले मन से भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए हो।

भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग घर में भगवान को भोजन का भोग लगाते हैं। भगवान को भोजन का भोग लगाने का सही तरीका क्या है? देखिए, दोनों वेला या कम से कम संध्या काल में घर में बनने वाले भोजन के कुछ अंश का भोग भगवान को लगाना चाहिए। लेकिन भगवान को जो भोग लगाएंगे भोजन, उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। और भोग लगाने के बाद भगवान को नमस्कार करें और उसको लाकर बाकी भोजन में बाद में मिला दें और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। घर में किसी के भी खाने के पहले भोजन का भोग भगवान को लगा देना उचित रहेगा। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 8, स्थान परिवर्तन के योग हैं। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। विवाह संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख लीजिएगा, काम बन जाएगा।

डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा चोट चपेट लग सकती है। कार्यक्रम के अंत में आप जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इसलिए आज कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें और आज सात्विक भोजन ग्रहण करें। आज सात्विकता पूरी तरह से बनाए रखें। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

गुजरात के गांधीनगर बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, मलबे में दबे सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, डिप्टी सीएम हरसांघवी ने दी जानकारी। डॉक्टरों के अनुसार हादसे में हुए घायल किसी की भी हालत गंभीर नहीं, सभी 12 घायल लोग सुरक्षित निकाले गए। घटना को लेकर के डिप्टी सीएम हरसांघवी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कसूरवारों पर एक्शन किया होगा। हादसे के समय निर्माणाधीन इमारत में वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक बड़ा स्लैब गिर गया, 15 लोग दब गए। इस हादसे के बाद निर्माणाधीन इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन हादसे की वजहों की जांच कर रहे हैं। रांची में टंकी गिरने से बड़ा हादसा हुआ, 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 3 को बचा लिया गया है। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने भी लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव अभियान का जायजा लिया। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है, 2 दिनों में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया, 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभाग में बांट रही टीम, मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई को नोटिस जारी किए गए हैं, इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए गए। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो 18 प्रो मैक्स लॉन्च किया, साथ ही पहला फोर्डेबल फोन आईफोन 2 भी लॉन्च किया गया, 2,99,900 रुपए कीमत है इसकी। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900, आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 से शुरू, नए आईफोन में बेहतर सीरी पर भी जोर दिया गया है। भारत में शनिवार से शुरू होंगे प्री ऑर्डर, वहीं एप्पल के नए प्रो मॉडल में भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू होगी। एप्पल ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं, डिजाइन से पहले के अलग और कान के बाहर रहने वाला है, इसकी नॉइस कैंसिलेशन पिछली सीरीज से 50% ज्यादा काम कर रही है। एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 में दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर किया गया है, अब घड़ी हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक कर सकती है। हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा, वंदे मातरम गाने में इन्हें दलितों का हमेशा अपमान किया है। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, युवाओं को निराशा अंधकार में रखा, मोदी राज में जॉब सीकर से जॉब गिवर बन रहा है युवा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल, लेकिन आज उन्हें कोई चिंता इस बात की अब नहीं है। सीएम योगी ने माफियाओं को 2 टूक कहा, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जेल या जहन्नुम में से एक चुनना होगा। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद सीएम शुभेंदु ने कहा, जानता हूं भगवा का अपमान करने वालों को सबक सिखाना। शुभेंदु अधिकारी की जादवपुर में हुंकार, कहा कश्मीर मांगे आजादी और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाने वालों को

सबक सिखाने की चेतावनी। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर के कई बड़े फैसले किए गए। 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मुहर लगाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। लाल किले धमाके केस में एनआईए की चार्जशीट फाइल हुई। आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, लोन मुजाहिद की थियरी को फॉलो करता था। दिल्ली हाईकोर्ट का एनआईए से सवाल, क्या बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों पर जमानत दी जा सकती है? 3 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तार किए गए हैं। लीज कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट किया गया है। एमसीडी का एक्शन इस मामले में लगातार जारी है। अब तक 24 इमारतें गिराई जा चुकी हैं। सत्यनिकेतन मामले में आपके आरोपों पर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का पलटवार, बोले ये मेरी बिल्डिंग नहीं सिर्फ G+3 थी, सभी संपत्तियां पैतृक हैं। सौरभ भारद्वाज को कानूनी नोटिस भेजूंगा। पूर्व दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में 2 बिल्डिंग एक तरफ को झुक गई है, लोगों का जमावड़ा लग गया है। दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट का रास्ता साफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी की निजी संस्था से गहन ऑडिट की परिकल्पना नहीं की जा सकती। मध्य प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों का धरना खत्म हो गया। 14,300 की जगह अब 21,500 रुपए मिलेगा स्टाइपेंड, आज तक ने लगातार खबर दिखाई थी। पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर के सीएम हाउस के पास धरने पर बैठे थे ये इंटर्न डॉक्टर। बांग्लादेश के चटगांव में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक टैंक में ब्लास्ट हो गया। घटना में टैंक मौजूद सेना के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। धमाका इतना भयानक था कि टैंक के फरखच्चे उड़ गए। अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिला। एक मिलिट्री अफसर गंभीर रूप से घायल हो गया। ISPR ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बांग्लादेश की सेना ने 2 जवानों की मौत की पुष्टि की और कहा है कि धमाके की वजह की जांच की जा रही है। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी। 130 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई अब तक। इसके अलावा बचाव, राहत और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए भी भारत से 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेजा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के निर्देश दिए थे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल को सर्वसम्मति से एक बार फिर राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया है। पंकज गुप्ता और एनडी गुप्ता को भी उनके पदों पर बरकरार रहने के लिए वोटिंग हुई। पार्टी के कामकाज निर्णयों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 23 सदस्यों वाली नई नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी गठन किया गया है। लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, 11 बजे अखिलेश यादव की अध्यक्षता में एक बैठक शुरू होगी। इस बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव ने सख्ती दिखाई है। दोषियों पर हत्या से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की कार्यवाही का प्रावधान है। अवैध कब्जों पर कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए हैं। सागर घटना के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम मोहन यादव, उन्होंने कहा कि प्रशासन को सख्त कार्यवाही की खुली छूट है। ऐसी सजा मिलेगी कि दोबारा अपराध की हिम्मत न हो। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आमरण अनशन लगातार जारी है। आयशा के छात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बकरा का भी समर्थन मिल चुका है। सहारनपुर मस्जिद के मलबे पर पुलिस का पहरा, अब ग्रीन नेट से पूरे मलबे को ढक दिया गया है। अंबाला रोड स्थित कब्रिस्तान के बाहर से ईंटें उठाकर ले जाने के वीडियो वायरल हुए। बिहार में बाढ़ का कहर फिर बढ़ गया है। प्रभावित आबादी 40 लाख के पार हो चुकी है। 14 जिलों के 84 प्रखंड और 514 पंचायतें भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बाराबंकी सीतापुर बॉर्डर के पास बने गांव में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत में बाढ़ का पानी घुस गया। कुछ देर बाद ही वहां बना शिव मंदिर भी कटान के चलते बह गया। कटिहार में बाढ़ के बीच अनोखी तस्वीर देखने को मिली। नाव पर सवार होकर के दुल्हन के घर पहुंची पूरी बारात। भागलपुर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। दीपक आनंद ने राहत के कामों का जायजा लिया। वाराणसी में थोड़ी ही देर की बारिश से जलभराव की समस्या हो गई। निचले इलाके पानी से लबालब भर गए। इंदौर में अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल हुआ। एडिशनल डीसीपी को धक्का लगा, उल्टे गिरे डीसीपी। जमशेदपुर में 20 सड़क पर लीक का एलपीजी टैंकर, तस्वीरें सामने आई, लोगों में दहशत का माहौल। गिरिडीह साइबर थाने के इंस्पेक्टर 30,000 के घूस लेते गिरफ्तार किए गए, एसीबी ने रंगे हाथ दबोचा। मुजफ्फरपुर में रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़ा, दोनों की शादी करा दी। घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चंदौली में पुलिस ने 4 करोड़ का सोना पकड़ा। कार के गियरबॉक्स के पास सीक्रेट चैम्बर बनाकर छुपाए गए थे सोने के 22 बिस्किट। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान में बुर्का पहने महिलाओं ने 1 लाख कैश चुराया। चांदी के जेवर से भरा बैग पर भी हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा में बिस्तरक में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की छापेमारी। 3 लाख के पटाखों के साथ आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में विनोद हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला हत्या का आरोपी। पहले दोनों में कहासुनी हुई, फिर रंजिश में हत्या की गई।
बिजनौर में पत्नी ने कहा कि छत से बंदर भगा दो। डंडा लेकर बंदरों को पति जब भगाने पहुंचा तो बंदर उस पर टूट पड़े। डर कर भागे तो सीढ़ियों से गिरकर उसकी जान चली गई। भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रखे जनरेटर में आग लग गई। गेट के आगे फैला पूरा धुआं, शाखों में आफरा तफरी मच गई। इंदौर में महिला के गले पर ब्लेड से हमला हुआ। जांबाज ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तत्परता से उसकी जान बची। आरोपी ने खुद पर भी वार किया। मोतिहारी के आवासीय होटल में पुलिस की छापेमारी हुई। होटल संचालक समेत चार लड़के गिरफ्तार किए गए। तीन नाबालिग लड़कियां भी बरामद की गई। महिसागर में पिता ने शक और परिवार के विवाद में अपने ही बेटे को कुएं में फेंककर जान ले ली। आरोपी पिता मौके से फरार। बलसाड़ में हाईवे पर टेम्पो में एक आग लग गई। टेम्पो में माल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। धनबाद की युवती ने राजस्थान के युवक को शिकारी लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ। शादी का झांसा देकर लूटने वाले 10 शातिर गिरफ्तार किए गए। रांची में पुरानी पानी की टंकी अचानक गिर गई। कुछ मजदूरों के दबे होने की भी संभावना है। दो को बाहर निकाला गया। झांसी में पिता के सामने नाव पलटने से दो सगे भाई बेतवा नदी में डूबे। पिता देखता रह गया। अलवर में नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड 43 में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच विवाद हुआ। दो युवक घायल हुए। एक युवक के आए सिर में 15 टांके। कोरबा में रील देखते वक्त इंटरनेट बंद हुआ तो आक्रोशित महिला ने कीटनाशक सेवन देकर जान दी। मामले में हर एंगल से जांच में पुलिस जुटी है। एमपी के सीधी में नाले में पानी था तो बुजुर्ग की पीठ पर चढ़ गया पटवारी। वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने निलंबित किया। भव्य झांकियों और मंदिरों की सजावट के साथ गणपति के रंग में पूरा रंग रगा। कहीं पर विशाल पंडाल बन रहे हैं, कहीं बप्पा की भव्य प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बन रही है। पाली में गणपति की मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे कलाकार। इको फ्रेंडली रंगों का भी प्रयोग हो रहा है। गुजरात के आनंद में बप्पा का जोरदार स्वागत करने की तैयारी। राजा गणराज 2026 की आगमन यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 2.5 लाख मोदकों की भव्य झांकी देखने को मिली। 502 किलो के विशाल मोदक आकर्षण का केंद्र बने। पीलीभीत में देश के दूसरे बासमती और पहले जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र की नींव डाली गई। 8 एकड़ में बनेगा ये केंद्र। किसानों को आधुनिक खेती और ग्लोबल एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई में चिंचपोकली में बप्पा का आगमन हो चुका है। ढोल ताशों जयकारों से पूरा गिरगांव की गूंज उठा। इस बार चिंतामणि गणपति की सजावट तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर से प्रेरित है। मूर्ति में गरुण शंख चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक भी नजर आए। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत नंबर 1 के पायदान पर बरकरार है। 33 मैचों में 116 रेटिंग के साथ टॉप पर भारतीय टीम। महिला एशिया कप से भी फाइनल में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत। दुबई में आज शाम 8 बजे खेला जाएगा मुकाबला। नीली जर्सी में एशियन गेम्स खेलेगी भारतीय हॉकी टीम। हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का दिया गया विकल्प, जिसमें ब्लू जर्सी का चुनाव किया गया। बॉक्स ऑफिस पर छाए कालीन भैया मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 200 करोड़ रुपए के पार हुई। प्यार विश्वासघात की कहानी को लेकर क्या आ रही है फिल्म लव लॉटरी। अक्षय ओबेरॉय की सस्पेंस थ्रिलर का ट्रेलर जारी। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं हैवान नहीं हूं रिलीज कर दिया गया। इस गाने के प्रीतम ने कंपोज किया जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने बनाया गाना मनी फॉलोज माय ब्रदर टाइटल गाने का टीजर जारी। 4 साल बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे सिंगर विशाल मिश्रा। जल्दी ही आने वाला है उनका ये गीत। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
12: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक।
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
3: बंगाल में बाबा बागेश्वर के खिलाफ गुस्सा फूटा है, कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं, FIR दर्ज करने की मांग हो रही है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर दी है। ये शिकायत बाबा के उस बयान पर है जिसपे उन्होंने नवरात्रि के दौरान बंगाल के लोगों के खान पान पर सवाल उठाए थे।
4: पश्चिम बंगाल की हमको एक बात बहुत अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती, दिल में बहुत ठेस पहुंचती। यहाँ जब नवरात्रि आती है, दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा पंडाल जब लगाए जाते हैं तो दुर्गा पंडाल के पीछे अथवा तखत के नीचे नॉन वेज का भोजन किया जाता, गंदे गंदे भोजन पीछे बनाए जाते, हमें ये पसंद नहीं है।
3: मैं 4 दिन पहले की बात है जब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बंगाल पहुंचे थे। हावड़ा में उनका धार्मिक समागम था, उन्हें मानने वालों की भारी भीड़ थी। उसी कार्यक्रम के संबोधन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया। बंगाल के लोगों को दी गई उनकी नसीहत से अब बंगाल नाराज है।
5: कोई भी आदमी किसी शाकाहारी का पक्ष ले सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कोई गुनाह है, पाप है। अगर किसी ने पाखंडी है अगर ऐसा शब्द बोला तो हम इसको समर्थन नहीं करते।
6: बंगला और बंगालियों के संपर्क में जो इंसल्टिंग कमेंट किया है, इसके लिए यहाँ का सरकार को, क्योंकि वो सरकारी उनको सब खातिरदारी कर रहे थे, उनको क्षमा मांगना चाहिए।
3: भवानीपुर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 थानों तक बाबा के खिलाफ शिकायत भी पहुंच चुकी है और अब कार्रवाई की मांग तेज है।
7: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
8: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
9: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
8: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
9: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
10: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
11: अब्बा साईं।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
2: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट,
1: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: वो तो चार्ज हुआ यार।
4: ओले बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच दो यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है। नाराज फूफा हर काम पे सवाल, नाराज फूफा हर प्रोग्रेस पे बवाल, नाराज फूफा। 12 साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है। इसकी जरूरत ही क्या है, जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा। नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है। बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं।

0: छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
1: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पेवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
2: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है, और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर बातचीत, अंतिम दौर में 92 सीटों पर अड़ी कांग्रेस, अखिलेश 86 देने को तैयार, रायबरेली और अमेठी की सीटों पर पेच बाकी। नाराज फूफा विवाद के बीच ब्रिक्स समिट को लेकर भी कांग्रेस

पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, पूछा ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक सम्मेलनों से देश को क्या फायदा। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन, दो दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियों को सील किया गया, अलग अलग हिस्सों में असुरक्षित बिल्डिंग का सर्वे। नए आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर से मचाई हलचल, फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च, 12 सितंबर से कर सकेंगे प्री बुकिंग।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं सुपर 8। खबरों की रफ्तार तेज है और अगले कुछ मिनटों में देश दुनिया की 8 बड़ी खबरों पर हमारी नजर होने वाली है। सबसे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सिर्फ 2 दिनों में एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। सत्यनिकेतन हादसे के बाद क्या है जमीनी हाल, ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे। वही बात रांची से गुजरात तक की भी होगी। ढांचे धड़ाम हो गए हैं, हड़कंप वहां पर मच गया है, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो वही महाराष्ट्र में गरबा सियासत चल रही है, गरबा के रंग में सियासी रंग घुला है। उधर बंगाल से भी बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे। शुभेंदु अधिकारी की भगवा यात्रा, शक्ति प्रदर्शन या सियासी संदेश। अब मुंबई की तरफ भी रुक करेंगे, जहां पर बीएमसी पर लूट के आरोप है। पूरे मामलों में सवालों के घेरे में आखिर कौन है, ये भी बताएंगे आगे आपको। टेक्नोलॉजी की दुनिया से भी बड़ी खबर, आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च हुआ है। नए फोन में क्या है खास, क्या ये फोन वाकई है गेम चेंजर। बात बिहार और यूपी के बाढ़ की भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले रांची और गुजरात से हादसे की 2 बड़ी खबरें और इसी से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में पानी की टंकी गिरने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। गुजरात के गांधीनगर के कुड़ासन इलाके में निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा अचानक से ढह गया। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीमें पहुंची। तो रांची और गुजरात, इन दोनों हादसों में सवाल एक है कि आखिर जवाबदेही कब तय होगी, कब तक निर्माणाधीन इमारतों के हिस्से गिरते रहेंगे, कब तक पानी की टंकियां भर भरा कर गिरती रहेंगी और कब तक लापरवाही की कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं रांची और गुजरात की, जिसको लेकर अब सवाल सिस्टम पर खड़े हो गए हैं। वही गुजरात के गांधीनगर से एक बड़ी खबर। दरअसल कुड़ासन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब अचानक से गिर गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। मलबे में मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 15 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल पूरा कर लिया गया है। 15 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है। गांधीनगर से ये खबर आपको बता रहे। कुड़ासन इलाके में एक बिल्डिंग का स्लैब अचानक से गिर गया, निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब अचानक गिरा है, जिसमें हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गांधीनगर में, ये जो पूरा हादसा हुआ है, जिसमें तुरंत उसके बाद मजदूरों के फंसे होने की क्योंकि आशंका थी, तो तुरंत वहां पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम पहुंची और मौके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।
1: दिल्ली में इमारत गिरने के हादसे की तस्वीरें अभी जेहन से उतरी भी नहीं थी कि गुजरात के गांधीनगर से भी ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें सामने आ गई। गांधीनगर के कुड़ासन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब अचानक भर भरा कर गिर गया। स्लैब गिरते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। आशंका थी कि मलबे के नीचे 10 से ज्यादा मजदूर फंसे हो सकते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक एक पल बेहद अहम था। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश शुरू हुई और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक 15 घायलों को अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन दिल्ली से गांधीनगर तक सामने आई ये तस्वीरें एक सवाल जरूर छोड़ती हैं। आखिर इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम कब पुख्ता होंगे? गांधीनगर से ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: चलिए रांची की बात करें तो रांची के मारवाड़ी कॉलेज में हादसा हुआ है। पानी की टंकी गिरने की वजह से वहां पर बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया गया। मौके से आई तस्वीरों में हादसे की भयावहता साफ दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देखिए, पानी की टंकी गिरने की वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची इस पूरे हादसे के बाद और मलबे में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, लेकिन इस बीच 2 मजदूरों की मौत हो गई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वहां से सामने आई हैं रांची से, वो ये बयां कर रही हैं कि काफी भयानक ये हादसा था, जिसने लोगों को डरा दिया है।
2: और मलबे को हटाने का काम कर दिया गया।
1: भर भराकर गिरी टंकी। मलबे में दबे मजदूर, मौके पर मची अफरा तफरी और जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके से हादसे की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी की टंकी गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। टंकी के मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी रहा। मलबे को हटाकर फंसे लोगों की तलाश की गई।
3: पानी की टंकी भी गजर रास्ता में गिर गई है। दो मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी, जिसमें एक मजदूर को हम लोग निकाल कर हॉस्पिटल भेजे हैं। जो हमें पता चला, चार या पांच लोग काम कर रहे थे, लेकिन दो लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, बाकी लोग शायद उसमें बच गए।
1: रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दो मजदूरों की मौत के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई और हादसे की वजह की जांच पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: चलिए बात दिल्ली की कर लेते हैं। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन तेज है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का सर्वे अभी जारी है और कहीं भी कोई भी जर्जर इमारत या अवैध निर्माण मिल रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी हां, पिछले दो दिनों में 34 अवैध निर्माण दिल्ली में ध्वस्त किए जा चुके हैं। ध्वस्तीकरण और 17 संपत्तियों को सील भी किया गया है। एमसीडी के इस बड़े एक्शन और अब तक हुए सर्वे की पूरी तस्वीर आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं।

0: सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली में एमसीडी का एक्शन तेज है। पिछले दो दिनों में एमसीडी ने दिल्ली के 12 जोन में कार्रवाई की है। दो दिनों में 34 ढांचों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जबकि 17 संपत्तियों को सील किया गया है। एमसीडी ने 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं और 4 ध्वस्तीकरण आदेश भी पास किए हैं। एमसीडी के मुताबिक अब तक 1,243 पीजी इमारतों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें करीब 24,000 लोग रह रहे हैं। मंगलवार को 17 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और 5 संपत्तियों को सील किया गया। वहीं बुधवार को 17 ध्वस्तीकरण कार्रवाई और 12 सीलिंग की गई। एमसीडी ने पीजी इमारतों का सर्वे आज पूरा करने का निर्देश दिया है। सत्य निकेतन के बाद एमसीडी के इस एक्शन से साफ है कि अब दिल्ली में अवैध निर्माण पर शिकंजा और कसने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: तो दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के 3 दिन बाद एमसीडी अब एक्शन में है। जर्जर और असुरक्षित इमारतों पर बुलडोजर और हथौड़े चल रहे हैं। सत्य निकेतन में हादसे वाली इमारत के ठीक बगल वाली बिल्डिंग पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि ये कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं होती। 7 लोगों की जान जाने के बाद सिस्टम जागा है, अब जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या समय रहते कार्रवाई होती तो ये 7 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। अब इसमें क्या क्या एक्शन लिए जा चुके हैं, चलिए आपको वो बता देते हैं। दरअसल 1,243 पीजी इमारतों का सर्वे किया जा चुका है और मंगलवार की बात करें तो 17 इमारतें ध्वस्तीकरण के लिए और 4 को सील कर दिया गया है। वहीं दो दिनों में एमसीडी ने बड़े एक्शन लिए हैं। बुधवार को 17 ध्वस्तीकरण और 12 इमारतों को सील किया गया है, यानी काफी लेट एमसीडी थोड़ा एक्शन में आई है। एमसीडी के बड़े एक्शन को लेकर 34 ढांचों का ध्वस्तीकरण हुआ जा चुका है, वहीं 17 संपत्तियां सील की जा चुकी हैं। 22 को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। तो थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन एमसीडी अब एक्शन में आ चुकी है। 4 ध्वस्तीकरण के आदेश भी दे दिए जा चुके हैं। अब ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनमोल बाली की एक रिपोर्ट देखिए।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से सत्य निकेतन का सत्य बाहर आ गया है। पर अभी सत्य निकेतन का सत्य क्या है, यहाँ पर

0: एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये वही साइट है। देखा गया कि एक चार मंजिला इमारत गिर जाती है, जिसके गिरने से 7 लोगों की जो जान है वो चली जाती है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि जो मलबा बता रहा होगा कि कैसा खौफनाक मंजर यहां पर रहा होगा। उसी बीच एमसीडी के अब हथौड़े दिल्ली भर में जो है चलना शुरू हो गए हैं। जो अतिक्रमण है, जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं, जो कमजोर बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पर देखा जा रहा है कि एमसीडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तकरीबन 1100 के आसपास जो पीजी प्रॉपर्टीज हैं उनका सर्वे किया गया। साथ ही पांडव नगर से लेकर उत्तम नगर तक जो एमसीडी की कार्रवाई है वो शुरू हो गई। उसी बीच एमसीडी की कार्रवाई यहां दिल्ली के सत्यनिकेतन में भी शुरू हो चुकी है। जो एक साथ वाली बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसको भी एमसीडी ने तोड़ना शुरू कर दिया था। ये भी एक पीजी था और ये बिल्डिंग भी कमजोर थी, ये बिल्डिंग भी टिल्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं झुक रही थी। उसको देखते हुए एमसीडी की कार्रवाई यहां पर शुरू हो गई है। पर बड़ा सवाल ये कि जब 7 लोगों की जान चली गई, तब एमसीडी की नींद क्यों खुली? क्योंकि पहली बार नहीं हम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देख रहे कि ऐसा हादसा हुआ है। इससे पहले भी चाहे राजेंद्र नगर की बात की जाए, मुखर्जी नगर की बात की जाए, हर जगह अगर ऐसा हादसा होता है तो सबसे बड़े और जो सबसे पहले पीड़ित बनते हैं वो हमारे छात्र बनते हैं, हमारे एस्पिरेंट्स बनते हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को और एमसीडी को उनके बारे में सोचना होगा। कैमरामैन इमैनुअल जोस के साथ अनमोलनाथ बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।
1: तो वहीं बिहार में बाढ़ का कहर अभी थमा नहीं है। नदियों का बढ़ता पानी गांव को अपनी चपेट में ले रहा है और हजारों परिवारों की जिंदगी पानी में बीच फंस गई है। कटिहार से भोजपुर और मधेपुरा तक कहीं पर घर डूब चुके हैं, कहीं सड़कें गायब हैं, कहीं नाव ही लोगों के आने जाने का सहारा बनी हुई है। सबसे बड़ी चिंता उन परिवारों की है जो बाढ़ के बीच अपने घरों में कैद हैं और राहत का इंतजार कर रहे हैं।
2: पानी, पानी और सिर्फ पानी। एक पूरा गांव डूबा है, घरों की जगह छतें बची हैं और उन्हीं छतों पर टिकी है जिंदगी। भूखे प्यासे जानवर, छप्पर पर बैठे बच्चे और गांव की सड़कों पर चलती नाव। बिहार के कटिहार में बाढ़ ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। भोजपुर के बड़हरा में पानी भले घट रहा हो, लेकिन मुसीबत जस की तस है। घर पानी से घिरे हैं, रास्ते डूबे हैं और बाढ़ पीड़ित राहत की राह देख रहे हैं। कटिहार में करीब 3 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कहीं राहत कैंप, कहीं कम्युनिटी किचन, तो कहीं बोट एम्बुलेंस के सहारे मदद पहुंचाई जा रही है। मधेपुरा के किशनपुर, रथवारा, खापुर और गंगापुर पंचायत के करीब 2 दर्जन गांव पानी से घिरे हैं। करीब 40,000 की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें डूबी, सड़क से संपर्क टूटा और अब नाव ही लोगों का रास्ता है। आरा के अवदान राय के टोला में बाढ़ से जनजीवन बेहाल, घरों और सड़कों में घुसा पानी। पानी के बीच फंसे ग्रामीणों को अब भी राहत और जरूरी सामान का इंतजार। ये सिर्फ पानी की तस्वीरें नहीं, ये उन जिंदगियों की तस्वीरें हैं जो बाढ़ के बीच घर, खाना, रास्ता और राहत सबका इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में सरयू नदी भी उफान पर है। बाराबंकी, सीतापुर की सीमा पर बसे कई गांव में नदी का पानी घुस चुका है।
3: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है। हालात ये हैं कि कई गांव पानी में डूब गए हैं, धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। नदी का कटाव रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे वो सब नाकाफी साबित हुए। जलभराव की वजह से बाराबंकी के रामनगर इलाके में कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
4: बाढ़ का कहर है, गांव के गांव में पानी भर गया है, फसलें तो चौपट हो ही गई हैं। नतीजा क्या है, हम इस वक्त इस सीतापुर बाराबंकी बॉर्डर के गांव पर खड़े हैं और आप देखेंगे तो मेरे घुटने के ठीक नीचे तक यहां पानी आ चुका है। सामने की फसलें देखें तो सब फसलें तबाह हो चुकी हैं। नतीजा क्या है कि बाइक्स निकालना भी यहां से काफी मुश्किल गांव वालों के लिए हो गया। ये देखिए इस तरह का प्रवाह यहां पानी का है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ना, ये आपको बता देता हूं, ये मेरे नीचे कोई खेत खलिहान नहीं है, ये पूरी एक सड़क है। ये पूरी एक सड़क है, नीचे डामर है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये पूरा रास्ता जाता है आगे तक गांव को कनेक्ट करता हुआ। और लोगों से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
5: घर तो सर बहुत है यहाँ पे, ये सामने बंधा है इधर, और बंधे के जितने गांव अंदर है सब पानी से जलमग्न है।
3: बाराबंकी और सीतापुर जिले के बॉर्डर पर बसे गांव बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। गांव में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पानी में समा गई, तो वहीं नदी किनारे बना एक प्राचीन शिव मंदिर भी पानी में बह गया। यूपी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत चौकियां बना रही है, जहां से लोगों को जरूरी सामग्रियां भी दी जा रही हैं। आज तक ब्यूरो।
1: इस बीच बड़ी खबर यूपी की राजनीतिक गलियारे से भी है। दरअसल बीएसपी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति को गुड बाय बोल दिया है और अब आकाश आनंद की बीएसपी में फिर से बड़े पद पर वापसी हो सकती है। मायावती ने शर्त रखी थी कि आकाश के ससुर अशोक राजनीति से संन्यास लेंगे तभी आकाश आनंद को बीएसपी में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, और अब अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। समर्थ जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। समर्थ, क्या अपडेट है अब आकाश से, जो मायावती ने हाल ही में आकाश से जिम्मेदारी जो छीनी थी उसको लेकर अब उनके पिता ने संन्यास ले लिया है?
6: देखिए पूजा, बहुजन समाज पार्टी में चल रहे सियासी घमासान के बीच पूर्व राज्यसभा सांसद और आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने एक बड़ा ऐलान किया है और बसपा सदन में मायावती के द्वारा जो शर्त रखी गई थी उसके ठीक एक दिन बाद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन से पूरी तरह संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बेहद भावुक पोस्ट साझा करते हुए साफ किया है। उनके लिए बहन जी का आदेश हर रिश्ते, परिवार और पद से ऊपर है। अशोक सिद्धार्थ ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अगर पार्टी और बहुजन मूवमेंट को लगता है कि उनके राजनीतिक जीवन में रहने से मिशन को कोई नुकसान हो रहा है तो वो तुरंत प्रभाव से राजनीतिक और सामाजिक जीवन त्यागते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि बहन जी मेरे लिए राजनीतिक गुरु और बड़ी बहन है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहीं पार्टी पदाधिकारियों पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि बहन जी ने उन्हें हमेशा बहुत मान सम्मान, एमएलसी और राज्यसभा जैसी जिम्मेदारियां दी। इसी जनरल और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ झूठी बातें फैलाई गई हैं कि वो पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है इस वक्त। अब देखना ही है कि क्या आकाश आनंद को, जैसा कि मायावती ने वादा किया था, दोबारा से कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल अशोक सिद्धार्थ का रूप आगे क्या रहता है इस पर भी नजर रहेगी। पूजा,
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समर्थ जानकारी साझा करने। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के एतराज को लेकर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को राहुल मियां कहकर संबोधित किया और कहा कि वो वंदे मातरम के महत्व को समझ नहीं सकते।
7: देश के में ऐसे भी दल के लोग हैं जो वंदे मातरम कहने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं राहुल मियां से कहता हूं मित्रों, राहुल जी आप वंदे मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति के महत्व को ही नहीं समझा, आपको तो विदेशी संस्कृति में ही पले बड़े हैं।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक की दुनिया की बात करते हैं जिसमें एप्पल ने तबाही मचा रखी है। नया आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी कीमत, स्टोरेज और नए फीचर्स की। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि आईफोन की कीमत कितनी हो चुकी है। आईफोन 18 प्रो मैक्स अब लगभग 179,900 रुपए में आपको मिलने वाला है। 18 सीरीज की कीमत है, समझिए, आईफोन डुओ जो कि एक फोल्डेबल फोन आईफोन ने निकाला है जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से ऊपर है, 3 लाख तक पहुंच रही है। आईफोन 18 प्रो 164,900 की इसकी कीमत है। स्टोरेज और रेंज उसकी 256 GB से लेकर 2 TB तक दी गई है। आईफोन 18 सीरीज के खास फीचर्स हैं, रंग अलग अलग है, ग्लेशियर, बर्गंडी, सिल्वर और ब्लैक कलर में ये उपलब्ध होगा और भारत में उपलब्ध है। प्री ऑर्डर इसकी 12 सितंबर से हो जाएगी और ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू हो जाएगी। अब एक रिपोर्ट देखिए आप इसका।
2: एक फोन जिसकी कीमत सुनकर आप रुक जाएंगे, एक लॉन्च जिसमें आईफोन के साथ वॉच और एयरपॉड्स भी नए अवतार में आए हैं, और सबसे बड़ा सवाल भारत में कितने का पड़ेगा एप्पल का ये नया प्रो फोन। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रो मॉडल्स की नहीं है। एप्पल ने पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन डुओ भी पेश किया है, जिसकी 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन खुलते ही फोन को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देती है। यानी एप्पल अब उस फोल्डेबल रेस में उतर चुका है जिसमें सैमसंग जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद है। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल 256 गीगाबाइट से लेकर 2 टेराबाइट तक के स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किए हैं। कलर भी 4 बरगंडी, ग्लेशियर, सिल्वर और ब्लैक। भारत समेत 65 से ज्यादा देशों में 12 सितंबर

0: सितंबर से प्री ऑर्डर जबकि 18 सितंबर से ओपन सेल शुरू होगी। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमत 2,99,900 रुपए से शुरू होती है। लेकिन एप्पल का सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं। ओपन ईयर डिजाइन के साथ इनमें बेहतर ऑडियो और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। इसके साथ एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 भी लॉन्च हुई हैं। इनमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड हार्ट रेट को अब हर 5 सेकंड में मॉनिटर करता है। यानी एप्पल का नया लॉन्च सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं। सवाल अब ये है, क्या 1,65,000 रुपए से शुरू होने वाला आईफोन 18 प्रो भारतीय बाजार में नया प्रीमियम बेंचमार्क बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां पर 300 किलो विस्फोटक चोरी हो गया है। लाइसेंसी गोदाम से ग्लेटिन की छड़े, सेफ्टी फ्यूज की चोरी हुई है और ये करीब 300 किलोग्राम बताया जा रहा है। इंदौर पुलिस से शिकायत की गई है लेकिन अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं चला। चोरी करने वाला कौन था? इतनी बड़ी मात्रा का विस्फोटक का चोरी होना बेहद ही चिंताजनक स्थिति है। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। 300 किलोग्राम लगभग बताया जा रहा है जिसकी चोरी की गई है और इंदौर पुलिस से अब शिकायत हो चुकी है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि चोरी करने वाला शख्स आखिर कौन था, कैसे वहां से ये सब सारा विस्फोटक चुराया गया है। 300 किलोग्राम काफी ज्यादा होता है और लाइसेंसी गोदाम से ये वहां से चुराया गया। चलिए सुपर 8 में वक्त हो गया फटाफट खबरों का। इंदौर में महिला की गर्दन पर ब्लेड से हमला, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने दिखाई बहादुरी, समय पर मदद कर बचाई महिला की जान। बांग्लादेश में टैंक फायरिंग के दौरान बड़ा हादसा, 2 जवानों की मौत। चटगांव से के हथियार अभ्यास के दौरान ट्रेलिंग में हादसा, 1 अधिकारी गंभीर रूप से घायल। उड़ीसा के बालासोर के जंगल में मिले 5 ऑरंगउटान, वन्य जीव विभाग ने किया रेस्क्यू, दक्षिण पूर्व एशिया से तस्करी करके लाए गए जाने का शक। इंदौर में नासिया रोड पर सड़क बदहाली से लोग परेशान, ड्रेनेज काम के बावजूद नहीं सुधरे हालात, गड्ढों और ट्रैफिक जाम का वीडियो वायरल। बिजनौर में बंदरों का आतंक जानलेवा, बंदरों के हमले से बचने में छत से गिरे बुजुर्ग, इलाज के दौरान दर्दनाक मौत। फरीदाबाद में पानी से भरी बाल्टी में डूबा 1 साल का मासूम जीवन, नगर में हादसे से परिवार में मचा कोहराम, आर्यन की मौत से इलाके में पसरा मातम। मोगा में लावारिस ट्रक से मिले 2 मृत और कई भूखे मवेशी, बोगीपुरा बाईपास पर दर्दनाक हालत में मिले पशु, मामले में पशु क्रूरता पर उठे सवाल। कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड दवाएं बांटने का आरोप, सीएमओ ने आरोपों से किया साफ इनकार, मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई। सुपर 8 में आप वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
2: एक तो एक
3: इश्राम.

0: एक हिंट तो देते।
1: पापा
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप.
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: चार्ज
6: हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints. JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
5: इन एसोसिएशन विद
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: बदलते वैश्विक समीकरण,

और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम कंट्रोवर्सी पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना। दो हजार 27 चुनाव से पहले बीएसपी में फिर से बढ़ी हलचल, मायावती की चेतावनी के बाद आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने लिया राजनीति से संन्यास, लिखा बहन जी के आदेश से बढ़कर कुछ नहीं। नाराज फूफा, विवाद के बीच ब्रिक्स समिट को लेकर भी कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, पूछा ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक सम्मेलनों से देश को क्या फायदा हुआ। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन, दो दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियों को सील किया गया, अलग अलग हिस्सों में असुरक्षित बिल्डिंग का सर्वे। नए आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर से मचाई हलचल, फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च, 12 सितंबर से कर सकेंगे प्री बुकिंग। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 कल के, उससे पहले एक बड़ी खबर, फिलीपींस के पलावान प्रांत में एक टूरिस्ट साइट के पास लोगों से भरी फेरी में अचानक से आग लग गई, हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 42 लोगों को हादसे के बाद रेस्क्यू किया गया लेकिन 87 पर्यटक अभी भी लापता हैं। फिलीपींस के कोस्ट गार्ड के मुताबिक फेरी में 134 लोग सवार थे, 117 यात्री और 27 क्रू मेंबर थे। जहाज बुधवार शाम को तट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था तब उसमें आग लग गई, हादसे के वक्त कई लोग उसमें सवार थे, 42 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।

गुजरात के गांधीनगर बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, मलबे में दबे सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दी जानकारी। डॉक्टर्स के अनुसार हादसे में हुए घायल किसी भी हालत में गंभीर नहीं है, सभी 12 घायल लोग सुरक्षित। घटना को लेकर डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों पर एक्शन होगा। हादसे के समय निर्माणाधीन इमारत में बिल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक से बड़ा स्लैब गिर गया और 15 लोग दब गए। हादसे के बाद निर्माणाधीन इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन हादसे की वजहों की जांच कर रहा है। रांची में टंकी गिरने से बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 3 को बचा लिया गया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने भी लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। घटना की जांच जारी। दिल्ली में भी सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। पिछले 2 दिनों में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे किया गया। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभाग में बांट रही है टीम। मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस जारी कर किए और 4 इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स किया लॉन्च, साथ ही पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ भी लॉन्च हुआ। 2,99,900 की इसकी कीमत। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 और आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 से शुरू। नए आईफोन में बेहतर सीरीज में भी दिया गया है। भारत में शनिवार से शुरू होगी प्री ऑर्डर, वहीं एप्पल ने नए प्रो मॉडल की भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू की। एप्पल ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए। डिजाइन पहले से अलग और कान के बाहर रहने वाला है। इसका नॉइस कैंसिलेशन पिछली सीरीज से 50% ज्यादा काम करता है। एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 में दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर किया गया है, और अब घड़ी हर 5 सेकेंड में हार्ट रेट चेक कर सकती है। हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस पर वार, कहा तुष्टीकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द, दलितों पर हमेशा अपमान किया। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, युवाओं को निराशा अंधकार में रखा गया। मोदी राज में जॉब सीकर से जॉब गिवर बन रहे हैं युवा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार, कहा पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं। सीएम योगी का माफियाओं को दो टूक, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जेल या जहन्नुम में से एक चुनना होगा। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद बोले सीएम शुभेंदु, कहा जानता हूं कि भगवा का अपमान करने वालों को सबक सिखाना। शुभेंदु अधिकारी की जादवपुर में हुंकार, कश्मीर मांगे आजादी और फ्री फिलिस्तीन जैसे नारे लगाने वालों को सबक सिखाने की दी चेतावनी। मोदी कैबिनेट की बैठक में रेलवे को लेकर कई बड़े फैसले, 7 रूट को 4 ट्रैक करने पर मुहर। रेल मंत्री वैष्णव का दावा, 2027 दिसंबर से देश में चलेगी बुलेट ट्रेन। लाल किले धमाके केस में एनआईए की चार्जशीट, आत्मघाती हमलावर था उमर नबी, लोन मुजाहिद की थ्योरी को करता था फॉलो। दिल्ली हाईकोर्ट का एनआईए से सवाल, क्या बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को कड़ी शर्तों पर मिल सकती है जमानत, 3 नवंबर को अगली सुनवाई। सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 5 गिरफ्तारी, लीज कॉन्ट्रैक्टर भी अरेस्ट, एमसीडी एक्शन जारी, गिराई जा चुकी है 24 इमारतें। सत्यनिकेतन मामले में आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा का पलटवार, बोली मेरी बिल्डिंग सिर्फ G3, सभी संपत्तियां पैतृक और सौरभ भारद्वाज को भेजूंगा कानूनी नोटिस। पूर्वी दिल्ली के रानी गार्डन इलाके में 2 बिल्डिंग एक तरफ को झुकी, लोगों का लगा जमावड़ा। दिल्ली की बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट का रास्ता हो सकता है साफ, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। एमपी में इंटर्न डॉक्टर्स का धरना खत्म, अब 14,300 की जगह 21,500 मिलेगा स्टाइपेंड। पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस के पास धरने पर बैठे थे इंटर्न डॉक्टर। बांग्लादेश में चटगांव में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक टैंक में ब्लास्ट हुआ, घटना में टैंक में मौजूद सेना के 2 जवानों की मौके पर मौत। धमाका इतना भयानक था कि टैंक के परकचे उड़ गए और अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिल पाया। ISPR ने बताया है कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बांग्लादेश सेना ने 2 जवानों की मौत की पुष्टि की। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी, 130 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। इसके अलावा बचाव, राहत और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए भारत से 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के दिए थे निर्देश। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल को सर्वसम्मति से एक बार फिर से राष्ट्रीय संयोजक चुना गया।
पार्टी के कामकाज और निर्णयों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 23 सदस्यों वाली नई नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी गठन किया गया। आज लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक 11 बजे अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी शुरू। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अखिलेश यादव कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे चर्चा। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त, दोषियों पर हत्या से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की कार्रवाई का प्रावधान। सागर घटना के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम मोहन यादव, बोले प्रशासन को सख्त कार्रवाई की खुली छूट। प्रयागराज में टीजीटी पीजीटी छात्रों का प्रदर्शन, आमरण अनशन लगातार जारी। आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बकरा का भी मिला समर्थन। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे पर पुलिस का पहरा, ग्रीन नेट से ढका गया पूरा मलबा। हरदोई में बाढ़ का कहर, गंगा रामगंगा में उफान देखने को मिला। वहीं गांव के घरों में घुसा पानी, गांव बने टापू। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने लिया जायजा, पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचाई। बाराबंकी में इमारत घाघरा नदी के तेज जलस्तर के चलते पानी में समाई। बाराबंकी में डीएम ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि जिनका घर नदी की कटान में बह गया उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी ही देर में बारिश से हुआ जलभराव, पानी से लबालब हुए निचले इलाके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज के सभी 109 गेट खुले, गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान में बुर्का पहने महिलाओं ने चुराया 1,00,000 कैश और चांदी के जेवर से खराब। ग्रेटर नोएडा में बिसरक में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की छापेमारी, 3,00,000 के पटाखों के साथ आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में विनोद हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला हत्यारोपी, पहले दोनों में हुई कहासुनी, फिर रंजिश में की गई थी हत्या। भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रखे जनरेटर में लगी भीषण आग। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर की गई पार्किंग। नोएडा में 16 मिनट में पहुंचा आर्मी अफसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा के खेप लाकर महंगे दाम पर बेच रही थी महिला, हुई गिरफ्तार। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे से शादी का सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी। बिहार के बांका में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 200 से अधिक दुकानें अतिक्रमण मुक्त कराई गई। रोहतास में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर और पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी की गई, कई अस्पताल हुए सील। पटना में एनआईए की छापेमारी, रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज। छपरा में दूध के पैसे वापस मांगने पर दुकानदार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू, प्रोफेसर का इलाज जारी। बेतिया में दारोगा का 15,000 रुपए के रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, आरोपी दारोगा शमशाद अहमद हुआ निलंबित। इंदौर में महिला के गले पर ब्लेड से हमला किया गया, जाबाज ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तत्परता से बची जान। मोतिहारी के एक आवासीय होटल में पुलिस की छापेमारी, होटल संचालक सहित 4 लड़के हिरासत में लिए गए, 3 नाबालिग लड़कियां भी मिली। महिसागर में पिता ने शक और पारिवारिक विवाद में अपने ही बेटे को कुएं में फेंक कर ली जान, आरोपी पिता मौके से फरार। वलसाड में हाईवे पर टेम्पो की लगी आग, टेम्पो में भरा माल पूरी तरह से जलकर खाक हुआ। धनबाद की युवती ने राजस्थान के युवक को बनाया शिकार, लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, शादी का झांसा देकर लूटने वाले 10 छात्र गिरफ्तार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 10:33 तक, नक्षत्र है मघा नक्षत्र दोपहर 2:04 तक, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बेहतरी होगी, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, काम का दबाव रहेगा, धन खर्च से परेशानी होगी, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, धन लाभ के योग हैं, काम में व्यस्तता रहेगी, चोट चपेट से बचाव करें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं
वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, धन हानि हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तुला राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, शत्रु और विरोधी शांत होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ काम बनेगा, पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य और मन अच्छा रहेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा

राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, चोट चपेट से सावधान रहें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मकर राशि, वाहन सावधानी से चलाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
9: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
10: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए CEO जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में CEO जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के CEO बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुँचे थे। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
11: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
10: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: दुनिया राम के प्रति अभिभूत है, लेकिन इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
1: भगवान से नहीं करते, चढ़ावा चोरी कर लेते, चंदा चोरी कर लेते हैं।
0: सड़कों का चौड़ीकरण करना प्रारंभ किया, अच्छी सड़कें बनानी प्रारंभ की, तो समाजवादी पार्टी ने उसका भी विरोध किया।
1: सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन है, ये कौन चला रहा है? भाजपा और भाजपा के लोग मिले हुए।
0: इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के यहाँ अभी भी वीरानी छाई हुई है।
2: अयोध्या की पावन धरती से सियासत की नई लकीर खींची जा रही है। धर्म नगरी होते हुए बीजेपी सत्ता की कुर्सी के सफर पर निकलने की तैयारी में है। ये हिंदुत्व नैरेटिव के जरिए सत्ता के शिखर तक पहुँचने की कोशिश है। बीजेपी का पूरा प्लान तैयार है। पार्टी की रणनीति है कि आगामी चुनावों के लिए प्रचार का फोकस मथुरा, काशी और अयोध्या के दौरे पर हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम धर्मनगरी में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। शुरुआत अयोध्या से हो भी चुकी है। एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की नगरी पहुंचे। मौका आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधन का था। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने राम मंदिर आंदोलन की याद दिलाई और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा। योगी सरकार यूपी में हिंदुत्व प्लस विकास प्लस विरासत की बात कर रही है, तो बीजेपी संगठन ने भी जनाधार को और बढ़ाने की ओर कदम बढ़ाया है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी नेतृत्व यूपी में जमीनी पड़ताल करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिमी यूपी का दौरा करने वाले हैं। वो 12 से 13 सितंबर को मेरठ दौरे पर पहुंचेंगे, तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएस संतोष अवध और कानपुर का दौरा करेंगे। बीएल संतोष अवध की 82 और कानपुर क्षेत्र की 52 विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पश्चिमी यूपी में पहला दौरा है। पश्चिमी यूपी की 71 विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरण और गुर्जर राजनीति में हलचल बीजेपी के लिए अहम चैलेंज है। इसके साथ साथ बीजेपी 4C प्लान पर भी अमल में जुटी है। 4C यानी कोऑर्डिनेशन, कैडर, कास्ट और कैंडिडेचर पर फोकस कर पार्टी सत्ता पर फिर से काबिज होने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है।
3: उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 चुनाव की तैयारी फुल मोड में कर रही है। विनोद तावड़े नए यूपी प्रभारी लखनऊ पहुंचते हैं और नया मूल मंत्र देते हैं 4C का, यानी कि कैडर, कैंडिडेचर, कास्ट और कोऑर्डिनेशन। इन सभी पर फोकस किया जाएगा। कास्ट और कैडर के साथ में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना है, ये एक अहम रोल कार्यकर्ताओं को दिखाना होगा।
2: सवाल यह है कि बीजेपी का ये 4C फॉर्मूला आगामी चुनाव में कितना गेम चेंजर साबित होगा। फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर हारी हुई सीटों पर मजबूत पकड़ बनाने पर है। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना। भतीजे को सक्रिय राजनीति से दूर करने के बाद मायावती की शर्तों के आगे झुके आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ का सियासत से संन्यास, अब आकाश की वापसी का खुल सकता है रास्ता। नाराज फूफा विवाद के बीच ब्रिक्स समिट को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, पूछा ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन से देश को क्या फायदा। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के तावर तोड़ एक्शन, दो दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियों को सील किया गया, अलग अलग हिस्सों में असुरक्षित बिल्डिंग का सर्वे।

0: गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। दिल्ली में अवैध इमारतों पर कहां चला है एमसीडी का बुलडोजर, दिखाएंगे आपको एमसीडी एक्शन और उस पर उठे सवाल। पूरी डिटेल रिपोर्ट अब से कुछ ही देर बाद। बीएसपी में बड़ा घटनाक्रम, आकाश आनंद के ससुर ने लिया राजनीति से संन्यास, क्या मायावती अपने भतीजे को लौटाएंगी जिम्मेदारी, इस पर भी होगी बात। बिहार में कैसे बिगड़ रहे हैं बाढ़ के हालात, दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ठीक आधे घंटे बाद, यानी कि सुबह 9:30 बजे। 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं तीन शहरों की 3 तस्वीरों के साथ। 3 अलग अलग शहर लेकिन तस्वीर हूबहू एक जैसी, दिल्ली, गांधीनगर और रांची। दिल्ली के सत्र निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद अवैध और खतरनाक इमारतों पर एमसीडी का एक्शन जारी है। वहीं कल गांधीनगर और रांची में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। गांधीनगर में निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिर गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि स्लैब के मलबे में फंसे सभी 15 लोगों को बचा लिया गया। उधर रांची में पानी की टंकी गिरने से 2 की जान चली गई। तीनों खबरों पर होगी विस्तार से बात, लेकिन शुरुआत गांधीनगर में कल हुए हादसे की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि वहां पर जो 15 लोग मलबे में दबे थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। वहीं रांची में भी पानी की टंकी गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं दिल्ली में एमसीडी का हादसों के बाद बड़ा एक्शन शुरू हुआ है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। जिन बिल्डिंग्स का ऑडिट हुआ है और वो सही नहीं पाई जा रही है उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। पंद्रह मजदूरों का रेस्क्यू गांधीनगर वाले हादसे में किया गया है। निर्माणाधीन बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया, पूरा का पूरा स्लैब नीचे आ गया जिसमें 15 मजदूर दब गए। राहत की बात यह है कि सभी की जान बचा ली गई। स्लैब अचानक गिरने से हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, मलबे मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस के मुताबिक 15 घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया।
1: सरियों का ढेर, गैस कटर से सरिया काटते नगर निगम के राहत कर्मी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी की छत से रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी। ये चंद तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर के कुड़ासन इलाके की हैं, जहां बुधवार रात करीब 9 बजे निर्माणाधीन इमारत में अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा मेटल स्लैब भरभराकर नीचे आ गिरा और इसके साथ ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। साइट पर बिखरी ईंटें और सरियों का ये ढेर हादसे की गंभीरता को बयां कर रहा है। जिस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा था वो जगह कुछ ही पलों में राहत और बचाव अभियान का केंद्र बन गई। नगर निगम, पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल, एनडीआरएफ, सभी एजेंसियां काम पर लग गई। मंत्री, विधायक, पुलिस और प्रशासन के तमाम लोग मौके पर नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी मलबे के बीच फंसे लोगों तक पहुंचना। लोहे की मोटी सरियों ने रास्ता रोका तो गैस कटर का इस्तेमाल किया गया, सरिया काटी गई, मलबा हटाया गया और बेहद सावधानी के साथ लोगों को बाहर निकाला गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी खुद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने पहुंच चुके थे। अब ये तस्वीरें देखिए, दमकल गाड़ी की छत पर खड़े होकर वो राहत और बचाव कार्य का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। बाद में उन्होंने बताया कि त्वरित बचाव ऑपरेशन की वजह से सभी 15 लोगों को बचा लिया गया है।
2: अगर कुछ ही मिनट देर हो जाती तो शायद हम सबको नहीं बचा पाते, लेकिन प्रशासन ने कुछ ही मिनटों में सभी हाई टेक्निक मशीनों के साथ यहां पहुंचते ही एक के बाद एक लोगों को बचा के हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। कुल मिला के 15 लोगों को रेस्क्यू किया था। जिसमें से 3 लोगों को ऑलरेडी डिस्चार्ज किया गया है, 12 लोगों को इजा हुई है, जिसमें से कुछ लोग आईसीयू में जरूर है, लेकिन एज पर डॉक्टर कोई भी व्यक्ति सीरियस नहीं है।
1: मलबे से निकाले गए लोगों को इलाज के लिए गांधीनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों का हाल लेने डिप्टी सीएम हर संघवी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से भी घायलों के इलाज और स्वास्थ्य की जानकारी ली।
3: पूरा तंत्र, डॉक्टर की टीम युद्ध के धोरण से काम कर रही है, किसी की भी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर प्रफुल्ल पानसेरिया साहब के साथ हमने सभी पेशेंट की जानकारी ली है, उनके पास जाके उनकी देख जो सारवार हो रही है उसकी भी हमने जांच की है, बहुत अच्छे से उसकी सारवार हो रही है, पूरी डॉक्टर की टीम लगी हुई।
1: दावे के मुताबिक सभी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन इस हादसे ने निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर निर्माण के दौरान इतना बड़ा मेटल स्लैब कैसे गिरा, सुरक्षा मानकों का कितना पालन किया जा रहा था और हादसे की असली वजह क्या रही, इन सवालों का जवाब जांच के बाद सामने आएगा। ब्रजेश दोषी, गांधीनगर आज तक।
0: राहत की बात यह है कि इतने बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गांधीनगर के कुड़ासन इलाके में पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी।
4: गांधीनगर के कुड़ासन में बीती रात एक बेहद भयावह हादसा हुआ, जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है मजदूर काम कर रहे थे और उस वक्त जो निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है उसका स्लैब गिरा। ये वो स्लैब था जो गिरा और यहाँ पे जो मजदूर थे वो मजदूर जो है वो दबे थे। करीबन 15 मजदूर थे जिनको प्रशासन ने जो है वो बचा लिया, सभी का सफल रेस्क्यू किया गया। 3 लोग तो स्वस्थ थे जिनको अस्पताल से तुरंत ही जो है छुट्टी दे दी गई। 12 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, 2 या 3 लोग आईसीयू में है। उप मुख्यमंत्री हरसिमरत भी पूरी रात यहाँ पे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन ने इतनी तेजी से काम किया जिसकी वजह से सभी को जो है वो हम जिंदा बचा पाए। अगर कुछ क्षणों की देरी हो जाती तो ये जो आज कम्युनिटी नहीं हुई है वो आंकड़ा बढ़ सकता था, तो इसलिए प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया था। पर सवाल वही है कि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह हुआ और इसकी वजह क्या रही, क्यों ये बिल्डिंग का स्लैब टूट गया, तो ये जो सारे सवाल हैं वो अभी भी हैं। पर प्रशासन का कहना है कि पहली प्राथमिकता थी लोगों को बचाना, उसके बाद उनको सही इलाज देना और उसके बाद जांच की जाएगी कि कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है और फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रशासन की राहत की बात यही है कि सभी 15 मजदूरों को जो है वो सफलतापूर्वक जो है बचा लिया गया, सफल रेस्क्यू हुआ और कोई भी कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है। गांधीनगर से कैमरा सलाम के साथ ब्रजेश दोषी आज तक।
0: और अब बात रांची की करेंगे। यहाँ के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की जान चली गई
5: और मलबे को हटाने का काम कर दिया गया।
6: भर भरा कर गिरी टंकी, मलबे में दबे मजदूर, मौके पर मची अफरा तफरी और जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके से हादसे की ये तस्वीरें हैं, जहां पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। टंकी के मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी रहा। मलबे को हटाकर फंसे लोगों की तलाश की गई।
7: पानी की टंकी भी गजर रास्ता में गिर गई है। 2 मजदूरों के फंसने की सूचना मिली थी, जिसमें एक मजदूर को हम लोग निकाल के हॉस्पिटल भेजे हैं। जो हमें पता चला 4 या 5 लोग काम कर रहे थे, लेकिन 2 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली है, बाकी लोग शायद उसमें बच गए।
6: रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 मजदूरों की मौत के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई और हादसे की वजह की जांच पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और अब बात दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की करेंगे। एमसीडी का बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। 6 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तम नगर, पांडव नगर, लक्ष्मी नगर, सत्य निकेतन, राणा प्रताप बाग, नेहरू विहार और इन तमाम जगहों पर अवैध और खतरनाक इमारतों को गिराने का काम चल रहा है। सत्य निकेतन में रविवार के बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की मौत के बाद एमसीडी ने अवैध निर्माण और खतरनाक इमारतों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है ये उसी का हिस्सा है।
1: एनसीडी का बुलडोजर गरज रहा है। अपनी स्क्रीन पर आप दिल्ली के उत्तम नगर में एक निर्माणाधीन इमारत पर पीले पंजे की ध्वस्तीकरण कार्यवाही देख सकते हैं। एनसीडी का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए ये इमारत बनाई जा रही थी।
8: यहाँ पे यही बिना नक्शे के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, जिसको लगभग एक महीने पहले बुक किया गया था और आज फिर उस पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो रही है।
9: अच्छा, ये आपको इसके बारे में जानकारी कब मिली सर?
8: जानकारी ये पहले से ही ग्राउंड फ्लोर से ही बुक है और पहले से ही जानकारी है, पहले से ही इस पे कार्रवाई हमारी चल रही है।
1: दिल्ली में तीन दिनों से अलग अलग जगहों पर एनसीडी का एक्शन जारी है। कहीं अवैध निर्माण पर हथौड़े चल रहे हैं, कहीं ड्रिलिंग मशीनों से छतों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है। रविवार को सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद लगता है पूरी तरह जाग गई है एनसीडी। ये तस्वीर दिल्ली के राणा प्रताप बाग इलाके की है। यहाँ एक अवैध इमारत पर एनसीडी का हथौड़ा बरसा है। सत्य निकेतन में रविवार को जो 5 मंजिला इमारत गिरी थी, उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग को भी गिराने का काम जारी है। तस्वीरें देखिए, ये मलबे के ठीक बगल वाली इमारत है जो हादसे के बाद झुक गई थी। सत्य निकेतन हादसे के बाद जिस तरह से एनसीडी हरकत में आई है, उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कल पांडव नगर में एनसीडी ने एक 6 मंजिला बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू की। जब एनसीडी कर्मी बिल्डिंग की छत तोड़ रहे थे, तब आज तक की टीम वहीं मौजूद थी। बिल्डिंग के मालिक से जब हमने बात की तो उन्होंने एनसीडी पर गंभीर आरोप लगाए।
10: यहाँ पे 7 मंजिला बनी हुई है, ठीक है, किसी के नक्शे पास नहीं है, नक्शे पास होते ही नहीं है, अनऑथराइज है, वैसे तो सारी अनऑथराइज है। आप सारी तोड़वाओ ना, फिर हमारी बिल्डिंग पे क्यों इन लोगों की नजर है, एमसीडी वालों की? सारी तोड़वाओ, 7 मंजिला बनी हुई है।
11: आपका कहना है कि आप लोगों से रिश्वत मांगी गई?
10: रिश्वत मांगी है, 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, और हमने दी भी है। कब नहीं दी हमने मैम? अपना अपना घर बचाने के लिए हम तो देंगे ना पैसे, एक बात तो बताओ आप। हमने 5 लाख दिए, 10 लाख दिए, कब तक देंगे हम पैसे?
1: एमसीडी पूरी तरह एक्शन मोड में है। 3 दिनों में 34 निर्माणों को ध्वस्त किया जा चुका है, 17 इमारतों को सील किया गया है। ये एक्शन एमसीडी के सभी 12 जोन में हो रहे हैं। सवाल उठता है कि दिल्ली में इस वक्त मौत की कितनी इमारतें हैं? सत्य निकेतन हादसे के बाद झुकी हुई खतरनाक इमारतों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके की गीता कॉलोनी की तस्वीर देखिए, यहाँ झुकी ये इमारत जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन गई है। बताया जा रहा है कि इस इमारत में करीब 40 से 50 लोग रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें भी बनी हुई हैं।
12: मिली कि ये बिल्डिंग में दरार आ गई, आप देख रहे हैं 2 बिल्डिंग है और 4-4 मंजिला खड़ी है, ऊपर सब टावर और सब अनऑथराइज्ड है सब, और ये डेंजरस बिल्डिंग लग रही है, देखने में ही लग रही है टेढ़ी हो गई है। तो अभी हमने जनता से भी, इनके किराएदारों से भी कहा है कि यहाँ से उसको खाली करें, जनता को भी कहा है इस बिल्डिंग से दूर रहें, और साथ में हमने एनसीडी डीसी अधिकारियों को बोल दिया, हमारा एसडीएम चूंकि अनऑथराइज कॉलोनी है वो भी अभी यहाँ आ रहे मौके पर, दिल्ली पुलिस।
1: अब मुखर्जी नगर इलाके के गांधी विहार एफ ब्लॉक में इन इमारतों को भी देखिए, इमारतें किस तरह झुकी हुई हैं, इसका अंदाजा आप 2 इमारतों के बीच के गैप को देखकर लगा सकते हैं। ये कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। साफ नजर आ रहा है कि मौत की इमारतों पर बड़े पैमाने पर एक्शन जरूरी है, ताकि फिर से सत्य निकेतन जैसा कोई हादसा न हो। आज तक ब्यूरो।
0: अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, इस वक्त वहां पर एमसीडी की क्या कार्रवाई चल रही है, तस्वीरों के जरिए दिखाइए।
13: जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पे एक बार फिर से आज दूसरा दिन है और यहाँ पे सत्य निकेतन में फिर से ये कोशिश की जा रही है कि इस बिल्डिंग को जो है, जो डेंजरस करार कर दी गई थी एमसीडी की तरफ से, उसे ध्वस्त किया जाए। आप देखिए, बहुत प्रिसिशन से इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा है। नहीं तो अमूमन हम ये देखते हैं कि एमसीडी का बुलडोजर आता है और कुछ ही मिनटों में जो इलीगल प्रॉपर्टीज होती है उसे डिमोलिश करके चला जाता है, लेकिन इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी खराब है कि अगर बुलडोजर इस पे हल्का सा भी लग गया तो ये पूरी बिल्डिंग भरभराकर नीचे आ जाएगी। और बस इसी बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा बल्कि इसके साथ जो अन्य बिल्डिंग लगी हुई है उनके स्ट्रक्चर पर भी डैमेज आ सकता है। तो इसीलिए अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बहुत ही आराम से और बहुत प्रिसिजन के साथ ये जो पूरा डेमोलिशन ड्राइव है ये किया जाएगा। और आप देखिए, आज भी 5वें फ्लोर पे छत पर ही काम चल रहा है, कल भी यहीं से काम शुरू हुआ था। वो बहुत धीरे और बहुत प्रिसिजन के साथ जो है इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं आप देखिए कि एमसीडी के जो अन्य लोग हैं वो नीचे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे पानी डाला जा रहा है ताकि धूल और डस्ट जो है वो सेटल रहे। तो काफी प्रिसिजन के साथ जो है इस वक्त काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एमसीडी कल से एक्शन में आई है, ये देखना होगा कि इस बार जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया जाता है, क्या ये ऑपरेशन फुल एंड फाइनल होगा और क्या इस ऑपरेशन के बाद दिल्लीवासी ये सुनिश्चित होकर या निश्चित होकर रह सकते हैं कि उनके घर पर या उनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनके बच्चे कम से कम सेफ रहेंगे या नहीं। तो अभी भी काफी सारा काम है जो एमसीडी को करना है, लेकिन अब यहां देखें तो बहुत ही प्रिसिजन से धीरे धीरे करके इस पूरी बिल्डिंग को जमीन दोस्त किया जा रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात उत्तर प्रदेश की, यहां से एक बड़ी खबर आ रही है। बीएसपी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अशोक सिद्धार्थ द्वारा राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा बहुत देर से उठाया गया सही कदम है। अगर ये फैसला वो पहले लेते तो बीएसपी, बहुजन समाज और बहुजन मूवमेंट और उनके दामाद आकाश आनंद को भी लगातार विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही मुझे विधानसभा आम चुनाव एवं खासकर यूपी में पांचवी बार सरकार बनाने की जबरदस्त तैयारियों के बीच पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित के मद्देनजर इसके बारे में कई बार कड़े फैसले लेने की जरूरत पड़ती। आपको बता दें कि अशोक सिद्धार्थ का संन्यास दो वजहों से चर्चा में। पहली वजह, अशोक सिद्धार्थ मायावती के भतीजे आकाश आनंद के ससुर हैं। दूसरी वजह, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शर्त रखी थी कि आकाश के ससुर राजनीति से संन्यास लेंगे तभी आकाश आनंद को बीएसपी में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। जबकि अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से अब संन्यास ले लिया है तो अटकलें तेज हैं कि अब आकाश आनंद की बीएसपी में बड़े पद पर वापसी हो सकती है। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए तीन बार पार्टी से निष्कासन हो चुका है आकाश आनंद का, इस बार अगर वापसी होती है तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि फिर से बुआ भतीजे में मनमुटाव नहीं होगा?
14: नया देखिए, अशोक सिद्धार्थ के उस पोस्ट के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या आकाश आनंद की वापसी हो जाएगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का उतनी ही देर में एक नया पोस्ट भी आ गया है जिसमें उन्होंने अशोक सिद्धार्थ का जो इस्तीफा है उसको काफी देरी बताया है। ये तक कहा है कि जब कल ही ये बात कही गई थी तो इतनी देरी क्यों लग गई, इसके पीछे भी कोई वो एक तरीके से षड्यंत्र समझ रही है। वो आकाश आनंद को भी घेरती हुई नजर आ रही है अभी भी। और मैं एक बहुत प्रमुख उनके एक ट्वीट का पॉइंट है जो दोहराना चाहूंगा यहां पर। उन्होंने ये साफ लिखा है कि पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए आकाश आनंद को, अतः श्री आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया है। ये जो पंक्ति इन्होंने अपने ट्वीट में मायावती ने लिखी है जो ये साफ करती है कि क्या आकाश आनंद को पूरी तरीके से पार्टी से बसपा ने निकाल दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। लग यही रहा था कि अशोक सिद्धार्थ के उस ट्वीट के बाद मायावती आकाश आनंद को लेकर सॉफ्ट हो जाएंगी, जैसा कि कल के मायावती के ट्वीट पे था कि हाँ विचार किया जाएगा, दोबारा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। लेकिन क्या जो अशोक सिद्धार्थ के ट्वीट की टाइमिंग काफी देर हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं है उस देरी के चलते मायावती नाराज हो गई जिसकी वजह से अपने नए एक्स के पोस्ट पर वो अशोक सिद्धार्थ को तो घेर ही रही है बल्कि आकाश आनंद को भी घेरती हुई नजर आ रही है और ये तक कहती नजर आ रही है कि आकाश आनंद का जो एक तरीके से जो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, जो भी चीजें हैं वो परिवार की तरफ ज्यादा मोल्ड है, यानी कि पार्टी से पहले आकाश आनंद परिवार को रख रहे हैं, इस तरह की बातें मायावती ने अभी कुछ देर पहले की
0: उनके ट्वीट से भी मायावती नाराज हो गई थी। उस ट्वीट के बाद उन्होंने कड़ा फैसला लिया था, फिर ये भी कहा जा रहा था कि जितने बड़े और कड़े फैसले मायावती लेती है दरअसल सतीश चंद मिश्रा उन्हें एडवाइस करते हैं।
14: नया देखिए, तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। आपको आकाश आनंद की एक 2025 की रैली पर भी ले चलूं तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है जिसमें आकाश आनंद भी एक रैली में कहते नजर आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता हैं जो कहीं ना कहीं मायावती को बहुत कुछ बताते हैं जाकर, जो कई बार चीज़ें सही नहीं होती हैं। अब सच्चाई क्या है जो बसपा सुप्रीमो की तरफ से आ रही है या जो अन्य नेता कह रहे हैं? अशोक सिद्धार्थ के अगर आप पोस्ट पढ़ें तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि कुछ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि मायावती का पोस्ट इससे इतर ये कहता है कि अशोक सिद्धार्थ खुद पार्टी में रहकर षड्यंत्र कर रहे थे, उन्हें तो राजनीतिक तरीके से संन्यास बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था अगर उनको सच में बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट की कदर थी, तो इस तरह के कयास लगातार लग रहे थे। लेकिन अब का जो नया पोस्ट मायावती का आया है उसने एक बात तो साफ कर दी है कि आकाश आनंद के लिए राहें बहुत आसान नहीं है, और अगर जो नवा पॉइंट उनके पोस्ट में है जो ये हिंट कर रहा है कि क्या आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिया गया है, कार्यमुक्त कर दिया गया है, कुछ देर में इसमें क्लैरिटी जरूर आ जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर कही जाएगी इस लिहाज से। कल से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आकाश आनंद का भविष्य क्या, अब क्योंकि अशोक सिद्धार्थ का इस्तीफा यानी कि सार्वजनिक एक तरीके से संन्यास हो गया तो क्या आकाश आनंद के लिए राहें बन गई?
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात वंदे मातरम विवाद की करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के एतराज को लेकर तंज तीखा किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला और राहुल गांधी को राहुल मियां कहकर संबोधित किया और यह भी कहा कि वो वंदे मातरम के महत्व को समझ ही नहीं सकते।
15: देश के में ऐसे भी दल के लोग हैं जो वंदे मातरम कहने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं राहुल मियां से कहता हूं मित्रों कि राहुल जी आप वंदे मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के महत्व को ही नहीं समझा, आपको तो विदेशी संस्कृति में ही पले बड़े हैं।
0: वहीं कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने नितिन नवीन के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से उत्तराखंड के असली सवाल गायब नहीं हो जाएंगे।
16: और राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमला बंद कर दीजिए, उत्तराखंड की जनता के सवालों का जवाब दीजिए। 2047 का सपना नहीं, 2026 का हिसाब दीजिए। जिस सरकार के पास आज का हिसाब नहीं होता ना, वो जनता को कल का सपना दिखाती है, और उत्तराखंड की जनता अब सपना नहीं हिसाब मांग रही है। राहुल गांधी को गाली देने से सवाल नहीं दब जाएंगे और मुद्दा नहीं भटकेगा। वंदे मातरम भाजपा की संपत्ति कब से हो गई? स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत है वंदे मातरम, और आपके पास तो भाई ये कहने के लिए है कि आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, सरकारें बना रहे थे।
0: बात उज्जैन की, जहां पर प्राचीन हनुमान प्रतिमा को हटाए जाने की प्रशासन की कोशिश चल रही है, और अब तक मूर्ति को विस्थापित करने के लिए 3 नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। तमाम कवायद के बीच उज्जैन में हनुमान प्रतिमा हटाए जाने का विरोध भी हो रहा है। एक दिन पहले भी साधु संतों और लोगों ने नाराजगी जाहिर की। अब प्रशासन संतों के साथ मीटिंग कर मामले को सुलझाना चाहता है।
1: एक सौ 170 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पा रही है। प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। मंदिर की इमारत तोड़ी जा चुकी है, मूर्ति का विस्थापन बाकी है। प्रशासन की चौड़ीकरण मुहिम का ये एक हिस्सा है, लेकिन उस मुहिम के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। बुधवार की शाम उज्जैन का संत समाज हनुमान के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मंदिर पहुंचा। संत समाज ने पहले खड़े हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए, विधि विधान से पूजन किया, फिर प्रतिमा को दूसरी जगह पर ले जाने का विरोध जताया। संतों ने कहा कि इस समय हनुमान जी का चमत्कार दिखाई दे रहा है।
17: सब जगह देखिए, हनुमान जी का चमत्कार इस समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया,

0: प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
1: इस मामले में अभी भी भक्त अड़े हुए हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि मूर्ति नहीं हटाई जानी चाहिए। अब देखना है कि प्रशासन क्या रास्ता निकालता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।
2: और बात आईफोन की करेंगे, जिसके दीवाने काफी लंबे समय से इसके नए वर्जन का इंतजार कर रहे थे, तो कल ही इंतजार खत्म हो गया। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी कीमत, स्टोरेज और नए फीचर्स की।
3: एक फोन जिसकी कीमत सुनकर आप रुक जाएंगे, एक लॉन्च जिसमें आईफोन के साथ वॉच और एयरपॉड्स भी नए अवतार में आए हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारत में कितने का पड़ेगा एप्पल का ये नया प्रो फोन। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस बार कहानी सिर्फ प्रो मॉडल्स की नहीं है। एप्पल ने पहली बार अपना फोल्डेबल आईफोन डुओ भी पेश किया है, जिसकी 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन खुलते ही फोन को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देती है। यानी एप्पल अब उस फोल्डेबल रेस में उतर चुका है जिसमें सैमसंग जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद है। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल 256 GB से लेकर 2 TB तक के स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च किए हैं। कलर भी 4 बरगंडी, ग्लेशियर, सिल्वर और ब्लैक। भारत समेत 65 से ज्यादा देशों में 12 सितंबर से प्री ऑर्डर, जबकि 18 सितंबर से ओपन सेल शुरू होगी। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपए है, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमत 2,99,900 रुपए से शुरू होती है। लेकिन एप्पल का सरप्राइज यहीं खत्म नहीं होता। कंपनी ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं। ओपन ईयर डिजाइन के साथ इनमें बेहतर ऑडियो और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन दिया गया है। इसके साथ एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 भी लॉन्च हुई हैं। इनमें नया हेल्थ सेंसिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड हार्ट रेट को अब हर 5 सेकंड में मॉनिटर करता है। यानी एप्पल का नया लॉन्च सिर्फ आईफोन तक सीमित नहीं। सवाल अब ये है, क्या 1,65,000 रुपए से शुरू होने वाला आईफोन 18 प्रो भारतीय बाजार में नया प्रीमियम बेंचमार्क बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की उत्तराखंड से चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम कॉन्ट्रोवर्सी पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना। मायावती की शर्तों के आगे झुके आकाश, आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने सियासत से संन्यास का ऐलान किया, मायावती को फैसला मंजूर, लिखा अब बहुत देर हो गई है, ये पहले करते तो हालात अलग होते। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन, दो दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियों को सील किया गया, अलग अलग हिस्सों में असुरक्षित बिल्डिंग्स का सर्वे। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दिल्ली में इंडिया टुडे का ब्रिक्स राउंड टेबल, आज तक के मंच पर कूटनीति और रणनीति के दिग्गज, भारत की वैश्विक ताकत पर बड़ा कॉन्क्लेव, सुबह 10 बजे से शुरू। और नए आईफोन के साथ एप्पल ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में फिर मचाई हलचल, फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री, आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च, 12 सितंबर से शुरू कर सकेंगे प्री बुकिंग।

बिहार में बाढ़ का कहर जारी, 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। खगड़िया में कई इलाके जलमग्न, प्रभावित लोगों के लिए चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। चारों ओर जलभराव के कारण नाव की आवाजाही का सहारा, प्रशासन की ओर से भोजन, दवा और जरूरी सुविधाएं कराई जा रही उपलब्ध। मुंगेर में सीएम की पत्नी ने बाढ़ग्रस्त इलाके का किया दौरा, पीड़ितों का जाना हाल, सामुदायिक किचन में दी जा रही है खाने की गुणवत्ता का किया निरीक्षण। मुलाकात के दौरान लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की लगाई गुहार, बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने रोजगार की मांग की। कटिहार में बाढ़ से भयंकर तबाही, आम लोगों के साथ प्रशासन परेशान, पुलिस कैंप छोड़ जाने को मजबूर है पुलिस, प्रलयकारी बाढ़ में डूब गया पुलिस शिविर। हरदोई में बाढ़ का कहर, गंगा रामगंगा में उफान, गंगा का पानी घरों में घुसा, गांव बने टापू। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने लिया जायजा, पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचाई गई। बाराबंकी में इमारत घाघरा नदी के तेज जलस्तर के चलते पानी में समा गई, शिव मंदिर की कटान के चलते बहा। बाराबंकी में डीएम ने बताया कि जिनका घर नदी के कटान में बह गया उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी देर की बारिश से हुआ जलभराव, पानी से लबालब निचले इलाके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज के सभी 109 गेट खोले गए, गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान में बुर्का पहने महिलाओं ने चुराया 1 लाख कैश और चांदी के जेवर से भरा हुआ बैग, पुलिस जांच में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में बिसरख में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की छापेमारी, 3 लाख के पटाखों के साथ आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में विनोद हत्याकांड का खुलासा, दोस्ती निकला हत्या का आरोपी, पहले दोनों में हुई थी कहासुनी, फिर रंजिश में हत्या की गई। भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रखे जनरेटर में लग गई आग, गेट पे आगे फैल गया धुआं, शाखा में मची अफरा तफरी। गुजरात के गांधीनगर बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, मलबे में 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और डिप्टी सीएम ने हर्ष सांघवी ने दी है जानकारी। डॉक्टर्स के मुताबिक हादसे में हुए घायल किसी भी हालत उनकी गंभीर नहीं है, सभी 12 घायल लोग सुरक्षित हैं। घटना को लेकर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि कसूरवार पर एक्शन लिया जाएगा। हादसे के समय निर्माणाधीन इमारत में बेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक बड़ा स्लैब गिर गया, 15 लोग दब गए। हादसे के बाद निर्माणाधीन इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, पुलिस और प्रशासन हादसे की वजहों की जांच कर रहा है। रांची में टंकी गिरने से बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत हुई है। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे जिसमें से 3 को बचा लिया गया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का अभियान चला रहे हैं। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी, 2 दिन में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया है, 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे किया गया है। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभाग में बांट रही है टीम, मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है और 4 इमारतों को तोड़ने के निर्देश दे दिए गए। एप्पल आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स को लॉन्च किया, साथ ही पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ भी लॉन्च हुआ है, 2,99,900 इसकी कीमत है। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 है, आईफोन 18 प्रो मैक्स की 1,89,900 है। नए आईफोन में बेहतर सीरी पर भी जोर दिया गया है। भारत में शनिवार से शुरू होंगे प्री ऑर्डर, एप्पल के नए प्रो मॉडल की भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू होगी। एप्पल ने एयरपॉड्स 5 भी लॉन्च किए हैं, डिजाइन पहले से अलग और कान के बाहर रहने वाला है, इसका नॉइस कैंसिलेशन पिछली सीरीज से 50% ज्यादा काम करता है। एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 में दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर किया गया है, अब घड़ी हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक कर सकती है।
हल्द्वानी की सभा से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का कांग्रेस परिवार का तुष्टिकरण की राजनीति से पूरा वंदे मातरम गाने में इन्हें दर्द होता है, दलितों का हमेशा अपमान किया गया है। नितिन नवीन का कांग्रेस पर हमला, युवाओं को निराशा, अंधकार में रखा, मोदी राज में जॉब सीकर से जॉब गिवर बन रहा है युवा। वाराणसी में योगी की चुनावी हुंकार का पहले बेटी की सुरक्षा का सवाल था लेकिन आज उन्हें कोई चिंता नहीं है। सीएम योगी का माफियाओं को दो टूक, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जेल या जहन्नुम में किसी एक को चुनना होगा। कोलकाता की केसरिया यात्रा के बाद बोले सीएम शुभेंदु का, जानता हूं भगवा का पान करने वालों को सबक सिखाना है। बांग्लादेश के चटगांव में एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक टैंक में ब्लास्ट, घटना में टैंक में मौजूद सेना के दो जवानों की मौके पर ही मौत। धमाका इतना भयानक था कि टैंक के परखच्चे उड़ गए, अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकलने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला, एक मिलिट्री अफसर गंभीर रूप से घायल। ISPR ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बांग्लादेशी सेना ने दो जवानों की मौत की पुष्टि की और कहा कि धमाके की वजह की जांच की जा रही है। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी, 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई। इसके अलावा बचाव, राहत, फोरेंसिक अभियान के सहयोग के लिए भारत ने 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञान व्यापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के निर्देश दिए हैं। आपकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने सर्वसम्मति से एक बार फिर राष्ट्रीय संयोजक उन्हें चुना गया, पंकज गुप्ता और एनडी गुप्ता को भी उनके पदों पर बरकरार रखा गया है। पार्टी के कामकाज और निर्णयों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए 23 सदस्यों वाली नई नेशनल एग्जीक्यूटिव का गठन किया गया है। आज लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, 11 बजे अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग की शुरुआत होगी। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। सागर हादसे पर सीएम मोहन यादव सख्त, दोषियों पर हत्या से लेकर उम्र कैद और फांसी तक की कार्रवाई का प्रावधान, अवैध कब्जों पर होगी कार्रवाई। सागर घटना के पीड़ित परिवारों से मिले सीएम मोहन यादव, बोले प्रशासन को सख्त कार्रवाई की खुली छूट, ऐसी सजा मिले कि दोबारा अपराध की हिम्मत ना हो। प्रयागराज में पीजीटी छात्रों का प्रदर्शन, आमरण अनशन लगातार जारी, आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बकरा को मिला समर्थन। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे पर पुलिस का पहरा, ग्रीन नेट से ढका गया पूरा मलबा, अंबाला रोड स्थित कब्रिस्तान के बाहर ईंटें उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर की गई पार्किंग। नोएडा के 16 मिनट में पहुंचा आर्मी अफसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान, मरकर भी अफसर दे गए नई जिंदगी। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा से खेप लाकर महंगे दाम पर बेचती थी महिला, हुई गिरफ्तार। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे से शादी का सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी।

0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिंदुस्तान आ सकते हैं। भारत आयोजक है, यहीं पर यह ब्रिक्स समिट होस्ट किया जा रहा है। शनिवार और रविवार इसको आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम में, और शुक्रवार को भारत आ सकते हैं जिनपिंग। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, क्या जानकारी मिल रही है?
1: देखिए नेहा, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भारत आना है, इसकी आधिकारिक घोषणा की उम्मीद आज की जा रही है। लेकिन कार्यक्रम और जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं चीनी राष्ट्रपति की अगवानी के लिए भी, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक द्विपक्षीय मुलाकात की भी, क्योंकि 18वीं ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत में होंगे। लेकिन ये उनका भारत दौरा करीब 7 साल के बाद हो रहा होगा, और खासतौर पर भारत और चीन के रिश्तों में गलवान के तनाव के बाद से जो तल्खी देखी गई थी उसे मिटाने की जो कोशिशें 2024 में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की कजान में हुई मुलाकात के बाद से शुरू हुई थी, उसके बाद तियानजिन में, और हाल ही में जो है दोनों नेता एक साथ कार्यक्रम में थे बिश्केक में, किर्गिस्तान की राजधानी में, जहां शंघाई सहयोग संगठन की भी बैठक थी। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी चीनी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री मोदी की के साथ में, और भारत की जमीन के ऊपर ये मुलाकात होनी है। और खासतौर पर ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है, चीनी राष्ट्रपति का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काफी उथल पुथल भी देखी जा रही है, और साथ ही भारत और चीन के रिश्तों में जो कड़वाहट के रिश्तों की उसे दूर करने की कोशिशें हुई हैं। कल ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि भारत और चीन के रिश्तों में सकारात्मक समय में देखने को मिला है।
0: शी जिनपिंग के इस बार की विजिट के, हालांकि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्या मायने रहेंगे? किस लिहाज से कूटनीतिक पर बातचीत हो सकती है, द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है, क्योंकि पहले से तो अनाउंसमेंट किया नहीं गया, ये लास्ट मोमेंट जो अनाउंसमेंट किया जाएगा शुक्रवार को अगर वो आते हैं तो किस तरीके से कार्यक्रम में तब्दीली हो सकती है क्या?
1: नहीं है, देखिए आधिकारिक जो घोषणा होती है वो हर देश की अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री का भी जब दौरा होता है तब उसकी जो औपचारिक घोषणा है वो विदेश मंत्रालय यात्रा से कुछ समय पहले करता है, और उसके लिए कुछ प्रक्रियात्मक कारण होते हैं, कहीं कोई ऐन मौके पर बदलाव ना हो, इसलिए वो प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर आप तैयारियों के इंडिकेटर्स को देखें तो भारत के विदेश मंत्री का हाल ही का चीन का दौरा, भारत के NSA का चीन जाना, वहां पर SR लेवल की टॉक यानी विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत का होना, ये तैयारियों के इंडिकेशन पहले ही मिल रहे थे कि चीनी राष्ट्रपति का भारत का ये दौरा हो सकता है, और उसके लिए आज सारी तैयारियां भी यहाँ पर की गई हैं। यहाँ तक कि ब्रिक्स के हाशिए के ऊपर भारत, चीन और रूस के नेताओं की मुलाकात RIC के औपचारिक मंच के ऊपर भले ना हो, लेकिन एक साथ तीनों नेता एक साथ नजर आएंगे। साथ ही भारत मंडपम में ब्रिक्स के तमाम नेता जो हैं वो वृक्षारोपण भी करेंगे। इसके साथ साथ काफी इलाबरेट कार्यक्रम रहा है, यानी 12 और 13 तारीख को दोनों नेता कई मौकों पर एक साथ भी होंगे। साथ ही ब्रिक्स के तमाम नेता जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। इसके अलावा चीनी राष्ट्रपति के साथ में द्विपक्षीय मुलाकात शनिवार को एक्सपेक्टेड है, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच में, जो कि भारत मंडपम में होगी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अन्य कई नेताओं के साथ भी मिलेंगे। और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 तारीख को पहुंच रहे हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी का जो है व्यापक कार्यक्रम है। दोनों नेता जो बायलेटरल बिजनेस फोरम है उसको भी देखने के लिए जाएंगे, वहां पर उसे भी संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल एक्सपो है इनोप्रोम उसे भी देखने जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी में, उनकी मेजबानी में जो हो रही ब्रिक्स की शिखर बैठक है उसमें द्विपक्षीय जो रिश्तों का एजेंडा है वो भी काफी व्यापक है नेहा, जिसमें भारत और चीन के राजकीय नेताओं की मुलाकात भारतीय जमीन पर होना एक अलग मायने रखता है, खासतौर पर 2020 की गलवान की घटना के बाद।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 9 बज गए, मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Papa!
4: Sorry, यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: राम रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साई,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ओह सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: What your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच 2 यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है। बारह साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है।
1: इसकी जरूरत ही क्या है, जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा।
0: नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है। बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
2: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पेवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
3: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है, और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो।
4: ये उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से क्षति चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिश हो चुकी है, नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें। इस पूरे विवाद में इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरे जगह ले जाना संभव है। अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सेहत से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: You know, first and foremost, the BRICS summit is being held at a very challenging time. These are challenging times because there are conflicts everywhere. You've seen conflict in Europe, in the heart of Europe, for over 4.5 years. You've seen conflict in Middle East. You've seen conflict in West Asia. This is having a huge repercussion on global economies. Secondly, you're seeing a complete breakdown of global supply chains. So you're seeing protectionism, you're seeing muscular industrial policies across the world, and you're seeing very unilateral action by responsible nations, including the United States of America, on both tariffs as well as on security issues. So these are very, very challenging times. In the midst of these challenges, BRICS is a very important informal grouping. It's an important grouping both geopolitically and geoeconomically because it accounts for almost 48 to 49% of the global population. It accounts for about 40% of the global GDP. And therefore, it has to play a major critical role. The important thing in while the BRICS summit is being held here in India is that India should be able to steer the course very steadily. And I'm saying steadily this is because it's important to ensure that firstly, this group doesn't take any anti-West stance. Number one. Number two, the group as it has been expanded also comprises of six additional members, amongst whom are Iran, Saudi Arabia, and UAE, which are on two differing sides, opposite sides of the conflict in West Asia. So to be able to arrive at a consensus and to be able to draft out a resolution which brings everybody on board is, to my mind, achievable but very challenging.
1: आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल किए अभी क्योंकि आपने बताया कि कितना टफ है अभी सिचुएशन चैलेंजिंग टाइम्स है द वर्ल्ड इज स्टैंडिंग राइट नाउ इन व्हाट मेनी वुड सी इन अ मल्टीपोलर फ्रैगमेंटेड जेन्युइनली रीअलाइनिंग इन मल्टीपल वेज और उस सब के बीच एक तस्वीर अभी सैटरडे को उभरेगी जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शी जिनपिंग होंगे और व्लादिमीर पुतिन होंगे उस तस्वीर को देख करके कौन परेशान होगा क्योंकि क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ दिन ही पहले बोला है अमिताभ कांत जी कि इंडिया इज नॉन वेस्टर्न बट नॉट एंटी वेस्ट इंडिया का पोजीशन क्लियर है और उसी तरह से चाइना और रशिया का भी पोजीशन क्लियर है कि वो लोग एंटी वेस्ट हैं
0: देखिए इंडिया का जो स्टैंड रहा है शुरू थ्रू आउट वो ये रहा है कि हम मल्टी अलाइंड हैं हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है कि हम $4 trillion इकोनॉमी हैं हम जब 2047 में जब विकसित भारत बनते हैं तो हमें $30+ trillion इकोनॉमी बनना है उसके लिए हमें हमने कई काम किए हैं जैसे कि फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ किया यूके के साथ किया हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी आगे हैं और इसमें हमें सक्सेस मिलनी चाहिए पर हमें इसके साथ साथ चाइना के साथ भी काम करना है रशिया के साथ भी काम करना है ये समझना आवश्यक है हमको कि देखिए इस समय जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का जो फॉसिल फ्यूल है जो तेल है उसका एक तिहाई करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो इंपोर्ट करता था एक ज़माने में इंपोर्ट करता था आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया है और वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है उसने पूरा तेल तेल की सप्लाई वेनेजुएला पे और उसके और उसका जो लक्ष्य था कि ईरान की भी तेल सप्लाई को कंट्रोल करे तो अगर वो कंट्रोल करता है तो एक तिहाई दुनिया के एक तिहाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करेगा दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो चाइना ने क्लीन टेक्नोलॉजी को पूरा मोनोपोलाइज करा है और वो करीब दुनिया की जो बैटरीज हैं 95% क्लीन बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करीब 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला अमेरिकन मैन्युफैक्चरर, पर अभी के समय 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनाइटेड चाइना प्रोड्यूस करता है. क्रिटिकल मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में सारी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली इस समय चाइना की है. और सोलर में फिर करीब 80% उसका कंट्रोल है और विंड में करीब 77% उसका कंट्रोल है. तो आप जो देख रहे हैं सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज पर चाइना का कंट्रोल है और फॉसिल फ्यूल पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तिहाई कंट्रोल है. तो अगर इंडिया को आगे चल के विकसित भारत बनना है तो इंडिया को इस समय फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल जो हम इम्पोर्ट करते हैं 180 बिलियन का, जब युद्ध होता है वेस्ट एशिया में तो वो बढ़ जाता है और उससे रुपी पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है. पर आगे चल के हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ना है, इसलिए चाइना के साथ भी काम करना बहुत आवश्यक है. हमारे नेशनल इंटरेस्ट में आवश्यक है कि चाइना इन टेक्नोलॉजीज को वेपनाइज ना करे, चाइना इन टेक्नोलॉजीज को ब्रिक्स कंट्रीज को पास करे, चाइना अपने मार्केट को खोले. चाइना एक्सपोर्ट में विश्वास करता है, चाइना इंपोर्ट्स में विश्वास नहीं करता है, वो इंपोर्ट नहीं होने देता है. हमारे जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक्सपोर्ट चाइना को नहीं कर पाते. चाइना का जो मार्केट है वो नॉन टैरिफ बैरियर से भरा रहता है. तो ये एक ब्रिक्स समिट जो है उसमें क्लाइमेट, ट्रेड, कई डिस्कशंस होंगे, पर बायलैटरल डिस्कशंस में ये आवश्यक है करना कि हम चाइना को बताएं कि उनके जो मार्केट्स हैं वो क्लीन टेक्नोलॉजीज की टेक्नोलॉजी को बाकी ब्रिक्स कंट्रीज में पास करें, क्योंकि ये ग्लोबल साउथ टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन आवश्यक है.
1: क्योंकि आप चाइना की बात कर रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अमिताभ कांत जी, थोड़ी देर पहले जेफरीज ने, एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज ने इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कह करके 6 हाई ग्रोथ सेक्टर्स की बात की है, जहां पर स्पेस, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और एरोस्पेस हैं. ये उस वक्त चर्चा हो रही है जब भारत की अर्थव्यवस्था के जो GDP नंबर्स आए हैं वो 7.8% पर है. उस पर बहुत सारी चर्चा हुई, बहुत सारे लोगों ने उस नंबर को चैलेंज भी किया. जब आप बोल रहे हैं चाइना मोनोपोलाइज नहीं करे, वहां पर जेफरीज का ये कहना कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, ओपनिंग स्पेस टू प्राइवेट प्लेयर्स, टैक्स हॉलीडेज फॉर डेटा सेंटर्स, इंसेंटिव स्कीम्स फॉर सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर, दिस इज व्हाट जेफरीज इज सेइंग.
0: सो देखिए, जेफरी बोले या ना बोले, मेरे विश्वास से इंडिया में दो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं. एक तो इस सरकार ने कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स को पूरा खोला. पहले उन्होंने जियो स्पेशल सेक्टर को खोला, वो पूरा कंट्रोल था. फिर ड्रोन सेक्टर को खोला, और मैं अभी देख रहा था कि आपके जो स्पॉन्सर्स हैं वो ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं, रैफेएम्फिर. तो ड्रोन सेक्टर को खोला, उसके बाद इन्होंने स्पेस सेक्टर को खोला, और चौथा जो सबसे बड़ा काम किया वो कि डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा खोला. तो ये 4 सेक्टर्स जो पूरे खोले हैं, इससे प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पहले ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल थी पब्लिक सेक्टर में, जिसमें कि प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बहुत कम थी. एक दूसरी जो चीज़ हुई है कि हमने कटिंग एज टेक्नोलॉजी एरियाज में भारत गया. हम सेमीकंडक्टर्स में गए, पहले डिज़ाइन करते थे पर अब मैन्युफैक्चर में गए. सेमीकंडक्टर की जो PLI 1 थी बड़ी सक्सेसफुल रही, PLI 2 में गए. उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में गए, AI मिशन लॉन्च किया, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया. तो ये कटिंग एज एरियाज ऑफ ग्रोथ हैं जो आपको ग्रोथ आगे चल के देंगे, और ये इसलिए विकसित भारत के रास्ते में ये क्षेत्र आपको बहुत क्वांटम जंप देने वाला है इन चीजों में.
1: तो उसमें ब्रिक्स नेशंस का एरिया ऑफ कोऑपरेशन आप क्या देखते हैं?
0: देखिए,
1: ये सब जो 6 सेक्टर्स हैं, जैसे जिसमें सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स भी है, साथ साथ स्पेस की बात हो रही है और डेटा सेंटर्स पर एम्फेसिस G20 में भी था, अभी भी हो रहा है.
0: देखिए, ब्रिक्स के लिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज है. एक तो जब भारत होस्ट कर रहा है, इसमें इसको ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और क्लाइमेट पर फोकस करना चाहिए मेरे, और डेवलपमेंटल इश्यूज पर फोकस करना बहुत आवश्यक है। बहुत ज़्यादा अगर आप जियोपॉलिटिक्स में जाइएगा तो इसमें एंटी वेस्ट स्टैंस आने की काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि रशिया और चाइना का जो एम रहेगा कि उसको, एंड क्योंकि उनके लिए इस समय अमेरिकन एक्शन जो भी हुए हैं काफ़ी यूनिलैटरल हुए हैं, जैसे उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए देशों पे, और अभी जो सैंक्शंस लगाए ईरान पे, उससे इम्प्लिकेशन होता है, इन सैंक्शंस का बहुत इम्प्लिकेशन है चाइनीज इकोनॉमी और रशियन इकोनॉमी पे, तो ये यूनिलैटरल एक्शन। दूसरी चीज यूनाइटेड स्टेट्स ने जो किया कि पहले जो क्वाड का जो मूवमेंट बढ़ रहा था उसको काफ़ी कम फोकस पे, कम फोकस पे रखा है, इसलिए इंडिया को बहुत आवश्यक है मेरे विचार से जियोपॉलिटिकली फोकस करने के बदले हमें डेवलपमेंटल इश्यूज, ट्रेड इश्यूज, इन्वेस्टमेंट इश्यूज और क्लाइमेट इश्यूज पर ब्रिक्स में फोकस करना आवश्यक है। और इसलिए अगर ब्रिक्स नेशंस में जो कि ग्लोबल जीडीपी का 40% अकाउंट करते हैं, इनमें ट्रेड बढ़ता है तो ये ग्लोबल साउथ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ मिडल ईस्ट में, जब ऑयल प्राइसेस बढ़े तो ग्लोबल साउथ की इकोनॉमीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, दे आर द वंस हु हैव गॉट इम्पैक्टेड, एंड दैट इज़ व्हाई द फोकस हैज़ टू बी ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड ऑन इश्यूज ऑफ क्लाइमेट रादर देन ऑन जियोपॉलिटिक्स।
1: My question now would be with regards to what are the lessons from G20 that India can take forward in the BRICS? Because is India getting pulled in two different directions now?
0: Well, the key issue is the art of, you know, you've done 350 meetings, you've done, you'll do BRICS to great perfection as far as organization is concerned, there'll be great photo opportunity, but the end of the day in multilateral negotiations, the key is to arrive at a consensus. Multilateralism is about arriving at a consensus. If you've not arrived at a consensus in the final document, the summit falls apart. That is critical for us to understand. And therefore, consensus building must be the hallmark of India's presidency. Whatever is the minimum language required for purposes of geopolitics, we should be able to. These are challenging times because of West Asia, because of opposite nations like Iran, Saudi Arabia, and UAE being a part of the G20. The G20 expansion has not yet fully matured, and therefore, it is absolutely necessary that we are able to convince them to arrive at some minimum language to be able to arrive at a consensus.
1: So is that, how tough do you think that would be? Because many are seeing this, you know, BRICS as an area which is being used by China to expand its own influence.
0: So the important thing is, that's why I keep saying that focus on many other issues. Focus on climate, focus on trade, focus on investment, focus on production.
1: Is that what you did during G20?
0: Many, many other issues. And yet we arrived at a full consensus on geopolitics. We were the G20 was, India was the first country, United Nations had failed, Security Council had failed, everyone had failed. It was only G7 had failed. It was only G20 which could arrive at a consensus on the political aspect issue. That was the first time that a full consensus para on Russia-Ukraine war was arrived at. And I think it's important that India is eventually able to arrive at a consensus on that as well. But, you know, the key...
2: तो अभी हम आपके लिए तस्वीरें लेकर आ रहे थे ब्रिक्स राउंड टेबल की, जो अमिताभ कांत वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा है कि ये समय जो है वो चुनौतियों से भरा हुआ है, वैश्विक स्तर पर ब्रिक्स की अहम भूमिका रहेगी। आज तक के ब्रिक्स राउंड टेबल में अमिताभ कांत ने कहा है, उन्होंने कहा कि हमें चीन रूस दोनों के साथ काम करना है, इन सभी बड़े देशों के साथ मिलकर काम करना है। उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा कि टैरिफ्स लगाए हैं उसने मनमाने तरीके से, साथ में तेल अमेरिका का जो है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ बातें कही। उनका कहना है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन तक इकोनॉमी पहुंच सकती है। देश हित में चीन के साथ काम करना बेहद जरूरी रहेगा, एक अहम बात अमिताभ कांत की तरफ से कही गई है। वो कहते हैं कि चीन के साथ मिलकर भारत को काम करना होगा और ब्रिक्स ये एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए चीन के साथ बातचीत की जा सकती है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि ब्रिक्स के समिट में शी जिनपिंग शामिल हो सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं, शनिवार को दिल्ली में उनकी लैंडिंग हो सकती है, कभी भी इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात के आसार हैं। ये मुलाकात दिल्ली के भारत मंडपम में होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो करीब 7 साल बाद शी जिनपिंग भारतीय जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। ब्रिक्स समिट एक बड़ा मंच है जिसमें दो पावरफुल नेता यानी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं और उम्मीद यही है कि आज आधिकारिक घोषणा हो जाएगी कि चीन के राष्ट्रपति आएंगे कि नहीं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, हमने अमिताभ कांत को भी कहते हुए सुना है आज तक की राउंड टेबल में कि चीन के साथ काम करना बेहद जरूरी है। ऐसे में शी जिनपिंग का भारत आना, अगर ये अनाउंसमेंट आज होती है, कितनी अहम है?
3: देखिए, अनाउंसमेंट एक औपचारिकता है अंजलि केवल, लेकिन यहाँ तैयारियां हो चुकी हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अगवानी की भी, उनके यात्रा की भी। और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो भारत दौरा है वो लगभग शनिवार की दोपहर से शुरू होगा। उनका अराइवल जो है वो शनिवार की दोपहर होगा और उसी दिन शाम के समय में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। और ये मुलाकात कितनी अहमियत रखती है इसका जिक्र अभी आपने भी किया, क्योंकि भारतीय जमीन के ऊपर करीब 7 साल के बाद ये मुलाकात हो रही होगी। गलवान के टकराव और तलखी के बाद में ये मुलाकात हो रही होगी। पिछली मुलाकात महाबलीपुरम में 2019 के अंदर हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इनफॉर्मल समिट हुई थी, एक अनौपचारिक शिखर बैठक हुई थी दोनों नेताओं के बीच में। और उस समय में ये तय किया गया था कि रिश्तों को रफ्तार दी जाए, संबंधों को सामान्य किया जाए, लेकिन उसके बाद कोविड का संकट और फिर गलवान की जो टकराव था, जो संघर्ष था, उसकी घटना का जो घाव था, उसने रिश्तों को उबरने में काफी वक्त लगा उसके अंदर। लेकिन पिछले कुछ समय के बाद से भारतीय और चीनी रिश्तों के अंदर जो रफ्तार देखने को मिली है, जो मोमेंटम देखने को मिला है, उसमें एक पॉजिटिविटी जिसका जिक्र विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल की तरफ से भी किया गया कि पिछले कुछ समय में भारत और चीन के संबंधों के अंदर एक सकारात्मक जो प्रगति है वो देखने को मिली है और इसी मोमेंटम को बरकरार रखा जाना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी यूं तो तियानजिन के अंदर भी मिले थे, 2024 में कजान के अंदर भी दोनों की मुलाकात हुई थी और बिश्केक की जो 2 हफ्ते पहले की एससीओ की शिखर बैठक थी उसके मंच पर भी दोनों नेता एक साथ वहां पर मौजूद थे। कुछ देर दोनों के बीच में हैंडशेक भी हुआ, कुछ सामान्य बातचीत भी हुई, लेकिन औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत का एक अलग मायने है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल कुछ दिनों पहले बीजिंग गए थे और वहां पर भारत चीन संबंधों और खासतौर पर सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान उसको
2: जी बिल्कुल और इस मुलाकात पर हमारी रहेगी नजर। शुक्रिया आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है, अब बात करते हैं राजनीति की। दरअसल मायावती ने अपने ही भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पहले पार्टी से उनका पद छीना और अब पार्टी से ही बाहर कर दिया है। मायावती ने कल ही आकाश आनंद के लिए उनके ससुर को राजनीति से संन्यास की शर्त रख दी। कुछ देर पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने संन्यास का ऐलान भी किया, लेकिन मायावती अब नहीं पिघल रही हैं। उन्होंने देरी का हवाला देते हुए न सिर्फ उन पर हमला बोला बल्कि अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद को पार्टी से ज्यादा अपने ससुर का मोह है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मायावती ने किस तरीके से आकाश आनंद के ऊपर हमला बोला है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल वो सिद्धार्थ जो उनके ससुर हैं आकाश आनंद के, उनसे संन्यास चाहती थी। वो चाहती थी कि वो राजनीति ही छोड़ दें और जब तक ये फैसला आया उनका कहना है कि ये देरी हो गई है, पहले क्यों नहीं इस फैसले को उन्होंने लिया। उन्होंने ये भी कहा कि आकाश स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र रहें। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, ये सिर्फ एक महज पार्टी की कलह नहीं है, ये एक परिवार की कलह है और जो शर्त रखी गई थी कि संन्यास ले ले उनके ससुर, उसको पूरा करने के बावजूद भी उनको अलग थलग कर रही है क्या मायावती?
4: अंजलि देखिए डॉक्टर सलीम मायावती को ऐसे ही राजनीतिक खिलाड़ी नहीं कहा जाता है और देखिए जो दाव यहाँ पर चला गया है उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा उनको एक्सपेक्टेशन जो अशोक सुधार से देख ही कर दोपहर में अगर आप मान के चले मायावती का वो एक्सपेक्ट पोस्ट आया तो आखिर अशोक सुधार से उसकी गई क्यों कर दी सुबह कितने हो गया इसका मतलब क्यों कुछ तरह अंदर कह रहे थे ऐसा आरोप मायावती की तरफ से लगाया गया है उन्होंने आकाश आनंद को भी घेरा लेकिन सबसे भारी खबर उसके मायावती के पोस्ट है उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से मिक्स कर लिया है इनका नवा पॉइंट जो है ये कहता है कि आकाश आनंद जो है वो पार्टी में जो इंटरेस्ट नहीं है वो अगर नहीं रहना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त करती है आपको बता देता हूँ ना दो दफा और भी ये घटनाक्रम हो चुका है जब आकाश आनंद को पार्टी से हटाया गया है तो फिलहाल मायावती ने आकाश आनंद को मुक्त किया है तो उनका मानना है कि अशोक सुधार और आकाश आनंद पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आधा करके अशोक सुधार की मायावती की शौक हो गई आकाश आनंद को लेकर और अशोक सुधार और संन्यास ले लेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी अगर पूरा होते होते अशोक सुधार जैसे आकाश आनंद के ससुर है पार्टी का कंपनी मिलता है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये मालूम पड़ा कि हाँ अब आकाश आनंद के रास्ते खुल जाएंगे लेकिन महज एक घंटे के भीतर मायावती का एक पोस्ट आ गया
2: जी बिल्कुल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है आप देखते रहिए आज तक
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
10: सोच बदलो और बैंक भी
11: एक तो एक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
4: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
5: Ye pillar kabhi nahi tootega. Roomta Steel TMT se bana.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
1: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
2: देखे जन्म पहला पहला कदम।
3: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
4: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
5: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
6: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
8: पापा,
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
10: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
10: सब कैशलेस हो गया है।
9: मेरा बैट,
11: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
12: चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।
15: इन एसोसिएशन विद
16: अनमोल बिस्किट, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
18: प्रशासन की वफादारी सरकार नहीं संविधान के प्रति होनी चाहिए, वरना यूपी को दमनकारी निरंकुश राज्य बनने में वक्त नहीं लगेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये बेहद सख्त टिप्पणी नोएडा की DM मेधा रूपम को लेकर है, जिनको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगे कहा कि DM का आचरण उपहास लायक है, इसलिए अदालत की टिप्पणियों को DM और पुलिस कर्मियों के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश भी दिया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि छात्रा को 5 महीने तक जेल में रखने के लिए 5 लाख का मुआवजा दिया जाए और मुआवजे की रकम DM मेधा रूपम और पुलिस अफसरों के वेतन से वसूली जाए। अदालत की ये सख्ती इसी साल अप्रैल महीने में नोएडा में हुए मजदूरों के प्रदर्शन के मामले से जुड़ी है। नोएडा के औद्योगिक इलाके फेस 2 सेक्टर 59, 60 और 84 में मजदूरों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और काम के घंटों को कम करने को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हिंसा और आगजनी भी हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे थे। इसी मामले में जिला प्रशासन ने तमाम संदिग्धों और आरोपियों की धरपकड़ की। इसमें आकृति नाम की 24 साल की छात्रा को 11 अप्रैल को हिरासत में लेकर अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। वहीं 13 अप्रैल को नोएडा में हिंसा हुई, लेकिन 10 दिन बाद।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
15: इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम को हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। चुनौतीपूर्ण समय में भारत के लिए जरूरी है चीन और रूस का साथ। इंडिया टुडे के ब्रिक्स राउंड टेबल में बोले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। आज तक पर दिन भर कूटनीति और रणनीति के दिग्गज। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र हैं आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने

में देर कर दी। उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम विवाद पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन, 2 दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियों को सील किया गया, अलग अलग हिस्सों में असुरक्षित बिल्डिंगों का सर्वे।

0: माँ की कृपा से भक्तों का जो जन भावना जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, उनका आदर करते हुए बाबा यहीं रहे, ऐसा फैसला हमारे सीएम साहब लेंगे।
1: हनुमान जी स्थापित रहो, और यही हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पब्लिक देखने आ रहे, बाहर से बहुत हारने लग गए।
2: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं उज्जैन का, जहां हनुमान प्रतिमा हटाने के मामले में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी सुबह से वहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार मूर्ति को विस्थापित करने की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने तनाव को देखते हुए कहा है कि हर मुद्दे का ख्याल रखा जाएगा और सिंहस्थ की तैयारियों के साथ साथ आस्था का भी सम्मान होगा। इन सबके बीच आज भी आईआईटी इंदौर की टीम मौके पर पहुंच रही है, जो मूर्ति हटाने को लेकर तकनीकी जानकारी जुटाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि खबर है कि इंदौर आईआईटी की टीम आज फिर से हनुमान मंदिर पहुंच रही है और वहां जांच करेगी। ये टीम पहले भी एक बार मंदिर की जांच कर चुकी है, आज दूसरी बार आईआईटी के विशेषज्ञ मौके का पर पहुंचकर प्रतिमा को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर जांच करेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। तो ये तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई, जिसका विरोध वहां पर पहुंचे भक्तों ने किया और लगातार ये विरोध कुछ वक्त से चल रहा है। वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, वहां महाआरती का आयोजन किया गया मंगलवार की शाम को, लेकिन इस सबके बीच आईआईटी की टीम एक बार फिर से वहां मुआयना करने आएगी। वहां पर जो भवन था मंदिर का, उसे तो पहले हटा दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। ये मामला पूरा सड़क को चौड़ा करने को लेकर है।
3: मेरे पीछे आप देख रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिर खड़े हनुमान जी। उज्जैन में सीएस 2028 को लेकर लगातार चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत विस्थापन में ये खड़े हनुमान जी मंदिर भी आ रहा है। लगातार श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं, आज तक पर खबर दिखाए जाने के बाद देश भर से श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मूर्ति चमत्कारिक है और इसे नहीं हटाना चाहिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो तकनीकी जाँच के बाद और श्रद्धालु और संतों से बात करके निर्णय लिया जाएगा। यहाँ से जुड़े हुए मंदिर जो दर्शनार्थी और जो श्रद्धालु हमारे साथ खड़े, आइए उनसे बात करते हैं। क्या कहना है उनका, क्या कहना है आपका?
1: हनुमान जी स्थापित रहो, और यही हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पब्लिक देखने आ रहे, बाहर से बहुत हारने लग गए, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की बहुत मेहरबानी है यहाँ पे बजरंग बली।
0: आप लोग दिख ही रहे हैं, बाबा पूरे वायु पुत्र है, पूरे ब्रह्मांड में वायु के रूप में फैल गए हैं। आप लोगों के माध्यम से आपको चुना है बाबा ने, तो हम यही मांग करते हैं कि काफ़ी दिन हो गए यहाँ, 13-14 दिन हो गए हमको सरकार से मांग करते हुए, और हमें इस प्रकार जानकारी लगी है कि आज सीएम साहब हमारे दुबई गए थे, वो एमपी में आ चुके हैं, तो आज निश्चित ही कुछ ना कुछ फैसला निकलेगा। और बाबा की कृपा से भक्तों का जो जन भावना जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, उनका आदर करते हुए बाबा यहीं रहे, ऐसा फैसला हमारे सीएम साहब लेंगे।
3: देश भर से लगातार श्रद्धालु जुड़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि देश भर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं, और सबका श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान खड़े हनुमान जी का यहाँ विस्थापन न किए जाए। और प्रशासन का वही कहना है कि उज्जैन की आस्था, उज्जैन की संस्कृति, उज्जैन का धर्म का ध्यान रखा जाएगा, संतों से बात की जाएगी, विशेषज्ञों से बात की जाएगी, पंडितों से बात की जाएगी, और सबसे मिलकर ही कोई समाधान निकाला जाएगा। संदीप कुलशेष, उज्जैन, आज तक।
2: तो प्रशासन का कहना है कि आस्था का मामला है, इसका सम्मान होगा और सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
4: सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य भी आवश्यक हैं और उज्जैन की धार्मिक आस्था भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषज्ञों, संत समाज और श्रद्धालुओं के विश्वास के साथ समाधान निकाला जाएगा। यह श्रद्धालुओं की गहरी आस्था से जुड़ा विषय है, साथ ही प्रतिमा की संरचनात्मक स्थिति का वैज्ञानिक परीक्षण भी आवश्यक है। खड़े हनुमान जी की प्रतिमा से जुड़ा विषय उज्जैन वासियों और श्रद्धालुओं की आस्था से संबंधित है। प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की भावनाएं, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञों की वैज्ञानिक तकनीकी राय प्राप्त किए बिना प्रतिमा के विस्थापन हेतु आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: तो उज्जैन में आस्था और विकास आमने सामने हो गए। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ कुंभ होना है, जिसके लिए वहां शहर की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। एक प्राचीन हनुमान मंदिर भी हटाया जाना था। दरअसल मंदिर के भवन को तो तोड़ दिया गया, लेकिन जब मूर्ति को हटाने की बारी आई तो मामला अटक गया, क्योंकि यह तय हुआ था कि मूर्ति को यहां से उठाकर दूसरी जगह स्थापित किया जाएगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन अब तक इस प्रतिमा को हटा नहीं पाया है।

0: चार दिनों तक छैनी हथौड़ा मारने के बाद भी क्यों नहीं उखड़ी हनुमान की मूर्ति? उज्जैन में विकास बनाम आस्था की कहानी। मंदिर टूटा पर मूर्ति नहीं हिली। महाकाल की नगरी उज्जैन में एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। पूरी कहानी आपको समझाने से पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये उज्जैन का एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है जो आकार में तो छोटा है लेकिन आस्था में बहुत बड़ा है। कई दशकों से हजारों लाखों लोगों की आस्था का केंद्र। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ हो रहा है, इसीलिए सड़कें चौड़ी हो रही हैं। ये मंदिर इसी चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था तो प्रशासन का बुलडोजर चल गया। मंदिर था तो छोटा, इसलिए तुरंत बाहरी आवरण तोड़ डाला। अब बारी आई मूर्ति को हटाने की, क्योंकि ये तय हुआ था कि मूर्ति को कहीं और स्थापित किया जाएगा तो मूर्ति नहीं टूटनी चाहिए। अब छैनी हथौड़ों के साथ मूर्ति को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। मिस्त्री लगातार छैनी हथौड़ों से वार कर रहे थे, मूर्ति को वहां से उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूर्ति हिली ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे भी बहुत कोशिश की गई लेकिन नीचे पत्थर बहुत हार्ड था जो टूटा ही नहीं। ये कोशिश कोई काम नहीं आई। पहले तो नगर निगम की टीम इस काम में लगी थी, फिर इंदौर के विशेषज्ञों को भी बुलाया गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा तिल भर नहीं है। आखिर में यह तय हुआ कि अगले दिन फिर कोशिश करेंगे, लेकिन अगले दिन भी हालात ऐसे ही बने रहे, सफलता हाथ नहीं लगी। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? हालांकि ये बात भी सच है कि प्रशासन की पूरी कोशिश ये थी कि करीब 120 साल पुरानी इस प्रतिमा में कोई दरार ना आ जाए।
1: देखिए, आज के युग में ऐसी ऐसी मशीनें आ चुकी हैं जो पहाड़ को खोदकर भी रास्ता बना देती हैं। आज हम मशीनों की तरह से देखें तो मशीन से पूरा संपन्न भारत है। जो प्रतिमा है वो 121 साल पुरानी वहाँ प्रतिमा है। प्रशासन चाहे तो उस प्रतिमा को न्यू सहित, क्योंकि ये पॉसिबल हो सकता है, न्यू सहित उठा के भी प्रॉपर उसको विराजमान कर सकती है, क्योंकि यह क्या है, आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए हम चाहते हैं कि उस प्रतिमा को प्रॉपर तरीके से न्यू सहित उठा के उस प्रतिमा को फिर से स्थापित किया जाए।
2: और क्या कहेंगे?
1: और मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन को लोगों की आस्था का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। इसके पहले भी कई प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं, तो ये प्रतिमा भी प्रॉपर न्यू सहित उठा के स्थापित हो सकती है।
0: उज्जैन के कंठाल चौराहे से छतरी चौक तक करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क चौड़ी होनी है, क्योंकि सिंहस्थ कुंभ में यहीं से शाही सवारियां निकलती हैं। इसीलिए पुराने शहर के इस हिस्से को व्यवस्थित किया जा रहा है। इस सड़क पर स्थित दो मंदिर पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब इस प्राचीन हनुमान मंदिर की बारी थी, लेकिन यहाँ प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। IIT इंदौर के इंजीनियर्स की टीम यहां सर्वे करके जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट अगले 3 दिन में आएगी और उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि आगे क्या होगा।
3: माननीय पुजारी जी की सहमति हम लोगों के साथ में है और अब उन्हीं के साथ में मार्गदर्शन में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मूर्ति की चारों तरफ की दीवार वगैरह सब चीजें हट चुकी थी, पर जब मूर्ति स्थापन की कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसा संज्ञान में आया कि तकनीकी परीक्षण भी इसमें करा लिया जाए। उस तकनीकी परीक्षण की कार्रवाई हमारे द्वारा संचालित की जा रही है प्रशासन के पूरे समन्वय से, और आगे की कार्रवाई जैसे भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके आधार पर आगे निर्णय आपसी सहमति के आधार पर लिया जाएगा।
2: कितना मीटर लंबा रोड चौड़ा है, कितने करोड़ की लागत से बना, धर्मस्थल है?
3: लगभग 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में लंबाई में ये रोड है और मास्टर प्लान रोड है, और लगभग 15 करोड़ की लागत से रोड निर्मित हो रहा है और ये पेशवाई मार्ग भी कहलाता है। तो उस दृष्टिकोण से कार्रवाई इसमें संपादित की जा रही है। धार्मिक स्थलों में अन्य प्रकार के भी धार्मिक स्थल है, तो सब पे बातचीत करके, चर्चा करके और सब से सहयोग लेकर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।
2: स्क्रीनिंग मशीन और मिट्टी परीक्षण भी किया गया, कब तक रिपोर्ट आना?
3: सब 2 से 4 दिन के भीतर जैसी जैसी भी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर फिर हम सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
0: अब जैसे ही ये खबर फैली कि प्रतिमा तो हट ही नहीं रही, तमाम कोशिशों के बाद भी उखड़ नहीं रही, तुरंत यहाँ पर आस्थावानों की भीड़ लग गई। महाआरती शुरू हो गई, सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त आ गए। हनुमान जी में आस्था रखने वालों को लगता है कि ये चमत्कार है, और उनकी मांग ये भी है कि अब ये मंदिर यहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी है।
4: जो ये लगता है कि मुझे पिछले एक महीने से मैं आ रहा हूँ, उसके बाद में 10 दिन से काम चालू है यहाँ पे। 10 दिन से कभी मशीनें खराब हो जाती, कभी कुछ, जब कोई आदमी आके इसको तोड़ता है तो उसको बिजली के झटके लगते हैं, कभी धुआं धुआं सा होता है, उसको बताता मेरे को धुआं धुआं सारा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। उसके बाद में कभी आग निकलता है, कभी पानी निकलता है।
5: 1857 का हमारे पास रिकॉर्ड है और बाबा खड़े हनुमान उसके पहले के हैं। यहाँ पर कल एक प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा है कि परमारकालीन वंशज की प्रतिमा है बाबा की।
6: अच्छा, ये बताइए कि क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं इस प्रतिमा को कहीं अन्य स्थापित करने से पहले?
5: विगत 10 पूर्व हमने हमारी जो मांगे थी उनको अवगत करा दिया था शासन को कि जब आप बाबा की प्रतिमा को यहाँ से हटाएंगे तो अन्यत्र स्थापित करें तो बाबा की प्रतिमा क्रेक नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमारी मांगे भी मानी और उसके हिसाब से हमने तैयारी भी करी बाबा को ले जाने की। यहाँ से कुछ दूरी पर ही हमने बाबा का नया स्थान तैयार कर लिया था, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमको निगम ने उपलब्ध करा दिए गए थे, पर जब उन्होंने प्रयास करा बाबा को ले जाने का तो 4 प्रयास कर चुके हैं, चारों में विफल रहे हैं वो अभी तक। इसलिए हमारी अब ये मांग है कि बाबा यहीं रहे, क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।
0: इस मंदिर से उज्जैन के लोगों की आस्था जुड़ी है। लोग मानते हैं कि मंदिर में विराजमान हनुमान जी चमत्कार करते हैं। ये भी आस्था है कि हनुमान यहाँ पर बीमारियां भी ठीक करते हैं।
7: रहना चाहिए, और हमको तो कम से कम 33 साल तो हो गए मेरे को भी आते होते, बच्चे के मतलब कुछ हो जाती बीमारी वगैरह तो हम यही जाननी डलवाने आते थे, और मतलब जरा सा की कुछ रहता तो हम यही आते थे।
6: आप हर मंगलवार आते हो?
7: हर मंगलवार आते हैं। हाँ, और हमारी तो बहुत आस्था है, मंदिर यही रहना चाहिए।
8: हमारा जन्म हुआ जब से हम यहीं आ रहे, हर मंगलवार के दिन जाननी लगाने आते हैं, और बाबा से यहाँ से फर्क पड़ता है हमें क्या, हम यही आ रहे, हमारा जन्म यहीं हुआ और यहीं आते हैं हम जाननी लगाना, और यहाँ से ही फर्क पड़ता है हमें। कुछ भी तकलीफ होती तो यहाँ से हो जाती बाबा के यहाँ से, और यहाँ से हटना नहीं चाहिए, बाबा का मंदिर यही रहना चाहिए, बाबा का मंदिर क्या।
0: संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
9: हिंदू संगठनों ने इस हनुमान मूर्ति को हटाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यहाँ रोजाना महाआरती हो रही है, आज भी बड़ी संख्या में हनुमान भक्त वहां पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मांग तेज हो रही है कि इस मूर्ति को यहां से नहीं हटाया जाए।
0: प्रशासन का तर्क है कि प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए बिना सुरक्षित स्थान पर ले जाना जरूरी है, लेकिन हिंदू संगठनों का सवाल है कि जब कई कोशिशों के बाद भी प्रतिमा नहीं है तो आखिर इसे हटाने की जरूरत ही क्या। हिंदू संगठनों का दावा है कि प्रतिमा हटाने की करीब 4 बार कोशिश हो चुकी है। अब मांग साफ है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें।

जैसे ही खबर मिली कि प्रतिमा अपनी जगह से हट नहीं रही तो हिंदू संगठनों ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।

0: प्रशासन की तरफ से आश्वासन के साथ जमीन भी दे दी गई थी। जहां नया हनुमान मंदिर स्थापित होता लोग मान भी गए थे, इसीलिए यह प्रक्रिया शुरू की गई। मंदिर की दीवारें तोड़ी गई, लेकिन जब मूर्ति की बारी आई तो मूर्ति हिली ही नहीं। अब लोगों ने यहीं पर मंदिर की जगह टेंट लगा दिया है। हनुमान जी टेंट में और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग दर्शन कर रहे हैं और अड़े हैं कि मंदिर कहीं नहीं जाएगा।
1: हम तो सरकार से ही मांग करेंगे। और मैं आज आपको एक और चीज बताना चाहूँ, दुनिया भारत के बड़े प्रमुख आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई है। श्री राम जन्मभूमि जो आंदोलन है उज्जैन से शुरू हुआ था 1990 में, आदरणीय अशोक सिंघल जी, जयवान सिंह पवैया जी ने यहाँ से शुरुआत की थी।
0: प्रशासन क्या फैसला लेता है ये तो IIT इंदौर की रिपोर्ट के बाद ही तय होगा, लेकिन फिलहाल मंदिर कितना प्राचीन है इसको लेकर अलग अलग दावे हैं। कोई 120 साल बता रहा है, कोई 170 साल पुराना मंदिर बता रहा है। इतिहासकार इसे बेहद प्राचीन बता रहे हैं। लंबे समय से जो सिंदूर हनुमान जी की मूर्ति को चढ़ाया जा रहा है उसकी वजह से इसकी मूल भावभंगिमा स्पष्ट नहीं है, लेकिन मंदिर काफी पुराना है।
2: वर्तमान जो खड़े हनुमान की प्रतिमा है वो सिंदूर से लिप्त है, इसलिए उसका पूरा स्वरूप और सही स्वरूप जो है वो एकदम ज्ञात नहीं हो पाता है। पुरातत्व विभाग यदि प्रयास करे तो कुछ ज्ञात हो सकता है। ये स्थान उज्जैन के प्राचीन क्षेत्र में आता है और प्राचीन क्षेत्र में अनेक मूर्तियां और देवस्थान जो है वो महत्वपूर्ण है, उनमें से एक खड़े हनुमान भी है।
0: उज्जैन के लोग इस मंदिर के बहाने सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। उज्जैन में 2028 के महाकुंभ के नाम पर बहुत से मंदिर तोड़े गए। यही लोग दावा कर रहे हैं कि प्रशासन ने विकास के नाम पर 60 मंदिर ले लिए हैं, लेकिन अब इस मंदिर को नहीं लेने देंगे।
1: दिशा का तो कोई मैटर ही नहीं है। पहली बात तो बाबा जहाँ है ना वहीं ठीक है। चमत्कारी हनुमान जी हैं बाबा, स्वयंभू अपने आप में 1000 वर्ष पुराने हैं और बाबा की लीला तो अपरंपार है। सभी को मालूम है बाबा क्या चीज है। हम बिल्कुल उसके पक्ष में ही नहीं है यहाँ से ट्रांसफर के लिए। बाबा यहीं रहेंगे, हम तो यही चाहते हैं
3: सर। मशीन आई थी हटाने,
1: यहाँ पे 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है। 3-3 बार मशीन आ चुकी है और 4 बार ये खुदाई भी हो चुकी है। जबरदस्ती कर रहे हैं, मगर क्या होता है कि सत्ता जिसकी पुलिस उसकी वाला मैटर जो रहता आएगा। तो हमारी तो सरकार को एक ही गाइडलाइन के तहत बताना चाहते हैं कि अटल जी ने कहा था कि राम से मत उलझिए, और हम कह रहे हैं कि हनुमान जी से मत उलझिए, मिट जाओगे सपा। और सरकार के पास बहुत सी जगह, हमने 60 मंदिर दे चुके हैं ऑलरेडी। हम विकास के नाम पे हम तो एक ही मंदिर की मांग कर रहे हैं।
4: मैं यहाँ लगातार 31 वर्ष से आ रहा हूँ और मुझे कुछ भी प्रकार की दिक्कत आती है, परेशानी आती है, बुखार आता है तो मैं बाबा के यहाँ से भभूति लेता हूँ। उससे पूरी तरीके से मेरा बुखार भी उतर जाता है, सब कुछ बीमारी खत्म हो जाती मेरी। तो बाबा से मेरे दिल से आस्था है और मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि बाबा की मूर्ति यथावत रहे, इसको नहीं हटाए। जय श्री राम।
0: एक तरफ सिंहस्थ से पहले उज्जैन को बेहतर सड़कें और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दूसरी तरफ इसी विकास की राह में आस्था की ये तस्वीर खड़ी है। अब चुनौती प्रशासन के सामने है कि सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की भावना का भी ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
5: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: In association with
14: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
15: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: ये
3: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
10: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
3: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: राम रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साई,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग।
1: चुनौतीपूर्ण समय में भारत के लिए जरूरी है चीन और रूस का साथ, इंडिया टुडे के ब्रिक्स राउंड टेबल में बोले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। आज तक पर दिन भर कूटनीति और रणनीति के दिग्गज।

0: ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल, भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त, एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी।
1: उत्तराखंड से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की चुनावी हुंकार, शुद्धिकरण विवाद पर कहा कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया, वंदे मातरम विवाद पर राहुल मियां कहकर साधा निशाना।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। शुरुआत करते हैं शतक आज तक से।

0: कल से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगी ये बैठक। दुनिया के 11 बड़े देशों के नेता लेंगे हिस्सा। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शनिवार को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने की है उम्मीद। बीजिंग से आज आधिकारिक ऐलान संभव। समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। भारतीय जमीन पर करीब 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहले दिल्ली सजी, पोस्टरों और रोशनी से जगमगाई राजधानी। सरकारी और प्रमुख भवनों को रंग बिरंगी और आकर्षक सजावटी लाइटों से जगमगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीलंका दौरे पर आज आखिरी दिन राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के कई दिग्गज क्रिकेटर्स से की मुलाकात। उनके सम्मान में रखा गया था कार्यक्रम। यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से की मुलाकात और रक्षा उपकरण, ट्रेनिंग व समुद्री सुरक्षा को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजित प्रेमदासा से भी मिले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भेंट किए कई तोहफे। श्रीलंका में बेली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना की इंजीनियर ट्रांसफ फोर्स से भी मिले राजनाथ सिंह। उनके कार्यों और योगदान की सराहना की, बढ़ाया उनका हौसला। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना, सीएम धामी भी रहे मौजूद।
1: पीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल किया, ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली राहत। मायावती ने पहले आकाश आनंद से कहा था कि अगर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ संन्यास ले लेते हैं तो भतीजे के को बीएसपी में पद देंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, कहा जो फैसला लिया उसने बहुत देर कर दी लेकिन अंततः सही निर्णय लिया। मायावती ने तंज भरे लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अगर दामाद की चिंता होती तो पहले ही ले लेते संन्यास। बीएसपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि आकाश पार्टी से ज्यादा परिवार को तरजीह दे रहे हैं और डबल माइंड होकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के दिए थे निर्देश। आज लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी शुरू। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अखिलेश यादव कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे चर्चा। यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी, राहुल गांधी के रायबरेली के दौरान मंथन। हापुड़ में दलित युवक की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं बीजेपी की हताशा बढ़ रही है।
0: गुजरात के गांधीनगर बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, मलबे में दबे सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दी जानकारी। डॉक्टरों के अनुसार हादसे में हुए घायल किसी की भी हालत गंभीर नहीं है, सभी 12 घायल लोग सुरक्षित। घटना को लेकर डिप्टी सीएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कसूरवारों पर एक्शन होगा। हादसे के समय निर्माणाधीन इमारत में वेल्डिंग का काम चल रहा था, इसी दौरान अचानक बड़ा स्लैब गिर गया और 15 लोग दब गए। हादसे के बाद निर्माणाधीन इमारत की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और प्रशासन हादसे की वजहों की जांच कर रही है। रांची में टंकी गिरने से बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे जिनमें से 3 को बचा लिया गया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान में जुट गया। घटना की जांच जारी। दिल्ली में भी सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। पिछले 2 दिन में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे हुआ। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभाग में बांट रही है टीम। मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस जारी किए और 4 इमारतों को तोड़ने के आदेश दिए।
1: बांग्लादेश के चटगांव में एक मिलिट्री एक्सरसाइज दौरान टैंक में ब्लास्ट, घटना में टैंक में मौजूद सेना के 2 जवानों की मौके पर ही मौत। धमाका इतना भयानक कि टैंक के परखच्चे उड़ गए, अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकालने के लिए 1 सेकंड भी नहीं मिला, 1 मिलिट्री अफसर गंभीर रूप से घायल। ISPR ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बांग्लादेशी सेना ने 2 जवानों की मौत की पुष्टि की है और कहा है कि धमाके की वजह की जांच की जा रही है। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी, 130 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इसके अलावा बचाव, राहत और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए भारत से 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेजा गया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, खगड़िया में कई इलाके जलमग्न, प्रभावित लोगों के लिए चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। चारों ओर जलभराव के कारण नाव की आवाजाही का सहारा, प्रशासन की ओर से भोजन, दवा और दूसरी जरूरी सुविधाएं कराई जा रही हैं उपलब्ध। मुंगेर में सीएम की पत्नी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, पीड़ितों का जाना हाल, सामुदायिक किचन में दी जा रही खाने की गुणवत्ता का किया निरीक्षण। मुलाकात के दौरान लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की मांग की, बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने रोजगार की भी मांग की। कटिहार में बाढ़ से भयंकर तबाही, आम लोगों के साथ प्रशासन खुद परेशान, पुलिस कैंप छोड़ जाने को मजबूर, पुलिस प्रलयकारी बाढ़ में डूब गया पुलिस शिविर।
0: हरदोई में बाढ़ का कहर, गंगा रामगंगा में उफान, गांव के घरों में पानी घुसा और गांव बन गए हैं टप। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने लिया जायजा, पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचाई। 12 बंकी में इमारत घाघरा नदी के तेज जलस्तर के चलते पानी में समाई, दरअसल शिव मंदिर भी कटान के चलते बहा। 12 बंकी में डीएम ने बताया कि जिनका घर नदी के कटान में बह गया है उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी ही देर की बारिश से हुआ जलभराव, पानी से लबालब हुए निचले इलाके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फड़क्का बराज के सभी 109 गेट खोले, गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान में बुर्का पहने महिलाओं ने चुराए 1 लाख कैश और चांदी के जेवर से भरा हुआ बैग, पुलिस की जांच शुरू। ग्रेटर नोएडा में बिसरक के में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की छापेमारी, 3 लाख के पटाखों के साथ आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में विनोद हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला हत्यारोपी, पहले दोनों में हुई कहासुनी फिर रंजिश में की गई थी हत्या। भिवानी के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, गेट के आगे फैला धुआं, शाखा में मची अफरा तफरी।
1: नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यहां की गई है पार्किंग। नोएडा में 16 मिनट पहुंचा आर्मी अफसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान, मरकर भी अफसर दे गए नई जिंदगी। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा से खेप लाकर महंगे दाम पर बेचती थी महिला, हुई गिरफ्तार। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे से शादी का सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी। बिहार के बांका में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 200 से अधिक दुकानें अतिक्रमण मुक्त कराई गई। रोहतास में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी, कई अस्पताल हुए सील। पटना में NIA की छापेमारी, रांची स्थित RSS कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले में NIA की कार्रवाई तेज। छपरा में दूध के पैसे वापस मांगने पर दुकानदार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू, प्रोफेसर का इलाज जारी। बेतिया में दरोगा का 15,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी दरोगा शमशाद अहमद निलंबित।
0: इंदौर में महिला के गले पर ब्लेड से हमला, जाबाज ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तत्परता से बची उसकी जान, आरोपी ने खुद पर भी किया वार। मोतिहारी के एक आवासीय होटल में पुलिस की छापेमारी, होटल संचालक सहित चार लड़के हिरासत में, तीन नाबालिग लड़कियां भी मिली। महिसागर में पिता ने शक और पारिवारिक विवाद में अपने ही बेटे को कुएं में फेंक कर ली उसकी जान, आरोपी पिता मौके से फरार। वलसाड में हाईवे पर टेम्पो में लगी आग, टेम्पो में भरा माल पूरी तरह से जलकर हुआ खाक। धनबाद की युवती ने राजस्थान के युवक को बनाया शिकार, लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा, शादी का झांसा देकर लूटने वाले 10 शातिर गिरफ्तार। रांची में पुरानी पानी की टंकी अचानक गिरी, कुछ मजदूरों के दबे होने की संभावना थी और बाद में दो को बाहर निकाला गया। झांसी में पिता के सामने नाव पलटने से दो सगे भाई बेतवा नदी में डूबे, देखते रह गए उनके पिता। अलवर में नगर निगम चुनाव के बीच वार्ड 43 में दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुआ विवाद, दो युवक हुए घायल, एक युवक के आई सिर पर 15 टांके। कोरबा में रील देखते वक्त इंटरनेट बंद हुआ तो आक्रोशित महिला ने कीटनाशक सेवन कर जान ली, मामले की हर एंगल से जांच में जुटी हुई पुलिस। एमपी के सीधी में नाले में पानी था तो बुजुर्ग की पीठ पर चढ़ गया पटवारी, वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने किया उसको निलंबित।
1: एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को लॉन्च किया, साथ ही पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ भी हुआ लॉन्च। 2,99,900 रुपए है इसकी कीमत। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत है 1,64,900, आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत है 1,79,900। नए आईफोन में बेहतर सीरी पर दिया गया है जोर। भारत में शनिवार से शुरू होगी प्री ऑर्डर, वहीं एप्पल के नए प्रो मॉडल की भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू होगी। एप्पल ने एयरपॉड्स 5 लॉन्च किए, डिजाइन पहले से अलग और कान के बाहर रहने वाला है, इसका नॉइस कैंसिलेशन पिछली सीरीज से ज्यादा बेहतर है। एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 में दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर किया गया है, अब घड़ी हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक कर सकती है। मुंबई के चिंचपोकली में बप्पा का हो चुका है आगमन, ढोल ताशों और जयकारों से पूरा किरण गांव गूंज उठा है। इस बार चिंतामणि गणपति की सजावट तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर से प्रेरित है, मूर्ति में गरुण शंख और चक्र जैसे धार्मिक प्रतीक नजर आएंगे। आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत नंबर 1 के पायदान पर बरकरार, 33 मैचों में 116 रेटिंग के साथ टॉप पर है भारतीय टीम। महिला एशिया कप सेमीफाइनल में भारत बांग्लादेश की भिड़ंत, दुबई में आज शाम 8 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। नीली जर्सी में एशियन गेम्स खेलेगी भारतीय हॉकी टीम, हॉकी इंडिया को टीम किट के लिए नारंगी या ब्लू कलर चुनने का दिया था विकल्प, जिसमें ब्लू जर्सी का चुनाव हुआ है।
0: प्लस स्टोरीज फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का ट्रेलर जारी, 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी सीरीज। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम सस्पेंस फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज, अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी ये फिल्म होगी फ्रेंचाइजी का आखिरी अध्याय। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म उड़ता तीर का पहला पोस्टर जारी, पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे दोनों सितारों की जोड़ी। फिल्म लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला इसमें निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही हनुमान अंश की रफ्तार, अब तक भारत में 135,06,00,000 रुपए बताई जा रही है फिल्म की कुल नेट कमाई। बॉक्स ऑफिस पर छाए कालीन भैया, मिर्जापुर द मूवी की भारत में नेट कमाई 200 करोड़ रुपए के पार। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान का तीसरा गाना मैं तो हैवान नहीं हूं रिलीज, इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया जबकि इसके बोल कुमार ने लिखे हैं। रवि किशन के वायरल मीम पर टी सीरीज ने बनाया गाना, मनी फॉलोज माय ब्रदर टाइटल के गाने का टीजर जारी। 4 साल बाद फिर से छठ पूजा स्पेशल गीत लेकर आ रहे हैं सिंगर विशाल मिश्रा, जल्द ही आने वाला है उनका ये गीत, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी।
1: गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना का भीषण हमला, अटैक के बाद उठा काले धुएं का गुबार, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। इसराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के माउंट हर्मन का किया दौरा। इसराइल की सीमा पर किसी भी तरह के खतरे को रोकने का लिया संकल्प। स्लोवेनिया पहुंचे इसराइली विदेश मंत्री का बयान, कहा गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन बाहर निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई अपनी इच्छा से जाना चाहता है तो इसराइल इसका विरोध नहीं करेगा। यूक्रेनी शहरों पर रूस का भीषण हमला, राजधानी कीव समेत कई शहरों में बरसाए गए बम, कीव में ऊंची इमारत और फूड फैक्ट्री को बनाया गया निशाना, हमले में एक की मौत, 5 घायल। ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद क्रेमलिन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ शांतिवार्ता जल्द शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन संभावित समझौते पर शर्तें रहेंगी गोपनीय। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने वियतनाम के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर दिया जोर। अमेरिकी सेना ने यूएस युद्धपोतों पर हमले की खबर को खारिज किया, कहा हमले की सभी कोशिशें नाकाम रही हैं, ईरान का दावा पूरी तरह से गलत है। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने संसद भंग कर चुनाव का किया ऐलान, अगले महीने 25 अक्टूबर को होंगे मध्यावधि चुनाव। कालेंज स्कूल में गोलीबारी, समाचार कम, बंदूकधारी ने महिला शिक्षक की गोली मारकर हत्या की, 44 बच्चों और 3 शिक्षकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यूएस ओपन में बड़ा उलटफेर, डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज बाहर, अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन ने रोमांचक मुकाबले में उन्हें हराया।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस इन एसोसिएशन।
1: सत्य निकेतन में हुए हादसे के बाद आम आदमी पार्टी के आरोपों पर आशीष सूद ने पलटवार किया, उन्होंने सौरभ भारद्वाज से पूछा कि उनके घर के पास जर्जर हालत में चल रहे पीजी की जिम्मेदारी उन्होंने क्यों नहीं ली है। मंगलवार शाम चिराग दिल्ली के एक पीजी से छात्रों को बाहर निकाला गया, आशीष सूद ने कहा कि इमारत में दरारें थी, बच्चों की जान खतरे में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों की नजर इन इमारतों पर नहीं पड़ती है।
0: तो लगातार यहां पर राजनीति भी इस मुद्दे पर हो रही है। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने अब सौरभ भारद्वाज को जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि सौरभ जब मंत्री थे तो क्या कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, सुरक्षित पीजी पर सौरभ भी जिम्मेदारी लेंगे क्या।
3: कल रात चिराग दिल्ली में एक क्रैक एक बड़ी सी बिल्डिंग में दिखाई दी है, प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने वहां से बच्चों को इवैक्यूएट किया, उनको ये आश्वासन दिया कि उनकी बिलोंगिंग्स और उनके बाकी जो सिक्योरिटी मनी वगैरह दिलाने में प्रशासन मदद करेगा। सभी छात्रों को भगत सिंह कॉलेज में और छात्राओं को वोकेशनल कॉलेज में ठहराया गया। सरकार काम करने के लिए है, हम विवादों में पड़ना नहीं चाहते, मगर मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ से थोड़ी दूर कल जो सौरभ भारद्वाज बेरोजगार नेता अकाउंटेबिलिटी मांग रहे घूम रहे थे इधर उधर, 10 साल से वही यहां विधायक थे, आज भी उन्हीं की पार्टी का पार्षद है, क्या वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे, क्या वो बताएंगे यहां कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा था, क्या वो जिम्मेदारी लेंगे यहां पर हो रहे भ्रष्टाचार और क्रैक हुई हुई बिल्डिंग में बार बार किराए पे चढ़ने में, क्या इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर उठेंगे। 10 साल वो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, उनके घर के नजदीक क्रैक में बिल्डिंग में हॉस्टल चल रहा था, निगम पार्षद उनका है। तो इस प्रकार से जो छिछोरापन ये बेरोजगार नेता करते हैं गंभीर मुद्दों पर, उन्हें चाहिए कि अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ और उपाय खोजें।
0: तो आपको बता दें कि इस वक्त एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें डेमोलिशन की कार्रवाई लक्ष्मी नगर में भी इस वक्त हो रही है। आइए सीधा रुख करते हैं वहीं का, जहां हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज मौजूद हैं। अमित, हमने देखा है कि लगातार एमसीडी तोड़ रही है उन इमारतों को जिन्हें खतरा माना जा रहा है। लक्ष्मी नगर में कितनी इमारतें चिन्हित और तस्वीरें भी दिखाएं, अगर हो सकता है कि वहां किस तरह से कार्रवाई चल रही है।
4: अंजलि, देखिए सीधे तस्वीरों को दिखाने की हम कोशिश करते हैं। साथ वाले मकान में हम खड़े हैं और सामने का जो मकान है डी ब्लॉक के अंदर लक्ष्मी नगर में 365 नंबर ये मकान है, जिसपे एमसीडी के हथौड़े इस वक्त चल रहे हैं। पहले मंजिल पे जो एक्सटेंशन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये बालकनी बनाई गई है, रोड के ऊपर आप कह सकते हैं कि इसको वायलेशन में है, पूरा एक्सटेंशन जो बिल्डिंग का किया गया है और जो बिल्डिंग प्लान है उसका वायलेशन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से संभवतः ये एमसीडी का एक्शन शुरू हुआ है। ये वो इलाका है लक्ष्मी नगर का जहां पे बड़ी संख्या में छात्र भी रहते हैं, आसपास में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, सीए की पढ़ाई के लिए जाना जाता है लक्ष्मी नगर का पूरा इलाका, जहां पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी तो होती ही है लेकिन साथ साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा छात्र बड़ी संख्या में इस इलाके में रहते हैं। और ऐसे में मकानों का बनना और किराए पे जाना ये आम एक तरह से इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी है जो इस इलाके में चलती है, लेकिन वहां पे क्या किराए बढ़ाने के लिए मकानों का एक्सटेंशन और फिर जो वायलेशंस है वो सब कुछ चल रहा था एमसीडी की कार्रवाई, क्योंकि सत्यनिकेतन में एक पीजी गिरा उसके बाद एमसीडी नींद से जागी है। निश्चित रूप से जब ये मकान बना होगा, जब एक्सटेंशन बढ़ा होगा, इसके लिए कंस्ट्रक्शन का मटेरियल आया होगा।
1: शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

चारों ओर पानी ही पानी। गांव डूबे, घर डूबे, स्कूल डूबे, रास्ते डूबे और अब लोगों के सामने घर छोड़ने की मजबूरी बन गई। सितंबर का महीना चल रहा है और मानो बिहार पर बाढ़ का सितम लेकर आया है। ये बिहार के नौगछिया की तस्वीरें हैं, जहां मदरौनी इलाके में बाढ़ ने कहर मचाया है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं, स्कूल जलमग्न हैं और कई जगह घरों में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया है। करीब 20 दिनों से लोग बाढ़ के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। गंगा के फान के चलते कोसी का पानी आगे नहीं निकल पा रहा, लिहाजा पानी पीछे की ओर फैल रहा है और दर्जनों गांव इसकी चपेट में है। आवाजाही का एकमात्र सहारा अब नाव ही है। मुंगेर में भी हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी इलाकों के साथ अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया है। लोगों के सामने इलाज से लेकर रोजमर्रा की जरूरतों तक का संकट खड़ा है। बेगूसराय में भी बाढ़ से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। 5 नगर निगम वार्डों में पानी भरने के बाद बड़े पैमाने पर लोग पलायन कर रहे हैं। उधर सुपौल में कोसी नदी में नाव पलटने से 6 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। वहीं मनेर में नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नेताओं का दौरा भी जारी है। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ित के घर पहुंचे, वहीं सम्राट चौधरी ने सोनपुर पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लिया। बिहार में नदियां उफान पर हैं, गांव डूब रहे हैं और हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। अब चुनौती सिर्फ पानी से बचाने की नहीं बल्कि राहत और पुनर्वास की भी है। नौगछिया से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: बाद भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगा प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग।
1: चुनौतीपूर्ण समय में भारत के लिए जरूरी है चीन और रूस का साथ। इंडिया टुडे के ब्रिक्स राउंड टेबल में बोले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। आज तक पर दिन भर कूटनीति और रणनीति के दिग्गज।
0: संगरूर सुसाइड मामले पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप, प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। राहुल गांधी ने कहा वित्त मंत्री चीमा इस्तीफा दे।
1: ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देरी कर दी।

दिल्ली में सत्र निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के टावर तोड़ा एक्शन, दो दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियां सील, लक्ष्मीनगर में शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

0: बात अब पंजाब के संगरूर की, जहां नशे के सवाल पर चौतरफा घिरती हुई पंजाब की भगवंत मान सरकार दिख रही है। उनकी एक और बेशर्मी दरअसल सामने आई है। संगरूर में एक बुजुर्ग को सुसाइड करना पड़ गया और ऐसे में गांव में खुलेआम ड्रग्स की बिक्री के खिलाफ उस बुजुर्ग ने मान सरकार के मंत्री के खिलाफ आवाज उठाई। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या की।
1: इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की जगह अब मान सरकार इस मामले को रफा दफा करने में लग गई है। गुलजार सिंह के पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर वीडियो जारी किया है और आरोप लगाया है कि गुलजार सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने दबाव डालकर गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। परिवार ने आरोप लगाया कि वे अपनी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। परिवार ने कहा कि जब तक उन्हें गुलजार सिंह के मामले में इंसाफ नहीं मिलता, तब तक वे फूलों की रस्म और भोग की रस्म पूरी नहीं करेंगे।
2: बीते दिन जो बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, गुलजार सिंह का बेटा वो बेटा ही है, या मेरे दो भरा थे, मेरी माता जी ने बीते दिन जो सारे पंजाब में पता ही है भी बहुत माड़ी घटना हुई है। असी आही अपील करते हाँ थोड़े अगे भी, तो प्रशासन अगे भी जो जो साढ़े नाल धक्का होया तो साढ़े सातों धक्के मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया, मेरे भरा गुमराह करके तो संस्कार करवाया गया। असी यही अपील करते हैं, असी यही अपील करते हाँ भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असी ना तो ना ही
0: कमल जी संधू मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कमल जी, तब परिवार क्या मांग कर रहा है, क्योंकि अगर जबरन उनसे अंतिम संस्कार करवाया गया, उसके बाद वो पूरी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए, उसके बाद ये मामला संज्ञान में आया, अब क्या चाहता है परिवार?
3: संगरूर सुसाइड केस में एक नया मोड़ आया है, क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया है पंजाब के प्रशासन पे कि जबरन किया गया और उसी वजह से उन्होंने अंतिम संस्कार किया। पहले उनका बयान आया था कि कोई प्रेशर नहीं है, सरकारी नौकरी दी जा रही है और 24 घंटे के अंदर अंदर एक नया बयान आना अपने आप में। और विपक्षी पार्टियों ने एक बार फिर निशाना बनाया है आम आदमी पार्टी सरकार को और कहा है कि जबरन कराया जा रहा है और खास तौर पे पहले से ही ये परिवार प्रताड़ित है। गुलजार सिंह ने जब हरपाल चीमा से सवाल उठाए उसके बाद उसे प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से उसने सल्फास खा लिया। 7 सितंबर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया और उसी के बाद वहां पे हम दर्दी जताने की जगह उन्होंने कहा कि जबरन पोस्टमार्टम करा के उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया। अब वो कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी माने तो पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करके 4 अक्यूज को गिरफ्तार कर लिया है, एक अभी भी फरार है और आपको बता दें एक SIT भी फॉर्म कर दी गई है। लेकिन सवाल विपक्ष उठा रहा है, परिवार उठा रहा है, वो है हरपाल चीमा का, क्योंकि 2 वीडियोज बनाए गए थे, एक में बाकी अक्यूज का नाम था और एक में हरपाल चीमा का नाम लिया गया था और यहीं पर बात कॉम्प्लिकेट हो जाती है और सवालिया निशान अब आम आदमी पार्टी पर है। आपने देखा होगा कि पिछले समय में भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, उन्होंने विपक्ष पे सवाल उठाया और कहा है कि ड्रग्स अगर फैल रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी पहले की सरकारों की है और उसी वजह से उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नशा बेचेगा, चिट्टा बेचेगा तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन अब बात आ रही है कि किस तरह से यहाँ पे पूरा जो लास्ट राइट्स हैं, अंतिम संस्कार है, जिस तरह से कराए गए हैं उस पे ही सवालिया निशान हो गए और एक बार फिर आम आदमी पार्टी इसी पूरे मामले पे घिरती नजर आ रही है।
1: जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आइए जान लेते हैं कि इस मामले में भगवंत मान सरकार कैसे चौतरफा घिर गई है। देखिए रिपोर्ट।
4: चीमा भी जिम्मेवार है जी, गल का मेरी बहुत बार भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
5: गुलजार सिंह की आत्महत्या में घिरी मान सरकार, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग, पंजाब की सड़कों पर बीजेपी और कांग्रेस का हल्ला बोल, पंजाब के संगरूर से ड्रग्स के खिलाफ उठी आवाज की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। 50 साल के गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने पंजाब की मान सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलजार सिंह ने गांव में खुलेआम ड्रग्स बिकने का मुद्दा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने उठाया था, जिसके बाद उनके आत्महत्या की खबर आई। आरोप है कि उनको परेशान करके आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। बीजेपी ने गुलजार के मौत के पहले का एक वीडियो भी जारी किया है। गुलजार सिंह की आत्महत्या के बाद परिवार ने आरोप लगाया है कि उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके बाद गुलजार सिंह ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी थी। गुलजार सिंह की मौत के बाद बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोहाली में प्रदर्शन कर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग है।
6: आज भी वही हालात है, नशे के हर गांव में लोग मर रहे हैं, और अगर गुलजार जैसा भाई खड़ा होकर बोलता है दिड़बा के अंदर कि मेरे परिवार नशे के कारण परेशान है, आपकी सरकार ने मेरे लोगों के लिए क्या किया, तो उसके इतना प्रताड़ित किया जाता है कि उसको खुदकुशी करनी पड़ती है।
5: बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी एक दिन पहले मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर तुरंत कार्रवाई की मांग की थी।
7: उसके विरोध में हम चाहते हैं हरपाल चीमा इस्तीफा दे, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हरपाल चीमा के ऊपर, हरपाल चीमा को इस्तीफा देना चाहिए।
5: वहीं इस मामले में एक्शन लेते हुए पंजाब पुलिस ने सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है और आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस FIR में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम शामिल नहीं है। तो साफ है कि गुलजार सिंह आत्महत्या को लेकर अब पंजाब में सियासी घमासान और तेज हो गया है। मोहाली से कमलजीत संधु के साथ आज तक ब्यूरो।
4: एक पंचायत सरपंच भी मेरी बहुत जिम्मेवार है।
8: की सवाल किया जो ने?
4: मैं चिट्टे बारे सवाल किया था।
0: तो गुलजार सिंह के परिवार का ये आरोप है कि उनका अंतिम संस्कार जोर जबरदस्ती से करवाया गया। अब वो क्या मांग कर रहे हैं सुनिए।
2: मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया, मेरे भरा गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करते हैं भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असीं ना ही भोग पावांगे ना ही फुल चुकावांगे उन्होंने।
1: और अब आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की राजनीति की। BSP में जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। आज सुबह सुबह आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया। अशोक सिद्धार्थ पर आकाश आनंद को गुमराह करने के आरोप लगते रहे हैं, खासतौर पर मायावती की तरफ से। ऐसा लगा कि अशोक सिद्धार्थ के इस्तीफे से आकाश आनंद की मुश्किलें अब कम हो जाएंगी, मायावती उन्हें वापस पार्टी में अहम जिम्मेदारी देने के लिए राजी हो जाएंगी।
0: लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अशोक सिद्धार्थ राजनीति छोड़ने के फैसले को लेकर मायावती पर कोई असर नहीं हुआ। इससे बहन जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। नाराज मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से ही मुक्त कर दिया और ये कहा कि इस्तीफे में बहुत देर हो गई।
9: सोशल मीडिया एक्स पर इस नए पोस्ट ने BSP में नई खलबली मचा दी है। पहले जरा इस पोस्ट की चंद लाइनों को पढ़िए। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए हुए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। तो अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर सियासत से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अशोक सिद्धार्थ को शायद आप जानते होंगे, इनकी एक पहचान तो BSP नेता की है, लेकिन इससे ज्यादा अहम पहचान आकाश आनंद के ससुर की है। तो आखिर अशोक सिद्धार्थ ने इस्तीफा दिया क्यों? तो अशोक सिद्धार्थ पर आरोप था आकाश आनंद को बरगलाने का, उन्हें गुमराह करने का। इस पर अशोक सिद्धार्थ का कहना है, आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनसे मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। मान्य आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा? उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना यह आपका फैसला है। दरअसल मायावती ने इसी महीने की शुरुआत में आकाश आनंद को पार्टी पदों से हटा दिया था और ये शर्त रख दी थी कि जब तक अशोक सिद्धार्थ राजनीतिक जीवन से हट नहीं जाते उनकी पार्टी पद पर वापसी नहीं हो सकती। लेकिन मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के संन्यास को काफी नहीं माना है। एक्स पर मायावती ने लिखा है, पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है। तो मायावती आकाश आनंद के लिए बीएसपी के दरवाजे खोलने को फिलहाल राजी नहीं है। अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने से उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: तो आखिर मायावती आकाश आनंद से इतना नाराज क्यों है? बताया जा रहा है कि आकाश आनंद बीएसपी में बड़े स्तर पर बदलाव करना चाहते थे। वो कुछ पुराने पदाधिकारियों को बदलना चाहते थे जो कि मायावती के विश्वस्त रहे हैं। और इस सिलसिले में आकाश आनंद का एक बयान वायरल भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि इसी वायरल वीडियो की वजह से आकाश आनंद पर गाज गिरी। सुनिए उस वायरल वीडियो में आकाश आनंद ने क्या कहा था।
10: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुँचाने से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हैं? सही है। हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम करना चाहते हैं पर हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं। इस स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कई जगह बड़े हैं कई जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे। हम इसको दोबारा से बनाएंगे।
0: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, तो देखिए अब तो पूरी क्लैरिटी आ चुकी है कि अब अलगाव हो चुका है बुआ भतीजे का और ये जो इस्तीफा आया है ये भी अब भरपाई नहीं कर सकेगा। ऐसे में मायावती के लिए जो एक युवा विजन की राह थी वो कहीं ना कहीं मुश्किल दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरीके से वो युवाओं को टारगेट कर रहे थे आगामी चुनाव के लिए, अब उस पर एक तरीके से भट्टा बैठ गया है।
11: नहीं नेहा, देखिए आसान तो थी पहले, लेकिन आसान अभी भी इसलिए है क्योंकि अगर आकाश आनंद नहीं है तो मायावती के पास ईशान आनंद है, उन्हीं के छोटे भाई। तो जेंजी का जो फैक्टर है उसमें तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से मुक्त कर दिया है पार्टी से, जैसा कि मायावती ने कहा है, एक बात साफ है, मायावती ये मान गई है और उन्होंने इस बात को लिखा भी अपने पोस्ट में है कि आकाश आनंद का जो झुकाव था वो बहुजन मूवमेंट को और अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के बजाय अपने ससुर और अपने परिवार को लेकर था। और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, कांशीराम की विचारधारा की पार्टी है जहां अपने हित से पहले पार्टी का हित सोचा और समझा जाता है। अब अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद सबको ये लगने लगा कि हाँ, अब आकाश आनंद की राह आसान हो जाएगी, पद मिल जाएगा और कुछ दिन बाद शायद राष्ट्रीय संयोजक दोबारा बना दिए जाएंगे, जैसा कई दफा पहले हो भी चुका है। लेकिन एकदम उलट हुआ। मायावती ने एक ऐसा दांव खेल दिया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था और मायावती ने सीधे सीधे एक पंक्ति उसमें लिख दी अपने नवे पॉइंट में, अगर आप गौर करें कि आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त किया जाता है। इसका साफ इशारा है, लोग समझ जाएंगे इसको लेकर मायने क्या है। बड़ी बात यहां पर यह है कि ईशान आनंद के रूप में अब मायावती के पास एक युवा चेहरा भी है और कहीं ना कहीं एक जेंजी को फैक्टर को भी लेकर आगे चल सकते हैं, जो अब देखना यह होगा कि आकाश आनंद का अगला रुख क्या होता है।
1: जी समर, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात वंदे मातरम विवाद की करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के एतराज को लेकर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सीधा राहुल गांधी पर हमला बोला। नितिन नवीन ने राहुल गांधी को राहुल मियां कहकर संबोधित किया और कहा कि वो वंदे मातरम के महत्व को समझ नहीं सकते।

0: देश के में ऐसे भी दल के लोग हैं जो वंदे मातरम कहने में भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं राहुल मियां से कहता हूं मित्रों कि राहुल जी, आप वंदे मातरम का महत्व समझ ही नहीं सकते, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के महत्व को ही नहीं समझा, आपको तो विदेशी संस्कृति में ही पले बड़े हैं।
1: नितिन नवीन जी, राहुल गांधी पर बोलते बोलते आप उनकी पहचान पर उतर आते हो। राहुल मियां कहकर आप क्या साबित करना चाहते हो? यही तो आपकी राजनीति, भाजपा की राजनीति का असली चेहरा है। काम पर बात नहीं कर सकते, इसलिए नाम और पहचान पर हमला करो, ध्यान भटकाओ, राहुल गांधी को निशाना बनाओ। मगर आपका हिंदू मुसलमान वाला पुराना चुनावी प्लेबुक सामने आ गया। लेकिन याद रखिए कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी वो नेता है जो सड़क पर उतरकर बेटियों के न्याय के लिए खड़े होते हैं, युवाओं के रोजगार के लिए खड़े होते हैं, किसानों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। और आप हमें भारतीय संस्कृति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पहले अपनी भारतीय संस्कृति तो बताओ, क्योंकि आपकी संस्कृति संघ वाली है, भारत की नहीं।
2: एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU सोच बदलो और बैंक भी।
7: ये उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से छती चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिश हो चुकी है, नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें। इस पूरे विवाद में इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरे जगह ले जाना संभव है। अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सिंहस्थ से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों के आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: राम और रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है, आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं।

0: 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच 2 यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है। नाराज फूफा, हर काम पे सवाल। नाराज फूफा, हर प्रोग्रेस पे बवाल। नाराज फूफा। 12 साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है। इसकी जरूरत ही क्या है, जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा। नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है। बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
1: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पेवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
2: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है, और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो

7 साल बाद भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। चुनौतीपूर्ण समय में भारत के लिए जरूरी है चीन और रूस का साथ। इंडिया टुडे के ब्रिक्स राउंड टेबल में बोले नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत। आज तक पर दिन भर कूटनीति और रणनीति के दिग्गज। संगरूर सुसाइड पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप, प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। राहुल गांधी ने लिखा वित्त मंत्री चीमा इस्तीफा दे। ससुर अशोक सिद्धार्थ के सन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी। और दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियां सील। लक्ष्मीनगर में भी शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर में शुरुआत दिल्ली की खबर से। दिल्ली में आज भी एमसीडी का ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। बिल्डिंग प्लान का उल्लंघन कर इमारतों में अवैध निर्माण को तोड़ने का यह अभियान है। लक्ष्मी नगर के डी ब्लॉक में एक इमारत के अवैध निर्माण पर एमसीडी का हथौड़ा चला। देखिए संवाददाता अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।
1: सत्य निकेतन में जब पीजी गिरता है तो उसके बाद आपको एमसीडी का हथौड़ा इस तरह से बिल्डिंग प्लान में वायलेशन को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन स्थानीय लोग भी सवाल उठाते हैं इस पूरी कार्रवाई पे कि आखिरकार किसी हादसे के इंतजार में दिल्ली की अलग अलग एजेंसियां क्यों होती हैं, क्यों जब ये वायलेशन हो रहा होता है, जब बिल्डिंग बन रही थी, जब ये मटीरियल लाया जा रहा था, उस वक्त ही एमसीडी के जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स थे और जो बीट पुलिस ऑफिसर्स यहां पे हैं, उन लोगों द्वारा इस पूरे कंस्ट्रक्शन को तब क्यों नहीं रोका गया, ये अपने आप में सवाल है। अब हथौड़ा चलाया जा रहा है, ये ठीक उसी तरह से है कि आप कॉपी पे किसी चीज को लाइनों को लिख दे और फिर इरेजर से उसको मिटाने की कोशिश करे, तो वो कार्रवाई, इरेजर वाली कार्रवाई अभी फिलहाल दिल्ली में जगह जगह पे चल रही है। एमसीडी का ये डेमोलिशन एक्शन लक्ष्मी नगर में। विजय सहयोगी जगन्नाथ के साथ में अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: अब देखिए ऐसे समझिए, बीते 3 दिनों में एमसीडी ने 34 अवैध निर्माण दिल्ली में ध्वस्त किए, 17 संपत्तियों को सील किया और 1200 से ज्यादा पीजी के सर्वे का काम हो चुका है। ये एक्शन एमसीडी के सभी 12 जोन में हो रहा है। सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद अब एमसीडी ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है। 34 असुरक्षित इमारतें 3 दिनों में गिराई गई।
2: सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में, खासतौर पर अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के अशोक नगर, लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पांडव नगर, जगतपुरी, गीता कॉलोनी में कल जिस तरीके से एमसीडी का एक्शन देखने को मिला वो आज भी जारी है। दिल्ली के सत्य निकेतन हो, चाहे वो गांधी विहार हो, नेहरू विहार हो, मुखर्जी नगर, इन तमाम इलाकों के अंदर एमसीडी की टीम लगातार ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन और इसके अलावा अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन जो है वो कर रही है। एमसीडी की माने तो अगले कई दिनों तक इसी तरीके का ड्राइव जो है वो पूरी दिल्ली भर के अंदर जो है वो चलाया जाएगा। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया गया था कि 5 मंजिल से ज्यादा की जो इमारतें हैं उन पर एक्शन जो है वो लिया जाए और यही वजह है कि दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ, डेंजर बिल्डिंग के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में आज की बड़ी खबर, दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को दिल्ली आ सकते हैं। ब्रिक्स समिट के पहले दिन शी जिनपिंग 12 सितंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर होगी। ये मुलाकात पिछले साल एससीओ बैठक के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने बातचीत होगी। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं की गई है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि विदेश मंत्रालय की आज की ब्रीफिंग में आज कोई जानकारी दी जा सकती है और अगर जिनपिंग भारत आए तो करीब 7 साल बाद उनका यह भारत का दौरा होगा।
3: करीब 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने वाले। सबसे खास बात यह कि दोनों ही देशों के बीच में 2019 के बाद से ही कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन अब एक बार फिर से ब्रिक्स के मंच पर दोनों देश एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जिसमें ना सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर बातचीत होगी बल्कि एआई के बढ़ते प्रभाव और दोनों की साझेदारी को लेकर भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी।
0: दिल्ली के भारत मंडप में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है और दिल्ली में से लेकर जबरदस्त तैयारियां हो रही है और जबरदस्त तैयारियों के बीच G20 सम्मेलन के बाद दिल्ली में यह पहला बड़ा आयोजन है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स देशों के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगने वाला है।
4: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा से लेकर होटल से तक और साज सज्जा के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। चीन के राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति, ईरान के राष्ट्रपति समेत तमाम दूसरे बड़े नेता ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नेताओं से मुलाकात करेंगे और भारत मंडपम में ये शिखर सम्मेलन एक बार फिर इस बात की याद दिलाएगा कि कैसे लगातार भारत बदलते वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इन देशों की आवाज बन रहा है और साथ ही इन देशों के साथ मिलकर विकासशील पथ पर आगे बढ़ रहा है। शी जिनपिंग के अलावा राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है और इस लिहाज से इस सम्मेलन को बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर मध्य एशिया में जिस तरह से तनाव बरकरार है, रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध और तमाम इसी तरह के वैश्विक मुद्दों को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
0: तो वहीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं आज तक संवाददाता अंशुल सिंह।
5: 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सुरक्षा की तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। नई दिल्ली इलाके को पूरी तरीके से अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो एडवांस सिक्योरिटी टीम है वो भी अब दिल्ली आ चुकी है और दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठ करके आगे की सुरक्षा की रणनीति बनाई जा रही है। कल से ही यानी 11 सितंबर से ही नई दिल्ली इलाके में जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें लगा दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी भी जारी की है जिसमें ये बताया गया है कि नई दिल्ली के आने वाले आसपास के 22 सड़कों पर डाइवर्जन कर दिया गया है, यानी कि जिन लोगों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी जाना है उनके लिए भी कई रास्ते बंद हो सकते हैं। इसलिए जो भी लोग कल दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश करेंगे या नई दिल्ली में आने की कोशिश करेंगे उन्हें कल से 13 तारीख तक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें ट्रैफिक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा।
0: बीएसपी की बात करते हैं, बीएसपी में जबरदस्त नाटकीय घटनाक्रम चल रहा है। आज सुबह सुबह आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लिया। अशोक सिद्धार्थ पर आकाश आनंद को गुमराह करने के आरोप लगते रहे हैं। अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बाद मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त कर दिया। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ की राजनीति छोड़ने पर कहा देर आए दुरुस्त आए। बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद पर भी निशाना साधा, कहा है कि अगर आकाश आनंद पार्टी और मूवमेंट के हितों में इससे ज्यादा पार्टी और हितों के जो मूवमेंट है उनके हितों से ज्यादा पारिवारिक रिश्तों को महत्व देते हैं तो वो डबल माइंड होकर बीएसपी का भला कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी से पूरी तरह मुक्त कर दिया। लगे हाथ उन्होंने बीएसपी कार्यकर्ताओं से विरोधियों के सभी राजनीतिक हथकंडों का मुकाबला करते हुए 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने की अपील की है।
6: बहुजन समाज पार्टी के भीतर चल रहे सियासी ड्रामे पर आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने आखिरी कील ठोक दी है। ससुर अशोक सिद्धार्थ के भावुक संन्यास के बाद भी मायावती ने ये साफ कर दिया है और आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त कर दिया है। अशोक सिद्धार्थ के जान दे दूंगा वाले बयान का जवाब मायावती ने देरी कर दी से किया है। कहीं ना कहीं आकाश आनंद की जर्नी अभी तक एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, जहां उन्हें कभी अपरिपक्व बताकर हटा दिया जाता है तो कभी वापस ले लिया जाता है। आसान भाषा में कहें तो कुल मिलाकर अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती का रुख नरम नहीं हुआ और जो उम्मीदें आकाश आनंद की वापसी की जताई जा रही थी वो भी मायावती ने खत्म कर दी हैं।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पंजाब से। संगरूर में सुसाइड करने वाले गुलजार सिंह के पूरे परिवार ने एक साथ बैठक बनाकर एक वीडियो जारी किया है और यह आरोप लगाया कि गुलजार सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन की ओर से दबाव बनाया गया। परिवार यह कह रहा है कि प्रशासन ने दबाव डालकर गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार करवाया। यह भी आरोप परिवार ने लगाया कि वो अपनी इच्छा के अनुसार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।
7: संगरूर सुसाइड केस में गुलजार सिंह के मामले में एक नया मोड़ आया है। परिवार का अब बड़ा दावा है कि प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उसके बाद ही उन्होंने अंतिम संस्कार किया है। इससे पहले आपको बता दें कि सितंबर 7 को सल्फास खाने के बाद गुलजार सिंह की मृत्यु हो गई। पूरा मामला वो है कि जहां पे उन्होंने कहा कि चिट्टा यानी ड्रग्स अभी भी लगातार पंजाब में बिक रहे हैं। उनका ये भी दावा था कि उनका खुद का बेटा है जिसने प्रॉपर्टी बेची और उसी के चक्कर में उनको बहुत नुकसान हुआ। जब ये सवाल उन्होंने हरपाल चीमा जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे उठाए उसके बाद उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उन्होंने सल्फास की गोली खा ली, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बीच में हमने देखा कि किस तरह से दाव पेच लगे। विपक्षी पार्टी है राहुल गांधी, बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल लगातार आवाज उठा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। आम आदमी पार्टी का कहना था कि राजनीति की जा रही है लाशों पर और ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: अब 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पश्चिम बंगाल से। क्या मायावती नंदीग्राम से विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं बता रहे हैं आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा।
8: दो हिस्सों में बटी तृणमूल कांग्रेस के रितोब्रतो खेमे ने अब ममता बनर्जी के लिए नई मुसीबत या यूं कहें कि नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। दरअसल अगले महीने नंदीग्राम असेंबली सीट का उपचुनाव होना है, ऐसे में नामांकन भरने हैं। वहीं रितोब्रतो खेमे की ओर से कहा गया है, खासतौर पर मदन मित्रा और एक दो नेताओं ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती हैं तो वो अपना उम्मीदवार नहीं देंगे और ममता बनर्जी को पूर्ण समर्थन दिया जाएगा। ऐसे में ये कश्मकश की स्थिति हो गई है अब ममता बनर्जी के लिए। हालांकि ममता बनर्जी या ममता के खेमे के किसी भी नेता का अभी तक इस ऑफर या चुनौती पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एक कवायद जरूर शुरू हो गई है कि क्या ममता बनर्जी फिर से नंदीग्राम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, और इस पर अभी सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
0: और अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो है मुंबई से। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के पास एक कथित अवैध मस्जिद को लेकर राजनीति गर्मा गई है। MMRDA ने एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पत्र भेजकर इस अनाधिकृत ढांचे के खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई करने और इसे हटाने के निर्देश दिए हैं।
9: भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया ने एक मुद्दा सामने लाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई एयरपोर्ट के पास मुंबई एयरपोर्ट की जमीन पर एक मस्जिद बनी है जो सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा के हिसाब से वहां पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए था, लेकिन पिछले 10 सालों से ये मस्जिद वहां पर है, जिसको लेकर किरीट सोमैया ने शिकायत की थी। और आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर वो फॉलोअप कर रहे थे, और आज MMRDA ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी से इस मस्जिद को हटाने की मांग की है। MMRDA ने कहा है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी। साथ ही किरीट सोमैया ने यह भी मांग की है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए जिन लोगों ने मदद की, जो अधिकारी इसमें शामिल थे, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
10: मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध मस्जिद लैंड जिहाद के ऊपर अब महाराष्ट्र सरकार के MMRDA ने मुंबई एयरपोर्ट कंपनी को नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा इस प्रकार की मस्जिद को अनुमति दी नहीं गई है, यह अवैध है और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश मुंबई एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड को दिए गए हैं।
0: और आइए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में पानी की टंकी गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। अब हादसा हुआ, हादसे के बाद NDRF की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 2 मजदूरों की मौत तब तक हो चुकी। तो ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पानी की टंकी है जो कि रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में थी, और ये पानी की टंकी ध्वस्त हो जाती है जिसमें 2 मजदूर वहां जो काम कर रहे होते हैं उनकी जान चली जाती है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर तक चलाया गया, JCB की मदद से इस मलबे को हटाया गया। बारिश हो रही थी तो ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आई।
11: दिल्ली से लेकर रांची तक इमारत ढहने या कोई स्ट्रक्चर के गिरने से लोगों के मौत की खबर जो है वो लगातार सामने आ रही है। बेहद दुखद घटना रांची में भी घटी है। इस वक्त जो है कोतवाली थाना इलाका जो है उसके जस्ट पीछे जो है, पीछे का यह इलाका है जहां पे पेयजल स्वच्छता विभाग का यह कैंपस है, यांत्रिकी विभाग का, और यहां पे ये काम चल रहा था। पुराना यहां पे ओवरहेड टैंक था, पानी की टंकी थी और उसको जो है डेमोलिश किया जा रहा था। यहां आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ भी है, अगर देखें गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये जो है लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिसमेंटलिंग का काम जो है वो चल रहा था। और इसी बीच जो मजदूर लगे हुए थे इस काम में वो काम कर ही रहे थे कि ये टंकी जो है, पानी टंकी अचानक से भरभरा कर गिर जाती है, 2 मजदूर मलबे में दब जाते हैं और उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है।
0: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली खबर गुजरात से। गांधीनगर के कूड़ासन इलाके में कल रात निर्माणाधीन बिल्डिंग का स्लैब गिरने से अफरा तफरी मच गई। अब राहत की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के मुताबिक मलबे में फंसे सभी 15 लोगों को निकाल लिया गया।
12: गांधीनगर के कूड़ासन में बीती रात एक बेहद भयावह हादसा हुआ जहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है मजदूर काम कर रहे थे और उस वक्त
13: जो निर्माणाधीन ये बिल्डिंग है उसका स्लैब गिरा, ये वो स्लैब था जो गिरा और यहाँ पे जो मजदूर थे वो मजदूर जो है वो दबे थे, करीबन 15 मजदूर थे जिनको प्रशासन ने जो है वो बचा लिया, सभी का सफल रेस्क्यू किया गया, 3 लोग तो स्वस्थ है जिनको अस्पताल से तुरंत ही जो है छुट्टी दे दी गई, 12 लोगों का अभी इलाज चल रहा है, 2 या 3 लोग आईसीयू में है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संधू भी पूरी रात यहाँ पे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशासन ने इतनी तेजी से काम किया जिसकी वजह से सभी को जो है वो हम जिंदा बचा पाए, कि चारों की देरी हो जाती तो ये जो आज कैजुअलिटी नहीं हुई है वो आंकड़ा बढ़ सकता था, तो इसलिए प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने कहा। पर सवाल वही है कि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह हुआ और इसकी वजह क्या रही, क्यों ये बिल्डिंग का स्लैब टूट गया, तो ये जो सारे सवाल हैं वो अभी भी हैं। पर प्रशासन का कहना है कि पहली प्राथमिकता थी लोगों को बचाना, उसके बाद उनको सही इलाज देना और उसके बाद जांच की जाएगी कि कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है और फिर उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रशासन के रात की बात यही है कि सभी 15 मजदूरों को जो है वो सफलतापूर्वक जो है बचा लिया गया, सफल रेस्क्यू हुआ और कोई भी कैजुअलिटी अभी नहीं हुई है। गांधीनगर से कैमरा सलाम के साथ ब्रजेश दोषी आज तक।
0: तो दिल्ली में बिल्डिंग, झारखंड में पानी की टंकी और गुजरात में स्लैब गिरने की खबर के बाद अब बात बिहार की बाढ़ की करते हैं और रोहित सिंह की खगड़िया से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: और अब वो खबर जिसका इंतजार आईफोन के दीवाने काफी समय से कर रहे थे। एप्पल का आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स लॉन्च हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है इसकी कीमत, स्टोरेज और नए फीचर्स की।
1: मैं आपको एक एक्सक्लूसिव लुक दे रहा हूं नए आईफोन 18 प्रो मैक्स का, जो कि एक नए कलर्स में लॉन्च हुआ है। मेरे पास, मैंने आपको बगंडी कलर दिखाया था, ये है एक सिल्वर कलर जो कि एक नया वेरिएंट है। अब प्रो और प्रो मैक्स जो 17 प्रो सीरीज था काफी ज्यादा मिलता जुलता है डिजाइन के मामले में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आपको डिजाइन खराब नहीं लगा तो फिर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब कुछ कुछ चेंजेस जो कि आप इस फोन में देखे गए हैं वो है इसके मेन कैमरा में, जो कि अब एक 48 मेगापिक्सल का वेरिएबल एपर्चर के साथ आता है, जो कि फोटोग्राफी को थोड़ा और यूनिक बनाता है। इसके आगे आप देखेंगे जो डायनामिक आइलैंड है उसको और छोटा कर दिया गया है, और ये मल्टीपल एप्लीकेशंस को साथ में डिस्प्ले कर सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल जो चेंजेस हुए हैं, इंक्रीमेंटल चेंजेस है इस डिवाइस में, प्रो और प्रो मैक्स जो कि तीन फोन लॉन्च हुए हैं। मैंने आपको आईफोन ड्यूओ भी दिखाया जो एक फोल्डेबल फोन है, लेकिन ये प्रो मैक्स मॉडल इंडिया में बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर की बात करेंगे, बीजेपी के प्रभारियों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। जो मोर्चा प्रभारी है इसमें महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और अलग अलग जो मोर्चे होते हैं उनका प्रभारियों का ऐलान किया गया है। हरीश द्विवेदी बीजेपी के युवा मोर्चा प्रभारी बनाए गए हैं, तो इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी बीजेपी की महिला मोर्चा प्रभारी बनाई गई है। यह बड़ी खबर आपको बता, संजय भाटिया को बीजेपी के एससी मोर्चा प्रभारी बनाया गया है और सतीश पुनिया एसटी मोर्चा प्रभारी, लाल सिंह आर्या किसान मोर्चा के प्रभारी बनाए गए हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी?
2: ठीक है, अच्छे गुजरे में ये सारे नामों के ऐलान जो है काफी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है वो कर दिए जाएंगे, क्योंकि जितने मोर्चे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के लिए जो है जनरल सेक्रेटरी और सीनियर जो लीडर होते हैं उनको उनका प्रभारी बनाया जाता है, यानी कि उसके जो कार्यक्रम है उसकी जो रूपरेखा है कैसी रहेगी, क्या सारी चीजें हैं उनसे कंसर्न जितने चीजें होती हैं वो उन प्रभारियों के साथ डिस्कस होती है। तो युवा मोर्चा पे हरीश द्विवेदी जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, महिला मोर्चा की जो प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी जो पूर्व में जो है वो महामंत्री भी रह चुकी हैं पार्टी की और आंध्र प्रदेश से सांसद है और आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष रह चुकी है। एससी मोर्चा पे संजय भाटिया सांसद है उनको बनाया गया है। ओबीसी मोर्चा बिजेंद्र पांडा पार्टी के उपाध्यक्ष थे उनको बनाया गया है। किसान मोर्चा लाल सिंह आर्या को दिया गया है उसके वो प्रभारी रहेंगे। एससी मोर्चा सतीश पूनिया जो भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है उनको, और अल्पसंख्यक मोर्चा गजेंद्र पटेल जो पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको उनका।
0: हिमांशु ये बताइए कि इन नामों का जो चयन हुआ है किस गुणागणित पर हुआ है और क्या लक्ष्य आगे साध कर बीजेपी चल रही है नामों के पीछे?
2: देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जो मोर्चे हैं उनके लिए पार्टी के सीनियर नेताओं को लगाया जाता है, जिस तरीके से पार्टी के जो सीनियर नेता हैं उनकी जो कार्य उनके पास विभाग रहे हैं उनके जिम्मेदारी रही है उसको देखते हुए ये जिम्मेदारियां जो है वो पार्टी आलाकमान लगाती है। तो युवा मोर्चा में जो है हरीश द्विवेदी लंबे समय तक रहे हैं, चाहे वो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हो या उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो यूपी के जो उत्तर प्रदेश का युवा मोर्चा था उसके अध्यक्ष रहे हैं। महिला मोर्चा में डी पुरंदेश्वरी रही हैं और पार्टी की महासचिव रही हैं। एससी मोर्चा जो है पार्टी का एक बड़ा विंग है उसमें संजय भाटिया को लगाया गया है। संजय भाटिया जो है वो राज्यसभा सांसद हैं, उसके साथ साथ पार्टी के संगठनात्मक जो चुनावी दृष्टि है उससे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा में हो। इसके साथ साथ जो है किसान लाल सिंह आर्या को जो है किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया, इससे पहले जो है वो राजकुमार चाहर उनको बनाया गया था। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उन नेताओं को देती है जिसमें उन्होंने कार्य उस कार्य क्षेत्र में काम किया हो।
0: तो आने वाले वक्त में बीजेपी को मजबूत भी करना है, चुनाव भी है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी यहां पर की गई है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और यहां वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: GK Max.
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: GK Max. Best पुट्टी?
4: JK Wall Max.
2: Best paint?
5: JK Max.
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with
5: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर, दिन भर सिर्फ आज तक पर।

बरेली में दिशा बैठक के दौरान राहुल गांधी से भिड़े बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, वीडियो वायरल। बैठक में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट पर हुई बहस। दिनेश प्रताप ने कहा, आपको योजना की जानकारी होनी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि सांसद को किसी भी योजना के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है। हापुड़ में हुए दलित युवक की हत्या पर छिड़ा सियासी घमासान, एसपी सांसद रामजी लाल सुमन को पुलिस ने गांव के बाहर रोका, जवाब में समाजवादी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सपा का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ, साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा, बताया तानाशाह। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजा आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल किया, ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली राहत। मायावती ने पहले आकाश आनंद से कहा था कि अगर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ संन्यास ले लेते हैं तो वो भतीजे को बीएसपी में पद देंगी, लेकिन इसके बाद भी निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर भी मायावती ने प्रतिक्रिया दी, कहा जो फैसला लिया उसमें बहुत देर कर दी लेकिन अंततः सही निर्णय लिया। मायावती ने तंज भरी लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अगर दामाद की चिंता होती तो पहले ही संन्यास ले लेते। बीएसपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि आकाश पार्टी से ज्यादा परिवार को तरजीह दे रहे थे और डबल माइंड होकर काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के निर्देश दिए थे। आज लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग शुरू होगी। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अखिलेश यादव कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत और जारी है। राहुल गांधी के रायबरेली के दौरान मंथन होगी। हापुड़ में दलित युवक की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं बीजेपी की हताशा बढ़ रही है। हरदोई में बाढ़ का कहर, गंगा राम गंगा में उफान, गांव में घरों में पानी घुसा, कई गांव टापू बन गए। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने जायजा लिया, पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचाई। बाराबंकी में इमारत घाघरा नदी के तेज जलस्तर के चलते पानी में समाई, शिव मंदिर भी कटान के चलते बहा। बाराबंकी में डीएम ने बताया कि जिनका घर नदी के कटान में बह गया है उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी देर की बारिश से हुआ जल भराव, पानी से लबालब हुए निचले इलाके। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर की गई पार्किंग। नोएडा में 16 मिनट में पहुंचा आर्मी अफसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान, मरकर भी अफसर ने दे गए नई जिंदगी। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा से खेप लाकर महंगे दाम पर बेचती थी महिला, गिरफ्तार। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे से शादी का सर्टिफिकेट, सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश की चुनावी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। दोनों ओर से सीटों के ऑफर और डिमांड को लेकर शुरुआती आंकड़े सामने आए। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 85 से 88 सीटें ही देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने कम से कम 105 से 115 सीटों की डिमांड रखी है। राहुल गांधी के रायबरेली दौरे पर इस बातचीत को आगे बढ़ने के आसार थे, लेकिन दोनों ही दलों की ओर से ऐलानिया तौर पर ऐसी कोई बात नहीं बताई जा रही। पार्टी के सूत्रों ने आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव से क्या फॉर्मूला शेयर किया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: आ चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी प्रचार शुरू कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस का पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस के नेता परेशान हैं कि समाजवादी पार्टी जल्दी ही उनकी सीट क्लियर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने घोषित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रचार की शुरुआत पिछले हफ्ते ही कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क शुरू भी कर चुके हैं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 2012 से 2017 के विकास कार्यों को जनता के सामने बताया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश से दिल्ली तक के नेता परेशान हैं कि उनकी सीटें क्लियर क्यों नहीं हो रही,
1: और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी होना है उसे तुरंत कर करके जल्दी से हमें मैदान में निकलना चाहिए। बीजेपी हमसे आगे ना निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है, हवा के अंदर बीजेपी नहीं आ रही है, तो हमें सब चीजों को फाइनल कर करके निकलना चाहिए, रोड मैप तैयार करके हमें आगे बढ़ना चाहिए।
0: कांग्रेस की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आखिरी फैसला तो नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की खबर है कि बातचीत शुरू हो चुकी है।
2: एक तरफ कांग्रेस तकरीबन 105 से 115 सीटों की बात कर रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी 85 से 88 सीटें देने की बात कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के नेता अमेठी रायबरेली पहुंचते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। एक चर्चा ये भी कहीं चलती है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो पूरे 80 लोकसभा सीटों में तकरीबन अगर 6 लोकसभा सीटें छोड़ दी जाए जो कि कांग्रेस के पास हैं, उसके अलावा 74 पर वो सीधे सीधे एक एक प्रत्याशी को देना चाहते हैं।
0: सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि वो कांग्रेस पार्टी को जीती हुई 6 लोकसभा सीटों पर 2-2 सीट यानी कुल 12 सीट के अलावा बची 74 लोकसभा सीटों पर एक एक सीट यानी कुल 86 सीट देना चाहती है। लेकिन कांग्रेस की मांग है कि 74 लोकसभा सीटों में एक एक सीट के अलावा अमेठी जिले में 4 और रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों के साथ साथ अलग अलग जिलों में 20 सीटें यानी कम से कम 105 सीटें चाहिए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि समाजवादी पार्टी अमेठी और रायबरेली में सारी सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहती।
2: रायबरेली और अमेठी की वो सीटें वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर कांग्रेस लड़ना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं रायबरेली की फिर वो सीट चाहे वो अमेठी की हो या इसके अलावा रायबरेली की सीट हो, उन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहले जो चाहे वो राकेश प्रताप सिंह रहे हो या फिर इसके अलावा मनोज पांडे रहे हो, समाजवादी पार्टी में जिन सीटों से लड़ते थे वो सीटें समाजवादी पार्टी अपने में खेमे में लेकर जीतना चाहती है।
0: रायबरेली की 6 विधानसभा सीटें यानी बछरामा, हरचंदपुर, रायबरेली, सलोन, सरेनी और ऊंचाहार, और अमेठी की 4 विधानसभा सीटें तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। दोनों दलों के सूत्र बताते हैं कि अभी बातचीत शुरुआती चरण में है, जिसमें दोनों दल अपनी अपनी सीटें बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंतरिक बैठक में नेतृत्व के सामने 150 से ज्यादा सीटों की लिस्ट दी है। कांग्रेस का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी 62 सीटें लड़कर 37 सीटें जीती और कांग्रेस 17 लड़कर 6 जीती, तो उस जीत में समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी 60% और कांग्रेस की हिस्सेदारी 35% थी। इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस ने करीब 150 सीटों की लिस्ट तैयार की है, लेकिन खबर है कि 120 से 107 सीट के बीच कांग्रेस सीटों पर अड़ सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: तो आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दौरे की। यूपी में सभी दलों का चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है सिवाय कांग्रेस पार्टी के। अब इस बीच राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। अब इस बैठक में क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं।
4: रायबरेली में राहुल गांधी के स्वागत के लिए कांग्रेस के समर्थकों में बहुत उत्साह था। सड़क किनारे से लेकर जनता दरबार में मुलाकात तक के लिए लोगों के बीच जबरदस्त होड़ मची हुई थी। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी रायबरेली में एक महत्वपूर्ण बैठक में भी शामिल होने पहुंचे थे।
5: मैं ये समझना चाहता था एग्जैक्टली क्या है इस स्कीम का, मेरे मुताबिक बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, मैं समझना चाहता था कि क्या।
4: जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे राहुल गांधी मीटिंग की अगुवाई कर रहे थे, तभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को लेकर उन्होंने अधिकारियों से सवाल पूछ डाला। इस पर बीजेपी के विधायक दिनेश प्रताप सिंह ने आपत्ति जताई।
6: क्या इस सदन के अध्यक्ष को भारत सरकार की उन योजनाओं जिनका अनुसरण करने के लिए लाइब्रेरी में उपस्थित हैं, क्या उनको खुद की इसकी जानकारी दें? मैं समझता हूँ कि इसकी मैं ये समझना चाहता था एग्जैक्टली क्या है इस स्कीम का, मेरे मुताबिक बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, मैं समझना चाहता था कि क्या होगा।
4: केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर उठे सवाल पर तकरार इतनी बड़ी कि अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा और दिनेश प्रताप सिंह के बीच चेयर और सदस्य के अधिकारों को लेकर बहस होने लगी। इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक दिनेश प्रताप सिंह से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, सुनाते हैं।
7: किस बात को लेकर नोकझोंक हुई है, क्या मामला था, वो लगातार गड्ढों की तस्वीरें दिखा रहे थे?
8: देखिए, गड्ढों की तस्वीरें जो दिखा रहे थे वो तो केवल उनका पीछे से कोई आदमी एक तस्वीर दे देता था, उस पर कुछ लिख देता था कि इसकी चर्चा कर लो, और अपने फोटोग्राफर से उसकी फोटो खिंचवा रहे थे।
7: गांधी को आपने क्या जवाब दिया था राहुल गांधी को?
8: देखिए, राहुल गांधी जी जब उन्होंने ऐसा कहा कि इसकी योजना बताओ, तो मैंने कहा राहुल गांधी जी इसकी योजना का अनुसरण करने आप आए हो तो पहले तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या खाक इसकी योजना का अनुसरण कर पाओगे जब आपको जानकारी नहीं इसमें क्या होता है। तो मुझे इस बात से दुख हुआ कि राहुल गांधी जी को कोई जानकारी इसकी नहीं होती है।
7: अब उनका आया पलट कर जब आपने उनसे कहा कि आपको जानकारी,
8: उन्होंने कहा नहीं मैं इसमें यह जानना चाहता हूं कि इसमें प्रचार पे कितना खर्च होता है। तो हमने कहा पहले तो आप ये देना चाहिए कि रायबरेली की बहनों बेटियों तक इस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला, इस पे अनुसरण करना चाहिए। आप इस पे तो जा नहीं रहे हो, आप तो सरकार की खामी खोज रहे हो ढूंढ के कहां मिल जाए हम उसको उजागर।
7: कोई जवाब
8: उनका इस पर कोई जवाब नहीं, जवाब देने लायक राहुल गांधी होते ही नहीं, उनको कोई जानकारी इसकी हो ही नहीं सकती तो जवाब क्या देंगे।
4: दरअसल राहुल गांधी इस बैठक में सड़कों की खस्ताहाल होने के मुद्दे को बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के विधायक दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं राहुल की कोशिश सिर्फ सरकार को बदनाम करने की होती है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की सीट शेयरिंग की बात अभी सुलझी नहीं है, और इस बीच समाजवादी पार्टी की एक और मुश्किल रैलियों को लेकर बनी हुई है। अखिलेश की चुनावी रैलियां ही शुरू नहीं हो पा रही हैं। हालांकि लखनऊ के दफ्तर में अखिलेश बहुत एक्टिव हैं, तमाम बैठकें और रणनीतियां लखनऊ में बन रही हैं, आसपास के दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लखनऊ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लखनऊ से बाहर प्रचार करने की कोशिश अखिलेश ने सहारनपुर में की थी, लेकिन बहुत से सियासी वजहों से समाजवादी पार्टी की वो रैली सहारनपुर में नहीं हो सकी। अब कल यानी 11 तारीख को अखिलेश यादव बुलंदशहर में रैली करना चाहते थे, लेकिन वहां हेलीपैड उतरने लायक नहीं है। अखिलेश ने बुलंदशहर हेलीपैड की तस्वीर साझा करके आरोप लगाया है कि प्रशासन किसी न किसी बहाने से उनकी रैली नहीं होने देना चाहता, इसीलिए हेलीपैड पर सीमेंट गारा और पेवर ब्लॉक से दिखाकर कार्यक्रम रद्द करने का बहाना तलाश रहा है। अखिलेश ये भी तंज करते हैं कि सड़क से भी जाना मुश्किल है क्योंकि वहां सड़कें चलने लायक नहीं है।
9: 36 बिरादरी के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी को पहले सहारनपुर की रैली कैंसिल करनी पड़ी और अब बुलंदशहर की रैली कैंसिल करनी पड़ी। अखिलेश यादव जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसकी चौधराहट चलती है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और उस चौधरी परिवार का आपने अपमान करने की कोशिश की जिस चौधरी परिवार ने आपके परिवार को ABCD सिखाने का काम किया। आप समाज को बांटने का काम करेंगे अपमान करके, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। AC ऑडिटोरियम में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, चुनाव के अंदर जनता के बीच जाना पड़ता है, और गांव का किसान लठ लेके बैठा है अपने मान सम्मान का हिसाब लेने के लिए। आइए 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है आपसे जवाब मांगने के लिए कि किस तरीके से आपने पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का काम किया है, और निरंतर आपके द्वारा जिस तरीके से चौधरी परिवार का अपमान करने का नाकाम कोशिश की जा रही है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: देखिए, समाजवादी पार्टी की एक और शिकायत हापुड़ में हुई घटना को लेकर है, जिसका विरोध उन्होंने सोशल मीडिया पर जताया है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए एक वीडियो डालकर आरोप लगाया है कि हापुड़ के बदनौरी इलाके में दलित युवक की गोली मारकर हत्या के बाद जब समाजवादी नेता मृतक के परिवार से मिलने जा रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें जाने से रोक दिया। अब इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अखिलेश ने डाला है, जिसमें रामजी लाल सुमन और पुलिस अफसर के बीच धक्का मुक्की होती दिख रही है। दर्शकों को देखिए, ये बता दें कि यूपी के हापुड़ जिले के बदनौली गांव में 4 सितंबर को पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच भीषण खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें जमकर पथराव हुआ, जमकर फायरिंग हुई थी और इस दौरान लाठी डंडे चले थे। घरों से पथराव हुआ और गोलियां भी चलाई गई। हिंसा में एक महिला समेत 4 से 5 लोग घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों को गंभीर चोटें आईं। गोलीबारी में दीपक नाम का दलित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी और गुर्दे में गहरी चोटें आई थी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान 6 सितंबर को दीपक की मृत्यु हो गई थी। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। और खबर यह है कि एन चुनाव से पहले बीएसपी अंदरूनी सर्जरी से गुजर रही है। पहले मायावती ने भतीजे आकाश से पार्टी के पक्ष ही ने, फिर आकाश के ससुर के राजनीति से संन्यास की शर्त रखी, फिर संन्यास के बावजूद आकाश को पार्टी से निकाल दिया। अब आकाश का क्या होगा, ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया है।
10: सोशल मीडिया एक्स पर इस नए पोस्ट ने बीएसपी में नई खलबली मचा दी है। पहले जरा इस पोस्ट की चंद लाइनों को पढ़िए। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए हुए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूँ। तो अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर सियासत से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। अशोक सिद्धार्थ को शायद आप जानते होंगे, इनकी एक पहचान तो बीएसपी नेता की है, लेकिन इससे ज्यादा अहम पहचान आकाश आनंद के ससुर की है। तो आखिर अशोक सिद्धार्थ ने इस्तीफा दिया क्यों? तो अशोक सिद्धार्थ पर आरोप था आकाश आनंद को बरगलाने का, उन्हें गुमराह करने का। इस पर अशोक सिद्धार्थ का कहना है, आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनसे मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। मान्य आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। दरअसल मायावती ने इसी महीने की शुरुआत में आकाश आनंद को पार्टी पदों से हटा दिया था और ये शर्त रख दी थी कि जब तक अशोक सिद्धार्थ राजनीतिक जीवन से हट नहीं जाते उनकी पार्टी पद पर वापसी नहीं हो सकती। लेकिन मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के संन्यास को काफी नहीं माना है। एक्स पर मायावती ने लिखा है, पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो वो स्वतंत्र हैं। अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है। तो मायावती आकाश आनंद के लिए बीएसपी के दरवाजे खोलने को फिलहाल राजी नहीं है। अशोक सिद्धार्थ के राजनीति से संन्यास लेने से उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। समर श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: मायावती ने आकाश आनंद के ससुर को राजनीति से संन्यास दिला दिया, आकाश आनंद को पार्टी से मुक्त कर दिया। लेकिन क्या जल्द ही मायावती आकाश को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं? इसकी संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि बीएसपी सूत्रों के मुताबिक इस बार की चुनावी रणनीति जेंजी के इर्द गिर्द बनाई जा रही है। उसी सिलसिले में पार्टी में नौजवान पीढ़ी के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।

सीएम योगी जुलाई से सितंबर के एक हफ्ते के अंदर यूपी के 43 से अधिक जिलों में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं, तो 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी

0: यूपी के चुनाव में बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान मायावती ने काफी पहले कर दिया है। यूपी के जिले जिले पार्टी के कार्यक्रम जोर शोर से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल से लेकर तमाम पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक रणनीति बीएसपी ने जेन जी को लेकर भी बनाई हुई है। यूपी में बीएसपी की जेन जी की प्लानिंग के चार चेहरे तय दिख रहे हैं। इसमें से एक है मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद, दूसरे हैं विश्वनाथ पाल के बेटे जितेंद्र पाल, तीसरे हैं सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा और चौथे हैं दिवंगत बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह के बेटे यूकेश सिंह। दिलचस्प ये है कि बीएसपी के ये चारों चेहरे यूपी की राजनीति में जात की बात वाले फैक्टर पर फिट बैठते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और दलित चारों वर्गों से एक एक युवा चेहरे को पार्टी में शामिल किया गया है।
1: बहुजन समाज पार्टी में अगर हम बात करें तो ईशान आनंद के रूप में एक बड़ा चेहरा उभर रहा है, जिसको जेंजी के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे में इन चार युवाओं के जरिए ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और क्षत्रिय वोट बैंक पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, साथ ही साथ जेंजी का चेहरा भी आगे कर रही है, जो विधानसभा में देखने वाली बात होगी कितना बड़ा वोट बैंक हासिल करती है।
0: इनमें से सभी चेहरे पिछले कई दिनों से पार्टी के आयोजनों और सम्मेलनों में नजर आ रहे हैं। खासकर उमा शंकर सिंह के बेटे यूकेश सिंह को मायावती ने 31 अगस्त को बुलाई गई मीटिंग में सबसे आगे की कुर्सी पर बैठाया था। हालांकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी दल बीएसपी की इस रणनीति पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं।
2: तो ये मायावती जी और बसपा का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन नामों की चर्चा जेएनजी के आधार पे आप लोग कर रहे हैं, दरअसल वो संघर्ष की कोख से नहीं पैदा हुए हैं, वो वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और देश का जो युवा है अब इस पे भी मंथन करता है।
3: फॉर्मेशन जो ये ठाकुर बामन बनिया जो कर रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
4: यानी आपको लगता है नया समीकरण कोई फायदेमंद नहीं?
3: जो आदमी, जो पार्टी, जिस पार्टी की सरबरा पूरे बहुजन मिशन को बेच चुकी हो, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में हो, तो जेंजी जानता नहीं है कि उसको लाठी भाजपा वालों ने मारी। जेंजी जानता नहीं है क्या कि उसके ऊपर जो है कील की लाठियां, पैलेट गन किसने चलाई हैं? उस पार्टी के समर्थन में जो बीएसपी और जो मायावती जी खड़ी हो, उनके साथ जेंजी कैसे आएगा?
0: बीएसपी की जेंजी टीम अब ईशान आनंद की अगुवाई में पार्टी की चुनावी गतिविधि को आगे बढ़ाती नजर आ रही है, जिसमें ईशान आनंद को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। इन्हें 15 राज्यों में पार्टी की समीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। ईशान मायावती और पिता आनंद कुमार को रिपोर्ट करेंगे। चारों समुदाय वर्ग से बीएसपी के जेंजी प्लान में सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के बेटे जितेंद्र पाल को भी जिम्मेदारियां मिली है।
5: लेकिन सवाल ये कि सूबे में जो ब्राह्मण समाज पे एट्रोसिटीज के मामले, उस पर तो बहन मायावती जी हमेशा खामोश रही। पूरे सूबे में दलित समाज के नौजवानों को शादी होती है, घुड़चुड़ी करनी होती है, तो पीएससी लगानी पड़ती है। आदरणीय बहन जी कभी सड़क पे नहीं आई। पूरे सूबे में, आज पूरे देश में आरक्षण पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है। बहन जी तो हमें कहीं दिखी नहीं। तो
0: दरअसल जंतर बंतर आंदोलन के बाद देश की सियासत में जेन जी के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी माने जा रहे हैं। जंतर बंतर पर तमाम विपक्षी दलों ने इसी फेर में अपने नुमाइंदे भेजे। वहां दलित सियासत करने वाले दूसरे दल भी नजर आए थे। अब देखना होगा कि चुनाव से पहले बीएसपी की दलित राजनीति कितना असरकारी होती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की,
9: इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
10: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
9: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौट आओ।
3: अरे मौत मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साईं,
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अनंत पांडा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी। संगरूर सुसाइड पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत, आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप, प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार, पीड़ित परिवार से मिल बीजेपी डेलीगेशन। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल, भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त, एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन, दो दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियां सील, लक्ष्मीनगर में शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बाथम, शुरुआत कर रहे हैं नॉनस्टॉप 100 के साथ।

0: सैटरडे के इतने हादसे के बाद एमसीटी ने दिल्ली में अवैध और खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई तेज की। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में डिमोलिशन ड्राइव जारी है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में मयूरकुंज सोसाइटी के टॉप फ्लोर पर एमसीडी के द्वारा डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। नोटिस के बावजूद कई कंस्ट्रक्शन किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली में भी अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर अभियान। ललिता पार्क में बरस रहा है हथौड़ा। लक्ष्मीनगर, मधुविहार, न्यू अशोक नगर में चलेगा अवैध पीजी, अवैध बिल्डिंग सर्वे और सीलिंग का अभियान। दिल्ली के जगतपुरी में गर्जा एमसीडी का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। पिछले दो दिन में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया, 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे किया गया। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभाग में बांट रही टीम। मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए। 4 इमारतों को तोड़ने के आदेश दे दिए गए। रांची में टंकी गिरने से बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की हुई मौत। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 3 को बचा लिया गया। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने लापरवाही की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चला चुकी है। घटना की जांच जारी है। कल से दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत। 13 सितंबर तक चलेगी बैठक। दुनिया के 11 बड़े देश के नेता लेंगे हिस्सा। विदेशी राजाध्यक्षों और स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कई जगहों पर ट्रैफिक डाइवर्ट। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शनिवार को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने की उम्मीद है। बीजिंग से आज आधिकारिक ऐलान संभव होगा। समिट के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। भारतीय जमीन पर करीब 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय मुलाकात। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली सजीव। पोस्टर्स और रोशनी से जगमगाई राजधानी। सरकारी और प्रमुख भवनों को रंग बिरंगी और आकर्षक सजावटी लाइट से जगमगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीलंका दौरे का आज आखिरी दिन। राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के कई दिग्गज क्रिकेटर्स से मुलाकात की है। उनके सम्मान में रखा गया था कार्यक्रम। यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से की मुलाकात। रक्षा उपकरण, ट्रेनिंग और समुद्री सुरक्षा को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से भी मिले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भेंट किए तोहफे। श्रीलंका में बेली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स से मिले राजनाथ। उनके कार्यों और योगदान की सराहना की, बढ़ाया हौसला। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। मां लक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी भी रहे मौजूद। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर दिया है। ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली आकाश आनंद को राहत। मायावती ने पहले आकाश आनंद से कहा था कि अगर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ संन्यास लेते हैं तो भतीजे को बीएसपी में पद देंगी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने निकाला और बदल दिया अपना फैसला। अशोक सिद्धार्थ की संन्यास पर मायावती ने दी प्रतिक्रिया, कहा जो फैसला लिया उसमें बहुत देर कर दी, लेकिन अंततः सही निर्णय लिया। मायावती ने तंज भरे लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अगर दामाद की चिंता होती तो पहले ही ले लेते संन्यास। बीएसपी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि आकाश पार्टी से ज्यादा परिवार को तरजीह दे रहे हैं और डबल माइंड होकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानदापी मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के निर्देश दिए थे। आज लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग होगी शुरू। बैठक के बाद दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। अखिलेश यादव कल अपने बुलंदशहर दौरे को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव में एसपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत का दौर जारी। राहुल गांधी के रायबरेली के दौरान मंथन। हापुड़ में दलित युवक की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है। रायबरेली में दिशा बैठक के दौरान राहुल गांधी से मिले बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, वीडियो वायरल। बैठक में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट पर बहस। दिनेश प्रताप ने कहा आपको योजना की जानकारी होनी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए अमेठी सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कहा कि सांसद को किसी भी योजना के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है। हापुड़ में हुए दलित युवक की हत्या पर छिड़ा सियासी घमासान। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन को पुलिस ने गांव के बाहर रोका। जवाब में समाजवादी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सपा का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही राज्य सरकार पर सारा निशाना बताया तानाशाह। 2029 में राहुल गांधी के पीएम चेहरे पर बोले पृथ्वीराज चव्हाण, अभी कहना मुश्किल है। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लेगा फैसला। बीआरएस विधायक के संजय का राहुल गांधी पर हमला, बोले संविधान की किताब लेकर घूमना बंद करें, संविधान का अपमान ना करें। तेलंगाना में फीस रीइंबर्समेंट संकट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी को इटालियन में पत्र। 40 लाख छात्रों के बकाए का मुद्दा उठाया। पंजाब में ग्रामीण की मौत पर राहुल गांधी का आप सरकार पर हमला, बोले सीएम तुरंत हरपाल चीमा से इस्तीफा लें, निष्पक्ष जांच कराएं। गुजरात के गांधीनगर बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्वा, मलबे में दबे सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने दी जानकारी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, करीब 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। खगड़िया में कई इलाके जलमग्न, प्रभावित लोगों के लिए चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। चारों ओर जलभराव के कारण नाव की आवाजाही का सहारा, प्रशासन की ओर से भोजन दवा और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। मुंगेर में सीएम की पत्नी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का लिया जायजा, पीड़ितों का जाना हालचाल, सामुदायिक किचन में दी जा रही खाने की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। मुलाकात के दौरान लोगों ने सरकार से उचित मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की लगाई गुहार। बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने रोजगार की भी मांग की। कटिहार में बाढ़ से भयंकर तबाही, आम लोगों के साथ प्रशासन खुद परेशान, पुलिस कैंप छोड़ जाने को मजबूर है पुलिस। प्रलयकारी बाढ़ में डूब गया पुलिस शिविर। हरदोई में बाढ़ का कहर, गंगा रामगंगा में उफान, गंगा के घरों में घुसा पानी, गांव बने टापू। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने लिया जायजा, पीड़ित को राहत सामग्री पहुंचाई। बाराबंकी में इमारत घाघरा नदी के तेज जलस्तर के चलते पानी में समा गई, शिव मंदिर भी कटान के चलते बह गया। बाराबंकी में डीएम ने बताया कि जिनका घर नदी में कटान में बह गया है उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी देर की बारिश से हुआ जलभराव, पानी से लबालब हुए निचले इलाके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज के सभी 109 गेट खुले, गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। अल्मोड़ा में जर्जर स्कूल की छत पर गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचे शिक्षक, टला बड़ा हादसा। कानपुर में शादीशुदा प्रेमिका ने घर वालों ने प्रेमी को बांधकर 30 घंटे तक घर में रखा, पुलिस छुड़ाने आई तो दरोगा से की मारपीट। हरदोई में पति ने डंडे से पीट पीट कर 7 महीने की गर्भवती पत्नी की जान ले ली, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मुरादाबाद में तेंदुए का देखा गया आतंक, वन विभाग ने 13वां तेंदुआ पिंजरे में कैद किया। महबूबनगर भीषण सड़क हादसा, पशुओं से लदे ट्रक में लगी आग, एक शख्स जिंदा जला। वासी पीट पीट कर चचेरे भाई को तारा मौत के घाट, 4 दिन पहले ही लौटा था घर। नागपुर में ज्वेलर्स की दुकान में बुजुर्ग महिला ने सोने का पेंडेंट चुराया, घटना सीसीटीवी में कैद। इंदौर में गाय चोरी के शक में युवक से मारपीट, इलाज के दौरान मौत। सहारनपुर में 1.5 करोड़ के ड्रग्स, 7 महिला समेत 3 गिरफ्तार, हिस्ट्री शीटर पर दर्ज है पहले से ही 12 मामले। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर की गई पार्किंग। नोएडा में 16 मिनट में पहुंचा आर्मी अफसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान, मरकर भी अफसर दे गए नई जिंदगी। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के नामी गैंगस्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा, हरियाणा से खेप लाकर महंगे दाम पर बेचती थी महिला, हुई गिरफ्तार। लखनऊ के गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे में शादी का सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद, जांच जारी। बिहार के बांका में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 200 से अधिक दुकानें अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। रोहतास में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी, कई अस्पताल सील। पटना में एनआईए की छापेमारी, रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम के हमले के मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज। छपरा में दूध के पैसे वापस मांगने पर दुकानदार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू, प्रोफेसर का इलाज जारी। बेतिया में दरोगा का 15,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, आरोपी दरोगा शमशाद अहमद निलंबित। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च किया, साथ ही पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ भी लॉन्च, 2,99,900 रुपए इसकी कीमत। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत है 1,64,900 रुपए और आईफोन 18 प्रो मैक्स की है 1,79,900। नए आईफोन बेहतर सीरीज पर दिया गया है जोर। भारत में शनिवार से शुरू होगी प्री ऑर्डर, वहीं एप्पल के नए प्रो मॉडल की भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू होगी। एप्पल ने एयरपॉड्स 5 को भी लॉन्च किया, डिजाइन पहले से अलग और कान से बाहर रहने वाला है, इसका नॉइज कैंसिलेशन पिछली सीरीज से 50% ज्यादा है। एप्पल वॉच सीरीज 12 और वॉच अल्ट्रा 4 में दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर है, अब घड़ी हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक कर सकती है। गणेशोत्सव में अब महज 4 दिन बाकी हैं, पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में तैयारी तेज। पैराग्लाइडिंग के लिए सैलानियों की पहली पसंद बना हिमाचल प्रदेश का बीर बिलिंग, हर साल बड़ी संख्या में आते हैं देश विदेश से सैलानी। श्रीनगर में सुहाने मौसम के बीच सैलानी ले रहे हैं शिकारा राइड का मजा, पर्यटकों से गुलजार नजर आ रही है डल झील। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में नमक के उत्पादन में दर्ज बढ़ोतरी, इस वर्ष तेज गर्मी के कारण दर्ज की गई है वृद्धि। नमक उत्पादन हुई वृद्धि से श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लहर, बढ़ते उत्पादन के साथ साथ आय में भी हो रही है बढ़ोतरी। लास्ट स्टोरीज फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का ट्रेलर जारी, 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगी लॉन्च। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम सस्पेंस दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर लॉन्च, अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी ये फिल्म होगी फ्रेंचाइजी का आखिरी अध्याय। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म उड़ता तीर का पहला पोस्टर जारी, पहली बार बड़े पर्दे पर साफ नजर आएंगे दोनों सितारों की जोड़ी। लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, अक्षय ओबरॉय और हेली दारूवाला इसमें निभा रहे हैं प्रमुख किरदार। बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही हनुमान अंश की रफ्तार, अब तक 135,06,00,000 रुपए की हो चुकी है कमाई। बांग्लादेश के चटगांव में एक मिलिट्री एक्सरसाइज दौरान एक टैंक में ब्लास्ट, घटना में टैंक में मौजूद सेना के 2 जवानों की मौके पर ही हुई मौत। धमाका इतना भयानक था कि टैंक के परखच्चे उड़ गए, अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला, एक मिलिट्री अफसर गंभीर रूप से घायल। ISPR ने बताया कि हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच जारी है, बांग्लादेश सेना ने 2 जवानों की मौत की पुष्टि की और कहा कि धमाके की वजह की जांच की जा रही है। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी, 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई। इसके अलावा बचाव राहत और फोरेंसिक अभियान में सहयोग के लिए भारत से 54 विशेषज्ञ कर्मियों को नेपाल भेजा गया। गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना का भीषण हमला, अटैक के बाद उठा काले धुएं का गुबार, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के माउंट हर्मन का किया दौरा, इजरायल की सीमा पर किसी भी तरह के खतरे को रोकने का लिया संकल्प। स्लोवेनिया पहुंचे इजरायली विदेश मंत्री का बयान, कहा गाजा से फिलिस्तीनियों को जबरन बाहर निकालने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई अपनी इच्छा से गाजा छोड़ना चाहता है तो इजरायल इसका विरोध नहीं करेगा। यूक्रेनी शहरों पर रूस का भीषण हमला, राजधानी कीव समेत कई शहरों में बरसाए गए बम, कीव में ऊंची इमारत और फूड फैक्ट्री को बनाया गया निशाना, 1 की मौत 5 घायल। ट्रंप पुतिन बातचीत के बाद क्रेमलिन का बड़ा बयान, कहा अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता जल्द शुरू होने की उम्मीद है, समझौते पर की शर्तें रहेंगी गोपनीय।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और इस बीच बड़ी खबर पंजाब के संगरूर से, जहां पर गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल गुलजार के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर राज्यपाल से मिलने पहुंचा है। कांग्रेस के दल में पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, बरिंदर मीत सिंह पेहरा और त्रिपिंदर बाजवा शामिल हैं। इस बीच बीजेपी का दल गुलजार के परिवार से मिलने संगरूर पहुंचने वाला है। इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना संगरूर के तोर बाजार गांव में गुलजार सिंह के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं।
2: हर पासे हाहाकार तुसी पा दिती है। ये पंजाब का जो हालत तुसी 4.5 साल च कर दिती है, केजरीवाल जी थानू कदे पंजाब माफ नहीं करेगा। थानू ये सारे सिट्टे एक दिन भुगतने पैणगे।
3: चन्नी साहब, चार मेंबर की जो
4: देखे जो सिट बनी है, ये थानू ही पता कि सिट जिहड़ी गवर्नमेंट दी हुंदी कीदी फेवर च करेगी। मैं इत्थे ही कहना चाहुंदा कि चन्नी साहब, बाजवा साहब, पाड़ा साहब, दुबारा साहब, साडे एमपी, साडे यूथ कांग्रेस दे प्रेजिडेंट पंजाब दे खड़े ने। अंदर जाके असीं गवर्नर साहब नूं कहा कि तुसीं साडे कॉन्स्टीट्यूशनल हैड हो, तुसीं गवर्नर हो, ओह गवर्नमेंट दे हैड ने। एक गवर्नमेंट दा हैड जिन्हें दुनिया नूं लॉ एंड ऑर्डर बारे दसना, एक गैंगस्टर नूं स्टेज ते खड़ा करके उन्हें गल च सुरोपा पा रहा और उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रहा, यह पंजाब दे विच गैंगस्टरिज्म नूं अगे कर लई। जिस तरह तुहानूं पता होना कि 2017 की जो इलैक्शन आई सी, यही केजरीवाल मोगे पिंड च एक गैंगस्टर टेररिस्ट दे घरे गया सी। यही केजरीवाल उस गैंगस्टर दे घरे गया सी जिन्हें मंदिर दे उत्ते बंब सुट्टिया सी। अज उही केजरीवाल पंजाब दे विच गैंगस्टरां नूं ਉਹਦੀ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਡੀਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ACP ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ IPS ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ IPS ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ।
0: और सीधे आपको ब्रिक्स राउंड टेबल में लिए चलेंगे, वहां पर राम माधव बोल रहे हैं।
1: को प्रेजेंटेड बाय
5: रेफी एम फाइबर एडवांस ड्रोन सिस्टम्स, डिजाइन्ड एंड बिल्ट इन इंडिया।
1: स्पेशल पार्टनर LIC, हर पल आपके साथ। स्टेट पार्टनर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Based on a different understanding, a defense partnership and a strategic partnership. How do these mini-lateral, are you seeing emergence of more of these mini-lateral groups in a multipolar world?
7: Oh yes, we have anyway entered a multipolar order earlier in this century. 21st century, jo new millennium start hua. New millennium mein we have entered the multipolar order. Today there are no one or two poles which are dominating the entire world. There are different poles that have emerged. My thesis in this book was that when you talk about multipolarity, it's not just about individual countries. There can be mini-lateral groups. Like, you know, you talked about Makkah agreement. That particular alliance of three countries will emerge as a pole. That will have its own influence. That will have its own, own priorities, its own, activity in the region, especially in West Asia and all that. So there will be such mini-laterals emerging, playing an important role in the new multilateral world order. That's going to be a reality. You know, for that matter, we try to create something called BBIN. a couple of decades ago. What is BBN? Bhutan, Bangladesh, India, and Nepal. We created that. We tried to create road connectivity, energy connectivity, energy corridors, road corridors between these countries. So like that, there will be smaller groupings rising depending on certain situations and certain interests. The reason being that old big power politics has ended today. And US is in a, what you call a self-destruction mode. They are on a self-destruction mode. So their influence is waning on the world. So this is a kind of an emerging reality in the world today.
8: यही कारण रहा कि अमेरिका की तरफ से वहाँ के एक्सपर्ट्स ने ये जरूर कहा कि जो नीतियाँ वहाँ पर रहीं उसने भारत को अमेरिका से कुछ दूर धकेला. जब हम ये छोटे ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं सर, द मल्टीलैटरलिज्म इन फॉरेन रिलेशंस दैट वी आर सीइंग, क्या एक खेमा दूसरे खेमे को, एक ग्रुपिंग दूसरे ग्रुपिंग को कुछ असहज कर सकती है, कुछ इनसिक्योर कर सकती है इंटरेस्ट को लेकर? और इसमें बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब हम अमेरिका के साथ अपने रिश्ते और ब्रिक्स के समय अमेरिका की उस इनसिक्योरिटी को देखते हैं और उस डी डॉलराइजेशन की चर्चा बार बार उसकी तरफ से देखते हैं.
7: यस, वी आर पासिंग थ्रू अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन. द ओल्ड ऑर्डर इज डेड आर नियरिंग इट्स एंड. The new order is yet to take shape. अभी नया कोई वैश्विक परिदृश्य बना नहीं है. ओल्ड ऑर्डर फेल हो गया है. ओल्ड ऑर्डर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने बनाया है वो खत्म हो गया है. ये जो इंटररिनम है, इट्स द टाइम फॉर मॉन्स्टर्स. इस समय अनेक प्रकार के शक्तियां उठेंगी. इसी में बहुत केयरफुली कंट्रीज को नेविगेट करना पड़ेगा. वी आर इन दैट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन ओल्ड ऑर्डर टू ए न्यू ऑर्डर. व्हाट इज द फाइनल शेप ऑफ दैट न्यू ऑर्डर, नन ऑफ अस नो टुडे. बट वी विल हैव टू क्रिएट, प्रोबेबली बिल्ड ए न्यू ऑर्डर. बट ड्यूरिंग दिस इंटररिनम व्हाट यू एक्सपीरियंस इज, इट इज द टाइम फॉर मॉन्स्टर्स, इट इज सेड. इस समय अनेक प्रकार की ताकतें उठेंगी. हाँ, उससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसको डील करना पड़ेगा. व्हेन सर्टेन कंट्रीज राइज और सर्टेन ग्रुप्स राइज, दे क्रिएट टेंशन्स टू यू, दे क्रिएट चैलेंजेस टू यू. कंट्रीज हैव टू केयरफुली नेविगेट दिस चैलेंजेस अंटिल यू बिल्ड ए न्यू ऑर्डर वेयर यू विल बी एबल टू एसिमुलेट ऑल दीज न्यू पावर सेंटर्स. टूडे, फॉर एग्जाम्पल, देर वॉज दट यूएन सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर दट वी ट्राई टू क्रिएट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उसकी हालत क्या हो गई? कोई सुनता है यूएन की बात आज? कोई सुनने का कोशिश भी करे तो कोई ना कोई देश रहता है जो वीटो दे देगा. 5 कंट्रीज हैव वीटो पावर. इट्स अनदर मैटर, वी आल्सो वांट टू बिकम ए परमानेंट मेंबर सो दैट वी आल्सो हैव ए वीटो पावर. 5 कंट्रीज के वीटो के साथ यूएन चल नहीं रहा है. इमेजिन 10 कंट्रीज हैव वीटो पावर. सो वी हैव टू नाउ सीरियसली थिंक अबाउट व्हाट शेप द न्यू ऑर्डर विल टेक. It will take time. Until then, you will have challenges.
9: जिस मॉन्स्टर की आप बात कर रहे हैं, क्या ये मॉन्स्टर बिग टेक कंपनीज भी हैं? क्या आप ये मानते हैं कि ये जो न्यू ऑर्डर होगा वो शायद देश नहीं डिसाइड करेंगे, वो मनी पावर डिसाइड करेगा और वहां पर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, AI होगा, रोबोटिक्स होगा?
7: Oh yes, certainly. I'm not calling them monsters. Monsters is a lighter way I said it. What I tried to say was certain uncontrollable forces will rise. Today, in fact, I have a chapter in my book called Heteropolarity. Heteropolarity ka artha ye hai ki jab hum multipolarity ki baat karte hai to hum deshon ki baat kar rahe hai ya group of countries ki kar rahe hai. Maine kaha millilaterals. Heteropolarity mein countries aur group of countries ke alawa other forces aayenge. They will be much more powerful. Today, big tech companies like, Anthropic or IBM or Tesla, these companies, they are very powerful in the world today. There are certain individuals, you know, हम भी हमारा right wing ecosystem में कुछ individuals की बात कहते हैं कि फलाना व्यक्ति ने fund किया फलाना आंदोलन को, फलाना व्यक्ति हमारा country को destabilize करना चाहता है. Who is he? He's just an investor. I can invoke the name. We always see the name of George Soros. अरे जॉर्ज सोरोस तो इसको फंड कर रहा है, हमारे देश को अस्थिर करना चाहता है. जॉर्ज सोरोस कौन है? उनके पास कोई देश है क्या? उनके पास कोई आर्मी है क्या? इज जस्ट एन इन्वेस्टर. बट टुडे दैट इन्वेस्टर इज सो पावरफुल दैट कंट्रीज हैव टू बी केयरफुल वेरी अबाउट हिज एक्टिविटीज. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड हेटरोपोलैरिटी. एंड टुडे द टेक कंपनीज, एस्पेशली बिग टेक एंड डीप टेक कंपनीज, हैव एमर्ज्ड सो पावरफुल. आई गिव यू वन एग्जांपल हाउ पावरफुल दे आर, जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. गूगल ने जस्ट वन वीक एगो अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट $200 billion इन दिस ईयर ऑन AI. $200 billion ऑन AI. आई विल कंपेयर इट विथ व्हाट हैपेंस इन अदर कंट्रीज. हमारा एक नेशनल अनुसंधान मिशन है, हमने 1,00,000 करोड़ उसका रखा. 1,00,00,000 करोड़ इज रफली अबाउट $15 billion. एक कंट्री का इन्वेस्टमेंट से 10-15 times ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कर रहा है. That's the kind of money power. It's not just about money power. The technology that they are bringing. You know, Anthropica, a young technocrat yesterday, he quit the company. He came out and gave an interview on CNN yesterday night. I don't know, some of you would have watched it. He said that, you know, what Anthropy and OpenAI are doing is very dangerous. They are going to finish off the human race. They will kill all of us. Will they kill? Maybe he's exaggerating. But टेस्ला का एलन मस्क ने कहा, इन 5 years यू विल हैव 1 billion ह्यूमनॉइड्स, 1 billion रोबोट्स. दुनिया की आबादी 7 billion और 8 billion है, और 1 billion ह्यूमनॉइड्स जुड़ेंगे. एंड दीज ह्यूमनॉइड्स आर मच मोर इंटेलिजेंट देन यू, मच मोर पावरफुल देन यू. दे विल रूल द रूस्ट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कंपनीज हैव बिकम रियली वेरी

0: NGOs, they become very powerful. Countries have to deal with them. Countries have to tackle them.
1: Since you're talking about dealing, do you think these groups like BRICS, G20 should look at regulation?
0: Yeah, of course. One very important regulation that is required is about AI, artificial intelligence. Countries are seized of it. हम उसके बारे में भारत भी सोच रहा है बाकी देश भी सोच रहे हैं as I said allowing it to grow without any regulation can be detrimental to the future of humans this is the general view of everybody I mean I gave you the example of what that Anthropy employee said yesterday on CNN so how do we draw those red lines is something that is bothering everybody very interestingly हमने इंडिया में थोड़ा सोचा ज्यादा अभी सोचा नहीं है बट एन इंस्टीट्यूशन लाइक वैटिकन थॉट अबाउट इट इन 2020 वैटिकन ने एथिक्स ऑफ एआई पर एक कॉन्फ्रेंस किया 2020 में द पेपर इज अवेलेबल इट्स कॉल्ड रोम कॉल फॉर एआई एथिक्स इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट 6-point चार्टर अबाउट हाउ एंड वेयर टू रेगुलेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर टू स्टॉप वन वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दे रेज्ड इज इफ एआई इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी लेट अस गो फॉर इट लेट अस डेवलप इट But operational sentence is, man should be supreme. Do you will continue to have control over the technology or the technology will control you? We are heading towards an era where machines will control the humans.
2: सर इसमें एक छोटी सी चीज भी समझ में आती है कि जब कहते हैं ना कि जो डेटा सेंटर्स होते हैं पानी इतना इस्तेमाल कर लेते हैं और वो पानी हमारे लिए जीवन है इट्स आर लाइफ मे बी हम सबको मार देगा जैसी चीज मतलब इट विल किल द ह्यूमन रेस अतिशोक्ति है लेकिन शायद इसी तरह की चीजें रेगुलेशन अगर हम बात कर रहे हैं और ब्रिक्स में अगर आप उस रेगुलेशन को के बारे में सोच रहे हैं तो वो रेगुलेशन क्या हो ब्रिक्स से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं उसके साथ हम कंक्लूड
0: नहीं ब्रिक्स जो 4-5 मेन एजेंडा आइटम्स लिया है उसमें नेशंस का रेजिलियंस पर लिया है क्लाइमेट इश्यूज पर लिया है यू टॉक्ड अबाउट वाटर फूड वाटर दीज आर गोइंग टू बी बिग चैलेंजेस फॉर द मैनकाइंड इन द कमिंग इयर्स एंड डिकेड्स इनफैक्ट एज आई टोल्ड यू मेजर क्राइसिस की तरफ दुनिया जा रहा है ऐसा मैंने प्रारंभ में कहा वन ऑफ देम विल बी द फूड क्राइसिस गोइंग टू बी अ वेरी मेजर क्राइसिस फॉर द मैनकाइंड ब्रिक्स इज सीज्ड ऑफ इट हमने इंडिया में जब ब्रिक्स को हमने चेयर लिया था उसमें हमने नेशनल रेजिलियंस की बात की थी क्लाइमेट इश्यूज की बात की थी इनोवेशन प्राइम मिनिस्टर का जो फेवरेट और बहुत उनका आग्रह रहता है वो इनोवेशन साइड का हमने उस पर भी आग्रह रखा था सो दीज इश्यूज आर गोइंग टू बी द मेन इश्यूज इन दिस ब्रिक्स समिट
3: और अब रुक करेंगे हेडलाइंस का

शी जिनपिंग 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान, युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश द्विवेदी, महिला मोर्चा दी पुरंदेश्वरी के हाथ संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी, विजयंत पांडा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी। संगरूर सुसाइड मामले पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत, आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप, प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार, पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन।

0: हो रही है क्योंकि गंगा का एक क्योंकि घाघरा नदी के कटान में खेत खलियान सब डूब रहे हैं। वहीं बिहार के आरा से कटिहार तक त्राहिमाम मचा हुआ है। आरा में खगड़िया के लोगों के घरों तक 5 फीट तक पानी भर चुका है। कटिहार का भी बुरा हाल है। और बात बिहार की करेंगे सबसे पहले, फिर यूपी पर पहुंचेंगे। बिहार के 14 जिले 8 नदियों की बाढ़ 8 नदियां बाढ़ की चपेट में हैं। कुछ जगहों पर पानी कम हुआ है लेकिन मुसीबत जस की तस बनी हुई है। कटिहार में गांव ऐसा भी है जहां सिर्फ एक पक्का मकान है, उसी की छत पर एक परिवार बचा है, बाकी सबको गांव छोड़कर जाना पड़ा है। खगड़िया में भी यही हाल है।
1: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। बिहार में विनाशकारी बाढ़ की एक तस्वीर कटिहार से आई जहां पुलिस कैंप ही पानी में बह गया। शरीर पर वर्दी रही है इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं। कटिहार के बरारी प्रखंड में बिहार मिलिट्री पुलिस का कैंप था। वहां 20 से 25 जवान तैनात थे लेकिन अचानक पानी आया तो पुलिस कैंप बह गया। अस्त्र शस्त्र सब पानी में डूब गए। पुलिस वालों की वर्दी तक पानी में बह गई।
2: ये बरारी विधानसभा का इलाका है जो कि पूरा तरह से जलमग्न हो गया है। आपको बता दें कि इस नदी के उस पार में मोहना चांदपुर है और वहां पे सोना खाल शिविर है, पुलिस शिविर शिवनगर है, वहां पे पुलिस शिविर है और उस पुलिस शिविर में पानी आ जाने के वजह से पुलिस शिविर पूरी तरीके से डूब गया है। आप सहज आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
1: कैंप में जब नदी का पानी घुसा तो सभी पुलिस वाले अपना सामान समेटने लगे जिससे जैसे बन पड़ा वहां से भाग निकला। सरकारी हथियार नाव पर लाद पुलिस वाले सुरक्षित ठिकानों की ओर निकल पड़े। कैंप में पानी इतनी तेजी से घुसा कि कुछ हथियार पानी में भीग गए जिन्हें सुखाने के लिए अलग रख दिया गया। पुलिस वालों के पास तो अपनी नाव थी, सामान समेटा और निकल गए, लेकिन जिनके पास भागने के लिए नाव नहीं थी उनका क्या हुआ? तो बरारी प्रखंड के चांदपुरवा में करीब 6 से 8 हजार लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें एक नाव तक नहीं दी गई।
2: क्या स्थिति है?
3: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोहना चांदपुर में, भयावह स्थिति है। बाढ़ से लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
2: तो ऐसे में वहाँ पुलिस शिविर भी है?
3: पुलिस शिविर था, हम लोग के यहाँ कैंप था, जो कैंप उठ के अब जा रहा है वहाँ पानी हो गया है।
2: क्या नाम था शिविर जहाँ पे है?
3: सोना खाल शिवनगरी।
2: अच्छा, तो ये तो दियरा का ये बहुत इम्पोर्टेंट पुलिस का कैंप था।
3: हाँ, कैंप से हम लोग को बहुत सुरक्षित है हम लोग।
2: तो अब फिर ऐसे स्थिति में तो बाढ़ में तो बिना कैंप की वो जगह रहेगी?
3: नहीं, जगह तो अभी भयावह है लेकिन बाढ़ से लोग अस्त व्यस्त है, अभी तो बाढ़ में अस्त व्यस्त है लोग।
1: कटिहार जिले के 5 प्रखंड इस समय बाढ़ की चपेट में है। कुर्सेला, बरारी, मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड के लोग बाढ़ से पीड़ित है। गांवों का संपर्क टूट गया है, रास्ते डूब गए हैं, गाड़ियां चल नहीं सकती, इसलिए नाव ही सबसे आसान विकल्प था। लेकिन लोगों का आरोप है कि मुसीबत की बारी कटिहार की जनता के लिए वो भी नसीब नहीं हो सका।
2: क्या स्थिति है?
4: स्थिति सर बहुत भयजनक है। यहाँ पे लोग तो प्लान कर चुके हैं, इस एरिया में कोई भी नहीं है, जो भी अंदर ही आ गया है। 8 से 10 हजार आदमी प्रभावित है। खाना पीना का कोई भी यहाँ पे कोई भी व्यवस्था अभी तक सरकार का भी नहीं है। जो भी है अपने हिसाब से अपना जान बचा के जहाँ जाना है जा रहा है लोग, और सरकार के तरफ से भी कोई एक नाव का भी सुविधा नहीं है इस इलाके में।
1: ग्रामीण भले ही कह रहे हो कि जमीन पर कोई मदद नहीं पहुंच रही है लेकिन कटिहार जिला प्रशासन दावे करता है कि सारे इंतजाम तो है, दिक्कत क्या है?
5: कटिहार जिले में जो 4 प्रखंड है, बरारी, कुर्सेला, मनिहारी और अहमदाबाद, वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हम लोग शुरुआत से लगातार इसके लिए सजग हैं और जैसे ही पानी आना शुरू हुआ था, आवागमन बाधित हुआ था, तुरंत ही हम लोगों ने नावें परिचालित कर दी थी और जैसे जैसे लोग जो अपने घर से निकल कर के किसी ऊंचे स्थान पर आ रहे हैं उनको पॉलिथिन शीट दी जा रही है। कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोग खाना नहीं, घर में किचन नहीं उनका चल पा रहा है, वहाँ पर सामुदायिक रसोई चालू की गई है। हम लोग भी प्रतिदिन फील्ड विजिट कर रहे हैं, हम 2 दिन पहले हम लोग कुर्सेला गए थे।
1: दिक्कत यह है कलेक्टर साहब कि लोगों के पास खाना नहीं है, पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं, आवागमन के लिए नाव नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा के नाम पर एक पैरासिटामोल तक नहीं है। हालांकि कटिहार प्रशासन बोट एम्बुलेंस तैनात करने की बात करता है, कुछ गांवों में बोट एम्बुलेंस तैनात भी की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहां सड़क है जो अब पानी में डूबी हुई है। कटिहार के बरारी प्रखंड का कुंडीधार गांव है, आबादी लगभग 800 के आसपास है, लेकिन अब यहां के लोग अपना घर बार छोड़कर चले गए हैं क्योंकि घरों में पानी घुस गया है। इस गांव में 3 टप्पर का छज्जा ही लोगों का आशियाना था, लेकिन अब वो भी डूब गया है। गांव में एकमात्र पक्का मकान वाल्मीकि बस्ती में दिखा, जो इंदिरा आवास योजना के तहत बना था, लेकिन अब वहां भी पानी भर गया है।
2: हमारी मौजूदगी मोहना चांदपुर पंचायत के कुंडी भवानीपुर में है। हम आपको यहां दिखाते हैं कि ये ग्राउंड रिपोर्ट किस तरह से भयावह स्थिति यहां पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे गांव में एकमात्र ये पक्के का मकान है, पूरे गांव में ये पक्के का मकान है और इस पक्के के मकान के ऊपर लोग रहते हैं। ये देखिए किस तरीके से पूरा गांव खाली होने के बाद ये किस तरह से पशु है और ये पशु किस तरह से बिन चारा का, बिना खाना का ये सीढ़ी पे है। और इसके बाद यहाँ पे जो कोई भी लोग रहने वाले हैं, करीब 600 की आबादी है इस गांव की, लेकिन सभी के सभी गांव को छोड़कर पलायन कर गए हैं, ऊंचे स्थानों पे चले गए हैं। यहाँ तक कि हम यहाँ कैमरे की नजर से आपको एक बार दिखा दें कि आप देखिए कि किस तरह से पूरा का पूरा गांव में पानी है और पूरा का पूरा घर डूबा हुआ है, सभी घर में ताले लगे हुए हैं, सभी का सामान बह गया है।
1: ये खगड़िया का गांव भारत खंड है। भारत खंड का इलाका ऐसा है कि वहां गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव पड़ता है। बाढ़ का पानी गांव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गांव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है। आज तक की टीम नाव से पूरे गांव में घूमी, चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है।
6: इस वक्त हम खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत भरत खंड गाँव में है और भरतखंड गांव की तस्वीर दरअसल देख सकते हैं, बांध के अंदर ये पूरा गांव जो है वो बसा हुआ है और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रोल लूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
1: खगड़िया जिले का ये भरतखंड गांव गंगा की लहरों के आगोश में है। जहां कभी सड़क और गलियां थी वहां अब पानी का कब्जा है। लोग अपना घर छोड़कर राहत शिविरों का सहारा लिए हुए हैं। घर पर कुछ खाने पीने को बचा नहीं है, ऐसे में राहत कैंप सही मायने में राहत लेकर आए हैं। रोहित सिंह, खगड़िया, आज तक।
0: बात बिहार के भोजपुर की करेंगे। बक्सर और भोजपुर जिले में कई गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। गंगा का पानी कम तो हुआ है लेकिन खतरे के निशान से अभी भी बहुत ऊपर है। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में अभी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सरकार दावा तो करती है कि सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, जो बीमार है उन्हें दवाएं नहीं मिल रही है।
7: घर में पानी, पानी के ऊपर तखत और उस पर पढ़ाई करते बच्चे, ये है बिहार का जिला भोजपुर। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बडरा ब्लॉक के 22 गांव की हालत कुछ ऐसी ही है।
8: घर में पानी घुस गया है, बहुत पानी घुस गया है घर में, बहुत डूबा डूबा पानी हो रहा है। जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धरे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
9: सहायता कुछ नहीं मिला, जिला प्रशासन
10: कुछ कुछ ना सर, कुछ ना, कोई आवते नहीं खे ना, कुछ ना,
11: तबियत खराब बा, हमारे धड़कन उठ है, कोई आदमी नहीं खे की कोई जावे वहाँ में।
7: गाँव के गाँव पानी में डूब गए, घरों में पानी भर गया। नए लोगों के लिए तो ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़क कहाँ है और नाली कहाँ। लोगों के घरों में पानी घुस गया। आंगन में जहाँ पूरे परिवार और आस पड़ोस का मजमा लगता था, वहाँ कई फीट तक पानी भरा है। छोटे बच्चे जिन्होंने शायद अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था, वो गांव में पानी भरने से अब स्कूल नहीं जा पा रहे।
8: कैसे कैसे जी रहा है हम लोग, बहुत परेशानी आई हम लोग के, बहुत तड़प रहा है, खाना बिना पीना बिना और चीज बिना दवा बिना बीरो बिना क्या करूं हम लोग। सरकार के कोई फिक्र नहीं है, जब वोट लेने के आते है घड़ी अपना पैर पर के हाथ जोड़ के माफी मांगे वोट ले लेते हैं, देखने नहीं आते है कि पब्लिक कैसे रह रहा है कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
7: भोजपुर जिले से आई अलग अलग तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ पानी कम होने के बावजूद परेशानियां कम नहीं हुई। कई घरों के आसपास पानी जमा है तो कहीं आने जाने का रास्ता ही लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। रोजमर्रा की जरूरत से लेकर खाने पीने और राहत सामग्री तक ग्रामीणों के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी हैं।
11: इसकी महंगाई ले आई है, खाने पीने के मतलब कि जो घर में बर्तन नहीं खाता भी इन गोटा सब भेज भाज गई है, सूखे सूखे में रहता अपन कुछ कुछ खा के कोई भी बनावत आदमी तनि मोने उघार बा गाँव में इतना सिंह के दुआर वर पर उन्हें जाता होता।
7: जब आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी। किसी ने राहत की कमी की बात कही तो किसी ने जरूरी सामान और आने जाने की समस्या बताई। भोजपुर के इस इलाके में गंगा और सोन नदी ने जिंदगी की रफ्तार को पटरी से उतार दिया। लोग सरकार को भी कोस रहे हैं कि वोट के टाइम पर सबके घर का पता नेताओं के पास रहता है, लेकिन मुसीबत आई तो कोई नहीं आया।
8: स्थिति खराब है भैया हम लोग के, बहुत घर में पानी घुस गया है, बहुत पानी घुस गया है घर में, बहुत डूबा डूबा पानी हो रहा है। जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धरे घर में वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है, हम लोग मर रहे खाने के लिए, कुछ नहीं है हम लोग के घर में कि हम लोग खाना खाए जिए, कैसे रह रहे हम लोग, पानी पी के कभी कभी ऐसे उपास सूत सूत के बाल बच्चा लेके रह रहा है, बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है हम लोग के।
11: सरकार खाली वोट के बेरा हो तान वोट ले जाता रन ओकरा बाद में वोटे वाला के न बहुत देर तक तू भाई हमनी से जीता तर तो हम तार करे के चाहिए न कुछ नहीं खन कर, अब कृष्ण कहाँ डूब के गई हन नहीं रही तब न कहीं गई हन।
7: बिहार में बाढ़ की वजह से इंसानों के साथ साथ मवेशियों के लिए भी परेशानी हुई। जानवरों का चारा पानी में बह गया, हालात ऐसे कि नए चारे की व्यवस्था तक नहीं हो पा रही।
10: दिक्कत बस और पहले तो खाना पीना का दिक्कत है, पानी इतना हो गया है, दुआरी पे चल के देख लिया सर। अच्छा पहले नंबर गेहूँ के जुग में उसी बारी से तो भूसा घास तो सब दही गए तो सहम अपने लिए तो खाता आदमी क्या जाने या पर।
7: प्रशासन की ओर से राहत और बचाव के इंतजाम किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिहार में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां सरकार की मदद पहुंचना बाकी है। सोनू कुमार सिंह, भोजपुर, आज तक।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर घाघरा नदी उफान पर है। यही नदी आगे चलकर सरयू कहलाती है। बाराबंकी और सीतापुर जिले की सीमा से सटी करीब 75 गांव इस समय घाघरा से घबरा गए हैं। नदी लगातार अपना रास्ता बदल रही है, रौद्र रूप दिखा रही है। कटान से कई मकान पानी में समा गए हैं, धान की हरी भरी फसल बह गई।
1: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। नेपाल का बैराजों से छोड़ा गया पानी बहराइच होते हुए जब बाराबंकी पहुंचा तो घाघरा नदी की धारा ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी अपने पार से आगे निकलकर गांवों को कटान करने लगी और इसी कटान की चपेट में बाराबंकी के 75 गांव हैं। बाराबंकी के हितमापुर गांव की इस इमारत को देखिए, यहां टेलीफोन एक्सचेंज था लेकिन घाघरा नदी के कटान से ये इमारत ढह गई।
12: घरों के घर डूब गए, मंदिर, सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज, घाघरा अपने पानी के तेज प्रवाह में डुबो कर ले गई है। कटान इस कदर है कि मंदिर, सरकारी टेलीफोन एक्सचेंज, लोगों के घर, सब कुछ डूब रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाएं पहले पानी की इस तीव्रता की, जिस तीव्रता के साथ ये घाघरा का जो जलस्तर है वो तो बढ़ा ही है और आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा ये है, आप अगर यहां से देखें जहां से मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए पूरी जमीन जो है ये पूरी कटती गई है, पूरा हिस्सा जो है ये कटता जा रहा है। आपको मैं दिखाऊं तो ये देखिए, ये लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं, यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यहीं जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था, एक टेलीफोन एक्सचेंज था, वो भी इस पानी की गति से, कटान की वजह से बाढ़ के पानी में समा गया है और इस तीव्र गति से पानी आगे जा रहा है, जिसके चलते जो किनारे सटे घर हैं वो भी टूट गए हैं। अब इस घर को आप देखें अगर, तो ये घर है यहाँ पर, उसका इस घर का एक पिलर बना हुआ है, आप इस घर को देखें, इस घर का जो आगे का पोर्शन था वो ये था, ये देखिए सामने की तस्वीर, सामने एकदम सामने आपको मैंने दिखाया कि कैसे ये धीरे धीरे इस मिट्टी को भी अपनी तरफ पानी लेता जा रहा है।
1: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। जिनके घर अभी घाघरा से बचे हुए हैं वो लोग भी सहमे हुए हैं क्योंकि घाघरा नदी तेजी से रास्ता बदल रही है। लहरें कब कहां किस तरफ से आए कोई नहीं जानता, इसीलिए लोग खुद ही अपने आशियाने से जरूरी सामान निकाल रहे हैं ताकि जब पानी उतर जाए तो फिर से छत बनाई जा सके।
12: घाघरा और सरयू की वजह से कटान इतनी अधिक हो गई है कि लोग डर की वजह से अपने अपने मकानों को तोड़कर यहां से जा रहे हैं। नतीजा क्या है कि अगर नहीं तोड़ेंगे तो बाढ़ के कहर से, बाढ़ की तीव्रता से ये मकान जो उन्होंने बनाया वो भी बह जाएगा। तो ये जो सीमेंट, ये जो ईंटें जो ये कुछ हद तक बचा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आशियाना नहीं बचा तो इसी को बचा लें। अब तस्वीर आप ये देखें कि ये जनाब जो हैं यहाँ इन्होंने सीढ़ियां सोच समझ के बनाई होंगी और अब ये सीढ़ियां जो हैं लगातार हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं उसके लिए मैं कहूंगा एक बार फ्रेम पीछे कर दें। अब आप देखें इस पानी की गति को, इस घर के आगे वाला घर जो था वो बाढ़ के पानी में बह गया। अब जिस गति से पानी बह रहा है, हमारे सामने दो तीन बार हमने देखा कि ये पूरी मिट्टी पानी में समा गई है। तो नतीजा क्या है कि जो पानी उस मिट्टी को अपनी तरफ ले, ये देखिए हमारे फ्रेम में साफ देखिए, ये कटान है, ये खौफ है बाढ़ का और ये जो पिलर है इनके पास अब समय नहीं है, बहुत बहुत कम समय है क्योंकि कुछ देर में ये पूरा हिस्सा भी बाढ़ में समा जाएगा। महिलाओं ने यहां पर याद में पति की दी हुई चूड़ियां तो जरूर लगाई थी लेकिन उन्हें शायद ही मालूम था कि ये चूड़ियां जो है महज एक याद रह जाएंगी, ये चूड़ियां तो शायद ये घर वाले अपने अपने घर ले जाएंगे।
1: बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए।
12: यूपी में बाढ़ का कहर है, गांव के गांव में पानी भर गया है, फसलें तो चौपट हो ही गई हैं। नतीजा क्या है, हम इस वक्त इस सीतापुर बाराबंकी बॉर्डर के गांव पर खड़े हैं और आप देखेंगे तो मेरे घुटने के ठीक नीचे तक यहां पानी आ चुका है। सामने की फसलें देखें तो सब फसलें तबाह हो चुकी हैं। नतीजा क्या है कि बाइक्स निकालना भी यहां से काफी मुश्किल गांव वालों के लिए हो गया। तो ये देखिए इस तरह का प्रवाह यहां पानी का है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ना, ये आपको बता देता हूं, ये मेरे नीचे कोई खेत खलिहान नहीं है, ये पूरी एक सड़क है, ये पूरी एक सड़क है, नीचे डामर है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता जाता है आगे तक गांव को कनेक्ट करता हुआ।
13: घर तो सर बहुत है यहाँ पे, ये सामने बंधा है इधर और बंधे के जितने गांव इधर अंदर है सब पानी से जलमग्न है।
1: प्रशासन का दावा है कि जिनके घर बार नदी में समा गए हैं उनकी मदद का प्लान शासन ने तैयार कर रखा है। सीएम आवास योजना के तहत नया मकान बनवाने का भी दावा है।
14: पिछले लगभग 10 से 12 दिनों से एक दो ऐसे पॉइंट्स नए आए हैं जिसमें घाघरा नदी अपने कोर्स को चेंज करते हुए कटान की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। तो जहां तक बाढ़ राहत का प्रश्न है उस पर तो लगातार हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। राहत किटों का वितरण हो, चाहे लंच पैकेट्स हो, चाहे पशुओं का चारा हो, या जो व्यक्ति या परिवार किसी चारों तरफ से नदी से गिर गए उनको बाहर लाकर हमारे राहत केंद्रों में विस्थापित।
0: ब्रेक के लिए फोन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
18: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: और वही कहाँ गए थे घूमने?
21: जीके मैक्स।
22: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
21: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
23: जेके वॉल मैक्स।
24: बेस्ट पेंट
25: जेके मैक्स।
26: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
27: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात करेंगे बाढ़ से मचे हाहाकार की। यूपी से बिहार तक बाढ़ से जिंदगी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि यूपी के प्रयागराज वाराणसी में गंगा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। अब बाराबंकी की बारी आई है, वहां पर आफत

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट
9: जेके मैक्स।
7: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सात साल बाद भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी पीएम मोदी की मीटिंग। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान। युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश द्विवेदी। महिला मोर्चा डी पुरंदेश्वरी के हाथ। संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी और वैजयंत पांडा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी। संगरूर सुसाइड पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप। प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीदा मायावती का दल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र हैं आकाश। उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन। दो दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त। 17 संपत्तियां सील। लक्ष्मी नगर में भी हुई शुरू जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

0: नमस्कार, आप देख रहे आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बज चुके हैं और न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। सबसे पहले बता देते हैं आपको, जैसा हमेशा बताते हैं, कि न्यूज रूम लाइव में आज कौन कौन सी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात की जाएगी ब्रिक्स समिट की, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की जो ताकत है, और ब्रिक्स समिट दो महाशक्तियां आज आने वाली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। शुक्रवार को यह बताया जा रहा है कि यहां पर व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं और शनिवार को शी जिनपिंग आ सकते हैं भारत में, और हो सकता है कि मुलाकात भी होगी। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो हम आपको बताएंगे, और दूसरी बड़ी खबर होगी सुसाइड वाला मामला। मान सरकार लगातार घिरती जा रही है, परिजनों का आरोप है कि दबाव बनाकर अंतिम संस्कार करवा दिया गया, इस खबर के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें, तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो बीएसपी की तरफ से होगी, जहां पर आकाश आनंद को पद से मुक्त कर दिया, मतलब टाटा मैनेजर कर दिया है, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया है। उनके ससुर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई पद नहीं दिया गया। और ठीक आधे घंटे बाद हम बात करने जा रहे हैं सड़क पर घमासान की, यानी मध्य प्रदेश आपको जल्द लिए चलेंगे, जहां पर बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे विशेषज्ञ आ गए, विद्वान आ गए, लेकिन अभी भी हनुमान जी की जो मूर्ति है वो टस से मस नहीं हुई है, और इसको लेकर अब किस तरह की खबरें आ रही है ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स समिट की, और ब्रिक्स समिट की बात यहां पर की जाएगी। तैयारियां पूरी तरह से लगभग हो चुकी हैं, और अब ये खबर आ रही है कि शी जिनपिंग वो आ सकते हैं भारत शनिवार को, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात भी हो जाए। पांच देश जिसमें भारत और भारत की बहुत अहम भूमिका, और जब भारत मेजबानी करेगा ब्रिक्स समिट की तो सबकी नजर होगी। अब बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि शनिवार को दिल्ली आ सकते हैं, शी जिनपिंग की बात की जा रही है। देखिए, भारत मंडपम में 12 और 13 सितंबर को बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेता एक मंच पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात की संभावना है, और ये दौरा करीब 7 साल बाद भारत की धरती पर कदम होगा। 2020 के गलवान टकराव के बाद दोनों देशों के रिश्तों में जो तल्खी आई थी उसके बीच अहम बैठक मानी जा रही है। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, शुक्रवार को आने की संभावना है। शी जिनपिंग शनिवार को आएंगे, दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में एक तरफ भारत चीन रिश्तों में नई गर्माहट की उम्मीद, तो दूसरी तरफ भारत रूस की जो पुरानी दोस्ती है उसको मजबूत करने का मौका। इस पूरे महामंच पर भारत की मेजबानी में एक कड़ा संदेश, बड़ा संदेश साफ है कि दिल्ली से दुनिया को संवाद का संदेश, दोस्ती का संदेश, बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती भूमिका का संदेश। तो देखिए, शी जिनपिंग 7 साल बाद, तलखी जो हुई थी उस तलखी को अब दूर करने के बाद, क्योंकि यह कहा गया है कि भारत और चीन एकजुटता जरूरी है अगर अर्थव्यवस्था को और मजबूती के साथ जाना है, तो पश्चिमी देशों को अगर मुकाबला करना है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो ऐसे में रूस, चीन और भारत की बहुत अहम भूमिका यहां पर हो जाती है, और इसी अहम भूमिका को लेकर बातचीत यहां पर की जाएगी। अब हमारे साथ सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, ब्रिक्स 12-13 तारीख को सबकी नजर होगी। अब चीन और रशिया और भारत, अब जब ये द्विपक्षीय मुलाकात होंगी तो क्या उम्मीद की जाए, किन मुद्दों पर बात हो सकती है?
1: देखिए, मुद्दे तो वैसे बहुत सारे होंगे। जब स्पेसिफिक अब बात करते हैं रशिया की, तो रशिया के साथ आप ना सिर्फ आप डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और कैसे मजबूत करेंगे, लेकिन की हाइलाइट्स ना सिर्फ डिफेंस के साथ साथ ट्रेड बेनिफिट भी होगा। अगर आप देखें कि भारत का इस समय जो ट्रेड का है करीबन 60 बिलियन के करीब है रूस के साथ, इसको 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंचाना है। इसके अलावा S-400 की बात कर लीजिए, नई बैटरीज की बात कर लीजिए, SU-57 की बात कर लीजिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो रूस के साथ बातचीत होगी। लेकिन जब आप चीन की बात करते हैं हिमांशु, तो चीन के साथ साथ आपका जो आपका कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट था 2020 के बाद, उसको कैसे आप पटरी पे ला सकते हैं, उसको कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एआई के अंदर, ट्रेड के अंदर चीन की पार्टनरशिप या चीन के साथ सहयोग आगे कैसे बढ़ेगा, इन सारी चीजों के ऊपर बातचीत होगी। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप पूरे प्लेटफॉर्म को देखें, ब्रिक्स जो है ना तो एक आप कह सकते हैं नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, यानी जहां पर अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों का इंटरफेरेंस नहीं होता, बल्कि भारत की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है या फिर जो स्ट्रेटेजीज है उनको बहुत बैलेंस आउट करता है। ये दिखाता है कि भारत का जो पक्ष है या जो भारत की जो चीजें हैं वो चाहे वेस्ट की तरफ हो, रशिया चाइना की तरफ हो, वो उसी तरीके की है जैसा दूसरे देशों के साथ रहता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ रहता है।
0: और आमतौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि चीन के साथ हमारी जो तलखी गलवान के वाले विवाद के बाद जो सामने आई थी 7 साल की तलखी, अब उसको दूर करने का भी बहुत जरूरी टाइम है, क्योंकि ये कहा गया है कि चीन और भारत अगर व्यापार बढ़ाते हैं, संबंध मजबूत होते हैं, तो उससे बाकी जगह जो चुनौतियां मिल रही हैं उससे भी आप पार पा सकते हैं।
1: देखिए, एक चीज है, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में ही भारत ने दो और हॉटलाइंस की शुरुआत की है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, जिसमें सेंट्रल एरियाज के अंदर दोनों के बीच में अगर कोई इश्यूज होते हैं तो उसको रिजोल्व किया जाए, लगातार दोनों में सहमति बने। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको एआई का जो स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है या फिर आप कह सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, डिजिटलाइजेशन की तरफ जो भारत ने कदम उठाए, भारत कैसे सहयोग कर सकता, भारत कैसे मदद कर सकता और एआई के अंदर दोनों देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल चीन की तरफ से एक लंबे समय तक चलता आया था कि आप बाउंड्रीज को या फिर बॉर्डर इश्यूज को पीछे रखिए, आप ट्रेड पे बात कीजिए, लेकिन भारत ने शुरू से बात रखी कि आप बातें दोनों पैरेलल चलेंगी, दोनों बातें, दोनों डेवलपमेंट पैरेलल होंगी। और शायद इसी वजह से भारत का यही रुख अब चीन को उस जगह लेकर आया जहां चीन ये मानता है कि अगर आपको दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी, आपको दोनों पर बातचीत करनी, और शायद इसी वजह से ये दोनों मीटिंग या फिर आप बायलैटरल टॉक जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: व्लादिमीर पुतिन के साथ जब मुलाकात होगी, क्योंकि शुक्रवार को वो आ रहे हैं और उसके बाद द्विपक्षीय बैठक भी होगी, तो वहां हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ अलग अलग जगह पर जो युद्ध छिड़े हुए हैं, पुतिन तो खुद एक युद्ध लड़ रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है, व्यापार पर भी असर पड़ता है और दुनिया भर की जो हालात है उस पर असर पड़ता है, तो इससे निपटने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं?
1: देखिए, ये अगर आप देखें पिछले 10-12 दिनों में दूसरी बड़ी बैठक है। हाँ। अभी हाल ही में एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात हुई थी। हाँ। दूसरी बैठक होने जा रही है। हाँ। तो आप ये मानिए कि अगर इतने शॉर्ट डिस्टेंस में अगर दो देशों के बड़े अध्यक्ष या फिर नेता मिल रहे हैं तो कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति या तो 10-12 दिन में बन गई होगी या उसका खाका एक लेकर आगे चला जाएगा कि आखिरकार देखिए इन महत्वों के ऊपर हम सहमत हैं, हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो शायद इसी मीटिंग के अंदर ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बल्कि ट्रेड को लेकर, ऑयल को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, इन तमाम चीजों के ऊपर हिमांशु बड़ी बातें हो सकती हैं। और ये भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत रूस के साथ जो अपना कह सकते हैं जो आप पैसे का लेन देन है, रूबल और रूपी की बात करते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ा सकता है, इसको लेकर भी बातचीत।
0: मुझे तो ये भी इस बारे में ये कह सकते हैं कि चर्चा आमतौर पर होती रही है कि जहां पर भारत, चीन और रूस तीन बड़ी शक्तियां एकजुट होती हैं, तो बाकी दुनिया भर की नजर होती है कि जब ये एक साथ आएंगे तो किन मुद्दों पर बात होगी। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज तक का राउंड टेबल भी चल रहा है और ऐसे में नीति आयोग के जो पूर्व सीईओ हैं जो अमिताभ कांत, उनसे भी बातचीत की गई, उनका क्या कहना था वो सुनवाते हैं आपको।
2: इंडिया का जो स्टैंस रहा है थ्रू आउट वो ये रहा है कि हम मल्टी अलाइंड हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है कि हम $4 trillion इकोनॉमी है, हम जब 2047 में जब विकसित भारत बनते हैं तो हमें $30+ trillion इकोनॉमी बनना है, उसके लिए हमने कई काम किए हैं, जैसे कि फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ किया, यूके के साथ किया, हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी आगे हैं और इसमें हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, पर हमें इसके साथ साथ चाइना के साथ भी काम करना है, रशिया के साथ भी काम करना है। ये समझना आवश्यक है हमको कि देखिए इस समय जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का जो फॉसिल फ्यूल है, जो तेल है, उसका एक तिहाई करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो इम्पोर्ट करता था, एक ज़माने में इम्पोर्ट करता था, आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया है और वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है उसने, पूरा तेल की सप्लाई वेनेजुएला पे, और उसका जो लक्ष्य था कि ईरान की भी तेल सप्लाई को कंट्रोल करे, तो अगर वो कंट्रोल करता है तो एक तिहाई, दुनिया के एक तिहाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो चाइना ने क्लीन टेक्नोलॉजी को पूरा मोनोपोलाइज करा है और वो करीब दुनिया की जो बैटरीज हैं 95% क्लीन बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करीब 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला अमेरिकन मैन्युफैक्चरर पर अभी के समय 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनाइटेड चाइना प्रोड्यूस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में सारी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली समय चाइना की है और सोलर में फिर करीब 80% उसका कंट्रोल है और विंड में करीब 77% उसका कंट्रोल है। तो आप जो देख रहे हैं सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज पर चाइना का कंट्रोल है और फॉसिल फ्यूल पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तिहाई कंट्रोल है। तो अगर इंडिया को आगे चल के विकसित भारत बनना है तो इंडिया को इस समय फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं 180 बिलियन का, जब युद्ध होता है वेस्ट एशिया में तो वो बढ़ जाता है और उससे उससे रुपी पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। पर आगे चल के हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ना है, इसलिए चाइना के साथ भी काम करना बहुत आवश्यक है।
0: तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिकांत दास को आपने सुना, लेकिन ब्रिक्स राउंड टेबल में बीजेपी के उपाध्यक्ष राम माधव से भी आज तक बातचीत की और उन्होंने बताया कि कैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत जो है वो एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
3: देखिए, पहली बात तो हम सबको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक नए प्रकार के विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। वो नया विश्व आज के वर्तमान के जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, कोई G20 देख रहे हैं, कोई ब्रिक्स देख रहे हैं, कई SCO कह रहे हैं, इन सब से भिन्न होने वाला है। इनफैक्ट द वर्ल्ड टुडे मेनी पीपल फियर दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर इकोनॉमिक रिसेशन, समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस्ड इन से 1998 2008-9, समथिंग लाइक दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। वो पूरा विश्व का चित्र बदलने वाला है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के विभिन्न प्रकार के इस समय जो गुट है, ग्रुप्स है, उन सबके साथ अच्छा संबंध रखता है। आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, एक कोई इसमें हम ब्रिक्स का हिस्सा होना और हमारे राष्ट्रहित की बात करने विरोधाभास नहीं है। हम केवल ब्रिक्स के नहीं है, हम G20 में भी है, हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्सा है। वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वॉट इज नॉट एग्जैक्टली एन अलायंस बट एन अरेंजमेंट कॉल्ड क्वाड इन आवर इंडियन ओशन रीजन। वी आवरसेल्व्स हैव समथिंग कॉल्ड बिम्स्टेक विच वी ड्राइव। ये इसलिए है कि जो नया विश्व बनेगा उसमें आप कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट के साथ चल नहीं पाएंगे। भारत ये समझता है, हमारा लीडरशिप ये समझता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के इस समय जो गुट बन रहे हैं, मैं आगे कहता हूं आगे जाकर, मैंने मेरे किताब में भी लिखा था, और भी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनी लेटरल्स विल एमर्ज, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसरप्शन दुनिया में हो रहा है। अभी तक जो बड़े देश है वो अमेरिका अपना स्थान छोड़कर भाग रहा है, विच इज ए रियालिटी वी आर ऑल सीइंग। सो द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट विल टेक शेप इन दैट बिग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव टू प्ले अ वेरी बैलेंस्ड रोल। वो रोल हम आज प्ले कर रहे हैं। हमारा वसुधैव कुटुंबम का स्पिरिट वो है कि जहां जहां जिस प्रकार का इस प्रकार के मिनी लेटरल्स मल्टीलेटरल्स एमर्ज करेंगे उनमें भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके।
0: और देखिए, इसी मंच पर ब्रिक्स राउंड टेबल के मंच पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से भी आज तक ने बातचीत की और दोनों ने कहा चूंकि ब्रिक्स सम्मेलन भारत में हो रहा है तो ऐसे में जो इसकी अहमियत है वो और ज्यादा बढ़ जाती है।
4: देखिए, ब्रिक्स जो विकसित देशों का एक समूह है, प्राथमिकता पर उसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आविष्कार हो रहे हैं और जिस तरफ ये आविष्कार जा रहे हैं उसके ऊपर बहुत ही गंभीर और संवेदनशील चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने आविष्कार हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जो सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बहुत तत्परता से बढ़ रहे हैं, वो सारे ग्लोबल नॉर्थ में हो रहे हैं और इससे जो डिजिटल डिवाइड है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच, ये और बढ़ रही है। और इसलिए किस तरह से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कार के ऊपर, इसके इनोवेशन के ऊपर क्या गार्डरेल्स लगानी ज़रूरी है और किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाए कि वो जो गार्डरेल्स हैं, वो जो बंदिशें हैं, उनको पूरी तरह से उनके ऊपर निगरानी कैसे रखी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है आज ब्रिक्स के सामने।
0: तो देखिए, हर जगह ब्रिक्स समिट की चर्चा चल रही है और ब्रिक्स समिट के दौरान एक कलात्मक संदेश आया है और ये संदेश आया है अमृतसर से। पेपर आर्टिस्ट डॉक्टर जगजोत सिंह रूबल ने ब्रिक्स सम्मेलन को समर्पित एक अनोखी कलाकृति तैयार की है। 5 फीट की इस पेंटिंग को तैयार करने में 18 दिन लगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों की एक फ्रेम में उन्हें उकेरा गया। जगजोत रूबल की इस कलाकृति का संदेश है ग्लोबल लीडरशिप, एकता और शांति।

0: और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है और आने वाले वक्त में संगठन को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक कवायद की गई है। अब आप देखिए कि बीजेपी की तरफ से मिशन 2027 से पहले ये बड़ा फेरबदल है। युवा मोर्चा हरीश द्विवेदी को जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी महिला मोर्चा की जिम्मेदारी डी पुरंदेश्वरी को दी गई है, बीजेपी एससी मोर्चा संजय भाटिया को जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष वैजयंत पांडा को बनाया गया है, बीजेपी किसान मोर्चा का अध्यक्ष लाल सिंह आर्या को उनकी जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी एसटी मोर्चा सतीश पुनिया और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी गजेंद्र पटेल को सौंपी गई है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये वो नाम है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, बीजेपी मोर्चा के प्रभारी हैं और इन सभी को वो जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें हरीश द्विवेदी उनको युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है, तो साथ ही महिला मोर्चा की जिम्मेदारी डी पुरंदेश्वरी को दी गई है, एससी मोर्चा संजय भाटिया, एसटी मोर्चा सतीश पुनिया, किसान मोर्चा को लाल सिंह आर्या लीड करेंगे और अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पटेल को बनाया गया है, ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष वैजयंत पांडा को बनाया गया है। और अब पंजाब से बात करते हैं, पंजाब की खबर जहां पर बांद सरकार का लगातार घेराव किया जा रहा है। घेराव करने की वजह क्या है? कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि यहां पर सरकार का रवैया ठीक नहीं है। संगरूर सुसाइड केस में बांद सरकार की घेराबंदी हुई है और इसमें आपको ये बता दें कि अब चौतरफा घेराव बांद सरकार का इस मामले में किया जा रहा है। कांग्रेस का डेलीगेशन भी मिला है पंजाब के गवर्नर से और अब यह बताया जा रहा है कि गुलजार सिंह जिन्होंने ड्रग्स को खुलेआम बिकने का मुद्दा उठाया, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने उठाया, इसके बाद उनकी आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब उनका परिवार यह कह रहा है कि दबाव उनके ऊपर बनाया गया अंतिम संस्कार का और जल्द से जल्द उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। पंजाब में ड्रग्स पर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और इस पर अब ये देखिए घेराव क्या, कांग्रेस हल्ला बोल कर रही है, कांग्रेस का घेराव है, बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है, एससी आयोग भी अब एक्शन में आ गया है। कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, परिवार का आरोप है कि गुलजार सिंह पर माफी मांगने चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा था। पांच लोगों के खिलाफ हालांकि एफआईआर दर्ज है, पंजाब पुलिस ने अब सरपंच समेत पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि एफआईआर में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम नहीं है।
1: लगाया है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया था, एक वीडियो जारी किया पूरे परिवार ने और बोला कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया, दबाव बना के संस्कार कराया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी जिन लोगों का भी नाम गुलजार सिंह ने उस पूरे वीडियो में लिया है मरने से पहले, उन सबके ऊपर जो है एफआईआर होनी चाहिए। और बड़ी बात यह कही कि संस्कार जो है वो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने दबाव बनाकर कराया है। इस पूरे इशू पे हमारे साथ बात करने के लिए श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर विक्रम सिंह मजीठिया। सर, आज एक वीडियो आया जहां गुलजार सिंह का पूरा परिवार जो है वो बैठा है अपने घर के अंदर और वीडियो बना रहे हैं कि क्रिमेशन जो गुलजार सिंह का है वो अंडर जो है प्रेशर करके किया गया और जो भी वीडियो में नाम लिए गए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए।
2: तो ये बात दिख ही रही थी एंड इट्स टेकन लेस देन 24 आवर्स की उन्होंने इस बात को बयान करा है। कहीं ना कहीं आई थिंक फैमिली ने ये महसूस जरूर करा है कि व्हाट वाज द डाइंग डिक्लेरेशन, मरने से पहले उनकी जो अखीरली वीडियो है गुलजार सिंह की, वो क्लियरली नशे के जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी संगरूर में और पंजाब में, जो संगरूर होम डिस्ट्रिक्ट है चीफ मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसने उसको लेके आवाज उठाई थी एंड द वे ही वॉज प्रेशराइज्ड, ह्यूमिलेटेड, उसको ये बोला गया गुलजार सिंह को कि आपको सबक सिखाएंगे, उसकी मदर, उसकी वाइफ ये बात को बार बार बयान कर रही थी, मगर क्योंकि उसकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, उस डेथ के बाद गवर्नमेंट स्वीप्स इनटू सीरियस एक्शन मोड एंड वो एक्शन मोड में पुलिस, हरपाल चीमा एंड कंपनी, द एसएसपी, आई वुड वांट टू मेंशन, क्योंकि जहां पे वो एसएसपी एक लेडी लगी है रवजोत गरेवाल, शी इज नोन फॉर दीज नेफेरियस नोटोरियस एक्टिविटीज ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दीज हार्श वर्ड्स, बिकॉज पुलिस का काम, वर्दी का काम है लॉ इम्प्लीमेंट करना, और वर्दी का काम है कि किसी गरीब
3: की फतेह. बीते दिन जो बहुत ही मंदभागी घटना हुई है गुलजार सिंह का बेटा, वो बेटा ही मैं, तेरा मेरे दो भरा, तेरा मेरी माता जी ने, बीते दिन जो सारे पंजाब नूं पता ही है भी बहुत माड़ी घटना हुई है. असी आही अपील करते हाँ थोड़े अगे भी, तो प्रशासन अगे भी जो जो साढ़े नाल धक्का होया
4: ये भी आ रहा है कि आप खुद जा रहे हैं डेलीगेशन लेके उनसे मिले.
5: अभी अभी जा रहे हैं जी, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं. पर ये है कि उस गरीब आदमी ने, वो दलित आदमी बेचारे ने एक सवाल पूछा था कि चिट्टे को बंद करो, क्योंकि उसका परिवार तबाह हो चुका, उसका लड़का खुद चिट्टे में है. उसने कहा कि जी चिट्टा बंद करो. मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जे इसकी भी किसी को तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछ रहे हैं. उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि
6: गवर्नर साहब नू एक डेपुटेशन दे रूप दे विच जाके मिले हैं. पंजाब दे विच जिस तरीके दे नाल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, ते नाल नाल जिस तरीके दे नाल सरकार गैंगस्टरवाद नू आप अगे बधा रही है, उना नू पेट्रोनाइज कर रही है, ते नाल नाल जिस तरीके दे नाल सरकार नू चला रही पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार अते पुलिस.
0: और आइए बात करते 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में बीएसपी के अंदर जो सियासी खींचतान चल रही है उस बारे में. मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया है, सभी पदों से मुक्त कर दिया है. और ये खबर आपको बता दें कि पहले पार्टी से पद छीना और उसके बाद अब पार्टी से बाहर किया. कल ही आकाश आनंद के खिलाफ, आकाश आनंद के लिए उसके ससुर को राजनीति से संन्यास की शर्त रखी थी. कुछ देर पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने संन्यास का ऐलान भी किया, लेकिन मायावती नहीं पिघली और थोड़ी देर के बाद उन पर हमला बोलते हुए एक्स पर अपने भतीजे को भी नहीं छोड़ा और कहा कि आकाश आनंद को पार्टी से ज्यादा अपने ससुर का मुंह है. आकाश को करियर से ज्यादा ससुर का मुंह है, ये मायावती की तरफ से कहा गया. हालांकि अब इसमें अलग अलग बयान भी सामने आए. इसमें मायावती की तरफ से एक लंबा सा पोस्ट भी किया गया आकाश पर. देखिए कब कब का क्या एक्शन हुआ, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं. मई 2024 उत्तराधिकारी का दर्जा, उसके बाद पार्टी से निष्कासन किया गया, राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाया गया, फिर बीएसपी से बाहर किया गया. हालांकि इसमें जिन पर आरोप लग रहा है यानी आकाश के ससुर, उनका भी पोस्ट आया है जो इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था. यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक.
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस. इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
9: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी. इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3. The E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
6: जेके वॉल मैक्स
4: बेस्ट पेंट।
7: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर, दिन भर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

7 साल बाद भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान। युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश द्विवेदी। महिला मोर्चा डी पुरिंदेश्वरी के हाथ संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी और वैजयंत पांडा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी। संगरूर सोसाइट पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिवार का आरोप। प्रशासन ने जबरन करवाए अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र हैं आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिन में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्तियां सील। लक्ष्मी नगर में भी शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

0: बाबा की कृपा से भक्तों का जो जन भावना जुड़ी है, भक्ति जुड़ी है, उनका आदर करते हुए बाबा यहीं रहे, ऐसा फैसला हमारे सीएम साहब लेंगे।
1: हनुमान जी स्थापित रहो और यही हनुमान जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे पब्लिक देखने आ रहे, बाहर से बहुत हारने लग गए।
2: अब अगर पांचवा प्रयास हुआ तो हम सब सनातनी यहाँ पे, मैं महाराज जी और जितने भी सनातनी भाई बहन है, हम सब यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे।
3: देखिए अभी हर किसी की जुबान पर उज्जैन के इस हनुमान मंदिर का जिक्र है जिसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि सबकी निगाहें यहां पर टिक जाती हैं। मूर्ति

0: गलती नहीं है, खूब कोशिशें की जाती हैं, लेकिन मूर्ति को निकाल नहीं पाते। आईआईटी इंदौर की भी मदद ली जाती है, साधु संतों से लगातार बातचीत की जा रही है कि कहीं कोई विवाद की स्थिति ना बने और एक आपसी समझौते के साथ एक समाधान निकाल सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: प्रभु हनुमान के चरणों में चालीसा पाठ हो रहा है। भक्त वंदन पूजन पाठन में लगे हुए हैं। हनुमान भक्तों का ताता फत नहीं हो रहा, एक एक कर भक्त पहुंच रहे हैं। सुबह से शाम तक यही आलम है। साधु संत भी पधार रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। सबकी बस एक ही गुहार है कि पवन पुत्र की ये प्रतिमा यहाँ से ना हटाई जाए। 4 सितंबर को जन्माष्टमी थी, उसी दिन से सड़क के बीचों बीच स्थित हनुमान मंदिर पर प्रशासन का एक्शन शुरू हुआ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने मंदिर की दीवारों को तो गिरा दिया, लेकिन आज 6ठे दिन भी हनुमान की प्रतिमा जस की तस विराजमान है। प्रशासन मूर्ति को हटाने की कोशिश में है, लेकिन लोग नाराज हैं। वो प्रशासन के फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। अगाध आस्था का हवाला देते हुए साधु संत अपील कर रहे हैं कि प्रशासन उनकी भावनाओं का ख्याल रखे।
2: हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए, 4-5 दिन से मीडिया के स्तर से और उज्जैन के वासी हैं, तो सब जगह देखिए हनुमान जी का चमत्कार समय दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को 3 बार उठाने का प्रयास किया गया, फिर भी हनुमान जी अपनी जगह से अडिग है, नहीं उठे। तो इसी सोच करके आए कि देखे हनुमान जी का चमत्कार क्या है। अपने सनातन में चमत्कार होते रहते हैं, भगवान समय समय पर चमत्कार दिखाते रहते हैं, और बार बार उनको उठाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब चमत्कार 1 या 2 बार 3 बार चमत्कार होता है, अब बार बार चमत्कार थोड़ी होता है। इसलिए शासन प्रशासन से साधु संत प्रार्थना समझ लीजिए या अनुरोध करते हैं कि अब जैसे हैं बाबा, उनको यथावत स्थान पर रहना चाहिए।
1: भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में उनकी अपार श्रद्धा है, इसे नहीं हटाया जाना चाहिए।
3: हनुमान जी स्थापित रहो और यही हनुमान जी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे पब्लिक देखने आ रहे, बाहर से बहुत हारने लग गए, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की बहुत मेहरबानी है यहाँ पे साहब बजरंग बली की।
4: आप लोग दिख ही रहे हैं, बाबा पूरे वायु पुत्र हैं, पूरे ब्रह्मांड में वायु के रूप में फैल गए हैं आप लोगों के माध्यम से।
5: अपने ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं ना, ये इन भक्तों को भी प्रशासन इनके विचारों को भी प्राथमिकता दे, शासन प्रशासन इनके विचारों को भी प्राथमिकता दे, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए निर्णय करे।
1: दूर दूर से श्रद्धालु इस खड़े हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए खींचे चले आ रहे हैं। विवादों के बीच वो दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। हनुमान चालीसा पाठ करने वालों की भारी भीड़ लग रही है। श्रद्धालुओं के साथ हिंदू संगठन भी अड़ गए हैं।
6: प्रशासन विस्थापन करना चाहता है, आपका क्या कहना है?
7: बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम चाहते बाबा यही है, बरसों 1000 वर्ष पुराने बाबा, और यहाँ के चमत्कार तो पूरी भारत में दुनिया में सबको पता है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि 60 मंदिर विकास के लिए उन्हें ले चुके आ रही है, एक घर छोड़ दीजिए। हम 4x4 की कुटिया चाहते हैं। सरकार बड़े बड़े स्टेचू लगाती है महापुरुषों के, लगे ही हुए सब दूर, बड़े बड़े चौराहे बनाती है पत्थरों के, वो भी बने ही हुए हैं। आज ये दृश्य हमें अयोध्या जी की याद दिलाता है, जैसे भगवान राम टाट में थे, आज हनुमान जी महाराज भी टाट में है। बहुत दिल दुखता है हमारा।
1: प्रशासन के मुताबिक अब तक मूर्ति को हटाने की एक भी कोशिश नहीं की गई है। जानकारी ये भी है कि मूर्ति को सुरक्षित हटाने के लिए आईआईटी इंदौर की टीम आज भी मुआयना करने वाली है।
8: पहले हम आपको वो प्रतिमा दिखाते हैं, करीब 8-8.5 फीट ऊंची वो प्रतिमा है हनुमान जी की, खड़े हनुमान जी की, जो यहाँ पे विराजमान है। सामने अगर आप मूर्ति के नीचे की तरफ का हिस्सा देखें तो इसके ठीक नीचे भी जो नींव है वो काफी नीचे तक है, ऐसा बताया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, और यहाँ पे प्रतिमा को हटाने के लिए जब जन्माष्टमी पे प्रशासन पहुंचा था, मंदिर का स्ट्रक्चर जो है उसे हथौड़ों से तो हटाया गया था, प्रतिमा नहीं हटा पाए। और अब जब ये पूरे देश भर में सुर्खियां इस मंदिर ने बटोर ली है, प्रतिमा ने बटोर ली है, तो फिर इस गहराई को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं।
1: इस खड़े हनुमान मंदिर की दीवारें गिराई जा चुकी हैं, अब मूर्ति को हटाने का प्रबंध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जमीन के अंदर बेस करीब 5 फीट गहराई तक है। मूर्ति की लंबाई करीब 8 फीट की बताई जा रही है। 170 साल पुराने मंदिर की यह मूर्ति भी करीब उतनी ही पुरानी बताई जा रही है। लिहाजा इस प्राचीन मंदिर की अहमियत काफी ज्यादा है और इस पर भक्तों का भरोसा उतना ही ज्यादा।
9: ऐसे बहुत सारे हनुमान भक्तों की आशा के यही रहने चाहिए और हम सब भी इसीलिए आए कि भगवान से यही विनती कर रहे हैं, बाबा महाकाल से और शासन प्रशासन से कि आप यहाँ बहुत सारे मंदिर हटा चुके, एक मंदिर अगर यहाँ पे रहेगा तो आपका क्या मतलब, इसमें कोई जनहानि नहीं होने वाली है,
10: यही रहना चाहिए ये मूर्ति और इसका विकास होना चाहिए, यही हमारा कहना है।
11: दर्शन करते करते हो गए हैं, हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, 60 मंदिर वो ले चुके हैं, एक मंदिर वो रहने दे, प्रशासन से निवेदन है बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत ना करें।
1: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, पहले ये सड़क करीब 20 फीट चौड़ी थी, अब ये 50 फीट चौड़ी कर दी गई है। इस सड़क के बीचों बीच स्थित है ये हनुमान मंदिर, जहां अब भक्त जमे हुए हैं। भक्त इस प्रतिमा को हटाने के प्रशासनिक फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं।
8: अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा पास ये रहेगा, पहली मांग तो ये है कि प्रतिमा को अन्यत्र कहीं स्थापित ना किया जाए, प्रतिमा यही रहे, पहली मांग सबकी ये है। दूसरा, जो प्रशासन ने जगह उपलब्ध कराई थी टंकी चौराहे पे, वहां पे जो मंदिर का स्ट्रक्चर अभी तैयार किया गया है, उसमें जो चबूतरा बनाया गया है प्रतिमा की स्थापना के लिए, वहां पे उसका मुख अभी किस तरफ है?
12: वहां जो है, जो जब सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी कि प्रतिमा को वहां पे स्थापित किया जाएगा, तो सभी विद्वानों की राय लेके उसको उत्तरमुखी करने का विचार हो चुका था।
1: मूर्ति हटाने के प्रशासन के फैसले को लेकर लोगों में गुस्सा है। हालांकि स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन अब बातचीत कर मामले को सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन अब तक ये गतिरोध दूर होता नहीं दिख रहा। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।
0: तो देखिए, जिस जगह पर उज्जैन की बात की जा रही है, इस मंदिर को नई जगह पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, वहां पर प्रशासन ने तैयारियां भी कर ली हैं और वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश पाल।
8: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को हटाने के लिए जहां एक तरफ विवाद चल रहा है, तो इस बीच आज तक पहुंच गया है उस जगह पर जिसे चिन्हित किया गया है खड़े हनुमान की प्रतिमा के नए मंदिर के रूप में। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस चबूतरे की जो बनाया गया है खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को छतरी चौक के पास से हटा करके उज्जैन के टंकी चौक चौराहे पे ये नई व्यवस्था की गई है। खड़े हनुमान की प्रतिमा जब वहां से हटाई जाएगी तो उसे इसी चबूतरे पे स्थापित किया जाएगा और ये प्रशासन ने पूरी व्यवस्था यहाँ पहले से ही कर दी थी। आप देख सकते हैं जन्माष्टमी पर यहाँ पे ये हार फूल वगैरह सब लगा दिए गए थे और प्रशासन की पूरी तैयारी थी कि प्रतिमा जब छतरी चौक से हटेगी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत, तो उस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ और भक्ति भाव के साथ इसी जगह पे पुनर्स्थापित किया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं प्रतिमा हटाने को लेकर के जब से विवाद शुरू हुआ है तो ये चबूतरा बन के तैयार खड़ा है, अभी इसकी छत तैयार नहीं की गई है, लेकिन आनन फानन में ये तैयारियां की गई थी। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा तो अब ये जगह तो खड़ी है, चबूतरा खड़ा है, ये नया मंदिर होगा। अगर आप देखें तो पहले से ज्यादा बड़ा मंदिर है ये, क्योंकि जिस जगह पे अभी खड़े हनुमान की प्रतिमा स्थापित है वो सड़क के बीचों बीच बना 5x5 फीट का एक छोटा चबूतरा है, लेकिन ये एक पूरा मंदिर होगा खड़े हनुमान का, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। और ये जो पूरा मंदिर परिसर बन रहा है ये सड़क के किनारे टंकी चौक चौराहे पे बनाया जा रहा है, और जब ये पूरा बन जाएगा तो ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा परिसर होगा जो कि जो वर्तमान मंदिर है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा और यहाँ पे ज़्यादा लोग एक बार में आकर के खड़े हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे।
0: रवीश पाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रवीश, अब तो लोग ये कह रहे हैं कि अब हनुमान जी ही हैं जो कोई ना कोई समाधान निकाल सकते हैं, क्या समाधान निकलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी?
8: देखिए हिमांशु, अभी समाधान की तो कोई बात यहाँ फिलहाल नहीं हो रही है, अभी तो जिद की बात हो रही है और जिद यही है हनुमान भक्तों की कि मंदिर यहाँ से नहीं हटाया जाए। मेरे साथ तमाम बड़े जो हनुमान भक्त हैं, जो शुरू से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, अपनी मांग सामने रख रहे हैं, वो यहाँ मौजूद है। लेकिन इस बीच में हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। जब से ये सुर्खियों में आया है मंदिर, हजारों की संख्या में लोग ना केवल उज्जैन बल्कि आसपास के दूसरे शहरों से और राज्यों से भी आ रहे हैं यहाँ पे, और इस वक्त जम करके जो हनुमान भक्त हैं वो यहाँ पे अब तो काफी दिन हो गए। जन्माष्टमी पे प्रशासन आया था यहाँ पे मंदिर को हटाने के लिए और आज इतने दिन हो चुके हैं, अभी क्या स्थिति निकल पा रही है? आप लोग की मांग जो है आप उस पे कायम है?
13: चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो चारों युग में जिनके प्रताप से उजियारा हुआ है उसको अंधकार में धकेलने की कोशिश अभी तक प्रशासन की नाकाम हो चुकी है, सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तो अब हम अभी भी यही मांग कर रहे हैं कि आप बाबा को पुनः यहीं पर रहने दें और कहीं नहीं ले जाएं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की जो आस्था का सवाल है उसका आदर करें, उसका अनादर करना बंद करें और अब त्वरित आप ये घोषणा करें कि बाबा यहीं रहेंगे। जय जय श्री
14: दो से लेके 282 तक का सफर और 330 सीट का सफर, हम ये कह रहे हैं जब जो राम की पार्टी हमारी, जो नारा है हमारा, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भरी संसद में कहा था वामपंथियों को कि राम से मत लड़िए निमट जाओगे, और हम कह रहे हैं कि हनुमान जी से मत लड़िए निमट जाओगे। बार बार सरकार से अपील है, हम ये जो गुलामी का प्रतीक टेंट कई दशकों तक हमने अयोध्या में देखा है और झेला है, अब ये आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है, अब कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बह जाए, हम बिल्कुल तैयार हैं। और हमने कहा है
15: शासन पर भक्त चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत स्पष्ट दिख रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको हर्षा रिछारिया याद है, प्रयागराज संगम में काफी चर्चा में रही थी, अब वो भी इस जगह पर पहुंची मंदिर में, उनसे ही बात की हमारे सहयोगी रवीश पाल।
8: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर की प्रतिमा को लेकर के जो विवाद चल रहा है वहां पे, अब हर्षा रिछारिया जो हैं उनकी भी एंट्री हो गई है, वो आज पहुंची हैं, यहाँ दर्शन उन्होंने किए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि क्या लगता है उनको, क्या लगता है कि प्रतिमा को लेकर के जो चल रहा है, आपने भी दर्शन किए, आपको क्या लगता है कि प्रतिमा को यहाँ से अन्यत्र कहीं स्थापित होना चाहिए, किया जाना चाहिए, क्या लग रहा है?
16: देखिए, हम हर हाल में सरकार के साथ हैं, हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारे उज्जैन के निर्माण में, आने वाले कुंभ के निर्माण में, व्यवस्थाओं में कोई भी गलती हो या कोई भी भूल चूक हो, कोई भी कमी रह जाए, हम वो दोष अपने ऊपर बिल्कुल नहीं चाहते, हम सरकार के साथ हैं। लेकिन पूरे शहर में निर्माण का कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मंदिर ऐसा हमारे सामने आया है जहाँ पे इस कलयुग के जीवंत भगवान ने हमें ये बताया है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहते, चार प्रयासों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, इससे ज्यादा क्या स्पष्टीकरण हमको चाहिए। तो हम अब पांचवा प्रयास ना करें और यहाँ पे जो मंदिर हमने क्षतिग्रस्त किया है उस मंदिर में यहाँ क्षमा याचना के साथ पूजा अर्चना करें और भव्य मंदिर निर्माण का यहाँ पे संकल्प लें। अब अगर पांचवा प्रयास हुआ तो हम सब सनातनी यहाँ पे, मैं, महाराज जी और जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, हम सब यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे।
8: क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रतिमा को अब नहीं हटाया जाना चाहिए? क्या जो पिछले कोशिशें हुई है उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से आपको लग रहा है कि प्रतिमा जो है वो यहाँ से नहीं हटाई?
16: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है बहुत बहुत ही रेयर हम कहीं सुनते होंगे कि मंदिर का स्थानांतरण किया जा रहा है और वहां पे वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पहली जगह जहां के बारे में हम इतना सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर का चमत्कार, उनकी मर्जी है और ईश्वर की मर्जी का मान सम्मान रखना ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए।
8: आंदोलन करेंगे अगर प्रतिमा हटाने की कोशिश होगी?
16: बिल्कुल बिल्कुल जी, धरना प्रदर्शन और अनशन होगा।
15: देखिए हनुमान जी का जो मंदिर है, मंदिर की दीवारों को यहाँ पर तोड़ दिया गया है, लेकिन जो मूर्ति है, मूर्ति अभी भी जस की तस वहीं पर बनी हुई है और ऐसे में जो लोग हैं वो वहां पर जा रहे हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं।
17: जातुर राम राज्य करने को आतुर, एक तरफ सवाल आस्था का है तो दूसरी ओर विकास की दुहाई है। सिंहस्थ 2028 जैसे महाआयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास कार्यों को पूरा कर रही है। उज्जैन में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, बाईपास रोड भी तैयार किया जा रहा है और शहर के अंदर की सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। सिंहस्थ महापर्व के आयोजन को लेकर आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। उसी कड़ी में कंठाल चौक से छत्री चौक तक के मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। प्रशासन ने अपनी मुहिम के तहत ही तय कार्यक्रम के अनुसार अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन मंदिर को लेकर सोशल मीडिया में खबरें फैली तो मामले ने अलग ही रूप ले लिया। इस खड़े हनुमान मंदिर के पुजारी की माने तो प्रशासन से मंदिर और मूर्ति को हटाने के लिए उनकी पहले ही बात हुई थी, लेकिन प्रशासन ने लापरवाही बरती और मामले ने तूल पकड़ लिया।
18: यही कहना है कि इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता था, पर प्रशासन ने जो गलतियां करी है उसका जो खामियाजा प्रशासन अब ये देख रहा है। प्रशासन की मुख्य गलती ये थी कि मैंने जो मेरी सहमति दी थी वो कंडीशनल दी थी, उन्होंने उन कंडीशंस को पढ़ा नहीं और ये बवाल पैदा कर दिया। अब जो स्थिति है वो मेरे से बाहर हो चुकी है। अब पूरा के पूरा मामला श्रद्धा और दर्शनार्थियों से जुड़ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो चीज हो रही है उससे अब यहाँ देश भर के लोग आने लग गए हैं।
17: अब हनुमान की मूर्ति हटाए जाने के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार की शाम उज्जैन का संत समाज हनुमान के चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मंदिर पहुंचा। संत समाज ने पहले हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए, विधि विधान से पूजन किया, फिर प्रतिमा को दूसरी जगह पर ले जाने का विरोध जताया। संतों का कहना है कि इस समय हनुमान जी का चमत्कार दिखाई दे रहा है।
19: शासन प्रशासन ने भी, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, 2-3 घंटे से एक मैसेज चल रहा है कि जनभावनाओं का सम्मान किया जाएगा, सभी संतों का जैसा मार्गदर्शन है उस हिसाब से काम होगा। तो प्रशासन भी अपना ही है और शासन भी अपना ही है, हनुमान जी भी अपने हैं, संत भी अपने हैं। तो थोड़ा सा कुछ कहीं पर हम मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि संवाद में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आई है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है, शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए जो भी कार्य किया जाए तो जनभावनाओं को सबसे पहले सर्वप्रथम रखा जाए।
17: इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी कल प्रदर्शन किया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज थामे रामधुन गाते हुए खड़े हनुमान मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की, फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हनुमान की मूर्ति को लेकर शुरू हुए विवाद में प्रशासन फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तो ये आस्था का मामला है, ऊपर से उज्जैन मुख्यमंत्री मोहन यादव का शहर भी, लिहाजा प्रशासन किसी तरह की जल्दबाजी नहीं कर रहा। 170 साल पुरानी हनुमान प्रतिमा को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी है। मंदिर को सड़क के बीच से हटाने के फैसले को लेकर प्रशासन पुजारी को पहले ही जगह भी बता चुका है कि इसे कहां स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए टंकी चौराहे पर जगह दी है। उधर प्रशासन कह रहा है कि इस मामले में साधु संतों से बात की जाएगी ताकि धर्म और आस्था का ख्याल रखते हुए मुहिम चलाई जाए।
20: प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत सर्वोपरि है। खड़े हनुमान जी से संबंधित विषय में प्रशासन सभी श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की भावनाओं और आस्था का पूर्ण सम्मान करता है। सभी संबंधित पक्षों की भावनाओं और को ध्यान में रखे बिना प्रशासन कोई भी निर्णय अथवा कदम नहीं उठाएगा। सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है।
17: प्रशासन इस गतिरोध को खत्म करने के लिए ही IIT इंदौर टीम की मदद ले रहा है ताकि बगैर कोई नुकसान पहुंचे आस्था का सम्मान करते हुए हनुमान की मूर्ति को नई जगह पर स्थापित किया जा सके। आज दूसरी बार IIT टीम के पहुंचने की खबर है।
18: पर IIT टीम जो थी उन्होंने कोई खुदाई नहीं करी, जो पुरानी जो उन्होंने खुदाई करी थी उसी को देख के गए थे और उसके बाद वो स्कैनिंग कराना चाहते हैं भगवान की, तो उसके लिए वो यहाँ आने वाले थे पर अभी तक तो कोई आया नहीं है।
17: इस मामले में भक्त लगातार मांग कर रहे हैं कि मूर्ति नहीं हटाई जानी चाहिए। अब देखना है कि प्रशासन क्या रास्ता निकालता है। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रवीश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
15: वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
0: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: झारखंड की राजधानी रांची के मारवाड़ी कॉलेज इलाके में पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया और ये बताया जा रहा है कि इस हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मलबे को हटाया गया और उसके बाद दो मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साई,
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान। युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश त्रिवेदी। महिला मोर्चा डी पुर्देश्वरी के हाथ संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी और विजयंत पांडा ओबीसी मोर्चे के प्रभारी। संगरूर सोसाइट पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप। प्रशासन के जबरन कराए अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी डेलीगेशन। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश, उनके ससुर ने फैसला लेने में देर कर दी। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्ति सील। लक्ष्मीनगर में भी हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 खबरें 100 शहरों से। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी ने दिल्ली में अवैध तौर पर और खतरनाक इमारतों पर कार्रवाई तेज कर दी। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में डिमोलिशन ड्राइव जारी रखा गया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मयूर कुंज सोसाइटी के टॉप फ्लोर पर एमसीडी के द्वारा डिमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है। नोटिस के बावजूद भी किए गए थे कई कंस्ट्रक्शन। पूर्वी दिल्ली में भी अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर अभियान जारी। ललिता पार्क में बरस रहा है हथौड़ा। लक्ष्मीनगर मधुविहार न्यू अशोक नगर में भी चला अवैध पीजी अवैध बिल्डिंग सर्वे और सीलिंग का अभियान। जगतपुर में भी गर्जा एमसीडी का बुलडोजर। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। गांधी विहार में एमसीडी का बड़ा एक्शन। कई बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर। खतरे को देखते हुए की गई कार्रवाई। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। पिछले 2 दिनों में 34 इमारतों को तोड़ा गया, 17 को सील किया गया, जबकि 1200 से ज्यादा पीजी इमारतों का सर्वे भी किया गया है। फील्ड सर्वे के आधार पर इमारतों को 5 विभागों में बांट रही है टीम। मास्टर प्लान के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए हैं और 4 इमारतों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। रांची में टंकी गिरने के बाद बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत। हादसे के समय मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 3 को बचा लिया गया। बिहार के वैशाली में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा, 7 मजदूर घायल। कल से दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होगा ब्रिक्स सम्मेलन। 13 सितंबर तक चलेगा ये बैठक। दुनिया के 11 बड़े देशों के नेता रहेंगे मौजूद। देशी राष्ट्र अध्यक्षों और उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी किए गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शनिवार को ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत मंडप में पहुंचने की उम्मीद। बीजिंग से आज इसका आधिकारिक ऐलान संभव है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है। भारतीय जमीन पर करीब 7 साल बाद पहली द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली सजी है पोस्टर और रोशनी से जगमगाई है दिल्ली। सरकारी और प्रमुख भवनों को रंग बिरंगी और आकर्षक सजावटी लाइटों से जगमगाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के श्रीलंका दौरे पर आज आखिरी दिन है। राजनाथ सिंह ने श्रीलंका के कई दिग्गज क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात की है। उनके सम्मान में रखा गया था कार्यक्रम। यात्रा के दौरान उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिया नायके से भी मुलाकात की है। रक्षा उपकरण ट्रेनिंग और समुद्री सुरक्षा को लेकर अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा से भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। भेंट में ये तोहफे भी दिए गए। श्रीलंका में बेली ब्रिज लगाने के लिए तैनात भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टास्क फोर्स से मिले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उनके कार्य और योगदान की सराहना की और उनका हौसला भी बढ़ाया। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। महालक्ष्मी मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम धामी भी रहे मौजूद। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा ऐलान। भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर दिया। ससुर के संन्यास से भी नहीं मिली है राहत। मायावती ने पहले आकाश आनंद से कहा था कि अगर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ संन्यास ले लेते हैं तो वो भतीजे को बीएसपी में पद वापस दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी निकाल दिया। अशोक सिद्धार्थ के संन्यास पर भी मायावती ने दी है प्रतिक्रिया। कहा कि जो फैसला लिया उसमें बहुत देर कर दी, अंततः सही निर्णय लिया। मायावती ने तंज भरे लहजे में कहा कि अशोक सिद्धार्थ को अगर दामाद की चिंता होती तो पहले ही संन्यास ले लेते। पत्रकारों के सवाल पर अखिलेश यादव ने दिया जवाब। कहा कि आकाश आनंद आएंगे तो ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में काशी के ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई 15 सितंबर को होने के आसार है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आपसी बातचीत से सुलझाने के निर्देश दिए थे। बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के अनुमति न मिलने पर अखिलेश यादव का हमला। कार्यकर्ताओं से घबराने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक यूपी में विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बातचीत आखिरी दौर पर है और राहुल गांधी के रायबरेली के दौरे में मंथन जारी रहेगा। हापुड़ में दलित युवक की हत्या को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा है निशाना, कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं बीजेपी की हताशा बढ़ती जा रही है। अभिषेक बैनर्जी के पीए सुमित रॉय के बंगाल सीआईडी ने हिरासत में ले लिया है। रायबरेली में दिशा बैठक में दौरान राहुल गांधी से भिड़े बीजेपी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, वीडियो वायरल हो रहा है। बैठक में राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट पर हुई है बहस। दिनेश प्रताप ने कहा कि आपको योजना की जानकारी होनी चाहिए। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि बयान पर पलटवार करते हुए अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि सांसद को किसी भी योजना के बारे में सवाल पूछने का अधिकार है। हापुड़ में दलित युवक की हत्या पर छिड़ी है सियासी घमासान। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने पुलिस ने गांव के बाहर रोका, जवाब में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। सांसद ने परिजनों को संतावना देते हुए कहा कि सपा का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ है, साथ ही राज्य सरकार पर भी साधा निशाना बताया तानाशाह। 2029 में राहुल गांधी के पीएम चेहरे पर बोले हैं पृथ्वीराज चौहान, अभी कहना मुश्किल है, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन लेगा फैसला। बीआरएस विधायक के संजय का राहुल गांधी पर हमला, बोले संविधान की किताब लेकर घूमना बंद करें, संविधान का अपमान ना करें। तेलंगाना में फीस रिम्बर्समेंट संकट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का राहुल गांधी पर इटालियन में पत्र लिखा, 40 लाख छात्रों के बकाए का मुद्दा उठाया। पंजाब में ग्रामीण की मौत को पर राहुल गांधी का आप सरकार पर हमला, बोले सीएम तुरंत हरपाल चीमा से इस्तीफा ले, निष्पक्ष जांच कराए। गुजरात के गांधीनगर में बिल्डिंग हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ है, मलबे में दबे सभी 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, डिप्टी सीएम हर सिंह भी ने दी है जानकारी। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, करीब 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। खगड़िया में कई इलाकों में जलमग्न हो गए, प्रभावित लोगों को के लिए किया जा रहा है कम्युनिटी किचन। चारों ओर जल भराव के कारण नाव की आवाजाही पर भी सहारा है, प्रशासन की ओर से भोजन दवा और दूसरी जरूरी सुविधाएं कराई जा रही है उपलब्ध। मुंगेर में सीएम की पत्नी की बाढ़ग्रस्त इलाकों में किया है दौरा, पीड़ितों का जाना है हाल, सामुदायिक किचन में भी दी जा रही खाने की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया है। मुलाकात के दौरान लोगों से सरकार से उचित मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की लगाई है गुहार, बाढ़ पीड़ित महिलाओं ने रोजगार की भी मांग की है। कटिहार में बाढ़ से भयानक तबाही आई है, लोगों को के साथ प्रशासन खुद परेशान है, पुलिस कैंप छोड़ जाने के मजबूर है पुलिस, भलेकारी बाढ़ से डूब गया है पुलिस शिविर। हरदोई में बाढ़ का कहर जारी है, गंगा और रामगंगा में उफान पर है, गांव के घरों में घुसा है पानी, गांव बने हैं टापू। हरदोई में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासन ने लिया है जायजा, पीड़ितों को राहत सामग्री भी पहुंचाई है। बाराबंकी में इमारत घरघराकर नदी के तेज जल स्तर के चलते पानी में समा गई, शिव मंदिर में भी कटान के चलते बह गया है। बाराबंकी के डीएम ने बताया कि जिनका घर नदी में कटान के से बह गया उनको मुख्यमंत्री आवास के तहत नया मकान दिलाया जाएगा। यूपी के वाराणसी में थोड़ी देर की बारिश से हुआ जल भराव, पानी से लबालब हुए निचले इलाके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फरक्का बैराज में सभी 109 गेट खोले गए हैं, गंगा खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। अल्मोड़ा में जर्जर स्कूल की छत पर गिरा प्लास्टर, बाल बाल बचे शिक्षक, टला बड़ा हादसा। कानपुर में शादीशुदा प्रेमी के घर वालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर 30 घंटे तक घर में रखा, पुलिस छुड़ाने आई तो दरोगा से भी मारपीट हुई। हरदोई में पति ने डंडे से पीट पीट कर 7 महीने की गर्भवती पत्नी की ले ली है जान, आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक, वन विभाग ने 13वां तेंदुआ पिंजरे में कैद किया है। महबूब नगर में भीषण सड़क हादसा हुआ, पशुओं से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, एक शख्स जिंदा जल गया। वाराणसी में पीट पीट कर चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट, चार दिन पहले ही लौटा था अपने घर। नागपुर में ज्वेलर्स की दुकान में बुजुर्ग महिला ने सोने का पेंडेंट चुराया, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। इंदौर में गाय चोरी के शक में युवक से मारपीट की गई, इलाज के दौरान हुई उसकी मौत। सहारनपुर में 1.20 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ महिला समेत 3 गिरफ्तार किए गए, हिस्ट्री शीटर्स पर दर्ज था पहले से 12 मुकदमे। नोएडा एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे रूसी सेना के 3 विमान, ब्रिक्स सम्मेलन में मद्देनजर की गई है पार्किंग। नोएडा में 16 मिनट में पहुंचा आर्मी ऑफिसर का दिल, ग्रीन कॉरिडोर से बची मरीज की जान, मारकर भी अफसर ने दे गए नई जिंदगी। नोएडा में 4 साल से फरार 25,000 के इनामी गैंगस्टर का पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में शराब तस्करी का खुलासा हुआ, हरियाणा से खेप लाकर महंगे दाम पर बेचती थी महिला, हुई है गिरफ्तार। लखनऊ में गेस्ट हाउस में युवक युवती की मौत, कमरे में शादी का सर्टिफिकेट और सुसाइड नोट बरामद किया गया, जांच जारी है। प्यार के बांका में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, 200 से ज्यादा दुकानें अतिक्रमण मुक्त कराई गई हैं। रोहतास में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटर और पैथोलॉजी सेंटर पर छापेमारी की गई, कई अस्पताल हुए सील। पटना में एनआईए की छापेमारी, रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले के मामले में एनआईए की कार्रवाई तेज कर दी गई है। छपरा में दूध के पैसे वापस मांगने पर दुकानदार ने असिस्टेंट प्रोफेसर को मारा चाकू, प्रोफेसर का इलाज जारी है। बेतिया में दरोगा का 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ, आरोपी दरोगा शमशाद अहमद हुआ है निलंबित। एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स का लॉन्च किया, साथ ही पहला फोर्डेबल फोन आईफोन ड्यू भी लॉन्च किया गया है, 2,99,900 रुपए इसकी कीमत है। भारत में आईफोन 18 प्रो की कीमत 1,64,900 रुपए है, बल्कि आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत 1,79,900 रुपए से शुरू की गई है। नए आईफोन में बेहतर सिरी पर भी दिया गया है जोर। भारत में शनिवार से शुरू होंगे प्री ऑर्डर, वहीं एप्पल के नए प्रो मैक्स मॉडल की भारत में ओपन सेल 18 सितंबर से शुरू होगी। एप्पल ने आईपॉड 5 भी लॉन्च कर दिया है, डिजाइन पहले से अलग है और कान के बाहर रहने वाला है ये। इसका नॉइस कैंसिलेशन पिछली सीरीज के 50% से ज्यादा काम करता है। एप्पल वॉच सीरीज में 12 और वॉच अल्ट्रा 4 के दिल की धड़कन पर नजर रखने का सिस्टम और बेहतर किया गया, जब अब इस घड़ी में हर 5 सेकंड में हार्ट रेट चेक किए जा सकती है। गणेशोत्सव में अब महज 4 दिन बाकी हैं, पुणे के प्रसिद्ध श्रीमद दगुडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी तैयारी तेज कर दी गई है। पैराग्लाइडिंग के लिए सैलानियों की पहली पसंद बना हिमाचल प्रदेश का पीर बिलिंग, हर साल बड़ी संख्या में आते हैं देश विदेश से सैलानी। श्रीनगर में सुहाने मौसम के बीच सैलानियों ले रहे हैं शिकारे की राइड, पर्यटकों ने गुलजार नजर आ रही है डल झील। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में नमक के उत्पादन में दर्ज की गई है बढ़ोतरी, इस वर्ष तेज गर्मी के कारण दर्ज की गई है वृद्धि। नमक उत्पादन में हुई वृद्धि से श्रमिकों के चेहरे पर खुशी है, बढ़ते उत्पादन के साथ आय में भी बढ़ोतरी हुई है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान कल सिनेमाघरों पर होगी रिलीज, मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है फिल्म। हैवान के बाद अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नया नाम भी आया सामने, अपने 59वें जन्मदिन पर मशहूर डायरेक्टर अनीस भोमजी के साथ मौजा ही मौजा का अनाउंस भी किया। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन की छठी मैया गीत की पहली झलक आई है सामने, गीत में पानी में बैठकर छठ की पूजा करती दिखी तमन्ना भाटिया। भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की कहानी लेकर आ रहे हैं मोहनलाल, ऑपरेशन गंगा का पोस्टर हुआ रिलीज। मोस्ट अवेटेड पीरियड एक्शन फिल्म राना बाली का टीजर हुआ है सामने, फिल्म में विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाकिना निभा रही हैं मुख्य भूमिका। लव स्टोरी फ्रेंचाइजी की तीसरी पार्ट का ट्रेलर जारी किया गया। 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी सीरीज। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम सस्पेंस फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म होगी फ्रेंचाइजी का आखिरी अध्याय। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म उड़ता तीर का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया। पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे दोनों सितारों की जोड़ी। फिल्म लव स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। अक्षय ओबराय और हेली दारूवाला इसमें निभा रहे हैं मुख्य किरदार। बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही हनुमान अंश की रफ्तार। अब तक भारत में 135 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है फिल्म। बांग्लादेश के चटगांव में भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक टैंक के ब्लास्ट की घटना सामने आई। टैंक में मौजूद सेना के दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। यह धमाका इतना भयानक था कि टैंक की परखच्चे उड़ गए और अंदर बैठे क्रू सदस्यों को बाहर निकालने के लिए एक सेकंड भी नहीं मिला। आईएसपीआर ने बताया कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है। बांग्लादेश सेना ने दो जवानों की मौत की पुष्टि की और कहा है कि धमाके की वजह की जांच जारी है। नेपाल में राहत बचाव अभियान के लिए भारत की मदद जारी है। 130 टन से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा बचाव और राहत और फॉरेंसिक अभियानों में भी सहयोग के लिए भारत ने 54 विशेषज्ञ कर्मियों की टीम नेपाल भेजी है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन की। शनिवार से होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज तक का राउंड टेबल भी चल रहा है। इस महामंच पर डिप्लोमेसी के तमाम दिग्गज हैं। आज शुरुआती सेशन में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कंठ ने कहा कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के लिए और रूस और चीन दोनों जरूरी है।
1: देखिए, इंडिया का जो स्टैंस रहा है थ्रू आउट वो ये रहा है कि हम मल्टी अलाइंड हैं। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट है कि हम $4 trillion इकोनॉमी है। हम जब 2047 में जब विकसित भारत बनते हैं तो हमें $30+ trillion इकोनॉमी बनना है। उसके लिए हमने कई काम किए हैं, जैसे कि फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोप के साथ किया, यूके के साथ किया। हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी आगे हैं और इसमें हमें सक्सेस मिलनी चाहिए। पर हमें इसके साथ साथ चाइना के साथ भी काम करना है, रशिया के साथ भी काम करना है। ये समझना आवश्यक है हमको कि देखिए, इस समय जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का जो फॉसिल फ्यूल है, जो तेल है, उसका एक तिहाई करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो इम्पोर्ट करता था, एक ज़माने में इम्पोर्ट करता था, आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया है। और वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है उसने, पूरा तेल की सप्लाई वेनेजुएला पे। और उसका जो लक्ष्य था कि ईरान की भी तेल सप्लाई को कंट्रोल करे। तो अगर वो कंट्रोल करता है तो एक तिहाई, दुनिया के एक तिहाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो चाइना ने क्लीन टेक्नोलॉजी को पूरा मोनोपोलाइज करा है और वो करीब दुनिया की जो बैटरीज है 95% क्लीन बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करीब 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला अमेरिकन मैन्युफैक्चरर पर अभी के समय 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनाइटेड चाइना प्रोड्यूस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में सारी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली समय चाइना की है। और सोलर में फिर करीब 80% उसका कंट्रोल है और विंड में करीब 77% उसका कंट्रोल है। तो आप जो देख रहे हैं सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज पर चाइना का कंट्रोल है और फॉसिल फ्यूल पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तिहाई कंट्रोल है। तो अगर इंडिया को आगे चल के विकसित भारत बनना है तो इंडिया को इस समय फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल जो हम इम्पोर्ट करते हैं 180 बिलियन का, जब युद्ध होता है वेस्ट एशिया में तो वो बढ़ जाता है और उससे रुपी पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। पर आगे चल के हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ना है, इसलिए चाइना के साथ भी काम करना बहुत आवश्यक है।
0: अमिताभ कंठ को आपने सुना और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के उपाध्यक्ष राम माधव ने भी आज तक के ब्रिक्स राउंड टेबल में क्या बताया। आज उन्होंने कहा कि भारत को कैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।
2: देखिए, पहली बात तो हम सबको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हम एक नए प्रकार के विश्व में प्रवेश कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। वो नया विश्व आज के वर्तमान के जो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, कोई G20 देख रहे हैं, कोई ब्रिक्स देख रहे हैं, कई SCO कह रहे हैं, इन सब से भिन्न होने वाला है। इनफैक्ट द वर्ल्ड टुडे मेनी पीपल फियर दैट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ मेजर इकोनॉमिक रिसेशन, समथिंग दैट वी एक्सपीरियंस्ड इन से 1998 2008-9, समथिंग लाइक दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। वो पूरा विश्व का चित्र बदलने वाला है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया के विभिन्न प्रकार के इस समय जो गुट है, ग्रुप्स है, उन सबके साथ अच्छा संबंध रखता है। आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, एक कोई इसमें हम ब्रिक्स का हिस्सा होना और हमारे राष्ट्रहित की बात करने विरोधाभास नहीं है। हम केवल ब्रिक्स के नहीं है, हम G20 में भी है, हम शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी हिस्सा है। We are also a part of what is not exactly an alliance but an arrangement called Quad in our Indian Ocean region. We ourselves have something called BIMSTEC which we drive. ये इसलिए है कि जो नया विश्व बनेगा उसमें आप कोई एक fixed arrangement के साथ चल नहीं पाएंगे। भारत ये समझता है, हमारा लीडरशिप ये समझता है, इसलिए अलग अलग प्रकार के इस समय जो गुट बन रहे हैं, मैं आगे कहता हूं आगे जाकर, मैंने मेरे किताब में भी लिखा था, और भी मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनी लेटरल्स विल एमर्ज, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसरप्शन दुनिया में हो रहा है। अभी तक जो बड़े देश है वो अमेरिका अपना स्थान छोड़कर भाग रहा है, विच इज ए रियालिटी वी आर ऑल सीइंग। सो द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट विल टेक शेप इन दैट बिग कंट्रीज लाइक इंडिया हैव टू प्ले अ वेरी बैलेंस्ड रोल। वो रोल हम आज प्ले कर रहे हैं, हमारा वसुधैव कुटुंबम का स्पिरिट वो है कि जहां जहां जिस प्रकार का इस प्रकार के मिनी लेटरल्स मल्टीलेटरल्स एमर्ज करेंगे उनमें भारत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके।
0: और चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
7: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सात साल बाद भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से ब्रिक्स समिट में मुलाकात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग। बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान। युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश द्विवेदी। महिला मोर्चा डी पुरंदेश्वरी के हाथ। संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी और वैजयंत पांडा ओबीसी मोर्चा के प्रभारी। संगरूर सुसाइड पर आम आदमी पार्टी की बेदर्दी का एक और सबूत। आत्महत्या करने वाले गुलजार के परिजनों का आरोप। प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। पीड़ित परिवार से मिला बीजेपी डेलीगेशन। ससुर अशोक सिद्धार्थ के संन्यास के बावजूद आकाश आनंद पर नहीं पसीजा मायावती का दिल। भतीजे को किया बीएसपी से मुक्त। एक्स पर लिखा स्वतंत्र है आकाश। उनके ससुर ने फैसला लेने में कर दी देर। और दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एनसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त। 17 संपत्तियां सील। लक्ष्मीनगर में भी शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। सबसे पहले बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के संगरूर में गुलजार सिंह की आत्महत्या का मामला अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह की मौत को लेकर मान सरकार पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हमला बोल रहे हैं। गुलजार सिंह ने गांव में खुलेआम ड्रग्स बिकने का मुद्दा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के सामने उठाया था। इसके बाद उनकी आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। आज इस मामले को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कांग्रेस के कई नेता

0: शामिल है। वहीं बीजेपी के बड़े नेता भी गुलजार सिंह के परिवार से मिलने संगरूर पहुंचे। अब परिवार का यह भी आरोप है कि गुलजार सिंह पर माफी मांगने और चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा था। मामले में पंजाब पुलिस ने अब सरपंच समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोपियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने, उत्पीड़न और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। हालांकि FIR में मंत्री हरपाल सिंह चीमा का नाम नहीं है।
1: ਇਹ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
2: ये आत्महत्या से पहले का वीडियो है। ऐसा वीडियो जिस पर किसी भी सरकार को संजीदा हो जाना चाहिए, ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर एक पिता को ये सब क्यों कहना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस वीडियो को अनसुना कर दिया और नतीजा ये निकला कि गुलजार ने खुदकुशी कर ली।
1: एक चीमा भी जिम्मेवार है ये गल का, मेरी मौत का भी जिम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जिम्मेवार है।
3: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ?
1: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ।
3: ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
3: ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ?
1: ਹਾਂਜੀ।
3: ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ?
1: ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਜੀ।
3: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
1: ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ।
3: ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਸਨੇ?
1: ਚਿੱਟਾ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ।
2: ਆਖਿਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਕੀ ਚਾਹਤ ਕਿਆ ਥੀ? यही ना कि सरकार नशे के नेटवर्क पर चोट करे, पंजाब के नौजवानों को नशे की गिरफ्त में जाने से रोके। लेकिन सरकार ने क्या किया? आंखें बंद कर अंधी, कान बंद कर बहरी और जुबान बंद कर गूंगी बन गई। यही नहीं, फजीहत से बचने के लिए आनन फानन में गुलजार का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। गुलजार का परिवार अब डंके की चोट पर कह रहा है कि अंतिम संस्कार भी अपनी मर्जी से नहीं होने दिया गया।
4: आही अपील करते हैं छोटे अग्गे भी ते प्रशासन अग्गे भी जो जो साडे नाल धक्का होया ते ते साडे सातों धक्के नाल मेरे पिताजी दा संस्कार करवाया गया, मेरे भरा नूं गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करदे हां भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असीं ना ही
2: पहले गुलजार की आत्महत्या और फिर दबाव डालकर अंतिम संस्कार। पंजाब की भगवंत मान सरकार सीधे सीधे कटघरे में खड़ी दिख रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने गुलजार के परिवार से मुलाकात कर भगवंत मान की सरकार से पूछा है कि आखिर उसकी संवेदना इस हद तक कैसे बढ़ गई।
5: मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये इसकी भी किसी को तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछे उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि मैं सल्फास पीऊं, इतना तंग किया गया। उससे पहले मोहनजीत को शेरों में ऐसे पीटा गया, तो ये लोग जो
6: ड्रग्स का सवाल उठाएं तो
5: ड्रग्स का सवाल उठाएं तो ये मौजूदा सरकार उसको लाठियों से पुलिस से दबाना चाहती है।
2: संगरूर में गुलजार के घर के दरवाजे पर मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है तो अनुसूचित जाति आयोग भी परिवार से मिला है।
7: परिवार ने मांग रखी है, उनका कहना है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ साथ मंत्री जी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए और आयोग परिवार की जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, इस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा।
2: पंजाब में चुनाव होने वाला है और एक दलित की आत्महत्या पर सियासी शोर है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि भगवंत मान की सरकार क्या कर रही है? मंत्री चीमा पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या खुद CM मान वित्त मंत्री चीमा को बचा रहे हैं? चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: 2026 चल रहा है और फरवरी 2027 में पंजाब में चुनाव होना है। हर एक मुद्दा विपक्ष की तरफ से जमकर उठाया जा रहा है, कांग्रेस हो अकाली दल हो, घेराव मान सरकार का हो रहा है।
8: आज नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है वो उनके चेयरपर्सन भी वहां पर गए थे और उन्होंने बोला कि परिवार को सिक्योरिटी की भी जरूरत है और क्योंकि परिवार ने उनको ये क्लेम किया है कि उनके ऊपर दबाव है काफी।
9: ऐसे है जी, इनको परिवार की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अपील करता हूं कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर आप सोचेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट हरपाल चीमा उनका नंबर 2 इन कैबिनेट है, केजरीवाल और भगवंत मान का वो चहेता है कि वो देंगे इस फैमिली को सिक्योरिटी, वो इस फैमिली को ब्राउ बीट करेंगे गुलजार की फैमिली को, इसलिए उसको सीआरपीएफ या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी सिक्योरिटी दे, सो दैट दे कैन दे आर सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर, एंड दे स्टैंड बाय देयर फादर स्टेटमेंट, क्योंकि अभी तो इतना प्रेशर डाला जा रहा है। आप एक साधारण से जो मेहनत करने वाला है, दिहाड़ी करने वाला है, कि वो पंजाब पुलिस की अट्रोसिटीज के आगे खड़ा हो पाएगा, भगवंत मान की सरकार के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? नहीं। दे नीड द सपोर्ट, एंड इफ दे आर गिवन द सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी एंड द सपोर्ट, मैं आपको दावे से कह रहा हूं, हरपाल चीमा we have to resign, he will be booked, he will be behind bars in less than one week.
10: ये सबके सामने है, उन्होंने जबरन किया, उनके कारण जो गुलजार सिंह मरा है और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन पे आधा पर्चा किया गया, FM पे भी पर्चा होना चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए और उसका इस्तीफा होना चाहिए।
11: पहले जो अमृतसर में सुसाइड हुआ था डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लालजीत बुल्डरवाला, सभी अपोजिशन और सभी इकट्ठे हुए थे और उसकी अरेस्ट हमने करवाई। अब ये हो रहा है कि जो FIR हुई, उस FIR में सरपंच का नाम तो लिख दिया, पर डाइंग डिक्लेरेशन जो है उसमें ये लिखा गया था कि FM और सरपंच की वजह से मैं सल्फाज खा रहा हूं और इन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं मरने के लिए मेरे को मजबूर कर दिया। अगर सरपंच का है तो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर FM के ऊपर FIR होनी चाहिए और इमीडिएटली दोनों की अरेस्ट होनी चाहिए।
12: आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दो वीडियोस बनाए गए हैं और दूसरा जो वीडियो है वो ट्यूटर्ड है, वो बाद में बनाया गया, लोगों की प्रेशर में बनाया गया।
11: नहीं, बीजेपी से ज्यादा किसका प्रेशर है या आम आदमी पार्टी के आगे किसका प्रेशर है? आम आदमी तो झूठ को भी सच कर देती है, सच को झूठ कर देती है। ये केजरीवाल और ये जो इनका गैंग है, मैं गैंग कहूंगा, ये पंजाब को लूट रहे हैं और हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो पंजाब को खत्म करने के लिए बर्बादी की कगार पर ले गया है।
0: नशे की बात हो रही है पंजाब के बाद, अब बिहार आपके लिए चलते हैं, जहां पर शराबबंदी एक बार फिर सुर्खियों में। इसकी वजह शराब की तस्करी के नए तरीके और उससे जुड़े किरदार हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन पहले नीतीश और अब सम्राट सरकार इसे लागू करने की बात करती है, लेकिन बिहार में तस्करी एक के बाद एक कई घटनाएं सामने भी आ रही हैं। कहीं दिल्ली से आ रही एक महिला के सूटकेस में शराब मिलती है, छात्रा के हैंडबैग में शराब मिल रही है, विलायती शराब जो उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। बिहार में गाड़ी की सीट के नीचे शराब है, बाइक की बात की जा रही है, उसके सीट के नीचे भी शराब जब्त की जा रही है। तो कॉपी के बंडल के अंदर शराब की तस्करी हो रही है, कॉपियों का गट्ठा रहता है उसके अंदर शराब रहती है। एम्बुलेंस जिसमें मरीजों को ले जाते जान बचाते हैं, एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल हो रहा है शराब को बंगाल से लाने के लिए। मतलब शराब की तस्करी के जितने तरीके हो सकते हैं, जात कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं, उन्हें बिहार में आजमाया जा रहा है। और ये सब देखकर खबरदार करता है, सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी लागू है या फिर शराबबंदी ने तस्करी के एक और अवैध कारोबार को हलने फूलने का मौका दे दिया है।
13: लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान है, लेकिन बिहार के महिलाओं के समर्थन के लिए तो बिहार की आधी आबादी का सम्मान शराबबंदी है, शराबबंदी रहेगा।
14: सम्राट चौधरी ही कबूलते हैं कि बिहार को शराबबंदी से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी शराबबंदी जारी रहेगी।
15: अरे
14: लेकिन बिहार में कितनी शराबबंदी है अब आप खुद ही देख लीजिए।
15: अरे रुपया की गर्मी बनूं।
14: वीडियो बिहार के बेगूसराय का है, जिसमें ये बदमाश बेखौफ अंदाज में न सिर्फ हथियार बल्कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब और मटन के साथ पार्टी करता हुआ दिख रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि तीन नौजवान शराब की बोतल के साथ मटन पार्टी कर रहे हैं, साथ में दो देसी पिस्टल भी रखी हुई है। बीच बीच में बदमाश पिस्टल लहराकर गाने पर वीडियो बना रहे हैं। बिहार में शराबबंदी को मुंह चिढ़ाने वाले मामलों की कमी नहीं है। ताजा मामला पटना का है, जहां अवैध शराब के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा को गिरफ्तार किया गया। रिया नाम की इस लड़की के हैंडबैग और शोल्डर बैग से लगभग 14,000 कीमत की शराब बरामद हुई। पुलिस ने जब उसके बैग की तलाशी ली तो बैग में आधा दर्जन से ज्यादा ब्रांडेड और अवैध शराब की बोतलें देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए।
16: मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि ये यहाँ से आपका बनारस गए थे, बनारस जाकर के उन्होंने शराब खरीदी है और शराब उन्होंने बताई कि 14,000 रुपये का सामान शराब खरीदी है और आकर के यहाँ पर किसी दानापुर क्षेत्र में किसी को उनको देना था। इस तरह की उनकी घटना पहले भी कर चुकी है, पहले भी जाकर के वहाँ से शराब खरीदी और उसी क्षेत्र में जाकर के उन्होंने बेची।
14: यूपी से शराब लेकर ट्रेन से पटना पहुंची थी युवती, पुलिस को इसकी खबर लगी और उन्होंने बाइक से जा रही इस छात्रा और उसके साथियों को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बिहार में शराब की तस्करी में महिलाओं के इस्तेमाल का ये दूसरा ताजा मामला है। सबसे पहले सोमवार को समस्तीपुर में नेहा नाम की लड़की को पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया था। ये लड़की दिल्ली से फर्स्ट एसी कोच में ब्रांडेड शराब की बोतल लेकर बिहार जा रही थी, उसके साथ उसका रिश्तेदार भी था। पुलिस ने बताया कि नेहा नाम की इस लड़की का पूरा परिवार शराब की तस्करी में शामिल है, जो डॉक्टर और अमीरों को शराब की सप्लाई करते हैं। तो हफ्ते भर के अंदर पहले नेहा अब रिया, बिहार में दारू के बाहर बा वाले दावे पर मुहर लगाकर खबरदार करती हैं। समस्तीपुर में ही शराब तस्करी का एक मामला मंगलवार को सामने आया। ये भीड़ शराब लूटने की है। NH-28 पर शराब से भरी कार गड्ढे में पलटने के बाद जब कार सवार फरार हो गए तब मदद को पहुंचे गांव वालों को शक हुआ। थोड़ी देर में शराब की बदबू गाड़ी से आने लगी। एक आदमी नीचे गया तो देखा कार में शराब का टेट्रा पैक भरा पड़ा है। ये खबर सुनते ही वहां लोगों का तांता लग गया। लोग शराब के टेट्रा पैक लूटने में लग गए। जिसे देखो वही भर भर कर शराब लेकर भागता हुआ नजर आया और कुछ ही मिनटों में देखते ही देखते कार से लोगों ने पूरी शराब लूट ली। बिहार के गोपालगंज जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों में गाड़ियों की जांच के दौरान दो गाड़ियों से 181 लीटर से ज्यादा विदेशी शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये देखिए कैसे गाड़ी में सीट के नीचे शराब को छिपाकर ले जाया जा रहा था। मुजफ्फरपुर में शराब तस्करी का एक हैरान करने वाला तरीका सामने आया। तस्करों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए किताब कॉपी के बीच ही शराब छिपाने का इंतजाम कर लिया। नोटबुक के बंडल को इस तरह काटकर बॉक्स बनाया गया था कि ऊपर से देखने पर सिर्फ किताब कॉपी नजर आए। कॉपी किताब के अंदर छिपाकर 360 बोतल शराब लाई जा रही थी। शराब को छिपाने के लिए बाकायदा बंडल के अंदर बॉक्स बनाया गया था। नोटबुक का ये बंडल शराब तस्कर टेम्पो में रखकर ले जा रहे थे। टेम्पो रोक कर जब जांच की गई तो 3 बोरे रखे गए। पहली नजर में इन बोरों में नोटबुक और कॉपी दिखाई दे रही थी, लेकिन जब टीम ने किताब कॉपी के बंडलों को खोलकर जांच की तो अंदर का मंजर देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। नोटबुक के बीच का हिस्सा काटकर बॉक्स बनाया गया था और उसी में शराब की बोतलें छिपाई गई थी।
17: 18 नोटबुक है, नोटबुक को काट करके ताकि लोग समझे कि बुक ले जा रहे हैं, किताब कॉपी ले जा रहे हैं, तो उसको काट करके बीच में शराब को सजाया हुआ था और 3 बोरा में टेम्पो के बीच वाले में जो खाली जगह रहता है उसमें 2 बोरा और पीछे जो खाली सीट दोनों सीट के बीच में जो जगह रहती है उसमें 1 बोरा उसमें नोटबुक में छिपा करके।
0: अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। IRCTC होटल मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लालू राबड़ी पर अब आरोप तय किए जाएंगे। 9 पर आरोप तय करने का आदेश है। लालू इसमें शामिल है। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामला, लालू के कार्यकाल में टेंडर में हेरफेर का आरोप। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये बड़ा झटका लालू प्रसाद यादव समेत कुल 9 लोगों को लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है और IRCTC होटल मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और इनके साथ में कुल 9 लोग पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया गया है। और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए भारत आएंगे शी जिनपिंग। चीन के राष्ट्रपति। और ये जानकारी मिल रही थी पहले कि शनिवार को वो आ सकते हैं, द्विपक्षीय मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है, जानकारी दे दी है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग भारत आएंगे। देखिए शनिवार को आ सकते हैं, शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति, और चीन को जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो बताया जा रहा है कि शनिवार को आ सकते हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए, और द्विपक्षीय मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से अब इसकी पुष्टि कर दी गई है। और जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए, व्लादिमीर पुतिन होंगे रशिया से, तो इन तीन देशों की जिनको एक बड़ी ताकत कहा जाता है, ये तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बनेंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताई जा रही है, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए शी जिनपिंग आएंगे भारत, इस बात की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने कर दी है। शिवानी शर्मा जुड़ गई हमारी सहयोगी हमारे साथ। शिवानी, पुष्टि हो चुकी है शी जिनपिंग आएंगे भारत?
18: बिल्कुल, लेकिन मंत्रो अब से थोड़ी देर पहले ही एक फॉर्मल जानकारी आई है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स टीम की तरफ से कि शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स समिट के लिए भारत आने वाले हैं 12 और 13 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर अब शी जिनपिंग भारत आएंगे, और ये एक बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 7 साल में पहली बार उनका ये भारत आना हो रहा है, और गलवान में जो क्लैश हुआ उसके बाद से ये पहला उनका भारत दौरा है। तो किस तरह से भारत लगातार चीन के साथ अपने रिश्तों को सुधारने में जुटा है, दोनों तरफ से किस तरह से प्रयास चल रहे हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भी, और ये जो पिछली मुलाकात थी कजान में उनकी 2024 में, उसके बाद की ये अहम मुलाकात होगी क्योंकि इस पर भी बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है हिमांशु।
0: और शिवानी, अब ये माना भी जा रहा है कि जो इतने लंबे वक्त से जो 7 साल का गैप रहा, अब जब ये दो देश मिलेंगे, बातचीत होगी, तो भविष्य की कई संभावनाओं को और मजबूत किया जाएगा, दोस्ती को, संबंधों को, व्यापार को, और तमाम पहलुओं पर जोर भी दिया जाएगा, और जो कि आने वाले वक्त के लिए चीन के लिए भी बेहतर होगा, भारत के लिए भी।
18: बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जब दो बड़े नेता मिलते हैं और खास तौर पर जब भारत और चीन की बात होती है, 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हुई, उसके बाद आपने देखा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डेपचांग प्लेन्स और डेपचॉक के इलाकों पर डिस एंगेजमेंट के अग्रीमेंट की बात हुई, तो ये बहुत बड़ी पहल थी क्योंकि ये पारंपरिक द्वेष बिंदु रहे हैं। और यहाँ पर
0: तो ये बात तय है शिवानी, ये बात तय है कि अब दुनिया भर की नजर इस ब्रिक्स समिट पर होगी, शी जिनपिंग पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर होगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार देखिए रणभूमि सुमित।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
21: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
22: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
23: सोच बदलो और बैंक भी।
24: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है। हालात ये हैं कि कई गांव पानी में डूब गए हैं, धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, नदी का कटाव रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे वो सब नाकाफी साबित हुए। जलभराव की वजह से बाराबंकी के रामनगर इलाके में कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
25: बाढ़ का कहर है, गांव के गांव में पानी भर गया है, फसलें तो चौपट हो ही गई हैं। नतीजा क्या है, हम इस वक्त इस सीतापुर बाराबंकी बॉर्डर के गांव पर खड़े हैं और आप देखेंगे तो मेरे घुटने के ठीक नीचे तक यहां पानी आ चुका है। सामने की फसलें देखें तो सब फसलें तबाह हो चुकी हैं। नतीजा क्या है कि बाइक्स निकालना भी यहां से काफी मुश्किल गांव वालों के लिए हो गया। ये देखिए इस तरह का प्रवाह यहां पानी का है, और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ना, ये आपको बता देता हूं, ये मेरे नीचे कोई खेत खलिहान नहीं है, ये पूरी एक सड़क है, ये पूरी एक सड़क है, नीचे डामर है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये पूरा रास्ता जाता है आगे तक गांव को कनेक्ट करता हुआ। और लोगों से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
26: घर तो सर बहुत है यहाँ पे, ये सामने बंधा है इधर, और बंधा के जितने गांव अंदर हैं सब पानी से जलमग्न हैं।
24: बाराबंकी और सीतापुर जिले के बॉर्डर पर बसे गांव बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। गांव में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पानी में समा गई, तो वहीं नदी किनारे बना एक प्राचीन शिव मंदिर भी पानी में बह गया। यूपी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत चौकियां बना रही है, जहां से लोगों को जरूरी सामग्रियां भी दी जा रही हैं। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
1: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी। आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है, बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए।
0: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
2: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
0: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
3: पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
0: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
4: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
0: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन के विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, 12 सितंबर की शाम हो सकती है पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात।

0: बीजेपी के मोर्चा प्रभारियों का ऐलान, युवा मोर्चा की कमान संभालेंगे हरीश त्रिवेदी, महिला मोर्चा डी कुंदेश्वरी के हाथ संजय भाटिया एससी और सतीश पुनिया एसटी और विजयंत पांडा ओबीसी मोर्चे के प्रभारी। दिल्ली में सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के ताबड़तोड़ एक्शन, दो दिनों में 34 इमारतें ध्वस्त, 17 संपत्ति सील, लक्ष्मीनगर में भी शुरू हुई जर्जर इमारतों पर कार्रवाई। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों ने पाकिस्तान को रौंदा, 19-0 की धुआंधार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजधानी दिल्ली का भारत मंडपम एक बार फिर से इतिहास रचने वाला है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में सजेगा दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीति का ये मंच, जहां 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तीन महाशक्तियां एक साथ मिलेगी। सबसे पहले आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आने की पुष्टि खुद चीन के विदेश मंत्रालय ने कर दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि शी जिनपिंग नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे और 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले समिट में वो हिस्सा भी लेंगे। यानी लगातार अब ये पुष्टि खुद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कर दी गई है कि शी जिनपिंग भारत आएंगे और 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल भी होंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा जुड़ गए हैं। शिवानी, देखिए क्या कुछ और जानकारी दी गई है बायलैटरल टॉक्स को लेकर, या किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है इसको लेकर भी?
1: सुमित, देखिए आधिकारिक पुष्टि हो गई है इस बात की कि शी जिनपिंग भारत आने वाले हैं, और ये अहम इसलिए है क्योंकि 7 सालों में ये उनका पहला भारत दौरा होगा। 2019 के बाद अब वो भारत आ रहे हैं, और बायलेटरल टॉक्स की जहां तक बात की जा रही है इसको लेकर भी चर्चा जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है साइडलाइंस पर ब्रिक्स के, क्योंकि भारत और चीन की अगर हम बात करें तो दोनों अहम पड़ोसी हैं, और जिस तरह आप और मैं दोनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद को कवर करते आए हैं, तो दोनों ही नेताओं की मुलाकात के बाद से, चाहे वो 2024 में कजान में हुई हो या फिर 2025 में तियानजिन में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो रेजोल्यूशन है उसको लेकर प्रगति है, और इस बार भी ये माना जा रहा है कि इस बारे में बातचीत हो सकती है और बायलेटरल टॉक्स भी दोनों ही नेताओं के बीच में हो सकती हैं। तो ये अहम आधिकारिक पुष्टि अब चीन की तरफ से हो गई है सुमित, कि शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं 12 और 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर।
0: बिल्कुल, और शायद इसकी पॉजिटिविटी या फिर इसका पॉजिटिव नोट तब भी समझ में आता शिवानी जब हाल ही में दो हॉटलाइंस की शुरुआत भी भारत और चीन के बीच में की गई थी। दरअसल ये सारी मीटिंग ब्रिक्स सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब वॉशिंगटन में बैठे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ का चाबुक चला रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत, रूस और चीन जैसी दुनिया की तीन सबसे बड़ी महाशक्तियों का एक ऐसा मंच तैयार हो चुका है जहां पर पश्चिमी दुनिया की नींद उड़ाने की आप कह सकते हैं कोशिश है, या फिर उनको लगातार पश्चिमी एशिया की नींद उड़ी हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आने वाले हैं। 2019 के बाद उनका यह पहला भारत का दौरा होगा। गलवान की झड़प के बाद यह पहला दौरा होगा जहां पर वो भारत में ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलेटरल टॉक्स करेंगे। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत पहुंच रहे हैं और भारत रूस के बीच S-400 की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी को लेकर और ब्रह्मोस के NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर भी डील होने की संभावना है। लेकिन इस समिट से पहले रूस के लिए यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही है। रूस के सोची में शहर पर यूक्रेन ने वाटर ड्रोन और हवाई ड्रोन से हमले कर दिए। वहीं ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति पजिश्कियान भी आएंगे जब अमेरिका के साथ जंग लगातार उनकी जारी है। और इन सब के बीच भारत में के सामने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व और पश्चिमी देशों में संतुलन साधने की चुनौती भी है। भारत ये संतुलन कैसे साधेगा इसी को देखिए सबसे पहले हमारी रिपोर्ट।
2: दिल्ली का भारत मंडपम तैयार है और सज चुका है 21वीं सदी के सबसे बड़े कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन का मंच। 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया देखेगी ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 11 सितंबर को ही भारत की सरजमीन पर कदम रखेंगे, तो वहीं 2019 के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। ट्रंप ने चलाया टैरिफ का चाबुक, एकजुट हुई दुनिया की तीन महाशक्तियां, SCO और ब्रिक्स के मंच से डॉलर के एकाधिकार को चुनौती। ये महाजुटान ऐसे वक्त में हो रहा है जब डॉनल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां और टैरिफ और वैश्विक व्यापार को झकझोर रहे हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स और SCO के मंच पश्चिमी मनमानी के खिलाफ एक समानांतर विश्व व्यवस्था खड़ी करते दिख रहे हैं। अमेरिका का एकाधिकार खत्म करने और डी-डॉलराइजेशन यानी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की वकालत तेज हो गई है। लेकिन डॉलर पर ब्रिक्स की सोच क्या है, सुनिए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का ये बयान।
3: तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है, और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है।
2: जहां एक तरफ डॉलर पर मंथन होगा, वहीं पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 11 सितंबर की द्विपक्षीय वार्ता रणनीतिक और सैन्य संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बैठक में भारत की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस की पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की बाकी डिलीवरी S-500 पर सहयोग और नई परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के ऐतिहासिक समझौतों पर मुहर लगने की पूरी उम्मीद है। लेकिन इस पूरे महासम्मेलन के केंद्र में है भारत की कूटनीतिक परीक्षा। वॉशिंगटन और पश्चिमी देशों की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी हैं। अमेरिका को डर है कि कहीं ये मंच पूरी तरह एंटी वेस्ट ना बन जाए। भारत के सामने चुनौती है कि वो क्वाड के जरिए अमेरिका का करीबी दोस्त भी बना रहे और रूस चीन के साथ ब्रिक्स के मंच से विकासशील देशों की अगुवाई भी करे। तो सवाल ये है कि क्या भारत एक बार फिर साबित कर देगा कि वो दो विरोधी ध्रुवों के बीच कूटनीतिक संतुलन साधने की सबसे बड़ी ताकत है। गलवान गतिरोध के बाद पहली बार भारत की धरती पर मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे। वहीं पुतिन के साथ रक्षा सौदों की नई पटकथा लिखी जाएगी। भारत मंडपम से उठने वाली गूंज आने वाले दशकों की वैश्विक भू राजनीति की दिशा तय करने वाली है। आज तक ब्यूरो।
0: 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के संबंधों के लिए या रक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भारत और रूस के बीच हथियारों के क्या सौदे अब तक हो चुके और क्या कैसे नए ये मुलाकात अब एक महत्वपूर्ण मुलाकातों में से एक होने वाली है। सबसे पहले अगर बात करें कौन कौन सी बातें हो सकती है कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रक्षा मसौदे पर और मुद्दों के ऊपर अहम बातचीत होनी है और कौन कौन से मुद्दे होने वाले ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं S-400 की। दरअसल इसकी पांचवी रेजिमेंट जो है या पांचवी जो आप कह सकते हैं जो इसके स्क्वाड्रन है वो नवंबर तक भारत आने वाला है। इससे पहले 4 स्क्वाड्रन अलग थे या फिर उसकी रेजिमेंट को तैनात किया जा चुका है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर बल्कि चीन के बॉर्डर्स पर भी 4 रेजिमेंट्स को तैनात किया जा चुका है। पांचवी रेजिमेंट नवंबर में आने वाली है। अब S-400 की 4 रेजिमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात की जा चुकी है और इसका मकसद यह है, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर में S-400 के आने से कितना बड़ा बदलाव हमारे डिफेंस सिस्टम्स में हुआ था, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा 300 किलोमीटर दूरी पर इसने पाकिस्तान से आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को निष्क्रिय कर दिया, मार दिया और एक अभेद किले में तब्दील कर दिया भारत की सरजमी को। अब हल्के आधुनिक ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन पर समझौता भी प्रोडक्शन के ऊपर समझौता होने की भी बात कही जा रही है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन है क्या, आपको बताएं मौजूदा ब्रह्मोस का जो वजन है वो 2.9 टन यानी करीबन आप मान के चलिए 3 टन के करीब लगभग होता है। अब जो नया वर्जन होगा ब्रह्मोस NG वो 1.3 टन का यानी आधे के से भी कम का, और यही वजह है कि अब नेक्स्ट वर्जन आने के बाद इसका फायदा क्या होगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। यानी नेक्स्ट जनरेशन अगर आ जाता है तो फिर तेजस MiG-29 और 6-7 ब्रह्मोस NG मिसाइलों लग सकेंगी। यानी पेलोड कैपेसिटी जो होती है किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की उसमें ले जाने की क्षमता अगर आप पुरानी ब्रह्मोस की तुलना करें तो ज्यादा ब्रह्मोस NGs उसमें लग सकती हैं। आप 3.5 मैक रफ्तार और भविष्य में 800 किलोमीटर तक का वार, यानी आप मानिए कि भारत की रक्षा आपकी पूरी प्रणाली कितनी ज्यादा तब्दील हो जाएगी। हमारे पास ना सिर्फ दूर तक वार करने की क्षमता होगी, हमारे जो रक्षा कवच है वो भी और मजबूत होगा, और शायद इसी वजह से भारत का सबसे भरोसेमंद जो रक्षा दोस्त है उसके साथ भारत की मीटिंग होगी। और रक्षा सौदे में भारत की ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेगा। ये इसलिए क्योंकि रूस ना सिर्फ भारत के साथ रक्षा समझौता करता है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पर भी कैसे जोर दिया जा सकता है इसको लेकर बातचीत होगी, और ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के बाद अब मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे भारत बने डिफेंस सेक्टर में इसको लेकर भी बातचीत होगी, और शायद यही वजह है कि भारत और रूस की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़े। मंजीत देखिए वैसे तो भारत का सबसे मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस रहा है, लेकिन S-400 आ जाने के बाद खासतौर पर जो ब्रह्मोस एनजी की बात कर लीजिए, और यहां तक कि यह भी बात कही जा रही है कि SU-57 जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण सौदे जिनको लेकर बातचीत की जा सकती है। क्या महत्वपूर्ण होगा इस बातचीत में इसके अलावा?
4: सुमित, रूस अभी भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारत का बड़ा रक्षा साझेदार है, और इसीलिए रूस की कोशिश है कि भारत का हाल के दिनों में जो अमेरिका या इजराइल पर हथियारों को लेकर जो निर्भरता बढ़ी है वो कम हो, और रूस के जो बड़े हथियार हैं, खासतौर से अगर कल की बैठक को देखें राष्ट्रपति पुतिन के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी की होनी है, उसमें 3 बड़े हथियार हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। सुखोई जो लड़ाकू विमान है SU-30, वो उसकी एक बड़ी स्क्वाड्रन, यानी कि अगर हम मिग और दूसरे विमानों को देखें तो सबसे ज्यादा विमान सुखोई भारत की वायुसेना के बेड़े में है, उनको कैसे अपग्रेड किया जाना है, उसमें उसको कैसे और आधुनिक बनाना है, उसमें नई मिसाइल लगानी है रूस में बनी, उसको लेकर बातचीत होनी है। और अभी जब बातचीत हुई, इससे पहले पिछले कई दिनों से ब्रह्मोस रूस की टीम भारत में मौजूद है, ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस कैसे साझा तरीके से बनाया जाए, ब्रह्मोस की जो मौजूदा रेंज 400 किलोमीटर है उसको 800 किलोमीटर और वजन को ठीक आधा किया जाए, जिससे कि वो भारत के तमाम जो लड़ाकू विमान है LCA तेजस से लेकर सुखोई और उसके बाद रफाल सब में वो फिट हो सके। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा सौदा है, वो S-400 मिसाइल सिस्टम है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, उसका साझा प्रोडक्शन कैसे हो सके, उसकी जो बाकी जो यूनिट भारत को मिली के साथ कैसे भारत को मिले, इसको लेकर बातचीत होनी। और आपने हमें मालूम है कि ब्रह्मोस और S-400 जो सिस्टम है, इन्होंने दोनों ही हथियारों ने हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, इसीलिए भारत भी रूस के साथ इन दोनों सौदों को लेकर काफी इच्छुक है।
0: बिल्कुल मंजीत, आप तो लगातार करीबन 2 दशकों से ज्यादा रक्षा मंत्रालय इन चीजों को देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत ने कि हमारे सहयोगी लगातार देखे हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये भारत के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ना सिर्फ ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाना, उसकी आप कह सकते हैं पेलोड कैपेसिटी को कम करना या फिर उसकी उसके वजन को कम करना कितना भारत के लिए फायदेमंद होगा, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग दोनों देश मिलकर करेंगे, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। अब बात करते हैं, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं तब उनके सामने एक बड़ी चुनौती भी है, यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग के 4.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और अब यूक्रेन रूस के सुरक्षित ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। रूस के सबसे आलिशान शहरों में से शुमार सूची इस समय यूक्रेन के टारगेट पर है, जहां कभी रूस ने अपनी ताकत और शान का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया था, अब वहीं सूची के अंदर लगातार यूक्रेनी ड्रोन हमला कर वहां पर दहशत मचाए हुए हैं। यूक्रेन ने कल रात और आज सुबह हवाई और वाटर ड्रोन के जरिए हमला किया। यह हमला इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि सूची को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पसंदीदा शहर भी माना जाता है और यही उनका निजी घर भी है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: तहल उठा रूस का सोची शहर, जमीन और हवा से यूक्रेनी ड्रोन का हमला, रूस के तटीय शहर में भड़के शोले। 9 सितंबर की रात रूस के मशहूर ब्लैक सी रिसोर्ट सोची में अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। इस बार निशाने पर था सोची का पोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने सोची के तट और पोर्ट इलाके को निशाना बनाया। हमले के बाद तट के पास आग और धुएं के वीडियो सामने आए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 लोग घायल हुए और पोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा। यानी यूक्रेन ने एक बार फिर रूस के उस शहर तक अपनी मार पहुंचाई जो युद्ध की सीधी रेखा से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन सोची पर यह पहला हमला नहीं था। दरअसल 4 सितंबर को भी यूक्रेन ने सोची और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा ड्रोन हमला किया था। 4 सितंबर की रात आसमान में ड्रोन और जमीन पर धमाकों की आवाज गूंज रही थी। सोची के एडलर इलाके में एक तेल डिपो में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेल भंडारण सुविधाओं में लगी आग का असर इतना बड़ा था कि आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया। इस हमले का असर सोची एयरपोर्ट पर भी हुआ। एयरपोर्ट पर करीब 11 घंटे तक उड़ानों पर पाबंदियां रहीं। कई उड़ानें देर से चली, कुछ को दूसरे शहरों की तरफ मोड़ना पड़ा और विमान में ईंधन भरने पर भी रोक लगी। यानी हमला सिर्फ सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं रहा,
2: इसका असर आम लोगों, यात्रियों और शहर की ईंधन व्यवस्था तक दिखाई दिया। लेकिन 4 सितंबर के हमले की सबसे अहम कड़ी थी सोची के पास रूस की एयर डिफेंस व्यवस्था पर हमला। रिपोर्ट्स में सोची के करीब सीरियस इलाके में मौजूद एयर डिफेंस ठिकाने को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। कुछ ओपन सोर्स विश्लेषणों में यहां S-300 या S-400 सिस्टम की मौजूदगी का दावा किया गया। हालांकि इस हिस्से की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन अगर सोची जैसे संवेदनशील इलाके के पास एयर डिफेंस व्यवस्था को ही निशाना बनाया गया है तो सवाल बड़ा है, आखिर यूक्रेन रूस के इस इलाके तक कितनी गहराई से पहुंच बना चुका है। अब समझिए कि सोची इतना महत्वपूर्ण क्यों है। काले सागर के किनारे बसा सोची रूस के सबसे मशहूर पर्यटन शहरों में से एक है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ पर्यटन तक सीमित नहीं है। 2014 में सोची में विंटर ओलंपिक हुआ था। पुतिन के दौर में सोची को रूस की आधुनिकता, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। यही नहीं, सोची राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बेहद करीब से जुड़ा शहर है। यहाँ उनका आधिकारिक आवास बोचारोव रूचे मौजूद है। सोची लंबे समय से रूस के राजनीतिक और आर्थिक अभिजात वर्ग के लिए भी पसंदीदा ठिकाना रहा है। यानी रूस के लिए सोची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा, पर्यटन और रणनीतिक मौजूदगी, इन सब का संगम है। और यही वजह है कि सोची पर लगातार हो रहे यूक्रेनी हमले का संदेश काफी बड़ा माना जा रहा है। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा, रूस के भीतर दूर दराज के इलाके भी उसकी पहुंच से दूर नहीं है। पहले तेल डिपो, फिर एयर डिफेंस से जुड़ा इलाका और अब समुद्र के रास्ते सोची पोर्ट तक पहुंचता ड्रोन। यानी यूक्रेन की रणनीति में समुद्री और लंबी दूरी के ड्रोन अब अहम हथियार बनते जा रहे हैं। सोची पर 4 सितंबर और फिर 9 सितंबर के हमले, दो तारीखें लेकिन एक बड़ा संदेश। रूस का सबसे चर्चित ब्लैक सी शहर अब युद्ध से अछूता नहीं रहा। और ऐसे वक्त में जब नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के सामने रूस की ताकत और वैश्विक भूमिका की तस्वीर पेश करेंगे, लेकिन उसी समय यूक्रेन रूस की धरती पर ये संदेश दिख रहा है, युद्ध की आग से रूस का कोई भी इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सवाल यही है, क्या सोची पर लगातार हो रहे हमले रूस की सुरक्षा व्यवस्था के लिए नई चुनौती है, या यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां रूस के दूर दराज के शहर भी युद्ध का मैदान बनते जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब तक यूक्रेन के हमले रूस के ऊपर सिर्फ सीमावर्ती इलाके या फिर मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक सीमित थे, लेकिन अब यूक्रेन ने भी अपने हमलों की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दी। कल यूक्रेन ने रूस के भीतर इतनी दूरी पर हमला किया जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यूक्रेन ने कल रूस के आर्कटिक इलाके से अपनी सीमा से 3200 किलोमीटर दूर तबाही मचाई है। यह हमला एक ऐसे ड्रोन से किया गया है जिसे पकड़ पाना रूस के किसी भी रडार की बस की बात नहीं है। वहीं इस हमले में यूक्रेन ने यह भी साबित कर दिया कि रूस का कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं बचा है।
2: युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे लंबी दूरी का हमला यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO ने रूस के भीतर 3200 किलोमीटर यानी करीब 2000 मील की दूरी तय कर इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ प्रहार किया है। यूक्रेन के घातक ड्रोनों ने रूस के सुदूर उत्तर में स्थित आर्कटिक क्षेत्र के ग्यामालो डिनेट्स स्वायत्त इलाके में धावा बोला। निशाना बने रूस के सबसे महत्वपूर्ण गैस प्लांट नोवी ओरंगोए और कुत्सर्की। यामालो निनेट्स क्षेत्र में रूस की 80% प्राकृतिक गैस है। गैस कंडेंसेट से मिलने वाला अरबों डॉलर रूस की यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद करता है। यूक्रेन ने फायर पॉइंट ड्रोनों से 3200 किलोमीटर दूर इस ठिकाने पर सटीक निशाना साधा। ये हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक झटका है। यामालो निनेट्स वही इलाका है जहां से रूस की कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 80% हिस्सा निकलता है। ये दोनों प्लांट पुतिन की बनी मशीन कहे जाते हैं, जिनसे मिलने वाले अरबों डॉलर के राजस्व से रूस अपने युद्ध का बजट चलाता है। यूक्रेनी हथियारों ने इसी आर्थिक रीढ़ को ठप कर दिया है। अब तक क्रेमलिन का मानना था कि साइबेरिया और आर्कटिक के ये सुदूर इलाके युद्ध क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित सेफ जोन है, लेकिन यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनी फायर पॉइंट के ड्रोनों ने बिना पकड़े गए इतनी लंबी दूरी तय कर साबित कर दिया कि रूस का कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। विशालकाय रूस के लिए अपने हर एक गैस और सैन्य ठिकाने पर एयर डिफेंस लगाना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन साबित हो रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने इस मिशन की सराहना करते हुए कहा है कि रूस को अपनी धरती पर आर्थिक और सैन्य कीमत चुकानी ही पड़ेगी। 3200 किलोमीटर अंदर तक हुए इस हमले ने ये साफ कर दिया है कि युद्ध की आग अब सीधे मॉस्को की मनी मशीन तक पहुंच चुकी है। आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाकर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये FP1 ड्रोन है क्या, क्यों इसे इतना घातक माना जा रहा है। चलिए आपको सबसे पहले बड़ी स्क्रीन पर लिए चलता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिरकार इस समय क्यों यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा वरदान या सबसे घातक हथियार ये यूक्रेन का माना जा रहा है। यूक्रेन की रक्षा कंपनी फायर पॉइंट ने इसे बनाया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूरी तरीके से ये इंडिजीनियस ड्रोन है, लॉन्ग रेंज ड्रोन इसे यूक्रेन की तरफ से कहा जाता है। और सबसे खास बात ये लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम है ये ड्रोन। अब लंबी दूरी का बेहद घातक आत्मघाती ड्रोन है, इसे शाहिद ड्रोन की कंपेरिजन भी रूस के देखा जाता है। और खासतौर पर अगर आप देखें उसी को कंपैरेटिवली 4.5 साल में ही विकसित करके यूक्रेन ने लगातार बड़े अटैक्स रूस पे करने शुरू कर दिए। रूस के भीतर हमले करने में सबसे बड़ा हथियार इस समय यूक्रेन का ये बना हुआ है और रूस के इंडस्ट्रियल हब्स पर, उसके लॉजिस्टिक सेंटर्स पर लगातार इसी की मदद से यूक्रेन अटैक कर रहा है। शुरुआती रेंज इसकी 1400 से 1600 किलोमीटर बताई जा रही है, यानी आप मानिए कि यूक्रेन के किसी भी सीमावर्ती इलाके से अगर इसे उड़ाया जाए तो फिर मॉस्को या फिर आसपास के इलाकों तक ये पहुंचने में सक्षम है। अब इसकी रेंज हमने आपको बता दी, अब आपको बताएं रूस के आर्टिक में 3200 किलोमीटर दूर इससे हमले किए गए, यानी आप मानिए कि यूक्रेन ने इसे कहां से रिलीज किया होगा, कहां से इसे अटैक किया होगा और 3200 किलोमीटर दूर तक इससे अटैक करने की क्षमता इसने स्थापित की है। अब कीमत लगभग इसकी अगर आप देखें 50 से 55 हजार डॉलर के इसकी कीमत बताई जाती है, जो अमूमन दूसरे ड्रोन के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता और इसे आप कह सकते हैं कि बहुत घातक भी इसे माना जा रहा है। यानी इसकी लागत कम है और इसी वजह से यूक्रेन इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर पा रहा। अब किस तरीके से बना हुआ है, लकड़ी फॉर्म हल्के कार्बन फाइबर से ये बना हुआ है, यानी इसके लिए कोई बहुत एक्सक्लूसिव मटेरियल लाने की जरूरत नहीं है, लकड़ी फॉर्म और हल्के कार्बन से ही यूक्रेन ने इसे विकसित किया है और 50 से 120 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। यानी इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी 50 से 120 किलो वजनी है, यानी ये आराम से बड़ा आत्मघाती एक आप कह सकते हैं हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब लकड़ी फाइबर के कारण रेडार की पकड़ से ये पहुंच नहीं पाता और शायद इसी वजह से जब लॉन्ग आप कह सकते हैं ड्रोन्स की बात की जाती है तो अक्सर वो इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा, लेकिन क्योंकि ये लकड़ी फाइबर की बना हुआ है इसी वजह से इसे इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और शायद यही रूस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। और अब तक जो हमले किए जा रहे थे 4.5 सालों में वो रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में दूरगामी इलाकों के अंदर करता था, लेकिन अब यूक्रेन भी इस ड्रोन की मदद से और अपनी मिसाइलों की मदद से रूस को बड़े घातक हमले कर नुकसान पहुंचा रहा है। चलिए रणभूमि में बात करेंगे एक और युद्ध को लेकर, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
7: इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
4: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
5: लेके जन्म पहला पहला कदम।
6: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: बदलते वैश्विक समीकरण और इसके केंद्र में है ब्रिक्स। बदलती दुनिया में क्या होगी ब्रिक्स की भूमिका, जानिए आज तक के भरोसेमंद चेहरों के साथ। आज तक ब्रिक्स राउंड टेबल 10 सितंबर दिन भर सिर्फ आज तक पर।
1: दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में आज तक की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। देखिए ये जो बिल्डिंग पिछले करीब 4 साल से झुकी हुई थी और यहाँ पर 2023 में नोटिस भी लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अधिकारी हैं वो गहरी नींद में सोए हुए थे। एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही थी और जब सत्य निकेतन वाला हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई, तो आज तक ने भी इस बिल्डिंग को प्रमुखता से चलाया। ये जो झुकी हुई बिल्डिंग थी इसमें जो लापरवाही बरती जा रही थी वो सामने उजागर करी और उसके बाद एक बड़ा असर देखने को मिला। आखिरकार जो नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और अब इस बिल्डिंग पर डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ऊपर से सारे जो ग्रिल हैं वो हटा दिए गए हैं, नीचे मलवा इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर कल शाम को भी डेमोलिशन हुई और अभी भी जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो जारी है। बिल्डिंग इस कदर झुकी हुई है कि जब यहाँ पर जो तोड़ने

मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू और परिवार की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की अदालत ने कुल 9 लोगों पर दिए आरोप तय करने के आदेश। राबड़ी तेजस्वी का नाम भी शामिल। संगरूर सुसाइड केस में कांग्रेस की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम चन्नी ने मांगा मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा। परिवार का आरोप, प्रशासन ने जबरन कराया अंतिम संस्कार। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 34 बिल्डिंगें ध्वस्त, 17 संपत्ति सील। लक्ष्मीनगर में भी जर्जर इमारतों पर हुई कार्रवाई। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का धाकड़ खेल। पाकिस्तान को 19-0 से रौंदा। धुआंधार जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई अपनी जगह।

पर फिर हुआ अमेरिका का हमला। सिरिक, मिनाब, किशम द्वीप दहल उठे। अमेरिका से जंग 3 साल खिंचने का खतरा। वेंस रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेताया। जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका पर कहर ढाया। ईरान की मिसाइल से अमेरिकी लड़ाकू विमानों को नुकसान। बड़ा सवाल, अब जंग में अमेरिका झुकेगा या ईरान? क्या 3 साल चलेगा मध्य पूर्व का संग्राम?

भूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। अब बात करते हैं मध्य पूर्व की उस महाजंग की जो हर बीतते घंटे के साथ दुनिया को विनाश के मुहाने पर धकेल रही है। जंग के इस मोर्चे से पहली बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान का दक्षिणी द्वीप इलाका आज गोला बारूद और मिसाइलों की चपेट में एक बार फिर से आ गया है। आपको बताएं कि लगातार हॉर्मुज की खाड़ी के पास सिरिक मिनाब और केशम द्वीप पर लगातार अमेरिका ने प्रोजेक्टाइल से सीधे हमले किए। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि समुद्र की ओर से आई तबाही ने उसके तटों को दहला दिया है और अमेरिका ने इस पर रहस्यमयी चुप्पी भी साधी हुई है। दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के सबसे सुरक्षित परमाणुगढ़ यानी पिक एक्स माउंटेन के पूरी तरीके से तबाह करने की सीधी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि इस पर्वत की गहराइयों से ईरान की संदिग्ध न्यूक्लियर हलचल बढ़ गई है जिससे व्हाइट हाउस के होश उड़ा दिए। लेकिन ट्रंप की धमकियों के बीच एक ऐसी अंदरूनी खबर भी लीक हुई है जिसमें वॉशिंगटन की हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका के नवंबर में मिड टर्म चुनाव सिर पर है लेकिन तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। ट्रंप भले ही दावा कर रहे हैं कि चुनाव के तुरंत बाद जंग खत्म हो जाएगी लेकिन व्हाइट हाउस के सलाहकार खुद ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि तेहरान घुटने पर टिकने वाला नहीं है और यह युद्ध 2029 तक खिंच सकता है, यानी ट्रंप के पूरे कार्यकाल तक ये जंग खिंच सकती है। और चौथी बड़ी खबर भी आपको बताएंगे जहां ट्रंप जिस जीत का दावा कर रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत का पर्दाफाश जॉर्डन में हो चुका है। कल रात जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर बरसी ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका के A-10 थंडरबोल्ट के साथ साथ F-15 जैसे घातक लड़ाकू विमानों को भारी नुकसान पहुंचा है। तो क्या जिस जंग को ट्रंप 4-5 हफ्तों में खत्म करने और जीत हासिल करने का दावा करते रहे हैं, क्या वही जंग अब अमेरिका के लिए विनाशकाल बन चुकी है? क्या पिक एक्स माउंटेन पर हमला युद्ध को और भड़का देगा? सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन देखिए आपको बताएं कि इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह आ रही है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन का इमरजेंसी लैंडिंग या फिर इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्लाइड अचानक खुल गया और ट्रंप को वॉशिंगटन से डलास जाना पड़ा। स्लाइड के खुल जाने से

0: विमान के उड़ने में देरी हुई और करीब 20 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर में ही बैठे रहे। जांच में पता चला कि सुरक्षा अधिकारियों की गलती से इमरजेंसी इवैक्यूएशन स्लाइड का बटन दब गया था। उसकी हवा निकलने तक ट्रंप को इंतजार करना पड़ा और उससे फिर विमान के दरवाजे में डाला गया, उसको असेंबल किया गया, तब जाकर ट्रंप को विमान शलास के लिए उड़ान भर सका। कतर से मिले विमान की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन ट्रंप ने मजाक कहा था कि सुरक्षा अधिकारी देख रहे थे कि सुरक्षा के उपकरण ठीक से काम करते हैं या नहीं काम करते।
1: So we're heading over to Dallas. I think we're going to have a tremendous crowd tonight.
0: और रणभूमि में आपको ट्रंप का एक और तंज भरा बयान या फिर जिसके पीछे एक बड़ी खतरा या फिर एक बड़ी रणनीति छिपी है वो भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खास अंदाज में कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो मैं सुप्रीम लीडर को फोन घुमा रहा होता, मैं ये कह रहा होता कि मिस्टर सुप्रीम लीडर आप कैसे हैं, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। इस बयान के पीछे ईरान को सख्त चेतावनी भी छिपी है। ट्रंप बताना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। आप ट्रंप का यह बयान खुद सुनिए।
2: A nuclear weapon right now and I would be addressing them as Supreme Leader, Mr. Supreme Leader, sir, how are you? But now I don't have to do that. If they had a nuclear weapon, I'd be calling the Supreme Leader and I'd be saying, Mr. Supreme Leader, how are you, sir? Is there anything we can do for you? As opposed to bombing the crap out of them.
0: डोनाल्ड ट्रंप के बयान आपने सुने। दरअसल क्या मध्य पूर्व में जारी महाजंग अब तक के सबसे घातक परमाणु मोड़ पर पहुंच चुकी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। ईरान के सबसे सुरक्षित और रहस्यमय पिकैक्स माउंटेन के नीचे संदिग्ध हलचल देखी गई है और ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने कोई होशियारी दिखाई तो उस पर ऐसा वार होगा जिसने कल्पना भी ईरान ने नहीं की होगी। आखिर इस पहाड़ के अंदर ऐसा क्या छुपा है जिससे व्हाइट हाउस के खलबली मचा दी है? क्या अमेरिका फिर से अपने सबसे बड़े B-2 बॉम्बर्स से बम वर्षा करने वाला है? देखिए सबसे पहले रिपोर्ट।
2: And we may have to do it. There's another place called Pickaxe Mountain, another nice place.
3: डोनाल्ड ट्रंप का ये अल्टीमेटम सीधे तेहरान के उस न्यूक्लियर गढ़ के लिए है जिसे ईरान ने जमीन के सैकड़ों फीट नीचे एक अभेद किले की तरह तैयार किया है। रिपब्लिकन कन्वेंशन के मंच से ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका की नजर ईरान की हर चाल पर है। अमेरिका के निशाने पर है पिकैक्स माउंटेन, स्थान तेहरान से 220 किलोमीटर दक्षिण में, नतान से दूरी मात्र 2 किलोमीटर। खासियत पहाड़ को काट कर बनाई गई एक बेहद गुप्त और सुरक्षित टनल फैसिलिटी। दरअसल ये वही इलाका है जहां ईरान का प्रसिद्ध नतान यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। नतान पर अमेरिका और इजराइल मार्च महीने में भी हमला कर चुके हैं। और इससे पहले 12 दिनों के युद्ध में भी इसे निशाना बनाया गया था। लेकिन पिकैक माउंटेन के अंदर बन रही सुरंगों का नेटवर्क अब तक सुरक्षित बना हुआ है। अब खबर यह है कि इसी पहाड़ की गहराई में ईरान की संदिग्ध परमाणु हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस अभेद पहाड़ को निशाना कैसे बनाएगा? इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान के इन गहराई में छिपे बंकरों को ध्वस्त करने की बात आई है, अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक और घातक B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम वर्षकों का ही सहारा लिया है। ये वही सुपर बम वर्षक है जो दुश्मनों के रडार को चकमा देकर भारी भरकम बंकर बस्टर बम यानी GBU-57 बॉप बम गिराने में माहिर है। ये बम सैकड़ों फीट ठोस चट्टानों और कंक्रीट को चीर कर अंदर तबाही मचा सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और उसके पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का मानना है कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे ईरान अपने सबसे घातक यूरेनियम संवर्धन के काम को अंजाम दे रहा है जिसे ट्रंप हर हाल में तबाह कर देना चाहते हैं।
2: And we may have to do it. There's another place called Pickaxe Mountain, another nice place. We may have to give them a shot there, too, because somebody said there was a little movement at the site. We don't need much. We see everything.
3: लेकिन इस पूरी सैन्य आक्रामकता के पीछे एक और बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। युद्ध के कारण तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे अमेरिकी जनता में नाराजगी है। ट्रंप का दावा है कि ये जंग चुनावों के ठीक बाद खत्म हो जाएगी और ईरान चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या पिकैक्स माउंटेन पर हमले की ये धमकी ईरान के परमाणु खतरे को रोकने के लिए है, या फिर ये चुनाव से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टंट है। आज तक ब्यूरो।
0: दरअसल ईरान की सबसे बड़ी क्षमता या सबसे बड़ा आप कह सकते हैं उसके लिए मजबूती यही पिकैक्स माउंटेन्स है, जिसको लेकर अमेरिका बड़े दावे करता हो लेकिन अब भी यहां पर कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अब आपको बताते हैं कि पिकैक्स माउंटेन क्या ऐसी है, कहां पर मौजूद है और आखिरकार चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाने के बावजूद भी अमेरिका अब तक यहां कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया। सबसे पहले अगर आप देखें, यह है वो बड़ा नक्शा जिसपे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पिकैक्स माउंटेन का पूरा स्वरूप या वो माउंटेन के साथ साथ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज कैसी हैं। सबसे पहले अगर आप ये माउंटेन देख रहे हो तो आप ये देखिए करीबन ये पूरा का पूरा नतांज आपको बताएं तीन सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज यूरेनियम एनरिच फैसिलिटीज है नतांज, फोर्दो और इश्फहान और नतांज के बिल्कुल बीचों बीच ये फैसिलिटी मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं इधर, चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आखिरकार ऊंचाई जो है समुद्र तल से 1600 मीटर ऊपर है, यानी इसके ऊपर जो पहाड़ियां हैं या आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा जो इलाका है ये समुद्र तल से 1600 मीटर ऊंचाई पर है। अब जो ये क्षमता है यानी जो ये पूरा का पूरा फैसिलिटी है ये करीबन 100 मीटर से ज्यादा, यानी जो इसे भेद पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि 100 मीटर से मोटी परत इसके ऊपर बनी हुई है, यानी ये जमीन से 100 मीटर नीचे के करीब है। अब GBU-57 जिस लगातार मिसाइल की हम बात करते हैं, B-2 बॉम्बर्स की बात करते हैं, वो इसे भेद पाना क्यों इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो 18 से 20 मीटर ग्रेनाइट को भेदने की होती है, यानी उनका जो इंपैक्ट होता है वो 18 से 20 मीटर या मैक्सिमम 50 से 60 मीटर के करीब होता है, लेकिन इसकी क्षमता उनसे दुगनी है यानी 100 मीटर के करीब करीब इसकी क्षमता है। इसी वजह से इसे एक तरीके से अमेरिका के लिए भेद पाना बेहद मुश्किल है। अब दूसरी बड़ी बात क्या है, भूमिगत हॉल में यही यूरेनियम संवर्धन यानी एनरिच यूरेनियम यही रखा गया है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से लेकर उसकी असेंबलिंग सब इधर ही की जाती है। इसी वजह से यहां पर डिफरेंट लोकेशंस के अंदर यानी एक बहुत बड़ा इलाका है जो लगातार 2020 के बाद से ही ईरान ने विकसित करना या फिर उसे विकसित कर यहां पर अपनी असेंबलिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर दी थी। अब क्यों आखिरकार इसके अंदर काम कैसे किया जाता, देखिए ये होता है यानी इसके बहुत दूर यानी एकदम इसके आउटस्कर्ट्स में वेंटिलेशन शाफ्ट बनाई जाती है, यहीं पर बिजली और पानी की जो क्षमता है या फिर उनके जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो फैसिलिटीज हैं उनको लगाया जाता है ताकि वो मेन फैसिलिटी से लगातार मर्ज ना हो, उन्हें दूर रखा जाता है ताकि अगर कोई दिक्कत आए तो वो इस मेन फैसिलिटी से दूर हो, इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। अब इसकी जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होते हैं अगर आप देखें अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स लगातार मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं, और ये इसलिए क्योंकि अगर ब्लास्ट और धमाके के झटकों से को रोकने में सक्षम होता है, यानी अगर धमाके आसपास हो भी जाते हैं तो फिर इसके ऊपर कोई बड़ा नुकसान इन्हें नहीं पहुंचता है, और इसी वजह से ये एक तरीके का फुल प्रूफ प्लान ईरान की तरफ से ईरान ने बनाया हुआ है, जिससे अमेरिका के तमाम बड़े हमले लगातार ईरान के लिए ईरान के ऊपर कोई बड़ा असर नहीं रोक पा रहे। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आखिरकार ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नतांज और इश्फहान दोनों बेहद करीब हैं और नतांज और इश्फहान वो दोनों जगह हैं जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्लांट है उसकी जो कैपेसिटी है वो ऐसी है वो टाइप आप कह सकते हैं कि टाइप 5 टाइप 4 तक की एनरिच यूरेनियम कर सकता है, और शायद इन्हीं दोनों फैसिलिटीज को सबसे ज्यादा सुरक्षित भी रखा गया। अब इश्फहान के करीब होने का सबसे बड़ा इसे फायदा भी क्या है, IRGC की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं जो इन्फेंट्री की डिफेंस यूनिट्स है वो इश्फहान में तैनात है, और इश्फहान तेहरान के बाद सबसे ज्यादा अगर अटैक अमेरिका कभी भी करता है तो इश्फहान पे इसी वजह से करता है क्योंकि वहीं से रिटेलिएशन भी ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ आते रहते हैं। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की, सवाल यह है कि क्या मध्य पूर्व की जंग 3 साल और चल सकती है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ उनकी जंग अमेरिकी मिड टर्म चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी, यानी नवंबर के बाद ईरान के साथ जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अमेरिका में ही लगातार इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ट्रंप से दो टूक कहा है कि अगर वो पाबंदी से ईरान के झुकाने के अब माहौल नहीं बना पाए तो यह जंग 2029 तक खिंच सकती है, यानी ट्रंप का पूरा कार्यकाल ईरान से जंग लड़ने में ही खत्म हो जाएगा और यह जंग ईरान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए महंगी साबित होगी। अभी कल के हमलों में ही ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया था, इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इतने साल तक ईरान जंग अगर टिका रहा, अगर लड़ता रहा तो फिर अमेरिका के लिए ये कितने ज्यादा नुकसान और कितना ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन का पूरा माहौल बन जाएगा। सबसे पहले अमेरिका के दावों को और ईरान की लगातार बढ़ती कैपेबिलिटीज को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: जंग की आग में झुलसा अमेरिका, जॉर्डन में तबाह हुए अमेरिकी विमान, ईरान के मिसाइल हमले से बची तबाही, अमेरिका ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में डांस कर रहे हैं। डैलस में चुनाव प्रचार के दौरान रिपब्लिकन पार्टी को जिताने के लिए लुभावने वादे कर रहे हैं, ये तक कह रहे हैं कि हमें वोट दो नहीं तो ईरान परमाणु बम बना लेगा। वो ये भी वादा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद युद्ध खत्म हो जाएगा और तेल गैस की कीमतें कम हो जाएंगी।
1: But right after the election, oil prices are going to be tumbling downward. They're going to be tumbling down, and we'll get them down. I think for gasoline, we'll get them below $2 a gallon.
5: But not until after the midterm.
1: I think it's going to take a little bit longer than the midterm.
4: ट्रंप अमेरिका के लोगों को अच्छी तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन ईरान के साथ जंग में अमेरिका अपने हथियार फूंक रहा है। जॉर्डन के मुवाफक सॉल्टी एयरबेस पर बरसती ईरान की मिसाइलों ने कहर ढा दिया। रात के हमलों में अमेरिका के एक A-10 थंडरबोल्ट वॉरहॉक विमान का एक पंख गायब हो गया और लगभग 8 F-15 लड़ाकू विमानों को हल्का नुकसान पहुंचा है, जिन्हें बाद में काम के लायक बताया गया। इस घटना की जानकारी CBS न्यूज रिपोर्टर जेनिफर जेकब्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। जहां तक अमेरिकी नुकसान की बात है तो उसका एक A-10 थंडरबोल्ट वॉरहॉक विमान सीधे तौर पर चपेट में आया, जिसका एक पंख क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं लगभग 8 F-15 लड़ाकू विमानों को आंशिक और हल्का नुकसान पहुंचा, जिनकी मरम्मत कर उन्हें तुरंत दोबारा सेवा में तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार जॉर्डन में तैनात अमेरिकी बलों ने इन ईरानी हमलों का मुकाबला करने के लिए 30 से अधिक पैट्रियट मिसाइलें दागी। A-10 थंडरबोल्ट जमीन पर मौजूद दुश्मन के टैंकों और सैन्य टुकड़ियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसके आगे लगी बड़ी गैटलिंग गन और भारी बख्तरबंद इसे बेहद घातक और मजबूत बनाते हैं, जबकि F-15 ईगल हवा से हवा में दुश्मन के विमानों को मार गिराने और हवाई सर्वोच्चता हासिल करने वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। अमेरिका को रातों रात ये नुकसान तब हुआ जब ईरान की ओर से अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत को निशाना बनाए जाने के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 5 टैंकरों पर हमला किया। इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने दावा किया कि उन्होंने 8 टैंकरों और 2 युद्धपोतों पर हमले किए, जिनमें जॉर्डन में मौजूद बेस भी शामिल था। लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में इससे भी बुरी खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके सलाहकारों ने दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत व्हाइट हाउस के सलाहकारों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निजी तौर पर चेतावनी दी है कि ईरान के साथ ये जंग उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बाकी समय तक खिंच सकती है।
0: हालांकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने दावों को लेकर हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और हर बार उनके दावे आप कह सकते हैं कि उल्टे साबित होते हैं, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मिड टर्म के बाद वो ईरान का युद्ध खत्म कर देंगे। उम्मीद यही है, पूरी दुनिया यही उम्मीद करते। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
1: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था। अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी। न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
0: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
3: अरे मौत मौत को हाँ। पास नहीं बुलाते,
2: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
4: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? डेटा फज है। आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
5: अब्बा साई,
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ब्रिक्स समिट में शामिल होने भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीनी विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, 12 सितंबर की शाम को हो सकती है पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात। IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू और परिवार की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली की अदालत ने कुल 9 लोगों पर दिए आरोप तय करने के आदेश। राबड़ी तेजस्वी का नाम भी शामिल। संगरूर सुसाइड केस में कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। पूर्व सीएम चन्नी ने मांगा मंत्री हरपाल चीमा का इस्तीफा। परिवार का आरोप, प्रशासन ने जबरन करवाया अंतिम संस्कार। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। 2 दिनों में 34 बिल्डिंग ध्वस्त, 17 संपत्ति सील। लक्ष्मीनगर में भी जर्जर इमारतों पर कार्रवाई। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का धाकड़ खेल। पाकिस्तान को 19-0 से दी करारी शिकस्त। धुआंधार जीत के बाद सेमीफाइनल में बनाई जगह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी की राजनीति में दलित वोटों की चर्चा पर है, और ये चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी में दलित सियासत का सबसे बड़ा चेहरा और कभी दलित वोटों को की बदौलत ही यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली मायावती चुनाव से एन पहले पार्टी की अंदरूनी सर्जरी में व्यस्त हो गई है। मायावती ने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को पिछले हफ्ते पदमुक्त किया, आज पार्टी से ही मुक्त कर दिया। आकाश आनंद के ससुर को तो राजनीति से ही संन्यास लेना पड़ा है। अब आकाश आनंद को चारों ओर से ऑफर आ रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि कोई लेकर आए तो आकाश को पार्टी में ले लेंगे। संजय निषाद कहते हैं कि उनकी पार्टी में आकाश आनंद का स्वागत है। इमरान मसूद अलग आकाश की तारीफों के पुल बांधते नजर आ रहे हैं। दरअसल यूपी में बीएसपी की बिखरती बुनियाद और घटते जनाधार की कहानी यह है कि कभी 30% वोट और 206 सीटों वाली बीएसपी के पास आज महज 10% भी वोट नहीं बचे हैं। विधानसभा में एक विधायक तक नहीं है। दलितों का वोट बीएसपी से साल दर साल खिसकता जा रहा है। 2024 के चुनाव से पहले तक दलितों का रुझान बीजेपी की ओर था, लेकिन 2024 के बाद दलित वोटों का रुझान अचानक से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। 2022 में जिस समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10-12% दलित वोट मिला करते थे, वो पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोटों में 40% का हिस्सा लेकर चली गई है। ऐसी सूरत में जब बहुजन समाज पार्टी के सामने अपना जनाधार बचाने की चुनौती है, आखिर ऐसे क्या कारण है कि मायावती ने अपने पार्टी के युवा नेता को पार्टी से ही बाहर कर दिया? यूपी में दलित वोटों के बढ़ते दावेदारों के बीच बीएसपी के इस कदम से किसे फायदा होगा, या फिर पिछले दो बार की तरह मायावती एक बार फिर आकाश आनंद को गले लगा लेगी और पार्टी में मौका देगी? यूपी में दलित वोटों की राजनीति में खटाखट के खेल से नकदी के दाव तक क्या क्या सियासत पर है, उस पर सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।
1: यूपी में दरवाजे पर चुनाव है, दलित सियासत में दावेदारों की होड़ है, और मायावती उन चुनौतियों से निपटने की बजाय अपनी ही पार्टी के अंदर की सर्जरी में उलझी हुई है। 24 घंटे में ऐसी हलचल हुई है कि पार्टी के बड़े नेता अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया और आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल कर दिया गया। इससे पहले कल मायावती ने लिखा था कि पार्टी ने अशोक सिद्धार्थ को सुधरने का मौका दिया, लेकिन पार्टी से ज्यादा परिवार को महत्व दिया। मायावती ने यह भी लिखा था कि अशोक सिद्धार्थ राजनीति से पूरी तरह से संन्यास ले लें, तब ऐसी स्थिति में श्री आकाश आनंद का फ्री होकर पार्टी में काम करना संभव होगा और तभी फिर पार्टी उनको उनकी जिम्मेदारियों वापस देने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मायावती के सोशल मीडिया पोस्ट के ठीक 15 घंटे बाद अशोक सिद्धार्थ का पोस्ट सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए लिखा कि मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। अशोक सिद्धार्थ के इस्तीफे का पोस्ट आने के 2.5 घंटे के अंदर मायावती ने एक और पोस्ट लिखा। उसमें अशोक सिद्धार्थ के इस्तीफे को देर से उठाया गया अच्छा कदम तो बताया, लेकिन मायावती के ट्वीट को रिपोस्ट नहीं करने का आरोप आकाश आनंद पर लगाते हुए उन्हें पार्टी से मुक्त कर दिया। जो आकाश आनंद अगस्त के आखिरी हफ्ते तक जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे, पार्टी के संयोजक के तौर पर चुनावी रणनीतियों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे थे, उन्हें पार्टी से बेदखल करने का फैसला मायावती ने क्यों किया, इसे लेकर सोशल मीडिया पर आकाश का 28 अप्रैल 2024 का एक वीडियो वायरल हो रहा है।
2: बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो हम करना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते, हम मजबूर हैं। स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे।
1: लेकिन 2 साल पुराने मामले पर चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई का जोखिम मायावती ने किन मजबूरियों में लिया, खासकर तब जब जंतर मंतर आंदोलन के बाद सभी राजनीतिक दलों की प्राथमिकता जेन जी है। खुद मायावती ने भी अपनी पार्टी में जेन जी को लेकर बड़ी रणनीतियां बना रखी हैं। यूपी के चुनाव में मायावती ने जेन जी के हाथों में जो कमान सौंपी है, इसमें एक है मायावती के छोटे भतीजे ईशान आनंद, दूसरे हैं विश्वनाथ पाल के बेटे जितेंद्र पाल, तीसरे हैं सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा, और चौथे हैं दिवंगत बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश सिंह। दिलचस्प ये है कि बीएसपी के ये चारों चेहरे यूपी की राजनीति में जात की बात वाले फैक्टर पर फिट बैठते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और दलित चारों वर्गों से एक एक युवा चेहरे को पार्टी में शामिल किया गया है।
3: तो ये मायावती जी और बसपा का आंतरिक मामला है, लेकिन जिन नामों की चर्चा जेएनजी के आधार पे आप लोग कर रहे हैं, दरअसल वो संघर्ष की कोख से नहीं पैदा हुए हैं, वो वंशवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और देश का जो युवा है अब इस पे भी मंथन करता है।
1: इसमें से सभी चेहरे पिछले दिनों पार्टी के आयोजनों सम्मेलनों में नजर आ रहे हैं। खासकर उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश सिंह को मायावती ने 31 अगस्त को बुलाई गई मीटिंग में सबसे आगे की कुर्सी पर बिठाया था। हालांकि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक सभी दल बीएसपी की रणनीति पर तरह तरह के सवाल उठाते हैं।
4: फॉर्मेशन जो ये ठाकुर बामन बनिया जो कर रहे हैं, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है।
5: नहीं, आपको लगता है नया समीकरण कोई फायदेमंद नहीं?
4: जो आदमी, जो पार्टी, जिस पार्टी की सरबरा पूरे बहुजन मिशन को बेच चुकी हो, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में हो, तो जैन जी जानता नहीं है कि उसको लाठी भाजपा वालों ने मारी? जैन जी जानता नहीं है क्या कि उसके ऊपर जो है कील की लाठियां, पैलेट गन किसने चलाई हैं? उस पार्टी के समर्थन में जो बीएसपी और जो मायावती जी खड़ी हो, उनके साथ जैन जी कैसे आएगा?
1: बीएसपी की जैन जी टीम अब ईशान आनंद की अगुवाई में पार्टी की चुनावी गतिविधि को आगे बढ़ाते नजर आ रही है, जिसमें ईशान आनंद को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया है। इन्हें 15 राज्यों में पार्टी की समीक्षा की जिम्मेदारी मिली है। ईशान मायावती और पिता आनंद कुमार को रिपोर्ट करेंगे। चारों समुदाय वर्ग से बीएसपी के जेंजी प्लान में सतीश मिश्रा के बेटे कपिल मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के बेटे जितेंद्र पाल को भी जिम्मेदारियां मिली है।
6: लेकिन सवाल ये कि सूबे में जो ब्राह्मण समाज पे एट्रोसिटीज के मामले, उस पर तो बहन मायावती जी हमेशा खामोश रही। पूरे सूबे में दलित समाज के नौजवानों को शादी होती है, घुड़चुड़ी करनी होती है, तो पीएसी लगानी पड़ती है। आदरणीय बहन जी कभी सड़क पे नहीं आई। पूरे सूबे में, आज पूरे देश में आरक्षण पर हमला है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करी है, बहन जी तो हमें कहीं दिखी नहीं। तो जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना।
1: दरअसल जंतर मंतर आंदोलन के बाद देश की सियासत में जेंजी के मुद्दे सबसे ज्यादा प्रभावी माने जा रहे हैं। ऐसे में मायावती ने 31 साल के उस युवा नेता को पार्टी से निकाल दिया है, जिसके निशाने पर बीजेपी सरकार रहती थी।
7: आज भाजपा की सरकार में हमारे यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं और 2 करोड़ लोगों को तो ये रोजगार नहीं दे सकते। इनके पास सिर्फ 13 लाख पद है, 13 लाख पद भी वो खाली पड़े हैं, भरे नहीं है। तो साथियों, इन 10 सालों में भाजपा की सरकारों ने स्कूल बंद किए, हमारे शिक्षकों को पढ़ाने से दूर रखा और हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा।
1: 25 अगस्त के इस कार्यक्रम के बाद 3 सितंबर को आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया गया था और अब 10 सितंबर को उन्हें पार्टी से भी मुक्त कर दिया गया है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: तो एक बार फिर मायावती और बहुजन समाज पार्टी सुर्खियों में आती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ जब सभी पार्टी अपना जेंजी प्लान लेकर सामने आने की कोशिश कर रही है, वहीं मायावती जिसे अब तक कमान देने की सोच रही थी, उन्हीं को पार्टी से निकालने की कोशिश कर रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ये एक पारिवारिक माहौल, पारिवारिक धारावाहिक की तरह ही नजर आ रहा है। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर, चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी की तरफ से ज्वाइन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से खुला ऑफर दे दिया है आकाश आनंद को कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। चिराग पासवान कोशिश कर रहे हैं कि दलितों का अगर जनाधार टूट रहा है तो कुछ हिस्सा उनके पास भी आ जाए। इसके लिए चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के भीतर रैली और रैलियों के बाद सम्मेलन भी वहां पर लगा रहे हैं। पीयूष मिश्रा एसबीएसपी के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे और डॉक्टर सतीश प्रकाश ये एनालिस्ट है लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भूमिका यहां पर रखने की कोशिश करेंगे, एक तरीके से समर्थक है। उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार मायावती का ये रिश्ते में उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है और इससे क्या हासिल होगा। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या चुनाव से पहले आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का बीएसपी को नुकसान होगा, क्योंकि अब तक वो चीफ कोऑर्डिनेटर थे और अब अचानक 6 महीने पहले चीफ कोऑर्डिनेटर को ही पार्टी से हटा दिया जा रहा है। दूसरा सवाल, बीएसपी से निष्कासित आकाश दूसरे दल में जाएंगे क्या या मायावती वापसी कराएंगी? और तीसरा सवाल, क्या यूपी में दलित वोटों का रुझान बीएसपी बीजेपी के बजाय इंडिया गठबंधन की ओर बना रहेगा, जो 2024 में दिखाई दिया था। एक बड़ा चंक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन या इंडिया अलायंस ने अपने पास खींच लिया था, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश में उलटफेर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दिया था। शुरुआत करेंगे चर्चा की। सतीश प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही से समझना चाहेंगे कि क्या हो गया अचानक कि मायावती जी भड़क गई, आकाश आनंद को पार्टी से ही निकाल दिया। पहले उन्होंने मांग की थी कि जो अशोक सिद्धार्थ है वो राजनीति से संन्यास ले ले, संन्यास भी उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं मानी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी के कहने पर हो रहा है सब।
8: साहिल जी, जिस भारतीय परिवेश में हम रहते हैं वह परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, और हम आमतौर पर परिवार में एक दूसरे की इच्छाओं का हमेशा ध्यान रखा जाता है, और तमाम परिवार के जो बड़े लोग हैं वो परिवार में ये उम्मीद करते हैं कि जो छोटे लोग हैं वो उनकी बातें माने, उनके कहे के हिसाब से करें, यही पूरा का पूरा व्यवस्थाएं हैं। और इस परिवार की कुछ अगर कठिनताएं हैं तो इसकी अच्छाइयां भी हैं। ये बिल्कुल सच है कि अगर मेरे परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो मुझको सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, कोई दूसरा व्यक्ति अगर गलती करेगा तो उससे इतनी पीड़ा नहीं होगी। देखिए, पिछले 30 साल से अशोक सिद्धार्थ जी बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, और हर पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है। बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, उनको वो अपने तरीके से ही काम करना देते हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये बहुजन समाज पार्टी में, तमाम पार्टियों का काम करने का तरीका बिल्कुल अपने अपने तरीके से बिल्कुल तय है। अब मुझे ये बताइए कि अगर बहन जी बार बार उनसे ये बात उम्मीद कर रही थी, उनको अलग अलग तमाम जो है अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके की जिम्मेदारी दे देते, चलिए आकाश आनंद जी तो पिछले 2-3 साल से हैं, लेकिन एक बहुत सीनियर व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह की बातें हो रही थी तो उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको बैठ करके इस मामले को कहीं ना कहीं सुलझाना चाहिए था, एक बात। दूसरी बात, देखिए मुद्दा यह नहीं है, आपने जैन जी की बात करी, बहुजन समाज पार्टी की अगर आप औसत आयु निकालेंगे तो लगभग बहुजन समाज पार्टी की के तमाम जो कार्यकर्ता जो उसके अंदर काम करते हैं बूथ से लेकर के कोऑर्डिनेटर तक, उनकी औसत आयु 41-42 साल बैठती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सबसे युवा पदाधिकारियों के साथ चलने वाली पार्टी है, एक बात। दूसरी बात, देखिए भारत की राजनीति बदल रही है, ऐसा नहीं है कि भारत की राजनीति का प्रभाव सिर्फ बीएसपी के ऊपर पड़ रहा है, तमाम उत्तर भारत के अंदर जो चुनावी मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, सड़क हो, सुरक्षा, इनके ऊपर चुनाव नहीं हो रहे हैं। जब से बीजेपी आई है उसने चुनावों के मानकों को चेंज कर दिया है, तमाम पोलराइजेशन, ये महंगाई का मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, ये मुद्दे बन ही नहीं पा रहे, और विपक्ष जो है बहुत सारे लोग हैं जो।
0: लेकिन सतीश प्रकाश जी, मुझे इस बात का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मायावती ने एक बहुत लंबा चौड़ा एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और उसमें बाकी सारे मुद्दे निकाले। उन्होंने कहा कि भाई ससुर के प्रति आकाश आनंद ज्यादा प्यार दिखाते हैं, पार्टी के प्रति कम दिखाते हैं, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष का पोस्ट भी रिपोस्ट नहीं करते हैं, इससे नाराजगी कैसे हो सकती है? इसको लेकर थोड़ी ना कोई पार्टी से निकालता है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप आज की स्थिति में यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जिस तरीके से आकाश आनंद बरस रहे थे उसी के वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान सुनिए आप, बड़े दिलचस्प है। और उनको अब बुला रहे हैं वो कि हमारे पास चले आइए, चीफ कोऑर्डिनेटर है बहुजन समाज पार्टी के, उनको खुला न्योता दिया जा रहा है।
8: नहीं देखो साहिल जी, 2-3 चीजें हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी से बड़ा कोई लीडर नहीं है। आज के समय में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को यह गलतफहमी नहीं पड़नी चाहिए कि आज भी भारत में बहन जी सबसे बड़ी दलित लीडर है, तमाम दलितों की वो आस्था के केंद्र है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, तमाम दलितों की भावनाएं उसके अंदर घर करती है। एक छोटी सी बात कहता हूं, देखिए 2012 से लेकर के आज लगभग 15 साल हो गए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है। बहन जी का काम सिर्फ और सिर्फ पार्टी चलाना नहीं है, पार्टी को सुरक्षित रखना भी है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर 28 एमपी की पार्टी सत्ता खोने के मात्र 48 घंटे बाद कैसे छिन्नभिन्न हो जाती है। तो इन चीजों में हमको बिल्कुल निश्चित रूप से उनको एक संज्ञानता के साथ काम करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, देखिए कभी कभी राजनीति
0: तो आकाश आनंद से ये डर लग रहा था उन्हें,
8: नहीं,
0: जो बंगाल में हुआ वही चीज आकाश आनंद के साथ भी हो सकती है।
8: नहीं नहीं साहिल जी, कभी कभार राजनीति में वो भी होता है जो हमको दिखाई नहीं देता है। एक चीज आप देखेंगे ना, आकाश आनंद जी को जब जब बाहर निकाला है आप देखिए कि उनके अंदर रिफाइननेस बढ़ी है। आप चेक करिए, पहले दिन के स्पीच से लेकर के बाद में जब भी उनको निकाला गया वो रिफाइंड होकर के आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उनके अंदर सुधार है? एक छोटी सी बात की मैं जरूर जी जी जी जी जी जी
9: मतलब मनोज काका आप बेकार में उम्मीद कर रहे हैं। मनोज काका लगता है कि समाजवादी पार्टी बेकार में उम्मीद लगाए बैठी है। देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनमें सुधार हो, इसीलिए पहले भी उनको जब जब इस तरीके से टाइट किया गया है थोड़ा सा कि निकाल देंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे, तुरंत उनको वापस लिया गया है। तो 6 महीने पहले आकाश आनंद में बदलाव होगा, सुना सतीश प्रकाश क्या कह रहे हैं, तो आपकी उम्मीद क्यों है कि आकाश आनंद शायद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, और आप कैसे देख रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी में हो रहा है?
10: साहिल जी, पहले तो आपके जो 3 सवाल हैं वो 3 सवालों के जवाब मैं दे दूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। आपका पहला सवाल यह है कि क्या वो फिर दोबारा पार्टी में आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, ये नितांत बहन जी का अपना मामला है। दूसरा, आपने एक सवाल बहुत साफ, दूसरा जो आपका सवाल था कि क्या उत्तर प्रदेश में दलितों का जो मन है, जो वंचित तबके का मन है, वो बीजेपी और बीएसपी को छोड़ करके इंडिया गठबंधन के साथ है, तो इसका पूरा एकदम सीधा सा जवाब है आपको, ये सवाल आपका बहुत है। निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वंचित तबके का वोट और उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए सुरक्षित सीटों पर सबसे ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े इसके लिए सामान्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दलित तबके के लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ाया था। तो दूसरे सवाल का जवाब यह है कि हाँ, पूरा देश का, उत्तर प्रदेश का जो वंचित तबका है, माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए की जो अवधारणा है उसमें उसको अपना न्याय दिख रहा है। वो जानता है कि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कम से कम उनके बेटियों की आबरू तो सुरक्षित होगी, उनके बच्चों को मूछ रखने पर, घोड़ी चढ़ने पर, बुलेट चढ़ने पर अपमानित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जाति अस्पृश्यता और जाति भेदभाव ऐसा नहीं होगा कि कोई दलित और पिछड़े व्यक्ति का समाज का व्यक्ति मंदिर चला जाए या किसी सरकारी आवास में रह ले तो उसका घर धुलवा दिया जाए। तो इस तरह की जो मनुवादी विचारधारा है उससे लड़ने का अगर उत्तर प्रदेश में कोई काम कर रहा है पूरे देश के राजनीतिक विमर्श में तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं, वो जो आदम गोंडवी की लाइन है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊपकर मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में डूबकर, तो जो बुधिया के साथ, जो वंचित तबके के साथ लगातार जो अन्याय हो रहा, वहीं मेरठ में जहां आप बैठे हैं, मेरठ में क्या हुआ किसने नहीं देखा? आज आप जहां बैठे हुए हैं, जहां से संवाद कर रहे हैं, एक 16 साल के बेटी को, आकृति चौधरी को उत्तर प्रदेश की सरकार एनएसए लगा दी, और जब उसने एनएसए लगा दिया और जब उससे आगे एनएसए जब उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने तोड़ दिया, कहा कि नहीं ये खतरनाक है, तो आप समझिए कितनी बर्बर सरकार है कि एक बेटी के खिलाफ सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं बेटी पर एनएसए लगा है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे।
9: मनोज काका भटकिए मत, आज नहीं, आज चर्चा दलित वोटों पर होगी, आकाश आनंद पर होगी और मायावती जी पर होगी। और जरा मैं आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी आपको सुना देता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, क्योंकि आकाश आनंद की खबर जैसे ही निकली उसके बाद तुरंत अखिलेश जी की प्रतिक्रिया आई है, जरा वो सुन लेते हैं एक बार।
11: आकाश जी आना चाहेंगे तो आप लेंगे क्या?
12: अगर तुम लेके आओ तो ले लेंगे। सबके सामने कह दिया इनकी इच्छा है, ये लेके आए, फिर बात खत्म हो गई।
13: आकाश आनंद समाज पार्टी में आते हैं, उनको स्वागत के साथ।
14: नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा।
9: ये रही पहली ऑफर, दूसरी ऑफर इमरान मसूद की तरफ से भी आ रही है, तारीफ कर रहे हैं, तीसरी ऑफर निषाद पार्टी की तरफ से भी आ रही है। तो मनोज सिंह, पहले मनोज काका आप पहले बता दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की ऑफर क्या है, या सिर्फ मजाक में अखिलेश जी बोल रहे थे इस बात को?
10: देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दो, आपने जो वाक्य सुनाया उससे पहले भी उन्होंने एक बात कही, पूरा प्रेस में उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है, और ये सच है कि हम लोग राजनीतिक विमर्श को और राजनीतिक प्रतिद्वंदता को हम लोग रिश्ता और घृणा की तरह नहीं लेते, हमारे उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये व्यक्तिगत अधिकार होता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो अपने किस वर्कर के साथ कौन सी जिम्मेदारी रखेगा, कौन सा नहीं रखेगा, और उसका जो भी अनुशासित कार्य करता है उसका
9: मौके का तो फायदा उठाएंगे ना।
10: देखिए, समाजवादी
9: पार्टी का तो फायदा उठाएंगे ना।
10: साहिल जी, समाजवादी पार्टी की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति है, और जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जो ये मानते हैं कि इस देश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पिछड़ों और दलितों के साथ साल से नहीं सदियों से जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो भी लड़ने का, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के खिलाफ लड़ने का जो भी मन बना ले, उस सबका समाजवादी पार्टी
9: जवाब दीजिएगा। और दलित वोटों का क्या होगा उस पर एक लार्जर चर्चा भी हम करेंगे इसी डिबेट में, लेकिन पहले सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए, उसके बाद रविकांत जी के पास भी चलना है मुझे, और उसके बाद एनडीए के समर्थक जो बैठे हैं उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले सतीश प्रकाश
8: जी। जी जी जी जी जी देखिए देखिए साहिल जी, मैंने कहा था ना कि राजनीति में जो कुछ दिखाई दे सच वो नहीं होता। देखिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब पावर ट्रांसफर करना चाहते थे और माननीय अखिलेश जी को कहीं ना कहीं नेता बनाना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार था, उनके परिवार में बहुत सारे लीडर्स थे, और अखिलेश जी राजनीति में इससे पहले नहीं थे। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं वो झगड़ा भी आपने देखा होगा, आप मंचों के ऊपर भाई बाकायदा तमाशाबाजी भी हुई है ना। और दूसरी बात, जब देखे कहीं ना कहीं एक जगह दिखाई दे रहा था, उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, एक हिस्से में कहीं ना कहीं अखिलेश जी को रखा और दूसरे हिस्से में तमाम उनके भाई जो इसका विरोध कर रहे थे। आपने देखा होगा कि अमर सिंह जी को जब वो चुनाव आयोग के अंदर गए और चिट्ठी लेकर के गए, और बाकायदा अमर सिंह जी ये चाह रहे थे कि साइकिल का निशान इनके ऊपर रहे और मोटरसाइकिल का निशान जैसे अखिलेश जी के पास रहे, जैसा दावा
9: हो गया। लेकिन अब समाजवादी कुनबा एक साथ में नजर आ रहा है, अमर सिंह भी नहीं रहे, मुलायम सिंह जी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ में नजर आ रहे हैं। आप आकाश आनंद की चिंता करिएगा, बताइएगा कि क्या होगा उसका।
8: सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए देखिए देखिए,
9: नहीं बहुजन समाज पार्टी जो 10% वोट पर आ चुकी है, आकाश आनंद के जाते जाते और 5% ना खिसक जाए।
8: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा मुद्दा ये, देखिए एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से भारत की दलित राजनीति को भटकाया जा रहा है। भारत की जो दलित राजनीति, पहला पायदान है आइडेंटिटी की लड़ाई, दूसरा है हिस्सेदारी की लड़ाई। तमाम राजनीतिक दल बहुजन मूवमेंट को पहली आइडेंटिटी की लड़ाई के ऊपर ही रखना चाहते हैं। मैं बताइए, खड़गे जी इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा एक्सपीरियंस, अगर उनका अपमान हुआ था तो उनको पहले दिन जाकर के इस मुद्दे के ऊपर चर्चा ना करा करके पहले दिन SC/ST एक्ट में जाकर के मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था, क्योंकि ऐसे एक्टिविस्ट जो सामान्य दलित है ना उसके अंदर एक भय का माहौल क्रिएट होता है,
9: और यही माहौल बीजेपी में चाहती है। देखिए कांग्रेस पर आ गए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहेगी कि बहुजन समाज पार्टी जो कोर्ट कांग्रेस के नेता वहां पर कर रहे हैं कि बहुजन मिशन को बेच चुकी है BSP मायावती, उसका जवाब यह आ रहा है सतीश प्रकाश जी से कि भटकाया जा रहा है।
15: देखिए साहिल जी, बहुत अफसोस है कि BSP जैसी पार्टी का ये पराभव हो रहा है, और हम सब, मैं यहां बहुत शिद्दत के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि हम सब उसी मिशन से निकल करके आए। हमने मायावती जी का समर्थन किया, उस पार्टी के लिए लंबे समय तक जिए, लेकिन हुआ क्या आखिर? बहन जी ने तो जैसे लग रहा कि सारे अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए, और स्पष्ट तौर पर दिखता है कि दबाव में है। बीजेपी ने जिस तरीके से उनको डरा करके उनके फैसले करवाए हैं, इससे केवल बहन जी का नहीं पूरे दलित समाज का अपमान होता है। आकाश जिस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, लोग उनमें उम्मीद देख रहे थे, और उनकी गलती क्या है, वो जो गलती बताई जा रही है वो नहीं है। गलती असल में ये है कि वो बीजेपी को खुल करके एक्सपोज कर रहे थे, लेकिन वहां तो चुप कराया जा रहा है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज आपके शो पर कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, क्यों भागा हुआ है? सवाल तो पूछा जाएगा ना कि बीजेपी कर रही है क्या,
9: लेकिन वो बुलाया था, लेकिन वो लेकिन रविकांत जी वो उनको बुलाया था, मैं आपको बता रहा हूं ना, उनको बुलाया था, लेकिन वो इस पचड़े में नॉन इंटरेस्टेड पार्टी है। देखिए आप और समाजवादी पार्टी इंटरेस्टेड पार्टी है इस पूरे मामले में, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आकाश आनंद आपके पास ना आ जाए। जो इंटरेस्टेड पार्टी है वो निषाद पार्टी है, हो सकता है कि SBSP भी इंटरेस्टेड हो, धीरेन्द्र कुमार अपनी पार्टी वहां पर बना रहे हैं वो शायद इंटरेस्टेड हो, बीजेपी को नहीं इंटरेस्ट है उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए।
15: नहीं, उनका इंटरेस्ट बहुत स्पष्ट है, वो भले ही ना दिखे, वो तो बहन जी को जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरह से मोड़ रहे हैं। ये क्या है, उनके तमाम लोग घुसे हुए हैं वहां, एक दो शख्स ऐसे हैं कि बाकी तमाम बड़े नेता BSP से निकल गए लेकिन कुछ जमे हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, और फैसलों में कहीं उनकी उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो एक नौजवान को जो बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज की, बहुजन चिंतन की बात कर रहा था, उसका जाना, उसका पार्टी से निकालना, और बीएसपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल तलब है और पूरे मिशन के लिए भी बहुत मुश्किल में डालने वाला है। और यही वजह है कि ऐसे तमाम लोग जो उस बहुजन मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे, जब राहुल गांधी जी ने उस मिशन को अपने हाथ में लिया, उनको लगा कि आज खतरा बहुत बड़ा है, आरएसएस खुल पर संविधान पर अटैक कर रहा है, और मोदी जी के जो जितने भी समर्थक थे खुल करके कहने लगे कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं, राहुल गांधी जी खड़े होते हैं, और उत्तर प्रदेश में कहें तो अखिलेश यादव जी खड़े होते हैं, और उसके बाद 2024 का नतीजा देखा, बहन जी की जो खामोशी थी उसने 2024 में क्या दिया। मैं बहुत दुख व्यक्त कर रहा हूं, बहुत दुखी और अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि उनको एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि दलित समाज को ये लगा कि आज जरूरत तो संविधान बचाने की है। बहन जी अगर कहीं दबाव में है, बीजेपी के साथ ये, है, जो
9: ये,
15: भी
9: ये बात बड़ी तो दिलचस्प है,
15: कांग्रेस के साथ जाना
9: नहीं, रविकांत जी ये बात बड़ी दिलचस्प है, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि जब राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश में गए थे, तो एक बार मायावती जी के जो उनका दरवाजा था या उनके घर पे दस्तक देकर आए थे, हालांकि वो उनसे मिली नहीं, वो आराम कर रही थी जो भी उनको बताया गया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी थोड़ी नाराज हो गई थी कि आप वहां पर कैसे जा सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो पुराने जमाने से उनको जानते हैं, एक वक्त पे उनके साथ काम कर चुके हैं, तो हमें लगा कि जाना चाहिए। वहां से शुरुआत होती है और वहां पर अब कांग्रेस इस मोड़ पर आ चुकी है कि मायावती की पार्टी ने बहुजन मिशन का सबसे ज्यादा नुकसान किया हुआ है। ये जो यात्रा आपकी रही है ना, ये भी बड़ी दिलचस्प है। देखिए राजनीति कैसे बदलती है, 6 महीने के भीतर राजनीति बदल गई है।
15: देखिए साहिल जी, बीएसपी जब खड़ी हो रही थी तो सबसे ज्यादा हमला उसने कांग्रेस पर किया और गांधी जी पर, नेहरू जी पर। मैं ये मान लेता हूं कि उस समय जरूरत थी क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन उसके बाद भी जो बीएसपी की टोन है वो कांग्रेस के खिलाफ बराबर नहीं, जबकि कांग्रेस वो पार्टी थी, नेहरू जी के कैबिनेट में बाबा साहब अंबेडकर थे, हिंदू कोड बिल से लेकर के, भले ही बाबा साहब ने रिजाइन किया लेकिन हिंदू कोड बिल 55 और 56 में आता है, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, और संविधान निर्माण के लिए किसने, गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी आप जाएंगे और बाबा साहब को लेकर के आएंगे, उनको जब चुनाव बाबा साहब हार गए तो फिर से कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में लेकर के आई, ये सम्मान दिया, और उनके पदचिन्हों पर कांग्रेस पार्टी चल रही थी, जहां शिक्षा हो उसमें वजीफे थे, एडमिशन थे, नौकरियां थी, आरक्षण था, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से इसको खत्म कर दिया, तब भी मायावती जी, बहन जी साइलेंट मोड पर रही। ये पूरे बहुजन समाज को बड़ा कष्टकारी लगा कि जब इतनी एट्रोसिटीज की घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नौजवानों को मारा पीटा जा रहा है, आरक्षण को ध्वस्त किया जा रहा है, उस समय बहन जी अगर खामोश है, और कांग्रेस पार्टी तो वो है साहिल जी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 2019 में सोनिया जी ने चाहा था कि बहन जी प्रधानमंत्री बने, आपको वो तस्वीरें याद होंगी बेंगलोर की, ये दिल से कांग्रेस पार्टी ने चाहा था कि हम एक दलित समाज से, एक वंचित समाज से आने वाली एक महिला को इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाए, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरीके से अपने तमाम एजेंटों के जरिए बहन जी को घेरा, मुझे अफसोस है कि उस पूरे मिशन और उस पूरी राजनीति का जो आज हाल हुआ है वो बड़ा दुखदाई है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में,
9: जिन आकाश आनंद का आज स्वागत किया जा रहा है, उनके भी पिछले भाषण निकाल कर दिखाएं तो उसमें भी आकाश आनंद ज्यादातर युवाओं की बात करते नजर आ रहे थे, बीजेपी के सरकार पर हमला जरूर बोल रहे थे, लेकिन दलित उत्पीड़न की बात उसमें नहीं दिखाई दे रही थी कहीं पर। यह बड़ी दिलचस्प बात है, कुछ आंकड़े भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा जल्दी से पीयूष मिश्रा जी आपकी प्रतिक्रिया लेनी है, एनडीए किस तरीके से देखता है इस पूरे मामले को, बहुजन समाज पार्टी जो भी है लेकिन 10% हिस्सा लेकर आज बैठी हुई है, और अभी भी दलित समाज में कई 30-40% वोट बहुजन समाज पार्टी के खेमे में आज भी जा रहा है, ये वोट खुला है, और देखिए कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगा रही है, समाजवादी पार्टी भी लगा रही है कि आपका गठबंधन की वजह से मायावती जी खामोश रहती है।
16: नहीं नहीं नहीं, देखिए साहिल भाई मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बहन कुमारी मायावती जी दलितों की वरिष्ठ महिला में नेत्री हैं, दलितों की वरिष्ठ नेता, और 4 बार में उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार रही है, मुख्यमंत्री रही हैं। अब उनके घर की परिवार की क्या बात चल रही है, कभी वो अंदर आ रहे हैं कभी अंदर से बाहर उनको आकाश आनंद जी को कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऐसा किया कि चीफ वो थे कोऑर्डिनेटर थे उनको हटा दिया गया, फिर अंदर लिया गया, फिर बाहर किया गया। तो ये देखिए ये बहन कुमारी मायावती जी और बसपा का ये विषय है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी आज हितैषी बनकर चल रही है, बहन कुमारी मायावती जी के साथ क्या क्या इन्होंने किया, गेस्ट हाउस कांड और से लेकर क्या क्या, ये सबको पता है। आपने अभी जैसा कि खुद ही बताया कि इनके प्रदेश अध्यक्ष चले गए थे बिना बताए मिलने, तो बहन कुमारी मायावती जी ने दरवाजा बंद कर लिया। तो इनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ क्या बसपा की रही है शुरुआत से, यह विदित सत्य है। सुभाषपा और अन्य जो हमारे एनडीए घटक दल है ये सब अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं, ठीक। और जो दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं, जो आदम गोंडवी की शायरी सुना रहे हैं कि दलितों पर घोड़ी चढ़ने से रोक दिया गया, रामपुर में घटना हुई थी मनोज जी, गूगल चेक कर लीजिएगा, उठा के चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, वो दबंग जो है और कोई नहीं, यादव थे, ना होगा तो मैं साहिल जी आपको भेज दूंगा पेपर कटिंग, वो भी इनको भेज दीजिएगा कि दलित समुदाय को किसने घोड़ी पर चढ़ने से रोका था, नंबर एक। और दूसरी बात कह रहे हैं इन लोगों को कुओं पे पानी, हमेशा समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि सवर्णों ने दलितों को कुओं का पानी नहीं पीने दिया, आज के डेट में आज संबल में खुदाई हो रही है तो कुएं जो है कहां से निकल रहे हैं, मस्जिदों के नीचे, सबको पता लग रहा है। तो समाजवादी पार्टी की यह चाल चरित्र और चेहरा रहा है, और जो इनका इंडी गठबंधन है, कि कैसे भी र्यूमर फैला के कैसे भी गलत प्रचार प्रसारित करके भाजपा को उसमें लपेटना, जो एनडीए हमारी सहयोगी है उनको लपेटना और सारा इल्जाम मढ़ देना। भाई अगर अखिलेश जी को इतनी हमदर्दी है, मनोज जी आकाश जी से आप लोगों को इतनी हमदर्दी है, अपने पार्टी में शामिल करके बोलिए कि दलित चेहरा हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे 2027 के चुनाव में। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूं, साहिल जी इनको कहिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि माननीय अखिलेश जी को अगर इतनी हमदर्दी है, ये घोषित करें कि उनको हम पार्टी में लाकर 2027 जिनजी से इनको इतना ही प्रेम है तो ये घोषित करें कि उसको उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री केवल केवल इन्हीं के परिवार का बनेगा, और जिनके साथ समीकरण के साथ ये लेके चलते हैं MY का समीकरण, दूसरी बिरादरी केवल चटाई बिछाती रहेगी, झाड़ू लगाती रहेगी। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा
9: MY में डी जोड़ने की कोशिश हो रही है उनकी, आपने देखा नहीं?
16: नहीं,
9: रंग बदल दिया, नीला रंग के गमछे पहनते हैं आजकल समाजवादी पार्टी के लोग, लाल टोपी और नीले रंग की शर्ट होती है।
16: अच्छा, हाँ साहिल भाई, ये तो आपने अच्छा याद दिलाया, अभी इन लोगों की छात्र सभा की ड्रेस बदल गई है। आपको पता होगा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत पार्टी के जब जन्म हुआ 2002 में, तो एक हमारे यहाँ भी RSS था जिसका पूरा नाम राष्ट्रीय सुहेल देव सेना है, उसका ड्रेस भी नीला है, नीली टोपी।

0: रही है या फिर आकाश आनंद को जिस तरीके से दूर किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो कहां जाएंगे? क्योंकि ये भी एक सवाल पूछा गया था, मनोज काका ने वो सवाल नहीं उठाया, लेकिन किस पार्टी में चले जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप खींचने की कोशिश करेंगे? आपको भी तो चेहरा चाहिए होगा उत्तर प्रदेश के भीतर, कोई दलित चेहरा?
1: नहीं देखिए, ये साहिल जी वहां पे बहन जी के परिवार का मामला है, इसमें किसी और पार्टी का प्रवक्ता क्या जवाब देगा। लेकिन जिस तरह से वहां पार्टी के बीच में टूट को देख करके उनके दलित वोटों को लूटने की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वहां पे एक अपना बनाई है वो कि मेरे यहाँ आ जाइए मेरे यहाँ आ जाइए, भाई वो लोग लूटे भी तो आप ही लोग से ही जा रहे हैं ना। एक नारा हम लोगों ने दिया था कि क्यों मांगे उधार जब अपने नेता तैयार, जो युवा भी हो जिनका दलितों पर भरोसा भी हो। वो पुराने एरा को याद करिए कि रामविलास पासवान जी, मान्यवर कांशीराम जी और बहन मायावती जी के जमाने में जितने सुरक्षित महसूस करते थे दलित वर्ग के लोग, आज वो कमी कमजोरी के वजह से बीएसपी के कहीं ना कहीं चिंता में है। लेकिन जब हमारे युवा नेता चिराग पासवान जी उत्तर प्रदेश के लोगों को जाते हैं मिलते हैं उनके सुख दुख में भरोसा देते हैं आरक्षण का भरोसा देते हैं, तो लोगों की उम्मीदें और विश्वास हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान की तरफ टकटकी निगाह से आशा भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। और बीच में इन लोगों ने भ्रम फैलाकर
0: आप भी तो बीएसपी का वोट ही खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप भी तो बीएसपी का वोट खींचने की कोशिश कर रहे हैं।
1: मैं बीएसपी का वोट नहीं खींच रहा, मैं तो उन
0: आपको तो बीजेपी एनडीए में नहीं लेगी, आपको तो बीजेपी एनडीए में नहीं लेगी, उनके पास ऑलरेडी सीटें भरी हुई है पूरी तरीके से, खाली नहीं है सीट वहां पर।
1: साहिन भाई आप पॉलिटिकल बहुत ज्ञाता है, उतनी बड़ी जानकारी अभी मेरे पास नहीं आई है, लेकिन मैं तो वहां की जितनी भी सीटें हैं सबों पे तैयारी कर रहा हूं, और उन तैयारी में अगर मुझे अकेले लड़ना पड़ा तो अकेले लड़ूंगा, और नहीं तो जिनके साथ गठबंधन होगा उनको सहयोग करूंगा, ये गठबंधन का धर्म होता है। लेकिन जिस तरह से दलित वोटों को सेंट्री करके कोई साइकिल के पीछे नीला लगा रहे हैं, कोई अपने गमछे के पीछे नीला लगा रहे हैं, ये समाजवादी अवसरवादी बन रहे हैं वोट के खातिर, लेकिन जब उनपे आपत्ति आती है, और आपत्ति भी कौन कर रहे हैं साहिल भाई, आप देखेंगे कि जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से मोर देन 80% केसेस समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा हो रहा है, और जिनका समर्थन कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, ऐसे में जब चुनाव का वक्त आया तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं गमछे नीले करके, तो उन लोगों के उत्तर
0: मनोज काका इसका जवाब देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वोटों पर दबदबा था वो कैसे चुनाव दर चुनाव घटता चला गया, वो जरा एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बड़े दिलचस्प है, जरा फुल फ्रेम दिखाइएगा ताकि सभी के पास वो आंकड़े पहुंच सके। देखिए 2012 में 206 सीट 30.4% कुल वोट प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश के भीतर मिला था, इसमें एक बड़ा कुनबा दलित वोटों का था। उसके अगले चुनाव में 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई, खिसक कर 25.9% हो गया, फिर भी 80 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीती थी। 2014 के चुनाव में भले सीटें जीती शून्य लोकसभा के चुनाव में, लेकिन फिर भी 20% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी क्लेम कर चुकी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सीटें जीती 19, लेकिन फिर भी 22 से 23% वोट शेयर बीएसपी का क्लेम था। लेकिन 2019 के बाद लगातार गिरावट, 2019 में हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ा गया था, बहुत साल बाद एसपी बीएसपी साथ में आए थे, 19.3% वोट शेयर 10 सीटें, लेकिन 22 और 24 के चुनाव में विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में, और खास करके लोकसभा चुनाव में आंकड़े देखिए 10% से भी नीचे गिरा हुआ आंकड़ा 9.3%, यानी जो वोट दलित वोट एक जमाने में आंख बंद करके कांचीराम मायावती की पार्टी को वोट दिया करता था वो खिसक रहा है। 2014 में उसमें से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ खिसका, 2024 के लोकसभा चुनाव में यह हिस्सा इंडिया अलायंस के पास भी खिसकता नजर आ रहा है, और अब जो बचा कुचा हिस्सा है उसके लिए कई लोग दावेदार बनकर सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें हो सकता है कि एक चिराग पासवान भी हो। तो ये देखिए बीजेपी का दलित वोट देखिए किस तरीके से उनका वोट बढ़ता गया 2017 के विधानसभा चुनाव में, जरा एक बार फिर दिखाइए 25%, 2019 के लोकसभा चुनाव में 32%, 2022 के विधानसभा चुनाव में 33%, लेकिन 24

0: के लोकसभा चुनाव में 26.5% जो एडिशन हुआ उसका फायदा एसपी कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस अलायंस को यानी इंडिया अलायंस को होता हुआ नजर आया था। वही समाजवादी पार्टी का दलित वोट शेयर देखिएगा 2022 में जो महज 10-12% हुआ करता था, दलित वोट शेयर समाजवादी पार्टी और अलायंस पार्टनर्स का 2024 में 35-40% तक जंप करता हुआ करीब करीब 20-25% की जंप उसमें नजर आ रही है। तो यह आंकड़े बड़े दिलचस्प है और इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या आकाश आनंद के पार्टी से निकाले जाने के बाद इसका असर सतीश प्रकाश जी जो बचा कुचा वोट शेयर है उस पर भी पड़ेगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी नजर लगाए बैठी है कि आकाश आनंद आगे क्या करेंगे।
1: नहीं देखिए साहिल जी, एक बात आप ध्यान रखिए, जो दलित समाज है उसका मुख्य आजीविका का साधन क्या है? उसके पास लैंड नहीं है, उसके पास कोई व्यापार नहीं है, उसके पास सिर्फ सरकारी नौकरियां हैं ना। और कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम लीडर्स की ये बयानबाजी कि अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे तो हम संविधान बदलेंगे, आरक्षण की समीक्षा करेंगे, तो उसके अंदर एक बह का माहौल था। ऐसे में उसको कहीं ना कहीं लगा, ऐसा नहीं था कि उनको समाजवादी पार्टी ने कोई बहुत कुछ उनके साथ बिहेवी कर किया था। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल पूर्ण रूप से गैर दलित विरोधी काम किया, इसमें कहीं कोई दोराई नहीं। लेकिन उसकी मजबूरी होगी और उस मजबूरी का फायदा कहीं ना कहीं लिया है। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहता हूं, एक कहावत भी है, दलित समाज ये अच्छी तरीके से जानता है कि महलों का चपरासी बनने से ज्यादा बेहतर है कि वो झोपड़ी का राजा बने। बहुजन समाज पार्टी उसका अपना घर है, बहुजन समाज पार्टी उसका अपना मिशन है। और मुझे लगता है कि दलित बहुत भावनात्मक नहीं होता, वोटिंग करते वो समझदार है। 70 के दशक से तमाम वो वोट की कीमत को जानता है, वो जानता है कि अगर ये वोट का ही अधिकार है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने,
0: ये बात सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है कि अपनी झोपड़ी का राजा बनकर रहना दलित समाज का आदमी पसंद करेगा, लेकिन आज की स्थिति में जब वो पॉलिटिकल झोपड़ी भी उखाड़ती हुई नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं वो खिसकने की कोशिश कर रहा है, ये भी तो यहाँ पर नजर आ रहा है। आंकड़े साफ नजर आ रहे हैं, 9.3% तक आकर सिमट गया है बीएसपी का वोट शेयर, यही सबसे बड़ी बात है। मनोज काका जवाब दीजिए।
2: देखिए एक तो हमारी आदत है कि हम लोग बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन सतीश भाई ने आज कई बेअनर्गल आरोप लगाया और इन्होंने देश के दलितों को वंचित तबके को बहुत संकीर्णता के भाव से देखा। इन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी घर है, बहुजन समाज पार्टी नहीं दलितों का घर है, दलितों का घर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है और संविधान को इस देश में कौन बदलना चाह रहा है? दलितों का सबसे ज्यादा अगर हित कहीं संरक्षित है तो संविधान में है और संविधान के साथ कौन खड़ा है? बाबा साहब और डॉक्टर के विमर्श के साथ कौन खड़ा है? माननीय अखिलेश यादव भी खड़ा, कौन लोग हैं जो आरक्षण विरोधियों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं? क्या बहन जी ने उस पर सवाल खड़ा किया? उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के मेरी अब बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
1: भारत में आरक्षण कंप्लीट
2: किया गया था ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ये तरीका नहीं है, ये मुझे तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है सतीश भाई। मैंने आपका कोई हस्तक्षेप नहीं किया, आप मेरी बात पूरी होने दें, आप मेरी बात पूरी होने दें, आप पूरी बात, मेरी बात।
0: सतीश प्रकाश जी एक मिनट। मनोज काका अपनी बात 20 सेकंड में खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपको रिबटल का मौका दूंगा और उसके बाद पीयूष मिश्रा जी को भी कुछ कहना है। मनोज काका आपकी बात खत्म करिए पहले, उसके बाद
2: पीयूष मिश्रा भी बात करेंगे, सतीश प्रकाश भी। देश में दलितों पिछड़ों और बहुजनों का कहीं अगर हक संरक्षित है तो संविधान के किताब में और संविधान के तथ्यों और उसके मूल्यों के साथ कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी। क्या बहुजन समाज पार्टी ने लेटरल एंट्री पर उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में, देश के पब्लिक सर्विस कमीशन पर, अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है कि किस तरह से दलितों पिछड़ों का आरक्षण लगातार, चाहे वो संस्थानिक हो चाहे विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थाओं में,
0: लगातार मुद्दा रखा है। सतीश प्रकाश जी आप जवाब दीजिए।
1: योगी आदित्यनाथ, सुनिए, मनोज जी हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने एक सवाल पूछा कि देखिए कोई भी पार्टी जब सत्ता में, सुनिए, मैं गलत नहीं, अब कही दूं, चलिए अब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, अब सुनो, अब आपको सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। आरक्षण बिल किसने फाड़ा था? यशवीर धोबी कौन था? नगीना का विधायक एमपी कौन था? समाजवादी पार्टी का था ना, और तमाम वो दलितों महापुरुषों के जो नाम जिले चेंज किए वो मैंने चेंज किए थे। नहीं नहीं आप सुनिए, अगर अगर सवाल तो रहेगा ना, 1,00,000 दलितों को रिवर्ट किया गया था सर, और उसमें पता कितने लोग मरे थे? लगभग 500 लोग उसमें हार्ट अटैक से मरे, जो बुजुर्ग लोग हैं, और उनको जबरदस्ती उन्होंने बाकायदा समाजवादी पार्टी से रिक्वेस्ट किया था कि साहब हमको रिवर्ट कर दो, लेकिन हमारा ट्रांसफर कर दो। उनको कहा कि नहीं, तुम्हें रिवर्ट भी करेंगे, तुम्हें इसी ऑफिस के अंदर चपरासी बनाएंगे।
3: और लेकिन सतीश प्रकाश जी, देखिए इतिहास में जाएंगे तो कई मुर्दे उखाड़े जाएंगे। मुझे मुझे नंबर्स पर जवाब दीजिएगा। 2019 में ये सारी चीजें होते हुए भी, ये सारी चीजें होते हुए भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी समाज पार्टी का अलायंस हुआ था लोकसभा के भीतर। और क्या कारण है कि आज की स्थिति में दलित वोट आपसे खिसक कर, बीएसपी से खिसक कर इंडिया अलायंस या बीजेपी के पास जाने की कोशिश कर रहा है? मैं तो जाटव नॉन जाटव वोट का डिफ्रेंसिएशन भी नहीं कर रहा हूं, मैं सभी वोट को एक साथ काउंट करने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद पीयूष मिश्रा जवाब देंगे और आखिर में रविकांत जी।
1: देखिए देखिए साहिल जी, बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई दोरण नहीं कि जो हिंदी भाषी पट्टी है, जो उत्तर भारत है, वहां भारत की राजनीति बदली है। अगर उत्तर प्रदेश देखेंगे, मध्य प्रदेश देखेंगे, वहां वहां कहीं ना कहीं राजनीति बदली है। अब जनमानस के मुद्दों के
3: मायावती पर, मायावती जी पर विश्वास घट रहा है? मायावती जी पर विश्वास घट रहा है कि नहीं घट रहा है? इसका मतलब ये निकाले कि नहीं निकाले?
1: साहिल जी अभी भी कहीं ना कहीं बहन जी मुक्तिदाता है, इसमें कहीं कोई दोरा नहीं। पॉलिटिकली किसी लीडर ने दलित समाज के लिए काम किया है, वो तमाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पार्क है, तमाम वो है।
3: पीयूष मिश्रा,
1: वो जी जी जी,
3: क्या कारण है कि वोट घट रहा है?
4: साहिल भाई नहीं मैं बता, साहिल भाई देखिए, समाजवादी पार्टी इतनी हितैषी बन रही है दलितों की, इनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जो, कि प्रमोशन में आरक्षण दलितों का किसने खत्म किया? माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन माननीय मुलायम सिंह ने खत्म किया था, जिससे कि कई दलित आत्महत्या कर लिए, कई नौकरी छोड़ के चले आए। तो आप तो यह दलितों का हितैषी बनने की चाहत तो मत ही रखिए, जब आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया
3: और आपके अंबेडकर
4: अंबेडकर के हितैषी बन रहे हो,
3: ये जो ग्राफ नजर आ रहा है उसका भी जवाब दीजिए ना पीयूष मिश्रा जी।
4: उंगली उठाई है,
3: अरे पीयूष मिश्रा जी, जो जो ग्राफ दिख रहा है उसका भी जवाब दीजिए।
4: हमको नसीहत यहाँ पे बैठ के ज्ञान मत दे। देखिए दलितों की जहां तक वोट की बात कर रहे हैं साहिल जी, दलितों के जो लोगों की बात कर रहे हैं, दलितों के जो भी वोट परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, सारा सारा दलित वोट एनडीए सरकार के साथ लगा हुआ है। सारा सारा वोट जो है, सारे सारे लोग जो है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ है, जिसका आपको वानगी दिखी 17 में, दिखी 19 में, दिखी 22 में, दिखी 24 में, दिखी।
3: रविकांत जी एक बार फिर मौका, इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश के भीतर दलित वोटों को लेकर,
5: दलित समाज पहले कांग्रेस पार्टी के ही साथ था, मानवर कांशीराम जी के आंदोलन में वो बीएसपी के साथ आया, और अब वो ये देख रहा है कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जिस तरह से हाथरस में जूझ रहे थे, या तमाम दलित घटनाओं पर, अभी निशु आजाद का मामला था, उस बेटी के लिए जब उसने कहा कि मुझे आपसे उम्मीद है, तुरंत राहुल जी ने ट्वीट किया और उसके बाद FIR भी दर्ज हुई। ये जो विश्वास है, आज विश्वास राहुल गांधी जी में दलितों का पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। और अब बहन जी में, नो डाउट कि बहन जी थोड़ा जाटव समाज उनके साथ पिछले चुनाव में भी जुड़ा रहा, नॉन जाटव तो उनसे काफी पहले निकल चुका था, जिसको लेकर के बीजेपी ने पूरी पॉलिटिक्स की, पीएसपी में वो अलग थलग किया गया तो वो निकल गया। अब हालत ये है कि जाटव समाज भी पीएसपी से निराश दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुखी, वो निराश है, और उसे ये लग रहा है कि अगर महलों में हम जा नहीं सकते, आप ये हमारे साथी कह रहे थे कि साहब अपने झोपड़ी अच्छी है, लेकिन साहब जो महल है वहां तो कोई दलित जा नहीं सकता, किसी के साथ कोई घटना हो वहां कोई खबर लेने वाला नहीं है, तो क्या करेगा वो, जाएगा कहां? अगर राहुल गांधी उसका हाथ पकड़ के उसे न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं तो वो वहां जाएगा ना, उस पार्टी के साथ जाएगा जिसने उसे संविधान दिया, जिसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर
3: 20 सेकंड कितनी मुश्किल, कितना मुश्किल होगा ये चुनाव बीएसपी के लिए, और उसके साथ साथ अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है, कितना मुश्किल होगा समेटना 20 सेकंड आखिर के।
1: ये सवाल किससे है सर?
3: सतीश प्रकाश
1: नहीं नहीं देखो देखो देखो देखो देखो देखिये मेरी बात को समझो। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की समस्या यही है। बाकायदा योगी सरकार ने 7.5 लाख पद लोगों के दबा के रखे हुए, और उत्तर प्रदेश के दलितों की मुख्य समस्या यही है सर। लेकिन दूसरी बात जो कही है रविकांत जी जो कह रहे थे, देखिए सुनिए, अगर मैं चर्चा करूंगा तो इस बात की भी चर्चा करूंगा कि कलावती कौन थी। माननीय राहुल गांधी जी भारत की राजनीति में जब स्थापित हुए तो कलावती के, लेकिन कलावती की सिर्फ चर्चा हुई थी ना,
3: ज्यादा दूर नहीं है।
1: क्या कर रही है ये हमको
3: 6 महीने बाकी है।
1: मेरा मानना यह है कि
3: फरवरी में चुनाव सर पर है, और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी के अंदर एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर उभर कर सामने आ रहा है। सवाल उन 20-25% वोट शेयर का है जो अभी भी खुले में पड़ा है, किसके खेमे में जाएगा, उसको लेकर यह लड़ाई चल रही है। इस पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हम दंगल में लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा,
3: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
4: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
5: अंडमान निकोबार आइलैंड, तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
6: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
7: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
2: आज तक, देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी का सीएम से पीएम के पद पर जारी सफर का 25 साल पूरा हो रहा है। उससे पहले 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है। ऐसे में बीजेपी ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक एक महीने के सेवा संकल्प अभियान का बड़ा ऐलान किया है। इस एक महीने में मोदी के जन्म स्थान वड़नगर से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बीच 2 यात्राओं समेत अनेक राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, लेकिन ये तय है कि बीजेपी के फोकस में युवा होंगे, जेन जी होगा। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों से युवाओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी पार्टी के निशाने पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के नाराज फूफा वाले तंज का चेहरा भी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया मीम के जरिए सामने रख दिया है। नाराज फूफा हर काम पे सवाल, नाराज फूफा हर प्रोग्रेस पे बवाल, नाराज फूफा। 12 साल में भारत की तरक्की से नाराज फूफा अब बीजेपी का बड़ा राजनीतिक कैंपेन बन रहा है। इसकी जरूरत ही क्या है, जिसका चेहरा उतरा हो हर दफा, वो होते हैं नाराज फूफा। नाराज फूफा कैंपेन के जवाब में कांग्रेस मोदी को सबसे बड़ा नाराज फूफा बता रही है। बीजेपी के पास मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का आंकड़ा गिनाने के लिए जीडीपी के नंबर से लेकर फ्रेट कॉरिडोर, वंदे भारत ट्रेनें, यूपीआई, जनधन खाते और स्पेस जैसे क्षेत्र में हुई तरक्की है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आम लोगों के लिए पहले से ज्यादा मुश्किलें बढ़ी हैं। हाल के महीनों में पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी और अब सत्य निकेतन जैसे हादसे विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका दे चुके हैं। छात्रों की गूंज से राहुल गांधी ने सरकार को युवाओं से लेकर महिलाओं के तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश की।
1: आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो, आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है, स्मैश द पेट्रियार्की।
0: राहुल के इस नैरेटिव के बीच ये भी सच्चाई है कि जेन जी से प्रधानमंत्री के इंस्टा संवाद और फिर आईआईटी दिल्ली से लेकर एसआरसीसी और वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी पेवेलियन में प्रधानमंत्री का युवाओं के बीच जाना परसेप्शन को बदलने की बड़ी कोशिश है।
2: एक जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है, दूसरा जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है, और तीसरा जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं, आधा पानी से आधा हवा से।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान बीजेपी की कोशिश का नेक्स्ट फेज होगा। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार हल्ला बोल, बने रहिए आज तक के साथ।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ब्रिक्स के मंच पर दिखेगा हिंदुस्तान की धमक। नई दिल्ली में चीन और रूस के राष्ट्रपति समेत महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरीके से गिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा हो तुरंत। कांग्रेस ने भी की घेराबंदी। आईआरसीटीसी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप, रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का है मामला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Chairship 2026, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability.

0: स्वागत है आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत में कूटनीति का महामंच सजने वाला है। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहे 18वें ब्रिक्स समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। समिट में शामिल होने आ रहे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होनी है। समिट में चाइना की तरफ से राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल हो सकते हैं। यही जानकारी आई है कि शुक्रवार को पुतिन आ रहे हैं और फिर शनिवार को शी जिनपिंग आ रहे हैं। 18वें ब्रिक्स समिट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी शामिल हो रहे हैं। 11 देशों के ब्रिक्स फोरम के इस शिखर सम्मेलन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया का युद्ध अभी जारी है। भारत और जो निगोशिएटर्स हैं इस ब्रिक्स समिट से दुनिया के लिए एक सकारात्मक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान, यूएई और सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व पश्चिम एशिया के नजरिए से बहुत अहम है, क्योंकि देखिए वहां पर युद्ध चल रहा है। ईरान लगातार यूएई, सऊदी अरब अलग जगहों पर हमले करता आ रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या ये देश आमने सामने देख पाएंगे, कैसे ब्रिक्स के सामने जो चैलेंजेस हैं, उन चुनौतियों के बीच ब्रिक्स का ये पूरा समिट जो है वो हो रहा है, और कैसे एक वैकल्पिक तरीके से हम विश्व में इस वॉलेटिलिटी के बीच इन 11 देशों को ले जा सकते हैं, जो कि प्राइमरी मेंबर्स हैं, जो इन्वाइटेड मेंबर्स हैं उनको भी। हाल में SCO समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कहा था कि दुनिया को एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की ओर बढ़ना होगा। उधर ब्रिक्स समिट के दौरान रशिया और चाइना के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को भी और मजबूती मिल सकती है। ये ब्रिक्स समिट किन उम्मीदों के साथ आया है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा है भारत का के नजरिए से अगर हम इसको देखें, क्योंकि भारत इसको होस्ट कर रहा है। ब्रिक्स में भारत का मजबूत जोड़ है। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: India's BRICS Chairship 2026, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability.
0: हरे भरे और स्वस्थ भविष्य के उद्देश्य के साथ उम्मीदों का दिया जला है। The planet.
1: It's about protecting our future.
0: भारत की धरती पर हो रहा 18वां ब्रिक्स समिट दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का मंच बनने वाला है। भारत की अध्यक्षता वाले सम्मिट में मेजबान प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी होंगे तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खास मेहमान बनेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के सैकड़ों प्रतिनिधि ब्रिक्स के जरिए दुनिया की नई राह तय करने की कोशिश करने वाले हैं। 2025 में ब्रिक्स अध्यक्षता हासिल करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारा लक्ष्य ब्रिक्स को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। जिस तरह हमने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान समावेशिता को बढ़ावा दिया और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता दी, उसी प्रकार ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भी हम इस मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाएंगे। मौजूदा ब्रिक्स समिट पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हो रही है, जिसमें ईरान के अलावा सऊदी अरब और UAE शामिल हो रहे हैं। उधर भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने और शांति के प्रयासों के लिए एक साथ दोनों देशों के साथ संपर्क रख सकता है। SCO समिट में युद्ध के खिलाफ दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दुनिया में गूंज रहा है।
1: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। 2012 में भारत पहली बार ब्रिक्स का मेजबान बना था। मोदी सरकार के समय ये तीसरा मौका है जब ब्रिक्स समिट भारत में हो रही है। 2016 और 2021 का भी मेजबान भारत था। 2021 के कोविड संकट काल के बाद 2026 में वैश्विक तनाव के बीच भारत फिर नेतृत्व करने वाला बना है। 2026 में भारत मंडपम में हो रही समिट के लिए दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा NSG कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे। सुरक्षा के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। ट्रैफिक के लिए भी खास इंतजाम है।
2: ये ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम हम्स का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे VIPs स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर VIP पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डायवर्ट करेंगे, वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं।
0: ब्रिक्स समिट का उत्साह दिल्ली से बाहर भी नजर आ रहा है। अमृतसर में पेपर आर्टिस्ट जगजोत सिंह ने खास पेंटिंग से ग्लोबल लीडरशिप का भारत का संदेश आगे बढ़ाया है। आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर ब्रिक्स समिट को लेकर यही है कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आना तय हो गया है। अभी तक जानकारी ये थी कि वो आ सकते हैं, लेकिन अब चाइना के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक पोस्ट में कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स MFN जो वहां पर है उसने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं। 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट के दौरान शी जिनपिंग भारत में रहेंगे। 12 और 13 यानी शनिवार और रविवार को ही मुख्य कार्यक्रम है जिसमें तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो होंगे, यानी शुक्रवार को व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं और शनिवार को पहुंचेंगे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगर आप देखिए तो ब्रिक्स के अंदर एक रिक की बात हमेशा होती है जिसमें रशिया, इंडिया और चाइना है, और कैसे ये तीन देश एक महाशक्ति के रूप में उभर सकते हैं। उसी कड़ी में शी जिनपिंग का यहां पर आना और पुतिन का यहां पर आना, बायलैटरल की भी चर्चा है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अब पुष्टि हो चुकी है, व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति तो शुक्रवार को आ ही रहे हैं, साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइना के भी शनिवार को पहुंच रहे हैं, दो दिनों की यात्रा पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सांसद भारतीय

0: जनता पार्टी के राज्यसभा के और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय उपाध्याय जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ दो खास मेहमान अचल मल्होत्रा जी जो कि पूर्व राजनयिक हैं और प्रसून शर्मा जी जो कि विदेशी मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये ब्रिक्स सम्मेलन, उससे पहले कुछ नंबर्स अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जो ग्राफिक्स नंबर 2 है एक बार अपने दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि ब्रिक्स की ताकत क्या है। ब्रिक्स की ताकत यह है कि लगभग 49.5 यानी विश्व की आधी आबादी इन देशों में है जो ब्रिक्स में है। 50% आबादी ब्रिक्स के देशों की है। इसी के साथ ग्लोबल जीडीपी में लगभग 40% की हिस्सेदारी है इन देशों की। ये ब्रिक्स की ताकत है और इसीलिए ब्रिक्स का ये समूह कैसे विश्व में अन्य लोगों की नींद उड़ाता है, उनमें बेचैनी पैदा करता है, अक्सर हमने देखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स को लेकर कहते हैं वो डॉलर के खिलाफ एक मंच है, कभी वो कहते हैं कि इस तरह की ये कूटनीति चल रही है जिसमें हमने भारत को, मतलब अलग अलग तरीके से वो अपने इसको इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन ग्लोबल जो ट्रेड है विश्व का, उसमें भी 26% हिस्सेदारी इन्हीं ब्रिक्स देशों की है। और सुधांशु जी, इसी बैकग्राउंड में आपसे मैं ये पूछ रही हूं कि भारत इस बार के ब्रिक्स आयोजन से, जिसमें बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनकी भी तस्वीरें अब हम एक एक करके दिखाएंगे अपने दर्शकों को, क्या उम्मीदें रख सकता है?
1: देखिए, इस समय संपूर्ण विश्व एक बड़े संक्रमण काल से गुजर रहा है। जो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का वर्ल्ड ऑर्डर था, वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है। जब 2016 में ट्रंप अमेरिका में आए सत्ता में, तो सबसे पहले उन्होंने अमेरिका को पैसिफिक एग्रीमेंट से बाहर किया, यानी वो ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत का जिसका अलंबरदार स्वयं अमेरिका था, एक प्रकार से उसने ही वापस करना शुरू कर दिया, अपने कदम वापस खींचने शुरू कर दिए और अमेरिका फर्स्ट की बात शुरू हो गई। इधर चाइना का पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार का राइज हुआ है, उसने विश्व के शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदला। उसी के साथ साथ भारत का जो राइज हुआ 21st सेंचुरी के शुरू होने के बाद, और फिर किसी को यह अन्यथा लग सकता है, अटल जी की सरकार के समय 2003 में हम चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस थे अराउंड $1 बिलियन के, वो अगर 10 साल का गैप नहीं रहा होता तो आज हम चाइना के बिल्कुल बराबर पे खड़े होते और क्या पता उनसे आगे भी खड़े हो सकते थे, वो एक अलग विषय। आज स्थिति यह है कि कोई एक शक्ति विश्व को कंट्रोल नहीं कर सकती, मगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी दक्षता के साथ, आज हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं और हम G7 में परमानेंट इनवाइटी हैं मोदी जी के कार्यक्रम में। पुनः कह रहा हूं, हम क्वाड के भी मेंबर हैं, ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और G7 में परमानेंट इनवाइटी हैं। अब ये जो ब्रिक्स देश हैं, जिनके बारे में अभी आपने बताया कि ये 40% वर्ल्ड का GDP कंट्रोल करते हैं, यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार अमेरिकन कांग्रेस में 2024 जुलाई में डी-डॉलराइजेशन के ऊपर डिस्कशन हुआ। बड़ा फेमस बयान है ट्रंप साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि साहब ये ब्रिक्स जो है वो डी-डॉलराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है और यही कारण है कि वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहा है उसी की वजह से हमारी ग्रोथ रेट 7.8% होने के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए का जो वैल्यू कम हो रही है वो उन लोगों को समझ में नहीं आएगी। जिस प्रकार के बयान वो लोग देते रहते हैं वो एक अलग विषय रहता है, मगर इसी के साथ साथ यहां सिर्फ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक विषय नहीं है। ब्रिक्स देशों में अगर आप देखें तो एग्रो इकोसिस्टम के ऊपर, एग्रीकल्चर को डिजिटल सिस्टम बनाने को लेकर, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की शेयरिंग से लेकर, जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उनमें शेयर करने से लेके, नेचर कंपेटिबल डेवलपमेंट करने से लेके, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर कि ये देश आपस में बैठकर बात करेंगे और एक साझा रणनीति बनाई जा सकती है। क्योंकि जो राजनीतिक और हमारे जो प्रतिद्वंदता वाला विषय है उसमें बहुत सी चीजें अलग रह सकती हैं, मगर ऐसी कुछ चीजें हैं जिनमें कि हम और दूसरे देश, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 2015 में बुखार के लिए, मलेरिया के लिए चाइना की एक साइंटिस्ट U22 को नोबेल प्राइज मिल गया, ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी हर्बल मेडिसिन के द्वारा मलेरिया का इलाज खोजने के लिए। अब बताइए, काढ़ा पीपी के हम जो है बुखार उतारते थे मगर ट्रेडिशनल मेडिसिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया था। अब प्रधानमंत्री जी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम बनाया, तो हमारा चीन से बहुत सारा मतभेद हो सकता है, परंतु भारत के पास सबसे स्ट्रक्चर्ड सेटअप है ट्रेडिशनल मेडिसिन का और इसकी कुछ नॉलेज परंपरागत ढंग से चीन के पास भी है। तो यहां पर और कुछ रशिया के पास, अगर हम इसमें आपस में किसी प्रकार का एक कोऑर्डिनेशन रखते हैं, साउथ अफ्रीका भी इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो हमारे वो आर्थिक, रणनीतिक और डिप्लोमेटिक अलग चलेंगे, इससे इस देशों को ग्रो करने का मौका मिल सकता है जो वेस्टर्न कंट्रीज के पास नहीं है। उनकी सभ्यताओं के पास कभी रहा होगा पर वो पूरी तरीके से खो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं इसको सिर्फ एक नजरिए से नहीं देना चाहिए। जैसे चिदंबरम साहब का जो बयान आया है वो दुखद और हास्यास्पद है, वो विषय अलग है, मगर मैं कह रहा हूं कि ये गर्व का विषय है कि भारत ब्रिक्स का की मेजबानी कर रहा है और ऐसी मजबूत स्थिति में आज भारत है कि हर देश का विश्वास भारत की तरफ है। मैं एक उदाहरण और दे देना चाहता हूं, चिप बनाने की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में बनाई है और आईफोन की चाइना के बाहर सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। अमेरिका ने यह नीति बना रखी है कि जो आईफोन भारत में बनेंगे वही अमेरिकन बाजार में बिकेंगे, चीन से बने हुए आईफोन नहीं बिकेंगे, क्योंकि उन्हें चीन में अविश्वास है, ये कुछ करके तो नहीं दे रहा। उधर चीन अपनी कंपनियों से कह रहा है कि एनवीडिया के प्रोसेस चिप एज फार एज पॉसिबल मत यूज करिए। तो फॉक्सकॉन के लिए संभावना अधिक है क्योंकि क्रिटिकल मटेरियल पर तो चीन का कंट्रोल है, क्योंकि अब चीन को अविश्वास है अमेरिका के ऊपर। यानी आप देखिए कि दोनों का विश्वास एक दूसरे के ऊपर है, पर भारत पे अविश्वास दोनों का किसी का नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस जंग के जो आयोजन है वो वर्तमान परिस्थितियों में न सिर्फ आवश्यक है बल्कि भारत को एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास हो रहे हैं उनकी सार्थक, सकारात्मक और उपयोगी भूमिका प्रस्तुत।
0: अजय उपाध्याय जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए, मुझसे अग्री करेंगे खासतौर पर अचल मल्होत्रा जी की कम से कम इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा राजनीति को अगर हम लोग दरकिनार करें और उसको बहुत बिटर ना बनाएं तो सार्थक भारत के लिए हो सकता है। और उसी नजरिए से मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम होस्ट कर रहे हैं। 12 में जब आपकी सरकार थी यूपीए की तब ब्रिक्स पहली बार भारत ने होस्ट किया था, 12, 16, 21 और अब 26, चौथी बार हम होस्ट कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के साथ बायलैटरल कन्फर्म्ड है, मसूद पिज़िश्कियान के साथ बायलैटरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्फर्म्ड है। सैटरडे के लिए खबर है कि शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ऐसे वक्त पर जब ऊर्जा का एक संकट, अलग अलग युद्ध के मुहाने खुलने की वजह से विश्व पर छाया हुआ है, एक ऐसा वक्त जब बहुत सारी चैलेंजेस हैं और मल्टीपोलैरिटी जो है वो इतनी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है, भारत बल्कि उसका स्पीयर हेड करने में भी आगे रहा कि भाई किसी एक पर निर्भर नहीं, हम सबसे अच्छा रिश्ता रखेंगे, ऐसे में ये समूह भारत के लिए क्रिटिकल भी है और इस समिट के जरिए भारत बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अजय जी
2: नमस्कार। अंजना जी, आपको, आपके दर्शकों को और सभी पैनलिस्ट साथियों को, कांग्रेस पार्टी इस समिट का स्वागत करती है। हमें गर्व है कि सदियों से हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूदगी अपनी दर्शाते रहे हैं। इस समिट को भी और इससे पहले भी बहुत सारे समिट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश में भी हुए हैं और हम विदेशों में भी जाकर भारत उपस्थिति अपनी दर्ज करता है। यहां किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों को या एनालिस्ट को, देश का हर नागरिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ खड़ा होता है। जहां तक बात है ऐतिहासिक सम्मेलनों की, बड़े बड़े तस्वीरों की, बड़े बड़े बाकी इवेंट मैनेजमेंट की, तो जरूर कई बार इस पर प्रश्न आते रहते हैं कि जो सरकार लगातार बताती है कि ये समिट जो हुआ ऐतिहासिक हुआ, तो उस ऐतिहासिक के साथ साथ उसके ऐतिहासिक कुछ परिणामों पर भी हमको चर्चा जरूर करनी चाहिए और देश के लोग इस बात की अपेक्षा भी रखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां तक बात है हम इस ब्रिक्स सम्मेलन की चर्चा चुकी हो रही है तो इस पर हमें जरूर एक बार इसका रिपोर्ट कार्ड पिछले 2-3 साल का ले लेना चाहिए। 2023 में जोहान्सबर्ग में जो समिट हुआ था उसमें एक्सपेंशन हुआ और 11 मेंबर्स की जिस तरह से उसमें टीम आई है, एक्सपेंशन जरूर हुआ, संख्या जरूर बढ़ी, लेकिन क्या संख्या के साथ साथ ब्रिक्स की इंटरनेशनल लेवल पे प्रभाव भी उतना बढ़ा या नहीं, ये महत्वपूर्ण डिस्कशन का मुद्दा आज भी है, इस बार भी है, 26 में भी और पहले भी था। सच पूछिए तो विस्तार होना एक महत्वपूर्ण कदम था, पर क्या उस विस्तार के साथ जो आपसी सहमति बनाने की प्रक्रिया आज भी जारी है वो क्या हो पाई है कि नहीं, क्योंकि वेस्ट एशिया के बहुत सारे देश आपस में ही अभी उलझे हुए हैं और भारत को उसमें अहम भूमिका निभानी है। दूसरी बात, आप 24 का कजान का भी ले लें, उसमें डी डॉलराइजेशन एक बड़ा मुद्दा था और डी डॉलराइजेशन के साथ साथ करेंसी लोकल करेंसी ट्रेड और ब्रिक्स पे की भी बात की गई थी। आज भी वो सवाल बरकरार है कि क्या हम 26 में भी ब्रिक्स पे कहां तक पहुंचा है, लोकल करेंसी

0: ट्रेड कितना बढ़ा है और वैश्विक भुगतान व्यवस्था कितनी ऑपरेशनलाइज्ड हुई है। 24 के बाद हम 25 का एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, रियो का एआई गवर्नेंस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्लोबल साउथ की बात की गई थी, कोऑपरेशन की घोषणा जरूर हुई, संकल्प लिए गए, लेकिन आज भी यह स्पष्ट नहीं है कि इन घोषणाओं ने वैश्विक व्यवस्था में कौन सा बड़ा संरचनात्मक बदलाव लाया है। ये भारत पर प्रश्न नहीं है, ओवरऑल कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यदि उसकी चर्चाएं होती हैं तो ये उसके चुनौतियों को भी और उसके खूबियों को भी आपको रखने की चीजें आनी चाहिए। रियो में कमिटमेंट्स बहुत हुए लेकिन इंस्टीट्यूशनल ब्रेक थ्रू की बात की जाए तो अभी भी बहुत कमी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, हुआ भी है बहुत चीज। इस बार भी जो हमें पूरी विश्वास है, भरोसा है कि कुछ अच्छा होगा। जस्ट थोड़ा सा हमको और वक्त दे दीजिए, चैलेंजेस क्या है इस ब्रिक्स को लेकर के, जो 40% की बात आपने की, व्यापार की, जनसंख्या की, बाकी चीजों की, दो चैलेंजेस है बस, इसके बाद में बात अपनी बंद करूंगा। ब्रिक्स की सबसे बड़ी चुनौती ये जो है आज चाइना फैक्टर है, यह असली मुद्दा पर हमको आना चाहिए। ब्रिक्स में सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है तो सबको पता है चाइना है, सबसे बड़ा निर्यातक भी चाइना है, सबसे बड़ा रणनीतिक प्रभाव भी नेचुरल है कि उसका सबसे ज्यादा इस पर है, और 23 के एक्सपेंशन से सबसे ज्यादा लाभ किसी को हुआ है तो चाइना को हुआ है। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भी ब्रिक्स के मंच की बात आएगी तो रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक लाभ को लेकर हमको चर्चा करनी होगी। दूसरी बात, आर्थिक मंच पर यदि हम चर्चा कर लें कि भारत उसमें आर्थिक तौर पर हम कहां खड़े हैं इस व्यापार के, चूंकि व्यापारिक भी एक संगठन है, तो सच पूछिए तो आर्थिक तौर पर हमें जो है, पहली बात कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जरूर हुई है, और इस खुशी बात है इस कि ये 11 देशों का जो संगठन है इसमें एक अच्छा सा व्यापार बढ़ा है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 416 अरब डॉलर का व्यापार, और व्यापार घाटा जो है $224 अरब का भारत का हो गया है। भारत इम्पोर्ट एक तरह से $320 अरब का किया है और निर्यात मात्र $96 का किया है। ये एक तरह से हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कम और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ी है। तो हमें इन मुद्दों पर आना चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, राजनीति जिसको करनी है करे, पर हमें अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सदुपयोग, भारत को कितना लाभ हो रहा है, प्रभावी हम कितना हो रहे हैं, इस पर एक सकारात्मक विश्लेषण और आलोचनात्मक विश्लेषण भी करने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसी चीज को रखती
1: है। ठीक है, वैलिड पॉइंट अजय जी, और मुझे लगता है कि सुधांशु जी एक जवाब दें, उसके बाद मैं अचल जी फौरन आऊंगी। रशिया की तरफ से जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने, हालांकि वो डी डॉलराइजेशन वर्ड से मल्होत्रा जी बहुत इंटरेस्टिंगली बच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अब जो ब्रिक्स के अन्य देश हैं उनके साथ पेमेंट में नेशनल करेंसी पर, एक बार नंबर्स दिखा दीजिए, रूस अभी इस वक्त ऐसी स्थिति में है, भारत के साथ तो लगभग 96% जो इस वक्त पेमेंट कर रहा है रशिया वो रुपया और रूबल में है। जो हमने अभी नंबर्स दिखाए उसको वापस दिखा दीजिए ताकि हमारे दर्शक इन नंबर्स को देख पाए। चाइना के साथ वो इससे भी आगे बढ़ गया है, लगभग मुझे लगता है 99% के आसपास जो उसका पेमेंट है वो, अब ये देखिए 99.1% देखिए इस वक्त चाइना के साथ रशिया जो है वो बिना डॉलर, मतलब युआन और रूबल में हो रहा है। भारत रुपया रूबल 96%, ईरान के साथ भी 96% हो गया 96%, और मसूद पेजेश्कियान के साथ भी, राष्ट्रपति जो है ईरान के, उनके साथ भी एक बायलैटरल होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजिप्ट के साथ 40%, ब्राजील के साथ 10%। जो यूपीआई है भारत का वो लगभग 11 देश इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और रिकॉर्ड उसके जरिए पेमेंट हो रहा है। और मुझे लगता है कि डी डॉलराइजेशन, इसको कहा जाए ना कहा जाए, अगर रेजिलियंस थीम है इस बार का, रेजिलियंस यानी कैसे हम एक मजबूत दीवार बनकर ये देश खड़े रहे, तो उस कड़ी में मुझे लगता है कि सुधांशु जी ये बड़ा कदम है डॉलर से धीरे धीरे अपने आप को अलग करना।
2: ये निश्चित रूप से मैं यह बात कहने वाला था, आपके विश्लेषण में बात आ गई कि भारत रूस के साथ जो भी व्यापार हो रहा है, अभी जून के महीने में हमने 8.3 मिलियन बैरल तेल आयात किया है, जो हमारा मतलब टोटल आवश्यकता का 48% हमने रूस से लिया है, और वो सारा का सारा पेमेंट रूपी रूबल में हुआ है। कहीं ना कहीं कोई भी व्यवस्था के अंदर धीरे धीरे चेंज आता है, वो शिफ्ट अपने आप आता चला जाता है। जहां तक अजय जी ने बात उठाई, ये सही बात है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं उन पे निर्णय होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन में उनमें समय लगता है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं, जो उन्होंने ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट की बात कही, तो जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में बोला था रिपीट कर देता हूं कि 2003 में हम चाइना से $1 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में थे, अब जब हम आए 2014 में तो 118 या 120 हम उस समय 38 या 39 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में आ गए और उस चीज की वजह से आज हम 114 या 115 बिलियन डॉलर के ट्रेड डेफिसिट में है। तो सारा का सारा चाइना की वजह से, और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि हमारी तत्कालीन सरकार की नीतियां ऐसी थी कि आप मोबाइल हैंडसेट इंपोर्ट करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी कम है और मोबाइल के पार्ट्स इंपोर्ट करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी ज्यादा है। इस वजह से हम सेकेंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे मोबाइल हैंडसेट के, पर प्रोड्यूसर ऑलमोस्ट निल थे। अब हम सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर भी हुए हैं। अभी आप देखिए कि जो ईवी बैटरीज होती हैं उनका, उनके ऊपर 95% चाइना का कंट्रोल है और टोटल इंडस्ट्री पे 85%। जो सोलर पैनल्स होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में 95% चाइना का कंट्रोल है और ओवरऑल बिजनेस पे 85%। मगर भारत की कोई कंपनी जो सोलर में इनलिस्ट होने जाती है यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसा बवाल होता है यहां पर कि वो इनलिस्ट ही ना होने पाए, फिर 2-3 साल बाद फिर जाती है तो फिर इनलिस्ट नहीं होने पाए। अगर 4 साल पहले इनलिस्ट हो गई होती तो 15-20% कोई ना कोई शेयर तो हमारे पास होता। जैसे डिफेंस के एक्सपोर्ट में हम नॉन एग्जिस्टेंट थे, आज हमारा छोटा सा शेयर है, अभी हम शायद बमुश्किल 2-3% के आसपास ग्लोबल शेयर में पहुंचे, अमेरिका 40% पे, मगर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे यह लगता है कि इस प्रकार की जो समिट है, जैसा अजय उपाध्याय जी ने कहा, अगर चाइना सबसे इंपॉर्टेंट है तो भारत की उपस्थिति उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत और रूस अगर किसी भी मुद्दे पे एक होंगे तो निश्चित रूप से ब्रिक्स के अंदर एक बैलेंसिंग फैक्ट उभर कर सामने आता है। ईरान के साथ के इन्वॉल्वमेंट की बात अभी सामने आई, अब समझिए यदि ईरान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की द्विपक्षीय वार्ता हो रही है यहां पर ईरान के प्रमुख के साथ, तो यह निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि ईरान का भी विश्वास भारत के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण से है। और इसके बावजूद मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जबकि हम क्वाड के सदस्य हैं, जबकि अमेरिका हमको अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर कहता है, तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे व्यवस्था में, पूरे प्रकरण में हम देखें तो भारत एक बहुत सकारात्मक और प्रभावी भूमिका निभाता हुआ दिख रहा है और ये ब्रिक्स की समिट उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। ऐसी मैच
1: एकदम छोटा सा, अजय जी आप हाथ उठा रहे हैं इसलिए छोटा सा मुझे अचल जी के पास
3: जी, एकदम छोटा सा जी, एकदम छोटा सा जी जी जी जी जी, जी। भाई साहब ने जो कही त्रिवेदी जी ने, वह कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इस पर मुझे लगता है अपनी छोटी राजनीति, क्षुद्र राजनीति, देश की राजनीति से उसे ऊपर उठ करके इसको हम सबको देखना है और हम लोग देखते भी हैं, सभी पार्टियां देखती हैं, मैं यही मान के चलता हूं। हमारे समय में बहुत सारे ब्रिक्स को लेकर के मीटिंग हुई और जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक्स की स्थापना हुई, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमने बनाने का काम उस समय की जो सरकारें थी, वर्तमान सरकार मोदी जी के समय भी बहुत सारे एक्सपेंशन इस ब्रिक्स में हुए हैं। हाँ, चाइना एक फैक्टर है और चाइना फैक्टर्स को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, हम दोनों एक मंच पर बैठ रहे हैं यहां, चलिए एक मंच प्रोवाइड किया है या एससीओ में भी हम बैठे, पर आज भी सीमा पर जो असहमतियां हैं वो असहमतियां स्पष्ट तौर पे है। व्यापार डिफिसिट की जो बात कही गई है, 12 साल में हम तोहमत पिछली सरकारों को लगाएं, इससे काम नहीं चलेगा, 12 साल में हमें उस पर ध्यान रखना है। क्वाड की बात आई है, क्वाड में हमें एक बड़ी सफलता थी जब हम उस समय साथ में थे, पर आज जिस तरह से इंडो पैसिफिक से इंडो हटा करके और अमेरिका भी चाइना और पाकिस्तान को बैलेंस करने में लग गया, तो उससे हमें कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई हैं। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच की अपने अपने परम्यूटेशन कम्बिनेशन और समय और परिस्थितियों के हिसाब से भी चलते हैं, इसको हमें ध्यान रखना है और भारत हमेशा मजबूत रहे, हमारा यही उद्देश्य है। राष्ट्रीय हित हमें कैसे इन विषम परिस्थितियों में हासिल करना है, यही देश का उद्देश्य है और यही सबका उद्देश्य।
1: ठीक है अचल जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि आपके अनुभवी आंखों से आपने ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते बहुत दिनों से देखे, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं जब 2026 में हम फिर से चौथी बार होस्ट कर रहे हैं, 20 साल हो गया है ब्रिक्स को अब गठन से लेकर अब तक, तो उसका 20th सेलिब्रेशन भी है एक तरह से, भारत क्या दे सकता है? और एक देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के कहते हैं दिस इज अ फोरम अगेंस्ट द डॉलर, ये डॉलर के खिलाफ एक फोरम है और उनकी हमेशा ही भौहें खड़ी हो जाती हैं, तन जाती हैं जब जब ब्रिक्स का आयोजन होता है कहीं पर समिट का, आप इसको कैसे देख रहे हैं?
4: देखिए अंजना जी नमस्कार, आपको पहले भी नमस्कार। देखिए इसे थोड़ा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखिए, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो ग्लोबल ऑर्डर हमने वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश किया था, वो यूनाइटेड नेशंस हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अगर पूरी तरह से ठहरें गई तो चरमरा जरूर गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आता है तो हम एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। इस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन में मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, मिनी लेटरल

0: ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब का एक अपना अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। या तो भारत चुप करके कोने में बैठे और मूक दर्शक की तरह देखता रहे, या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन के ग्लोबल एजेंडा को शेप
1: सेट
0: करने
1: कर
0: में
1: सकते
0: अपनी कंट्रीब्यूशन दे। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि बहुत साल निकल गए कि व्हेन वी वर यू नो फॉलोइंग द ग्लोबल रूल्स, नाउ आज हमें ग्लोबल रूल्स लिखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो
1: हाँ
0: ब्रिक्स मेरे हिसाब से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ठीक है कि ब्रिक्स की अगर आप कंपोजिशन पर नजर मारेंगी तो इसका एक आपको सामने दिखाई देगा कि इसमें ग्लोबल नॉर्थ की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो विली नीली ये ग्लोबल साउथ की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और इसका जो प्रायोरिटीज रही, इसकी प्रायोरिटीज ये हैं कि जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस हैं उसमें ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि उनका रोल ग्लोबल एरिना पे अब वो नहीं है जो आज से 80 साल पहले था। तो इस दिशा में भारत को जो पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ रही है यूएन रिफॉर्म्स को लेकर, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की रिफॉर्म्स को लेके, अब सवाल ये है, इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है,
1: जी
0: हम वेट नहीं कर सकते कि कब रिफॉर्म्स होंगी। उसके चलते हुए ब्रिक्स ने जो रिफॉर्म्स करी है या ब्रिक्स ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, मुझे लगता है दो इनिशिएटिव्स की बात करूंगा।
1: जी
0: एक तो न्यू डेवलपमेंट बैंक,
1: हाँ
0: न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अब वो ग्लोबल साउथ की जरूरत को नजर में रख के फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता है।
1: जी
0: खुद भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो लोकल करेंसी में फाइनेंस हो रहे हैं, वो हो रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की थ्रू। बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट उठा रही हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा हमारा है ये डॉलर पे डिपेंडेंस को कम करना। ये डी
1: बिल्कुल
0: डॉलराइजेशन कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, हमारे जो ब्रिक्स मेंबर्स में से इंडिया भी नहीं करता, कोई भी नहीं
1: कोई
0: करता,
1: नहीं
0: ये
1: करता।
0: डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं कि उसे डी डॉलराइजेशन करते हैं।
1: हाँ।
0: हकीकत ये है कि हम डॉलर पे डिपेंडेंस कम कर रहे हैं, हम अपनी लोकल करेंसीज में जो है ट्रेड को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसके बहुत से फायदे हैं, एक तो बिना बात की जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो कम होती है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको संभाल के रखने की बहुत जरूरत पड़ रही है वो होते हैं। तो अब ये सब जो ब्रिक्स की डेलिब्रेशंस है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है, अगर आप टेंजिबल की भी बात करें तो जैसे मैंने बोला भारत में इस समय बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लोकल करेंसी में उन्हें फाइनेंस किया जा रहा है। हालांकि लोकल करेंसी में ट्रेड करने के भी फ्लिप साइड्स हैं, जैसे हमें आपने बताया कि रशिया के साथ हमारा 91% रुपी रूबल में हो रहा है, तो उसकी फ्लिप साइड ये हो रही है कि रशिया के बहुत सारा रुपया जो है भारत में इकट्ठा हो रहा है और उसे समझ में नहीं आ रहा इस इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो वो एक अलग समस्या है। बट जो ट्रेंड्स की बात करें, जो हमारा अल्टीमेट एम ये है कि जब तक नया वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आता, जो ग्लोबल साउथ की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं करने वाला वर्ल्ड ऑर्डर नहीं आता, तो हमें एक कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क करना है जिसके चलते हुए हम ग्लोबल एजेंडा भी इन्फ्लुएंस कर सके और जो इतना बड़ा ग्लोबल साउथ है उसके जो प्रायोरिटीज हैं उसको भी एड्रेस कर सके। तो उस हिसाब से आप ब्रिक्स की को असेस करिए। जो भी बात करते हैं कि टेंजिबल रिजल्ट्स बताइए, क्वांटिफायबल रिजल्ट्स बताइए, तो इन डेलिब्रेशन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन की जो डेलिब्रेशन होती है उसके आउटकम्स जो होते हैं ओवरनाइट नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे आते हैं। 20 साल में आप देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, आपने लोकल करेंसीज में ट्रेड शुरू किया, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आती ही नहीं अखबारों में, जिसका चर्चा ही नहीं होता, तो वो भी चल रहे हैं, वो ट्रेंड सेटिंग हो रही है।
1: जी
0: तो एट एंड ऑफ द डे आपको इस तरह से असेस करना पड़ेगा, और मुझे लगता है
1: बिल्कुल
0: एक
1: बिल्कुल
0: असेस।
1: बिल्कुल प्रसून जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। अचल जी बार बार कह रहे थे कि ये ट्रांजिशन फेज है और हम लोग एक बहुत बड़ा ब्रिक्स पर अपना कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर जो वक्ता है वो इसको एक ट्रांजिशन फेज मान रहे हैं। ये ट्रांजिशन फेज है या इसको नया नॉर्म मान लिया जाए जहां पर मल्टीपोलैरिटी और क्रॉस बॉर्डर नेशनल करेंसी पेमेंट सिस्टम्स ही डिसाइड करेंगे कि देशों में व्यापार कैसे होगा और किसकी चलेगी, मतलब मल्टीपोलैरिटी है जिसमें किसी एक का दबदबा या धौंस नहीं रहेगा।
0: जी अंजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ नंबर्स देना चाहूंगा। जैसे हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, इंट्रा ब्रिक्स में बिजनेस 13 गुना बढ़ा है। 42 बिलियन वर्थ के फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, जिसमें तकरीबन 139 प्रोजेक्ट्स हैं। भारत का

लखनऊ मेट्रो फेस उससे फंड हुआ है। भारत को जो जो क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत को क्या फायदा हुआ, उसी का जो फ्रिंज बेनिफिट हुआ है, जो AIIB बैंक है उसने हमारा ये जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है वो भी हमें फंड का सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स भी हैं, पर नंबर्स के इम्पैक्ट्स ओवरऑल अगर आप देखिए, 2400 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोजेक्ट्स को

0: वो भी हमें फंड का सपोर्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स भी हैं, पर नंबर्स के इम्पैक्ट्स ओवरऑल अगर आप देखिए, 2400 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जीज के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया है लोकल करेंसी में ब्रिक्स बैंक के थ्रू। 14.7 मिलियन टन्स ऑफ CO2 को रिड्यूस किया गया है ब्रिक्स नेशंस में थ्रू फाइनेंसिंग। 1400 किलोमीटर ऑफ वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, हर घर जल। तो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, नंबर्स अवेलेबल है, छोटे हैं पर ग्रो कर रहे हैं। 13 गुना इंटर ब्रिक्स में बिजनेस बढ़ा है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट, और आपने जो कहा कि इट्स अ न्यू नॉर्म जो सबवर्टिंग द पैराडाइम आफ्टर दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक बहुत बड़ी और बुलंद आवाज ब्रिक्स बन के आ रहा है। और ग्राउंड पे जो हमें सपोर्ट चाहिए, चाहे वो हमारी ग्रोथ फाइनेंसिंग हो, चाहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हो, इंक्लूडिंग रेयर अर्थ, ब्रिक्स नेशंस तकरीबन 72% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ को कंट्रोल करते हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू नो एवरी टेक इकोसिस्टम, चाहे वो चिप कह लीजिए, चाहे वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए। तो ओवरऑल उस पूरे ग्रुप का नैरेटिव अगर भारत सेट करता है, तो
1: बिल्कुल
0: ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ भारतीय एज अ भारतीय, पूरे विश्व में भी। क्योंकि भारत को एक ऐसा देश में, जैसे आपने देखा हम क्वाड में भी हैं, दूसरी जगह भी है, क्योंकि
1: जी सर,
0: एक कहीं ना कहीं ट्रस्ट है कि भारत जब काम करता है तो वो मतलब सिर्फ प्रॉफिट बेस्ड नहीं होता है, वो ग्रोथ बेस्ड और कॉमन सिटीजन्स की बेनिफिट के लिए होता है।
1: सुधांशु जी, अब वापस कैमरा आपकी तरफ, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स और जो अजय जी का भी कहना है कि भारत इस मोमेंट को सीज कैसे कर सकता है, ब्रिक्स में भारत का मजबूत जोड़ लिख भी रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो भारत को एक एज दे सकती हैं, उन पे आगे काम करने की जरूरत है, इस पर आपकी राय। भारत को एक बैलेंसिंग एक्ट भी करना है, तो
2: देखिए जैसा कि
1: ब्रिक्स एकदम अमेरिका के खिलाफ है, इस बात से सारे ब्रिक्स देश बचते हैं, हम भी बचते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेन 5 परमानेंट मेंबर्स, उसके बाद जो बाकी मेंबर्स बने उसमें इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, ये तमाम देश हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो इन्वाइटेड भी मेंबर्स हैं, सऊदी अरब है, UAE है, अब यहां तो 35-35-40% इंडियन आबादी रहती है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा इंडियन जो पॉपुलेशन है वो मौजूद है, तो हमको बैलेंसिंग एक्ट भी करना है। ऐसे में ब्रिक्स में भारत क्या भूमिका निभा सकता है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल सर, AI के रिसर्चर जो है जेकब, उन्होंने जो एंथ्रोपिक में काम करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा खतरा का अंदेशा दिया है। वो ये कह रहे हैं कि AI आने वाले दिनों में ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। AI का भी एक चैलेंज बहुत बड़ा है दुनिया के सामने, भारत के सामने, दोनों पर आपका जवाब।
2: बिल्कुल, जो आपने कहा अगर हम देखें, ये कहना उचित नहीं रहेगा बहुत तकनीकी दृष्टि से कि कोई एंटी अमेरिकन ब्लॉक है। हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थापित वैश्विक व्यवस्था थी, यानी ग्लोबल ऑर्डर था, अब वो नया स्वरूप धारण कर रहा है, तो उसमें एक नए और प्रभावशाली मंच के रूप में ब्रिक्स दिखाई पड़ रहा है। और उस मंच में भारत किस प्रकार प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है, जैसे आप देखिए कि जिन मामलों पर ब्रिक्स में सहमति हुई पिछली बार में, उसमें आतंकवाद का विषय भी था। बाकी तो विषय मैंने बताया कि चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, चाहे इन्वायरमेंटल का इशू हो, चाहे टेक्नोलॉजी का इशू हो, या ट्रेडिशनल मेडिसिन का इशू हो, वो विषय तो अपनी जगह है। परंतु यदि हम आतंकवाद को लेकर एक निश्चित स्तर तक की भी साझा स्थिति बनाने में सफल होते हैं, तो कहीं ना कहीं यह भारत की जबरदस्त प्रभावकता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से माना जाता है कि इसमें चाइना का इन्फ्लुएंस अधिक है। और अगर देखा जाए तो आतंकवाद से पीड़ित देश हमारा, हम सबसे ज्यादा पाकिस्तान से पीड़ित हैं, और पाकिस्तान को सपोर्ट चाइना का है। तो अगर हम ब्रिक्स के अंदर आतंकवाद को लेकर किसी भी प्रकार की सहमति बनाते हैं और प्रस्ताव का हिस्सा बनाने में सफल होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि यह कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए, इन व्यक्तिगत रूप से, और पूरे विश्व के लिए एक बहुत सकारात्मक दृष्टि दिखाई पड़ती है। अब यहां पर एक और बात आप समझिए, जो आपने AI की बात कही, जैसे आपने कहा एंथ्रोपिक के एक रिसर्चर बाहर आए और उसने कहा कि ये पूरी ह्यूमन रेस को खत्म करने की बात है, तो कहीं एलन मैक्स कहते हैं कि पता नहीं कितने 1 बिलियन

0: ह्यूमनाइड्स कुछ वर्षों में बनकर तैयार हो जाएंगे रॉबर्ट्स और वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगेंगे। तो मानी हुई बात है, जब पूरी दुनिया के सामने आज चुनौती है तो वो चुनौती को कोई देश अकेले नहीं वहन कर सकता। कोविड अगर आया, अब उसमें गलती चीन की रही हो या किसी और की रही हो या बाई चांस लापरवाही हुई हो, मगर समस्या तो पूरे विश्व को झेलनी पड़ी। तो एआई में भी यह चुनौती आने वाली है। तो जब तक कोई साझा चुनौती नहीं होगी, अब इसमें भारत की भूमिका की बात करते हैं। अगर आप देखें तो आज एआई जिस ढंग से आगे बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ यह भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि एक नैतिक मानदंड भी होना चाहिए, एक इथिक्स भी होना चाहिए। और इथिक्स की बात भारत सदैव से हर विषय पे करता आ रहा है, पिछले 70-80 साल से नहीं, यह हमारा सिविलाइजेशनल नैरेटिव है। मतलब मैं वहां से कह दूं कि वियना कन्वेंशन तो 1900 के आसपास आया, मगर युद्ध में नॉन कॉम्बेटेंट के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा, ये भारत ने हजारों साल से परंपरा अपनाई। हमारे यहाँ कोई लूटपाट नहीं होती थी, मारकाट नहीं होती थी, युद्ध बंदियों के सर में किसी राजा जीतने वाले का सरवर नहीं काटता था। तो मैं कह रहा हूं जब इथिक्स की बात आएगी तो मानी हुई बात है उसका स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क भारत के पास है, और ऐसा ही देश उसको लीड कर पाएगा जिसमें दुनिया के अधिकांश देशों के साथ एक विश्व मित्र के रूप में वार्तालाप करने की क्षमता हो, जो मोदी जी के कार्यकाल में हमने डेवलप की है। कि हमसे बात करने में, अभी देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई थी तो हम ही वो एक देश थे जो कि यूक्रेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों से बात करने में सक्षम थे। आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले करीब फरवरी के महीने में फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी और उन्होंने कहा था कि अगर भारत के इजराइल से स्ट्रेटजिक संबंध है, हम इस आवश्यकता को समझते हैं और हमें लगता है कि ये बेहतर भूमिका निभा सकता है क्योंकि फिलिस्तीन के प्रति भी भारत के अच्छे संबंध हैं और इजराइल से भी हैं, तो एक ऐसे देश के रूप में जिसकी बात दोनों लोग सुनते हो, शायद भारत बेहतर भूमिका निभा सकता हो। तो मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि अगर ब्रिक्स का यह फोरम जिसमें हम मनुष्य के सामने आने वाली चुनौतियों को गंभीरता से विचका ये फोरम जिसमें हम मनुष्य के सामने आने वाली चुनौतियों को गंभीरता से विचार करें और एक साझा रणनीति बनाएं, और उस साझा रणनीति में इस फोरम के बाहर के कंट्रीज के साथ भी समन्वय स्थापित करें, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: चलिए ठीक है अजय जी, अब आपके पास फोकस ला रहे हैं क्योंकि आज देखिए भारत और चाइना का रिलेशनशिप इस पूरे ब्रिक्स में हमेशा स्क्रूटिनी में रहता है, तो दूसरी तरफ इस ब्रिक्स में तो इस बार वेस्ट एशिया के इस वॉर के बीच, युद्ध के बीच ईरान, मसूद पेजेशकियान खुद आ रहे हैं, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, वही सऊदी अरब यूएई जिस पर ईरान ने हमला भी किया, ऐसे देश भी हैं, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट पर सबकी नजर रहेगी। और इस पर अचल जी और प्रसून जी मैं आपके पास भी आऊंगी कि क्या जॉइंट स्टेटमेंट की उम्मीद इस बार की जा सकती है। अब तमाम ऐसे देश हैं जो ये मानते हैं कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इसराइल को अटैक करता, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सबके बीच सऊदी अरब, यूएई, ईरान भी वहां पर है, तो मतलब ऐसे देश जो आई टू आई देखने को तैयार नहीं है, ऐसे में जॉइंट स्टेटमेंट एक बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे लगता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर जो सबसे बड़ी बात हम कह सके वो इस मंच से हमें कहनी चाहिए।
2: बहुत अच्छा है आपका ये एनालिसिस और वाकई होना यही चाहिए। मंच पर सहयोग तो जरूर दिख रहा है और मंच पर बैठने में लगेगा नेताओं की एकता, पर सच पूछिए तो रणनीतिक अविश्वास का भाव इस बार इस मंच के माध्यम से भी कहीं ना कहीं, चूंकि परिस्थितियां ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है कि वो भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। और भारत को वाकई बड़ी भूमिका निभानी होगी क्योंकि भारत के यहां जो है, जिस तरह से हम यहां समिट करा रहे हैं, सारे लीडर्स यहां आ रहे हैं, तो उनसे ये आशा की जाएगी कि वेस्ट एशिया में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जो है उसको कहीं ना कहीं पीछे रख करके और जो ब्रिक्स के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर ही डिस्कशन ज्यादा हो, क्योंकि ईरान और सऊदी और यूएई का जो है आपसी तालमेल बनना आसान नहीं है। पर इस मंच के माध्यम से यदि कोई यूनिफाइड कोई घोषणा हो, डिक्लेरेशन हो, तो वो हितकर होगा देश के लिए। जहां तक बात भारत की भूमिका की है, भारत की भूमिका कहां किसी को उससे दिक्कत है। अब विदेश नीति की प्राथमिकताएं अपने अपने हिसाब से बदल जाए यदि किसी सरकार की, तो उस पर हम प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन विदेश नीति की जो पहली प्राथमिकता है राष्ट्रीय हित है और सभी को उसका परिपालन करना होता है। इजराइल की बात किया, फिलीपींस की बात किया हमारे साथी प्रवक्ता ने, सच बात है कि हमको बैलेंस का आशा विश्व हमसे करता रहा है, पर कई बार हम उस बैलेंस को, उस संतुलन को, हम उस समय को खो देते हैं। यदि उस समय का हम ख्याल रखें तो हमें तो लीडरशिप की भूमिका में, हमने आज थोड़े कोरियन क्राइसिस में रहे, नॉन अलाइनमेंट में रहे, पोस्ट शीत युद्ध के उपरांत जो वर्ल्ड बना, उस वर्ल्ड में रहे। अब तो मल्टीपोलरिटी का दौर है, बहुध्रुवीय विश्व है। इस विश्व में भारत की ताकत अपने आप स्वतः आगे आएगी, क्योंकि हम जनसंख्या में बड़े हैं, इकोनॉमी में बड़े हैं, हमारी पहचान है, टेक्नोलॉजी में बड़े हैं, तो इसका लाभ तो नेचुरल है कि हम ले सकते हैं, हमारी ताकत है। पर इस ताकत का हम उपयोग कैसा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और सरकारों पर रियल बात है डिपेंड करती है थोड़ी बहुत। अब इजराइल आप नहीं गए होते तो आज ईरान के साथ हमारे संबंध और बेहतर होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाना सही था गलत था, उस पर तो अलग विवेचना होगी। यहां ये समिट जो हो रहा है, समिट चूंकि इंटरनेशनल समिट, हम एससीओ में गए, एससीओ में पाकिस्तान भी था, हमने देखा कि मंच का जो है आतंकवाद को लेकर के जो रणनीति बननी चाहिए थी पिछले 2-3 मीटिंग से वो नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश और चाइना उसमें हडल क्रिएट करता है। चाइना यहां भी है, चाइना हमारा प्रतिस्पर्धी भी है, और हम जो है अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हमें कहीं ना कहीं सहयोग की भी मजबूरियां हैं। उन मजबूरियों को के रास्ते को हमें तलाशना होगा। चाइना का जिस तरह का सीमा पर आतंकवादी गतिविधियां, मैंने जिस तरह से पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया उसमें सीज फायर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अभी भी जिस तरह से अविश्वास पैदा है, तो उसमें हम कैसे थोड़ी बहुत सहूलियत ले सकते हैं। फिर व्यापार घाटा मैडम बहुत बड़ा है, इसको हमें देखना
1: होगा, फोकस करना होगा। बिल्कुल सुधांशु जी,
2: हम जो है
1: कंक्लूडिंग रिमार्क आप इसी पे दे दीजिए, फिर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी अचल जी और प्रसून जी से।
2: नहीं कर पा रहे,
1: ट्रेड डेफिसिट का वो मुद्दा बार बार छेड़ रहे हैं, और जो हमको अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बैलेंस करने हैं। एक चीज मैं इसमें जोड़ रही हूँ, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि एरा ऑफ वॉर से एंड ऑफ वॉर की तरफ बढ़ना होगा, तो एक एक दबाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी हो सकता है कि यहां से एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश हो रही है। सुधांशु जी,
0: देखिए इस पूरे विषय को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, जैसे अभी अजय उपाध्याय जी ने कहा, ठीक है उसी ढंग से देखना चाहिए। मगर क्या बताएं, पुनः बीच में राजनीति का विषय आ ही जाता है। चिदंबरम साहब आज एक अनावश्यक अवांछित आलोचनात्मक बयान दे चुके हैं इस विषय के ऊपर। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा, पूर्व में भारत में जिसमें अजय उपाध्याय जी ने उल्लेख किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के तो प्रणेता हम ही थे सबसे।
1: तो उम्मीदें बहुत सारी हैं, अब देखते हैं ब्रिक्स के समिट के जरिए क्या कुछ हम कर पाते हैं। वक्त इतना ही देता है जय जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: देखे जन्म पहला पहला कदम।
9: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3। E3 ग्रुप, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: In association with
3: Signature Finest Cardamom Seeds,
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
7: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है।
8: सत्य निकेतन एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जहाँ पे एक बिल्डिंग ढही, लेकिन लाखों ऐसी हैं जहाँ खतरे की घंटी बज रही है।
9: कि करीब 2 या 3 लोग और हो सकते हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हों।
10: अमानवीयता की हद ये है कि जब बिल्डिंग गिरती है, छात्र उसमें फंस जाते हैं, छात्रों की मौत हो जाती है, तो ये मौके से फरार हो जाता है।
11: हरिराम बंसल और उनका परिवार फरार है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ये आत्महत्या से पहले का वीडियो है, ऐसा वीडियो जिस पर किसी भी सरकार को संजीदा हो जाना चाहिए, ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर एक पिता को ये सब क्यों कहना पड़ रहा है। लेकिन पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस वीडियो को अनसुना कर दिया और नतीजा ये निकला कि गुलजार ने खुदकुशी कर ली।
3: एक चीमा भी जुम्मेवार है ये गल का, मेरी मौत का भी जुम्मेवार है, एक पंचायत सरपंच भी मेरी मौत का जुम्मेवार है।
6: की सवाल किया जी उसने?
3: मैं चिट्टे बारे सवाल किया।
6: चिट्टे तो तुम क्यों किया? थोड़े घर कोई चिट्टा पींदा?
3: हाँ जी, मेरा मुंडा पींदा है।
6: अच्छा, तुम पीड़ित होते तो?
3: हाँ जी।
6: थोड़े घर की कि मतलब बर्बादी की उन्हें?
3: मेरे सारी सारा कुछ ही बेचता जी।
6: अच्छा जी, ठीक है।
3: मैं इन्ना बेरोजगार करता ना जी, मंगण तो ही मजबूर हो गया, और सरपंच ही क्यों मजबूर।
6: सरकार तो कहने चिट्टा बंद करता जी, इसने
3: चिट्टा कोई बंद नहीं हुई।
5: आखिर गुलजार की चाहत क्या थी? यही ना कि सरकार नशे के नेटवर्क पर चोट करे, पंजाब के नौजवानों को नशे की गिरफ्त में जाने से रोके। लेकिन सरकार ने क्या किया? आंखें बंद कर अंधी, कान बंद कर बहरी और जुबान बंद कर गूंगी बन गई। यही नहीं, फजीहत से बचने के लिए आनन फानन में गुलजार का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। गुलजार का परिवार अब डंके की चोट पर कह रहा है कि अंतिम संस्कार भी अपनी मर्जी से नहीं होने दिया गया।
7: जी आही अपील करते हैं छोटे अगे भी, प्रशासन अगे भी, जो साढ़े नाल धक्का होया सातों धक्के नाल मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया, मेरे भरा नूं गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करते हैं भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा, असीं ना तां इतना ही भोग पावांगे ना ही फुल चुकावांगे।
5: पहले गुलजार की आत्महत्या और फिर दबाव डालकर अंतिम संस्कार। पंजाब की भगवंत मान सरकार सीधे सीधे कटघरे में खड़ी दिख रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने गुलजार के परिवार से मुलाकात कर भगवंत मान की सरकार से पूछा है कि आखिर उसकी संवेदना इस हद तक कैसे बढ़ गई।
8: मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये इसकी भी किसी को तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछ रहे हैं, उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि मैं सल्फास पीऊं, इतना तंग किया गया। उससे पहले मोहनजीत को शेरों में ऐसे पीटा गया, तो ये लोग जो
9: ड्रग्स का सवाल उठाए तो
8: ड्रग्स का सवाल उठाए तो ये मौजूदा सरकार उसको लाठियों से पुलिस से दबाना चाहती है।
5: संगरूर में गुलजार के घर के दरवाजे पर मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, तो अनुसूचित जाति आयोग भी परिवार से मिला है।
10: परिवार ने मांग रखी है, उनका कहना है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ साथ मंत्री जी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और आयोग परिवार की जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, इस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा।
5: पंजाब में चुनाव होने वाला है और एक दलित की आत्महत्या पर सियासी शोर है, लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि भगवंत मान की सरकार क्या कर रही है? मंत्री चीमा पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या खुद सीएम मान वित्त मंत्री चीमा को बचा रहे हैं? चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: ब्रिक्स समिट का महायोजन भारत में हो रहा है और इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ खबर है कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी आ रहे हैं। ईरान की तरफ से मसूद पिज़िश्कियान आ रहे हैं और उम्मीदें बहुत हैं कि तमाम बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बीच ये समिट काफी कुछ हासिल कर सकता है। इसी पर आप देख रहे थे चर्चा, ब्रिक्स में भारत का मजबूत जोड़। अब देखिए साथ
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद दंसारी। स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ब्रिक्स के मंच पर दिखेगी हिंदुस्तान की धमक। नई दिल्ली में चीन और रूस के राष्ट्रपति समेत महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुबह बाबर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई राजधानी। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के राजनीतिक संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा, सीएम मान का हो इस्तीफा तुरंत। कांग्रेस ने भी की घेराबंदी। IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की बड़ी मुश्किल। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। शो की शुरुआत आइए करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के साथ, जहां दुनिया भर के दिग्गज देशों की अगुवाई के लिए हमारा देश हिंदुस्तान तैयार है। रूस और चीन के राष्ट्रपति ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण डील पर भी मोहर लगने की संभावना है।

0: दिल्ली का भारत मंडपम तैयार है और मंच सज चुका है 21वीं सदी के सबसे बड़े कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन का। 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया देखेगी ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज। दुनिया में युद्ध संकट के बीच हो रहे इस ब्रिक्स में 11 सितंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की सरजमी पर कदम रखेंगे, तो वहीं इसके अगले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है। अगर ये बैठक होती है तो 2019 के बाद ये मोदी और जिनपिंग की पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। जिनपिंग ने आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद गलवान में भारतीय और चीन की सेना के बीच हुई झड़प ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 24 अगस्त को चीन गए थे। वहां 25 अगस्त को उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर बातचीत की थी। भारत और चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि व्यापार और आर्थिक रिश्ते भी बातचीत का हिस्सा है। भारत चीन के साथ अपने बड़े व्यापार घाटे को कम करना चाहता है। ये महाजुटान ऐसे वक्त में हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियां और टैरिफ वॉर वैश्विक व्यापार को झकझोर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के सैकड़ों प्रतिनिधि ब्रिक्स के जरिए दुनिया की नई राह तय करने की कोशिश करने वाले हैं। मौजूदा ब्रिक्स समिट पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच हो रही है, जिसमें ईरान के अलावा सऊदी अरब और यूएई शामिल हो रहे हैं। इस पूरे महासम्मेलन के केंद्र में है भारत की कूटनीतिक परीक्षा। वॉशिंगटन और पश्चिमी देशों की निगाहें नई दिल्ली पर टिकी हैं। अमेरिका को डर है कि कहीं ये मंच पूरी तरह एंटी वेस्ट न बन जाए। भारत के सामने चुनौती है कि वो क्वाड के जरिए अमेरिका का करीबी दोस्त भी बना रहे और रूस चीन के साथ ब्रिक्स के मंच से विकासशील देशों की अगुवाई भी करे। आज तक ब्यूरो।
1: शनिवार से शुरू होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आज तक का राउंड टेबल भी चल रहा है। इस महामंच पर डिप्लोमेसी के विभिन्न दिग्गज हैं। आज शुरुआती सेशन में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत के लिए रूस और चीन दोनों जरूरी हैं।
2: चाइना के साथ भी काम करना है, रशिया के साथ भी काम करना है, ये समझना आवश्यक है हमको कि देखिए इस समय जो हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का जो फॉसिल फ्यूल है, जो तेल है, उसका एक तिहाई करीब यूनाइटेड स्टेट्स जो इंपोर्ट करता था, एक ज़माने में इंपोर्ट करता था, आज रशिया और सऊदी अरेबिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है और एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया है। और वेनेजुएला को कंट्रोल कर लिया है उसने, पूरा तेल की सप्लाई वेनेजुएला पे, और उसका जो लक्ष्य था कि ईरान की भी तेल सप्लाई को कंट्रोल करे, तो अगर वो कंट्रोल करता है तो एक तिहाई, दुनिया के एक तिहाई फॉसिल फ्यूल से ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ आप जब देखते हैं तो चाइना ने क्लीन टेक्नोलॉजी को पूरा मोनोपोलाइज करा है और वो करीब दुनिया की जो बैटरीज हैं 95% क्लीन बैटरीज चाइना प्रोड्यूस करता है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स करीब 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला अमेरिकन मैन्युफैक्चरर पर अभी के समय 85% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूनाइटेड चाइना प्रोड्यूस करता है। क्रिटिकल मिनरल्स में, क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में सारी टेक्नोलॉजी की मोनोपोली समय चाइना की है। और सोलर में फिर करीब 80% उसका कंट्रोल है और विंड में करीब 77% उसका कंट्रोल है। तो आप जो देख रहे हैं सारी क्लीन टेक्नोलॉजीज पर चाइना का कंट्रोल है और फॉसिल फ्यूल पर यूनाइटेड स्टेट्स का एक तिहाई कंट्रोल है। तो अगर इंडिया को आगे चल के विकसित भारत बनना है तो इंडिया को इस समय फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि अगर फॉसिल फ्यूल जो हम इंपोर्ट करते हैं 180 बिलियन का, जब युद्ध होता है वेस्ट एशिया में तो वो बढ़ जाता है और उससे रुपी पर प्रेशर आता है और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। पर आगे चल के हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज में आगे बढ़ना है, इसलिए चाइना के साथ भी काम करना बहुत आवश्यक है।
1: और अब खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां आकाश आनंद को लेकर मायावती की नाराजगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मायावती ने साफ कर दिया कि आकाश के लिए बीएसपी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं।
3: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट ने बीएसपी में नई खलबली मचा दी है। पहले जरा इस पोस्ट की चंद लाइनों को पढ़िए। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए हुए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। आकाश आनंद के ससुर और बीएसपी नेता अशोक सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर सियासत से ही संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। खबरों की माने तो आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ इस्तीफा दें। अशोक सिद्धार्थ पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह करने का आरोप था। इस पर अशोक सिद्धार्थ का कहना है कि आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनसे मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के दो दशक आपकी छत्र छाया और देख रेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ के संन्यास को काफी नहीं माना है। एक्स पर मायावती ने लिखा है, पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी से भी आज से पूरी तरह से फ्री यानी आजाद कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो स्वतंत्र हैं। अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर पर मुक्त कर दिया गया है। मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीएसपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
4: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान है करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
3: उधर अब आकाश को समाजवादी पार्टी से ऑफर भी आने लगे हैं।
5: आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा।
3: बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प है कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: और अब खबर पंजाब की, जहां गुलजार सिंह की मौत पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव से पहले पूरे मामले में दलित पॉलिटिक्स काफी तेज हो गई है।
6: पंजाब में नशे से शुरू हुई सियासत अब दलित पॉलिटिक्स पर आ गई है। गुलजार सिंह के परिवार ने एक बार फिर प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने जबरन गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार कराया।
7: आही अपील करते हैं छोटे अगे भी ते प्रशासन अगे भी जो जो साढ़े नाल धक्का होया ते ते साढ़े सातों धक्के नाल मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया। मेरे भरा नूं गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करते हैं भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असीं ना तो ना ही
6: पहले गुलजार की आत्महत्या और फिर दबाव डालकर अंतिम संस्कार। पंजाब की भगवंत मान सरकार सीधे सीधे कटघरे में खड़ी दिख रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने गुलजार के परिवार से मुलाकात कर भगवंत मान की सरकार से पूछा है कि आखिर उसकी संवेदना इस हद तक कैसे मर गई।
8: सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछ रहे, उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि मैं सल्फास पीऊं। इतना तंग किया गया, उससे पहले मोहनजीत को शेरों में ऐसे पीटा गया। तो ये लोग जो
9: ड्रग्स का सवाल उठाए तो
8: ड्रग्स का सवाल उठाए तो ये मौजूदा सरकार उसको लाठियों से पुलिस से दबाना चाहती है।
6: संगरूर में गुलजार के घर के दरवाजे पर मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की।
10: गुलजार सिंह मरा है और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है,
9: राइन डिक्लेरेशन पे आधा पर्चा किया गया, एफएम पे भी पर्चा होना चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए और उसका इस्तीफा होना चाहिए।
10: जो संगरूर होम डिस्ट्रिक्ट है, चीफ मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसको ये बोला गया गुलजार सिंह को कि आपको सबक सिखाएंगे। उसकी मदर, उसकी वाइफ ये बात को बार बार बयान कर रही थी।
0: अनुसूचित आयोग ने भी परिवार से मुलाकात की और पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए।
11: मंत्री जी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और आयोग परिवार की जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, इस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा।
0: पंजाब में चुनाव होने वाला है और एक दलित की आत्महत्या पर सियासी शोर है। ऐसे में मान सरकार मामले में एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल चीमा को क्लीन चिट दे रही है, जबकि विपक्ष हरपाल चीमा के खिलाफ एक्शन पर अड़ा हुआ है। कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।
1: IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, राबड़ी समेत 9 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने 7 को बरी कर दिया। इस मामले में ईडी 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। लालू परिवार ने निचली अदालत के अक्टूबर 2025 के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय किए गए थे। और अब खबर बाढ़ की, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा दी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस गया, लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए।
0: शरीर पर वर्दी नहीं है, इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं, जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान है।
12: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
0: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
13: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5,000 से 6,000, 6,000 से 8,000 की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
0: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गांव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गांव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है।
14: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उपनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गाँव जो है वो डूब चुका है।
0: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
15: जो पहले सरासन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
0: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
15: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है। कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
0: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
1: और अब खबर बाजार की, क्या है मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोना चांदी के दाम, देखिए।
0: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद मामूली तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 138 अंक चढ़कर 74,903 और निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ 23,478 पर बंद हुआ। कारोबार के आखिरी हिस्से में HDFC बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बड़े शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। हालांकि कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार रहने और पश्चिम एशिया में तनाव से बाजार पर दबाव बना रहा। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी बाजार के सेंटीमेंट्स कमजोर बने रहे। शेयर बाजार में तेजी के बावजूद रुपये में कमजोरी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 38 पैसे कमजोर होकर 95.46 के स्तर पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमत $102 प्रति बैरल के पार पहुंचने से रुपये पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की बिकवाली और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी का भी रुपये पर असर पड़ा। हालांकि आरबीआई की तरफ से बाजार में हस्तक्षेप से रुपये की गिरावट कुछ सीमित रही, वहीं सर्राफा बाजार में तेजी का रुख रहा। IBJA के मुताबिक पिछले कारोबारी दिन के PM रेट के मुकाबले सोने और चांदी दोनों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई।
1: एप्पल ने 9 सितंबर को अपना सालाना इवेंट में आईफोन 18 सीरीज के दो प्रीमियम फोन लॉन्च कर दिए। इस बार कंपनी ने बेस वेरिएंट नहीं उतारा, ये अब अगले साल आएंगे।

0: एक फोन जिसकी कीमत सुनकर आप रुक जाएंगे, एक लॉन्च जिसमें आईफोन के साथ वॉच और एयरपॉड्स भी नए अवतार में आए हैं, और सबसे बड़ा सरप्राइज एप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन डुओ है। 9 सितंबर को एप्पल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिए हैं। इस लॉन्च की सबसे बड़ी हाईलाइट आईफोन डुओ रहा, जिसकी 7.6 इंच की अंदरूनी स्क्रीन खुलते ही फोन को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देती है। अगर कीमतों की बात करें तो आईफोन 18 प्रो 1,64,900 रुपए, आईफोन 18 प्रो मैक्स 1,79,900 रुपए, आईफोन डुओ 2,99,900 रुपए से शुरू हो रहा है, जबकि डुओ का टॉप मॉडल 4,49,900 रुपए का आएगा। भारत में आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के प्री ऑर्डर 12 सितंबर से और बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी, जबकि फोल्डेबल आईफोन डुओ की बिक्री 23 अक्टूबर से होगी। लेकिन इस लॉन्च के साथ एक और बड़ा बदलाव हुआ है। नया आईफोन आने के बावजूद पुराने मॉडल सस्ते होने की जगह महंगे हो गए हैं। आमतौर पर नया आईफोन लॉन्च होते ही पिछली जनरेशन के मॉडल की कीमत घटाई जाती है, लेकिन इस बार एप्पल ने ये ट्रेंड पलट दिया है। नई प्राइसिंग के मुताबिक आईफोन 17 82,900 से बढ़कर 99,900 रुपए, आईफोन 16 69,900 से बढ़कर 89,900 रुपए, आईफोन एयर 119,900 से बढ़कर 149,900 रुपए का हो गया है। पिछली जनरेशन का आईफोन सस्ते में खरीदने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए ये बड़ा बदलाव है। इसकी एक बड़ी वजह एप्पल की बदली हुई लॉन्च स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। इस बार सितंबर लॉन्च में स्टैंडर्ड आईफोन 18 पेश नहीं किया गया। एप्पल ने प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स पर फोकस किया है, जबकि आईफोन डुओ के जरिए फोल्डेबल सेगमेंट में भी एंट्री की है। इसके साथ कंपोनेंट और खास तौर पर मेमोरी चिप्स की बढ़ती कॉस्ट का दबाव भी बना हुआ है। कुल मिलाकर एप्पल की नई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में प्रीमियम मॉडल्स का वजन बढ़ा है, जबकि पुराने मॉडल्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर खेल के मैदान से, जहां भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने चमत्कार कर दिया। जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी।
2: ये हिंदुस्तान के गर्व की तस्वीर है, जहां महिला जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया है, वो भी एक तो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 19 गोल करके, जहां जवाब में पाकिस्तान एक भी गोल नहीं कर सका। भारत की तरफ से मैच का पहला गोल 7वें मिनट में आया। यह गोल पूजा साहू ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। पहले क्वार्टर में 5 गोल हुए तो दूसरे में भी भारत ने ही गोल दागे। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने अच्छा खेल दिखाया, लेकिन भारत ने इस बार भी 3 गोल मार दिए। आखिरी क्वार्टर में सबसे ज्यादा 6 गोल दागे गए। इस तरह भारत ने मैच में कुल 19 गोल मारे। चीन के मोकी में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये इस महिला जूनियर एशिया कप में किसी भी टीम की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ भारत की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उसकी भिड़ंत साउथ कोरिया या मलेशिया से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 में एक भी मैच नहीं हारी है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया
5: है।
6: हाँ। ला, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तो।
7: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
13: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hewan on the 11th of September.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: पापा, सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: ला बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
15: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints। JK Maxx, JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।

इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ब्रिक्स के मंच पर दिखेगी हिंदुस्तान की धमक। नई दिल्ली में चीन रूस के राष्ट्रपति समेत महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील दिल्ली। ब्रिक्स की बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के राजनीतिक संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार, जोरदार विरोध के बाद बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा, सीएम मान दे इस्तीफा, कांग्रेस ने घेरा। IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग में लालू परिवार की मुसीबत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए, रेल मंत्री रहते टेंडर में छेड़छाड़ और लाभ लेने का मामला।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन में हनुमान मंदिर के विस्थापन का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ चुका है। हनुमान जी की प्रतिमा अपनी जगह से क्यों नहीं हिल रही, इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का इंतजार है। और दूसरी तरफ इस मंदिर को बचाने के लिए एक आंदोलन खड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चिट्ठी लिखकर हनुमान मंदिर को नहीं हटाने की मांग की। तो कैसे उज्जैन में हनुमान मंदिर में भक्ति का नया आंदोलन खड़ा हो गया है, देखिए।
3: आंदोलन बड़ा रूप ले चुका है, अब कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बहे, हम बिल्कुल तैयार हैं।
4: ये सिर्फ प्रशासन की अर्धरविता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वो इस देश की संस्कृति को तहस नहस करना चाहते हैं।
5: अगर हनुमान जी की इच्छा नहीं है कि उनको नहीं हटना है तो इस विषय में विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है, बा की इच्छा नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए।

0: उज्जैन के जिला प्रशासन को शायद ये तस्वीरें याद नहीं होंगी। हम बता देते हैं, ये जन्माष्टमी के दिन की तस्वीरें हैं, जब जिला प्रशासन ने पहले मंदिर का बाहरी आवरण तोड़ा और फिर छैनी हथौड़े से प्रतिमा हटानी शुरू की। लेकिन अब उज्जैन का जिला प्रशासन कह रहा है कि हनुमान जी की मूर्ति को हटाने के लिए किसी भी मानवीय या मशीन की मदद नहीं ली गई। सबसे पहले आप उज्जैन के SDM SN गर्ग का बयान सुनिए।
1: सोशल मीडिया पर यह भ्रामक खबर प्रसारित की जा रही है कि प्रशासन द्वारा श्री खड़े हनुमान जी की प्रतिमा को विस्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अभी तक प्रतिमा को विस्थापित अथवा हटाने संबंधी कोई भी प्रयास किसी भी मशीन अथवा मानवीय युक्तियों से नहीं किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि विशेषज्ञों की वैज्ञानिक तकनीकी राय प्राप्त किए बिना प्रतिमा के विस्थापन हेतु आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। विशेषज्ञों द्वारा प्रतिमा की संरचना का परीक्षण किया जाएगा। सिंहस्थ 2028 के विकास कार्य महत्वपूर्ण है, साथ ही उज्जैन की आस्था और विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रशासन श्रद्धालुओं एवं विशेषज्ञों के साथ संवाद करके सर्वसम्मत समाधान निकालेगा। धन्यवाद।
0: उज्जैन के जिला प्रशासन का दावा है कि हनुमान प्रतिमा को हटाने के लिए किसी भी मशीन या मानवीय युक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया गया। हकीकत यह है कि जिस दिन मंदिर टूटा था उसी दिन छैनी हथौड़ों से प्रतिमा को खोदने का काम भी हुआ था और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। पहले मंदिर तोड़ा गया, फिर प्रतिमा को हटाने की कोशिश हुई। पता चला कि नीचे बहुत बड़ा पत्थर है। पहले नगर निगम की टीम आई, फिर इंदौर से विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई, वो भी विफल रहे। अगले दिन फिर कोशिश हुई, बात नहीं बनी, तो फिर IIT इंदौर के इंजीनियर्स बुलाए गए। अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। खुद मंदिर के पुजारी बता रहे हैं कि प्रतिमा को हटाने के लिए क्या क्या किया गया।
2: अभी उन्होंने सिर्फ 5 फीट खोदा है, दोनों साइड से, राइट हैंड साइड से और पीछे से 5-5 फीट खोदा है। 5-5 फीट खोदने के बाद जब उन्होंने देखा कि दोनों साइड से जो पुराने टाइम के जो एरन होते थे वो इस तरह से लगाए गए हैं कि लॉकिंग जैसा लगता है कि अगर किसी एक एरन को भी हटाया तो मूर्ति जो है उसका जो है वो बेसिकली बैलेंस उसका बिगड़ सकता है, क्योंकि ये पुराने जमाने की लॉकिंग पद्धति थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों को बुलाया, तो उन्होंने भी देखा, उनको भी ऐसा लगा कि भाई मैं इधर से भी देख लेता हूँ कि कहीं ऊपर से ही कोई भगवान को कहीं दिख जाए मुझे कि भगवान किस पत्थर पे टिके हुए हैं, तो अपन उसको आगे लिफ्ट कर सकते हैं। जब उन्होंने भी आके जब मैं जहाँ भगवान के लेफ्ट साइड में 1.5 फीट गड्ढा किया तो उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई ये उतना नीचे कितना नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि IIT और GSITS इंदौर में से विशेषज्ञों को बुलवाया। वो मंगलवार के दिन आए थे, उन्होंने मूर्ति के आसपास पूरा देखा, फिर उन्होंने क्या रिपोर्ट दी मुझे नहीं पता। लेकिन
0: तो सवाल है कि उज्जैन का जिला प्रशासन अब झूठ क्यों बोलने लगा? ये क्यों कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रतिमा को हटाने की कोशिश ही नहीं की? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब उज्जैन में खड़े हनुमान जी के मंदिर को विस्थापित करने की कोशिश का यह मामला एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है।

0: यहाँ न सिर्फ लोगों की भारी भीड़ है बल्कि दिन रात यहाँ भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा हो रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वो यहाँ दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ उज्जैन या आसपास के जिलों के लोग नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं।
1: देखी थी न्यूज पे और बाकी हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया।
2: जी मैंने न्यूज पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम सभी पे मैंने देखा था।
3: क्या लग रहा है आपको, क्या कहना है दर्शन करने के बाद?
2: मैं तो दर्शन करने के बाद ये एक चमत्कारिक मंदिर है जो यहाँ प्रशासन को इतनी कड़ी मेहनत के बाद सभी बुलडोजर हटाने के बाद जो अब प्रशासन काफी समय से विफल रहा तो अब मैं तो मूल निवासी उत्तर प्रदेश

0: वाराणसी का जिला का रहने वाला हूँ, तो मैं यही सरकार से, उज्जैन सरकार से दरखास्त करूंगा कि ये मंदिर यहाँ से ना हटाया जाए।
1: जी मैं भी ये गुजरात से आया हूँ, गुजरात बालासिनोर से। हमने भी देखा सोशल मीडिया पे और न्यूज पे कि 5 दिन से लगातार प्रशासन मूर्ति को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हनुमान जी की आस्था है। हमको लग रहा है कि साक्षात भगवान यहाँ पे विराजमान है, तो उनका स्थान यहीं पे होना चाहिए और अच्छे तरीके से मंदिर बनाए, ऐसी हमारी सबकी एक इच्छा है।
2: अब जब किसी प्रतिमा को हटाने की प्रक्रिया एक आंदोलन बन जाए तो प्रशासन को जन भावनाओं का सम्मान करना ही पड़ेगा। और उज्जैन में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए सिर्फ आम लोग ही नहीं पहुंच रहे। आपको हर्षा रिचारिया याद होंगी, जो प्रयागराज महाकुंभ में फेमस हुई थी, वो भी उज्जैन पहुंची और चेतावनी दे दी कि अगर प्रशासन की तरफ से प्रतिमा को हटाने की फिर से कोशिश की गई तो यहाँ अनशन होगा।
3: देखिए, हम हर हाल में सरकार के साथ हैं। हम नहीं चाहते हमारी वजह से हमारे उज्जैन के निर्माण में, आने वाले कुंभ के निर्माण में, व्यवस्थाओं में कोई भी गलती हो या कोई भी भूल चूक हो, कोई भी कमी रह जाए, हम वो दोष अपने ऊपर बिल्कुल नहीं चाहते। हम सरकार के साथ हैं, लेकिन पूरे शहर में निर्माण का कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, हम उसमें सहयोग कर रहे हैं। एक मंदिर ऐसा हमारे सामने आया जहाँ पे इस कलयुग के जीवंत भगवान ने हमें ये बताया है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहते। 4 प्रयासों में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, इससे ज्यादा क्या स्पष्टीकरण हमको चाहिए। तो हम अब 5वां प्रयास ना करें और यहाँ पे जो मंदिर हमने क्षतिग्रस्त किया है उस मंदिर में यहाँ क्षमा याचना के साथ पूजा अर्चना करें और भव्य मंदिर निर्माण का यहाँ पे संकल्प लें। अब अगर 5वां प्रयास हुआ तो हम सब सनातनी यहाँ पे, मैं, महाराज जी और जितने भी सनातनी भाई बहन है, हम सब यहाँ पे अनशन पे बैठेंगे।
2: उज्जैन में हनुमान मंदिर के विस्थापन की कोशिश के खिलाफ अब आंदोलन वाकई खड़ा हो चुका है, जिससे हिंदू संगठन भी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और इस सरकार को हिंदू संगठनों का पूरा समर्थन भी है, लेकिन उज्जैन के प्राचीन हनुमान मंदिर के विस्थापन पर ये संगठन भी कुछ नहीं सुनना चाहते। इसी दबाव की वजह से उज्जैन का जिला प्रशासन बैकफुट पर है। 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ के लिए सड़क चौड़ी भी करनी है, लेकिन यहाँ विकास पर आस्था भारी पड़ गई है। रविश पाल सिंह, उज्जैन आज तक।
4: उज्जैन का प्रशासन जो भी दावे कर रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मंदिर की प्रतिमा हटाने के लिए कोशिश की गई और अब तो ऐसा लग रहा है कि इस प्रतिमा को हटाने के लिए संग्राम सा छिड़ गया। हालांकि प्रशासन तो नहीं अड़ा, लेकिन हनुमान जी के भक्त जरूर अड़ गए कि हनुमान जी की प्रतिमा को अब किसी भी कीमत पर हम हटाने नहीं देंगे। हमारी अगली रिपोर्ट देखिए, समझिए अगर ये मंदिर यहीं पर रहा तो क्या होगा, हटा तो क्या होगा।

0: उज्जैन में जो हनुमान मंदिर चौड़ीकरण की जद में आया है, उस सड़क की स्थिति क्या है ये जानना भी जरूरी है। उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ महाकुंभ होना है और इसीलिए ये सड़क चौड़ी होनी है। आसपास की सारी इमारतें हट गई। इस सड़क को चौड़ा करने के रास्ते में जो कुछ भी आया प्रशासन ने हटा दिया, बस मंदिर बच गया। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि अभी की स्थिति क्या है।
1: उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर को कंठाल से छतरी चौक चौराहे तक जो सड़क चौड़ी होनी है उसकी वजह से हटाने की योजना है, लेकिन ये सड़क जो है जिसे चौड़ा किया जा रहा है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। मेरे दाएं तरफ अगर आप देखें तो ये हनुमान जी का वो मंदिर है, खड़े हनुमान जी का मंदिर जो आप सामने देख रहे हैं, और इसी को ही मंदिर की प्रतिमा को यहाँ से हटाने पर विवाद छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल ये जो सड़क है ये पुराने शहर की सबसे व्यस्त माने जाने वाली सड़क है जो उज्जैन के कंठाल चौराहे से शुरू होकर के छतरी चौक चौराहे तक जाती है। सामने अगर आप देखें तो वो छतरी चौक चौराहा है और यहाँ तक इस सड़क को चौड़ीकरण इस सड़क का होना है। सड़क को चौड़ा किया जा चुका है और इस सड़क के बीचों में जितने भी ढांचे थे, धार्मिक ढांचे भी थे कई और बाकी थे, उन सभी स्ट्रक्चर को हटा दिया गया है, जिसके बाद ये सड़क 50 फीट चौड़ी हो गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें मेरे बाईं तरफ तो यहाँ से इस सड़क के चौड़े होने के बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका अगर आप देखें, जो इमारतें टूटी हुई आप देख रहे हैं सामने, ये इमारतें जो टूटी हुई हैं ये चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत इन इमारतों को तोड़ा गया था, और ये जो पूरी इमारतें हैं तकरीबन 500 से ज्यादा इमारतें इस सड़क के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट के तहत आ रही थी। तो इस सड़क को जब 50 फीट चौड़ा करने की बारी आई तो इनको हटाएगा, और अब आप देखिए सड़क की तस्वीर, ये 50 फीट चौड़ी हो चुकी है और ये सड़क अब चौड़ी हो जाना के बाद की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर का विवाद है इसलिए भीड़ आपको ज्यादा दिख रही है।
0: अब सवाल है कि इस सड़क को चौड़ा करने की जरूरत क्या थी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये सड़क सिर्फ सिंहस्थ महाकुंभ में ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महाकाल की सवारी भी इसी रास्ते से जाती है।
1: जब ये सड़क को चौड़ा क्यों किया जा रहा है ये भी हम आपको बता देते कि ये जरूरी क्यों है। दरअसल इस जगह से हर साल सावन सोमवार पर और भाद्र पक्ष के जो दो सोमवार होते हैं उसमें महाकाल भगवान की सवारी निकलती है, पालकी निकलती है इसी सड़क से, और फिर वो यहाँ से गोपाल मंदिर जाती है, वहां पे हरि और हर का मिलन होता है और फिर उसके बाद वो महाकाल मंदिर चली जाती है। इसके अलावा जब कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है उज्जैन में, तो इस सड़क पर बड़ा यातायात का दबाव बन जाता है। खासतौर से ये जो पूरा हिस्सा है ये उज्जैन रेलवे स्टेशन से या देवास गेट जो बस स्टैंड है वहां से होता हुआ एक सीधा रास्ता महाकाल मंदिर जाता है और दूसरा रास्ता शीर सागर से कंठाल चौराहा होता हुआ सती गेट के जरिए फिर छतरी चौक पे आता है। तो पुराने शहर में ये जो दो रास्ते हैं ये सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले रास्ते बन जाते हैं सिंहस्थ के समय, और ऐसे में यहाँ पर कंजेशन ना हो, लोग आसानी से बड़ी संख्या में इस सड़क का इस्तेमाल कर सके।
2: विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बनी हुई है। हालात ये हैं कि कई गांव पानी में डूब गए हैं, धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई, नदी का कटाव रोकने के लिए जितने भी इंतजाम किए गए थे वो सब नाकाफी साबित हुए। जलभराव की वजह से बाराबंकी के रामनगर इलाके में कई गांवों का संपर्क टूट गया है।
5: बाढ़ का कहर है, गांव के गांव में पानी भर गया है, फसलें तो चौपट हो ही गई हैं। नतीजा क्या है, हम इस वक्त इस सीतापुर बाराबंकी बॉर्डर के गांव पर खड़े हैं और आप देखेंगे तो मेरे घुटने के ठीक नीचे तक यहां पानी आ चुका है। सामने की फसलें देखें तो सब फसलें तबाह हो चुकी हैं। नतीजा क्या है कि बाइक्स निकालना भी यहां से काफी मुश्किल गांव वालों के लिए हो गया। ये देखिए इस तरह का प्रवाह यहां पानी का है और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं ना, ये आपको बता देता हूं, ये मेरे नीचे कोई खेत खलिहान नहीं है, ये पूरी एक सड़क है, ये पूरी एक सड़क है, नीचे डामर है जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये पूरा रास्ता जाता है आगे तक गांव को कनेक्ट करता हुआ। और लोगों से बात करते हैं हम लोग यहाँ पर।
6: घर तो सर बहुत है यहाँ पे, ये सामने बंधा है इधर, और बंधे के जितने गांव अंदर हैं सब पानी से जलमग्न हैं।
4: बाराबंकी और सीतापुर जिले के बॉर्डर पर बसे गांव बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। गांव में टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत पानी में समा गई, तो वहीं नदी किनारे बना एक प्राचीन शिव मंदिर भी पानी में बह गया। यूपी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत चौकियां बना रही है, जहां से लोगों को जरूरी सामग्रियां भी दी जा रही है। आज तक ब्यूरो।
7: बंगाल में बाबा बागेश्वर के खिलाफ गुस्सा फूटा है, कांग्रेस अब प्रदर्शन कर रही है। देवेंद्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं, FIR दर्ज करने की मांग हो रही है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस से शिकायत कर दी है। ये शिकायत बाबा के उस बयान पर है जिसपे उन्होंने नवरात्रि के दौरान बंगाल के लोगों के खान पान पर सवाल उठाए थे।
8: पश्चिम बंगाल की हमको एक बात बहुत अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती, दिल में बहुत ठेस पहुंचती। यहाँ जब नवरात्रि आती है दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा पंडाल जब लगाए जाते हैं तो दुर्गा पंडाल के पीछे या अथवा तखत के नीचे नॉन वेज का भोजन किया जाता, गंदे गंदे भोजन पीछे बनाए जाते, हमें ये पसंद नहीं है।
7: मैं 4 दिन पहले की बात है जब बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बंगाल पहुंचे थे। हावड़ा में उनका धार्मिक समागम था, उन्हें मानने वालों की भारी भीड़ थी। उसी कार्यक्रम के संबोधन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बयान दिया, बंगाल के लोगों को दी गई उनकी नसीहत से अब बंगाल नाराज है।
9: कोई भी आदमी किसी शाकाहारी का पक्ष ले सकते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कोई गुनाह है, पाप है। अगर किसी ने पाखंडी है अगर ऐसा शब्द बोला तो हम इसको समर्थन नहीं करते।
10: बंगला और बंगालियों के संपर्क में जो इंसल्टिंग कमेंट किया है, इसके लिए यहाँ का सरकार को, क्योंकि वो सरकारी उनको सब खातिरदारी कर रहे थे, उनको क्षमा मांगना चाहिए।
7: भवानीपुर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 थानों तक बाबा के खिलाफ शिकायत भी पहुंच चुकी है और अब कार्रवाई की मांग तेज है।
11: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

ये उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहाँ से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से छती चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिश हो चुकी है, नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें। इस पूरे विवाद में इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरे जगह ले जाना संभव है। अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सिंहस्थ से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों के आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।

0: गांव के गांव ऐसे ही पानी में डूबे हुए हैं, कमर तक पानी भरा हुआ है। इसी पानी में लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए, ये बिहार के आरा की तस्वीरें हैं। घरों में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, लोग इस तरह से जीवन जी रहे हैं। आरा के बाद कटिहार की तस्वीरें देखिए, कई कई फीट तक पानी भरा हुआ है, पूरा गांव डूबा हुआ है, लोग छप्पर पर किसी तरह जान बचाकर बैठे हुए हैं। खाने पीने के सामान के लिए यहाँ नाव चलानी पड़ रही है। अब मधेपुरा की तस्वीरें देखिए, चारों ओर पानी ही पानी है, गांव पानी में समाया हुआ है, स्कूल पानी में डूबा हुआ है। करीब 40,000 लोग यहां बाढ़ से प्रभावित हैं और सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। समस्तीपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं और लोगों के मन में खौफ भर रही हैं। अब भागलपुर की तस्वीरें देखिए, यहां भी जबरदस्त बाढ़ के हालात हैं।
1: इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भवनाथपुर चौक पर, और भवनाथपुर चौक जो है यहाँ से ये सड़क जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पीछे दर्जनों गांव को जोड़ने वाला सड़क है, और यहाँ पर इस ग्रामीण सड़क पर आप हालत देखिए, क्या गंगा की हालत है और क्या इस सड़क का हाल हो चुका है। जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 फुट पानी जो सड़क पे से गुजर रहा है, गंगा इस तरफ से बहती हुई सड़क पर से गुजरती जा रही है और दूसरी तरफ नए नए इलाकों में ये गंगा का पानी जो है वो फैलता जा रहा है।
0: बिहार में 13 से ज्यादा जिलों में नदियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। भागलपुर से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज अखबार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में खबरदार लेकर हमारी साथी श्वेता होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ब्रिक्स के मंच पर दिखेगी हिंदुस्तान की धमक। नई दिल्ली में चीन और रूस के राष्ट्रपति समेत महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी के साथ विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 25,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुइसाइड केस में बुरी तरह घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा हो। कांग्रेस ने भी घेरा। आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की बड़ी मुसीबत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। आज हम आपके लिए अनजान पार्टियों को मिलने वाले अरबों के चंदे से जुड़ी बड़ी पड़ताल लेकर आए। गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, एमपी, बिहार में हम उन पार्टियों के दफ्तर में गए जिन्हें करोड़ों नहीं अरबों रुपए का चंदा मिला है। छोटी पार्टी बड़ा खेल, इससे जुड़ी पड़ताल हमारी आज की कवर स्टोरी। इसके बाद बात करेंगे आकाश आनंद की, जो बीएसपी से निकाले जाने के बाद अब कहां जाएंगे, यूपी की सियासत से जुड़ा ये बड़ा सवाल है। तीसरी बड़ी खबर भी यूपी से है, जहां हाईकोर्ट ने एसएचओ एसपी को झूठों के झूठ की उपाधि दी। हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, पूरी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेकिन सबसे पहले बात दलों की, जो कागजों पर हैं, जिनके खातों में करोड़ों नहीं अरबों रुपए चुनावी चंदे के रूप में जमा किए जाते हैं। ये वो दल हैं जो नाम के लिए चुनाव लड़ते हैं, जिनका देश में एक भी सांसद या विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी इनका बैंक बैलेंस बड़े बड़े दलों से कहीं ज्यादा है। आखिर कौन इन गुमनाम दलों को मालामाल कर रहा है? कौन है वो लोग जो इन पार्टियों को करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा दे रहे हैं? आप पार्टियों के नाम सुनिए। पूरी संभावना है कि इससे पहले आपने इन पार्टियों के नाम कभी सुने ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इन्हें चंदा मिल रहा है। आम जनमत पार्टी 620 करोड़ रुपए, सत्यवादी रक्षक पार्टी 330 करोड़ रुपए, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी 219 करोड़ रुपए, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी 200 करोड़ रुपए, गरीब कल्याण पार्टी 138 करोड़ रुपए। तो इन पार्टियों के नाम में सत्यवादी जनमत, अभिव्यक्ति, गरीब कल्याण लगा है, लेकिन इनका असल काम कुछ और ही लग रहा है। आज तक की टीम ने 5 राज्यों में जाकर इन कागजी दलों की हकीकत से देश को खबरदार करने के लिए पड़ताल की है। इसकी शुरुआत हमने की गुजरात से, जहां गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद और सुरेंद्रनगर में बनाए गए इन अनजान पार्टियों के दफ्तर हैं। हमें क्या मिला, आइए देखते हैं।
1: गांधीनगर का मेघ मल्हार कॉम्प्लेक्स, पहली नजर में ये भले ही आपको किसी दूसरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह लगे, लेकिन इसे भारतीय नेशनल जनता दल का दफ्तर बेहद खास बनाता है। भले आपने आज से पहले इस पार्टी का नाम ना सुना हो, इसके संस्थापक वीएम गजेरा को ना जानते हो, भले ही ये किसी राजनीतिक दल से ज्यादा कोई आम ऑफिस लगे, लेकिन फिर भी ये खास है। आखिर कैसे?
2: भारतीय नेशनल जनता दल, जिसका रजिस्ट्रेशन साल 2009 में हुआ और इसकी आधिकारिक जो ऑफिस है वो गुजरात के गांधीनगर में मौजूद है, और फिलहाल गांधीनगर के उसी बिल्डिंग में हम मौजूद है जहां रजिस्टर्ड ऑफिस यहां पे मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भारतीय नेशनल जनता दल की सेंट्रल ऑफिस के साथ ही शक्ति एंटरप्राइज का भी बोर्ड यहां पे लगा हुआ है, जिसके संस्थापक एस वी गजेरा के तौर पे बताया जा रहा है। साथ ही में हम जब इस ऑफिस पर भी पहुंचे, तो इस ऑफिस की अगर हम बात करूं, तो ऑफिस के अंदर एक रूम है और इस रूम के अंदर एक से दो लोग फिलहाल यहां पे बैठे हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं।
1: भारतीय नेशनल जनता दल के पास ना कोई विधायक ना कोई सांसद, इसके बावजूद इस पार्टी ने इतना चंदा जुटा लिया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। भारतीय नेशनल जनता पार्टी का दफ्तर भले ही सामान्य हो, लेकिन इसे मिले चंदे के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साल 2023-24 में से 191 करोड़ रुपए से ज्यादा चंदे में मिले, जबकि इस पार्टी ने साल 2019-20 से साल 2023-24 के बीच 957 करोड़ 44 लाख रुपए की आय दिखाई है। ये जानकारी ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सामने आई है।
2: जो मुख्य फिलहाल इस ऑफिस को चला रहे हैं, उनसे भी जब हमारी बातचीत हुई, तब उनका कहना था कि आप हमारा जो भी रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन से पूछिए। जब हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि आपको 957 करोड़ का चंदा साल 2009 से लेकर अब तक मिला है, तो उन्होंने एक ऊंची आवाज में बात करते हुए हमसे कहा कि ये हमें इसके बारे में आप क्यों पूछ रहे हैं, अब तक आप हमसे क्यों पूछने नहीं आए, चुनाव के वक्त आप हमसे क्यों बातचीत नहीं करते हैं। हालांकि कोई भी जानकारी दिए बगैर उन्होंने कहा आपको कोई भी हमारे बारे में जानकारी चाहिए तो आप इलेक्शन कमीशन से जाके पूछिए।
1: भारतीय नेशनल जनता दल अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जिसे इतना पैसा चंदा में मिला हो। दावा है कि आम जनता पार्टी को 620 करोड़ रुपए, सत्यवादी रक्षक पार्टी को 330 करोड़ रुपए, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी को 219 करोड़ रुपए, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 200 करोड़, गरीब कल्याण पार्टी को 138 करोड़ रुपए शामिल है। देश में ऐसी कांसी पार्टियों को कैसे इतना ज्यादा चुनावी चंदा मिल रहा है, इन पार्टियों की असलियत क्या है, इसकी पड़ताल के लिए आज तक के रिपोर्टर बिहार, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश तक गए, ताकि गुमनाम पार्टियों की हकीकत से देश को खबरदार किया जा सके। इसी सिलसिले में आज तक संवाददाता गुजरात के आनंद शहर पहुंची, जहां सत्यवादी रक्षक पार्टी का दफ्तर है। योगी पूजन नाम की सोसाइटी में बताए जा रहे इसके ऑफिस में जब हम पहुंचे तो हमें फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटका मिला। वहां न पार्टी का कोई बोर्ड था और न ही कोई पोस्टर चिपका था, जिससे पता चल सके कि ये सच में पार्टी का रजिस्टर्ड ऑफिस है।
3: अभी मेरी मौजूदगी है गुजरात के आणंद जिले के सत्यवादी रक्षक पार्टी का जो कार्यालय है, जो ऑफिशियल कार्यालय दर्ज किया गया है वहां पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये बंद फ्लैट पर न कोई नेम प्लेट है, न कोई बैनर है, न ही कोई झंडा है और न ही कोई पार्टी का कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपए का चंदा मिला है।
1: आप ही सोचिए, जिस पार्टी को 330 करोड़ रुपए का चंदा मिल चुका हो, उसके बताए गए दफ्तर पर ताला लटकने का मतलब पूरी दाल ही काली है वाला मामला है। क्योंकि इतना बड़ा चंदा मिलने के बावजूद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने सिर्फ एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारा था। लेकिन हमारी पड़ताल यही नहीं रुकी और आज तक संवाददाता ने सत्यवादी रक्षक पार्टी के अध्यक्ष का घर ढूंढ निकाला और बात की।
4: हमारे साथ सत्यवादी रक्षक पार्टी है जो उनके प्रेसिडेंट थे स्वाति बेन, वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वाति बेन, आपकी जो पार्टी थी 2023-24 में 330 करोड़ का चंदा मिला था और आपकी पार्टी से एक प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में उतरा था, अभी पार्टी का क्या स्टेटस है और क्या पार्टी बंद हो गई?
5: पार्टी बंद कर दिया।
4: कब से बंद है पार्टी?
5: 25 में से बंद है, 24 के लास्ट में से बंद है शायद।
4: अच्छा, और ये जो पूरा जो चंदा वगैरह सब कुछ पार्टी का आया था, क्या उसका क्या कुछ ऑडिट वगैरह कुछ हुआ था या क्या कुछ?
5: नहीं, और तो सब कर दिया जिसने करना था, बता दिया।
1: आपने देखा कि जैसे आज तक संवाददाता ने चुनावी चंदे से जुड़ा सवाल किया, सत्यवादी रक्षक पार्टी की अध्यक्ष रही इस महिला का मिजाज ही बदल गया।
4: कौन कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कोई आपकी कोई टीम होगी, उसमें से कोई मेंबर अभी हो, कोई एक्टिव हो या ऐसा कुछ है?
5: नहीं, होता सब मुझे नहीं पता मैडम, प्रेसिडेंट इतनी पता नहीं, उसका मुझे पता नहीं।
4: अच्छा, तो मतलब आपके साथ कोई था नहीं, आप सिर्फ अकेली ही थी?
5: नहीं, मेरे साथ है सब, पर मैंने नहीं किया। मेरे नाम से पर मैं प्रेसिडेंट थी, मेरे नाम से ही पार्टी थी, पर मैं नहीं थी अंदर से, मैं हते बदे सब लोग, पर मैं नहीं थी इसमें। अब आप लोग बंद कर दो, ऐसे क्यों इंटरव्यू क्यों लेना है आप लोगों
4: को? नहीं, दरअसल क्या है कि अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ,
5: मैडम सब पता है मुझे, ये सब कर रहे हो तो मुझे नहीं पता है, ऊपर के लेवल के तो है नहीं कि हम लोग पैसा क्या करेंगे, जो आया वो चंदा आया वो किसी को टाइम पे हमने दिया होगा, दान दिया होगा, हम खा थोड़ी गए पैसा, ऐसा नहीं चलता मैडम। आप लोग ऐसे वीडियो बंद कर दे सकते।
4: चलो देखिए, ये स्वाति बहन है जिन्होंने कहा कि हमारे पास जो चंदा आया था, अभी जो पार्टी है वो अभी नहीं चल रही, वो पार्टी अभी बंद कर दी गई है।
1: सोचिए, जिस सत्यवादी रक्षक पार्टी को साल 2023-24 में 330 करोड़ रुपए का भारी भरकम चंदा मिला, वहीं इस पार्टी की तरफ से जो आय दिखाई है वो 416 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। फिर भी इस पार्टी की अध्यक्ष रही महिला चुनावी चंदे को लेकर कुछ नहीं जानती, चंदा दान में देने का दावा करती है, लेकिन किसे कब कुछ नहीं पता। देश में भले ही जनता अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही हो, लेकिन उसी देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें कहा जाता है वो दीन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पार्टियों का नेटवर्क सारे देश में फैला है।
0: सत्यवादी रक्षक पार्टी की अध्यक्ष रही महिला को आपने सुना, उनके गुस्से को आपने देखा, जैसे ही चंदे पर सवाल हुआ उनके तेवर बदल गए। लेकिन गुजरात में ऐसी पार्टियों की कमी नहीं है। हम आम जनमत पार्टी से लेकर न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के दफ्तर तक गए ताकि इस खेल में लगी हर पार्टी का पर्दाफाश किया जा सके, चुनाव आयोग देख सके कि किस तरह से अरबों रुपए चुनावी चंदे लेकर ये पार्टियां जनता और कानून सबका मजाक उड़ा रही हैं।
1: क्या आपने आम जनमत पार्टी के बारे में सुना है? ये उसी का ऑफिस है। आप कहेंगे कौन सी आम जनमत पार्टी, तो जवाब आपको हैरान करने वाला है। साल 2023-24 में इस पार्टी के पास 620 करोड़ डोनेशन के रूप में आए, जो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। अहमदाबाद के रघुवीर अपार्टमेंट में इसी आम जनमत पार्टी का दफ्तर है। आज तक की टीम जब यहाँ पहुंची तो हमें बताए गए पते पर ताला लटका मिला। आसपास के लोगों से बात की तो पता चला कि कई महीनों से यह शटर बंद है। इस पार्टी का दफ्तर भले ही बंद लेकिन इसकी वेबसाइट चल रही है, जिसमें गौरव मिश्रा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताया गया है। गौरव मिश्रा के बारे में जो लाइनें लिखी हैं, उससे पता चलता है कि 10 साल सामाजिक कार्यों में लगने के बाद उन्होंने आम जनमत पार्टी बनाई, जिसका दफ्तर हमें बंद मिला।
6: शटर पे फिलहाल देख पा रहे हैं, उनका कहना है यहाँ पे आम जनमत पार्टी का नाम का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन बीते एक साल पहले इस दुकान को खाली करके आम जनमत पार्टी के जो प्रेसिडेंट बताए जा रहे हैं वेबसाइट पर गौरव मिश्रा, वो तो यहाँ से फिलहाल जा चुके हैं। गौरव मिश्रा को लेकर भी हमने जांच पड़ताल करने की कोशिश की लेकिन सीधे तौर पर कोई पता तो नहीं चल पा रहा है। लेकिन मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जो कि AGP नाम से वेबसाइट भी अभी भी मौजूद है, और जब उसके साथ हम कांटेक्ट करने की किसी को कोशिश भी कर रहे हैं तो एक फ़ोन नंबर यहाँ पर दिखाई पड़ता है, 7203922922। इस नंबर पर भी जब हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनकमिंग कॉल इस नंबर पर बंद होने की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सामने आ रही है।
1: तो पार्टी की वेबसाइट चल रही है लेकिन नेताओं का आता पता नहीं है, फोन पर बात भी नहीं हो रही। फिर हमें हितेश भाई मिले जिनकी इसी मार्केट में दुकान है। हितेश भाई ने बताया कि 1.25 साल से 620 करोड़ रुपए चंदा पाने वाली पार्टी का दफ्तर बंद है।
7: ये चले लास्ट 1.25 साल से ऑफिस यहाँ तो है ही नहीं उसकी, वो लोग यहाँ से चले गए बंद करके, और अभी दुकान भी बिक गई है, अभी किसने ली वो तो मालूम नहीं है, और वो लोग तो यहाँ से सब सामान वामान भर के चले गए। पहले यहाँ चालू था उनका आम जनमत पार्टी के नाम से।
6: अच्छा, कौन कौन आम जनमत पार्टी के नाम से यहाँ आते थे, जैसे गौरव मिश्रा नाम बताया जा रहा है?
7: तो वो नाम था गौरव मिश्रा और एक धर्मेंद्र भाई करके कोई है, बस और को मेरे को मालूम नहीं है नाम, और थे 3-4 आदमी साथ में थे।
6: अच्छा, वेबसाइट पे जैसे हम जब देख रहे हैं अमित व्यास और बाकी विजय सिंह परमार, इन सब का भी नाम है, क्या इन लोग ये भी कोई आते थे?
7: हाँ, वो नाम से तो नहीं पता लेकिन वो लोग आते थे, यहाँ 4-5 आदमी बैठते थे ऐसा मेरे को मालूम है।
6: यहाँ पे भी कोई रेड वेड पड़ी थी पुलिस की?
7: हाँ, एक बार आई थी, कुछ रेड तो पड़ी थी, ईडी की गाड़ियाँ इनोवा विनोवा सब आई थी, पुलिस भी साथ में थी, और 2-3 दिन तक वो चला था सब, और तो कुछ मेरे को मालूम नहीं है, मेरी ऑफिस तो नीचे है।
6: अच्छा, कुछ बोर्ड वोर्ड उस वक्त यहाँ पे मारा था राजनीतिक पार्टी का?
7: हाँ, आम जनमत पार्टी का बोर्ड था शायद।
1: सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका दफ्तर बंद पड़ा, अध्यक्ष से संपर्क ना हो पा रहा, उसकी वेबसाइट खुलेआम डोनेशन मांग रही है। पैसे भेजने के लिए 3-3 बैंक खातों की जानकारी दी गई। दिलचस्प बात यह है कि आम जनमत पार्टी को बिहार में साल 2020 में रजिस्टर किया गया। पार्टी को अगले 2 साल सिर्फ 20,000 तक ही चंदा मिला, फिर अचानक से 2022-23 में आम जनमत पार्टी ने 216 करोड़ का चंदा जमा कर लिया। बड़ी बात यह है कि रजिस्टर होने के बाद पार्टी अहमदाबाद शिफ्ट हो गई और उसे मिलने वाले चंदे में भी बेतहाशा इजाफा हुआ। लेकिन ऐसी पार्टियों की अहमदाबाद में कमी नहीं है। अब आपके सामने न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का दफ्तर है, जिसे साल 2023-24 में 200 करोड़ का चंदा मिला, जिसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑफिस का पता अहमदाबाद के नरोड़ा का पूर्वी कॉम्प्लेक्स दर्ज है। जब हम इस पार्टी की पड़ताल करने पूर्वी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो यहां भी हमें ताला लटका हुआ मिला। कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का ऑफिस है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी का कोई बोर्ड तक नहीं लगा था।
6: जब हम इस ऑफिस के दफ्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी मंजिल पर एक दरवाजा है। इसी दरवाजे पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ा सा ताला यहाँ पे लटका हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी ऑफिस के अंदर पिछले कई समय से जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के दुकानदार हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की ऑफिस यहाँ पे चल रही थी। जो वेबसाइट भी है वो वेबसाइट भी मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, क्योंकि न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की वेबसाइट और उसके ऊपर जो इस पार्टी को चलाने वाले सभी लोग हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। लीडरशिप की जानकारी देते हुए बताया गया है कि अमित चतुर्वेदी जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी के, साथ ही में शैलेंद्र राजपूत जो कि वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर दया भाई मोदी का नाम यहाँ पे दर्ज।
8: न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी की तरफ से कमाई के आंकड़े दिए गए हैं, उसके मुताबिक साल 2019 से 2024 तक 608 करोड़ रुपए इनकम हुई, फिर भी उसकी पार्टी के दफ्तर का हाल बेहाल दिखा। कागजी पार्टियों को लेकर हमारी पड़ताल हमें अहमदाबाद से 145 किलोमीटर दूर सुरेंद्र नगर लेकर गई, जहां पर हमें सौराष्ट्र जनता पार्टी के दफ्तर पर ताला लटका मिला।
9: सौराष्ट्र जनता पार्टी के नाम से जो पक्ष की स्थापना की थी और ये पक्ष है जो 2021-22 में धारा सभ्य के लिए यहाँ उम्मीदवार भी खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद 23-24 के अंदर ये पार्टी को 200 करोड़ से ऊपर का जो चंदा मिला था और ये चंदा मिला और ये पार्टी है जो अभी यहाँ कार्यरत नहीं है। सुरेंद्रनगर की बात करते हुए आए तो सुरेंद्रनगर में वो पार्टी का अभी कोई नामो निशान नहीं है।
8: सौराष्ट्र जनता पार्टी की तरफ से जारी आय के आंकड़े बताते हैं कि इस पार्टी को 2019 से 2024 तक 200 करोड़ रुपए की आय हुई, लेकिन इतना पैसा किसने दिया ये बताने वाला हमें कोई नहीं मिला। लोकसभा चुनाव से पहले के वित्तीय वर्ष में सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली इन सभी रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की पड़ताल के दौरान जो एक बात निकल कर आई वो थी फंड को लेकर पारदर्शिता की कमी। अतुल तिवारी, अहमदाबाद आज तक।
0: अब गुजरात के बाद हमारी पड़ताल दिल्ली हरियाणा होते हुए बिहार भी पहुंची, इसके बाद हम मध्य प्रदेश के जबलपुर भी गए। खबरदार करने वाली बात यह है कि इस तरह की पार्टियों की जानकारी जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है, फिर भी इन पार्टियों पर किसी जांच एजेंसी की नजर नहीं पड़ती। हो सकता है कुछ दलों पर छापेमारी भी की गई हो, लेकिन जिस तरह खुलकर ये सब कुछ हो रहा है वो वाकई हैरान करता है।
8: साल 2015-16 में 4 करोड़ 37 लाख रुपए के मुकाबले 2022 से 2024 के बीच 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चुनावी चंदा दिया गया। भारत में कई अनजान राजनीतिक दलों की ऑडिट और चंदे की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें मिलने वाला चंदा देश की राष्ट्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे से भी ज्यादा हो गया है। ये खेल सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है, राजधानी दिल्ली की भारतीय जन क्रांति दल की कहानी भी अलग नहीं है। दक्षिणी दिल्ली में जो पता दिया गया, जब हम वहां पड़ताल के लिए पहुंचे तो पार्टी को मिले चंदे को लेकर जवाब देने वाला कोई नहीं मिला।
10: जो राजनीतिक पार्टी है उसने दिल्ली में जो अपना पता है यहाँ पे दे रखा है, लेकिन इसकी सत्यता जांचने के लिए जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ये एक मंजिल मकान नीचे है, एक मंजिल ऊपर है। यहाँ पे दो परिवार किराए पे रहता है, कई महीने से रहता है। उन्होंने कैमरे पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन कैमरे के बजाय उन्होंने बताया कि वो यहाँ कई महीने से रहते हैं और किसी भी तरह का कोई दफ्तर यहाँ पे काम नहीं कर रहा था। पॉलिटिकल दफ्तर जो जिसकी बात कही जा रही है, जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, वो दफ्तर यहाँ पे कभी नहीं था। दोनों ही फ्लोर पे फैमिली रहती है, कई महीने से रहती है और आसपास के लोगों को किसी को पता नहीं है इसके बारे में।
8: ये जो पता है वो पूरी तरह से रिहायशी इलाका है जिनमें ये घर गली के कोने में, ऐसी जगह पर पार्टी दफ्तर का होना भी अपने आप में संदेहास्पद। आसपास के लोगों ने बताया कि कुछ महीने पहले पुलिस के लोग भी आए थे और नोटिस भी लगाया था।
11: नहीं नहीं कभी है ही नहीं यहाँ कोई ऑफिस ऑफिस रहता ही नहीं, हमें पता ही नहीं है यहाँ पर, तो हम तो बहुत दिन से रहते हैं यहाँ, कोई नहीं रहता, कोई ऑफिस का नाम ही नहीं है यहाँ पर।
8: दिल्ली की तरफ फरीदाबाद में भी छोटी पार्टियों को मोटे चंदे का ये खेल चल रहा है। फरीदाबाद में इस पते पर राष्ट्रीय विकास पार्टी का दफ्तर बताया गया। जब हम यहाँ पड़ताल करने पहुँचे तो इस घर के मालिक शलभ अग्रवाल ने किसी भी सियासी दल के दफ्तर से इनकार किया।
12: मैं तो यहाँ बहुत साल से हूँ।
13: अच्छा, कितने साल से मतलब?
12: हो गए 15 साल।
13: 15 साल, तो इस एड्रेस पर कोई किसी पार्टी का, राष्ट्रीय विकास पार्टी का दफ्तर नहीं था, कुछ था यहाँ पे? नहीं था।
12: नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैंने बताया ना मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई दफ्तर था कि नहीं था राष्ट्रीय विकास पार्टी का। किसी ने यहाँ पे रेंट पे, लोग आते रहते हैं, किसी ने कुछ बनाया हो तो आई डोंट नो।
13: अच्छा, आप ओनर हैं?
12: मैं ओनर हूँ।
13: मतलब आपको नहीं पता कि इससे पहले कोई रेंट पर आया हो, किसी ने इस्तेमाल किया हो, यहाँ पर पार्टी का दफ्तर बनाया हो?
12: ऐसा मेरी याददाश्त में तो नहीं है भाई, क्योंकि मान लो यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं तो ये कोई पार्टी बना रहा है या क्या काम कर रहा है, ये तो कैसे पता लग सकता है ये वाली बात?
13: अच्छा,
12: है ना? ठीक है बाबू जी।
13: कोई मतलब पार्टी का दफ्तर नहीं था
12: यहाँ? नहीं नहीं,
13: कभी भी नहीं। 2019 से 24 तक
12: नहीं, आई डोंट नो।
14: ऐसा यहाँ कुछ नहीं देखा सर, ये चर्च वाली गली बोलते हैं वो, ऐसा यहाँ ना कभी बोर्ड लगा हुआ मिला, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला सर।
13: अच्छा, कोई पार्टी का दफ्तर?
14: नो सर, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला सर।
8: चुनाव आयोग में राष्ट्रीय विकास पार्टी एक पंजीकृत अमान्य दल के रूप में रजिस्टर है, जिसके अध्यक्ष महेश प्रताप शर्मा है। फरीदाबाद में उनकी तरफ से पार्टी का कार्यालय बताया गया है, हम यहाँ भी गए।
15: उनके परिवार के सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो पार्टी है, ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये पिछले 15 से भी ज़्यादा सालों से यहाँ रजिस्टर्ड है। और महेश प्रताप शर्मा यहाँ दो बार 2019 में और 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, इसी राष्ट्रीय विकास पार्टी के नाम पर, राष्ट्रीय विकास पार्टी के टिकट पर फरीदाबाद से। इससे पहले जो है, क्योंकि ये अलीगढ़ के रहने वाले हैं तो वहाँ भी ये चुनाव लड़ चुके हैं, जैसा कि उनकी पत्नी ने हमें बताया। इस बारे में जब हमने महेश प्रताप शर्मा जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जो उनका एसोसिएट है या जो भी उनके सहायक हैं उनके माध्यम से जो बात की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो मामला है विचाराधीन है, अदालत में विचाराधीन है।
8: पिछले साल चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा RUPP को सूची से हटा दिया था। आयोग की प्रेस रिलीज में वजह ये बताई गई थी कि इन पार्टियों ने पिछले 6 सालों में किसी भी चुनाव में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। बिहार के सीतामढ़ी में भी भारत प्रबल पार्टी को रजिस्टर दिखा दिया। इस पार्टी ने साल 2019 से 2024 के बीच 103 करोड़ रुपए की आय दिखाई, लेकिन हमारी पड़ताल में पार्टी का कोई भी कार्यालय नहीं मिला। सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड के इजहार गांव में प्रबल भारत पार्टी का नामो निशान नहीं मिला। आसपास के लोगों ने भी इस सवाल पर चुप्पी साध ली। तो चुनावी चंदे के लिए देश में राजनीतिक दलों को रजिस्टर तो करवाया जाता है, लेकिन इनका जनकल्याण से कोई वास्ता नहीं होता। आज तक की पड़ताल में जबलपुर में भी यही बात सामने आई, जहाँ भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक का यहाँ कोई दफ्तर नहीं मिला, जबकि दस्तावेजों में बकायदा इस पार्टी का ऑफिस जबलपुर के शक्तिनगर सैनिक सोसाइटी में दिखाया गया।
16: भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिक, जिसका पता है सैनिक सोसाइटी जबलपुर। हम आज तक की टीम जब इधर आके पूरा पता करा कि कहाँ ऑफिस है क्या है, तो जमीनी हकीकत में पाया कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑफिस नहीं है, और लोगों से भी चर्चा की तो लोगों को भी पता नहीं है। जबलपुर से धीरज शाह आज तक।
0: गुजरात की केवल 5 ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने जिन्हें मान्यता नहीं मिली है, फिर भी साल 2019 से 2024 के बीच 2,316 करोड़ रुपए की आय इनकी तरफ से बताई जाती है। इन अनजान पार्टियों को रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज या RUPP कहा जाता है। ये ऐसी पार्टी होती है जो भारत के चुनाव आयोग के पास तो औपचारिक रूप से रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी इनमें से कई दल बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों से ज्यादा चंदा जुटाने में कामयाब हो जाते हैं। सवाल है कैसे और क्यों?
8: आज तक की पड़ताल में आपने देखा कि कैसे कागजों पर चल रही पार्टियों के दफ्तरों में ताले लगे हुए हैं। जहां ताला नहीं है वहां चंदे का हिसाब देने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि इन पार्टियों को चंदा कौन दे रहा है और उसे इससे क्या फायदा होगा। इसके अलावा सवाल चुनाव आयोग को लेकर भी कि अगर ऐसी पार्टियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ रही है, तो फिर ऐसे दलों की मान्यता खत्म क्यों नहीं की जा रही। सबसे पहले बात इन दलों को बनाकर होने वाले फायदे की। दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह कागजों पर बनने वाली इन पार्टियों को भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और यही असली खेल होता है।
17: जो कॉर्पोरेट डोनेशन है, जो डोनेशन है, ब्लैक मनी को वाइट करने का कोई साधन नहीं है। वैसे मैंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये सोचा गया था कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को अपनी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए, अपनी वर्किंग जारी रखने के लिए पैसे चाहिए और इनकम चाहिए। एक पहला तरीका है कि पैसे कैश में आएंगे, अनरिकॉग्नाइज सोर्स से आएंगे। इसको रोकने के लिए ये इनकम टैक्स में एक प्रोविजन लाया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगा उसको हम उसकी इनकम में उतनी छूट दे देंगे। तो ये एक तरह से इनकम टैक्स में पॉलिटिकल पार्टी को ऑफिशियल कंट्रीब्यूशन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। लेकिन जो कॉरपोरेट इसीलिए जो पैसा देती हैं और जो इंडिविजुअल पैसा जेनुइनली देते हैं उनको टैक्स में छूट मिलती है और पॉलिटिकल पार्टी का काम चलता है। अब उसी प्रोविजन को मिसयूज को बेनिफिट करने के लिए कुछ लोगों ने मिसयूज करने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टी उन कॉरपोरेट पे इंडिविजुअल पे पहुंच गए कि आप हमें चंदा दो और हम पैसे वापस कर देंगे। तो ये एक अलग तरह की वर्किंग की गई जिसको कि प्रोविजन को मिसयूज किया गया।
8: ये अनजान पार्टियां अक्सर अपने रिटर्न फाइल नहीं करती। एडीआर की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2019-20 में 219 RUPP ने 608 करोड़ रुपए की टैक्स छूट का दावा किया था, लेकिन उनमें से 66 ने जरूरी रिपोर्ट जमा नहीं की। इसमें ये भी दावा किया गया कि ECI के डेटा के अनुसार 2013 और 2016 के बीच केवल 5% RUPP ने ही दान की रिपोर्ट जमा की।
17: जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा इसमें आता है, लोग एनकरेज करे जाते हैं, देते हैं। लेकिन जो इस प्रोविजन को मिसयूज करने के लिए कुछ लोगों ने अपने ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा ली और फिर वो टैक्स पेयर को इधर उधर, पर्टिकुलरली जो अनइन्फॉर्म और एक साधारण टैक्स पेयर होता है उसको रीच आउट करते हैं और कहते हैं कि आप 1,00,000 रुपए का हमें चेक दो, 2,00,000 रुपए का चेक दो पॉलिटिकल पार्टी के नाम में, हम आपको 5, 10 या 15% काट के पैसे वापस कर देंगे और आपको 30% का जो टैक्स का स्लैब लगता है उसमें छूट मिलेगी। तो बहुत सारे लोग इस ट्रैप में आ गए और इसी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी को पैसे। अगर आप इन सब पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट देखेंगे और इनके बैलेंस शीटें देखेंगे तो पता लगेगा कि जितने पैसे चेक से आए हैं कुछ दिनों बाद पैसे वही कैश में निकाल लिए गए और वो पैसे वापस जिसने कंट्रीब्यूट किए थे उन्हीं को वापस कर दिए गए हैं और कुछ 5-10% की कमीशन इन्होंने अपने पास रख ली है।
8: चुनावी पार्टियों को रजिस्टर करवाकर भ्रष्टाचार का एक तरीका खोज लिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये खेल दशकों से चल रहा है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक का हो सकता है जिसमें शेल कंपनियों का इस्तेमाल भी शामिल है। इस तरह इसमें कई तरह के भ्रष्टाचार की भारी गुंजाइश है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि जो चीजें आम आदमी देख समझ रहा है वो लोकपाल, ईडी और CBI जैसी एजेंसियां क्यों नहीं देख पा रही। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि RUPP का कॉन्सेप्ट कई सालों से मौजूद है, लेकिन हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उन्हें क्या मिल रहा है या ये कितना पैसा कमा रहे हैं। उन्हें अपने रिटर्न जमा करने होते हैं, लेकिन वो अगर ऐसा नहीं करते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उन्हें डीरजिस्टर करने की शक्ति नहीं है। लेकिन क्यों
18: डीलिस्टिंग? As far as I know, डीलिस्टिंग नाम की कोई चीज लॉ में नहीं है। डीरजिस्ट्रेशन इज द थिंग। अब डीलिस्टिंग का क्या मतलब है? क्या कुछ आप एक्शन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। डीरजिस्ट्रेशन की जो पावर है जो वो कोर्ट ने आपको डिनाई कर दी कि आपको आप रजिस्टर करेंगे लेकिन डीरजिस्टर नहीं करेंगे। तो वो पावर की डिमांड इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत सीरियसली शायद फॉलो नहीं की है और पार्लियामेंट ने भी इसमें कोई डिबेट नहीं किया। लेकिन डी रजिस्ट्रेशन की पावर इलेक्शन कमीशन को मिले बिना आगे कुछ इसमें फायदा हो ही नहीं सकता। अनलेस पार्टी को ये थ्रेट महसूस हो कि डी रजिस्टर हो जाएगी तो वो सारी अपनी लीगल एक्टिविटीज बंद करेंगी।
8: जानकारों का कहना है कि देश में राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर करना आसान है। पहले इसके लिए 30 लोगों की जरूरत होती है, लेकिन अब कम से कम 100 रजिस्टर्ड वोटरों के संगठन की जरूरत होती है। लेकिन इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है जिसे रोकना जरूरी हो जाता है।
18: पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा हो गए और पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या है, सरकार को इस पे ऐसे अपना माइंड बना लेना चाहिए कि एक्ट तो सरकार बना के लाती है, सरकार एक्ट पास करे कि भाई ये जो पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर रही है, फर्जी है, नाम के वास्ते है, उनको डी रजिस्टर करने की पावर इलेक्शन कमीशन को दे दे, ये जरूरी है।
19: चुनाव की बात चल रही है, यूपी पर सबकी नजरें हैं, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है तो BSP में घर का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया, उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। सवाल अब आकाश आनंद को लेकर है कि वो क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योता दिए जाने लगे। अखिलेश यादव हालांकि अभी तक इस पर चुप हैं।
8: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में बीएसपी की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
20: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं वो। अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहां पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
8: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह बीएसपी से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है, उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
21: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
8: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीएसपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
22: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता है वो कुछ थोड़े से परेशान है करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
8: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
23: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं।

0: की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है, जिसका नाम है अखिलेश यादव।
1: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: एक समय था जब मायावती की पार्टी बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, लेकिन जिस समय पार्टी को एकजुट करना चाहिए था, तब बीएसपी में बुआ भतीजे की लड़ाई पार्टी के लिए शुभ संकेत तो नहीं है, क्योंकि बीएसपी के वोट पर उनके विरोधियों की भी नजर है। अगर आप बीएसपी के वोट की बात करें तो आज से 20 साल पहले पार्टी को विधानसभा में 30% से ज्यादा वोट मिले थे। मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीएसपी का हाथी मजबूत था, उससे विरोधी घबराते थे, लेकिन इसके बाद कहानी बदलने लगी। 2014 में बीएसपी का वोट 25, फिर 2 साल बाद 22% रह गया। 2019 के चुनाव में अखिलेश के साथ आने के बावजूद बीएसपी के वोट में गिरावट नहीं थमी। 2022 के विधानसभा चुनाव में इसमें अप्रत्याशित कमी आई और बीएसपी का वोट 12% तक गिर गया, जो 2024 के चुनाव में डबल डिजिट से नीचे चला गया है। इस मुश्किल समय में बीएसपी की अंदरूनी लड़ाई यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव ला सकती है। आकाश आनंद पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। अखिलेश यादव से जब सवाल किया गया कि आप पीडीए के जरिए सबको जोड़ रहे हैं, तो अखिलेश ने कहा कि ये बीएसपी का अंदरूनी मामला है, दूसरे दल के लोग कोई बात नहीं कह सकते।
3: आकाश आनंद ने जिस तरीके से पिछले दिनों आपको अंकल करके अपने रैली में संबोधित किया था, आज उनकी भुवन उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया पूरी तरीके से, क्या कुछ कहेंगे पूरे राजनीतिक घटनाक्रम?
4: देखिए, जो अंकल शब्द है वो कोई भी रिश्ता हो, चाचा, ताऊ, मौसा, फूफा, वो उनकी पार्टी का अपना फैसला है, उनकी पार्टी का अपना फैसला है, इसमें दूसरे दल के लोग कोई बात नहीं कह सकते।
3: आकाश जी आना चाहेंगे तो आप लेंगे क्या?
4: अगर तुम लेके आओ तो ले लेंगे।
2: उत्तर प्रदेश के देवरिया से अगली खबर है, जहां पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा। एसएचओ एसपी को झूठों का झुंड तक बोल दिया गया। मामला हत्या के मामले में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने का है, जिस पर अदालत नाराज हुई ही, लेकिन एसएचओ से जब सीसीटीवी को लेकर सवाल हुआ तो अदालत ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया।
5: थाने में सीसीटीवी मिला गायब, तो पुलिस को हाईकोर्ट ने फटकारा। अवैध हिरासत के मामले में हाईकोर्ट ने एसपी एसएचओ को झूठों का झुंड करार दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खबरदार किया।
6: पुलिस वाले दोषी माने हैं, पुलिस वाले के बोल रहे हैं हाईकोर्ट से कुछ कड़ाई उसका हुआ है, तो वो कहे हैं कि नहीं, अब ऐसा गलती हम नहीं करेंगे।
5: मामला देवरिया का है, जहां 5 महीने पहले एक हत्या के मामले में गौरी बाजार थाने में 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को अवैध हिरासत में रखने का आरोप पुलिस पर लगा था।
6: नहीं बताए हैं कि हम किस लिए उठा के लेकर आए हैं, ये नहीं बताए हैं।
7: तो आपको यही थाने से छोड़ दिया गया कि आपको जमानत हुआ?
6: नहीं नहीं, हमको थाने से 11 दिन रख के हमको 12-13 दिन 13 तारीख हमको थाने पर छोड़ दिए लोग,
7: घर
6: पे। हाँ, वो जो हमारे कड़ाई लोग किए हैं तब छोड़े हैं, वैसे अपने मन से नहीं छोड़े हैं लोग। हम लोग इतना रोए गाय की छोड़ दीजिए, हम लोग क्या किए, छोड़ दीजिए, मैं कहें लोग कि नहीं थाने पर, कहें लोग नहीं छूटेंगे।
5: पुलिस के खिलाफ परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पुलिस को लेने के देने पड़ गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने महेंद्र गौड़ की याचिका पर सुनवाई के दौरान एसपी और थानेदार की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने उन्हें झूठों का झुंड तक कह दिया।
8: हाई कोर्ट ने तत्कालीन थानेदार गौरी बाजार डॉक्टर महेंद्र कुमार से यहां के सीसीटीवी फुटेज को मांगा, ताकि उससे यहां की गतिविधि, जो आने जाने वाले या कितने तक बैठा के रखा गया, उसकी जानकारी मिल सके। लेकिन जो थानाध्यक्ष थे महेंद्र कुमार, उन्होंने यहां सीसीटीवी कैमरा खराब होने की, तकनीकी खराबी होने का हवाला देते हुए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर सके, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस

0: दलील को स्वीकार नहीं किया और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए थानेदार के वेतन से 65,000 रुपये वसूल कर जिन लोगों को थाने में बिठाकर प्रताड़ित किया गया था उन्हें देने का आदेश दिया है।
1: याचिका में आरोप लगाया गया कि चार लोगों को 13 से 24 अप्रैल के बीच गौरी बाजार थाने में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाने की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध न होने पर सवाल उठाया, जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमार की ओर से बताया गया कि संबंधित अवधि में तकनीकी खराबी थी। कोर्ट ने इस दलील को अविश्वसनीय बताते हुए खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार प्रत्येक थाने में सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहने चाहिए और बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सीसीटीवी और बैकअप व्यवस्था का काम न करना पुलिस अधीक्षक की तरफ से फर्ज निभाने में गंभीर लापरवाही माना जाएगा। कोर्ट ने इसके बाद चारों याचियों को कुल 65,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुआवजा थानाध्यक्ष के वेतन से वसूला जाएगा।
2: अभी हमको थोड़ा सा और हमारा जो नुकसान है या कष्ट है जो काहे हो रहा है इसका हमको पूरा जांच पड़ताल चाहिए।
1: ये मामला देवरिया के गौरी बाजार के बैतालपुर ढाबे पर एक बुजुर्ग की हत्या से जुड़ा है। अप्रैल में हुई इस वारदात में पुलिस पर 3 महिला समेत 4 लोगों को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा और मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। अगर थाने का ये सीसीटीवी काम कर रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दे चुके हैं, ताकि थानों में जहां जनसुनवाई होती हो वहां कैमरे जरूर लगे। लेकिन देवरिया में इस आदेश का भी पालन होता नहीं दिखा और एसएचओ एसपी को अदालत के गुस्से का सामना करना पड़ा।
3: अब बात पंजाब की करते हैं, जहां गुलजार सिंह आत्महत्या मामले में भगवंत मान सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही।
4: पंजाब में नशे से शुरू हुई सियासत अब दलित पॉलिटिक्स पर आ गई है। गुलजार सिंह के परिवार ने एक बार फिर प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने जबरन गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार कराया।
5: आही अपील करते हैं छोटे अग्गे भी ते प्रशासन अग्गे भी जो जो साडे नाल धक्का होया ते दे साडे सातों धक्के नाल मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया। मेरे भरा नूं गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करते हैं भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असीं ना तो ना ही भोग पावांगे ना ही फुल चुकांगे।
4: पहले गुलजार की आत्महत्या और फिर दबाव डालकर अंतिम संस्कार। पंजाब की भगवंत मान सरकार सीधे सीधे कटघरे में खड़ी दिख रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने गुलजार के परिवार से मुलाकात कर भगवंत मान की सरकार से पूछा है कि आखिर उसकी संवेदना इस हद तक कैसे मर गई।
6: ये भी आ रहा है कि आप खुद जा रहे हैं डेलीगेशन लेके उनसे मिलने?
7: अभी अभी जा रहे हैं जी, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं। पर ये है कि उस गरीब आदमी ने, वो दलित आदमी बेचारे ने एक सवाल पूछा था कि चिट्टे को बंद करो, क्योंकि उसका परिवार तबाह हो चुका, उसका लड़का खुद चिट्टे में है। उसने कहा कि जी चिट्टा बंद करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये इसकी भी किसी को तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछते हैं। सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछे उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि मैं सल्फास पीऊं। इतना तंग किया गया, उससे पहले मोहनजीत को शेरों में ऐसे पीटा गया। तो ये लोग जो
6: ड्रग्स का सवाल उठाए तो
7: ड्रग्स का सवाल उठाए तो ये मौजूदा सरकार उसको लाठियों से पुलिस से दबाना चाहती है। ये लोग पंजाब के दबेंगे नहीं।
4: संगरूर में गुलजार के घर के दरवाजे पर मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की।
8: उन्होंने जबरन किया, उनके कारण जो गुलजार सिंह मरा है और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन पे आधा पर्चा किया गया। एफएम पे भी पर्चा होना चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए और उसका इस्तीफा होना चाहिए।
9: मरने से पहले उनकी जो अखीरली वीडियो है गुलजार सिंह की, वो क्लियरली नशे के जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी संगरूर में और पंजाब में, जो संगरूर होम डिस्ट्रिक्ट है चीफ मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसने उसको लेके आवाज उठाई थी। एंड द वे ही वाज प्रेशराइज्ड, ह्यूमिलेटेड, उसको ये बोला गया गुलजार सिंह को कि आपको सबक सिखाएंगे, उसकी मदर, उसकी वाइफ ये बात को बार बार बयान कर रही थी।
4: अनुसूचित आयोग ने भी परिवार से मुलाकात की और पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए।
10: परिवार की जो भी मांग है, खास करके उनकी मांग है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, साथ साथ गुलजार सिंह जी को जिन्होंने भी डराया धमकाया और उसके कारण उन्होंने खुदकुशी की, तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
11: परिवार ने क्या मांग रखी है जी? क्यों
10: परिवार ने मांग रखी है? उनका कहना है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ साथ मंत्री जी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आयोग परिवार की जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, इस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा।
4: पंजाब में चुनाव होने वाला है और एक दलित की आत्महत्या पर सियासी शोर है। ऐसे में मान सरकार मामले में एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल चीमा को क्लीन चिट दे रही है, जबकि विपक्ष हरपाल चीमा के खिलाफ एक्शन पर अड़ा हुआ है। कमलजीत संधु, चंडीगढ़।
3: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें अभी और भी हैं, रहिए खबरदार।

0: spa state of mind with a Kohli spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohli spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: बिलोटे चार जो है यार।
7: ओले बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
12: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट।
13: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर गया।
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
5: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा, क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
6: मजा नहीं आया।
4: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
7: ये लो बस।
8: अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: चला
15: मैं,
14: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं।
16: चलो सखी उड़ ले।
17: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट,
14: बड़ी जल्दी सीख गई।
15: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी।
17: स्वाद सपनों का।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
4: पापा
5: सॉरी यार, गलती हो गई है. ये चोट खर्चा वर्चा.
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा.
5: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है.
5: हाँ
6: टाटा AIG है तो भरोसा है.
0: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलर स्पा एट होम.
7: चला
8: मैं.
7: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं.
9: चलो सखी उड़ ले.
10: अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट.
7: बड़ी जल्दी सीख गई.
8: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी.
10: स्वाद सपनों का.
11: इन एसोसिएशन विद सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
12: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया, तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया.
13: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी. आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है, बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी. हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाए.
12: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है.
14: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा. गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ.
12: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं. अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई.
15: ए पुलिस वालों, क्यों कर रहे हो ये तमाशा. तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता.
12: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं.
16: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे. सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था. तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है.
12: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है. आज तक ब्यूरो.

0: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ, और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ब्रिक्स के मंच पर लेकर चलेंगे, जहां इस बार एक ऐतिहासिक हलचल होने जा रही है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों इस महामंच पर आने वाले हैं। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग भारत में एक साथ एक मंच पर खड़े होंगे, और इसीलिए आज हम आपको इन तीनों देशों की आर्थिक सामरिक ताकत जो है उसके साथ ये भी बताएंगे कि दुनिया में इस महाजुटान का कूटनीतिक असर क्या होने वाला है, किस किस की भौहें तन रही हैं इस पर। इसके बाद आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अभेद्य सुरक्षा घेरे के बारे में बताएंगे, जिसके लिए रशिया के विशेष विमान भारत की धरती पर उतर चुके हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के किसी भी मुल्क में कदम रखने से पहले उनके सीक्रेट और एडवांस्ड फाइटर जेट्स, कार्गो प्लेन्स आखिर वहां क्यों लैंड कर जाते हैं, आखिर क्या है इन उड़ते हुए विमानों का राज जो पुतिन के आने से कई घंटे पहले ही आसमान से जमीन तक पूरे इलाके को सील कर देते हैं। आज इसकी पूरी कहानी हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाएंगे।

और इसके बाद आपको भारत दौरे पर आए प्रिंस रहीम आगा खान द फिफ्थ के बारे में बताएंगे। वो शिया नजारी इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम हैं। प्रिंस रहीम उस आगा खान राजवंश से ताल्लुक रखते हैं जिसका भारत और साथ ही साथ दक्षिण एशिया से गहरा नाता रहा। दिलचस्प बात तो यह है कि आगा खान परिवार के पास कोई सल्तनत नहीं है, लेकिन इस्माइली मुसलमानों के बीच उनका दर्जा एक राजा, एक सुप्रीम लीडर जैसा माना जाता है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने

0: अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है। इसमें मददगार बन रहा है चाइना। इसका फॉर्मूला निकाला है कि ईरान तेल देगा तो चाइना हथियार देगा। खबर है कि पाबंदियों को चकमा देने के लिए दोनों देशों ने कैश के बजाय सामान के बदले सामान यानी बार्टर डील का रास्ता चुन लिया है। और आज की एक और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के राजनीतिक दलों के अंदाज में फ्रीबीज का दाव अब खेल दिया। आगामी मिड टर्म चुनाव को लेकर ट्रंप ने अमेरिकी जनता को सीधे तौर पर लुभाने के लिए $5,000 यानी करीब 5 लाख रुपए का डिविडेंड देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगर इन चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत होती है और संसद में उनका नियंत्रण बनता है तो अमेरिका के हर वोटर के खाते में सीधे उनके खाते में $5,000 भेजे जाएंगे।
1: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: IIT मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी की लीडरशिप में एक ऐसा प्रिसिशन एग्रीकल्चर मिशन शुरू हुआ है जो पानी और खाद की हर एक बूंद की बचत करेगा, यानी चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए अभी जितनी मात्रा में पानी की जरूरत होती है वो कम हो जाएगी। और ये मिशन उन्हीं वी कामकोटी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है जिनको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गौमूत्र विशेषज्ञ बताया था। परीक्षा प्रणाली में सुधारों के लिए बनाए गए पैनल में उन्हें चुने जाने का विरोध उस वक्त किया गया था। आज की एक और बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बारे में है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। मामला झांसी का है जहां एक ही परिवार ने SC ST एक्ट के तहत अलग अलग केस दर्ज करा, सरकार से 23 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा उठा लिया जबकि 10 से 12 मामलों में राहत राशि अभी पेंडिंग है। जब बात कोर्ट तक पहुंची तो हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि कानून की आड़ में कमाई का ये खेल अब नहीं चलेगा। ये वही कानून है जिसके तहत जातिगत भेदभाव अपराध का शिकार होने वाले SC ST पीड़ितों को सरकार मुआवजा देती है और ये व्यवस्था इन समुदायों की रक्षा के लिए बनाई गई है। लेकिन कोर्ट ने इसके दुरुपयोग की तरफ इशारा किया है और ये आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर थार और फॉर्चुनर जैसी गाड़ियों से जुड़ी वीडियोस अक्सर वायरल होती है लेकिन अब इस पर दमन में ट्रैफिक उल्लंघन स्टंटबाजी के मामलों को लेकर कलेक्टर ने थार और फॉर्चुनर चालकों के साथ एक स्पेशल बैठक की है। बड़ी दिलचस्प खबर है। अब देखिए इस बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी थार के जो मालिक है थार कार के गाड़ी के उनको सड़क पर जिम्मेदारी सुरक्षा से गाड़ी चलाने की शपथ दिलाई है। कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा और संदेश दिया कि सड़कों पर भाईगिरी हीरोगिरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी सुरक्षित ड्राइविंग का परिचय दे ताकि दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। देखिए
2: मैं अपना वाहन कभी भी लापरवाही से उतावलेपन से अथवा निर्धारित गति सीमा से अधिक नहीं चलाऊंगा।
0: मुंबई गोवा हाईवे के बरसों लंबे इंतजार और लचर दफ्तार पर अब खुद केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी का गुस्सा फूट पड़ा है। गडकरी ने साफ कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट में हुई भारी देरी से वो बहुत शर्मिंदा है और इसीलिए उनके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे।
3: त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये मुंबई गोव्याचं मी जाहीर केलं महाराष्ट्राचा ही गोव्यातली स्थिती नाही आहे। मी जाहीर केलं की मी मुंबई गोव्याच्या उद्घाटनाला येणार नाही कारण मला लाज वाटते इतके उशीर झाला।
0: लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट पर टिक चुकी हैं। पिछले साल राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये एक छोटा सा संगठन है जो अब खत्म होने की कगार पर है लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग है। आज पश्चिमी मीडिया में ब्रिक्स के इसी सम्मेलन को लेकर चर्चा हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ब्रिक्स नहीं है, इसके पीछे रिक यानी रशिया इंडिया और चाइना के वो त्रोइका की बात है, त्रिकोणीय साझेदारी है जिनके बीच वैश्विक राजनीति का सिचुएशन ट्रायंगल बन रहा है। कहते हैं कि दुनिया की राजनीति में कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती बल्कि उनके पीछे आने वाले कई सालों की कहानी छिपी होती है और दिल्ली में बनने वाली रिक यानी RIC की तस्वीर भी ऐसी ही हो सकती है। एक तरफ अमेरिका है जो पिछले कुछ सालों से दुनिया की राजनीति को अपने नेतृत्व में चलाने की कोशिश कर रहा है, एक तरफा फैसले ले रहा है, और दूसरी तरफ चाइना है जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देकर एक नई विश्व व्यवस्था

बनाने की कोशिश कर रहा है। और भारत, भारत जो ना तो अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहता है, ना चाइना के नेतृत्व वाली किसी व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन हाँ भारत चाहता है कि उसका संतुलित रिश्ता रहे, रशिया से भी अमेरिका से भी व्यापार हो, वो आगे बढ़े। संदेश साफ है कि दुनिया किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकती, और यही वजह है कि ब्रिक्स आज सिर्फ आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रह गया है, बल्कि ये उस सवाल का मंच बन चुका है कि आने वाले सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या डॉलर का दबदबा कम होगा? क्या दुनिया में कई शक्तियों वाला एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? क्या ग्लोबल साउथ देशों की आवाज पहले से ज्यादा मजबूत होगी? और क्या भारत, रशिया, चाइना मिलकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने कोई एक नया शक्ति संतुलन वाकई तैयार कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब, संकेत, संदेश दुनिया को 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में मिलने वाले हैं। और ये ब्रिक्स इतना खास क्यों है, इसके लिए आप इस ग्राफिक्स को देखिए। इस बार मुख्य रूप से ब्रिक्स समिट में 11 देश शामिल हो सकते हैं, जिनमें रशिया, चाइना, ईरान, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई शामिल है। रशिया इस बात की पुष्टि कर चुका है कि राष्ट्रपति पुतिन कल यानी 11 सितंबर को इस समिट से एक दिन पहले भारत आएंगे और उनके साथ विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ और उप प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव भी मौजूद रहेंगे। अब बड़ी बात यह है कि कल ही राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी दोनों नेताओं जो नेता हैं वो अपनी अपनी टीम्स के साथ आमने सामने बैठेंगे और कई मुद्दों पर, समझौतों पर चर्चा हो सकती है, और इनमें ब्रह्मोस का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। दूसरी तरफ चाइना के सरकारी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को भारत दौरे पर रहेंगे, यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साल 2019 के बाद पहली बार भारत दौरे पर आने वाले हैं, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये 2020 की गलवान हिंसा के बाद दोनों नेताओं की भारत में पहली द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, और इस दौरान ब्रिक्स के मंच पर एक बार फिर से रशिया, भारत और चाइना की त्रिकोणीय साझेदारी या सिचुएशन ट्रायंगल दिख सकता है। हम इसे सिचुएशन ट्रायंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ये तीनों देश मौजूदा परिस्थितियों के कारण दोस्ती और डिप्लोमेसी का एक नया त्रिकोण खींच रहे हैं, और ये त्रिकोण नए वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर संकेत देता है। यहां पर यह भी समझिए कि इन तीनों देशों की साझेदारी को पूरी दुनिया इतनी अहमियत क्यों देती है। लेकिन भारत के नजरिए से, इससे पहले कि हम आपको ये बताएं, भारत के नजरिए से आप देखें तो ये सिचुएशन ट्रायंगल इसलिए भी है क्योंकि भारत को चाइना के साथ एक एक कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है। चाइना पर कितना भरोसा करना है, कहां पर भरोसा नहीं करना है, इसमें छोटी सी भी चूक भारत के लिए महंगी पड़ सकती है। इसीलिए कहते हैं कि इस डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जो इस वक्त हम ब्रिक्स के साइड में देखेंगे, भारत, रशिया और चाइना में, उसमें बहुत सोच समझकर हर कदम को उठाने की जरूरत है। लेकिन विश्व क्यों इतना महत्व देता है इन देशों को? पहली बात, ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश है, रशिया, इंडिया, चाइना। तीनों देशों के पास 5,089 परमाणु हथियार है, जिनमें 4,309 परमाणु हथियार रशिया के पास है, चाइना के पास 600 परमाणु हथियार है और भारत के पास 180 परमाणु हथियार। दूसरा, दुनिया की लगभग 38% जो आबादी है वो रशिया, भारत और चाइना में ही रहती है। इनमें भारत की आबादी 145 करोड़ है, चाइना की 141 करोड़, रशिया की आबादी 14 करोड़ 30 लाख। तीसरी वजह, दुनिया की जो कुल जीडीपी है उसमें भी 33% हिस्सेदारी अकेले इन तीन देशों की है। इनमें चाइना की अर्थव्यवस्था 18.7 ट्रिलियन डॉलर की है, भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है और रशिया की अर्थव्यवस्था 2.2 ट्रिलियन डॉलर की है। ये तीनों देश मिलकर 25.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाते हैं, जो अमेरिका की 29 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था से सिर्फ थोड़ा ही पीछे है। इसी तरह दुनिया का 20% क्षेत्रफल इन तीन देशों में आता है, और सेना के मामले में भी ये तीनों देश बहुत मजबूत हैं, यानी संक्षेप में कहें तो तीनों देशों के पास ऐसा सामर्थ्य है कि अगर ये साथ आ जाएं तो अमेरिका की धड़कनें बढ़ जाएंगी। लेकिन जैसा हमने आपको पहले कहा, चाइना का जब मामला हो तो बहुत सोच समझ कर कदम उठाएगा भारत, और उठाना भी चाहिए क्योंकि चाइना ने जिस तरह

से हमारी सरहद पर अलग अलग वक्त पर बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं भारत के लिए, उसको भुला देना सही नहीं होगा। बात हो रही थी कि इस रिश्ते से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इतना क्यों भड़कते हैं। धड़कने बढ़ने का कारण यह भी है कि ब्रिक्स देश एक दूसरे के साथ अपना जो ज्यादातर व्यापार है वो अब नेशनल करेंसी में कर रहे हैं, यानी भारत और रशिया के बीच रुपया रूबल में, रशिया और चाइना के बीच रूबल युआन में, और ट्रंप इसी वजह से डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स को एक मंच बता देते हैं। देखिए,

और अब आप ये देखिए कि रशिया से आए विमानों ने पहली बार दिल्ली के बाहर ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग क्यों की, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन का जो सुरक्षा घेरा भेद पाना है वो एकदम लगभग नामुमकिन समझिए। आप पहले इस वीडियो को देखिए।

ऐसा हुआ है जब किसी दूसरे देश के सैन्य विमानों ने दिल्ली के बाहर लैंडिंग की है। इससे पहले वीवीआईपी दौरों पर भारत आने वाले विदेशी सैन्य या सुरक्षा विमान पारंपरिक रूप से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही लैंड करते थे, लेकिन अब इस परंपरा को पहली बार बदलने की कोशिश हुई है। इससे यह संकेत भी मिलता है कि सरकार जेवर एयरपोर्ट को सिर्फ एक नया एयरपोर्ट नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के बड़े अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक एयर हब के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है, और इसके लिए आज इसकी पहली टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब ये देखिए कि जो विमान इस एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है। इन विमानों में रशिया का सबसे बड़ा हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी आया है जिसका नाम है IL-76। ये सोवियत संघ के जमाने का 4 इंजन वाला एक भारी विमान है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा करने वाले जवान, सैन्य अधिकारी और तमाम जो जरूरी साजो सामान है वो सब भेजा जाता है। यानी राष्ट्रपति पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले से कड़ी सुरक्षा का एक घेरा बना दिया जाता है, ऐसा घेरा जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन हो। इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन के खास सुरक्षा अधिकारी, सैन्य अधिकारी, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, लॉजिस्टिक्स टीम, प्रोटोकॉल अधिकारी, खास गाड़ियां, कई बार तो राष्ट्रपति पुतिन का पसंदीदा खाना भी भेजा जाता है। और ऐसा नहीं है कि यह पूरी व्यवस्था पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है। साल 2000 में जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार रशिया के राष्ट्रपति बने तभी वो होटल के पानी, बर्तन या हाउसकीपिंग में काम करने वाले लोगों पर भरोसा करना बंद कर चुके थे। उस वक्त भी उनके लिए हर विदेशी दौरे पर जो है रशिया से पानी तक जाता था, उनका बताया जाता है बेड, मेडिकल किट, डॉक्टर्स, जो सिक्योरिटी ऑफिसर है, सुरक्षा अधिकारी, सब खास टीम भेजी जाती है। और जिस होटल में वो रुकते हैं वहां पहले पूरे रूम को सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद साल 2010 में ये नियम बना कि राष्ट्रपति पुतिन जब भी विदेशी दौरे पर जाएंगे उनके साथ एक मोबाइल फूड लेबोरेटरी भी वहां पर भेजी जाएगी। और ये लेबोरेटरी किस लिए? ये वही लेबोरेटरी है जिसमें राष्ट्रपति पुतिन द्वारा चुने गए जो खास शेफ हैं और उनके चहेते जो कुक्स हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सब मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है पानी से लेकर सैलेड तक सब चीज की जांच की जाती है और उसके बाद ही परमिशन मिलता है कि ये सर्व किया जाएगा। इसी सुरक्षा को साल 2014

में और कड़ा बनाया गया और इस बार ये तय हुआ कि विदेशी दौरों पर राष्ट्रपति ट्रंप का एक बाल भी नहीं छूटना चाहिए। अब ये हाल के दिनों में देखा गया है कि जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कई बार कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक पैरानॉइड बिहेवियर भी है, लेकिन बहुत ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम रखे जा रहे हैं ताकि कहीं भी कोई छोटा भी रिस्क मोल नहीं लेना चाहता है। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीजों को वहां से हटा दिया जाता है, उनकी टीम तुरंत इकट्ठा करके वो सब साथ में रशिया ले जाती है। यहां तक कि जिस होटल में वो रुकते हैं वहां अगर बताया जाता है कि जो प्लंबिंग हुई है वो भी सब कुछ सील कर दिया जाता है। सिर्फ मकसद एक रहता है कि कोई भी उनका जो शरीर का हिस्सा है, जैविक नमूना जैसे कहते हैं, वो दूसरे देश में ना छूटे। और यूक्रेन युद्ध के बाद तो राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा को और भी कड़ा बना दिया गया है और अब जानते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या होता है। खाना, बॉटल बंद पानी, बार बार उसकी चेकिंग होती है, जिस चीज को वो छूते हैं उन पर कुर्सी सोफा बैठते हैं उन सबको सैनिटाइज किया जाता है, ड्रोन जैमर्स लगाए जाते हैं, एंटी ड्रोन हथियार भेजे जाते हैं, बुलेट प्रूफ ब्लास्ट प्रूफ कार्स का इस्तेमाल होता है, उनकी सुरक्षा के लिए स्नाइपर कमांडोज भी मौजूद रहते हैं। क्रेमलिन ने खुद बताया है कि सेना की एक विशेष इकाई सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिए बनाई गई है जिसमें 800 से ज्यादा जवान हैं। और यहां कई लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की टीम उनके जैविक नमूनों के पीछे छोड़कर क्यों नहीं जाती है। बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके पीछे। जो कहा जाता है कि इसी घटना ने राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जो पूरा मॉडल है वहीं से तैयार हुआ। इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के शीर्ष नेता जोसेफ स्टालिन ने चाइना के तत्कालीन राष्ट्रपति माओ ज़ेडोंग के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए चोरी छिपे उनके कुछ सैंपल्स इकट्ठा कर लिए, चोरी कराए थे। आरोप लगता है कि उस वक्त जोसेफ स्टालिन की सीक्रेट पुलिस ने स्पेशल अलग अलग जहां जहां भी वो जाते थे इस्तेमाल करते थे जिन कमरों का उन सब का किसी ना किसी तरीके से उन्होंने जासूसी की और बाद में एक तरह से माओ ज़ेडोंग के सैंपल्स इकट्ठा किए गए और उनकी जासूसी की गई। और यही कारण है कि राष्ट्रपति पुतिन और उनकी सीक्रेट पुलिस उनकी हर एक चीज का ध्यान रखती है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन खुद सोवियत संघ के दौर में खुफिया एजेंसी KGB के जासूस रह चुके हैं, इसलिए वो जानते हैं कि जासूसी दुनिया में क्या क्या तरकीबें अपनाई जाती है। देखिए

और अब आपको भारत और रशिया की ब्रह्मोस वाली संयुक्त शक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि कल यानी 11 सितंबर को राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं होगी, बल्कि इस मुलाकात के केंद्र में भारत और रशिया की रक्षा साझेदारी का अगला चरण जुड़ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मुलाकात में प्रमुख रूप से अगर आप देखिए तो दो बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पहला मुद्दा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी पांचवी और आखिरी यूनिट की डिलीवरी होनी है, और दूसरा है ब्रह्मोस मिसाइल को अगली पीढ़ी तक ले जाना, यानी नेक्स्ट जेनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल्स तैयार करना, और हम चाहते हैं कि आप इसे एक एक करके समझें। पहले ये देखिए कि S-400 की पांचवी रेजिमेंट आखिर है क्या। भारत ने अक्टूबर 2018 में रशिया के साथ करीब 40,000 करोड़ रुपए का एक रक्षा समझौता किया था, जिसके तहत भारत को रशिया से S-400 की पांच रेजिमेंट्स या यूनिट्स मिलनी थी। अब S-400 को आप आसान भाषा में भारत की लंबी दूरी की एयर डिफेंस शील्ड कह सकते हैं, जो अगर सामने से दुश्मन के लड़ाकू विमान हो, ड्रोन्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो और कुछ तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स ही क्यों ना हो, उनको दूर से ही पहचान कर लेती है और फिर उसे इंटरसेप्ट कर सकती है। और ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी सेना को चारों खाने चित्त कर दिया था, उनके सारे अटैक विफल हो गए। अब मुद्दा यह है कि पांच में से चार S-400 रेजिमेंट्स तो भारत को मिल चुकी हैं।

जिनमें से 3 S-400 रेजिमेंट जो है वो पंजाब को, राजस्थान, जम्मू में पाकिस्तान से लगे जो आर्मी सेक्टर में तैनात कर दिया गया है, और 1 रेजिमेंट को चाइना की सीमा के पास पूर्वोत्तर में तैनात किया गया है। और अब सिर्फ S-400 की 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी बाकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच इस मुद्दे पर बात हो सकती है। और दूसरा मुद्दा है ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का। और हमारे संवाददाता मंजीत नेगी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इसके नए संस्करण को लेकर द्विपक्षीय मुलाकात में चर्चा कर सकते हैं। ब्रह्मोस भारत और रशिया का संयुक्त मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें दोनों देशों ने मिलकर इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित किया है, और अब भारत और रशिया इस मिसाइल को अगले चरण में ले जाना चाहते हैं। यानी हम ब्रह्मोस NG बनाना चाहते हैं, जिसे नेक्स्ट जेनरेशन ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस नेक्स्ट जेनरेशन कहा जाता है, नेक्स्ट जेनरेशन ब्रह्मोस। और ऐसा किया क्यों जा रहा है पहले वो देखिए। अब मौजूदा ब्रह्मोस मिसाइल का वजन बहुत ज्यादा माना जाता है, ये करीब 2.9 टन यानी 2900 किलोग्राम का है, जबकि नई जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं उनका वजन 1300 किलोग्राम का हो सकता है, 1.3 टन का। और यही इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी मिसाइल जितनी हल्की होगी उसे उतने ज्यादा लड़ाकू विमान दुश्मन देश पर दाग पाएंगे। जैसे अभी Sukhoi-30 लड़ाकू विमान में केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है, और इसे तेजस और जो बाकी के मिग तो फ्लाइट्स हटा दिए गए हैं, लेकिन मिग 29 2030 तक फेज आउट करने की बात है, तो मिग 29 जैसे जो हल्के लड़ाकू विमान है उनसे नहीं दागा जा सकता। लेकिन जब नई ब्रह्मोस मिसाइल तैयार होगी तब तेजस हो या अभी जो मिग 29 है उस जैसे लड़ाकू विमानों में एक बार में 6 से 7 मिसाइल्स को लगाया जा सकेगा। इससे भारतीय वायुसेना को नया विकल्प मिलेगा, और वो विकल्प होगा ये जो हल्के छोटे लड़ाकू विमानों से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल्स दाग सकेगा। अब सुपरसोनिक का मतलब उन मिसाइलों से होता है जिनकी रफ्तार ध्वनि की गति से, जो उसको कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति से 3.5 गुना होती है, और दुश्मन देश के पास इन मिसाइल्स को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। इसके अलावा नई ब्रह्मोस मिसाइल्स की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की जगह 400 किलोमीटर से ज्यादा होगी, और भविष्य में 800 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रह्मोस के मामले में भारत स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा। इसका मतलब होता है दुश्मन देश के एयर डिफेंस जोन के काफी करीब गए बिना भी मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर लेना। और इसीलिए कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ब्रह्मोस के नए संस्करण पर चर्चा करेंगे तो यह खबर दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस बन जाएगी। देखिए,

0: अब हम आपको बिन किसी मुल्क या सल्तनत के सुल्तान और बिना किसी सेना के दुनिया भर के 1.5 करोड़ लोगों के रहनुमा प्रिंस रहीम आगा खान द फिफ्थ के बारे में बताएंगे। शिया इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान इस वक्त भारत के दौरे पर है। इमाम बनने के बाद अपने पहले भारत दौरे पर पहुंचे प्रिंस रहीम ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। पुणे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों को समेटे आगा खान पैलेस से लेकर दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के कायाकल्प तक इस परिवार का भारत से नाता बहुत पुराना है, बहुत ऐतिहासिक रहा है। प्रिंस रहीम आगा खान द फिफ्थ के इस दौरे की इतनी चर्चा क्यों हो रही है और उनका भारत से क्या रिश्ता है, उसके बारे में आप ये रिपोर्ट देखिए।
1: न कोई भौगोलिक सरहद, न कोई अपना नक्शा, न ही कोई सेना, फिर भी दुनिया के 35 से ज्यादा मुल्कों में फैले 1.5 करोड़ से अधिक लोग इन्हें अपना रूहानी रहनुमा मानते हैं। इन्हें हिज हाइनेस भी कहा जाता है और सुल्तान भी, लेकिन ये वो सुल्तान हैं जिनकी सल्तनत जमीन के किसी टुकड़े पर नहीं बल्कि लोगों के यकीन और ईमान पर कायम है। इनका नाम है प्रिंस रहीम आगा खान द फिफ्थ, जो निजारी इस्लामिया शिया समुदाय के 50वें वंशानुगत इमाम हैं। फरवरी 2025 में इमाम की गद्दी संभालने के बाद प्रिंस रहीम पहली बार 7 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के न्योते पर भारत पहुंचे प्रिंस रहीम आगा खान का दिल्ली में जोरदार स्वागत हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनके दिवंगत पिता आगा खान द फोर्थ के योगदान को याद किया। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रिंस रहीम से मुलाकात की। अपने इस एक हफ्ते के दौरे में प्रिंस रहीम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। आगा खान की वंशावली को 14 सदी पुराना माना जाता है। इनका दावा है कि इनकी सीधी वंशावली पैगंबर मोहम्मद साहब के वंश से जुड़ी है। आगा खान का मतलब होता है मालिक या स्वामी। ये उपाधि 1818 में ईरान के काजार राजा ने 46वें इमाम हसन अली शाह को दी थी। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जन्मे प्रिंस रहीम अपने पिता के इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के जरिए 50वें इमाम बने। इनके पास लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति और कई संस्थाओं का नियंत्रण है। 1892 में प्रिंस रहीम के परदादा आगा खान द थर्ड ने पुणे में आगा खान पैलेस बनवाया था। इसी पैलेस में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने नजरबंद करके रखा था। इसके अलावा दिल्ली में हुमायूं टोम को आगा खान ट्रस्ट ने ASI के साथ मिलकर नया जीवन दिया। 15 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे में प्रिंस रहीम अहमदाबाद, गांधीनगर, मुंबई और हैदराबाद का भी दौरा करेंगे। यहां वो अपने समुदाय और अपनी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। प्रिंस रहीम बिना सल्तनत के भी कई देशों में सम्मानित हैं।
0: सऊदी अरब पर हूती आतंकियों के मामले हो और उन हमलों के बीच ईरान ने पाकिस्तान से पूछा तू कौन, तो पाकिस्तान बोला मैं खामख्वा। पाकिस्तान खुद को इस्लामिक दुनिया का सबसे ताकतवर देश आज समझता है क्योंकि न्यूक्लियर पावर है उसके पास, लेकिन रह रहकर इस्लामिक देश ही उसको उसकी असली जगह दिखा देते हैं। कुछ हफ्ते पहले मक्का पैक्ट हुआ था जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान इस पैक्ट के तहत तय किए कर रहे थे कि जब भी किसी एक देश पर कोई हमला होगा, जैसे सऊदी अरब पर हुआ, तो वो तुर्की और पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, वो साथ में युद्ध लड़ेंगे। सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का अलग से एक डिफेंस पैक्ट भी है अब, जिसके तहत पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर इस बात के लिए मिले हैं कि वो सऊदी अरब पर हमला करने वालों पर हमला करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हुती आतंकियों के द्वारा सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं। फरवरी में ईरान अमेरिका युद्ध के शुरू होने के बाद से ही हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई ठिकानों पर बड़े हमले किए। अब इन हमलों को लेकर सऊदी अरब बार बार पाकिस्तान को मक्का पैक की कसम याद दिला रहा है, तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। अगर सऊदी अरब की मदद की तो ईरान नाराज हो जाएगा, और ईरान के खिलाफ गए क्योंकि हुती उसी का पालापोसा संगठन माना जाता है ईरान के खिलाफ गए तो फिर बंटाधार ही है। अब डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान तो को हूती आतंकियों पर हमला करना चाहिए, लेकिन उसके बजाय उसने ईरान को धमकाया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ओर से ईरान को संदेश दिया कि यमन के हूती आतंकियों को कंट्रोल करे, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में जवाब दिया कि उनका हूती आतंकियों पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकता। जबकि ऐसा माना जाता है कि हूती आतंकियों की कमान ईरान की IRGC के पास रहती है और उसके इशारों पर वो काम करते हैं, लेकिन इसराइल हो अन्य देश हो वो बार बार ये कहते हैं ईरान इससे सीधा इनकार करता है। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान के सामने भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान को ईरान से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब वो फंस गया है।
2: मिडिल ईस्ट में जंग का एक नया मोर्चा खुलता दिख रहा है और इस मोर्चे में पाकिस्तान गले तक फंसा हुआ है। जब से ईरान अमेरिका और इसराइल का युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिका और इसराइल के समर्थक देशों को टारगेट पर लिए हुए हैं। इसमें सबसे पहला नाम हूती आतंकियों का है जो सऊदी अरब के लिए मुसीबत बन गया। इसी साल जुलाई में हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के साथ 4 साल पुराना युद्ध विराम खत्म कर दिया और इसके पीछे वजह यह थी कि

0: सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमेरिका को समर्थन दे रहा था। इसके बाद हूती आतंकियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया और उसके एयरपोर्ट्स, तेल ठिकाने और टैंकर्स पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की वजह से बाब अल मंदेब और लाल सागर में सऊदी अरब का समुद्री व्यापार खतरे में आ गया। इस युद्ध विराम के खत्म होने के बाद सऊदी अरब और हूती आतंकियों के बीच जंग का एक नया मोर्चा खुल गया और इसी बीच अगस्त में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। तय हुआ कि एक सदस्य पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और बदला उसी तरह से लिया जाएगा। लेकिन इस डिफेंस पैक्ट का कोई फायदा सऊदी को नहीं मिला क्योंकि हूती आतंकियों ने इसके बावजूद सऊदी अरब पर हमले जारी रखे। अभी हाल ही में 7 सितंबर को हूती अटैक का बदला लेने के लिए सऊदी अरब ने यमन में हूती के ठिकानों पर हमले किए थे। सऊदी अरब ने 120 एयर स्ट्राइक्स की थी। उसने मारिब, अलबायदा, हुदायदा, तैज और अलजौफ पर हमले किए। इन हमलों के बाद हूती आतंकियों ने बदला लेने का ऐलान किया और 8 सितंबर को सऊदी अरब पर उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन अटैक किए। उन्होंने सऊदी के तेल ठिकानों और रिहायशी इलाकों पर हमला किया जिसमें करीब 73 लोग घायल हुए हैं। यह हमला अभा, खामिश मुशैत, जाजान और नजरान जैसे शहरों पर हुए। एक तरह से सऊदी अरब और यमन के हूती आतंकियों के बीच जंग चल रही है और यह सऊदी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। यमन की सीमाएं उनसे मिलती हैं, जिन इलाकों में हूती का कब्जा है वहां से सऊदी पर हमला हो रहा है। हूती आतंकियों का नियंत्रण यमन के बाब अल मंदेब और लाल सागर की तरफ वाले हिस्से पर है जिसमें यमन की राजधानी सना भी शामिल है। यही वजह है कि यमन का यह हिस्सा सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। सऊदी के शहरों पर हमले हो रहे हैं और लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार भी खतरे में है। सऊदी के लिए इस खतरे से अकेले निपटना मुश्किल है। इसी वजह से उसे मक्का पैक्ट के तहत पाकिस्तान से मदद की उम्मीद है, लेकिन पाकिस्तान ने मदद के नाम पर सऊदी की मुसीबत बढ़ा दी है।
1: ये मुआहदा जो है ये एक शायद एक डिटरेंस भी तो हो सकता है ना। जरूरी नहीं कि हम इसको इनका जवाब पत्थर से दें, जरूरी नहीं है। लेकिन द फैक्ट दैट देयर इज ए अलायंस बिटवीन थ्री कंट्रीज, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों को तीनों जो है मिलिटरीली बड़े अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से जो है मजबूत मुल्क हैं।
0: पाकिस्तान ने मक्का पैक्ट के तहत सऊदी अरब की मदद करने का भरोसा नहीं दिया, बस गोलमोल बात कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने सऊदी की तरफ से ईरान से हूती आतंकियों पर नियंत्रण करने का संदेश दिया, जिसके जवाब में ईरान ने साफ कह दिया कि वो हूती आतंकियों पर नियंत्रण नहीं कर सकता। ईरान के इस जवाब ने पाकिस्तान को मक्का पैक्ट के तहत हूती पर सैन्य कार्रवाई का दबाव बढ़ा दिया और दबाव बढ़ते ही पाकिस्तान का दम निकल गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने हूती आतंकियों पर पाकिस्तान द्वारा हमले की तैयारी की खबरों को गलत बता दिया और कहा कि इस तरह के एक्शन पर फिलहाल कोई बात नहीं हुई है और मक्का पैक्ट के तहत सही समय आने पर एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए मक्का डिफेंस पैक्ट का पालन करना गले की हड्डी बन गया है, जिसे न उगलते बन रहा है न निगलते। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के लिए यमन में जाकर हूती आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन शुरू करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए पैसा भी चाहिए और हथियार भी। पाकिस्तान फिलहाल कंगाल है, वो ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास 331 फाइटर जेट्स हैं और सऊदी अरब की जमीन का इस्तेमाल करके वो उनका इस्तेमाल जरूर कर सकता है, लेकिन यमन में लंबी लड़ाई में उतरना पड़ेगा और ये पाकिस्तान के बस का नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2: यूपी चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में उथल पुथल मची है और इसी बीच एक नई खबर बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर आ रही है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से पूरी तरह निकाल दिया है। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। ये पोस्ट भी तब आई जब उसे कुछ देर पहले आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। आज हम आपको यही बताएंगे कि आकाश आनंद पर मायावती ने जो कठोरता दिखाई उसके पीछे उनके ससुर की क्या भूमिका है और आकाश आनंद पर बार बार मायावती के विचार बदलते क्यों रहते हैं। असल में आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के बड़े नेताओं में से एक थे, लेकिन पिछले कुछ समय से आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ की यही करीबी और रिश्तेदारी मायावती को खटक रही थी। माना जा रहा है कि मायावती ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले अशोक सिद्धार्थ के आगे संन्यास लेने की शर्त रखी और जैसे ही उन्होंने इसकी घोषणा की मायावती ने पार्टी से आकाश आनंद को भी फ्री कर दिया। अब राजनीतिक रूप से कई विश्लेषण

शिक्षक इस पारिवारिक घटना के बाद बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व को अधर में मान रहे हैं, लेकिन अगर मायावती ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझ कर फैसला उन्होंने लिया, क्योंकि पहले ही यूपी के दोनों सदनों में बीएसपी का एक भी विधायक नहीं है और

संसद में भी सिर्फ राज्यसभा में बीएसपी का एक सांसद बचा है। कार्यकाल दिसंबर में अब खत्म हो जाएगा, तो ये तो पार्टी की स्थिति है। यानी यूपी चुनाव से पहले संसद और विधानसभा दोनों में बहुजन समाज पार्टी का खाता शून्य हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद इतनी उथल पुथल क्यों है? आप इस पर हमारी ये पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए।

0: यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में जो हंगामा मचा हुआ है उसे देखकर हिंदी की एक कहावत याद आ गई, न सूत न कपास, जुलाहों में लठम लठम। इस वक्त बीएसपी में यही हो रहा है। संसद और विधानसभा में राजनीतिक नुमाइंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, बावजूद इसके पार्टी में सत्ता किसकी जैसे सवालों पर बवाल मचा हुआ है। बीएसपी में एक साथ दो घटना हुई जिसने यूपी चुनाव में दलित और पिछड़े समाज के बीएसपी वोटर्स को भी उलझा दिया है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर पार्टी में ये चल क्या रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास ले लिया और मायावती के भतीजे और अशोक सिद्धार्थ के दामाद आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया गया। दोनों राजनीतिक घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा है। कल बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी। मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा था कि अशोक सिद्धार्थ को सुधरने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया और पार्टी से ज्यादा परिवार को महत्व दिया। इस पोस्ट में मायावती ने यह भी लिखा था कि अगर अशोक सिद्धार्थ संन्यास ले तो उनके दामाद आकाश आनंद पार्टी में फ्री होकर काम कर पाएंगे। मायावती की इस अपील के करीब 15 घंटे बाद अशोक सिद्धार्थ ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों पर सफाई पेश की, जिसमें कहा कि वो पार्टी पर कब्जा नहीं करना चाहते और उनके संन्यास को आकाश आनंद से भी न जोड़ा जाए क्योंकि वो उन्हें गुमराह नहीं कर रहे हैं। जबकि अशोक सिद्धार्थ को लेकर मायावती की सोच कुछ अलग है क्योंकि उनसे कई तरह के मामले जुड़े हुए हैं। जैसे 12 फरवरी 2025 को अशोक सिद्धार्थ पर गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था और फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। इसके बाद 6 सितंबर 2025 को एक्सपोस्ट पर लंबे चौड़े माफीनामे के बाद उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल कर दिया गया। फिर 2 अगस्त 2026 को उन्हें फिर से अनुशासनहीनता की वजह से निकाल दिया गया और कुछ दिन बाद माफी मांगने के बाद पार्टी में शामिल कर लिया गया। लेकिन अब अशोक सिद्धार्थ को निकाला नहीं गया है बल्कि उनसे संन्यास दिलवाया गया है और उनके संन्यास की घोषणा के मात्र 2.5 घंटे के अंदर मायावती ने एक और पोस्ट लिखा और एक ऐसी राजनीतिक चाल चली कि सब ढेर। मायावती ने अशोक आनंद के इस्तीफे को देर से उठाया गया सही कदम बताया और इसी पोस्ट में आकाश आनंद को पार्टी से निकालने की घोषणा कर दी। यानी एक बार में ही मायावती ने अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद को बीएसपी से किनारे लगा दिया। आकाश आनंद को उन्होंने ही साल 2019 में पहली बार राष्ट्रीय संयोजक बनाया था। फिर साल 2023 और 2024 में यानी दो बार उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दोनों बार उन्होंने ये फैसला वापस ले लिया। इसके बाद साल 2025 में आकाश को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि माना गया कि उन पर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का प्रभाव था। हालांकि माफी मांगने के बाद आकाश को फिर से राष्ट्रीय संयोजक बना दिया गया। 3 सितंबर 2026 को बीएसपी ने आकाश आनंद से पहले अहम जिम्मेदारियां छीन ली और फिर अब उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। मायावती ने अपनी पोस्ट में आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ पर एक ही आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इन दोनों लोगों ने पार्टी से ज्यादा परिवार को अहमियत दी है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि मामला केवल इतना नहीं है, सच ये है कि मायावती को यह लगता रहा है कि पार्टी में आकाश आनंद के जरिए अशोक सिद्धार्थ अपनी एक सत्ता चाहते थे, जबकि यूपी चुनाव को लेकर मायावती और उनकी कोर टीम एक नए एजेंडे पर काम कर रही थी। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम का कंट्रोल कंपनीज के पास होना चाहिए या इसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक ऐसा कानून लाने की तैयारी कर रही है जिसके तहत सोशल मीडिया कंपनीज को ये विकल्प देना होगा कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो।

0: या टिकटॉक हो, यूजर खुद तय करे कि वो क्या देखना चाहता है, यानी आप सोशल मीडिया पर क्या देखेंगे, ये आपकी पसंद से तय होगा, ना कि ये जो कंपनीज हैं वो अपना मनचाहा एल्गोरिदम पुश करेंगी। यहां ये भी समझिए कि ये एल्गोरिदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मान लीजिए किसी दिन आपने इंस्टाग्राम पर ईरान युद्ध से जुड़े 5 वीडियोस लगातार देखे, तो ये एल्गोरिदम मान लेगा कि आपकी दिलचस्पी युद्ध से जुड़े वीडियोस देखने में ही ज्यादा है। इसके बाद ये आपको ऐसे ही वीडियोस भेजेगा। कई बार तो ये सीधा आरोप लगता है कि कुछ ऐसे जानबूझकर ऐसा कंटेंट होता है जो इन बड़ी बड़ी कंपनियों की विचारधारा से मेल खाता है, उस कंटेंट को एल्गोरिदम में बार बार पुश किया जाता है, और न चाहते हुए भी कई बार आपकी फीड में वही वीडियोस बार बार आते रहते हैं। अब याद कीजिए, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ था, तब भी कई लोगों ने शिकायत की थी कि उनके एल्गोरिदम को ऐसा लग रहा था कि मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें इंस्टाग्राम खोलते ही आंदोलन के पक्ष में बनाए गए वीडियोस नजर आते हैं, जबकि कुछ का कहना था कि जिन वीडियोस में अलग अलग वजहों से आंदोलन की आलोचना हुई वो वीडियोस उनकी फीड में आ रहे थे। कई लोग ये मान रहे थे कि मतलब तरह तरह के ऐसे वीडियोस बार बार आ रहे थे और उस दौरान सिर्फ यही वीडियोस सभी की फीड में आ रहे थे। यानी सोशल मीडिया पर आपको अपनी पसंद से रील्स नहीं दिखाई जाती, बल्कि एल्गोरिदम की पसंद से रील्स दिखाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया अब इसे बदलने की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो नया कानून बनने वाला है उसके लिए लोगों को 2 विकल्प दिए गए। 2 विकल्प क्या होंगे जो लोगों को मिलेंगे? पहला विकल्प, लोग अपनी पसंद बता सकेंगे, भाई मुझे ये देखना है। जैसे कई लोगों को खाने के वीडियोस देखने में बड़ा मजा आता है, फूड रेसिपी, तो आप बताएंगे। मान लीजिए अगर किसी को खबरों से जुड़े वीडियोस ज्यादा पसंद है तो आप अपना एल्गोरिदम न्यूज पर टिक करेंगे तो आपको न्यूज का वीडियो आएगा। दूसरे विकल्प में लोग बिना अपनी पसंद के वीडियोस और रील्स देख सकेंगे कि भाई जो आ रहा है वो दिखा दो। इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई वीडियो देखा है और एल्गोरिदम उसी से जुड़ी रील्स बार बार करेगा। ये चीजें अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं होंगी और वहां इसे माई फीड माई वे का नाम दिया गया है कि भाई मेरा फीड है, मैं तय करूं मुझे क्या देखना है। सुनिए,
1: हम एक सलाह मशवरा करके डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर कानून का ड्राफ्ट जारी कर रहे हैं। इस ड्राफ्ट कानून के तहत हम माई फीड माई वे नाम की एक अहम पहल के जरिए एल्गोरिदम पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद सरकार को कंट्रोल देना नहीं है, बल्कि लोगों को कंट्रोल देना है। इसका मकसद ऑनलाइन दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के लोगों के हाथों में फिर से चुनने की आजादी देना है।
0: अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया का ये मॉडल भारत भी अपना सकता है? पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल सबसे ज्यादा भारत के लोग करते हैं। भारत के इंस्टाग्राम में 48 करोड़ 10 लाख यूजर्स हैं, फेसबुक के 40 करोड़ 30 लाख यूजर्स, यूट्यूब के 51 करोड़ 80 लाख यूजर्स, और ये सारे लोग जब सोशल मीडिया पर रील्स देखते हैं तो वो रील्स उनकी पसंद उनकी विचारधारा के हिसाब से तो नहीं होती, वो रील्स की एल्गोरिदम की पसंद से दिखाई जाती है, और ये एल्गोरिदम अक्सर किसी मुद्दे पर लोगों की राय बनाने का भी काम करने लगता है। और इसीलिए ये बड़ा सवाल है कि जो भी आपकी राय हो, आपके विचार हो, आप खुद तय करें, ये कंपनीज क्यों तय करें कि आपकी फीड में क्या आएगा, आप क्या देखेंगे। सोशल मीडिया का यही एल्गोरिदम कैसे समाज को धीरे धीरे बदल रहा है, परिवर्तन ला रहा है, वो देखिए। 15 से 20 सेकंड की डिजिटल सना, स्क्रीन पर गढ़ी नजरों और अनंत स्क्रोलिंग में जुटा अंगूठा, इंसान भूल चुका है कि स्क्रीन के बाहर की भी दुनिया है जो कि वास्तविक है। रिश्ते नाते, इंसानियत, व्यवहार, यहां तक कि जिंदगी तक, कई लोग रील्स के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। हम आपको अक्सर दिखाते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग जगह की घटनाएं हुई हैं, और इसीलिए हमने सोचा आज फिर आपको बताएं, क्योंकि पहली तस्वीर राजस्थान के जयपुर से है, जहां आमेर में टूर गाइड मनीष सोनी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी का नाम है आजम, जिस पर पहले से ही हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। इस बड़ी वारदात का आरोपी आजम पहले से जेल जा चुका है और ये पुलिस कस्टडी में बाकायदा पोज देता है, अपराध और अपराधी मानसिकता की हनक दिखाने के लिए रील्स बनाता है। आरोप है कि उसके दोस्त पुलिस कस्टडी के दौरान उसके वीडियो शूट कर रहे थे, धांसू एडिटिंग हो रही है, रील्स सोशल मीडिया पर दबदबा दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी, जो इंसानों के लिए एआई के बढ़ते हुए खतरे से जुड़ी है, और इसीलिए मैंने सोचा कि एआई से जुड़ी खबर है, एआई के खतरे के संकेत की खबर है, तो अंजना 2.0 से ही आपको ये खबर सुनवाएं। मेरी एआई वर्जन है वो, लेकिन एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसी जो बड़ी कंपनीज में रिसर्चर्स की भूमिका निभा चुके हैं जेकब कॉक्सन, उन्होंने ये दावा किया है कि एआई कंपनीज ऐसी अंधी दौड़ में अब शामिल हो चुकी हैं प्रॉफिट के लिए, जिसके तहत वो सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा सुपर ह्यूमन एआई बना रही हैं जो इंसानों का नामो निशान मिटा सकता है, ह्यूमन रेस का। दूसरी तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक टेक दिग्गज बिल गेट्स ने अब इंसानों की नौकरियों को बचाने के लिए ह्यूमन रिजर्व यानी नौकरियों में इंसानों के लिए आरक्षण लागू करने की मांग उठा दी है। बिल्कुल अंजना, ये बहुत बड़ा सवाल बन गया है, क्या जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग अपना कल मान रहे हैं वही इंसानी वजूद का काल बनने वाला है? एआई की दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक के सीनियर रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए हैरान करने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि एआई कंपनियां सुरक्षा को ताक पर रखकर अंधे दौर में भाग रही हैं और ये तकनीक साल 2030 तक पूरी इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि एंथ्रोपिक के अलाइनमेंट प्रमुख इवान ह्यूबिंगर ने भी इस दावे का समर्थन करते हुए कहा है कि इन कंपनियों के पास बेकाबू होते सुपर ह्यूमन एआई को रोकने का फिलहाल कोई पक्का प्लान नहीं है। इस दावे के बाद दुनिया में एआई के खतरों को लेकर और भी बड़ी बहस छिड़ गई है। एआई के द्वारा इंसानी सभ्यता के विनाश के दावे के बीच नौकरियों पर भी खतरे की चर्चा है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक बिल गेट्स ने आगाह किया है कि एआई से लाखों नौकरियां हमेशा के लिए खत्म होने वाली हैं। गेट्स ने सुझाव दिया है कि जैसे जंगलों को बचाने के लिए नेचर रिजर्व बनाए जाते हैं, वैसे ही कुछ नौकरियों को केवल इंसानों के लिए ह्यूमन रिजर्व यानी आरक्षित घोषित करना होगा। डॉक्टर, टीचर और केयर गिवर्स जैसी भूमिकाओं पर सिर्फ इंसानों का हक होना चाहिए और रोबोट्स पर भारी टैक्स लगना चाहिए। धन्यवाद अंजना 2.0। ये ऐसी खबर है जो हम सबको, जिस पर सोचना चाहिए और ये समझना चाहिए कि एआई का हमें इस्तेमाल करना है। ऐसा दिन ना आ जाए जब एआई हमें काम से अलग कर दे, हमें यूजलेस साबित कर पाए और ह्यूमनॉइड्स इतने आ जाए जिसकी आशंका जाहिर की जा रही है कि इंसानों के लिए खतरा ही बन जाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबा केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: एक को एक
3: ईश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the coolest.

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: ये उज्जैन महाकाल की नगरी, जहाँ एक हनुमान प्रतिमा को लेकर आस्था और प्रशासन आमने सामने है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर का भवन तोड़ा जा चुका है। हनुमान जी अब मंदिर में नहीं बल्कि टेंट की छत के नीचे विराजमान है, लेकिन प्रतिमा को यहां से हटाने की कोशिश का श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। मंगलवार शाम यहां महाआरती हुई, ढोल ताशे बजे और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एकजुट होकर कहा कि सड़क चौड़ीकरण हो लेकिन हनुमान प्रतिमा को यहां से न हटाया जाए। मामला कंठाल चौराहे से छति चौक तक होने वाले सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा है। सिंहस्थ 2028 से पहले इस पूरे इलाके को व्यवस्थित किया जा रहा है। प्रशासन ने सड़क की जद में आ रहे मंदिर का भवन तोड़ दिया है, लेकिन अब प्रतिमा को सुरक्षित तरीके से हटाना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रतिमा को हटाने की कई कोशिश हो चुकी है, नीचे से छेनी हथौड़े से भी प्रयास किया गया, लेकिन प्रतिमा अपनी जगह से नहीं हिली। अब प्रशासन विशेषज्ञों की मदद से इसे सुरक्षित तरीके से विस्थापित करने का रास्ता तलाश रहा है। प्रशासन का कहना है कि प्रतिमा को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है, लेकिन श्रद्धालुओं का सवाल है कि जब प्रतिमा हट ही नहीं रही तो उसे हटाने की जरूरत क्यों है। उनकी मांग है कि सड़क बने लेकिन हनुमान जी अपनी जगह पर ही रहें। इस पूरे विवाद में इतिहासकारों के मुताबिक ये प्रतिमा बेहद प्राचीन है। वहीं इंजीनियरों का कहना है कि आधुनिक तकनीक से ऐसी भारी संरचनाओं को सुरक्षित तरीके से दूसरे जगह ले जाना संभव है। अब बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है कि सेहत से पहले सड़क भी चौड़ी हो, विकास भी हो, लेकिन हनुमान भक्तों की आस्था का भी पूरा ध्यान रखा जाए। रविश पाल सिंह, उज्जैन, आज तक।

0: के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और अगर आपका अपमान होता देख वहां कोई चुप खड़ा है तो समझ जाइए आपके अपमान का स्क्रिप्ट राइटर वही है. नमस्कार.
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: ब्रिक्स में हिस्सा लेने रात में पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। शी जिनपिंग का कल होगा आगमन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा। बदलती विश्व व्यवस्था पर होगा मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के राजनीतिक संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा, सीएम मान दें इस्तीफा। कांग्रेस ने भी घेरा। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू की बड़ी मुश्किलें। राउस एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। रेल मंत्री रहते टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ लेने का मामला।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में दस्तक भारत की दुनिया को धमकी, ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज रात भारत पहुंच रहे हैं। ये ब्रिक्स की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और देर रात व्लादिमीर पुतिन दिल्ली समिट में, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी। जो खबर आ रही है लगभग 1:30 बजे, रात 1:30 बजे व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचेंगे। और हालांकि शी जिनपिंग भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले अगर पहुंच रहे हैं तो पुतिन पहुंच रहे हैं और वो 1:30 बजे यहां पहुंच जाएंगे। अभी तक जो खबर आ रही है, पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि 3:30 बजे कल पुतिन और मोदी जो द्विपक्षीय बैठक होगी उसमें क्या बातचीत होती है, क्योंकि रूस इस समय यूक्रेन युद्ध से जूझ रहा है। लेकिन अमेरिका को देखते हुए भारत का ये दौरा, ब्रिक्स में उनका शामिल होना और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी द्विपक्षीय वार्ता काफी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति भी आ रहे हैं। तो तीन महाशक्तियों का ये मिलन दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस ब्रिक्स सम्मेलन पर लगी हुई है, मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात पर। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं। अमेरिका को चिंता तो हो रही होगी प्रणय, लेकिन पूरी दुनिया किस दृष्टि से मोदी, जिनपिंग, पुतिन की मुलाकात को देख रही है ब्रिक्स में?
1: निश्चित रूप से बहुत सारी जिज्ञासा की नजरें होंगी कि अगर चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति एक साथ एक मंच पर बैठते हैं तो क्या तय करते हैं, किस तरीके की साझेदारी की बातचीत होती है, खासतौर पर ऐसे समय में जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था एक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। लेकिन अगर हम द्विपक्षीय एजेंडा की बात करें सही, तो भारत और चीन के मुद्दे अलग हैं, भारत और रूस के संबंधों के मुद्दे अलग हैं। रूसी राष्ट्रपति सबसे पहले आ रहे हैं, उनसे मुलाकात भी होगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिश्केक में हुई अपनी बातचीत की कड़ियों को आगे बढ़ाएंगे। भारत की जमीन पर बीते करीब एक साल के दौरान ये दूसरा मौका होगा जब रूसी राष्ट्रपति भारत आ रहे होंगे और ऐसे में कोशिश होगी कि भारत और रूस की जो द्विपक्षीय साझेदारी का एजेंडा है उसे बढ़ाया जाए आगे, यानी हथियारों के सौदे और कारोबार से जाल लाके द्विपक्षीय जो कारोबार घाटा है उसको कम करने तक।
0: बहुत धन्यवाद प्रणय। प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता। व्लादिमीर पुतिन रात 1:30 बजे भारत पहुंच रहे हैं। और अब खबर नई दिल्ली में शुरू होने जा रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की, जब युद्ध, प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे। ये देश विश्व की करीब आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही कारण है कि ब्रिक्स की कूटनीतिक धमक दुनिया में बढ़ी है। लेकिन इस ब्रिक्स में दुनिया की निगाहें भारत, रूस और चीन की त्रिशक्ति पर टिकी हैं। ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों भारत आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिनपिंग और पुतिन दोनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठक है।
2: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
3: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपी स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
2: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है। लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए। वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हमारे देश भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल बाद 2020 में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी, खटास पैदा कर दी थी। भारत के मुंहतोड़ जवाब से चीन को यह समझ में आ चुका है कि सैन्य शक्ति के दम पर भारत के साथ सीमा विवाद का हल नहीं निकलेगा और इसलिए दोनों देशों के बीच लगातार तनाव खत्म करने के लिए डिप्लोमेसी की टेबल पर बातचीत चल रही है। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में घुली खटास में मिठास घोलने और जोड़ने से लेकर इसे आगे तक देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: बीजेपी के उपाध्यक्ष राम माधव ने भी आज तक के ब्रिक्स राउंड टेबल में बताया कि आज भारत को कैसे ग्लोबल डिप्लोमेसी में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है. चीन को लेकर भारत की रणनीति क्या है?
5: इसमें जो दो बहुत प्रमुख आवाजें हैं, एक भारत एक चाइना. हमारा रिश्ता एक तरफ उस एलएसी के आर पार जो भारत और चीन के बीच नजर आता है, अनरिजॉल्व मुद्दे जिसको लेकर लगातार बातें हो रही हैं. ये उम्मीद कि गलवान के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति बैठेंगे तो बहुत सारी गांठें वहां पर भी और सुलझेंगी. हमारा रिश्ता कैसा है सर? ब्रिक्स के भीतर सहयोग और ब्रिक्स से पार हम देखें तो टकराव.
6: फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स कोई बायलेटरल फोरम नहीं है, सो बायलेटरल इश्यूज का ब्रिक्स में कोई स्थान नहीं है. देशों के बीच हो सकते हैं इश्यूज, हो सकते हैं हमारा चीन के बीच इश्यूज है, उनका प्लेटफॉर्म अलग है. एंड वी आर वेरी क्लियर, बोथ इंडिया एंड चाइना, वी बोथ कंट्रीज आर वेरी क्लियर दैट द इश्यूज बिटवीन अस विल प्योरली बी डेल्ट विथ एट द बायलेटरल लेवल. ब्रिक्स उसका कोई फोरम नहीं है. ब्रिक्स के फोरम पर उन मुद्दों को उठाना भी नहीं होता है. ब्रिक्स टॉक्स अबाउट द लार्जर इश्यूज ऑफ ग्लोबल साउथ, इट्स द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ. रही बात बायलेटरल की, है हमारे दोनों देशों के बीच कुछ बॉर्डर को लेकर, ट्रेड को लेकर इश्यूज है, बट एट द सेम टाइम हम दोनों देशों के बीच एक स्ट्रांग ट्रेड रिलेशनशिप भी है. आई एम श्योर वी ऑल नो दैट इंडियाज ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना इज $159 बिलियन. देयर ऑल्सो वी हैव एन इश्यू इन दिस $159 बिलियन ट्रेड. ट्रेड डेफिसिट इज मोर देन $100 बिलियन. आई मीन अवर एक्सपोर्ट्स एंड अवर इम्पोर्ट्स, ए ह्यूज मिसमैच एग्जिस्ट. So we have been trying to, increase our exports to China so that there can be some trade balance. In that, China has to take a few steps, a few measures. They have to ease their restrictions, trade restrictions. These are the things on which also lot of negotiations are going on border. Of course, we have a border commission headed by our NSA on our side and foreign minister on their side. They keep talking and decent talks happened just last week in Beijing.
4: जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता संभव है तो कल व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत तो होगी ही. 9 महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे तो रक्षा समझौतों की दृष्टि से भी दोनों की यह मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है.
7: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है। पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था। युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
8: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा, जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
4: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे रूस पर यूक्रेन भारी, महायुद्ध जारी। आप देखते रहिए दशक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
13: Shabbat!

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: टाटा
6: AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: EU सोच बदलो और बैंक भी।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: देखे जन्म पहला पहला कदम।
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with
5: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
6: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है।
7: सत्य निकेतन एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जहाँ पे एक बिल्डिंग ढही, लेकिन लाखों ऐसी हैं जहाँ खतरे की घंटी बज रही है।
8: कि करीब 2 या 3 लोग और हो सकते हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हों।
9: अमानवीयता की हद ये है कि जब बिल्डिंग गिरती है, छात्र उसमें फंस जाते हैं, छात्रों की मौत हो जाती है, तो ये मौके से फरार हो जाता है।
10: हरिराम बंसल और उनका परिवार फरार है।

0: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है। नेपाल का बैराजों से छोड़ा गया पानी बहराइच होते हुए जब बाराबंकी पहुंचा तो घाघरा नदी की धारा ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी अपने पार से आगे निकलकर गांवों को कटान करने लगी और इसी कटान की चपेट में बाराबंकी के 75 गांव हैं। बाराबंकी के हेतमापुर गांव की इस इमारत को देखिए, यहां टेलीफोन एक्सचेंज था लेकिन घाघरा नदी के कटान से ये इमारत ढह गई। इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। जिनके घर अभी घाघरा से बचे हुए हैं वो लोग भी सहमे हुए हैं क्योंकि घाघरा नदी तेजी से रास्ता बदल रही है। लहरें कब, कहां, किस तरफ से आए कोई नहीं जानता, इसीलिए लोग खुद ही अपने आशियाने से जरूरी सामान निकाल रहे हैं ताकि जब पानी उतर जाए तो फिर से छत बनाई जा सके। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। प्रशासन का दावा है कि जिनके घर बार नदी में समा गए हैं उनकी मदद का प्लान शासन ने तैयार कर रखा है। सीएम आवास योजना के तहत नया मकान बनवाने का भी दावा है। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिलग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सबर श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
1: घर में पानी, पानी के ऊपर तखर और उस पर पढ़ाई करते बच्चे, ये है बिहार का जिला भोजपुर। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है लेकिन भोजपुर के बडरा ब्लॉक के 22 गांव की हालत कुछ ऐसी ही है।
2: घर में पानी घुस गया है, बहुत पानी घुस गया है घर में, बहुत डूबा डूबा पानी हो रहा है। जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धरे घर में वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
3: सहायता कुछ नहीं मिला, जिला प्रशासन
4: कुछ ना सर, कुछ ना, कोई आवते नहीं खे ना, कुछ ना लाभ ना कुछ।
5: तबीयत खराब बा, हमारे धड़कन उठा, कोई आदमी नहीं खे, कोई जावे वहाँ में भवन जो।
1: गांव के गांव पानी में डूब गए, घरों में पानी भर गया। नए लोगों के लिए तो ये पता लगाना मुश्किल है कि सड़क कहाँ है और नाली कहाँ। लोगों के घरों में पानी घुस गया। आंगन में जहाँ पूरे परिवार और आस पड़ोस का मजमा लगता था वहाँ कई फीट तक पानी भरा है। छोटे बच्चे जिन्होंने शायद अभी स्कूल जाना शुरू ही किया था वो गाँव में पानी भरने से अब स्कूल नहीं जा पा रहे।
2: कैसे कैसे जी रहा है हम लोग, बहुत परेशानी है हम लोग के, बहुत तड़प रहा है, खाना बिना, पीना बिना, और चीज बिना, दवा बिना, बीरो बिना, क्या करूं हम लोग। सरकार के कोई फिक्र नहीं है, जब वोट लेने के होते हैं वो घड़ी अपने।
6: देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं जब मॉस्को से राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, ठीक उसी समय यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में रूस का आलिशान और पुतिन की सबसे पसंदीदा शहर बारूद से धधक उठा। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के आर्कटिक इलाके में पूरे 3200 किलोमीटर अंदर घुसकर भी तबाही मचा दी। यूक्रेन ने न सिर्फ इन हमलों की जिम्मेदारी ली है बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि उसके ड्रोन कितने घातक हैं। बड़ी बात तो यहां पर यह है कि रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर हमले उस समय और तेज कर दिए हैं जब ट्रंप इस कोशिश में लगे हैं कि किसी भी तरह से युद्ध रुक जाए। तो आइए आपको दिखाएं रूस और यूक्रेन का युद्ध अब कहां तक जाएगा, आखिर पुतिन और जेलेंस्की के दिमाग में चल क्या रहा है।
7: ब्रिक्स सम्मेलन से पहले रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले। रूस पर यूक्रेन का घातक वार, 3200 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन अटैक। पुतिन के पसंदीदा शहर पर ज़ेलेंस्की ने की बमबारी। यूक्रेन का घातक ड्रोन रूस के लिए बनेगा काल। युद्ध रोकने की ट्रंप की कोशिशों पर ज़ेलेंस्की ने फेरा पानी। जब रूस के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, ठीक उससे पहले यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से जैसे रूस में तबाही मचाकर रख दी है। अब ये पुतिन के उन हमलों का पलटवार है जो रूस ने मॉस्को और कीव यात्रा से ट्रंप के दो शांति दूतों के लौटते ही करवाए। पुतिन ने कीव पर हमलों में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए, तो अब ज़ेलेंस्की अपने ड्रोन की पावर पुतिन को दिखा रहे हैं। 9 सितंबर की रात यूक्रेन ने रूस के मशहूर ब्लैक सी रिसोर्ट शहर सोची में ड्रोन से हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के समुद्री ड्रोन ने सोची के तट और पोर्ट इलाके को निशाना बनाया। हमले के बाद तट के पास आग और धुएं के वीडियो सामने आए। रूसी अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 8 लोग घायल हुए और पोर्ट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा।

0: आसमान में ड्रोन और जमीन पर धमाकों की आवाज गूंज रही थी। सोची के एडलर इलाके में एक तेल डिपो में आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक तेल भंडारण सुविधाओं में लगी आग का असर इतना बड़ा था कि आसमान में कई किलोमीटर दूर तक काला धुआं दिखाई दिया। इस हमले का असर सोची एयरपोर्ट पर भी हुआ। एयरपोर्ट पर करीब 11 घंटे तक उड़ानों पर पाबंदियां रहीं। कई उड़ानें देर से चली, कुछ को दूसरे शहर की तरफ मोड़ना पड़ा और विमान में ईंधन भरने पर भी रोक लग गई। यानी हमला सिर्फ सैन्य ठिकाने तक सीमित नहीं रहा, इसका असर आम लोगों, यात्रियों और शहर की ईंधन व्यवस्था तक दिखाई दिया। कुछ रिपोर्ट्स में सोची के करीब सीरियस इलाके में मौजूद एयर डिफेंस ठिकाने को निशाना बनाए जाने की बात कही गई। कुछ ओपन सोर्स विश्लेषणों में यहां S-300 या S-400 सिस्टम की मौजूदगी का दावा किया गया। आपको बता दें कि काले सागर के किनारे बसा सोची रूस के सबसे मशहूर पर्यटन शहरों में से एक है। 2014 में सोची में विंटर ओलंपिक हुआ था। पुतिन के दौर में सोची को रूस की आधुनिकता, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रतिष्ठा के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया। यही नहीं, सोची राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बेहद करीब से जुड़ा शहर है और यही वजह है कि सोची पर लगातार हो रहे यूक्रेनी हमले का संदेश काफी बड़ा माना जा रहा है। यूक्रेन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा, रूस के भीतर दूर दराज के इलाके भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब युद्ध को खत्म करने की कोशिशों के बीच शांति वार्ता को फिर से आगे बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने रूस और यूक्रेन का दौरा कर दोनों पक्षों से बातचीत की थी। इसी बीच 9 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई बातचीत को अच्छा बताया है।
1: Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
2: What is the hold up?
1: The hold up is two people that hate each other.
2: What gives you confidence?
1: I think more than anything else, it's two people that hate each other.
2: What exchange that gives you confidence?
1: I think that because I speak to people, that's all I do is speak to people my whole life. I know about deals, and these are two people that are tired of fighting.
2: Are you going to try to set up a bilateral meeting?
1: It could happen. We had a good conversation. It could happen.
0: ट्रंप युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं और जेलेंस्की अब रूस में 3200 किलोमीटर अंदर घुसकर हमले कर रहे हैं। जी हां, यूक्रेन के घातक ड्रोनों ने रूस के सुदूर उत्तर में स्थित आर्कटिक क्षेत्र के यामालो-निनेट्स स्वायत्त इलाके में धावा बोला। निशाना बने रूस के सबसे महत्वपूर्ण गैस प्लांट नोवी ओरेंगोए और पुत्सर्की। इसे यूक्रेन का रूस पर सबसे लंबी दूरी वाला हमला बताया जा रहा है। यामालो-निनेट्स क्षेत्र में रूस की 80% प्राकृतिक गैस है। गैस कंडेंसेट से मिलने वाला अरबों डॉलर रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद करता है। यूक्रेन के फायर पॉइंट ड्रोनों ने 3200 किलोमीटर दूर इस ठिकाने पर सटीक निशाना साधा। ये हमला राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक झटका है। यामालो-निनेट्स वही इलाका है जहां से रूस की कुल प्राकृतिक गैस का लगभग 80% हिस्सा निकलता है। ये दोनों प्लांट पुतिन की बनी मशीन कहे जाते हैं, जिनसे मिलने वाले अरबों डॉलर के राजस्व से रूस अपने युद्ध का बजट चलाता है। यूक्रेनी हथियारों ने इसी आर्थिक रीढ़ को ठप कर दिया है। अब तक क्रेमलिन का मानना था कि साइबेरिया और आर्कटिक के ये सुदूर इलाके युद्ध क्षेत्र से हजारों किलोमीटर दूर होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित सेफ जोन है, लेकिन यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनी फायर पॉइंट के ड्रोनों ने बिना पकड़े गए इतनी लंबी दूरी तय कर साबित कर दिया कि रूस का कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। विशालकाय रूस के लिए अपने हर एक गैस और सैन्य ठिकाने पर एयर डिफेंस लगाना व्यवहारिक रूप से नामुमकिन साबित हो रहा है। रूस पर हुए हमलों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की पीठ थपथपाई है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले 24 घंटों में हमारे सैनिकों ने युद्ध में मदद करने वाले रूस के 8 इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर हमला किया। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि क्योंकि मैं हर उस सैनिक और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से हमारी लंबी दूरी तक मार्च करने की क्षमता और सटीक निशाना लगाने

0: करने की काबिलियत मुमकिन हो पाई है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने 5 पॉइंट FP1 ड्रोन से रूस पर ताजा हमले किए हैं। ये एक लंबी दूरी का कम लागत वाला कामिकाजे यानी सुसाइड ड्रोन है जो रूस के अंदर 3200 किलोमीटर तक के गहरे ठिकानों पर सटीक हमला करने में सक्षम है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से पहले रूस ने और अब यूक्रेन ने एक दूसरे पर घातक हमले किए हैं, ऐसे में ये जंग जो अब अपने 5वें साल की ओर बढ़ रही है उसके बंद होने के आसार नहीं दिखते। ज़ेलेंस्की खौफनाक धमकी दे रहे हैं और पुतिन ने यूक्रेन को आतंकी देश बताकर बातचीत के दरवाजे ही बंद कर दिए हैं।
1: Зеленский заявил, что нам небезопасно летать.
2: Да, ну послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да, а второе в этой же части.
0: इस बीच खबर ये भी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरते समय एक अज्ञात ड्रोन से टकराते बाल बाल बच गया। ज़ेलेंस्की नॉर्वे के दिवंगत राजा हेरल्ड पंचम के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ओस्लो जा रहे थे, तभी उनकी सुरक्षा में ये गंभीर चूक सामने आई। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे ने बुधवार को सरकारी प्रसारक NRK से बातचीत में इस घटना की पुष्टि की और कहा कि ये यूक्रेनी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान बने सुरक्षा खतरे की गंभीरता को दिखाता है। आज तक ब्यूरो।
3: खबर अमेरिका और ईरान युद्ध के चुनावी एंगल की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया है कि मिड टर्म चुनाव खत्म होते ही ईरान युद्ध भी खत्म हो जाएगा। ट्रंप का आरोप है कि मिड टर्म चुनाव में उनकी पार्टी को हराने के लिए ईरान प्लान के तहत युद्ध को लंबा खींच रहा है। तो क्या ईरान की रणनीति सिर्फ युद्ध के मैदान में ट्रंप को हराने की नहीं बल्कि अमेरिका में चुनाव युद्ध में भी ट्रंप को हराने की है?

0: ईरान अमेरिका युद्ध से चुनाव का नया एंगल। ट्रंप बोले मिड टर्म चुनाव बाद खत्म होगा युद्ध। मिड टर्म चुनाव तक जंग खींचना चाहता है ईरान। ईरान का प्लान मिड टर्म चुनाव में ट्रंप की हार। नवंबर से पहले ट्रंप करेंगे सबसे बड़ा हमला। ईरान का परमाणु ठिकाना है ट्रंप का निशाना। एक बार नहीं 100 बार अमेरिकी राष्ट्रपति ऐलान कर चुके हैं कि युद्ध में ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन जंग के मोर्चे पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले सबूत हैं कि ट्रंप के दावे में कोई दम नहीं। अमेरिका ने चंद घंटे पहले ईरान के 5 तेल टैंकरों को निशाना बनाया तो ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई। एक नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। अब ईरानी सेना ने अमेरिका को खुल्लम खुल्ला धमकी दी है। धमकी ये कि अमेरिका के एक हमले के बदले ईरान 10 हमले करेगा, यानी ईरान पर अमेरिका के एक हमले का बदला ईरान 10 ठिकानों पर बमबारी करके लेगा। रणनीतिक जल्दबाज पर ईरान की शक्ति, अधिकार और प्रबंधन अब सबसे बड़ी सच्चाई है। ईरान इस क्षमता का इस्तेमाल दुश्मन के आक्रमण का जवाब देने के लिए करेगा। ईरान की इजाजत के बिना हुर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। सच्चाई यही है कि अमेरिकी युद्धपोत हुर्मुज से कम 400 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। हमने कुछ दिन पहले करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर एक विमान वाहक पोत पर भी हमला किया था। हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां अगर दुश्मन हमारे 2 या 3 ठिकानों पर हमला करता है तो हम 20 ठिकानों पर जोरदार जवाबी हमला करेंगे। ईरान के इस बारूदी प्रहार पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध को लेकर नया एंगल जोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि मिड टर्म चुनाव को प्रभावित करने के लिए ईरान युद्ध को लंबा खींच रहा है। ट्रंप की माने तो जैसे ही अमेरिका में होने वाले मिड टर्म चुनाव के नतीजे आएंगे वैसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा।
1: I think the war is going to end immediately after the election. I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
0: अमेरिका में इसी साल नवंबर महीने में मिड टर्म चुनाव होने वाला है। अमेरिका के चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव में ईरान युद्ध का असर दिखेगा, क्योंकि बीते कुछ महीने में हुए तमाम सर्वे यही बताते हैं कि ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी नागरिकों का खुला सपोर्ट नहीं है। यही नहीं, ईरान युद्ध के बाद से हुए तमाम सर्वे ट्रंप की लोकप्रियता के ग्राफ में लगातार गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब यही है कि ट्रंप को भी मिड टर्म चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि मिड टर्म चुनाव से ठीक पहले ट्रंप ने वोटरों को $5,000 देने का ऐलान किया है। शर्त यही है कि उनकी पार्टी जीती तो अमेरिका के सभी बालिकों के खाते में $5,000 सरकार देगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव में ईरान की एंट्री करवाकर ट्रंप वोटरों को ये संदेश दे रहे हैं कि युद्ध के पीछे बड़ा खेल है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर यही दावा किया है कि युद्ध में अब ज्यादा दिनों तक ईरान नहीं टिकेगा।
2: A nuclear weapon right now, and I would be addressing them as Supreme Leader. Mr. Supreme Leader, sir, how are you? But now I don't have to do that. If they had a nuclear weapon, I'd be calling the Supreme Leader, and I'd be saying, Mr. Supreme Leader, how are you, sir? Is there anything we can do for you? As opposed to bombing the crap out of them.
3: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में ईरान का परमाणु ठिकाना क्यों घूम रहा है? क्या अब ट्रंप ईरान के एटमी सेंटर पर सबसे बड़ा हमला करेंगे? ट्रंप का प्लान परमाणु सेंटर क्या है? समझते हैं ईरान अमेरिका वॉर को कवर कर रहे हमारे संवाददाता सुमित चौधरी से।
4: डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पिक्सेक्स माउंटेन को लेकर बड़ी धमकी दी है, लेकिन आखिरकार इस माउंटेन्स को लेकर इतनी बातचीत क्यों हो रही है? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरकार ये पिक्सेक्स माउंटेन है क्या जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। ये है वो माउंटेन, पिक्सेक्स माउंटेन, जिसकी बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। ये दरअसल नतांस के बेहद करीब, यानी 2 किलोमीटर के बेहद करीब, और इस्फहान के बहुत करीब पड़ता है, यानी बीच में नतांस और इस्फहान के। दरअसल इस समय 3 ऐसी फैसिलिटीज है जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स मानी जाती है, जिसमें इस्फहान, नतांज और फोर्दो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है फोर्दो और इस्फहान के बीच का ये इलाका जहां पे इनरिच यूरेनियम को रखा गया। सबसे पहले आप देखिए कि आखिरकार ये पिकेक्स माउंटेन है क्या। ये आप देखिए, ये समुद्र की ऊंचाई से करीबन 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये इलाका है, यानी जो माउंटेन है ये इस इलाके में मौजूद है, जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर ये इलाका है। अब जो इस इलाके की सबसे खास बात ये कि ये पिकेक्स माउंटेन के नीचे है यूरेनियम को इनरिच करने की, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करने की, उसको असेंबल करने की वो फैसिलिटी जिसको लगातार अमेरिका टारगेट करना चाहता है। ये दरअसल इलाके यानी ये जमीन से करीबन 100 मीटर की दूरी पर है। इस समय अमेरिका के पास जितने हथियार मौजूद है, जितने बॉम्ब्स मौजूद हैं, उनकी जो मारक क्षमता है किसी भी बॉम्ब की अगर आप करें, B-2 बॉम्बर्स में अगर इस्तेमाल होने वाले आप GBU-57 या किसी की क्षमता जो है वो 18 से 20 मीटर या फिर आप मैक्सिमम कह सकते हैं 40 मीटर या 50 मीटर के होती है, लेकिन इसकी जो इसकी आप कह सकते हैं जो इसकी ये फैसिलिटी है ये 100 मीटर के नीचे मौजूद है। यानी इससे पहले ग्रेनाइट और आप कंक्रीट की 100 मीटर की बड़ी चादर है जिसको भेद पाना किसी के लिए भी, किसी बॉम्ब के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आप करें तो ये भूमिगत हॉल है जहां पर यहीं पर इनरिच यूरेनियम को रखा जाता है, उसको असेंबल किया जाता है और उसकी प्रक्रियाओं को परखा जाता है। अब लगातार डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर धमकियां दे रहे हैं, लेकिन 2020 के बाद से ही ईरान ने इन जगहों पर अपने सारे इनरिच यूरेनियम को शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। इन फैसिलिटीज को पहले ही डेवलप कर लिया गया था और इन टनल्स में ऐसा नहीं सिर्फ एक ही टनल है, मल्टी टनल्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया। और ये पूरी फैसिलिटी आपको भले ही मैप में बहुत छोटी नजर आ रही हो, लेकिन ये कई किलोमीटर में फैली हुई फैसिलिटीज हैं। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी, अमेरिका चाहकर भी इनको बर्बाद नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ से कोशिश पहले भी की गई थी, उसने लगातार फोर्दो, इस्फहान और नतांज में अटैक किए, लेकिन फिर से इन जगहों पर अटैक करना उसके लिए काफी नहीं साबित हुआ।
3: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद अ कोलर स्पा एट होम। No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Papa!
9: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
9: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
9: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
8: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
9: अभी तो चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: In association with Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: यूपी के चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के बाद काशी का रुख किया तो एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया।
1: पहले घर से बाहर निकलने में लोग डरते थे, बेटियां डरती थी, माताएं डरती थी, बहनें डरती थी। आज नहीं, ये कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने तो पहले कह दिया है बेटी की सुरक्षा में, बहन की सुरक्षा में सेंध लगाए तो मतलब दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगी। हम उन लोगों में नहीं है कि वोट बैंक के लिए किसी माफिया के सामने गिड़गिड़ाएं।
0: उधर गोरखपुर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ हंगामे की तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं, जिस पर एक पुलिस वाला छात्रों को धमकी देता नजर आ रहा है।
2: बता दे रहा हूँ, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, इतनी फोर्स मंगाऊंगा, कर दूंगा। गोरखपुर पुलिस है, मैं बता दे रहा हूँ।
0: अब अखिलेश इन तस्वीरों को देखकर योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। अधिकारियों पर अखिलेश ने सवाल खड़े किए तो बीजेपी ने अखिलेश के अधिकारियों के साथ वीडियो जारी करते हुए लिखा कि सत्ता गई लेकिन अकड़ नहीं गई।
3: पुलिस वालों क्यों कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता।
0: उधर झांसी में एक अपहरण का जिक्र करते हुए ओपी राजभर अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं।
4: तो पहले देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या बोल रहे थे, सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को छोड़ा था। तो इनकी बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, अब इलाज की जरूरत है।
0: यूपी में चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घमासान जारी है, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। आज तक ब्यूरो।
5: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु राम के सामने हैं। उन्होंने विधिवत रामलला के दर्शन किए, पूजा आरती की। इस दौरान उनके साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र भी नजर आए। देखिए किस तरह से राम मंदिर प्रांगण में सीईओ जितेंद्र मिश्र के साथ योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। जितेंद्र मिश्र के सीईओ बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार निशाना साधा।
6: समाजवादी पार्टी का एक चेहरा तो अभी था जो उन्होंने प्रभु राम का विरोध किया था, अयोध्या में राम मंदिर न बने इसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी लगा दी थी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तब एड़ी चोटी लगा दिए थे, इन्होंने तब आंदोलन किया था और राम भक्तों पर गोली चलाई थी, न्यायालय में अपनी वकीलों की फौज खड़ी की थी राम मंदिर के विरोध में, भारत की सनातन आस्था के खिलाफ। लेकिन विरासत का भी ये विरोध करते हैं और विकास का भी विरोध करते हैं।
5: समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने से पहले योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सौगात दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 8,000 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। वहीं सहायिकाओं को 4,000 की जगह 6,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 5,00,000 रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही अतिरिक्त साड़ी के लिए भी राशि दी जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक गैर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: रूसी राष्ट्रपति पुतिन शनिवार को शी जिनपिंग का होगा आगमन। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई है राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 24,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुइसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा तुरंत। कांग्रेस ने भी की घेरेबंदी। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बड़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की बहू शालू ने अपने ससुर के कत्ल के बारे में क्या कुछ कहा है वो आपको बताऊं। उससे पहले आज वारदात में बात तीन अदालतों के चार फैसलों की। इनमें से हर फैसला कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ने अलग अलग मामलों में फैसले सुनाते हुए जो कुछ कहा वो आने वाले वक्त में सुधार की तस्वीरें दिखा रहा है।
2: हमारे देश में कुल तीन तरह की अदालतें हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब अगर तीनों कोर्ट लगभग एक साथ या थोड़ा आगे पीछे कुछ ऐसे फैसले सुनाएं या फैसले के साथ टिप्पणी करें जो अमूमन सुनने देखने को नहीं मिलते, तो या तो इसे हम इत्तेफाक कहेंगे या बदलता दौर। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सबसे बड़े जज अगर ये कहें कि मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई नोटिस जारी करने की, तो कानों के लिए ये आवाज भी नई है और सुनने में भी थोड़ा अलग लगता है। अगर किसी राज्य के हाई कोर्ट से ये हुक्म आए कि किसी लड़की की गलत तौर पर की गई गिरफ्तारी के लिए डीएम की तनख्वाह से पैसे काट कर उसे दिए जाए और डीएम के सर्विस बुक में उनकी इस कोताही का जिक्र भी किया जाए, तो ये भी सुनने में थोड़ा हटकर लगता है। अगर वही हाई कोर्ट चार लोगों को अवैध रूप से थाने में 10 दिनों तक बंद रखने के लिए एसपी को डांट लगाए और एसएचओ की तनख्वाह से पैसे काट कर उन चारों में बांटने का हुक्म दे, तो ये भी सुनने में नया नया सा लगता है। अगर देश की सबसे निचली अदालत का कोई जज सिर्फ 5 महीने में 23 लोगों को फांसी की सजा सुना दे और फिर ये कहे कि माफिया या गुंडों से डर कर जीने की बजाय मरना बेहतर है, लेकिन इंसाफ का कलम टूटने नहीं देंगे, तो इसे सुनकर भी ऐसा लगता है मानो अदालतें बदल रही है, जैसे बदलाव का प्यार बहने लगा है। शुरुआत देश की सबसे बड़ी अदालत से। कुछ वक्त पहले जंतर मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो आपको याद होगा। बाद में आंदोलन में शामिल बहुत से छात्रों पर अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में खुद सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर वापस लेने का फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के एक स्टूडेंट अक्षत त्रिपाठी को ग्रेटर नोएडा की कार्यकारी मैजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी कर दिया। इसी नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बाली ने कहा कि उनके आदेश के बावजूद मजिस्ट्रेट की हिम्मत कैसे हुई नोटिस जारी करने की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्यकारी मैजिस्ट्रेट से इस बाबत स्पष्टीकरण भी मांग लिया। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन से पहले इसी साल अप्रैल में नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में मजदूरों का एक आंदोलन हुआ था। उसी आंदोलन को भड़काने के इल्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। आकृति पर रासुका नोएडा की डीएम के हुक्म पर लगाया गया था। आकृति करीब 5 महीने तक जेल में रही, लेकिन इसी महीने की 2 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ डीएम और नोएडा प्रशासन को फटकार लगाई, बल्कि आकृति से रासुका हटाते हुए आकृति को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म भी दिया। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने कहा कि ये 5 लाख रुपए डीएम मेधा रूपम के वेतन से वसूला जाए। इस बारे में तो कहना ही क्या, इसके लिए तो देश भर की पुलिस और थाने बदनाम है। किसी केस में किसी को भी उठा लें और बिना कोर्ट में पेश किए कई कई दिनों तक गैर कानूनी तरीके से थाने में ही बिठाए रखें। यूपी के देवरिया में ऐसा ही एक मामला हुआ। देवरिया के गौरी बाजार थाने में इसी साल अप्रैल में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी हत्या के सिलसिले में पुलिस 4 लोगों को उठाती है और उन्हें 13 से 24 अप्रैल के बीच 4 दिनों से लेकर 10 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखती है। न कोर्ट में उनको पेश किया जाता है, न डायरी में एंट्री। इनमें महिला भी थी। बाद में इन्हीं 4 का एक जानकार इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। पहले तो पुलिस इस बात से ही मुकर जाती है कि उसने किसी को अवैध रूप से हिरासत में रखा। फिर जब अदालत पुलिस से कहती है कि ठीक है, उन तारीखों के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में लाइए, यहीं पुलिस फंस जाती है। कोर्ट को बताती है कि सीसीटीवी कैमरा तो खराब है। हाई कोर्ट को गुस्सा आ जाता है। अब वो सीधे एसपी और एसएचओ को कोर्ट में पेश होने के लिए कहती है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। एसपी और एसएचओ को डांटते हुए ये कहता है कि इतनी लापरवाही बरते जाने के बाद भी एसएचओ को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। इस पर तुरंत एसपी अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हैं। मगर कोर्ट से माफी मांगने की बजाय एसपी से ये कहता है कि माफी मांगनी है तो उन 4 से मांगे जिन्हें गैर कानूनी तरीके से थाने में रखा गया था। इसके बाद अदालत 4 पीड़ितों को 65,000 रुपए मुआवजा देने का भी हुक्म देती है। कोर्ट ये भी हुक्म देता है कि मुआवजे की रकम एसएचओ की तनख्वाह से वसूली जाए।
3: उत्तर प्रदेश के देवरिया में 5 माह पूर्व एक हत्या के मामले में गलत तरीके से 4 लोगों को हिरासत में लिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। हम इस समय मौजूद हैं गौरी बाजार थाने में, जहां का यह मामला है। 5 महीना पूर्व एक इसी क्षेत्र में हत्या हुई थी, जिसमें कई लोगों को हिरासत में रखा गया था, कुछ लोगों को जेल भेजा गया था, लेकिन 4 लोगों को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया था, जिसके बाद उस पक्ष ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने देवरिया पुलिस को फटकार लगाते हुए 65,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।
2: यह मुजफ्फरनगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रवि कुमार दिवाकर है। ये अपने फैसले को लेकर इन दिनों सुर्खियों में है। ये वो जज है जिन्होंने सिर्फ 5 महीने में 23 लोगों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि अब तक अपने 17 साल के कार्यकाल में कुल 36 लोगों को मौत की सजा सुना चुके हैं। इनके इस कड़े फैसले के चलते ही इन्हें लगातार माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों से धमकियां मिल रही हैं। लेकिन जज रवि कुमार दिवाकर का कहना है कि वो मरना पसंद करेंगे, डरपोक जज कहलवाना नहीं। अभी हाल में ही उन्होंने फिर से एक अपराधी को फांसी की सजा सुनाई और उसी फैसले में उन्होंने ये भी लिखा कि जब तक मैं अपने उसूलों पर चल सकता तब तक सर्विस करूंगा, वरना इस्तीफा दे दूंगा। जब तक जज की कुर्सी पर हूं तो फैसला लेने का अधिकार सिर्फ मेरा होगा। देश की अदालतों के ये नए तेवर और इस तरह के फैसले उम्मीद जगाते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायिक व्यवस्था और ज्यादा मजबूत और ताकतवर बनकर उभरेगा। इस तरह के फैसले न सिर्फ सरकार, सरकारी अफसर, बल्कि अपराधियों के लिए भी नजीर बनने लगेंगे। देवरिया से राम प्रताप सिंह और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की बहू शालू ने कहा है कि उसने अपने ससुर का कत्ल नहीं किया है, बल्कि उसे इस कत्ल की साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पहली बार शालू से मिलने शालू की बहन और भाई कानपुर जेल गए थे। शालू का परिवार इस बात पर भी हैरान है कि शालू का पति सुब्रत अब तक इस मामले पर खामोश है। उधर कानपुर पुलिस के मुताबिक शनिवार को सुब्रत से पूछताछ हो सकती है।
2: कानपुर के दवा कारोबारी विनीत मिनोचा मर्डर केस में 5 दिन बाद पहली बार शालू का परिवार सामने आया, ये बताने के लिए कि शालू ने अपने ससुर का कत्ल नहीं किया, बल्कि वो तो हादसे के बाद से खुद ही सन्ने है। शालू का परिवार इस बात पर भी हैरान है कि कत्ल के 5 दिन बाद भी शालू का पति और विनीत मिनोचा का बेटा सुब्रत पूरी तरह खामोश है। पत्नी पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सुब्रत एक बार भी न उससे मिला न बात की, यहाँ तक कि शालू के परिवार से भी संपर्क नहीं किया। शालू की बहन और उसके भाई ने शालू को लेकर आज तक से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी शालू की तरफ से पहली बार किसी परिवार के सदस्य का कोई आधिकारिक बयान आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरोपी शालू की बहन और उनके भाई, बात करेंगे उनसे। मैम क्या कहेंगे सबसे पहले जो इस पूरी डेवलपमेंट्स में जो आपके सामने हो रही है, आप मुलाकात भी करके आई हैं, क्या आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या आप लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि शालू जो है वो इस तरीके का काम कर सकते?
5: बिल्कुल भी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं कर सकती ऐसा।
4: तो आप लोग को जो पुलिस की पूरी कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने लगातार साक्ष्य रखे हैं, उनका कहना है कि जो किलर्स हैं उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पे क्या कहेंगे कि क्यों हो रहा है सब पे?
5: ये तो पुलिस बताएगी एंड वी आर ट्रस्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। अभी तो एक पहलू सामने आया है, दूसरे पहलू पे आई एम श्योर दे आर वर्किंग एंड हमें पूरा ट्रस्ट है होगा, सामने आएगा।
4: आपकी बात हुई शालू से आज, आप लोग जेल में उनसे मिल के भी आए हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में?
5: बहुत शॉक्ड है वो, शी इज वेरी शॉक्ड, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हम, शी इज वेरी शॉक्ड।
4: बट वो क्या कह रही है कि क्यों जो क्यों जो
5: उसने नहीं किया है।
4: वर्कर्स उनका नाम ले रहे हैं, उनका शालू का, तो उसके उनका
5: नहीं पता है वो कि क्यों ले रहे हैं, उसे नहीं पता है।
4: आप लोग सामने आए हैं, परिवार पहली बार कोई अपना बात रख रहा है, लेकिन जो शालू के हस्बैंड हैं, जो आपके ब्रदर इन लॉ हैं, वो अभी तक इस पूरे मामले में ना सामने आए हैं। पुलिस की बात करें तो उनका भी कहना है कि अभी तक उनकी तरफ से किसी तरीके का रेजिस्टेंस या फिर सच कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसकी क्या वजह है?
5: वो तो वही वजह जानते होंगे, हम लोग को नहीं पता है। हम लोगों ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी बट उतना नहीं हो पा रहा है, पता चला था जो भी है बट नहीं हो पा रहा है, और हम
4: की बातचीत नहीं हो पा रही है उस पर।
5: नहीं,
4: बट आप लोग क्योंकि परिवार के हैं, उनके हस्बैंड हैं, आपको लगता है उनको आगे आना चाहिए था, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना चाहिए था?
5: अब देखिए आना तो चाहिए था,
6: आना चाहिए था सर, बिल्कुल आना चाहिए था।
4: वही मैं आपको बताऊं, ऐसा दो स्थिति में होता है, या तो इंसान या तो खुद गलत हो या फिर कहीं ना कोई चीजें छुपा रहा हो, या फिर उनके रिश्ते जो हैं वो तीनों कैसे रिश्ते थे आपकी जो बहन है उनसे?
6: बिल्कुल बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं थी,
5: नॉर्मल रिलेशनशिप।
6: वो तो आप लोग कवर कर रहे हो, एक दिन पहले पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, सब रिश्ते ठीक थे।
4: तो आपको कहीं ना कहीं ये अटपटा नहीं लगा कि इतना सब कुछ हो गया, वाइफ को जेल भेज दिया गया और उनका सामने से कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया है, ना उन्होंने ऐसा कुछ पक्ष रखा है कि नहीं हो सकता, क्या कहेंगे
6: सर?
5: सर हम वेट कर रहे हैं कि चीजें हो, आगे आए, बाकी पुलिस आई एम श्योर वो ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो उस पर वर्क कर ही रही होंगी, तो जैसी चीजें होंगी तो आपके साथ साथ हमें भी आंसर मिलेगा।
4: आज जब जेल में मुलाकात हुई, इससे पहले आपकी जो बहन से बातचीत हुई कभी, क्या उन्होंने कभी कुछ ऐसा बताया आपको या फिर अपने ससुर के साथ जो उनके रिलेशनशिप थे आपके हिसाब से कैसे रिलेशन थे?
5: वेरी गुड, जैसा उसने हम लोग को बताया था कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, अंकल भी उसे बहुत पसंद करते थे एंड वो भी इट वॉज वेरी गुड, मतलब हम खुद शॉक्ड हैं कि क्या हो गया है या क्या, जस्ट स्पीचलेस।
4: पुलिस का कहना है कि जो चाबी थी वो भी बना के बकायदा दी गई, इन सब थ्योरीज पे जो पुलिस के सामने आई हैं इस पे क्या कहेंगे?
6: जांच चल रही है सर।
5: सर जांच चल रही है, हुआ होगा तो जांच चल रही है, इस पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट दैट्स ऑल।
4: एक रिलेटिव है जो सुब्रत के, उनके द्वारा ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट दिया गया है कि 6 लाख रुपए की जो बात हुई वो कहाँ से आते हैं। उन्होंने ये सवाल भी उठाए हैं कि क्या जो लड़की पक्ष के जो परिवार हैं क्या वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है ये, उस पर भी जांच होनी चाहिए। उस स्टेटमेंट पे क्या कहेंगे
6: सर? स्टेटमेंट यही है कि जांच चल रही है, अपने आप चीजें सामने आ जाएंगी।
4: बट आपको अटपटा नहीं लग रहा कि सुब्रत के परिवार वाले इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या पता ब्रदर उनकी तरफ से, जो आप लोग के परिवार की तरफ से ऐसा कुछ किया गया हो?
6: खुद ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से आ रहा है, हम पहली बार सुन रहे हैं, तो उन्होंने दिया क्यों है वो अपने आप इस चीज को
5: पुलिस पता लगा ही लेगी, पुलिस पता लगा लेगी अगर
6: ऐसा कुछ
5: है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है आई एम श्योर।
4: तो आप लोग को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे पूरा ट्रस्ट है?
5: हाँ, वो जो कर रही है करेगी, हम वी आर होपफुल कि वो साथ देंगे हमारा। अभी तक एक पहलू सामने आया, दूसरे पहलू पे हम श्योर दे मस्ट बी वर्किंग एंड दे आर वर्किंग, वी आर वेटिंग फॉर दैट।
2: शालू की बहन का कहना था कि वो शालू से जेल में मिलकर आई, जेल में बातचीत के दौरान शालू लगातार यही कह रही कि उसने ये कत्ल नहीं किया है और वो बेकसूर है।
4: कानपुर दवा व्यापारी हत्याकांड में आरोपी शालू के परिवार से पहली बार किसी ने सामने आकर अपना पक्ष रखा। खास बात यह है कि शालू का बचाव उसके पति सुब्रत ने नहीं बल्कि उसके भाई और बहन ने किया। शालू की बहन सोनिया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी बहन इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकती थी और आज सुबह जब जेल में शालू की अपनी बहन से मुलाकात हुई तो वह सदमे में थी और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार विशाल ने उसका नाम क्यों लिया। सोनिया ने सुब्रत के बारे में कहा कि उसका परिवार लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसे में सुब्रत को सामने आकर अपनी पत्नी के बचाव करना चाहिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं शालू के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि सुब्रत की तरफ से उनके साथ कोई संपर्क नहीं साधा गया। वह शालू के भाई और बहन के कहने पर ही उसका केस लड़ रहे हैं। ऐसे में परिवार खुलकर भले ही कुछ ना कह रहा हो लेकिन एक बात तो साफ है कि सुब्रत का सामने ना आना और अपनी पत्नी का बचाव ना करना परिवार को कहीं ना कहीं खटक रहा है।
2: इस बीच शालू के परिवार ने शालू का केस लड़ने के लिए वकील भी रख लिया है। शालू के वकील ने आज तक से बातचीत में ये सवाल उठाया कि सिर्फ आरोपियों के नाम लेने भर से शालू को गुनहगार कैसे ठहराया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है लेकिन शालू बेकसूर है।
4: विनीत मिनोचा, हत्याकांड में आरोपी शालू के वकील शिवाकांत दीक्षित हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे। शिवाकांत जी, केस आपने टेक ओवर किया है, क्या अभी तक पूरा स्टडी किया है और आपके हिसाब से लीगल पॉइंट पे बात करें तो क्या सही गलत किया गया है और क्या गलत हुआ है?
7: देखिए, अभी ये घटना हुए, दुखद घटना हुए, 4-5 दिन हुए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ऐसी स्थिति में कोई भी टिप्पणी करना पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने जैसा है। तो हम भी इन्वेस्टिगेशन पे वेट कर रहे हैं और पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है, नेचुरली वो जो करेंगे वो सही करेंगे। लेकिन इतना हम सभी श्योर हैं, मेरे क्लाइंट्स भी श्योर हैं कि वो इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है।
4: आपका कहना है कि पुलिस जो करेगी ठीक करेगी, लेकिन अभी जब पुलिस रिमांड मांगेगी, पुलिस कस्टडी मांगेगी तो जाहिर सी बात है आप उसको अपोज करेंगे और अपने एक तथ्य भी सामने रखेंगे कि क्यों नहीं किया गया, डिफेंड करेंगे। तो आपके हिसाब से, आपने केस पढ़ा होगा, आपको लगता है कि जो शालू की संलिप्तता दिखाई जा रही है वो उसमें है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें लेकिन आपने भी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन या आपने भी तो कुछ पक्ष रखा होगा, वो क्या है?
7: देखिए, पुलिस क्या करेगी, अभी तक तो पुलिस ने किया नहीं है। जब वो कोई प्रार्थना पत्र देंगे तो उस प्रार्थना पत्र पर बिल्कुल माकूल जवाब देंगे। एक दूसरा ये कि अभी सिर्फ FIR हम लोगों के पास है, FIR और मीडिया। आज मीडिया के सामने जो परिवार आया है उसके पीछे का रीजन सिर्फ इतना था कि मीडिया में एक ऐसा सॉर्ट ऑफ करेक्टर एसेसिनेशन ऑफ सालू। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि सालू का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जिस तरीके की घटनाओं के बारे में कहा जा रहा है ऐसी कोई घटना नहीं है और पुलिस को फ्री हैंड देना जरूरी है, जो हम लोग दे रहे हैं। हम लोग कोई उन पर प्रेशर नहीं कर रहे, पुलिस फ्री हैंड अपना जांच करे क्योंकि इस ये अपने आप में एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि कोई अंदर आकर मार गया और जिन लोगों ने मारा उन्होंने वन शॉट हमारा नाम ले लिया और पुलिस ने हमको बंद कर दिया, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा।
4: इंतजार ठीक है, करेंगे, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो किलर्स हैं उनको जो एंट्री दी गई वो कहीं ना कहीं शालू के फोन के बाद ही दी गई, जो गार्ड ने भी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को, तो क्या पहले से जानती थी? ये तो सबको एस्टेब्लिश हो गया, तो वो क्या रीजन था? आपको क्या बताया आपकी क्लाइंट ने कि वो क्या रीजन था कि उनको एंट्री खुद जो है शालू ने फोन पर करवाई?
7: देखिए, सालू ने एंट्री नहीं कराई, वो हाउस हेल्प थे और वो यूजुअल कोर्स में आते रहते थे। बस ये कि आने से पहले फोन किया तो उनको परमिट किया गया। बाकी उन्होंने आकर ये हत्या की या नहीं की या कैसे हुई और किन सर्कमस्टांसेस में हुई, गार्ड क्या कह रहा है, ये इस पर कुछ भी कहना एक तरह से समझिए इस वेरी डेलिकेट और विवेचना पर असर पड़ेगा।
4: ठीक है, आपका कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, चलिए उस पर बात नहीं करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले तो क्लियर कर दीजिए कि आप शालू को डिफेंड कर रहे हैं कि या जो उनके हस्बैंड है उनकी तरफ से भी?
7: हम देखिए, हस्बैंड को तो अभी अक्यूज बनाया नहीं गया और सालू को अक्यूज बनाया गया। मैं सालू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सालू की फैमिली की ओर से ऑफिशियली टेक ओवर।
8: अच्छा, जैसे परिवार जो है वो सामने आया, आपसे मदद मांगी, आप उनको काउंसिल कर रहे हैं, आप उनको पक्ष जो है वो रख रहे हैं, परिवार तो उनके हस्बैंड भी हैं, सुब्रत भी हैं, क्या उनकी तरफ से कुछ कांटेक्ट किया गया या आप लोग को कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है वो पूरा टाइम उनके साथ में थे, तो एक तरीके से सबूत या पक्ष रखने में वो मदद कर सकते हैं, क्या उनकी तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन आपके साथ?
7: नहीं, ऐसा कोई कांटेक्ट हम लोगों से नहीं किया गया, और इस संबंध में सुब्रत बेहतर बताएंगे कि वो किस स्थिति में, हो सकता है कि वो मेंटल ट्रॉमा में हो सकता है कुछ, क्योंकि उनके फादर की डेथ हुई है। देखिए, किसी के बारे में जज नहीं करना है, हम जज करना नहीं चाहते, और यही हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जज ना करें। जैसे कि आज की जो हेडलाइंस थी कि पार्टी कर रहे थे और हत्या हो रही थी, ये इसका जो एक बहुत नेगेटिव परसेप्शन जाता है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि न्यूट्रल वे में पुलिस को फ्री हैंड, और वो विवेचना करें अगर हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है, अगर ऐसा लगता है, शक के आधार पर नहीं, किसी व्यक्ति के कहने के आधार पर नहीं। अब सुब्रत ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया या किया, या हो सकता है कि वो बहुत से लोगों की अपनी मेंटल पोजीशन इतनी नहीं होती है कि इतनी जल्दी बाहर आए, वो भी एक बेटे हैं और उनके पिता की मृत्यु हुई है, तो इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
8: ठीक है, आपकी बात जायज़ है, लेकिन जब पत्नी के ऊपर इतने बड़ा जो है वो इल्ज़ाम लगे और पहाड़ टूटे, तो लाजमी बात है कि जो सबसे पहले जो होता है पति ही आके डिफेंड करना चाहिए। बट ठीक है, आप उन बातों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, लीगल पॉइंट पे बात करते हैं। एक आखिरी सवाल कि जो आप लोग जाहिर सी बात है उसमें डिफेंड करेंगे, आपका क्या पक्ष है कि जो नाम लिया जा रहा है पुलिस द्वारा, भी बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट में जो आरोपी हैं उन्होंने शालू का नाम लिया है, ये भी उनके द्वारा आधिकारिक तौर पर बताया गया कि शालू ने ये तक कहा था कि अगर पकड़े जाओ तो अपने भैया का नाम लेना, मेरा नाम मत लेना। रीजन मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपके हिसाब से क्या है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे आप सवाल उठा रहे हैं या फिर जो आरोपी हैं उनकी मंशा पे सवाल उठा रहे हैं?
7: देखो भाई, जवाब आपके पास खुद है कि उसने ये कहा था कि मेरा नाम न लेना, भैया का नाम लेना, तो अगर वो सालू का पपेट होता, सालू का हैंड होता, तो नेचुरली वो सुब्रत का नाम लेता। लेकिन उसने सालू का नाम लिया, ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और नाम लेने भर से कोई मुलजिम नहीं हो जाता जब तक कि एम्पल एविडेंस ना हो। ये बार बार मुझे इसलिए कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात स्वयं पुलिस को पता है, और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन होता है, एंड दे हैव 90 डेज टू कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन, एंड दे विल डेफिनेटली डू अ फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन।
2: उधर विनीत मिनोचा के कत्ल के 5 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस ने शालू के पति और विनीत मिनोचा के बेटे सुब्रत से कोई पूछताछ नहीं की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर यानी जांच अधिकारी छुट्टी पर हैं। उनके छुट्टी से लौटने के बाद बहुत मुमकिन है कि शनिवार को सुब्रत से पूछताछ हो। असल में कई ऐसे सवाल हैं जो पुलिस सुब्रत से पूछना चाहती है। विनीत मिनोचा के कत्ल के इल्जाम में किराए के जिन दो कातिलों को पकड़ा गया है, उनमें से एक विशाल पिछले 15 सालों से सुब्रत को जानता था। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या शालू की साजिश के बारे में सुब्रत को पहले से पता था, या फिर कहीं वो खुद भी इस साजिश में शामिल तो नहीं था।
4: विनीत मिनोचा हत्याकांड की जांच उस कड़ी तक पहुंच गई है जहां कानपुर पुलिस आरोपी शालू के पति सुब्रत से अब पूछताछ करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ये जानना चाहती है कि आखिरकार कत्ल के कुछ समय पहले से विशाल और सुब्रत की फोन पर क्या बातें चल रही थी और क्यों उसको मैसेज डिलीट करने पड़े। ऐसे में कानपुर पुलिस जल्द ही विशाल और शालू की पुलिस रिमांड के लिए भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। ऐसे में पुलिस विशाल, शालू और सुब्रत को साथ में बिठाकर ये पूछना चाहती है कि आखिरकार किसके कहने पर हत्या की गई और इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन शामिल है। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल सीधे तौर पर उनके पास सुब्रत को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उसको जांच के दायरे से बाहर भी नहीं रखा गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, किन किन लोगों की इस पूरे मामले में संलिप्तता सामने आती है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
1: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: इसमें कहीं दो मत नहीं है आज तक का, यहाँ तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का
2: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
3: राम और रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
4: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
3: तू किसे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
5: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
6: अब्बा साई,
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तीन ताल जैसी आपदा में सोनू सूद की तरह पहुंच जाने वाले जटाधारी केशधारी कॉमेडियन रवि गुप्ता का।
1: ताऊ को लाठी से मारा जाएगा।
2: रामा रेड्डी के पास चले गए हो क्या? अरे लौटाओ।
1: अरे मौत को पास नहीं बुलाते,
2: तू किससे पंगे ले रहा है, तुझे पता है क्या?
3: कह रहे हैं क्या कि डेटा फज है? आप एयरपोर्ट का क्वार्टर से डोमेस्टिक जो ठेके पे मिलता है उसका क्वार्टर मैच नहीं कर सकते।
4: अब्बा साईं।

पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। शनिवार को शी जिनपिंग का होगा आगमन। पीएम मोदी के साथ विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई है राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, 24,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा वनवास। ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा तुरंत। कांग्रेस ने भी की घेरेबंदी। आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बड़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला।

फिर दिन भी जारी है जयराम के पाटिल का अनशन। 12 सितंबर को समर्थकों के जुटने के बाद मुंबई मार्च की तारीख तय होगी। मराठा आरक्षण पर जरांगे का बड़ा ऐलान, मुंबई कूच तय, ओबीसी कोटे में आरक्षण और कुनबी प्रमाण पत्र की मांग पर अड़े। अमृता फडणवीस के खाने के न्योते पर जरांगे पाटिल बोले, भाई दूज पर जरूर आऊंगा, भाई अभी संकट में है। मुंबई एयरपोर्ट पर मस्जिद को लेकर विवाद, एमएमआरडीए ने ढांचे को अनधिकृत बताया, एमआईएल को हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एफआईआर की मांग की, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है ये फिल्म। हैवान के बाद अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नाम सामने आया है। अपने 59वें जन्मदिन पर मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ मौजा ही मौजा अनाउंस की गई। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन से छठी मैया गीत की पहली झलक सामने आई। गीत में पानी में बैठकर छठ पूजा करती हुई नजर आई तमन्ना भाटिया। भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की कहानी को लेकर आ रहे मोहनलाल ऑपरेशन गंगा का पोस्टर रिलीज किया गया। मच अवेटेड पीरियड फिल्म राणा बाली का टीजर सामने आया है। फिल्म में विजय देवकोंडा रश्मिका मंदाना भूमिका निभा रहे हैं। ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी को कारोबार को बढ़ाने की कोशिश होगी। देशों के बीच पेमेंट के लिए डॉलर पूरी तरह से निर्भर न रहने की रणनीति के तहत लिया गया है फैसला। 2025-26 में भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 226 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। भारत का अकेले चीन के साथ 112 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। प्याज की कीमत सालाना आधार पर 90% बढ़ने के साथ थाली की महंगी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में 60 रुपए के पार है दाम। चावल और सरसों के तेल भी 7% महंगे। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड डॉलर 100 के पार पहुंचा। $110 प्रति बैरल के पार जाने के बाद महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जुलाई में रिटेल सेक्टर में 8% का सालाना ग्रोथ के बावजूद महंगाई से सतर्क हैं दुकानदार। उत्तर और दक्षिण भारत में सबसे तेज 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का धाकड़ खेल, पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दिया। धुआंधार जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत और अफगानिस्तान का पहला T20 तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को ही खेला जाएगा। TDCA ने टलने की खबरों पर लगाया है विराम। अफगानिस्तान T20 सीरीज और एशियन गेम से हर्षित राणा बाहर, यश ठाकुर को टीम में जगह मिली है। चोट के चलते हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर की एंट्री। 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में किया था T20 में डेब्यू। नमस्कार, मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई पुलिस ने फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी आयकर और क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर छापेमारी करने पहुंचे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने कारोबारी के परिवार और कर्मचारियों को बंधक बना लिया और केस रफा दफा करने की एवज में उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर डाली। और हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तार आरोपियों में आयकर विभाग का एक इंस्पेक्टर और एक टैक्स असिस्टेंट भी शामिल है। कारोबारी के यहां पर काम कर चुके एक ड्राइवर ने 9 लोगों के साथ मिलकर

0: चल रही है ऐसे दिखाकर जो कंप्लेनेंट है उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इसमें जब कंप्लेनेंट अंधेरी पुलिस स्टेशन को अप्रोच हुए तो ऑफेंस रजिस्टर किया गया। इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हुआ कि टोटल 11 लोग उनके बिजनेस प्रीमाइसेस पे एंट्री की थी। उनमें से 11 लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया था कि हम पुलिस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोगों ने बताया था कि हम इनकम टैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें अब तक टोटल 10 लोगों को अंधेरी पुलिस स्टेशन की टीम अरेस्ट कर चुकी है, जिसमें से 2 लोग जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बाकी 8 लोग जो है सिविलियन है।
1: मुंबई के अंधेरी इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर स्पेशल 26 फिल्म की तरह ही बिजनेसमैन राजकुमार कंडास्वामी के घर पर और उनके दफ्तर पर एक रेड होती है, जहां पर रेड करने वाले अपने आप को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताते हैं। और ये रेड काफी देर तक, काफी घंटों तक चलती है, जहां पर पहले घर पर रेड की गई, ये रेड जुलाई के महीने में हुई, और पहले घर पर रेड की गई राजकुमार कंडास्वामी के। वहां से राजकुमार कंडास्वामी और उनकी पत्नी को एक गाड़ी में बिठाकर फिर उनके दफ्तर एक बिजनेस कमर्शियल एरिया में ले जाया गया और फिर घंटों तक रेड करने का बहाना बनाया, उन्हें धमकाया, उन्हें डराया और ये कहा गया कि इनकम टैक्स नहीं भरने की वजह से आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। आपको बता दें कि इस रेड में महिला और पुरुष सभी शामिल थे। और खास बात ये सामने आई है, इस केस के डिटेक्ट होते ही ये बात सामने आई है कि इस रेड में एक असली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स विभाग का एक टैक्स असिस्टेंट भी शामिल थे जो ये गिरोह चला रहे थे। आपको बता दें कि इस केस के बारे में, इस केस के डिटेक्शन के दौरान पुलिस को यह पता चला कि राजकुमार कंडास्वामी के जो पुराने ड्राइवर थे संतोष खोपटकर, उनके साथ कुछ विवाद हो गया, उनकी 6 महीने की जो पगार थी, पैसे थे, वो उन्हें नहीं दिए गए राजकुमार कंडास्वामी द्वारा, और इसी गुस्से को ध्यान में रखते हुए संतोष खोपटकर इस गिरोह के पास पहुंचे और इस गिरोह को उन्होंने जानकारी दी राजकुमार कंडास्वामी उनके बिजनेस के बारे में, उनके कुछ अकाउंट्स के बारे में, उनके आमदनी के बारे में, और फिर ये रेड प्लान की गई और ये रेड की भी गई। अब अंधेरी पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट किया है, 10 लोगों को अरेस्ट किया और अरेस्ट हुए आरोपियों में एक इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स विभाग में काम करने वाला इंस्पेक्टर और एक इनकम टैक्स विभाग का टैक्स असिस्टेंट भी शामिल है जो ये गिरोह चला रहे थे। कैमरा पर्सन बहादत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
2: नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी को दिल्ली से गुजरात के केवड़िया में शिफ्ट करने पर विपक्ष जबरदस्त हंगामा कर रहा है। राज ठाकरे ने कहा है कि केंद्र सरकार गुजरात के मोह में देश की राजधानी की अहमियत कम कर रही है। राज ठाकरे ने कहा कि सरकार को कला की परवाह है ही नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और चुनाव जीतने पर ध्यान देती है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कोई भी मुंबई को सिनेमा से अलग नहीं कर सकता, विपक्ष सिर्फ जनता को गुमराह कर रहा है।
3: मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में मिस रानी मुखर्जी के नाम और हिंदी फिल्म जवान में अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता।
4: महाराष्ट्र में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी पर सियासी संग्राम छिड़ गया। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी को दिल्ली से गुजरात के केवड़िया में शिफ्ट करने का कड़ा विरोध किया है। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मोदी सरकार के इस फैसले से 72 साल पुरानी परंपरा टूट गई है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी की अहमियत कम करने की कोशिश कर रही है। वेन्यू को मुंबई, जो दादा साहब फाल्के से जुड़े भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि है, या तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में क्यों नहीं शिफ्ट किया गया, जो फिल्म मेकिंग में आगे है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के फाइनल मैच और गिफ्ट सिटी जैसे अहम प्रोजेक्ट्स को गुजरात में शिफ्ट करके दूसरे प्रदेशों को नजरअंदाज करके गुजरात को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। सरकार को कला की परवाह नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और चुनाव जीतने पर ध्यान देते हैं। अमेरिका में ऑस्कर लॉस एंजलिस में ही होते हैं और किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे कभी अपने गृह राज्य में शिफ्ट नहीं किया। महाराष्ट्र और दक्षिणी राज्यों को अपने क्षेत्रीय गौरव की रक्षा के लिए ऐसे फैसलों का विरोध करना चाहिए। इसी तरह शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने पूछा कि ये केंद्र सरकार है या गुजरात सरकार, उन्होंने आरोप लगाया कि इंडस्ट्रीज को लगातार महाराष्ट्र से गुजरात ले जाया जा रहा है। आदित्य

0: ने तंज कसते हुए कहा कि अब शायद राष्ट्रपति भवन भी गुजरात ले जाने के लिए बचा है।
1: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के निर्देशक श्री करण जौहर अपना राष्ट्रफिल्म पुरस्कार ग्रहण करते हुए।
2: सवाल यही है कि ये केंद्र सरकार क्या गुजरात की सरकार है कि पूरे देश की सरकार है? आपने देखा होगा बहुत सारे इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र जो अच्छे वाले इंडस्ट्रीज थे, ग्रीन इंडस्ट्रीज थे, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज थे, वो सारे लेके गए गुजरात। हर राज्य से कुछ न कुछ चुराते हैं, लेके जाते हैं, वहां बसाते हैं, और जो हार्मफुल इंडस्ट्रीज है, हानिकारक इंडस्ट्रीज हो, फिर वो न्यूक्लियर हो या और भी कोई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हो, वो दूसरे राज्यों में दे देते हैं। बात यही है कि अभी सिर्फ राष्ट्रपति भवन ये गुजरात में लेके जाना बच गया है, वो भी शायद ये सरकार भाजपा वाली लेके जाए।
0: वही एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हमेशा की तरह राजधानी में ही होनी चाहिए।
3: नेशनल अवार्ड दिल्ली में ही होने चाहिए, वो नेशनल अवार्ड है और इट्स द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो कैपिटल में कार्यक्रम होना है वो वही होना है ना, राजधानी है भैया उस देश।
0: हालांकि बीजेपी विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी का तर्क है कि इसका मकसद अलग अलग राज्यों की संस्कृति को सम्मान देना है। बीजेपी कह रही है कि कोई भी मुंबई को सिनेमा से अलग नहीं कर सकता, इसलिए विपक्ष सस्ती लोकप्रियता के लिए जनता को गुमराह करना बंद करे।
4: मुंबई निसंशय भारत के बॉलीवुड की राजधानी है, चित्रपट सृष्टि के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कई बार कई लोगों ने कोशिश की कि ये केंद्र बिंदु को हिलाया जा सके, कोई नहीं हिला पाया है। राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, मुझे ऐसा लगता है कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो सिर्फ दिल्ली में होते थे, मोदी सरकार ने उन कार्यक्रमों को कभी मध्य प्रदेश में लिया, कभी गुजरात में लिया। महाराष्ट्र में कितनी सारी चीजें आई, महाराष्ट्र में डायमंड्स की इंडस्ट्री को मोदी सरकार ने लाया, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली के आखिरी छोर पर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स मोदी सरकार ने लाए, और आपको भी पता है कि हजारों करोड़ रुपए का वहां इन्वेस्टमेंट आ रहा है और महाराष्ट्र का पूरा चेहरा बदल जाएगा। महाराष्ट्र मुंबई देश के कला क्षेत्र की राजधानी है, उसको यहां से कोई नहीं हिला पाएगा।
0: फिलहाल नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी को दिल्ली से गुजरात शिफ्ट करने को लेकर सियासत थमती नहीं दिख रही।
5: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वेन्यू को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ जहां विपक्ष दिल्ली और मुंबई का हक छीनकर गुजरात को तर्जी देने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे हर राज्य के संस्कृति का सम्मान की एक पहल बता रही है। अब देखना यह होगा कि परंपरा और क्षेत्रीय पहचान का ये सियासी ड्रामा आगे जाकर क्या नया मोड़ लेता है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: आज सिंटा यानी कि सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में काफी हंगामा हुआ है। सिंटा के सदस्यों ने पूर्व अभिनेत्री पूनम ढिल्लो और पद्मिनी कोल्हापुरी पर सिंटा ऑफिस से गैरकानूनी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को ले जाने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद मुंबई पुलिस को बुलाया गया। ये वीडियो एक्टर कुनिका सचदेवा ने बनाए हैं और उनका कहना यह है कि इस मामले में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई है। सुनिए आज वहां हुआ क्या क्या।
7: मैम जो पेपर्स गए वो तो मंगवा दीजिए,
8: मेरा काम नहीं है। अगर उन्होंने कोई टेम्परिंग किया है उस पेपर, व्हाट एवर दे हैव डन विद द पेपर,
7: द
8: लेबर कमीशन विल आस्क देम टू प्रोड्यूस इट।
7: देखो सिंटा मेंबर्स आर आस्किंग फॉर फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ सिंटा ना, तो ये पेपर लेके गए, ये प्रूफ है आपके पास, सारा पेपर ले लो।
8: हमसे हम जो आए हैं लॉ एंड ऑर्डर विद द कमीशन के लिए आए
9: हैं। मैडम इट इज नॉट अ सिविल मैटर एनी मोर, मैडम इट इज क्रिमिनल, इट इज क्रिमिनल।
7: कैन यू शो आज वेयर,
9: अरे इलेक्शन इज बीन कॉल्ड, मैडम समझाइए इनको, समझाइए।
7: कोई ऑफिस का सामान नहीं लेके जा सकता, पूरा गया है यार, सामान
10: लेके जा रहे हैं यार, डिस्कस क्या कर रहे हैं,
7: पूरा सामान गया है।
10: आराम से बात करो, कूलली बात
11: मैडम कह रही है, सामान कोई भी लेके जा सकता
12: है, वी आर टोल्ड
10: गवर्नमेंट ऑर्डर।
9: सर दिस इज नॉट योर प्राइवेट होम, सर ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंटा का ऑफिस है।
7: सिंटा मेंबर्स, ईसी मेंबर्स,
9: तो आप बोल रहे हैं हम में से कोई भी मेंबर जाके निकाल सकते हैं, यू आर नॉट मैडम, वाई आप कब जगेंगे? लेबर कमीशन है सेड।
6: मुंबई एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 के पास एक बनी मस्जिद को लेकर जबरदस्त हंगामा सामने देखने को मिला है, क्योंकि एमआरडीए ने इस स्ट्रक्चर के लिए कोई अनुमति नहीं दिए जाने की बात कहते हुए इसे अनधिकृत बताया है। एमएमआरडीए ने मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर एमआईएल को इस ढांचे को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। मामला मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 के वीआईपी अराइवल और टैक्सी स्टैंड एरिया के पास का है। एमएमआरडीए की ओर से 8 सितंबर को जारी पत्र में कहा गया था कि उसे इस जगह मौजूद मस्जिद को लेकर शिकायत मिली थी। अथॉरिटी के मुताबिक इस स्ट्रक्चर या मस्जिद के निर्माण के लिए एमएमआरडीए की ओर से किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं ली गई। इस मामले को बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उठाया था। सोमैया ने 3 सितंबर को अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर का दौरा किया था। अब 2 हफ्ते में यहां एक्शन हो सकता है।
12: मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध मस्जिद लैंड जिहाद के ऊपर अब महाराष्ट्र सरकार के एमएमआरडीए ने मुंबई एयरपोर्ट कंपनी को नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा इस प्रकार की मस्जिद को अनुमति दी नहीं गई है, यह अवैध है और इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का आदेश मुंबई एयरपोर्ट इंडिया लिमिटेड को दिए गए हैं।
6: मुंबई में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। शिवाजी नगर पुलिस थाने में 20 साल की एक लड़की ने आरिफ शेख नाम के शख्स पर रेप, धमकी देने, अपना धर्म पहचान छुपाकर और शादी का झांसा देकर संबंध बनाने और जबरदस्ती अबॉर्शन कराने के आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक आरोपी आरिफ लड़की से शिवा राठौर बनकर मिला करता था। एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता चेंबूर की एक कंपनी में टेलीकॉलिंग का काम करती थी। लड़की के मुताबिक लड़के का परिवार कह रहा है कि अगर उसे शादी करनी है तो उसे मुस्लिम धर्म अपनाना ही होगा।
13: मुंबई में एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर आरिफ अली ये शिवा राठौर बनकर हिंदू लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपना नाम और अपना धर्म छुपाया। जिसके बाद जब इसकी जानकारी लड़की को हुई तो उसने पुलिस में शिकायत की। हमारे साथ हैं पीड़िता के वकील अनूप पाल जी। अनूप जी, क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, उजागर हुआ?
14: ये मामला ऐसा है कि एक पीड़िता बच्ची है जो इस आरिफ नाम के व्यक्ति से एक काम करती है। बच्ची टेलीकॉलिंग का काम करती थी और वहां पे ये डेटा प्रोवाइड करता था, एक सीपी चैनल पार्टनर करके ये वहां पे आना जाना था, तो वहां पे इनका परिचय होता है और ये चैनल पार्टनर बोल के सारे जो बिल्डर्स के लोगों के में काम करता है, ये वहां पे शिवा राठौड़ कर ही नाम बताता है। और इसने सभी जगहों पे जो इनके जान पहचान के लोग हैं उनको सबको बोला था कि मैं शादीशुदा हूं या मेरा नाम ये वाला है। ये
6: एक बार फिर आज तक की खबर का असर हुआ है। साल 2018 की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्टोरी ऑपरेशन बिटकॉइन के मास्टरमाइंड अमित लखनपाल को यूएई से गिरफ्तार कर लिया गया है। 113 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी के मामले में अब भारत सरकार ने यूएई के उसके एक्सट्रेडिशन प्रोसेस की शुरुआत कर दी है और संबंधित एजेंसियों से केस की डिटेल्स को देने के लिए कहा है। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड केस में आरोपी लखनपाल 2018 में कई इन्वेस्टर्स को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर देश छोड़कर भाग गया था। फरवरी 2018 में खबर दिखाए जाने के बाद ठाणे पुलिस ने जून 2018 में अमित लखनपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन तब तक वो देश छोड़कर भाग चुका था।
15: ठाणे पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वांटेड आरोपी क्रिप्टो करेंसी स्कैम में वांटेड आरोपी अमित लखनपाल को एक आरसीएन के तहत रेड कॉर्नर नोटिस जो कि थाने पुलिस ने निकाली थी उसके तहत यूएई संयुक्त अरब इमारात में अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें 8 साल से वांटेड था अमित लखनपाल। 2018 फरवरी में इंडिया टुडे आज तक ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें मैं और मेरे एक रिपोर्टर साथी मोहम्मद हिजबुल्ला हम दोनों ही अंडर कवर गए और उसके बाद हमने इस क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड जो कि मनी ट्रेड कॉइन के नाम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर बिटकॉइन बूम दिखाते हुए ये फ्रॉड चलाया जा रहा था, ये स्कैम चलाया जा रहा था, उसको एक्सपोज किया था। उस एक्सपोजे के बाद ऑपरेशन बिटकॉइन जब इंडिया टुडे और आज तक चैनल्स पर चलाया गया उसके बाद थाने पुलिस ने केस रजिस्टर कर अमित लखनपाल को आरोपी बनाया था और अन्य लोगों को भी इस केस में आरोपी बनाया था।
6: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: गणेशोत्सव की रौनक मुंबई में दिखनी शुरू हो चुकी है। गणेश जी की पसंदीदा मिठाई मोदक भी बाजार की रंगत को बढ़ा रहे हैं। हमारी टीम मुंबई के मशहूर लाडू सम्राट मोदक भंडार पहुंची, जहां मोदक काफी ट्रेंडिंग और डिमांडिंग है।
2: मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों शोरों से है। तस्वीरें खुद देखें, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। कुछ इस तरीके से फूलहार बनाने का काम इस समय मुंबई के लालबाग के राजा के आसपास इलाकों में देखा जा रहा है, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची प्रतिमाएं दूसरे भी मंडलों द्वारा स्थापित की जाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो श्री गणेश को जो सबसे ज्यादा पसंद मिठाई है उसे लेकर के है, यानी कि मोदक। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के करी रोड इलाके में, और जहाँ पर लालबाग के राजा भी विराजमान होते हैं और गणेश गली मुंबई के जो राजा के नाम से मशहूर हैं वो भी यहाँ विराजमान होते हैं, और उनसे ही सटे हुए 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही ज़्यादा सालों पुराना मिठाई का स्वादिष्ट ऐसा दुकान है जो लाडू सम्राट के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। क्योंकि श्री गणेश जी को जो पसंद है मोदक, उनसे ही संबंधित तमाम तरह तरह के स्वादिष्ट ट्रेंडिंग डिमांडिंग मोदक यहाँ बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, और मुंबई के कोने कोने से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा तस्वीरें देखें, ये पूरा का पूरा शॉप जो है वो मोदकों से भरा हुआ है। अनेक प्रकार के मोदक, छोटे बड़े मध्यम, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये बड़ा सा मोदक थोड़ा सा देखें, जो कि इस शॉप की शान भी यहाँ पर बढ़ा रहा है। साथ ही साथ ये भी प्रतीक कर रहा है कि भाई अब फेस्टिवल जो है वो शुरू हो चुका है मुंबई महाराष्ट्र में। गणेश उत्सव 14 तारीख से हर कोई मनाने वाला है। थोड़ा सा देखें, तमाम अलग अलग तरीके के मोदक यहाँ पर सजाए गए हैं। और
1: मुंबई में गणेशोत्सव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि मुंबई के ऐतिहासिक चिंचपोकली सार्वजनिक उत्सव मंडल ने पिछले सप्ताह ही बप्पा का आगमन कर दिया है। ये मंडल मुंबई के टॉप बड़े मंडलों में से एक है और इस बार की थीम है दक्षिण भारतीय मंदिर। चिंतामणि गणपति की मूर्ति को तिरुमला तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के स्वरूप से प्रेरित होकर सजाया गया है।
2: समय हम मौजूद हो गए हैं चिंचपोकली का चिंतामणि राजा के दरबार में, और तस्वीरों से हम जरूर चाह रहे थे ये दिखाना कि बप्पा कितने भव्य और बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन चूंकि डेकोरेशन का यहाँ पर काम चालू है इस वजह से बप्पा को पर्दे से ढका गया है ताकि धूल मिट्टी उन पर न बैठ सके। लेकिन मंडल के जो पदाधिकारी है इस समय हमारे साथ मौजूद है, उपाध्यक्ष हमारे साथ में प्रनील पांचाल है और उनकी पूरी टीम है। गणपति बप्पा
3: मोरिया।
2: अच्छा, वाकई में मैंने इस बार सुना है कि चिंतामणि जो है वो तिरुपति बालाजी के अवतार में है, कितनी सच्चाई है क्या कहेंगे?
3: नहीं, तिरुपति बालाजी के अवतार में नहीं है। हम लोगों ने थीम जो है वो पूरा तिरुपति बालाजी का लिया हुआ है, और जो तिरुपति बालाजी के जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हम लोग के बप्पा जो है उनके हाथ में वगैरह, और जो जो उनका प्रभाव बना है जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर है। और जो है यहाँ पर आप सेट देख रहे हैं पूरा, ये भी हम लोग ने जो हैदराबाद का स्वर्णगिरी टेम्पल है उसका रेप्लिका हम लोग ने ट्राई किया है बनाने का।
2: अच्छा, नहीं वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है। तो जब बप्पा का आगमन हो रहा था बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी तस्वीरें वायरल हो गई, आपने कितना बप्पा को उस समय फील किया, क्या कहेंगे, कैसी आपकी तैयारी थी और कैसे यहाँ तक पहुंचे?
3: नहीं, हम लोग ये दिन की हम लोग पूरी साल भर राह देखते हैं, तो जो बप्पा का आगमन होता है वो हम लोग के लिए बहुत एकदम बड़ा और त्योहार जैसा होता है, तो वो हम लोग फुल उसको एंजॉय करते हैं पूरा।
2: अच्छा, आपको बताएं दोस्तों कि मुंबई में जो बड़े गणेश जी स्थापना करते हैं बहुत बहुचर्चित पंडाल हैं, उन्हीं में से एक चिंतामणि के राजा भी हैं यहाँ पर। बहुत ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, कैसे इस बार उनका ख्याल रखा जाएगा? और जैसा कि आपने बताया कि साउथ के जो धर्म स्थल हैं उनके दर्शन आप करवाएंगे, क्या कुछ तैयारी है?
3: तैयारी यहाँ पर देखा जाए तो आप अगर गेट से देखोगे तो हम लोगों ने रैम्प का प्रोविजन किया हुआ है, जो कि एक मुख दर्शन की दो लाइनें हैं और दो लाइन चरण स्पर्श दर्शन की है। तो जैसे भाविक मेन गेट के से एंटर करेंगे तो उनको वहां पर सूचना ये लिखी हुई है कि आपको कहाँ जाना है, तो उस प्रकार से उनको जो भी भाविक है उनको आना है और यहाँ पर उनका एकदम स्मूथली दर्शन होने वाला है।
1: और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है ब्रिक्स सम्मेलन। 13 सितंबर को चलेगी बैठक। दुनिया के 11 बड़े देशों ने लेंगे हिस्सा। ब्रिक्स के मंच पर दिखेगी हिंदुस्तान की नई धमाक। नई दिल्ली में चीन और रूस के राष्ट्रपति समेत महाशक्तियों का महामिलन। प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा, बदलती विश्व व्यवस्था पर मंथन। सुपर पावर की मौजूदगी में किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। 25,000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी। तुगलक रोड पर 500 कैमरों की नजर। वैश्विक सम्मेलन के लिए दुल्हन से सजी है देश की राजधानी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया। अमृतसर में भी ब्रिक्स सम्मेलन की तैयारियां। हाथ से बनाई गई 5x8 फीट के आकार की कस्टम पेंटिंग्स। मायावती ने फिर से आकाश आनंद को साइड लाइन किया। तीसरी बार वनवास परिवार में सियासी खींचतान के संकेत। अभी ईशान आनंद पर नजर। संगरूर सुइसाइड केस में घिरी अमान सरकार। बीजेपी ने मंत्री जी माओ सीएम भगवंत मान से इस्तीफे की मांग की। आईआरसीटी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल सीटें होंगी दोगुने से ज्यादा। कुल क्षमता बढ़कर 12,754 होगी। डीयू में छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत। 3,922 नई यूनिवर्सिटी और 1,622 कॉलेज हॉस्टल सीटें बढ़ेंगी। 13वें दिन भी जारी जरांगे पाटिल का अनशन। 12 सितंबर को समर्थकों के जुटने के बाद मुंबई मार्च में तारीख तय की जाएगी। मराठा आरक्षण पर जरांगे का बड़ा ऐलान। कहा मुंबई कूच तय। ओबीसी कोटे में आरक्षण और कुनबी प्रमाण पत्र की मांग पर अड़े। अमृता फडणवीस के खाने में न्योते पर जरांगे का जवाब। बोले भाई दूज पर जरूर आऊंगा, भाई अभी संकट में है। मुंबई एयरपोर्ट पर मस्जिद को लेकर विवाद। एमएमआरडी ने ढांचे को अनधिकृत बताया। कार्रवाई एमआईएल को हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एफआईआर की मांग की है। ट्रस्टी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। डब्ल्यूएचओ की तिमोर लिस्ट में बैठक में भारत की बड़ी पहचान। टिटनेस खत्म करने और गंभीर बीमारियों के लड़ने के लिए मिला सम्मान। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और मजबूत करने पर जोर है। मेडिकल शिक्षा बढ़ेगी। ई संजीवनी से डिजिटल इलाज को बढ़ावा मिलेगा। लालबाग चौराहा वीआईपी दर्शन विवाद पर सुनवाई। मानवाधिकार आयोग ने मंडल और पुलिस से 6 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। अकोला में किसानों ने तहसील कार्यालय का किया घेराव। बोले पैलों के साथ पहुंचे किसान। सूखा घोषित करने की मांग की गई। प्रयागराज में 1,000 शिक्षक भर्तियों को लेकर छात्रों का महाधरना। भारी संख्या में पुलिस ने लगाया है पहरा। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हवा में लटक गई यात्रियों की भरी हुई बस। बाल बाल बची सवारियों की जान। सूरत में मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहकर दंपति को 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट किया। 13 लाख रुपए ठगे। मुंबई के इक्विपमेंट सप्लायर से जुड़े साइबर गिरोह ने सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच के नाम पर बनाया दबाव। फर्जी बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांसफर। आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। इंदौर में लिव इन पार्टनर पर जानलेवा हमला। महिला का गला रेता गया। आरोपी ने खुद को भी घायल किया था। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमृतसर में एक बैंक में बदमाशों ने लूट की कोशिश की। गार्ड की सतर्कता से टली बड़ी वारदात। भोपाल में फिल्मी अंदाज में पुलिस का पीछा। डिवाइडर से टकराई थी स्कॉर्पियो। 41 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। सूरत में एसओजी ने छापा मारकर 2 झोलाछाप डॉक्टर्स को पकड़ा। बड़ी मात्रा में इंजेक्शन और दवाइयां भी बरामद की गई। शिवपुरी में शराब दुकान बंद करने के पहुंची महिलाओं पर पुलिस और आबकारी विभाग ने सख्ती की तो महिलाओं ने पुलिस में मारे लाठी डंडे और पत्थर भी। मुंबई लोकल भीड़ में ट्रक ट्रैक पर उतर आई थी महिलाएं। गेट से गिरी महिला, टला बड़ा हादसा। उड़ीसा के बौद्ध में कक्षा 7 के छात्र की शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। दांत टूटे, स्कूल में हड़कंप मचा। महबूबनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। पशुओं से लदे हुए ट्रक में भीषण आग लगी। एक शख्स के जिंदा जलने की खबर। वाराणसी में पीट पीट कर चचेरे भाई को तारा मौत के घाट। 4 दिन पहले ही लौटा था घर। नागपुर में ज्वेलर्स की दुकान में बुजुर्ग महिला ने सोने के पेंडेंट को चुराया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। एमपी के इंदौर में गाय चोरी के शक में युवक की के साथ मारपीट। इलाज के दौरान मौत हुई। सहारनपुर में करोड़ों की ड्रग्स के साथ महिला समेत 3 की गिरफ्तारी। हिस्ट्री शीट पर दर्ज है पहले से ही 12 मुकदमे। जाला में 60 फीट गहरे कुएं में गिरे 2 कुत्तों की जान बचाई गई। छत्रपति संभाजी नगर में 90 किलोमीटर का सफर तय करके रेस्क्यू की टीम पहुंची। वैशाली में भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन पुल का लॉन्चर गिरा। 7 मजदूर घायल हुए। 3 को किया गया रेफर। साइट पर दिखी कंपनी की लापरवाही। दरभंगा में शराब कारोबारी ने पुलिस टीम पर हमला किया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़े। हमलावर गिरफ्तार किया गया। अलवर में 2 महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान में 6 लाख के 10 मंगलसूत्र चोरी कर डाले। ग्राहक बनकर पहुंची थी दोनों ही महिलाएं। इंदौर में साउथ तोड़ा अतिक्रमण कार्रवाई में पुलिस से धक्का मुक्की और गिराने के मामले में 15 नामजद 16 पर केस 8 गिरफ्तार। वाराणसी में आधे घंटे की बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। मैदागिन गोदौलिया समेत कई इलाकों में जलभराव। वाराणसी में बारिश से सड़कों पर पानी। दुकानों में भर गया था पानी। जलभराव से राहगीर और दुकानदार परेशान।
हरदोई में गंगा का कहर, 60 गांव बाढ़ की चपेट में आए, घरों में घुसा पानी, छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं ग्रामीण। हरदोई में गांव बने हैं टापू, कमर तक पानी में गुजरने के लिए लोग मजबूर हैं। राहत शिविरों में इलाज और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। बाराबंकी में सरयू खतरे के निशान के 45 सेंटीमीटर ऊपर, 31 गांव बाढ़ की चपेट में, 18 गांव में घुस गया है पानी। सरयू का बदला रोगा, हेतमापुर में तेज कटान, 5 मकान नदी में समाये, समाधि स्थल से महज 10 मीटर दूर है पानी। कटिहार में गंगा कोसी समेत 4 नदियां उफान पर हैं, 4 प्रखंडों की 3 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित कटिहार में 67 नावें और 73 कम्युनिटी किचन तैयार किए गए, 8 मेडिकल कैंप्स हैं और बोट एम्बुलेंस से राहत जारी। बाढ़ प्रभावित मुंगेर पहुंची हैं सीएम सम्राट चौधरी की पत्नी ममता, पीड़ितों से मिली और समस्याओं को सुना। दिल्ली में गर्मी से राहत के आसार हैं, शुक्रवार से हल्की बारिश का अनुमान, 36 डिग्री पहुंच गया अधिकतम तापमान। गणेशोत्सव में अब महज 4 दिन का वक्त रह गया है, पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू से ठलवाई गणपति मंदिर में भी तैयारियां तेज। नोएडा के क्लाइंग थॉट्स में मिट्टी से बने हुए गणपति बनाना सिखाया जा रहा है, यहां पर लोग अपने हाथों से गणपति की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं। पाली में गणेशोत्सव की रौनक, पर्यावरण रक्षा और आत्मनिर्भर देश के लिए गोबर से गणपति की आकर्षक प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी से पहले जयपुर के बाजारों में भक्ति के खास झलक नजर आई, मुकुट और राजस्थान साथ ही पगड़ी और पंजाब के रंगों में रंगे हुए नजर आए बप्पा। जामनगर के बाजारों में भगवान गणेश की अलग अलग आकार, स्वरूप और आकर्षक डिजाइन वाली प्रतिमाएं नजर आई। पुणे में गणेशोत्सव के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन, कश्मीर में सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने के लिए कश्मीरी पंडितों को सौंपी गई बप्पा की प्रतिमाएं। सूरत में गणेशोत्सव से पहले ज्वेलर्स की पहल, गणपति प्रतिमाओं के लिए बनाए जा रहे हैं चांदी के आकर्षक और भारी भरकम आभूषण। चमोली में भारतीय सेना गढ़वाल राइफल्स ने बद्रीनाथ धाम में लॉन्च किया था माउंट माना एक्सपीडिशन। 12 सितंबर को मनाया जाएगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व। श्री हरमिंदर साहिब और अकाल श्री तख्त साहिब को 50 टन से ज्यादा फूलों से सजाया जाएगा। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से नोएडा सेक्टर 62 के बीच पहली बार सुरक्षित हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बना ग्रीन कॉरिडोर, 16 मिनट में तय हुआ 20 किलोमीटर का रास्ता। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म हैवान आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मलयालम ब्लॉकबस्टर ओपम का हिंदी रीमेक है फिल्म हैवान के बाद अक्षय कुमार की अगली फिल्म का नाम आया सामने। अपने 59वें जन्मदिन पर मशहूर डायरेक्टर अनीस बज्मी के साथ मौजा ही मौजा अनाउंस की। तमन्ना भाटिया की अपकमिंग फिल्म द वन से छठी मैया गीत की पहली झलक सामने आई। गीत में पानी में बैठकर छठ पूजा करती हुई नजर आई तमन्ना भाटिया। भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन की कहानी को लेकर आ रहे हैं मोहनलाल ऑपरेशन गंगा का मोशन पोस्टर रिलीज। मोस्ट अवेटेड पीरियड एक्शन राणाबाली का टीजर सामने आया है। फिल्म में विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना निभा रहे हैं मुख्य भूमिकाएं। अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड क्राइम सस्पेंस फिल्म दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर रिलीज किया गया। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म होगी फ्रेंचाइजी का आखिरी अध्याय। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म उड़ताती का पहला पोस्टर जारी, पहली बार बड़े पर्दे पर साथ साथ नजर आएंगे। फिल्म लव लॉटरी का ट्रेलर रिलीज किया गया, अक्षय ओबराय और हेली दारूवाला इसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रही हनुमान अंश की रफ्तार, अब तक भारत में 135.6 करोड़ रुपए बताई जा रही है फिल्म की कुल कमाई। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भारत की बेटियों का धाकड़ खेल, पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी, धुआंधार जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत अफगानिस्तान का T20 तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को ही होगा। TDCA ने टलने की खबरों पर विराम लगाया। अफगानिस्तान T20 सीरीज और एशियन गेम्स से हर्षित राणा बाहर है, यश ठाकुर को दिल्ली इंडिया में जगह मिली। चोट के चलते हर्षित राणा की जगह यश ठाकुर की एंट्री, 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने हाल ही में किया था T20 में डेब्यू। ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में कारोबार बढ़ाने की कोशिश, देश के लिए पेमेंट के लिए डॉलर पूरी तरह से निर्भर न रहने की रणनीति के तहत पहल की गई। 2025-26 में भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार घटा बढ़कर 226 अरब डॉलर पर पहुंचा। भारत का अकेले चीन के साथ 112 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट। प्याज की कीमत सालाना आधार पर 90% बढ़ने से थाली का बजट महंगा हुआ है। दिल्ली NCR में प्याज 60 रुपए किलो के पार। ईरान अमेरिका तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड $100 के पार पहुंचा, $110 प्रति बैरल के दाम पर जाने के बाद महंगे हो सकते हैं पेट्रोल और डीजल। जुलाई में रिटेल सेक्टर की 8% सालाना ग्रोथ के बावजूद महंगाई से 70 के दुकानदार, उत्तर दक्षिण भारत में सबसे तेज 9% की ग्रोथ दर्ज की गई है।
स्मार्टफोन कंपनियां त्योहारी सीजन के लिए करीब 39,500 अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती करेंगी। सेल्स और डेमो के लिए डिमांड बढ़ने से पिछले साल के मुकाबले 34% ज्यादा हायरिंग। व्यापारियों को एक मंच पर लाने के लिए भारत मंडपम में खास आयोजन। आधुनिक व्यापारिक सेवाओं से जुड़ने का मिलेगा मौका। सरकार E20 यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से आगे बढ़ने की योजना पर काम कर रही है। फ्लेक्सी फ्यूल गाड़ियों के जरिए ज्यादा इथेनॉल वाले पेट्रोल का किया जाएगा इस्तेमाल। ब्रिक्स समिट में शामिल होने वाले भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीनी विदेश मंत्रालय ने किया पुष्टि, 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग में द्विपक्षीय मुलाकात संभव। चीन के एक बंदरगाह पर कार्गो जहाज में भीषण आग लगी, हादसे में 25 लोगों की मौत हुई, 12 को बचाया गया, 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जहाज में कुल 42 लोग सवार थे। शांति की कोशिशों के बीच रूस और यूक्रेन में आर पार की जंग। रूस ने राजधानी कीव और सूमी में बरसाए बम, कीव में पेट्रोल पंप को बनाया गया निशाना, 4 लोग घायल हुए। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन का पलटवार, पोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला किया गया, अटैक के बाद लगी थी आग, सोची पोर्ट को भी बनाया गया निशाना। कनाडा दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, यूक्रेन की सुरक्षा और रक्षा के लिए नए हथियारों की मांग, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक। अमेरिकी मीडिया ने माना ईरान के हमलों में विमान के नुकसान की बात, ईरान के हमलों में जॉर्डन एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सैन्य विमान क्षतिग्रस्त। हांगकांग की अदालत ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल की प्रकाशक कंपनी डाउ जोन्स को ठहराया है दोषी। पूर्व संवाददाता सेलिना चिंग के यूनियन का पद संभालने से रोकने के मामले में सजा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने 2030 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में 20 अरब यूरो के निवेश का ऐलान कर दिया है, कहा यूरोपीय अंतरिक्ष क्षेत्र अभी भी नाजुक। स्पेन के कैनरी द्वीप पर प्रवासियों को बचाने के लिए बड़ा रेस्क्यू, समुद्र में फंसे 152 प्रवासियों को सुरक्षित बचाया गया। मोरक्को चुनाव से पहले फीफा अध्यक्ष जियानी को बड़ा झटका, फ्रांसीसी फुटबॉल महासंघ ने वापस लिया समर्थन, कहा मार्च 2027 में होने वाले चुनाव में उम्मीदवारी नहीं करेंगे उनका समर्थन।

0: Dear viewers, hello and a very warm welcome. You're watching Aaj Tak India Today and I'm Anjana Om Kashyap and we're at Kremlin today and you're about to witness history, a very historic moment. It is said that when two old friends meet, they have their private jokes. They have a lot of banter, they have a lot of fun and they have a bonhomie or camaraderie. But the others in the room might feel a little uncomfortable. And why do I say this? I say this because as the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, meets Prime Minister Narendra Modi in New Delhi, the world will be watching very, very closely. Vladimir Putin is undoubtedly one of the most influential politicians of the world whose decisions don't just affect Russia, but numerous nations across the world. He's a very compelling and enigmatic figure on the world stage. It just doesn't get more exciting than this.
1: Well, that's right, Anjana. Hello and welcome. I'm Geeta Mohan. We have with us a man who is known to be one of the world's longest serving leaders. He's seen it all through wars and economic recessions, from disintegration of countries to a changed world order, from Boris Yeltsin to Donald Trump. From Atal Bihari Vajpayee to Manmohan Singh to Narendra Modi. He's seen the world change right in front of him. And he's taken Russia through very turbulent times and yet has cemented his position as a force to reckon with. Thank you so much, President, for doing this with us. You're in conversation with India Today and Aaj Tak. That's the President of the Russian Federation for you.
0: Thank you so much, sir, for joining us on our network. How are you doing?
2: मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रूस, मॉस्को और क्रेमलिन, जहां हम काम करते हैं, आकर अच्छा लगा होगा। आप देख सकते हैं कि यहां पर सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। कुल मिलाकर हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर है, और मैं इस बात से सबसे ज्यादा खुश हूं कि मेरी मुलाकात मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है। भारत में इस मुलाकात को लेकर हम बहुत पहले ही सहमति जता चुके थे। हमारे बीच चर्चा करने को बहुत कुछ है, क्योंकि भारत के साथ हमारे साझा सहयोग का विस्तार बहुत बड़ा है। और मैं यहाँ हमारे संबंधों के इतिहास के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच रिश्तों का इतिहास सचमुच अनोखा है। और जिस रास्ते पर भारत आजादी के बाद चला है, 77 साल गुजर चुके हैं, जो कि इतिहास के हिसाब से एक छोटा अंतराल है, पर भारत ने इतने ही समय में बहुत प्रगति की। मैं इसके बारे में और बात करूंगा, मगर जब वर्तमान में हम खुद को देखते हैं तो इतना बदलाव नजर नहीं आता, पर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लगता। ये शायद कम लोगों को पता हो कि भारत में अब लोगों की जीवन प्रत्याशा पिछले 77 सालों में दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। हम इस बारे में बात करेंगे, पर ये कहना सही होगा कि भारत के साथ हमारे संबंध अब नए आयाम छू रहे हैं।
1: We will talk about longevity in some time from now.
3: Хорошо, поговорим обязательно, но во всяком случае.
2: मुझे बहुत खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात का मौका मिल रहा है, और ये केवल व्यापार के लिए ही नहीं है, हमारी ये मुलाकात व्यक्तिगत स्तर पर भी बेहद अहम है।
4: राष्ट्रपति पुतिन, मैं पहला सवाल इसी के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए आप भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, 7 दशकों की ये दोस्ती है। दोस्ती हिंदी का शब्द है और वहीं रूसी भाषा में इसको द्रुज्बा कहते हैं। तो ये जो दोस्ती द्रुज्बा वाला पूरा मामला है, इसको आप आज के दौर में कितनी ताकत इस दोस्ती में देखते हैं भारत और रूस के बीच में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
5: प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, दरअसल दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और वक्त के साथ इसके बदलने की रफ्तार तेज होती जा रही है। ये बात सब जानते हैं। नए समीकरण और नए पावर सेंटर बन रहे हैं। इन समीकरणों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां भी
2: समय के साथ बदल रही हैं। ऐसे हालात में दुनिया के महान देशों के बीच स्थिरता बेहद जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, और विश्व के लिए ये स्थिरता विकास की आधारशिला की तरह है, चाहे ये दो देशों के बीच का मामला हो या फिर पूरे विश्व से जुड़ा। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारे संबंध बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये न केवल हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए अहम है, बल्कि हमारे पारस्परिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर हमारा आपसी सहयोग हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की गारंटी है।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य निर्धारित किए, सबसे पहले अपने समक्ष, फिर प्रशासन के लिए और अंततः राष्ट्र के लिए।
2: प्रधानमंत्री मोदी सरकार और देश के सामने कई लक्ष्य रख चुके हैं। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इस दिशा में एक बेहतरीन उदाहरण है। हम जब भी मिलते हैं, वो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ नया करने को लेकर बात करते हैं। उनकी सोच काम को लेकर बेहद व्यवहारिक है।
4: लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, गीता, एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं राष्ट्रपति जी आपको, और राष्ट्रपति पुतिन, इस तस्वीर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार में जा रहे हैं। अब ये फोटो खूब वायरल होता है, लोग वीडियो पे इसके खूब डिस्कशन करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब आप चूंकि यहां बैठे हैं, आप ही बताइए, क्या ये पहले से आप लोगों ने तय किया हुआ था और क्या बात हुई गाड़ी में?
2: हम दोनों के बीच सामयिक विषयों पर ही बातचीत हुई और इसे लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं थी। हम दोनों बाहर निकले, सामने मुझे मेरी कार दिखाई दी, तो मैंने उन्हें साथ चलने को कह दिया, वैसे ही जैसे दोस्तों के बीच होता है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। रास्ते में हम दोनों ने बस आम दोस्तों की तरह बात की। हमारे पास हमेशा बातचीत करने को कुछ न कुछ जरूर होता है। हम लोग बातचीत में इतना व्यस्त हो गए कि बाद में ख्याल आया कि लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था।
1: आपके विजिट पर वापस आते हैं राष्ट्रपति पुतिन जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है, बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होंगे, बहुत बातचीत होगी ट्रेड को लेकर, डिफेंस को लेकर, एनर्जी को लेकर। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिस पर आपका फोकस रहेगा, और ऐसे क्या चीजें हैं जिसको आप चाहते हैं कि इस इम्पोर्टेंट विजिट में वो आउटकम डॉक्यूमेंट में नजर आए?
5: हमारी यात्रा पर दुनिया की नजर रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत एक विशाल देश है जहां 1.5 अरब लोग रहते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था 7% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ तेजी से बढ़ रही है और जो दुनिया की प्रमुख शक्तियों में अग्रणी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी उपलब्धि है। ये भारत के नागरिकों के लिए गौरव की बात है। ये सही है कि इसके बावजूद आलोचना करने वाले कह सकते हैं कि इससे बेहतर किया जा सकता था, पर परिणाम सबके सामने। आने वाले समय में हम भविष्य को लेकर कई अहम क्षेत्रों में सहकार्य के लिए तैयार हैं, और उनमें से एक है हाई टेक्नोलॉजी। भारत और रूस स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से लेकर शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग और भविष्य को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इसे लेकर आगे और भी बात करेंगे, पर ये आज के दौर की वो टेक्नोलॉजी है जो आने वाला भविष्य तय करेगी। ये हमारी प्रगति को रफ्तार दे सकती है, पर ये भी सही है कि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और वो रास्ता चुनेंगे जो हमारे लिए इमर्ज्ड के समय में सबसे बेहतर हो।
1: लेकिन कुछ तो अग्रीमेंट्स होंगे जिसके बारे में आप हमें बता सकते हैं?
2: मुझे शायद इस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी घोषणा हम साझा तौर पर मेरी भारत यात्रा के दौरान करेंगे, तभी इन समझौतों पर औपचारिक हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। अगर व्यापार की बात करें तो भारत और रूस दोनों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासा दबाव है, खास तौर अगर तेल की बात की जाए तो। पश्चिम की ओर से पड़ रहे इस दबाव का सामना भारत और रूस मिलकर कैसे कर सकते हैं?
1: अच्छा चलिए ठीक है, अग्रीमेंट्स ना सही। जो अब ये विजिट हो रहा है ये बहुत सारे मुश्किलों में, बहुत सारे सैंक्शंस में घिरा हुआ विजिट है। आप भारत में होंगे और एक ऐसे वक्त पर जहां पर 25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर, ये इस प्रेशर को भारत और रूस कैसे हैंडल कर सकता है?
2: आप जिस दबाव की बात कर रहे हैं वो दरअसल राजनीति का इस्तेमाल कर आर्थिक हितों को साधने की कोशिश है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के साथ हमारे ऊर्जा सहयोग पर इस तरह के अल्पकालीन राजनीतिक दबाव का असर नहीं पड़ता। भारत के साथ हमारा ऊर्जा समझौता बहुत पुराना और भरोसे पर टिका है। इसका यूक्रेन में हुई घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, बल्कि हमारी एक बड़ी तेल कंपनी ने भारत में एक तेल रिफाइनरी का अधिग्रहण किया है। ये किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब तक के सबसे बड़े निवेश में से एक है। यहाँ हमने $20 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। हमारी कंपनी अपने साझेदारों के साथ इस रिफाइनरी पर सफलतापूर्वक काम कर रही है। भारत मौजूदा दौर में यूरोप के बाजारों में बड़े स्तर पर तेल सप्लाई कर पा रहा है, क्योंकि वो हमसे सस्ती दरों पर तेल खरीद रहा है। लेकिन इसके पीछे हमारे दशकों पुराने संबंध हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बात बहुत से लोगों को चुभ रही है कि भारत रूस की मदद से तेल के बाजार का एक अग्रणी सप्लायर बन चुका है, और इसीलिए वो भारत को नए नए राजनीतिक हथकंडों से परेशान कर रहे हैं, उसके विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं।
3: По этим направлениям, искусственно, по политическим соображениям начали закрывать эти возможности.
4: Рашбати Путин, ракша ке кшетр ме аж би Бхарат сабсе бада харидар хе Рус ме. 38% ке аспас ке хисседари хе. Мера прашн апсе е хе ке ек тараф санкшнс лагае гае хе, пратибанд лагае гае хе, пашчими дешон ке тараф се, дуси тараф тел харидне ке вжа се Бхарат пар тарифс лага дие гае хе итне. Эсе ме ке апко лагта хе ке из дабао ка асар डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में खरीद पर पड़ेगा? क्या आप पीछे हटेंगे या और जोर के साथ, जिसको कहते हैं पुश हार्डर, आप और जोर के साथ रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे?
5: हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनमें से उन मुद्दों को चुनेंगे जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी और मेरा मानना है। हम इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इन्हीं पर काम करेंगे। भारत आज एक शक्तिशाली देश है और वो पहले की तरह ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है, और ये बात सभी को समझनी होगी। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता, साथ ही वो किसी के साथ टकराव का रास्ता भी नहीं अपनाते। दरअसल हम किसी के साथ भी टकराव नहीं चाहते, केवल अपने वैध हितों की रक्षा चाहते हैं। हमारा 90% से ज्यादा लेन देन हमारी राष्ट्रीय मुद्रा में होता है। हालांकि बिचौलियों को लेकर थोड़ी समस्या आती है, पर इसके लिए हम साझा व्यवस्था बना सकते हैं, जहां रूस और भारत के बैंक बिना किसी रुकावट आपस में लेन देन कर सकते हैं। हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। एक बार ये व्यवस्था अमल में आ जाए तो व्यापार को लेकर बाहरी दबाव से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
4: राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के तीन हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है, और Su-57 जो लड़ाकू विमान है फिफ्थ जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने?
5: आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा, लेकिन यहां मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक जिन्हें भारत खुद बना रहा है बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाश्निकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं, और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं, किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है।
6: क्लाश्निकोव एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार है, लेकिन हम इसकी जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही ये कहना भी सही है कि ये वाकई शानदार टेक्नोलॉजी है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनका युद्ध में वास्तविक इस्तेमाल होने के बाद उनकी वैल्यू, उनकी विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अब भारतीय सैन्य विशेषज्ञ, जिनके हमारी सेना से बेहद मजबूत और पुराने संबंध हैं, वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन सा हथियार किस परिस्थिति में सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, कब उसे तैनात करना चाहिए, कहाँ उसका उपयोग सबसे प्रभावी होगा। ये रणनीतिक समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये समझ सिर्फ एक तरफ से आने वाली नहीं है। भारत और रूस दोनों पक्ष इसे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं।
3: इस रूसी और इस इंडियन
4: प्रेसिडेंट पुतिन, एक ऑयल के सवाल पे वापस जाना चाहूंगी, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की अभी जब आप अंजना को जवाब दे रहे थे। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। भारत दिखा रहा है, रूस ये बता रहा है कि हम अपने इंटरेस्ट को आगे रखेंगे, ऐसे में क्या भारत रूस के तेल का इनटेक कम कर रहा है?
5: ऐसा लगता है कि भारत और दुनिया दोनों ये मानते हैं कि भारत के साथ वैसा व्यवहार अब नहीं किया जा सकता जैसा 77 साल पहले किया गया था। भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है, ब्रिटिश उपनिवेश नहीं, और सभी को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो आसानी से दबाव में आ जाते हैं। मैं इसे लेकर रूसी तेल कंपनियों और हितधारकों का मत अच्छी तरह जानता हूँ। वो मानते हैं कि उनके भारतीय साझेदार पूरी तरह से भरोसेमंद हैं।
4: इस रिश्ते का एक और बहुत अहम जो एस्पेक्ट है वो न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, रूस ऐसा देश रहा है जो सबसे आगे रहा है भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन के अग्रीमेंट साइन करने में, या फिर फैसिलिटीज वहां पे प्लांट्स लगाने में। तो कोई इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट, कोई इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट न्यूक्लियर फ्रंट पे हो सकता है? न्यूक्लियर अब बहुत ही सेंसिटिव मामला है अगर रूस की बात की जाए तो।
5: हाँ, इसे लेकर हम जरूर घोषणा करने वाले हैं। ये सही है कि इस क्षेत्र में हम सबसे बड़े हितधारकों में से एक
3: हैं।
5: बल्कि हितधारक नहीं, हम परमाणु ऊर्जा प्लांट के क्षेत्र में आधुनिक और भरोसेमंद उपकरणों के दुनिया के सबसे बड़े निर्माता हैं। एक रूसी कंपनी ही इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है।
2: इस कंपनी अब तक विदेशों में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना चुकी है और ये सभी बेहद उपयोगी साबित हुए
3: हैं।
2: कोई शक नहीं कि रूस दुनिया भर में छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने में महारत रखता है। इनमें से कई रूस में पहले ही इस्तेमाल में है।
3: Новости, о которых вы сейчас спросили, а что, в чем они заключаются, что это за новости? Новости заключаются в том,
2: अब बात आती है खबरों की जिनके बारे में आपने पूछा था। ये खबरें इस तथ्य पर आधारित हैं कि रूस शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास छोटे परमाणु बिजली संयंत्र बनाने की क्षमता भी है और उनका उपयोग का अनुभव भी। ये संयंत्र रूस में पहले से चल रहे हैं। इन्हें जमीन पर लगाया जा सकता है और समुद्र में तैरते हुए प्लांट के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बेहतरीन विकल्प है उन स्थानों के लिए जहाँ बड़ी बिजली परियोजनाएं बनाना मुश्किल होता है। बरसों लगने वाली ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत नहीं, कोई विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा नहीं। इन छोटे संयंत्रों को दूर दराज दुर्गम इलाकों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है।
1: हम मेक इन इंडिया मेक विद रशिया की बात करते हैं प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन यहां पर इस कोलैबोरेशन, इस कोऑपरेशन को देखकर आपको क्या लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप का रिएक्शन क्या होगा?
2: देखिए, ना मैं न प्रधानमंत्री मोदी किसी के दबाव में आते हैं। हालांकि मैं ये भी साफ कर दूं कि हम अपना साझा काम कभी भी किसी के विरुद्ध नहीं करते। राष्ट्रपति ट्रंप की अपनी नीतियां और अपने सरोकार हैं और हमारे अपने, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। रूस और भारत तो बस अपना साझा हित चाहते हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। मुझे लगता है हमारी इस नीति की देशों को सराहना करनी चाहिए।
4: पर राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप

0: पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे?
1: मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है, और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार हैं।
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कुछ कर रहे हैं पीस को लेकर, लेकिन उन्होंने कई सारे क्लेम किए हैं। उन्होंने कहा है 8 वॉर्स रुकवा दिए, उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर था वो उन्होंने रुकवाया, भारत उसको बिल्कुल नकार रहा है, बिल्कुल उसको रिजेक्ट कर दिया उस पूरे स्टेटमेंट और क्लेम को। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप ट्रूली एक पीस मेकर है, एक ऐसे इंसान जो शांति के लिए काम कर रहे हैं और शांति ला सकते हैं?
1: यूक्रेन को लेकर तो निश्चित रूप से मैं फिर से कह सकता हूं कि इसे लेकर मैं सकारात्मक हूं। मुझे कोई शक नहीं है कि वो ईमानदारी से एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं फिर से ये रेखांकित कर सकता हूँ कि अमेरिका के पास इसके लिए अलग कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण भी और राष्ट्रपति ट्रंप के व्यक्तिगत मानवीय विचार भी, क्योंकि वास्तव में वो शत्रुता और जनहानि का अंत चाहते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक हित भी हो सकते हैं गतिरोध के अंत के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, और आर्थिक कारण भी, उदाहरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी। कई ऐसे पहलू हैं जहां अमेरिका और रूस के बीच आर्थिक संबंधों की बहाली दोनों देशों, रूस और अमेरिका के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। उन्होंने मुझे कुछ चिट्ठियां दिखाई जिन्हें कुछ प्रमुख अमेरिकी कंपनियों ने हमारे लिए लिखा था। जी हाँ, वो चिट्ठियाँ जो अमेरिकी कंपनियों ने लिखी थी कि वो तैयार हैं वापस आने के लिए जब सभी मुद्दे समाप्त हो जाएं, और वो ऐसा करना चाहते हैं और उन्हें ना भुलाया जाए। इसमें इतना आश्चर्यजनक क्या है? आप इतने हैरान क्यों हैं? बहुत से लोग रूस वापस आना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए उनका पक्ष रखना, कंपनियों की ओर से पक्ष रखने के लिए कंपनियों के पत्र लेकर आना तो बिल्कुल ही अलग मामला है।
3: नहीं,
1: आपने मुझे गलत समझा। हमारे पास अमेरिकी कंपनियों के पत्र हैं। हमारे पास सचमुच अमेरिकी कंपनियों के पत्र मौजूद हैं।
0: लेकिन राष्ट्रपति पुतिन, अगर वाकई रूस और यूक्रेन के बीच में शांति होनी है, युद्ध खत्म होना है, तो एक समझौते की तरफ बढ़ना होगा। आपकी नजर में क्या वो बिंदु है जिन पर सहमति बन जाएगी, या जहां पर यूक्रेन मान जाएगा तब ये युद्ध समाप्त होगा? मतलब आपकी नजर में रशिया के लिए विजय क्या है, जीत क्या है? नहीं, पर इससे पहले आपने कहा भी है कि आप और मैं आपको कोट कर रही हूं, आपने ये कहा है कि जब तक ऐसे तमाम क्षेत्र जहां पर अब रूस का वर्चस्व है, वहां से कीव की सेना यानी यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हट जाती है पूरी तरह से, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्या है इसका अर्थ? कौन से वो इलाके हैं सर जहां पर आप रूस का वर्चस्व चाहते हैं, उसका डोमिनेंस चाहते हैं, और मानते हैं कि अब वो यूक्रेन का हिस्सा नहीं होकर रूस का हिस्सा बन जाए?
1: आप जानते हैं, जैसा कि आपने कहा, बात जीत की नहीं है, बात इस बात

0: सकती है कि रूस अपनी रक्षा कर रहा है और करता हैगा। हमारे हितों की और उन लोगों की जो वहाँ रहते हैं, ये हमारी परंपरागत मूल्य रूसी भाषा और संस्कृति की रक्षा की बात है। साथ ही ये धर्म और आस्था की भी रक्षा है जो सदियों से उन क्षेत्रों में मौजूद रही है। आप जानते हैं कि यूक्रेन में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया है, चर्चों में जबरन कब्जा किया गया और लोगों को वहां से निकाल दिया गया। मैं तो यहां रूसी भाषा पर प्रतिबंध की बात भी नहीं कर रहा, ये एक जटिल और व्यापक मुद्दों का समूह है। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम युद्ध शुरू करने वालों में से नहीं थे। पश्चिम ने यूक्रेन के साथ मिलीभगत की और वहां तख्ता पलट को अंजाम दिया, और उसके बाद यूक्रेन में घटनाएं हुई, खासकर दक्षिण पूर्व में और फिर डोनबास में। ये चर्चा में भी नहीं है। पूरे आठ साल हम शांतिपूर्ण तरीकों से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने इसे मिन्स्क समझौतों में शांतिपूर्ण सेटलमेंट के रूप में दर्ज किया, इस उम्मीद में कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकेगा। बाद में हमें पता चला कि जो पश्चिमी नेता ये सार्वजनिक रूप से कहते थे, उन्होंने कभी भी मिन्स्क समझौतों को पूरा करने का इरादा नहीं रखा था। उन्होंने केवल इसलिए इसे साइन किया ताकि यूक्रेन को हथियार देने का मौका मिल सके और हमारे खिलाफ सशस्त्र संघर्ष जारी रखा जा सके। तो हमें 8 साल तक डोनबास में रहने वाले लोगों के मारे जाने के बाद, जिसकी याद पश्चिम में कोई नहीं रखता, पहले उन गणराज्यों को मान्यता देनी पड़ी और दूसरे उन्हें समर्थन देना पड़ा। और अब ये विशेष सैन्य अभियान युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये उस युद्ध को समाप्त करने का प्रयास है जो पश्चिम ने यूक्रेनी राष्ट्रवादियों के हाथों हमारे खिलाफ शुरू किया था। यही असलियत है, यही विवाद की जड़ है, और हम इस युद्ध को तब खत्म करेंगे जब हम तय करेंगे कि हमने वो लक्ष्य हासिल कर लिए हैं जो हमने विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत में निर्धारित किए थे, उन क्षेत्रों को मुक्त करने के लिए।
1: So what is that goal? What is the end game for Vladimir Putin in Ukraine?
2: Так я же сказал. Мы признали вот эти... Послушайте.
0: देखिए, 8 साल तक हमने उन खुद को स्वतंत्र घोषित करने वाली गणराज्यों को मान्यता नहीं दी। 8 साल तक उन्होंने अपनी आजादी का ऐलान किया हुआ था, और हम कोशिश करते रहे कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों और इन गणराज्यों के बीच कोई रिश्ते बन सके। फिर हमें समझ आया कि ये मुमकिन ही नहीं है, उन्हें तो बस खत्म किया जा रहा था। तभी हमें मजबूर होकर उन्हें मान्यता देनी पड़ी, और सिर्फ कुछ हिस्सों को नहीं बल्कि उनकी वही प्रशासनिक सीमाएं माननी पड़ी जो सोवियत काल में थी और बाद में स्वतंत्र यूक्रेन बनने के बाद भी थी। फिर वहां के लोग मतदाता रेफरेंडम में गए और उन्होंने मतदान किया कि वहां से सेना हटाई जाए और कोई भी सैन्य कार्रवाई ना की जाए, लेकिन उन्होंने युद्ध को ही चुना, और अब मामला साफ हो गया। और बात एक ही चीज पर आकर टिकती है, या तो हम सैन्य कार्रवाई के जरिए उन क्षेत्रों को मुक्त करें, या फिर यूक्रेनी सेना वहां से हट जाए, उन इलाकों को छोड़ दे और वहां के लोगों की हत्या करना बंद करे।
1: लेकिन देखिए राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट करना चाहती हूँ। वो तारीख थी 8 मार्च की, साल था 2014, जब क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद आप फेडरेशन काउंसिल को एड्रेस कर रहे थे और आपने कहा कीव इज द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज, यानी कीव सभी रूसी जो शहर हैं उनकी माँ के समान है। इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है?
0: यहाँ मैंने कुछ भी गड़ा नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ऐसा ही कहा जाता था। मूल रूप से रूसी राज्य कई केंद्रों से मिलकर बना था। इतिहास के अनुसार पहली राजधानी उत्तर पश्चिम में नोवगोरोड में थी, बाद में संघीय दर्जा वेलिकी नोवगोरोड शहर को मिला और फिर कीव को मिला। ये प्राचीन रूस था, और तब से कीव को सभी रूसी शहरों की जननी के रूप में जाना जाता है। बाद में इतिहास का रुख बदला और प्राचीन रूसी राज्य का बंटवारा हो गया। प्राचीन रूसी राज्य का एक हिस्सा मॉस्को में एक सेंटर के साथ विकसित होना शुरू हुआ और इसका दूसरा हिस्सा दूसरे देशों के साथ मिल गया, जैसे कीव और कुछ दूसरी जमीनें। ये जमीनें पहले लिथुआनिया के साथ मिलकर एक राज्य का हिस्सा थी, बाद में पोलैंड के साथ मिलकर पोलिश राज्य का हिस्सा बन गई। तो प्राचीन रूसी राज्य का वह हिस्सा 17वीं सदी में पोलैंड में खत्म हो गया।
3: The fact that, you know, you're mentioning the history, and it brings me to what I did when the conflict was underway. I had traveled to Donetsk, I traveled to Luhansk, Zaporozhye, Kherson, and most of the people who were there are Russian speaking. They speak Russian language. They were very disappointed with Kyiv that it was banned in eastern Ukraine. But they were also a little shocked that how is Putin doing this to us? We are his people. A lot of women I spoke to were in shock. So what do you have to say to people in eastern Ukraine who actually have families in Russia, who on a daily basis move from Ukraine to Russia? So what do you have to say to them?
2: Я не понял вопрос.
0: Мен самджа нахи, во кис лие херан те?
3: That they were shocked that there was an operation that happened and their homes were destroyed because they lived in eastern Ukraine and they have love for Russia and the Russian people and they're Russian speaking themselves.
2: Ответ очень простой. Они же видно в той части Украины, которая в той части, скажем, той же самой
0: бड़ा आसान है
2: области, находилась под
0: контролем киевских властей. Киев के कंट्रोल में थे.
2: Но та часть,
0: और जो क्षेत्र Киев के कंट्रोल में नहीं थे, उनको पूरे तरीके से कीव ने बर्बाद कर दिया और इसलिए हम मजबूर हो गए उन इलाकों का साथ देने के लिए जो नष्ट कर दिए गए। लोगों ने रेफरेंडम के लिए खुलेआम बोलना शुरू कर दिया, जो आजादी चाहते थे इधर आए और जो नहीं चाहते वो दूसरी तरफ जा सकते थे। हम उन्हें मना नहीं करेंगे, वो बेशक जा सकते हैं।
2: Уехать на другие части украинского государства. Пожалуйста, мы этому не мешали.
3: Зеленский की अगर बात करें तो बहुत कुछ उनको प्रॉमिस किया गया, नेटो मेंबरशिप, ईयू मेंबरशिप, लेकिन ऐसा अब तक कुछ हुआ नहीं है। आपको क्या लगता है, नेटो मेंबरशिप कभी भी ऑन द टेबल था यूक्रेन के लिए, Зеленский के लिए?
2: Когда этот господин приходил к власти, он заявил, что он
0: जब Зеленский सत्ता में आए तो उन्होंने कहा था कि वो हर हालत में शांति की कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना करियर दांव पर लगाना पड़े। अब देखिए, सब कुछ दूसरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। अब वो छोटे से समूह नेशनल रेडिकल फासिस्ट की मदद से हल निकाल रहे हैं। ये सरकार अपनी सोच से न्यूनाजी है। इनके राष्ट्रवाद और न्यूनाजी की परिभाषा एक ही है और इसी वजह से सारा माहौल युद्ध का बना, नाकामयाबी ही मिली।
2: По своей ментальности очень действительно похож на неонацистский режим, потому что крайняя форма национализма и неонацизма – это почти одно и то же. Это почти равные понятия. И сегодня, безусловно, все сводится к военным действиям.
0: Унке лие сабсе зарури хай е самажна, ки шантипун варта се хи хар самасья ка хал мумкин хай. Ор яхи бат хам унко сал 2022 се समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो करना चाह रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं।
1: राष्ट्रपति पुतिन, मैं आप ही को कोट कर रही हूं, आपने कहा कि नेटो का ईस्टर्न एक्सपेंशन यानी नेटो का पूरब की तरफ विस्तार आपको स्वीकार्य नहीं है और वही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन क्या वाकई नेटो से रशिया को इतना बड़ा खतरा है या सिर्फ ये एक प्रिटेक्स्ट रहा, एक आधार बना जो आपने यूक्रेन के खिलाफ कदम उठाया?
2: Послушайте, НАТО – это отдельная тема. Русский язык, русская культура.
0: देखिए, नेटो जो है वो एक बिल्कुल अलग मसला है। रूसी भाषा, संस्कृति, धर्म, हम यहाँ पर कुछ भी असाधारण नहीं मांग रहे। रूसी संस्कृति, रूसी भाषा, धर्म और यहाँ तक कि क्षेत्रीय सवाल, ये सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सब एक अलग श्रेणी की बातें हैं, जबकि नेटो पूरी तरह से दूसरी ही चीज है। हम कोई अनोखी, कोई अभूतपूर्व मांग नहीं कर रहे, एक मूल सिद्धांत है, किसी भी देश की सुरक्षा दूसरे देश की सुरक्षा का उल्लंघन करके नहीं हो सकती। ये सिर्फ किताबों में लिखी लाइन नहीं है, अगर सुनने में कठिन लगे तो मैं इसे बहुत सरल भाषा में कहूंगा। यूक्रेन समेत हर देश को अधिकार है कि अपनी सुरक्षा कैसे करनी है वो स्वयं तय करे। हम इस अधिकार को यूक्रेन से छीन नहीं रहे, लेकिन बात यह है कि यूक्रेन की सुरक्षा रूस की सुरक्षा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। यूक्रेन सोचता है कि नेटो में शामिल होना उसके लिए अच्छा है, पर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये कदम रूस की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा होगा। इसलिए जरूरत है एक ऐसा तरीका खोजने की जिसमें आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और हमारी सुरक्षा खतरे में ना पड़े। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि जो वादे हमें किए गए थे उन्हें बस पूरा किया जाए। ये कोई कल उठाया गया मुद्दा नहीं है, ये तो तब तय हुआ था जब मैं सत्ता में भी नहीं था। उन्होंने खुद कहा था एक इंच भी पूर्व की ओर विस्तार नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी नेटो ने कई बार विस्तार किया और अब वे यूक्रेन को भी नेटो में शामिल करने की कवायद में थे। यही कारण है कि असंतोष पैदा हुआ, क्योंकि नेटो एक सैन्य गठबंधन है और उसका आर्टिकल 5 आज भी उतना ही प्रभावी है, लेकिन कोई हमारी सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से नहीं लेता। जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ था तो उसके पहले ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों में सैन्य तटस्थता की घोषणा थी और यही यूक्रेन की राज्य व्यवस्था की नींव बनी, उसकी संप्रभुता की घोषणा जिसमें साफ लिखा हुआ है कि यूक्रेन तटस्थ रहेगा।
3: प्रेजेंट पुतिन, यहाँ पे अगर हम क्राइमिया की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपको G8 से हटा दिया गया और अब कहीं ना कहीं वेस्ट ये कह रहा है कि रूस अकेला अलग थलग खड़ा है, कि उन्होंने वो सक्सेसफुल रहे रूस को कोट एंड कोट आइसोलेट करने में।
0: हमें क्रीमिया पोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, वो हमारा है। हमारी नौसेना यूक्रेन से समझौते के तहत वहां पहले से ही मौजूद थी। सेविस्तोपोल के नौसेना के पोर्ट पर सोवियत संघ विलय होने के बाद से सेना वहीं थी, ये एक फैक्ट है। और हमने क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ। हम बस उन लोगों की मदद करने आए थे जो यूक्रेन में तख्ता पलट करने वालों के साथ अपनी जिंदगी या किस्मत नहीं जोड़ना चाहते। उन्होंने कहा, अरे राष्ट्रवादी उग्रवादियों ने कीव पर कब्जा कर लिया, क्या किसी ने हमसे पूछा? ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के बाद हम स्वतंत्र यूक्रेन का हिस्सा बन गए, तो ठीक है, इतिहास में ऐसा ही हुआ, ठीक है, अब हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अगर यहाँ तख्ता पलट होता है जिसके नतीजे अज्ञात हों तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं रहना चाहते। क्रीमिया वासियों पर सिर्फ दबाव नहीं बल्कि खुली हिंसा का भी खतरा था। रूस ने उनकी मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया, हम और क्या कर सकते थे? अगर कोई अलग सोचता है, ये सोचता है कि रूस अलग तरह से काम करेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम हमेशा अपने हितों और अपने लोगों की रक्षा करेंगे।
3: कई सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन की आप की रूस G8 में वापस जुड़ना चाहता है, ऐसा हो रहा है?
0: नहीं
1: नहीं, आप ये बहुत दिलचस्प जवाब आप दे रहे हैं, उस मतलब इसकी कल्पना करना मुश्किल है कि आप खुल के कह रहे हैं कि आपको G8 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब G7 से वापस G8 बने और आपको हिस्सेदारी मिले।
2: ये
0: एक दिलचस्प टिप्पणी है, और आप सही कह रहे हैं, मैं इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट हूँ। देखिए, सच बात यह है कि मैं इन बैठकों में जाना बहुत पहले ही बंद कर चुका था, ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सच में नहीं समझ पाता कि G7 देश खुद को G7 क्यों कहते हैं। जी यानी ग्रेट, यानी बड़े। लेकिन जरा सोचिए, आज भारत क्रय शक्ति के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो फिर क्षमता के लिहाज से UK या कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा विचित्र लगता है, लेकिन ठीक है, उनका अधिकार है खुद को जो कहना चाहे। हाँ, इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं हाईटेक हैं, उनकी नींव मजबूत है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है, और ये रुझान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये उनकी सरकारों की गलत नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। जैसे जर्मनी को देखिए, 3 साल से मंदी में है। फ्रांस कठिन हालात में है, मंदी के बिल्कुल करीब, और यही स्थिति कई अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की भी है। लेकिन ये भी सच है कि G7 अभी भी एक महत्वपूर्ण मंच है। वो काम करते हैं, चर्चा करते हैं, फैसले लेते हैं, उन्हें शुभकामनाएं, उनका भला ही हो। लेकिन फिर भी एक समय आया जब मैंने इन बैठकों से पूरी तरह दूरी बना ली, और ये यूक्रेन की घटनाओं की वजह से नहीं था, बल्कि कुछ और कारण थे, जिन पर मैं अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता। खैर, हम अपने अमेरिकी साझेदारों को इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। हाँ, उस बैठक में भी हमने इस मुद्दे का जिक्र किया था, विशेष तौर पर मिस्टर मेटकाफ के साथ हुई चर्चा में, क्योंकि ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था।
1: कई मुद्दों पर आपने तमाम अन्य संगठनों के और जो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, जिसमें वर्चस्व है पश्चिमी देशों का, आप कह रहे हैं कि उसमें हमको हिस्सा ही नहीं लेना है, उसमें मुझे जाना ही नहीं है, मैं वहां पर सार्थक तरीके से जाना चाहता हूं जहां पर महत्व है। ऐसे में मेरा सवाल आपसे यह है कि फिर इसका ऑल्टरनेट, इसका विकल्प है क्या? रिक्स है, ब्रिक्स है, ग्लोबल साउथ है, SCO है, क्या है?
0: आपने पूछा कि क्या दुनिया बदल रही है, क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। देखिए, बात यह है कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन आजकल बदलाव की गति बहुत तेज हो गई है, और हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं।
2: ग्लोबलने प्रोसेसे इकोनॉमिकского характера।
0: मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। असल में हम वैश्विक आर्थिक बदलाव और हलचल के गवाह हैं। ये बदलाव यूक्रेन या अन्य संघर्ष क्षेत्रों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में हम एक और घंटा बात कर सकते हैं और मुझे इससे खुशी होगी, लेकिन शायद आपके दर्शक हमारी इस चर्चा से ऊब जाएं।
2: Они будут утомлены нашими рассуждениями на этот счет. Факт остается фактом.
0: Лекин तथ्य यही है कि विकास के नए केंद्र बन रहे हैं, तेज विकास, मजबूत विकास। ये बदलाव खासकर ग्लोबल साउथ में हो रहा है। मैं दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया भी तेजी से उभर रहा है।
2: इंडिया, не только Индия. Там Индонезия поднимается как быстро, ну почти 300 миллионов человек там тоже почти, что, конечно, не полтора миллиарда, как у вас.
0: यहां लगभग 300 миллион लोग हैं, भारत जितने 1.5 अरब नहीं, लेकिन फिर भी ये तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ता देश है। इसी तरह अफ्रीका भी तेजी से विकास कर रहा है, और ये विकास और तेज होगा क्योंकि वहां युवा आबादी है, उनका भविष्य है, और वे उच्च जीवन स्तर की मांग करेंगे। कुल मिलाकर इसे रोका नहीं जा सकता।
3: What is the roadblock in the rupee ruble payment here then?
2: Здесь нет препятствий. Это вопросы экономического характера. Мы прекрасно понимаем и отдаем себя отчет в том, что у нас есть определенный дисбаланс в торговле. Но, скажем,
0: इसमें कोई बाधा नहीं है। Правительство, ये अर्थव्यवस्था का मामला है, और मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे बीच असंतुलित कारोबार है।
2: И в нефти, и в нефтепродуктах. Правительство Индии нуждается в расширении, в увеличении приобретений.
0: उदाहरण के तौर पर भारत ने हमारे बीच कोई रुकावट पैदा नहीं की, क्योंकि उन्हें तेल और तेल से निर्मित सामान चाहिए। भारत सरकार को अपने किसानों के लिए रूस में बने उर्वरक चाहिए।
2: здесь дело в другом. Дело в том, что дело не в рупиях, а дело в том, что на эти рупии могут закупать.
0: PM Modi हमेशा इस मुद्दे को मेरे सामने उठाते हैं और ये रुपए में पेमेंट का मामला नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं कि इस असंतुलन को दुरुस्त करना है. प्रतिबंधित नहीं, हमारे कारोबार से दोनों देशों को फायदा हो, किसी एक को नहीं.
2: таких сфер деятельности, которые были бы выгодны и Индии, и нам. Вот по нашей инициативе мы сейчас это по нашей.
0: भारत दौरे पर हमारा प्रयास है कि हम पहल करें जिसमें भारत और रूस के आयात और निर्यात की प्रदर्शनी लगे. मैंने अपने अफसरों को आदेश दिया है कि भारत से हम जो सामान खरीदते हैं उसमें और क्या जोड़ सकते हैं, इस पर काम करें.
2: Это, скажу вам честно, это моё прямое указание было правительству Российской Федерации продумать, что мы дополнительно могли бы закупать в Индии. Мы думаем над этим, причём с обеих сторон, в том числе и со стороны России.
1: Сэр, ठीक है, इस पे वापस लौटेंगे. बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन मैं आपसे सीधा बोलती हूँ इधर उधर शब्द मिक्स किए बिना कि भारत और चीन के बीच में तनाव है, सरहद के कई मुद्दों पर तनाव है, और ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं सीधा कि आपका अच्छा रिश्ता चाइना से भी हो, आप चाहते हैं कि आपका अच्छा रिश्ता भारत से भी बने, क्योंकि ये वो दो देश हैं जो आप गए, अभी भी गए, आप चीन गए और अब आप भारत जा रहे हैं. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप दोनों के बीच में संतुलन कैसे रिश्ते में बनाएंगे?
2: Нам об этом хорошо известно. Индия и Китай наши самые близкие друзья. Мы этим очень дорожим.
0: भारत और चीन हमारे सबसे करीबी मित्र हैं. और मैं ये नहीं समझता कि हमें उनके द्विपक्षीय मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए.
2: Стремятся и находят решения всех, даже очень сложных межгосударственных.
0: मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग जटिल और विवादित मसलों पर किसी नतीजे तक जरूर पहुंचेंगे. दोनों देशों के बीच जो तनाव है उससे दोनों नेता चिंतित हैं. वो समस्या का समाधान भी करना चाहते हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, नतीजे पर भी पहुंचेंगे. मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूं. मैं नहीं समझता कि मुझे हस्तक्षेप करना चाहिए, ये द्विपक्षीय मामले
2: हैं.
1: राष्ट्रपति पुतिन, अगला सवाल मेरा बहुत गंभीर सवाल है, और वो इसलिए है क्योंकि आतंकवाद का दंश रूस ने भी झेला है, रशिया ने, और भारत भी झेल रहा है. पहलगांव का आतंकी हमला हो या फिर उसके बाद दिल्ली का आतंकी हमला, ये जो विश्व में कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, वो सोचते हैं ये तो किसी दूसरे देश की घटना है, और जो उसके कल्प्रिट देश होते हैं या जो उसके लिए जिम्मेदार देश होते हैं उन पर उंगली रखने से वो इनकार करते हैं. इस पर मैं आपका जवाब चाहती हूं. ये जो आइडियोलॉजी चला दी जाती है कि आपका आतंकी लेकिन मेरा तो वो स्वतंत्रता सेनानी है, इस डबल स्टैंडर्ड का क्या उपाय है, क्या इलाज है, क्या तरीका होना चाहिए इसका डील करने का?
2: Ну, все очень просто. Значит, терроризм, за свободу надо бороться легальными средствами. Все, что связано с бандитскими средствами, с нанесением...
0: ये बहुत आसान है. आजादी के लिए लड़ना हो तो कानूनी तरीकों से लड़ो. हमारा तो यही मानना है कि आतंकियों का समर्थन नहीं किया जा सकता. जैसा आपने कहा, रूस भी आतंकवाद पीड़ित रहा है. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ है.
2: полный союзник и целиком и полностью поддерживаем Индию в борьбе с терроризмом.
3: आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं?
0: आपने मुझसे दूसरे देशों के नेताओं के बारे में पूछा है. मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं. सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध है. वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान है. मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, भारत खुशकिस्मत है. वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं. मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ. मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है, और ये एक बात है। दूसरी बात सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में, और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बातचीत की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी होगी।
1: जेनजी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, राष्ट्रपति पुतिन, कई जगहों पर हमने देखा कैसे अलग अलग देशों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ युवाओं का, जेनजी का, और वहां पर तख्ता पलट तक की नौबत आई। आप अपने देश में जेनजी में, और मैं आपकी उम्र पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही हूं, आप अपने देश में जेनजी से, यूथ से कैसे कनेक्ट करते हैं?
4: Знаете, здесь нет ничего нового. Ведь и у нас в
0: литературе, в искусстве नया नहीं है। आप जानते हैं कि साहित्य और कला में हमेशा विरोधाभासों की बात होती रही है, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच, पिता और बेटों के बीच। हमारी पुरानी रचनाओं में भी ये बातें और ये चित्र हमेशा से मौजूद रहे हैं। सभी को ये जानने की जरूरत है कि यहाँ कुछ भी नया नहीं है। आप जानते हैं नया क्या है? नई है टेक्नोलॉजी, मैसेंजर, टेलीग्राम वगैरह, जिनका इस्तेमाल सक्रिय रूप से आज भी युवा पीढ़ी पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। ये पीढ़ी कमोबेश वही युवा लोग हैं जो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा कट्टर हैं। युवा पीढ़ी सोचती है कि सिर्फ वो ही अन्याय का सामना कर रही है और उनसे पहले किसी ने ये सब देखा ही नहीं। युवा ये सब देखते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों को बताते हैं। उन्हें लगता है कि इससे निपटना बहुत आसान है, इसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा समझदार हो जाता है और खुद कुछ बदलने की कोशिश करता है, तो उसे पता लगता है कि जिसका हल ढूंढना वो आसान समझ रहे थे, वो उतना आसान है नहीं जितना पहली नजर में लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ उस वक्त काम करने की जरूरत है जब हम कह सकें कि अभी आप बस युवा हैं, आप कुछ नहीं समझते, आप बस अपने घरों में बैठे हैं। ये ऐसे ही हो सकता है। आपको हमेशा युवाओं के टच में रहने और उनके टूल्स, उन तक जानकारी पहुंचाने के तरीकों, सोशल नेटवर्क वगैरह में फीडबैक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको वहां काम करने की जरूरत है और मुझे यकीन है कि आप कुछ हद तक ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको हर सफलता की शुभकामना देना चाहता हूं।
4: социальных сетях. Надо там работать. Я так понимаю, что вы отчасти этим и занимаетесь. Хочу вам пожелать успеха.
1: राष्ट्रपति पुतिन, आपने हर सवाल का खुलेपन के साथ जवाब दिया। आपकी निजी जिंदगी, आप पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, रशिया के लिए आपका विजन क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध पर, लेकिन भारत और भारत के लोग आपको जरूर सुनना चाहते हैं और उनकी नजर आप पर रहती है, वो आपको पसंद करते हैं। एक फिल्मी गाना है, बहुत पुराना है लेकिन रशिया में भी बहुत वो लोकप्रिय रहा है गाना, सिर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बहुत पुराना गाना है। लेकिन आज जो भारतीय आपको सुन रहे हैं, आपका खुले बाहों से स्वागत कर रहे हैं, आप भारतीय लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: Вот вы сейчас сказали о буддийской культуре, о российской культуре. Вы знаете, у нас существует, мне так кажется, что
0: आपने अभी भारतीय संस्कृति का जिक्र किया। रूसी संस्कृति के बारे में मैं यही कहूंगा कि रूस के बहुत से नागरिकों के दिलों में भारतीय संस्कृति की छवि एक परी कथा जैसी सुंदर, रंगीन और मनमोहक है। ये छवि कई दशकों से है, सोवियत काल से है। रूसी लोगों को भारतीय संगीत और भारतीय फिल्में बहुत पसंद है। मैं तो कहूंगा कि रूसी समाज के कुछ हिस्सों ने भारतीय संस्कृति को पूजा जैसी जगह दी है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे लगता है कि ये दिल से दिल का रिश्ता है। हम ये सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश करेंगे कि ये दिलचस्पी अपनी चमक कभी न खोए। मैं चाहता हूं कि भारत इस भावना को जाने।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रपति पुतिन आज तक पर आने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और यही कह सकते हैं कि बहुत सारे रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है जो मौसमी रहते हैं, लेकिन ये शायद एक ऐसा ऐसी दोस्ती है, एक ऐसा रिश्ता है जो 7 दशकों से चला आ रहा है। और हमेशा आंख बंद करके हम दोनों, ये दोनों देश एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जिसको क्लासिक विंटेज अंग्रेजी में कहते हैं, जिसका वक्त के साथ और भी गहराई जिस रिश्ते में आती है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये स्थिति और भी बेहतर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
5: राष्ट्रपति पुतिन, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की, जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात ये भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11-12-13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपी स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमें एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट्स हमें प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए। वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे लेकिन 1 साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है.
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी. लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है. पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था. युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है. दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं. आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है.
5: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक.
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है. भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास. भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 ट्रायम्फ की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी है. मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था. रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी
6: अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस एनजी लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त

0: व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
1: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन 1 साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोंप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने

0: यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
1: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
0: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले एनएसए अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और पीएम की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
1: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
0: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
1: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
0: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
1: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
2: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने न सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है। तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
1: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है। ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए। जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प। 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई। दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत। समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे। अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ। 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले।
3: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे, तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है।
1: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है। पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था। युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
4: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है। और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक।
1: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 प्राइम की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था। इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस NG मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस NG लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
5: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने ही खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
6: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
5: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के दो दशक आपकी छत्र छाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
7: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
5: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीएसपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
8: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
5: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
9: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
5: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
5: शरीर पर वर्दी नहीं है इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
10: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
5: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
11: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
5: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है
12: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद रूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
5: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
13: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तस खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
5: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
13: वोट ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
5: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राहि त्राहि कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
3: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
14: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
15: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहाँ से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
14: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिरग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। समर्थ श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है।
1: सत्य निकेतन एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जहाँ पे एक बिल्डिंग ढही, लेकिन लाखों ऐसी हैं जहाँ खतरे की घंटी बज रही है।
2: करीब 2 या 3 लोग और हो सकते हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हों।
3: अमानवीयता की हद ये है कि जब बिल्डिंग गिरती है, छात्र उसमें फंस जाते हैं, छात्रों की मौत हो जाती है, तो ये मौके से फरार हो जाता है।
4: हरिराम बंसल और उनका परिवार फरार है।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात, जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज, 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात, 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर, आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती, ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास, ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार, जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा, तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप, रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की, जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्सी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोंप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान के हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंह तोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है.
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी. लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है. पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था. युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है. दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं. आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है.
5: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक.
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है. भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास. भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 प्राइम की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं. मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को बार गिराकर एक नया इतिहास रचा था. रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी
6: अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस एनजी लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
7: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती कहीं बचे।
8: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
7: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
9: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
7: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो BSP में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
10: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
7: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
11: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। आपने देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए, फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
7: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
7: शरीर पर वर्दी नहीं है, इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
12: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका, चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
7: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
13: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मौना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
7: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है,
14: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद रूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
7: भोजपुर का हाल भी बेहाल है, कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
15: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
7: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
15: पोट ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
7: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक।
4: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
16: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
17: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहाँ से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
16: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिरग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सबर श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया बनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। हो तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है।

यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन 1 साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: यह दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?

0: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
1: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
0: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
1: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
2: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने न सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही, और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है। तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं, और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से।
1: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है। ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए। जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प। 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुईं। दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत। समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे। अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ। 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले।
3: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे, तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है।
1: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है। पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था। युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
4: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 प्राइम की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था। इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस NG मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस NG लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
3: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
5: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
6: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
5: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती के इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई। लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के दो दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना यह आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
7: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
5: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीएसपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
8: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान है करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
5: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
9: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतरकला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
5: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
5: शरीर पर वर्दी नहीं है इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए, इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
10: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
5: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
11: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
5: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है
12: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रोड लूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
5: भोजपुर का हाल भी बेहाल है, कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
13: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
5: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
13: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
5: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
3: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
14: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
15: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहाँ से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
14: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिलग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। समर्थ श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया बनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट्स हमें प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्सी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे मालूम है। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: यह दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है.
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी. लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है. पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था. युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है. दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं. आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है.
5: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक.
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है. भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास. भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 ट्रायम्फ की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं. मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था. रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी
6: अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस एनजी लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
7: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने ही खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
8: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
7: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्र छाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
9: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
7: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो BSP में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
10: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके करंट तरीकों को लेके कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
7: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं, ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ।
11: बहुजन सर्वजन हिताय बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। अपनी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
7: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
7: शरीर पर वर्दी नहीं है इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए, इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
12: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
7: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
13: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
7: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है
14: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रोड लूप दिखाया है, उपनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
7: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
15: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
7: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुल कर रखी।
15: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
7: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
4: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
16: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
17: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यहीं जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
16: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिलग्राम और सवाईपुर जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। सबर श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इसराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहे हैं। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे

0: ताकत का एहसास गलवान में करवाया तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान के हम बात कर रहे हैं तो हमने न सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है। तो दोनों अगर आप जोड़े

0: तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं, और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
1: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है। ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए। जून 2020, गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प। 2020 से 2023, गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुईं। दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत, समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे। अक्टूबर 2024, रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ। 2025, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। मार्च 2026, भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले।
2: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे, तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है।
1: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है। पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था। युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक।
1: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 प्राइम की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था। इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस NG मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस NG लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
2: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
4: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने ही खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
5: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
4: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
6: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
4: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो BSP में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
7: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता है वो कुछ थोड़े से परेशान है, करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, तो जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते।
4: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
8: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। अपनी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए, फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
4: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
2: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
4: शरीर पर वर्दी नहीं है, इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
9: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
4: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6 से 8 हजार लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
10: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
4: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है
11: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
4: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
12: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
4: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
12: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
4: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक।
2: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
13: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
14: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
13: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिरग्राम और सवाईतपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। समर श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउंड एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपी स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इसराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्सी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं? जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है.
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी. लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है. पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था. युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है. दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं. आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है.
5: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक.
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है. भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास. भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 ट्रायम्फ की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं. मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को मार गिराकर एक नया इतिहास रचा था. रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी
6: अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस एनजी लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
7: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
8: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहाँ पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
7: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती के इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
9: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
7: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो BSP में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
10: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हैं हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को, पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
7: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
11: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
7: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
7: शरीर पर वर्दी नहीं है इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए, इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
12: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
7: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
13: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
7: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है
14: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
7: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
15: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
7: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
15: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
7: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
4: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
16: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
17: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहाँ से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
16: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिलग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। समर्थ श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया बनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपीस स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट समय प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल है। ईरान चाहता है कि अमेरिका इसराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ

0: उनका कर्सी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैं कहा नहीं मुझे बात। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
1: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
1: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल पीएम मोदी और जिनपिंग एससीओ सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
1: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले एनएसए अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और पीएम की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
1: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
1: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
1: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक वन टू वन बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान के हम बात कर रहे हैं तो हमने न सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही, और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है। तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं, और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
1: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता। यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है। ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए। जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प। 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई। दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत। समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे। अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ। 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई। गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई। मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर

0: रिश्ते सुधारने के संकेत मिले।
1: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे, तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है।
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी, लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है। पिछले नौ महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था। युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है। दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
2: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक।
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है। भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 प्राइम की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था। इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं। मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को बार गिराकर एक नया इतिहास रचा था। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस NG मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस NG लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
1: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
3: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने ही खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती के ही बचे।
4: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं, वो अब ऐसे में क्योंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहां पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
3: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती के इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह बीएसपी से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की बीएसपी में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है, उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्रछाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
5: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
3: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बीएसपी में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
6: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता है वो कुछ थोड़े से परेशान है करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते हैं।
3: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ
7: बहुजन सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। अपनी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
3: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
1: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
3: शरीर पर वर्दी नहीं है, इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं, जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
8: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
3: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6 से 8 हजार लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
9: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मोना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
3: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है,
10: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उपनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
3: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
11: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तस खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
3: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुल कर रखी।
11: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
3: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया से रोहित सिंह के साथ आज तक के।
1: यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल है बाराबंकी का। देखिए हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
12: ये यूपी का जिला बाराबंकी है। एक तरफ घाघरा की विनाशकारी लहरें हैं और दूसरी तरफ किसी का आशियाना। लहरें इतनी खतरनाक हैं कि अब तक कई मकानों को, खेत खलिहानों को डुबा चुकी हैं। बाराबंकी के रामपुर तहसील का ये गांव भी घाघरा नदी से अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा है।
13: लोगों के जो आशियाने हैं वो टूट गए हैं। यहाँ पूरा पूरा आगे तक का एरिया था वो सब पानी में बह गया है। यही जहां से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूं, इसके मेरे ठीक इस तरफ थोड़ा सा आगे चलकर एक शिव मंदिर था।
12: इसी गांव में घाघरा के तट पर ही एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका अब नामो निशान मिट गया है। रात में जब नदी का पानी कटान करता हुआ बस्तियों की तरफ बहा तो ये शिव मंदिर भी पानी में समा गया। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान से लगभग 48 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। कटान रोकने के लिए सरकार की ओर से जितने भी उपाय किए गए वो नाकाफी साबित हुए। बाराबंकी में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत चौकियां स्थापित की गई हैं। इन राहत चौकियों में जरूरत के सामान बांटे जा रहे हैं। दावा यहां तक है कि पशुओं का चारा भी बाढ़ राहत में दिया जा रहा है। यूपी का हरदोई भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। यहां गंगा, गर्रा और रामगंगा नदी उफान पर हैं। बिरग्राम और सवाईपुर तहसील के कई गांव पानी में डूबे हुए हैं। गर्रा और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। समर्थ श्रीवास्तव, बाराबंकी आज तक।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात। जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज। 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर। आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती। ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास। ईशान आनंद पर नजर। पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार। जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग। मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा। वो तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप। रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की। जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। 100 से ज्यादा एनएसजी कमांडो और एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, स्नाइपर और एंटी सेबोटाज टीमें भी लगाई गई हैं। दिल्ली के 35 रूट और 11 होटल सुरक्षा घेरे में रहेंगे। करीब 30 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनमें डीसीपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं, सुरक्षा की निगरानी करेंगे। 1,000 से ज्यादा दिल्ली पुलिस के स्विफ्ट एक्शन टीम कमांडो भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली में 3 दिन के लिए 22 पॉइंट पर डायवर्जन और 35 सड़कें बंद होंगी। भारत मंडपम के 5 किलोमीटर के दायरे में मल्टी लेयर सिक्योरिटी रहेगी। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, एनएसजी कमांडो और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, आईबी, एसपीजी, एनएसजी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, करीब 7,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती।
2: देखिए, ब्रिक्स समिट हमारी 11, 12, 13 सितंबर को भारत मंडपम का वेन्यू है और हमारे 9 होटल्स हैं जहां पे हमारे वीआईपी स्टे कर रहे हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने डिटेल अपना ट्रैफिक अरेंजमेंट लगाया है, तमाम रूट्स पे, डायविजन्स पे, पॉइंट्स पे स्टाफ हमारा डिप्लॉयड है। हम लोग मोटर कार के रिहर्सल्स कर रहे हैं जिससे कि हम लोगों के स्टाफ को पता रहे कि कैसे रूट्स का रहेगा। टाइमिंग्स का भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि किस टाइमिंग से निश्चित समय पे हर वीआईपी पहुंचे। इसके अलावा हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग पब्लिक को डाइवर्ट करेंगे। वहां पे हमने साइनेजेस लगाए हैं, बोर्ड्स लगाए हैं। अपनी हमने एडवाइजरी के थ्रू, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के थ्रू पब्लिक को बताया है कि किस समय से और कौन कौन से रूट्स हमें प्रभावित रहेंगे।
1: रूस, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान युद्ध और मिडिल ईस्ट के संकट और आर्थिक दबाव के बीच 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हो रहा है। तो मोदी, जिनपिंग और पुतिन जैसे दुनिया के शक्तिशाली नेताओं का एक मंच पर जुटना वैश्विक कूटनीति की दशा दिशा तय करेगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन के त्रिकोण को दुनिया भर में अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस त्रिकोण को पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक नए शक्ति केंद्र के रूप में देखते हैं। पश्चिमी विश्लेषकों का मानना है कि रूस और चीन मिलकर वैश्विक व्यवस्था को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दुनिया ये मानती है कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा होने के बावजूद अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। भारत पश्चिमी देशों के साथ भी संबंध रखता है, जैसे क्वाड के साथ साथ ब्रिक्स में भी सक्रिय है। ब्रिक्स के इस सम्मेलन में सबसे अहम मुद्दा अमेरिका होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने दोस्तों और दुश्मनों दोनों को ही हैरान किया है, लेकिन इस महासम्मेलन में भारत की कूटनीति की भी परीक्षा है। ऐसे में भारत ये पक्का करेगा कि अमेरिका की सीधी आलोचना ना हो, खासकर इसलिए क्योंकि चीन और रूस ब्रिक्स के प्रमुख सदस्य हैं। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध की वजह से पूरा पश्चिम एशिया कूटनीतिक तौर पर उबल रहा है। इसमें एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका के करीबी सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी शामिल हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल ने उस पर जो हमला किया उसकी निंदा की जाए, वहीं यूएई चाहता है कि ईरान ने व्यापारिक जहाजों पर जो हमले किए हैं उसकी आलोचना हो और हुर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खोला जाए। सऊदी अरब अभी खुद ही हूती विद्रोहियों की वजह से बदले की भावना से उबल रहा है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र को बिना मतभेद के आपसी सहमति से तैयार करवाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। हालांकि चीन को भारत पर पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो।
0: 2019 के बाद 2026 में यानी कि 7 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। 2019 में जिनपिंग भारत दौरे पर आए थे, लेकिन एक साल के बाद 2020 में गलवान में भारत चीन सैनिकों की बीच हुई खूनी झड़प ने दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में एक नई दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे में जिनपिंग के भारत दौरे से दोनों ही मुल्कों के रिश्तों में खुली खटास में मिठास घोलने से इसे जोड़कर देखा जा रहा है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। इससे पहले जिनपिंग 2019 में भारत आए थे, लेकिन बीते 7 सालों में चाहे भारत चीन के रिश्ते हो या फिर ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत कुछ बदल चुका है। 2020 में चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास गलवान में करवाया, तो बीते साल चीन के पिछलग्गू पाकिस्तान को युद्ध के मैदान में घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया भर में मची उथल पुथल के बीच जिनपिंग के भारत दौरे को वैश्विक राजनयिक हलकों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा क्यों, इसे तस्वीरों से समझिए। बीते साल की ये तस्वीरें आपको याद होंगी, ये वही तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत मिर्ची लगी थी। ट्रंप ने चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कटाक्ष किया था। मौका था शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन का। तब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन के तियानजिन गए थे। सम्मेलन के दौरान PM मोदी की जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई थी और प्रधानमंत्री ने जिनपिंग को ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आने का आमंत्रण दिया था। PM मोदी का न्योता जिनपिंग ने कबूल करके दुनिया को बता दिया है कि भारत और चीन अपने रिश्तों में नया इतिहास लिखने को तैयार हैं। एक इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने जिनपिंग के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी सुनाई थी।
1: 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री बना तो चीन के राष्ट्रपति शी, उनका कर्टसी कॉल आया, शुभकामनाएं वगैरह वगैरह बातें ही। फिर उन्होंने खुद ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है आपका, आप जरूर आइए। तो कहा लेकिन मैं गुजरात जाना चाहता हूँ। मैंने कहा तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे गांव वडनगर जाना चाहता हूँ। बोले तुम्हें मालूम है क्यों? मैंने कहा नहीं मुझे बात नहीं। तो बोले मेरा और तुम्हारा एक स्पेशल नाता है। क्या? ह्यूएन संग जो चाइनीज फिलोसोफर था वो सबसे ज्यादा समय तुम्हारे गांव में रहा था, लेकिन वापस जब आया चाइना तो मेरे गांव में रहा था। तो बोले हम दोनों का ये कनेक्ट है।
0: अब बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि इस दौरे के मायने क्या हैं, जिनपिंग के भारत दौरे से क्या होगा, क्योंकि चीन 1962 में भारत की पीठ पर खंजर घोप चुका है। जानकार मानते हैं कि चीन के साथ रिश्तों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते रिश्ते सुधारने की जरूरत भी है। जिनपिंग की भारत यात्रा क्यों अहम है?
2: ये दौरा भारत चीन के रिश्तों को बेहतर बनाने, सीमा विवाद को सुलझाने के साथ साथ कारोबार और निवेश को नई रफ्तार दे सकता है।
0: क्या सीमा विवाद के बीच जिनपिंग की मेजबानी ठीक है?
2: गलवान झड़प के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बैठकें की हैं, ताकि सीमा पर तनाव को कम किया जा सके। बीते साल PM मोदी और जिनपिंग SCO सम्मेलन के दौरान गर्मजोशी से मिले थे। भले ही वहां औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन दोनों मुल्कों की टॉप लीडरशिप ने यही संकेत दिए कि अब टकराव का नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारने का वक्त है।
0: जिनपिंग के दौरे से पहले पर्दे के पीछे क्या कूटनीति चली?
2: जिनपिंग के भारत आने से ठीक पहले NSA अजीत डोवाल ने चीन का दौरा किया। भारत चीन बॉर्डर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाए गए। दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच हाई लेवल टॉक हुई। इन्हीं मीटिंग्स के बाद जिनपिंग और PM की मुलाकात की जमीन तैयार की गई।
0: भारत चीन संबंधों में सुधार की पृष्ठभूमि क्या है?
2: गलवान झड़प के बाद भारत चीन रिश्तों की खाई और गहरी हो गई, लेकिन गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे भेजने में सहमति बनी। दोनों मुल्कों के राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के जरिए से रिश्तों में धीरे धीरे सुधार हुआ।
0: भारत और चीन किन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं?
2: सीमा विवाद सुलझाना, रिश्तों को बेहतर बनाना, भारत का कारोबार घाटा कम करना, निवेश, तकनीक, रेयर मिनरल की सप्लाई।
0: बड़ी बात यह है कि 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच ये पहली औपचारिक 1-to-1 बातचीत होगी। जानकार मानते हैं कि भारत चीन के बीच सिर्फ सीमा विवाद ही नहीं बल्कि कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि चीन को भी ये पता है कि अब भारत से दुश्मनी घाटे का सौदा है।
3: 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान की हम बात कर रहे हैं तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है मिलिट्री काबिलियत वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है. तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश हैं. और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से,
0: मतलब नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की ताकत को नजरअंदाज करने की गलती चीन नहीं कर सकता. यही वजह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद चीन की अक्ल भी ठिकाने आ गई है. ऐसा क्यों? आप बीते 6 साल में भारत चीन के रिश्तों की टाइमलाइन से समझिए. जून 2020 गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प. 2020 से 2023 गलवान के बाद तनाव खत्म करने की कोशिशें सफल हुई. दोनों देशों के सैन्य अफसरों के बीच कई दौर की बातचीत. समझौते के बाद विवाद खत्म नहीं लेकिन सैनिक पीछे हटे. अक्टूबर 2024 रूस के कजान में मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग और सैनिकों की तैनाती को लेकर समझौता हुआ. 2025 कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई. गलवान के बाद बंद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई. मार्च 2026 भारत ने चीन निवेश के कुछ नियमों में ढील दी जिससे कारोबार के मोर्चे पर रिश्ते सुधारने के संकेत मिले.
4: नौ महीने में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं. क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव के मुताबिक मोदी और पुतिन की बातचीत में व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और दोनों ही देशों के बीच कारोबार बढ़ाने जैसे मुद्दे शामिल होंगे. तो रक्षा समझौतों के लिहाज से भी ये मुलाकात अहम है.
0: किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के बाद एक बार फिर से पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बात होगी. लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि मेजबान मोदी हैं और नई दिल्ली में ये वार्ता होने जा रही है. पिछले 9 महीने में पुतिन का ये दूसरा भारत दौरा है. इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर 2025 को भारत आए थे. रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये उनका पहला भारत दौरा था. युद्ध अब भी जारी है और पुतिन ब्रिक्स में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं. ऐसे में मोदी और पुतिन की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा का अहम मुद्दा हो सकता है. दोनों नेता युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक असर पर बातचीत कर सकते हैं. आपको बता दें कि एससीओ में भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है.
5: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा. युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है. हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक.
0: और अब ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले 11 सितंबर यानी कल का दिन भारत और रूस के रक्षा संबंधों के लिहाज से एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होने जा रहा है. भारत और रूस के बीच कई समझौते हो सकते हैं. पीएम मोदी और पुतिन जब मिलेंगे तो दो सबसे बड़े रक्षा सौदे होंगे. S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5वीं रेजिमेंट की डिलीवरी और अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का साझा विकास. भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए में S-400 ट्रायम्फ की 5 रेजिमेंट के लिए समझौता किया था. इनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल होकर पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर तैनात की जा चुकी हैं. मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में इसी S-400 ने 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर दुश्मन के एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम को बार गिराकर एक नया इतिहास रचा था. रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अटकी 5वीं और आखिरी रेजिमेंट की डिलीवरी
6: अब नवंबर 2026 तक पूरी करने का पुख्ता आश्वासन मिला है। इसके अलावा नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का समझौता भी अहम है। अभी ब्रह्मोस की मौजूदा मिसाइल का वजन 2.9 टन है। इसके मुकाबले ब्रह्मोस एनजी लगभग आधी से भी कम वजन यानी महज 1.3 टन की होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसे स्वदेशी तेजस और MiG-29 जैसे हल्के लड़ाकू विमानों में भी 6 से 7 की संख्या में तैनात किया जा सकेगा, जो अभी Sukhoi-30 में सिर्फ एक ही लगाई जा सकती है। शुक्रवार को दिल्ली में होने जा रहे समझौते भारत को वैश्विक रक्षा निर्माण का नया हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होंगे। आज तक ब्यूरो।
4: बात यूपी की करेंगे, जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होना है। बीजेपी समाजवादी पार्टी जहां चुनाव की तैयारियों में लगी है, वहीं BSP में घर का झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया है, वहीं उनके छोटे भाई ईशान आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सवाल अब यह है कि आकाश को लेकर वो अब करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी की तरफ से उन्हें न्योते दिए जाने लगे हैं। अखिलेश यादव अभी तक इस पर चुप हैं।
7: इस महीने की शुरुआत में लखनऊ में BSP की बैठक में मायावती के साथ आकाश आनंद की मौजूदगी ने खबरदार कर दिया कि भतीजे के दिन बुआ की पार्टी में गिनती कहीं बचे।
8: इधर बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है मायावती, वो यहां पर पहुंची हैं और ये पूरे देश भर से अलग अलग जिलों से आए हुए लोग हैं। वो अब ऐसे में चूंकि बसपा 2027 की बड़ी तैयारियों के साथ में यहाँ पर है और इस बार जो जिम्मेदारी है वो उन सभी पर तैयारी की जिम्मेदारी है कि आखिर 2027 में कैसी ये रणनीति तय होगी। आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस बार आकाश आनंद नहीं है लेकिन साथ में उनके अन्य लोग मौजूद हैं।
7: लेकिन आकाश आनंद को मायावती निकालने का ये कारण देंगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मायावती की इस ट्वीट के चौतरफा चर्चे हैं, जिसमें उन्होंने भतीजे आकाश आनंद की वफादारी पर सवाल उठाते हुए खबरदार किया कि उन्हें पार्टी से कहीं ज्यादा अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ से लगाव है। अपने ही ट्वीट में मायावती ने आगे इसकी वजह भी बताई, लिखा कि आज से पहले आकाश आनंद उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को रिपोस्ट कर अपनी वफादारी साबित करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया। मायावती ने आगे ट्वीट में लिखा कि आकाश आनंद को उन्होंने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया, जिसके लिए उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन उन्हें पारिवारिक मोह BSP से ज्यादा है। बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को मायावती के साथ दिखे आकाश के छोटे भाई ईशान ने ये गलती नहीं की और ईशान आनंद ने बड़े भाई से एक कदम आगे बढ़कर मायावती के उस पोस्ट को रिपोस्ट किया है जिसमें उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी से हटाने की बात लिखी है। आकाश से मायावती की नाराजगी की वजह उनके ससुर को माना जाता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पार्टी छोड़िए राजनीति से ही संन्यास ले लिया। अगर आज आपको लगता है कि मेरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहने से हमारे संतों, गुरुओं और महापुरुषों के बनाए बहुजन मिशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीतिक और सामाजिक जीवन से संन्यास ले रहा हूं। इस तरह अशोक सिद्धार्थ ने दामाद आकाश आनंद का रास्ता साफ करने के लिए सियासत से ही तौबा कर ली। खबरों की माने तो आकाश आनंद की BSP में वापसी की शर्त ही यही थी कि उनके ससुर अशोक आनंद इस्तीफा दें। अशोक आनंद पर आकाश आनंद को बरगलाने और गुमराह का आरोप था, उस पर भी अशोक सिद्धार्थ ने सफाई दी। आकाश जी को सलाह देना तो दूर, बीते कई महीनों से मेरी उनकी मुलाकात भी कुछ एक अवसर पर तब हुई जब उनके कार्यक्रम उन राज्यों में लगे जिनकी जिम्मेदारी आपने मुझे दी हुई थी। मेरे संन्यास लेने को आप आकाश जी की वापसी से मत जोड़िए। माननीय आकाश आनंद जी मेरे दामाद से पहले आपके भतीजे हैं और आदरणीय आनंद भाई साहब के बेटे हैं। उनके अंदर आपका खून बहता है। उन्होंने जीवन के 2 दशक आपकी छत्र छाया और देखरेख में बिताए हैं। मेरे जैसा मामूली सा कार्यकर्ता भला उनको क्या ही गुमराह कर पाएगा। उनका अच्छा बुरा आप किसी और से ज्यादा बेहतर समझती हैं। उनको वापस जिम्मेदारी देना या ना देना ये आपका फैसला है। लेकिन अशोक सिद्धार्थ के संन्यास से मायावती का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने एक्स पर लिखा,
9: पार्टी के लोगों को यही बेहतर लगता है कि उन्हें पहले जिस तरह सभी अहम जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, उसी प्रकार उन्हें पार्टी में भी आज से पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए। आकाश आनंद पार्टी में अब स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र हैं, अर्थात ऐसे में अब इनको पार्टी से पूरे तौर से मुक्त कर दिया गया है।
7: मायावती ने अपनी एक पोस्ट को रीट्वीट करने पर भी आकाश आनंद पर सवाल खड़े किए। उधर आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो BSP में बदलाव की बात कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसी वीडियो की वजह से उन पर गाज गिरी है।
10: मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके करंट तरीकों को लेके कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। क्या आपकी दिक्कतें हमने समझी और हम उसका सलूशन निकालने में काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को पार्टी को दोबारा से वहां लेके जाएंगे जहां पे हम एक बारी बहुत मजबूती से खड़ा हुआ करते।
7: मायावती के भतीजे की सियासी ताकत समाजवादी पार्टी को चुनावों में दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो अच्छे लग रहे हैं। ऑफर दिया जा रहा है कि आ जाओ,
11: बहुजन सर्वजन हिताय बहुजन हिताय की काम करने वाली पार्टी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 3 महीने पहले जिस तरीके से अपनी अंतर्कला से जूझ रही है, इससे साफ समझ में आता है कि उसका अब कोई भी काम बहुजन हिताय के लिए नहीं रह गया है। बहुत पहले ही बहुजन जो समाज है वो बसपा से दूर हो चुका है और ये बात बहुजन समाज पार्टी के सब लोग जानते हैं। अपनी देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आकाश आनंद एक युवा नेता है, तेज तर्रार है, अच्छा बोलते हैं, बहुजन की बात करते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी है कि हम समाजवादी पार्टी में इस बारे में बात करें। पहले भी वो पार्टी से निष्कासित हुए फिर वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो पीडीए की बात करेगा, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करेगा। इस समय बहुजन का एक ही नेता पूरे देश में है जिसका नाम है अखिलेश यादव।
7: आकाश को बीएसपी में समेटने और फिर आगे बढ़ाने का खेल कई सालों से चल रहा है, लेकिन इस बार मायावती ने आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या फैसला लेते हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
4: और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां गुलजार सिंह की मौत पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव से पहले अब पूरे मामले में दलित पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है।
7: पंजाब में नशे से शुरू हुई सियासत अब दलित पॉलिटिक्स पर आ गई है। गुलजार सिंह के परिवार ने एक बार फिर प्रशासन पर संगीन आरोप लगाए। परिवार का कहना है कि प्रशासन ने जबरन गुलजार सिंह का अंतिम संस्कार कराया।
12: आही अपील करते हैं छोटे अग्गे भी ते प्रशासन अग्गे भी जो जो साडे नाल धक्का होया ते साडे सातों धक्के नाल मेरे पिता जी का संस्कार करवाया गया, मेरे भरा नूं गुमराह करके ते संस्कार करवाया गया। असीं यही अपील करते हैं भी जिन्ना टाइम मेरे पिता जी नूं कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, जिन्ना इंसाफ नहीं मिलेगा असीं ना तो ना ही भोग पावांगे ना ही फुल चुकांगे।
7: पहले गुलजार की आत्महत्या और फिर दबाव डालकर अंतिम संस्कार। पंजाब की भगवंत मान सरकार सीधे सीधे कटघरे में खड़ी दिख रही है। बीजेपी डेलीगेशन ने गुलजार के परिवार से मुलाकात कर भगवंत मान की सरकार से पूछा है कि आखिर उसकी संवेदना इस हद तक कैसे मर गई।
13: ये भी आ रहा है कि आप खुद जा रहे हैं डेलीगेशन लेके उनसे?
14: अभी जा रहे हैं जी, हम सब इकट्ठे होकर वहाँ जा रहे हैं। पर ये है कि उस गरीब आदमी ने, वो दलित आदमी बेचारे ने एक सवाल पूछा था कि चिट्टे को बंद करो, क्योंकि उसका परिवार तबाह हो चुका, उसका लड़का खुद चिट्टे में है। उसने कहा कि जी चिट्टा बंद करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये इसकी भी किसी को तकलीफ है कि सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल ही पूछा है ना, सवाल पूछ रहे हैं। उसको इतना तंग किया गया कि आप बताओ कि किसी को जरूरत होती है कि मैं सल्फास पीऊं, इतना तंग किया गया। उससे पहले मोहनजीत को शेरों में ऐसे पीटा गया। तो ये लोग जो
13: ड्रग्स का सवाल उठाए तो
14: ड्रग्स का सवाल उठाए तो ये मौजूदा सरकार उसको लाठियों से पुलिस से दबाना चाहती है। ये लोग पंजाब के दबेंगे नहीं।
7: संगरूर में गुलजार के घर के दरवाजे पर मिलने वालों का तांता लगा है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है।
15: उन्होंने जबरन किया, उनके कारण जो गुलजार सिंह मरा है और उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन पे आधा पर्चा किया गया, एफएम पे भी पर्चा होना चाहिए, उसकी अरेस्ट होनी चाहिए और उसका इस्तीफा होना चाहिए।
16: मरने से पहले उनकी जो अखीरली वीडियो है गुलजार सिंह की, वो क्लियरली नशे के जो प्रॉब्लम चल रही है बहुत बड़ी संगरूर में और पंजाब में, जो संगरूर होम डिस्ट्रिक्ट है चीफ मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, और ये उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, उसने उसको लेके आवाज उठाई थी। एंड द वे ही वाज प्रेशराइज्ड, ह्यूमिलेटेड, उसको ये बोला गया गुलजार सिंह को कि आपको सबक सिखाएंगे, उसकी मदर, उसकी वाइफ ये बात को बार बार बयान कर रही थी।
7: अनुसूचित आयोग ने भी परिवार से मुलाकात की और पंजाब सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए।
17: परिवार की जो भी मांग है, खास करके उनकी मांग है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, साथ साथ गुलजार सिंह जी को जिन्होंने भी डराया धमकाया और उसके कारण उन्होंने खुदकुशी की, तो जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए।
18: परिवार ने क्या मांग रखी है जी? क्यों
17: परिवार ने मांग रखी है? उनका कहना है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। साथ साथ मंत्री जी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। और आयोग परिवार की जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, इस दिशा में आयोग आगे बढ़ेगा।
7: पंजाब में चुनाव होने वाला है और एक दलित की आत्महत्या पर सियासी शोर है। ऐसे में मान सरकार मामले में एक्शन की बात तो कर रही है, लेकिन पार्टी के वित्त मंत्री हरपाल चीमा को क्लीन चिट दे रही है, जबकि विपक्ष हरपाल चीमा के खिलाफ एक्शन पर अड़ा हुआ है। कमलजीत संधु, चंडीगढ़, आज तक।
4: और अब बात करेंगे बाढ़ के बारे में, जिसने बिहार में भारी तबाही मचा रखी है। नदियों का पानी बस्तियों में घुस चुका है, लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं।
7: शरीर पर वर्दी नहीं है, इसलिए पहचानने में चूक मत कीजिए। इन असलहों से पहचान लीजिए कि ये बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान हैं, जो कटिहार से आई बाढ़ से परेशान हैं।
19: ये बीएमपी के जवान हैं जो शिविर में ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी अब उनका चूंकि पानी से डूब जाने के बाद ड्यूटी अब और कहीं करेंगे, उसके लिए वो लोग खाली कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे साजो सामान के साथ ये लोग बीएमपी के जवान हैं।
7: ग्रामीणों की माने तो इलाके में 6,000 से 8,000 लोग बाढ़ पीड़ित हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर एक नाव तक नहीं दी गई।
20: बहुत भयावह स्थिति है यहाँ मौना चांदपुर में, भयावह स्थिति है बाढ़ से। लमसम 9 वार्ड, 5 से 6 हजार, 6 हजार से 8 हजार की जनसंख्या में जनता डूब रहे हैं।
7: खगड़िया का हाल भी देखिए, वहाँ गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों का प्रभाव रहता है। बाढ़ का पानी गाँव के बड़े हिस्से में फैल चुका है। गाँव में आवाजाही का एकमात्र साधन नाव है,
21: और गंगा में जो पानी आया है इस बार, जिस तरीके से गंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, उफनाई हुई है गंगा, उसके वजह से पूरा का पूरा गांव जो है वो डूब चुका है।
7: भोजपुर का हाल भी बेहाल है। कहने को तो गंगा और सोन नदी का पानी उतर रहा है, लेकिन भोजपुर के बड़ा ब्लॉक के 22 गांवों की हालत कुछ ऐसी है।
22: जो पहले से राशन ले लेके हम लोग धारे घर में, वो तो खा गया, अब खाने के लिए हम लोग मर रहा है।
7: आज तक की टीम इन इलाकों में पहुंची तो ग्रामीणों ने कैमरे के सामने अपनी परेशानियां खुलकर रखी।
22: टोप ले लेते हैं, देखने नहीं आते हैं कि पब्लिक कैसे रह रहा है, कैसे जी रहा है, कोई परवाह नहीं है सरकार के, कैसे हम लोग जिए।
7: बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने 40 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, घर बार पानी में डूब गया है, गाँव के गाँव जलमग्न हो गए हैं, 14 जिले बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। खगड़िया।
4: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: ब्रिक्स बैठक से पहले आज दिल्ली में मोदी और पुतिन की मुलाकात, जिनपिंग समेत जुटेंगे दुनिया के कई दिग्गज, 12 से 13 सितंबर तक राजधानी में समिट। सुपर पावर्स की सुरक्षा में किले में तब्दील हुई है दिल्ली। ब्रिक्स बैठक के मद्देनजर 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात, 500 सीसीटीवी कैमरों से नजर, आज तक पर सॉलिड कवरेज। पार्टी में पारिवारिक पत्ते फेंटने में जुटी है मायावती, ससुर के सियासी संन्यास के बावजूद आकाश आनंद को तीसरी बार भेजा गया वनवास, ईशान आनंद पर नजर, पार्टी में कलह के संकेत। संगरूर सुसाइड केस में बुरी तरह से घिरी मान सरकार, जोरदार विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी की मांग, मंत्री चीमा और सीएम भगवंत मान का इस्तीफा, और तुरंत कांग्रेस ने भी घेरेबंदी की। और आईआरसीटीसी होटल मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की मुसीबत बढ़ गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किए हैं आरोप, रेल मंत्री रहते हुए टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ और लाभ का मामला। बात 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की, जब युद्ध प्रतिबंध, व्यापार बाधाओं और पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक व्यवस्था डगमगा चुकी है, तब 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारत की मेजबानी में 11 सदस्य देश दिल्ली में जुटेंगे।
1: अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की कमान भारत के पास है और इस सम्मेलन के मेहमान भी खास हैं। जी हां, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई दिल्ली आ रहे हैं, तो भारत के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दुनिया की नजरें इस त्रिशक्ति पर जमी हुई हैं। बड़ी बात यह भी है कि भारत में पहली बार शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, यानी मोदी और जिनपिंग आमने सामने बैठकर बात करेंगे, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत होनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों इस त्रिशक्ति पर अमेरिका से लेकर पूरा वर्ल्ड नजरें जमाए बैठा है, तो ये भी दिखाएंगे कि क्यों पीएम मोदी की शी जिनपिंग और पुतिन के साथ ये द्विपक्षीय बातचीत अहम है। उससे पहले आपको बता दें कि ब्रिक्स दुनिया की बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत, रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिस्र, ईरान, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। भारत का फोकस ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, आतंकवाद से निपटने और सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। यानी ब्रिक्स को सिर्फ राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश और विकास के बड़े मंच के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश है। इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसे 12 से 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया के 11 देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली अभेद किले में तब्दील हो चुकी है। सुरक्षा ऐसी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। दिल्ली में 25,000